0: जीवन में धोखा मिलता है, प्रेम विवाह रिश्ते दोस्ती हर जगह धोखे से परेशान हैं। क्या है धोखे के कारण और क्या है इसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: आज दिल्ली वालों को मिलेगा मयूर विहार से एम्स तक सिग्नल फ्री सफर की सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर का शुभारंभ। राजधानी में शारदीय नवरात्रि की तैयारियां तेज, कालीबाड़ी में मां की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार, भक्तों में भारी उत्साह। एशियन गेम्स में आज भी पदकों की आस, रिलेट टीम पदक की दौड़ में होगी शामिल, तो बॉक्सिंग में भारत के 3 सेमीफाइनल मुकाबले। घर लौटे चैंपियंस का देशभर में जोरदार स्वागत, एशियन गेम्स में कल 9वें दिन भारत ने जीते 8 मेडल, 45 पदक के साथ 12वें स्थान पर भारत। यूपी के श्रावस्ती में मिशन जिंदगी के लिए एसडीआरएफ ने चला विशेष अभियान, 2 टीमें बनाकर बाढ़ में फंसे 14 किसानों और मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाला। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपको गुड न्यूज टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।

या तो तुम इन्हें छोड़ो, काय को ढकोसले में पड़े, 20-21 बार आओगे, किराया लगेगा, खर्चा होगा, मनहीन होगा, मन में तरह तरह के सवाल जवाब आएंगे, झंझट खत्म करो, मत आओ, घर रहो। तो या तो तुम इन्हें छोड़ो या इन पर छोड़ दो, बस इतना करो। और इतना किया नहीं कि तुम्हारा जीवन बनना तय है। हर पल सन्यासी बाबा तुम्हें चमत्कार करते दिखाई पड़ेंगे। तुम्हारी अर्जी लग जाए, तुम्हारे बच्चे खुशी रहे, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए, और जो जो मनोरथ लेकर आए हो आज के ही दरबार से पूरे हो जाए, ऐसा आशीर्वाद है। और जाओ, तुम्हें स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई दे ताकि ये भरोसा हो जाए तुम्हारी अर्जी लग गई है। इतना हम कह सकते, अभिमान में तो हम बोलते नहीं कभी, गुरु के स्वाभिमान में बोलते हैं, क्योंकि हमारी तो कोई औकात या क्षमता है नहीं। हम तो गांव के छोटे से गवार आदमी, अनपढ़ आदमी हैं भैया, हमारी तो कोई औकात नहीं। लोग हमारा बात का बतंगड़ बना देते हैं, क्योंकि आदमी हम थोड़ा टेढ़े मेढ़े, हमारी बातों को लोग उल्टा फुल्टा ले लेते हैं, और ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारा काम सीधा सीधा है। धर्म तो हम धंधा होने नहीं देंगे, हमारा काम सीधा सीधा है। चोट तो हम खतरनाक मारते हैं आदमी को अपनी बातों से, लोग चलाते होंगे गोलियां, हम तो बोलियां चलाते। लोगों को तो मरना होता गोली खा के, हम इतने खतरनाक आदमी के हम बोली से आदमी को निपटवाते। हाँ, हमारी बातें सुनकर कई लोगों की हम नींद हराम कर देते, इतने खतरनाक आदमी है कि सोने नहीं देते लोगों को और हम आराम से सोते, इतने अद्भुत आदमी। क्योंकि बात तो हम चोखी चोखी कहते, सीधी सीधी कहते, तुम्हारे समाज के लोगों को डर लगता है हमारा, और लगना भी चाहिए, ये तो भारत है। सिंगापुर सरकार ने हमारा वीजा रद्द कर दिया, और इस बात पे रद्द कर दिया कि ये आदमी खतरनाक है, इसको हमारे देश में मत आने दिया जाए। तो हमने पूछवाया सरकार के लोगों से कि भला हमने ऐसा क्राइम क्या किया, हमने कभी लोग नहीं मारे, हमने कभी दंगे नहीं करवाए, फिर हमें क्यों रोका गया। तो वहां की सरकार ने मेल में जवाब दिया कि आई एम सो सॉरी, आपकी बातों से लोग भड़क जाते हैं, इसीलिए हम आपको आने नहीं दे सकते, हमारे देश का माहौल बिगड़ जाएगा। हमने जो जवाब लिखा वो उस पर ही भड़क गए। हमने जवाब ये दिया कि ऑलरेडी तुम्हारे देश का माहौल भड़का, हम ठीक करने आ रहे हैं। और वो इस बात से ही भड़क गए, बोले बस ऐसी तो तुम उल्टी बातें करते हो, इसलिए तो हम आने नहीं दे रहे। तो हमने भी जो दूसरा जवाब दिया वो चौंक गए, हम कहा भाड़ में जाओ, चूल्हे में जाओ, तुम्हारे ही देश का भला होना है, हमारा क्या हलवा भला होना है, हम नहीं आ रहे, जाओ। अभी खबर मिली कुछ दिन पहले कि अब आप आ सकते हैं, हम लोगों ने बात कर ली है। हमारी तो बातों से ही लोगों को आग लग जाती, आज के जमाने में लोग सूर्य से कम जलते हैं, हमारी बातों से ज्यादा जलते हैं। देखो तो तुम, हमारी लकड़ी की खड़ाऊ गोल्डन बना दी गई सोने की, आज हम नई खड़ाऊ पहन के लाए, जरा लाना बेटा खड़ाऊ उठाओ, हमारी सोने की खड़ाऊ बना दी लकड़ी की। और देखो तो तुम, भारत के क्या एशिया के सबसे अमीर आदमी के घर में उसके मकान की चर्चा नहीं हो रही, बिचारे अंबानी जी के घर में अंबानी जी की बात होनी चाहिए,
बात हो रही अमीर के घर में एक फकीर की खड़ाऊ की। आज हम काली पहन कर आए, और हम पहले ही बता दें ये लकड़ी की है। कल के दिन तुम इसको ब्लैक डायमंड मत बोल देना कि ये ब्लैक डायमंड है, लकड़ी है भैया, वो सोने वाली सोने की बनने गई है, इसलिए हम काली पहन करके आए। और भैया भरोसा ना होता हो चेक कर लो, अभी ये देखो, लोग समंदर खंगालने में लगे हैं, जिनमें खुद में कमियां हैं वो हम में कमियां निकालने में लगे हैं, अरे जिनके लंगोट फटे हुए हैं वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हैं। देखो तो तुम लकड़ी की खड़ाऊ सोने की बना रहे। खैर इतना जलवा तो होना चाहिए, हमारे चेलों को तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे गुरु की बातें चलती रहती हैं, और बातें उसी की चलती जिसमें कोई बात होती, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बाप प्रभु बढ़िया गुरु पाया है। और हमने तो तुम्हें 3 साल पहले ही कहा था हमारे जैसा गुरु तुम लालटेन लेके खोजोगे तब भी नहीं मिलेगा, हमने तो पहले ही कहा, और हमने 3 साल पहले कहा था, अभी भी कह रहे कि यहां आना मत, और धोखे से तुम यहां आ गए तो होश में रहना, जल्दी निकल जाना। तुम ज्यादा देर हमारे सामने बैठे, ज्यादा देर तुमने हमको देखा और हमारी बातें सुनी, फिर तुम्हारा जाने का रास्ता बंद। हाँ तो बाद में मत कहना कि गड़बड़ हो गई है, हमारे यहां आने का रास्ता है जाने का नहीं है, और हो भी नहीं सकता है। प्रेम गली अति सांकड़ी ता में दो न समाए, मेरे पागल रास्ता तो प्रेम का है, और प्रेम के रास्ता में कौन जाना चाहता, कौन लौटना चाहता, कौन भागना चाहता, किसको पड़ी है भागने की। इसलिए मेरे पागल तुम सदा सदा के लिए बालाजी के प्रेम में पड़ जाओ, तुम्हारे दिन बदल जाएं, यही प्रार्थना हम करते हैं। और जाओ सबकी अर्जी स्वीकार हो ऐसा आशीर्वाद। आज का दरबार, आज के प्रवचन और आज का ज्ञान खत्म, आज का दरबार हम शुरू कर रहे हैं। प्रेम पूर्वक बैठें, कोई खड़ा नहीं होगा, कोई आगे नहीं आएगा। माता जी आगे क्यों आ रही, वहीं जाओ वापस, अभी वहीं जाओ, बिल्कुल नहीं आना, पर्चा बाद में लेंगे, अभी बैठना है, चढ़ जाएगा, चढ़ जाएगा, सबका पर्चा चढ़ेगा, हम चढ़ाएंगे, हमारा पड़ोसी थोड़ी चढ़ाएगा, हम ही चढ़ाएंगे। हे जगत जननी माता, ओ लाल माता, ओ लाल साड़ी वाली मैया, ओ जगत जननी त्रिपुर सुंदरी, बैठ जा माता, आसन ले ले। सीताराम पागलो, हरे हरे महा, साधु जी साधु जी। अब आज का दरबार हम शुरू कर रहे हैं, मन में राम नाम का जप करना, और सूचनाएं हम आगे की दे दें। कल यहीं पर हवन करवाया जाएगा पितृदोष का, जो हमारे दीक्षित चेला है जिनने दीक्षा ले रखी, वो कई दिनों से मिल नहीं पाए थे तो शिकायत कर रहे थे, कल सुबह 11 बजे अपना कार्ड टांग कर कंप्यूटर में चेक करवा कर हॉल में बैठ जाना, हम अपने चेलों को कल मिलेंगे। जिन्होंने दीक्षा ले रखी है बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। कल भैया कलाकार बुला लो पूरे, अभी बोल दो। दूसरी सूचना, पितृपक्ष में इस बार हम गया जी नहीं जा रहे,
इस बार का पितृपक्ष का उपाय गंगा के किनारे ऋषिकेश में करवाया जाएगा। 108 श्रीमद् भागवत पुराण होंगे वहां, तो किसी को अपने पितरों के निमित्त चलना हो तो कार्यालय में नाम लिखवा देना, रुकने का, पंडित जी का रुकने का, सामान का, भोजन का दक्षिणा तुम्हें लगेगा, पंडित जी और पूजा की दक्षिणा हम दे देंगे। तो आपको यदि चलना हो तो 100 ही लोग जा पाएंगे, ज्यादा लोग उसमें जा नहीं पाएंगे। हम तो एक दिन के लिए भर जाएंगे क्योंकि हमारी पद यात्रा है, रथ यात्रा है। नवरात्रि में हम छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़, इन 5 जिलों की 500 किलोमीटर की रथ यात्रा करने जा रहे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नवरात्रि में छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़, इन 5 जिलों में हजारों लोगों के साथ, कई 100 संतों के साथ रथ यात्रा लेकर हम निकल रहे हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। और 5 जिलों में 4 रातें जहां जहां रुकेंगे, हर जगह हजारों हजारों लोगों को हनुमान जी का हवन करवाएंगे और भारत हिंदू राष्ट्र का संकल्प दिलवाएंगे। तो पहले हमने पद यात्रा की, अब सभी मंडलों में जाकर रथ यात्रा करने वाले हैं, क्योंकि पदयात्रा में समय ज्यादा लगता था, डिस्टेंस कम पूरा हो पाता था, 200 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल पाते। रथ यात्रा में समय कम लग रहा, जगह ज्यादा जा रहे। फिर एक रथ यात्रा यूपी में भी निकाली जाएगी। और यूपी में जाएंगे अयोध्या, और यूपी में एक दिन का कार्यक्रम करेंगे मथुरा में, जन्मभूमि के सामने, और पुकारेंगे कि कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे, और हर में कृष्ण लला भी बैठ करके ही रहेंगे। हाँ, अब जिनको आग लगती हो तो लगती रहे, हम तो अपना काम करेंगे, जो काम है हम वो तो करेंगे ही करेंगे, बोलो हाँ या ना। भाई साधु का काम क्या, धर्म का प्रचार करना, बोलो हाँ या ना। गरीबों की मदद करना, बोलो हाँ या ना। अन्नपूर्णा भंडारा चलाना, बोलो हाँ या ना। गरीब बेटियों की विवाह करवाना, बोलो हाँ या ना। तो साधु अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? अब हम डांस थोड़ी करें, अरे साधु है, हिंदुत्व का काम हमारा करना है, हम करेंगे। और जब तक जिएंगे तब तक हिंदू होकर हिंदू के काम आएंगे, जब तक जिएंगे तब तक मनुष्य होकर एक एक व्यक्ति के काम आएंगे। और तुम चिंता ना करो, मरने के पहले तो तुम्हारा पर्चा बनाई जाएगा। इतनी दम तुम रखो, नो प्रॉब्लम। हम तो दम रखे हैं कि जब तक हमें जिंदा रहना तब तक जो हमें विद्या शक्ति मिली है इसका सदुपयोग हमें जीवन भर करना ही। तो पन्ना, छतरपुर, दमोह, सागर जिले, टीकमगढ़ जिले से कितने लोग बैठे, जरा हाथ उठाओ। पन्ना से, छतरपुर से, सागर से, दमोह से, टीकमगढ़ से, जरा हाथ उठा लो। अच्छा, सूचना भेज देना यूपी वाले कितने बैठे, एमपी वाले कितने बैठे, बिहार वाले, झारखंड वाले, दिल्ली वाले,
हरियाणा वाले, भारत वाले। अच्छा, हाथ नीचे कर लो। तो इस रथ यात्रा में जितने भी मंडल हैं सब तैयार हो जाएं। सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना के सभी मंडल तैयार हो जाएं, अपनी अपनी जगह पर हवन का एरिया देखें, और उसके साथ साथ आप लोग रथ यात्रा में जिनको जाना हो हम बसें लगवा देंगे। नवरात्रि में 5 दिन रोज पांचों जगह हवन, और 5 दिन रथ यात्रा करके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकलेंगे। हरे हरे मां। ये दूसरी सूचना है। और तीसरी सूचना ये है, 26 तारीख से 30 तारीख तक हम लुधियाना में हैं। वहां कथा है, एक दिवसीय दिव्य दरबार है, फिर एक दिन के लिए हम ऋषिकेश जाएंगे, इसके बाद में फिर पदयात्रा रथ यात्रा की तैयारी करेंगे, उसके बाद में फिर हम कहां जाएंगे अभी थोड़ी बताएंगे। तुम कौन सा डायरी बना रहे हो? बाद में बताएंगे। 6 मार्च को कन्या विवाह में आओगे? पक्का? अच्छा, अब अपना धाम कैसा लगने लगा? बदला बदला लग रहा ना? दोनों हाथ जोड़ लो। तुम तो सोच रहे कि गुरुजी बातें बंद करो, पर्चा बनाओ। हम तुम्हारे मन की जानते हैं, ठठरी के बरे हरो। तुम्हें क्या लेना देना हिंदू राष्ट्र से या हमसे? तुम्हें पर्चा से लेना देना? तुम्हें क्या लेना देना कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा? गुरुजी बाद में मर जाइयो, पहले हमारा पर्चा बना दो। यही कहेंगे। यदि हम मरघट भी जा रहे होंगे ना, तो लोग जगा के कहेंगे, गुरुजी गुरुजी एक बार वो बता दो, वो शादी कर लें कि ना करें, फिर मर जाओ। और हम कहे, अरे भैया हम मरे धरे, गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु इतना सारा गुरु, और हम जल रहे होंगे तब तक एक भागता भागता, गुरु जी आपने वो व्यापार का नहीं बताया था क्या करना है? अरे मर गए हैं, जल रहे हैं, गुरु जी बता जा बता जा। है हाँ या ना? नहीं? सही में? पक्का? तो हम भी नहीं। टेंशन ना लो, अभी हमें बहुत जीना है। तुम मुस्कुराओ। तुम लोग ना हमारे चेला नहीं हो, परिवार वाले। कौन हो? फैमिली, परिवार वाले हो। हमारा तो घर छूट ही गया, हमारा घर ही तुम्हें तो एक दिन की छुट्टी मिल जाती, हमें तो कोई दिन छुट्टी नहीं।

0: जीवन में धोखा मिलता है, प्रेम विवाह रिश्ते दोस्ती हर जगह धोखे से परेशान हैं। क्या है धोखे के कारण और क्या है इसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: दिल्ली को मिलेगी सिग्नल फ्री सफर की सौगात, बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे अमित शाह, मयूर विहार से एम्स तक आसान होगी यात्रा। राजधानी में शारदीय नवरात्र की तैयारियां तेज, कालीबाड़ी में मां की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार, भक्तों में भारी उत्साह। एशियन गेम्स में आज भी पदकों की आस, रिले टीमें पदक की दौड़ में होंगी शामिल, तो बॉक्सिंग में भारत के 3 सेमीफाइनल मुकाबले। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, नाव संचालन पर लगी रोक, लोगों की सुरक्षा को लेकर फैसला। श्रावस्ती में मिशन जिंदगी के लिए एसडीआरएफ ने चलाया विशेष अभियान, 2 टीमें बनाकर बाढ़ में फंसे 14 किसानों और मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाला।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: एशियन गेम्स में यूपी की बेटी का कमाल, महिलाओं की 5000 मीटर रेस में पारुल चौधरी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। भारतीय धावक गुलवीर सिंह ने एशियन गेम 2026 में पुरुषों की 1500 मीटर रेस में जीता सिल्वर मेडल। धाविका विद्या रामराज ने 400 मीटर बाधा दौड़ इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पीटी उषा को 42 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। विमेंस 25 मीटर पिस्टल में भी भारत के नाम एक पदक, ईशा सिंह ने सिल्वर मेडल जीता। भारत का बॉक्सिंग में चौथा मेडल पक्का, लवलीना बोरगोहेन ने सेमीफाइनल्स में जगह बनाई। एशियन गेम्स में कुराश खेल में कांस्य पदक जीतने वाली स्टार खिलाड़ी पिंकी बलहारा के घर मना जश्न। परिवार की महिलाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, पिंकी की उपलब्धि पर जताई खुशी। एशियन गेम्स में भारत के लिए मेडल लाने वाली बेटी विदर्शा के विनोद का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। परिवार के साथ अन्य रिश्तेदार भी खिलाड़ी का स्वागत करने पहुंचे, एयरपोर्ट पर ही दिए गए उपहार। विदर्शा के विनोद वह एशियाई खेलों में शूटिंग में पदक जीतने वाली केरलम की पहली महिला खिलाड़ी है। एशियन गेम्स में देश के लिए गोल्ड जीतने वाली गोल्डन गर्ल पुष्पा राणा का धर्मशाला में ढोल नगाड़ों के साथ हुआ भव्य स्वागत। पुष्पा राणा को पहनाई गई फूल मालाएं, साथियों ने फूलों की वर्षा कर स्वागत किया।

नेपाल में हिमलुंग हिमालय बेस कैंप में हिमस्खलन, 14 लापता मजदूरों की तलाश जारी। ये मजदूर विदेशी पर्वतारोहियों के लिए टेंट लगा रहे थे जो हिमस्खलन के समय वहां मौजूद नहीं थे। भारी बर्फबारी के बीच हेलीकॉप्टर की मदद से लापता मजदूरों की जा रही है तलाश। फुटेज में बचावकर्मी गहरी बर्फ में खुदाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर ओर लापता पर्वतारोहियों और मजदूरों की तलाश की जा रही है। नेपाल अभियान संचालक संघ के महासचिव और पर्यटन विभाग के महानिदेशक ने भी कहा कि लापता लोगों को तलाशने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उत्तरकाशी में खराब मौसम और बर्फबारी के बीच फंसे कई पर्वतारोही, युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू अभियान। उत्तरकाशी के कालंदी पास में करीब 5 से 7 फीट हुई बर्फबारी, 21 पर्वतारोहियों की बचाई गई जान। उत्तरकाशी रेस्क्यू मिशन को लेकर हेलीकॉप्टर भी तैनात, मौसम सुधारने के साथ तेज होगा अभियान। प्रशासन ने सभी पर्वतारोहियों के सुरक्षित होने की कही बात, टीमों से लगातार बना हुआ है संपर्क। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी की पूरे हालात पर है नजर, प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को जरूरी सामान उपलब्ध कराने के दिए गए निर्देश। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार तक यूं ही खुशगवार रहेगा मौसम, इसके बाद फिर पड़ेगा तापमान। बंगाल की खाड़ी से उठे डीप प्रेशर के चलते अचानक आया मौसम में बदलाव, अभी कुछ दिन और देखने को मिलेगा ये बदलाव। पश्चिम विक्षोभ के चलते पहाड़ों में हुई बर्फबारी के कारण भी मैदानों में मौसम हुआ ठंडा, फिलहाल अब पहाड़ों में कोई और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं होगा सक्रिय। देश के कुछ हिस्सों में अभी भी मॉनसून सक्रिय है जिसके चलते कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर। राजस्थान और दिल्ली एनसीआर से मॉनसून की हो चुकी है विदाई, कुछ दिनों में मौसम में फिर देखने को मिलेगा बदलाव। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बदला मौसम का मिजाज, ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी के साथ धौलाधार की वादियों में जोरदार बारिश। तेज हवाओं के साथ गिरा पारा, बड़ी ठंड, मौसम भी हुआ सुहाना, सैलानियों को लुभा रहा है मौसम। हिमाचल में बारिश का दौर जारी, 30 सितंबर से होगा मौसम खुलने की संभावना। शिमला में बढ़ते मौसम का मजा ले रहे हैं सैलानी, मॉल रोड पर दिखी सैलानियों की भारी भीड़। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग के चीरबासा में लगातार गिर रहे हैं बोल्डर, धाम में फंसे सभी भक्तों को निकाला गया। मौसम साफ होते ही फिर शुरू हुई चारधाम यात्रा, बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। मंदिर परिसर से लेकर ब्रह्म कपाल तक श्रद्धालुओं की भीड़, अब तक 18 लाख से अधिक यात्री पहुंचे बद्रीनाथ। चारधाम श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, होटल्स में यात्रियों ने नाच गाकर और केक काटकर बताया समय। बारिश के बीच होटल कारोबारियों ने यात्रियों की सुरक्षा का रखा पूरा ख्याल, होटल में ही खाने पीने की विशेष व्यवस्था की गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से सुरक्षित और खुश नजर आए श्रद्धालु, होटल कारोबारियों के व्यवहार की जमकर सराहना की। प्रयागराज में ई पिंडदान का क्रेज बढ़ा, वीडियो कॉल से हो रहा है ई पिंडदान, अरेल घाट पर ऑनलाइन व्यवस्था। पितृपक्ष के दौरान प्रयागराज में दूर दराज से पहुंच रहे श्रद्धालु विधि विधान के साथ अपने पितरों का कर रहे हैं तर्पण और पिंडदान। मंत्रों की गूंज के बीच श्रद्धालु अपने पितरों को कर रहे हैं याद, उनसे परिवार पर सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद बनाए रखने की कर रहे हैं प्रार्थना। गया जी में 15 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष मेले में पितरों का पिंडदान करने वालों का तांता।

0: झांसी में लावारिस आत्माओं तथा 878 परिवारों के पूर्वजों के लिए हुआ अनुष्ठान। पहुज नदी तट पर कराया गया सामूहिक पिंड पूजन। बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर का तीसरा फेज मंगलवार को होगा शुरू। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। 15 मिनट में तय होगा मयूर विहार से एम्स का सफर। दिल्ली में सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी को मिल रही है नई रफ्तार। 1 अक्टूबर से खुलेगा सरिस्का, रणथंबोर, मुकुंदरा सहित सभी टाइगर रिजर्व। पर्यटक ले सकेंगे टाइगर व जंगल का आनंद। श्रीनगर में म्यूजिकल इवेंट में शामिल हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला संगीत का आनंद लेते दिखे। संस्था गोविंदा पहुंचे मां बगलामुखी के दरबार, पूजन दर्शन कर लिया आशीर्वाद। अभिनेता की एक झलक पाने के लिए लगी प्रशंसकों की भीड़।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा है।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे धोखे की। प्रेम में, विवाह में, दोस्ती में कब धोखा मिलता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं? देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि जीवन की अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग मामलों में धोखा कब मिलता है और धोखे से बचने के उपाय क्या हैं। हर आदमी को जीवन में धोखा नहीं मिलता और कुछ को लगातार मिलता है। आखिर कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं इसके लिए? देखिए, आम जीवन में हम लोगों से काम के लिए या भावनाओं के लिए जुड़ते हैं। उस समय जब लोगों से जुड़ते हैं, लोगों का साथ पकड़ते हैं, तो उस समय व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। जब वो व्यक्ति हमारे भरोसे के अनुरूप काम नहीं करता या भरोसे के विपरीत काम करता है, तो इसको धोखा कहा जाता है। ज्योतिष में भरोसा तोड़ने के मामले में और धोखा देने के लिए चार ग्रहों की विशेष भूमिका होती है। चंद्रमा, बुध, शनि और राहु। हालांकि अन्य ग्रह भी इन ग्रहों के हिसाब से मिलकर अलग अलग समय पर भूमिका निभाते हैं। जो जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इनको सबसे ज्यादा धोखा जीवन में मिलता है। कर्क, वृश्चिक और मीन वालों को धोखा सर्वाधिक मिलता है। और पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर, सामान्यतः ये राशियां सबसे ज्यादा धोखा देती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पृथ्वी तत्व की सारी राशियों वाले धोखेबाज होते हैं, लेकिन पृथ्वी तत्व की राशियों के अंदर चालाकी पाई जाती है और उस चालाकी का इस्तेमाल करके ये लोग धोखा देने का प्रयास करते हैं। काफी हद तक, लगभग 50-60% तक पृथ्वी तत्व के लोग चालबाजियां दिखा देते हैं। धोखा व्यापार में, पार्टनरशिप में, कारोबार में काफी होता है। पार्टनरशिप किसी के साथ की, उसने बेवकूफ बनाया और सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया, आपको बाहर कर दिया। व्यापार के मामले में, कारोबार के मामले में धोखा कब मिलता है? कुंडली का सप्तम भाव जो आपके पार्टनर का है, जो आपके व्यापार का है, अगर ये भाव कमजोर हो तो व्यापार में, कारोबार में धोखा होता है। अगर कुंडली के आठवें भाव में पाप ग्रह बैठे हों, शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, तो भी धोखा कारोबार में मिल सकता है। राहु के ऊपर या राहु का सूर्य या चंद्र पर प्रभाव हो तो भी ये व्यापार में, कारोबार में धोखा दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है और आप व्यापार करते हैं, तो व्यापार में धोखे की संभावना बहुत होती है। जिनका बुध कमजोर हो, ऐसे लोग सोच समझ कर व्यापार करें, वरना व्यापार में झटका जरूर लगेगा। अगर आपकी कुंडली में व्यापार में धोखे के योग हैं, तो क्या करें? साझेदारी में, पार्टनरशिप में व्यापार कभी मत करिएगा। व्यापार का लेन देन मंगलवार को बिल्कुल मत करिएगा और संभव हो तो बुधवार को भी ना करें। और अगर आपकी कुंडली में व्यापार में धोखे का योग है तो रोज सुबह भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। ऐसा करने से व्यापार में धोखे से बच जाएंगे। देखिए, सबसे ज्यादा धोखा जो मिलता है और लोग कहते भी हैं वो प्रेम और विवाह के मामले का धोखा है। आपको बताया गया कि लड़का इंजीनियर है, पता चला लड़का कुछ करता ही नहीं है। आपको बताया गया कि लड़की बिल्कुल ठीक है, पता चला लड़की को कोई बड़ी बीमारी है। तो प्रेम और विवाह के मामले में भी धोखा मिलता है। कब मिलता है? अगर आपकी कुंडली में शुक्र के साथ सूर्य का या मंगल का संबंध हो तो इस तरह का धोखा जरूर होता है। शुक्र के साथ सूर्य वाले बड़े लापरवाह होते हैं रिश्तों के मामले में और अक्सर धोखे के शिकार हो जाते हैं। सातवें स्थान में अगर चंद्रमा बैठ गया या बृहस्पति बैठ गया तो ऐसी स्थिति में या तो विवाह होता नहीं, या अगर विवाह हुआ तो विवाह में धोखे की संभावना ज्यादा होती है। अगर बृहस्पति खराब है, खास तौर से किसी महिला का बृहस्पति अगर खराब है तो विवाह के मामले में उसे धोखा जरूर मिलता है। पति पत्नी के जो ग्रह हैं आपसी, अगर उनमें मित्रता नहीं है तो विवाह में धोखा मिलता है। आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सब गड़बड़ हो जाता है और विवाह में धोखे की संभावना बनती है। पुरुष का शुक्र खराब हो, पुरुष को धोखा मिलेगा। महिला का बृहस्पति खराब हो, महिला को धोखा जरूर मिलेगा। अब अगर आपकी कुंडली में विवाह या प्रेम के मामले में धोखे के योग हैं तो क्या करें? शादी या प्रेम में बहुत ज्यादा अपेक्षा मत पालिए। जो लोग बहुत ज्यादा ठोंकने बजाने लगते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं शादी या प्रेम में, उनको धोखा जरूर मिलता है। अगर आपकी कुंडली में प्रेम या विवाह के मामले में धोखे के योग हैं तो काले और भूरे रंग के कपड़ों का प्रयोग जीवन में कम करिएगा। खास तौर से ब्राउन कलर का ज्यादा प्रयोग करने से राहु एक्टिव हो जाता है, धोखा अवश्य मिलता है। राधा कृष्ण को रोज प्रातः गुलाबी फूल चढ़ाइए। अगर कुंडली में धोखे का योग है प्रेम या विवाह के मामले में, देखिए, अगर आप पुरुष हैं या स्त्री हैं और आपकी कुंडली में ऐसे संकेत हैं कि विवाह के मामले में या प्रेम के मामले में धोखा मिलेगा, अगर धोखे के योग प्रबल हैं तो हीरा कभी मत पहनिएगा। हीरा पहनना आपको धोखे तक खींच करके ले जाएगा। इसलिए अगर कुंडली में धोखे के योग हो तो हीरा धारण ना करें। देखिए, प्रेम और विवाह के अलावा जिस मामले में सबसे ज्यादा धोखा मिलता है आज के समय में वो दोस्ती है। आपने दोस्त पर भरोसा करके उसकी सहायता की, आपको सहायता की जरूरत है, आपके दोस्त ने फोन बंद कर दिया, मुंह फेर लिया, तो दोस्ती में धोखा बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोगों को मिलता है। कारण क्या है? चंद्रमा या शुक्र अगर कुंडली में खराब हैं आपके, तो हमेशा दोस्ती में सावधानी रखें, क्योंकि ऐसी दशा में धोखे की संभावना ज्यादा होती है। चंद्रमा खराब होगा तो आपकी दोस्ती ही गलत लोगों से होगी, जो अपना काम निकाल कर चलते बनेंगे। शुक्र खराब होगा तो अपोजिट जेंडर के साथ आपकी मित्रता होगी, पुरुष हैं तो स्त्री से, स्त्री हैं तो पुरुष से, और वो मौका पड़ने पे धोखा देंगे। तो चंद्र या शुक्र खराब हो तो धोखे की संभावना बड़ी प्रबल होती है दोस्ती में। अगर किसी का बुध खराब है तो आपको जो दोस्त मिलेंगे जीवन में वो अपने स्वार्थ के लिए मिलेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के मित्र स्वार्थ के लिए उनके साथ जुड़ते हैं और स्वार्थ पूरा होने के बाद अपने रास्ते पर चले जाते हैं। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति मजबूत होता है ना, ऐसे लोग जानबूझकर धोखा खाते हैं। उन्हें पता होता है कि अगला आदमी मेरा फायदा उठा रहा है, फिर भी वो चुप रहकर इंतजार करते हैं कि सही समय आने पर बात करेंगे। बृहस्पति शुभता वाला प्लेनेट है, इसलिए कुंडली में अगर अच्छा होगा तो व्यक्ति शांत रहकर अपने साथ होते हुए धोखे को देखता है और सही समय पर इसका जवाब देता है। जिनका बुध खराब है वो दोस्ती में धोखा खाते भी हैं, और बुध अगर चौपट है तो वो धोखा देते भी हैं, तो जैसा करते हैं वैसा जीवन में उनको मिलता है। अब अगर आपको लगता है कि भाई आपके साथ दोस्ती में बार बार धोखा हो जाता है, बार बार दोस्तों की तरफ से धोखे की स्थिति बन जाती है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। भगवान कृष्ण को रोज सवेरे पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए, क्योंकि भगवान कृष्ण से ज्यादा मूल्यवान मित्र कोई भी नहीं है। और अगर दोस्ती में बार बार धोखा मिल रहा है तो एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में, राइट हैंड में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें। सूर्य का एक रत्न आता है, उसे कहते हैं गार्नेट। एक गार्नेट का लॉकेट बनवा लें और इसको तांबे या सोने के लॉकेट में बनवा कर अपने गले में पेंडेंट की तरह धारण करें। इससे भी आप धोखा खाने से बचेंगे, धोखा मिलने के पहले आप सतर्क हो जाएंगे। अगर आपकी आर्थिक स्थिति में बराबर उतार चढ़ाव रहता हो, कभी पैसा ज्यादा, कभी पैसा कम, कभी बिल्कुल नहीं, तो एक स्टील का छल्ला बनवा लीजिए। स्टील का छल्ला दाहिने हाथ की, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में अगर आप धारण कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अशुभ है और अशुभ बृहस्पति की दशा चल रही है, तो क्या करें? बृहस्पति की अशुभ दशा में अधिक से अधिक शिव जी की उपासना करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें और हर बृहस्पतिवार को केले का दान करें। और बृहस्पति की अगर अशुभ दशा चल रही है तो पीला रंग और पीले रंग की वस्तुओं से परहेज करें। बृहस्पति की कितनी भी अशुभता है, अगर आप निरंतर शिव जी की पूजा करेंगे तो बृहस्पति की अशुभता दूर हो जाएगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
4: एशियन गेम्स में भारत को शूटिंग में मिला एक और मेडल, विमेन्स ट्रैप टीम ने जीता सिल्वर मेडल, भारत के पास अब तक कुल 46 मेडल। दिल्ली को मिलेगी सिग्नल फ्री सफर की सौगात, बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, मयूर विहार से एम्स तक आसान होगी यात्रा। राजधानी में शारदीय नवरात्रि की तैयारियां तेज, कालीबाड़ी में मां की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार, भक्तों में भारी उत्साह। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बड़ा गंगा नदी का जलस्तर, नाव संचालन पर लगी रोक, लोगों की सुरक्षा को लेकर फैसला।
3: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
4: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में, और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: नमस्कार।
4: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में बन रहे धोखे के योग के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि हमें धोखा मिलता है, चाहे वो शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे पैसे रुपए का लेन देन हो। तो धोखे के योग और धोखे से बचने के उपाय क्या हैं, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
0: अगर आपकी आर्थिक स्थिति में बराबर उतार चढ़ाव रहता हो, कभी पैसा ज्यादा कभी पैसा कम कभी बिल्कुल नहीं, तो एक स्टील का छल्ला बनवा लीजिए। स्टील का छल्ला दाहिने हाथ की राइट हैंड की मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में अगर आप धारण कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
4: तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि कब हमें मिलता है धोखा और क्या कहता है ज्योतिष।
0: जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि जीवन की अलग अलग स्थितियों में अलग अलग मामलों में धोखा कब मिलता है और धोखे से बचने के उपाय क्या हैं। हर आदमी को जीवन में धोखा नहीं मिलता और कुछ को लगातार मिलता है, आखिर कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं इसके लिए। देखिए, आम जीवन में हम लोगों से काम के लिए या भावनाओं के लिए जुड़ते हैं, उस समय जब लोगों से जुड़ते हैं लोगों का साथ पकड़ते हैं तो उस समय व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। जब वो व्यक्ति हमारे भरोसे के अनुरूप काम नहीं करता या भरोसे के विपरीत काम करता है तो इसको धोखा कहा जाता है। ज्योतिष में भरोसा तोड़ने के मामले में और धोखा देने के लिए चार ग्रहों की विशेष भूमिका होती है, चंद्रमा, बुध, शनि और राहु। हालांकि अन्य ग्रह भी इन ग्रहों के हिसाब से मिलकर अलग अलग समय पर भूमिका निभाते हैं। जो जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इनको सबसे ज्यादा धोखा जीवन में मिलता है। कर्क, वृश्चिक और मीन वालों को धोखा सर्वाधिक मिलता है। और पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर, सामान्यतः ये राशियां सबसे ज्यादा धोखा देती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पृथ्वी तत्व की सारी राशियों वाले धोखेबाज होते हैं, लेकिन पृथ्वी तत्व की राशियों के अंदर चालाकी पाई जाती है और उस चालाकी का इस्तेमाल करके ये लोग धोखा देने का प्रयास करते हैं। काफी हद तक, लगभग 50-60% तक पृथ्वी तत्व के लोग चालबाजियां दिखा देते हैं।
4: और अब बात कर लेंगे राशिफलों के बारे में, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल।
0: मेष राशि, व्यर्थ के विवादों से आपको बचना चाहिए, खान पान का ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: और आइए अब जानते हैं कब मिलता है कारोबार के मामले में धोखा और कैसे इससे बचा जाए।
0: धोखा व्यापार में, पार्टनरशिप में, कारोबार में काफी होता है। पार्टनरशिप किसी के साथ की, उसने बेवकूफ बनाया और सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया, आपको बाहर कर दिया। व्यापार के मामले में, कारोबार के मामले में धोखा कब मिलता है? कुंडली का सप्तम भाव जो आपके पार्टनर का है, जो आपके व्यापार का है, अगर ये भाव कमजोर हो तो व्यापार में, कारोबार में धोखा होता है। अगर कुंडली के आठवें भाव में पाप ग्रह बैठे हों, शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, तो भी धोखा कारोबार में मिल सकता है। राहु के ऊपर या राहु का सूर्य या चंद्र पर प्रभाव हो तो भी ये व्यापार में, कारोबार में धोखा दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है और आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में धोखे की संभावना बहुत होती है। जिनका बुध कमजोर हो ऐसे लोग सोच समझ कर व्यापार करें, वरना व्यापार में झटका जरूर लगेगा। अगर आपकी कुंडली में व्यापार में धोखे के योग हैं तो क्या करें? साझेदारी में, पार्टनरशिप में व्यापार कभी मत करिएगा। व्यापार का लेन देन मंगलवार को बिल्कुल मत करिएगा और संभव हो तो बुधवार को भी ना करें। और अगर आपकी कुंडली में व्यापार में धोखे का योग है तो रोज सुबह भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। ऐसा करने से व्यापार में धोखे से बच जाएंगे।
4: और अब बारी है कर्क सिंह और कन्या राशि के राशिफल को जानने की।
0: कर्क राशि, करियर में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। वाहन सावधानी से चलाएं। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, छोटी यात्रा हो सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: और गुडलक में वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, वक्त हो गया है आपके पहले सवाल का। लेकिन सवाल लेने के पहले आपको बता दूं कि जब भी आप हमें मेल करते हैं, अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान, ये तीनों साफ तौर पर लिखें और फिर अपना प्रश्न लिखें। बहुत बार ऐसा होता है कि आप डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखते, टाइम नहीं लिखते, या कई बार सीधा सवाल लिख देते हैं, जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान नहीं लिखते हैं, तो हम आपके प्रश्न नहीं ले पाते हैं। इसलिए जब भी मेल करें सावधानी से करें ताकि आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। आज का पहला प्रश्न टीशा ने हमें लिखा है, मुंबई से लिखती हैं। 1 नवंबर 1983 का जन्म है। 4:51 शाम को बोरीवली मुंबई। ये कह रही हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन बहुत खराब है और मेरे पति ने हमेशा मुझे धोखा दिया है, हमेशा मेरे साथ छल किया है। क्या ये विवाह चल पाएगा? क्या मैं इससे बाहर निकल पाऊंगी? टीशा, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और सिंह राशि की। महादशा बृहस्पति की और अंतर दशा शनि की चल रही है। कुंडली में ज्यादातर जो ग्रह हैं वो निचले पृथ्वी तत्व के इलाके में हैं, छठे और आठवें भाव में ज्यादातर ग्रह हैं, जो कि वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा नहीं है और आपके भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है। देखिए, विवाह आप आगे दूसरा करें या ना करें, लेकिन इस विवाह से निकलिए, वरना आप फंस जाएंगी किसी बड़े धोखे में। कोई लीगल कानूनी कार्रवाई के चक्कर में आप आ सकती हैं, इसलिए बुद्धिमानी कहती है कि इस विवाह से बाहर निकलिए, आगे दूसरा विवाह करिए या ना करिए। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक इसका पाठ करिएगा और जितना संभव हो हनुमान जी की पूजा करें, उनका दर्शन करें, आपको लाभ होगा।
4: हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल, पंडित जी किसका लेते हैं।
0: जी, अगला प्रश्न इंदु गोयल जी ने हमें लिखा है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 18 दिसंबर 1995, दोपहर में 12:02, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। ये पूछ रही हैं कि मेरे बेटे का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इंदु जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और तुला राशि की, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा राहु की चल रही है। जब भी इनका विवाह करें कुंडली एक बार मिलाइएगा ताकि तालमेल थोड़ा बेहतर रह सके। एक इनको ओपल बनवा के पहनाइए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल इनको पहनाएं और इनको कहिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें तो इनको लाभ होगा।
4: तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं धोखे के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं प्रेम और विवाह के मामलों में कब धोखा हमें मिलता है।
0: देखिए, सबसे ज्यादा धोखा जो मिलता है और लोग कहते भी हैं वो प्रेम और विवाह के मामले का धोखा है। आपको बताया गया कि लड़का इंजीनियर है, पता चला लड़का कुछ करता ही नहीं है। आपको बताया गया कि लड़की बिल्कुल ठीक है, पता चला लड़की को कोई बड़ी बीमारी है। तो प्रेम और विवाह के मामले में भी धोखा मिलता है। कब मिलता है? अगर आपकी कुंडली में शुक्र के साथ सूर्य का या मंगल का संबंध हो तो इस तरह का धोखा जरूर होता है। शुक्र के साथ सूर्य वाले बड़े लापरवाह होते हैं रिश्तों के मामले में और अक्सर धोखे के शिकार हो जाते हैं। सातवें स्थान में अगर चंद्रमा बैठ गया या बृहस्पति बैठ गया तो ऐसी स्थिति में या तो विवाह होता नहीं, या अगर विवाह हुआ तो विवाह में धोखे की संभावना ज्यादा होती है। अगर बृहस्पति खराब है, खास तौर से किसी महिला का बृहस्पति अगर खराब है तो विवाह के मामले में उसे धोखा जरूर मिलता है। पति पत्नी के जो ग्रह हैं आपसी, अगर उनमें मित्रता नहीं है तो विवाह में धोखा मिलता है। आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सब गड़बड़ हो जाता है और विवाह में धोखे की संभावना बनती है। पुरुष का शुक्र खराब हो, पुरुष को धोखा मिलेगा। महिला का बृहस्पति खराब हो, महिला को धोखा जरूर मिलेगा। अब अगर आपकी कुंडली में विवाह या प्रेम के मामले में धोखे के योग हैं तो क्या करें? शादी या प्रेम में बहुत ज्यादा अपेक्षा मत पालिए। जो लोग बहुत ज्यादा ठोंकने बजाने लगते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं शादी या प्रेम में, उनको धोखा जरूर मिलता है। अगर आपकी कुंडली में प्रेम या विवाह के मामले में धोखे के योग हैं, तो काले और भूरे रंग के कपड़ों का प्रयोग जीवन में कम करिएगा। खास तौर से ब्राउन कलर का ज्यादा प्रयोग करने से राहु एक्टिव हो जाता है, धोखा अवश्य मिलता है। राधा कृष्ण को रोज प्रातः गुलाबी फूल चढ़ाइए। अगर कुंडली में धोखे का योग है प्रेम या विवाह के मामले में, देखिए अगर आप पुरुष हैं या स्त्री हैं और आपकी कुंडली में ऐसे संकेत हैं कि विवाह के मामले में या प्रेम के मामले में धोखा मिलेगा, अगर धोखे के योग प्रबल हैं तो हीरा कभी मत पहनिएगा। हीरा पहनना आपको धोखे तक खींच करके ले जाएगा, इसलिए अगर कुंडली में धोखे के योग हो तो हीरा धारण ना करें।
4: और आइए जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल।
0: तुला राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होती फिलहाल दिखाई दे रही हैं। काम की बाधाएं समाप्त होंगी, व्यर्थ की चिंता ना करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रोजगार के प्रयास सफल होंगे, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, पारिवारिक समस्या परेशान कर सकती है, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
4: तो लगातार हम इस एपिसोड में बात कर रहे हैं हमें मिलने वाले धोखे के बारे में, कभी शादी में धोखा तो कभी दोस्ती में धोखा, और अब बात कर रहे हैं हम दोस्ती की कि हमें दोस्ती में कब धोखा मिलता है।
0: देखिए, प्रेम और विवाह के अलावा जिस मामले में सबसे ज्यादा धोखा मिलता है आज के समय में वो दोस्ती है। आपने दोस्त पर भरोसा करके उसकी सहायता की, आपको सहायता की जरूरत है, आपके दोस्त ने फोन बंद कर दिया, मुंह फेर लिया, तो दोस्ती में धोखा बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोगों को मिलता है। कारण क्या है? चंद्रमा या शुक्र अगर कुंडली में खराब हैं आपके, तो हमेशा दोस्ती में सावधानी रखें, क्योंकि ऐसी दशा में धोखे की संभावना ज्यादा होती है। चंद्रमा खराब होगा तो आपकी दोस्ती ही गलत लोगों से होगी जो अपना काम निकाल कर चलते बनेंगे। शुक्र खराब होगा तो अपोजिट जेंडर के साथ आपकी मित्रता होगी, पुरुष हैं तो स्त्री से, स्त्री हैं तो पुरुष से, और वो मौका पड़ने पे धोखा देंगे। तो चंद्र या शुक्र खराब हो तो धोखे की संभावना बड़ी प्रबल होती है दोस्ती में। अगर किसी का बुध खराब है तो आपको जो दोस्त मिलेंगे जीवन में वो अपने स्वार्थ के लिए मिलेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के मित्र स्वार्थ के लिए उनके साथ जुड़ते हैं और स्वार्थ पूरा होने के बाद अपने रास्ते पर चले जाते हैं। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति मजबूत होता है ना, ऐसे लोग जानबूझकर धोखा खाते हैं। उन्हें पता होता है कि अगला आदमी मेरा फायदा उठा रहा है, फिर भी वो चुप रहकर इंतजार करते हैं कि सही समय आने पर बात करेंगे। बृहस्पति शुभता वाला प्लेनेट है, इसलिए कुंडली में अगर अच्छा होगा तो व्यक्ति शांत रहकर अपने साथ होते हुए धोखे को देखता है और सही समय पर इसका जवाब देता है। जिनका बुध खराब है वो दोस्ती में धोखा खाते भी हैं, और बुध अगर चौपट है तो वो धोखा देते भी हैं। तो जैसा करते हैं वैसा जीवन में उनको मिलता है। अब अगर आपको लगता है कि भाई आपके साथ दोस्ती में बार बार धोखा हो जाता है, बार बार दोस्तों की तरफ से धोखे की स्थिति बन जाती है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। भगवान कृष्ण को रोज सवेरे पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए, क्योंकि भगवान कृष्ण से ज्यादा मूल्यवान मित्र कोई भी नहीं है। और अगर दोस्ती में बार बार धोखा मिल रहा है तो एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में, राइट हैंड में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें। सूर्य का एक रत्न आता है, उसे कहते हैं गार्नेट। एक गार्नेट का लॉकेट बनवा लें और इसको तांबे या सोने के लॉकेट में बनवा कर अपने गले में पेंडेंट की तरह धारण करें। इससे भी आप धोखा खाने से बचेंगे, धोखा मिलने के पहले आप सतर्क हो जाएंगे।
4: और अब वक्त हो गया है आज की अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो आइए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल।
0: मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। शत्रु और विरोधी शांत होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। करियर की बाधा समाप्त होगी। जल्दबाजी में काम ना करें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: पंडित जी, एक सवाल था, अगर समानता कुंडली में हमें धोखा मिल रहा है, मतलब दिख रहा है कि हमें लगातार धोखा मिलेगा, तो उससे बचने के उपाय क्या हैं?
0: जी देखिए, बहुत सारे लोगों की कुंडली में मल्टीपल जगहों से, लगभग हर जगह से धोखा मिलने के योग होते हैं। विवाह में भी, प्रेम में भी, परिवार से भी, व्यापार में भी। और कारण होता है कुंडली का खराब राहु या बहुत बुरी तरह से खराब चंद्रमा। तो अगर आपकी कुंडली में जीवन के हर जगह पर, हर स्थिति में आपको धोखा मिलता है अपने लोगों से, अपने परिवार से, तो आपको मुख्यतः हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए।

0: शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाकर उनकी मूर्ति के ठीक सामने खड़े हो जाइए और प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे जीवन में किसी भी तरह के धोखे और अपयश से बचाओ। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपकी धोखे से सुरक्षा होगी।
1: और चलिए अब जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: जी अगला प्रश्न भावना जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं। 13 मई 1982 का जन्म है, 1:05 AM मध्यरात्रि, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता है, मेरा वैवाहिक जीवन कब तक बेहतर होगा और मैं अपना काम करना चाहती हूँ, कौन सा व्यापार करना मेरे लिए फायदेमंद रहेगा। भावना आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और धनु राशि की, महादशा राहु की और अंतर दशा शुक्र की चल रही है। देखिए वैवाहिक जीवन की जहां तक बात है, आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन एवरेज ही रहेगा, उसके बहुत बेहतर होने की संभावना नहीं लगती है। हाँ जितना निगेटिव अभी है उतना निगेटिव आगे नहीं होगा, आगे कुछ हद तक सुधार होना चाहिए, लेकिन कुल मिला के वैवाहिक जीवन देखिए एवरेज दिखाई दे रहा है। जहां तक व्यापार की बात है, आप कोशिश कर सकती हैं इस साल के आखिरी से व्यापार शुरू करने के लिए कला, सौंदर्य, शिक्षा या कपड़ों से संबंधित आर्ट, क्रिएटिविटी, कॉस्मेटिक्स, कपड़ा या पढ़ाना लिखाना, टीचिंग ट्रेनिंग देना, ऐसा काम करना आपके लिए सूटेबल होगा और अक्टूबर 2026 के बाद आप ऐसा जरूर कर सकती हैं। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहने, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का अगर जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न पल्लवी ने हमें लिखा है और पल्लवी हमें पश्चिम बंगाल से मेल लिखती हैं। 5 जून 1986 का जन्म है, 5:35 शाम को दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। ये कह रही हैं कि मैं अभी एडहॉक पे एक विद्यालय में, एक कॉलेज में पढ़ा रही हूँ जहाँ पैसे बहुत कम मिलते हैं। मैं नेट एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर रही हूँ ताकि नेट क्वालिफाई करके मुझे बढ़िया नौकरी मिल सके, तो आगे मेरे करियर के लिए मैं क्या करूँ, क्या स्थितियाँ बन रही हैं। दूसरा ये पूछ रही हैं कि मेरी इतनी उम्र हो गई, लगभग 39 साल, मेरा विवाह अब तक नहीं हुआ है, तो मेरी कुंडली में विवाह के योग कैसे हैं। पल्लवी आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और मेष राशि की, महादशा राहु की और अंतर दशा मंगल की चल रही है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब या परमानेंट कॉलेज में नौकरी साल 2027 के आरंभ में दिखाई दे रही है। देखो विवाह होने के योग इस कुंडली में बड़े कमजोर हैं और अगर विवाह होता है तो हो सकता है किसी डिवोर्सी से या किसी विडोवर से आपकी शादी हो या ऐसे व्यक्ति से शादी हो जो थोड़ा उम्र में बड़ा हो, तो इसके लिए आप अगले साल प्रयास करके फरवरी के बाद देखिए, थोड़ी बहुत संभावना साल 2027 में आपकी विवाह की बन सकती है। फिलहाल आप एक पीला पुखराज बनवा के पहन ले, 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः एक पीला पुखराज धारण करें और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें।

0: हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा।
1: जिनका जन्मदिन है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में बड़ी सफलताएं मिलेंगी। इस साल आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन इस साल में स्वास्थ्य के मामलों में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर उपासना करें, कम से कम हनुमान चालीसा ही पूरे साल पढ़ें, तो ये वर्ष आपके लिए बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि रविवार के दिन कौन सा काम करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। देखिए, रविवार का दिन सूर्य ग्रह का दिन है और रविवार के दिन सरकारी काम करना, राजनीति के काम करना, गवर्नमेंट से संबंधित काम करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। इसमें भी अगर रविवार को आप किसी मंदिर चले जाएं, धर्म स्थान पर जाकर दर्शन करें, तो और भी ज्यादा अच्छा होगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर कौन सा है।
0: शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्या में सुधार होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की गुडलक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को बृहस्पति कैसा परिणाम देता है। आज की गुडलक राशि है कर्क, कैंसर। बृहस्पति इनको आम तौर पर भाग्यशाली तो बनाता है, हालांकि कभी कभी यही बृहस्पति इनको बीमार भी कर देता है।
1: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है।
0: जी,

0: में बृहस्पति अशुभ है और अशुभ बृहस्पति की दशा चल रही है तो क्या करें? बृहस्पति की अशुभ दशा में अधिक से अधिक शिव जी की उपासना करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें और हर बृहस्पतिवार को केले का दान करें। और बृहस्पति की अगर अशुभ दशा चल रही है तो पीला रंग और पीले रंग की वस्तुओं से परहेज करें। बृहस्पति की कितनी भी अशुभता है, अगर आप निरंतर शिव जी की पूजा करेंगे तो बृहस्पति की अशुभता दूर हो जाएगी।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और इस वक्त की शानदार खबर, जापान में जारी एशियन गेम्स में भारत के लिए शानदार खबर आ रही है। शूटिंग में विमेंस ट्रैप टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। नीरू आशिमा और मनीषा की तिकड़ी ने भारत को यह सफलता दिलाई। मेडल की कुल संख्या की अगर हम बात करें तो अब भारत के पास कुल 46 मेडल है, जिसमें 4 गोल्ड, 21 सिल्वर, 21 ब्रॉन्ज शामिल है। तो इस वक्त ये शानदार खबर, आप देखिए किस तरह से नीरू आशिमा और मनीषा की तिकड़ी ने भारत को यह सफलता दिलाई है और मेडल की कुल संख्या मिलाकर 46 हो गई है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: चलिए बात कर लेते हैं सैलाब में फंसे लोगों की, जिनकी हिफाजत के लिए ना सिर्फ एनडीआरएफ ने पूरी ताकत लगाई है बल्कि जहां जरूरी है वहां इंडियन एयरफोर्स के कमांडोज भी मोर्चा संभाल रहे हैं। एक तरफ बंगाल की खाड़ी का डीप डिप्रेशन और दूसरी ओर पश्चिम विक्षोभ, दोनों का असर ये कि पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मैदानी इलाकों में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं।

0: एक तरफ छोटे छोटे बच्चे और दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड, दोनों के बीच शुरू हुआ टग ऑफ वॉर का मुकाबला। बच्चे भी पूरी ताकत लगाकर रस्से खींच रहे थे, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा दांव चला कि पूरा खेल ही पलट गया। गार्ड ने बच्चों की तरफ कैंडी फेंक दी, कैंडी देखते ही बच्चों ने रस्सी छोड़ दी और कैंडी उठाने दौड़ पड़े। बस फिर क्या था, गार्ड ने मुकाबला जीत लिया। कपड़े धोने के लिए आपने वॉशिंग मशीन तो खूब देखी होगी, लेकिन ये जुगाड़ शायद पहली बार देखा होगा। वीडियो में बीच में आटा है, उस पर पटरी रखी है, एक तरफ पत्नी बैठी है और दूसरा तरफ पति पटरी को घुमा रहा है। पटरी के घूमते ही कपड़े धोने का काम भी होता नजर आ रहा है। इस देसी जुगाड़ को देखकर लोग हैरान हैं और सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा दिमाग आया कहां से। हुनर, खूबसूरती और संस्कृति का ऐसा संगम कि देखने वाले बस देखते रह जाएं। मराठा लुक में तैयार इस महिला का अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। पारंपरिक वेशभूषा में महिला ने ऐसा हुनर दिखाया कि हर कोई हैरान रह गया। गोल सर्कल को बड़े ही अनोखे अंदाज में चारों तरफ गोल गोल घुमाने का उनका तरीका बेहद दिलचस्प है। खूबसूरती के साथ हुनर का ये मेल लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बारिश हो रही है, सड़कें भीग रही हैं, लेकिन इस महिला के डांस का जोश जरा भी कम नहीं हुआ। बारिश की बूंदों के बीच महिला ने ऐसा डांस किया कि देखने वाले भी घरों से बाहर निकल आए। गाने की धुन बजती रही और महिला के कदम उसी ताल पर थिरकते रहे। हर स्टेप में जबरदस्त एनर्जी नजर आई। बारिश में महिला का ये डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: क्या आपको बार बार व्यापार में धोखा मिलता है? क्या आपके रिश्तों में भी धोखे की स्थिति बन जाती है? क्या आपके नजदीकी दोस्त ही आपको धोखा दे देते हैं? क्या है धोखे का कारण और क्या है निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
9: एशियन गेम्स में भारत को शूटिंग में मिला एक और मेडल, विमेन्स ट्रैप टीम ने जीता सिल्वर मेडल। भारत के पास अब तक कुल 46 मेडल। महाराष्ट्र में अंगारकी संकष्टी चतुर्थी की रौनक, मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में आस्था का मेला, पुणे दगड़ूशेठ मंदिर भी दर्शन पूजन। अंबाजी शक्ति में भादरवी मेले के बाद शुद्धिकरण समारोह, गर्भगृह में लेकर मां के गहनों की हुई सफाई, भजन कीर्तन का भी आयोजन। दिल्ली में शारदीय नवरात्र की तैयारियां तेज, कालीबाड़ी में मां की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार, भक्तों में भारी उत्साह। अब नोएडा से 20 मिनट में पहुंचेंगे एम्स। बारामूला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। भारतीय दवा कंपनियों को बड़ी राहत, स्पेशल ड्रग्स पर टैरिफ नहीं लगाएगा अमेरिका, भारत के साथ 20 देशों को भी राहत। हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज, धर्मशाला की पहाड़ियों का श्वेत श्रृंगार, बर्फबारी से तापमान में गिरावट।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश
9: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
10: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा, बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
9: शुभ समाचार की शुरुआत अंगारकी संकष्टी चतुर्थी के साथ करेंगे। आज भगवान गणेश की आराधना का खास दिन है। वैसे तो हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है, लेकिन जब यही संकष्टी चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ती है तो इसे अंगारकी संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। ये दिन भगवान गणेश की पूजा और आराधना के लिए विशेष माना जाता है। ऐसे में देश भर के गणपति मंदिरों में आज श्रद्धालुओं की खास भीड़ उमड़ी हुई है, तो ये रंग भी आगे आपको दिखाएंगे।
10: साथ ही बात नवरात्र की भी होगी, दिल्ली से कोलकाता तक इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजधानी के चितरंजन पार्क में भी शारदीय नवरात्र के दौरान थीम आधारित कई दुर्गा पंडाल सजाए जाते हैं। इनमें कालीबाड़ी मंदिर में लगने वाला मशहूर पंडाल भी शामिल है। तो कैसे हो रही है यहां पर तैयारियां, बताएंगे आगे।
9: इधर दिल्ली को आज एक और सिग्नल फ्री सफर की सौगात मिलेगी। बारामूला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन होगा। ये उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस फेज के शुरू होने से मयूर विहार से एम्स तक यात्रा आसान हो जाएगी। इस रूट की और खासियत क्या है, इसकी भी आगे आपको जानकारी देंगे।
10: साथ ही आपको जापान भी लिए चलेंगे, जहां पर एशियन गेम्स में भारत 46 मेडल्स के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। ऐसे में अब वो पदकों का अर्धशतक लगाने की ओर है। भारत ने अब तक 4 गोल्ड, 21 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल जीते। साथ ही आज का दिन भारत के लिए काफी अहम रहने वाला है। आज कौन कौन से मुकाबले होंगे आगे बताएंगे।
9: इसके अलावा आपको लिए चलेंगे हांगकांग के विक्टोरिया पार्क, जहां वर्ल्ड लैंटर्न फेस्टिवल मनाया जा रहा है। रोशनी के रंगों से सराबोर इस अनोखे उत्सव में 20 देशों की 3000 से ज्यादा लालटेन दिखाई देंगी। तो ये खूबसूरत तस्वीरें भी थोड़ी देर में होंगी आपके सामने, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की नौगढ़ न्यूज का।
10: जापान में जारी एशियन गेम्स में भारत के लिए शानदार खबर, शूटिंग में विमेन्स ट्रैप टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया। नीरू आशमा और मनीषा की तिकड़ी ने भारत को सफलता दिलाई। तो वहीं मेडल की कुल संख्या अगर बात करें तो भारत के पास अब तक कुल 46 मेडल हैं, जिसमें 4 गोल्ड, 21 सिल्वर, 21 ब्रॉन्ज शामिल।
9: एशियन गेम्स 2026 में महिला कुराश 78 कीर्गा वर्ग में कांस्य पदक जीत का इतिहास रचने वाली पिंकी बलहारा के घर खुशी का माहौल है और परिजन हुए समर्थकों ने जमकर इसका जश्न भी मनाया। परिवार की महिलाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, साथ ही पिंकी की उपलब्धि पर खुशी जताई।
10: 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील के खिलाफ फीफा फ्रेंडली मैच खेलने के लिए भारतीय फुटबॉल टीम कोलकाता पहुंच गई है। इस मैच को लेकर कोलकाता में जबरदस्त उत्साह है। भारतीय फुटबॉल इतिहास में यह पहला मौका है जब सीनियर पुरुष टीम 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील के खिलाफ मैदान में उतरेगी। ये महामुकाबला 3 अक्टूबर को कोलकाता के मशहूर सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा।
9: शारदीय नवरात्रि को लेकर राजधानी में तैयारियां और जोर पकड़ने लगी हैं। दिल्ली के कालीबाड़ी में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में मूर्तिकार दिन रात जुटे हुए हैं। प्रतिमाओं की साज सज्जा और रंग रोगन का काम तेजी से चल रहा है। वहीं नवरात्रि को लेकर भक्तों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
10: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण आई बाढ़ के बीच एसडीआरएफ की 2 टीमों ने एक विशेष रेस्क्यू अभियान चलाकर जलभराव में फंसे 14 नागरिकों और उनके मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाला। तो वहीं लोगों ने जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया।
9: छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारी बारिश और बाढ़ के बीच हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविर में पहुंचाया गया। इस मुश्किल घड़ी में एनडीआरएफ के जवान ग्रामीणों के लिए देवदूत बनकर सामने आए। छिंदगढ़ इलाके में एनडीआरएफ की टीम ने करीब 2 किलोमीटर तक बाढ़ के पानी के बीच पहुंचकर 128 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया।
10: भारतीय तटरक्षक दल देवदूत बने हैं, जहां पर भारतीय तटरक्षक दल ने अभियान चलाकर 23 लोगों की जान बचाई। समुद्र में संकट में फंसे मेलेस के झंडे वाले एमटी सीगल 9 टैंकर को स्थिर किया और मुख्य इंजन में खराबी और टैंक में पानी भरने के कारण खतरनाक तरीके से जहाज झुक गया था। इंडियन कोस्ट गार्ड की तत्परता से बड़ा हादसा टला।
9: अमेरिका ने भारतीय दवा कंपनियों को बड़ी राहत दी है। अमेरिका ने भारत समेत 20 देशों से आयातित कुछ स्पेशलिटी दवाओं और उनके संबंधित इंटीग्रेटेड पर कोई एड वेलोरम टैरिफ नहीं लगाने का फैसला किया है। अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी नोटिस में यह जानकारी दी गई है।
10: मुंबई में रामायण के प्रोफेशनल इवेंट में सितारों का भक्ति वाला अंदाज देखने को मिला। इवेंट से पहले रणवीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे ने हनुमान जी की पूजा अर्चना की। फिल्म में रणवीर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में नजर आएंगे।

शुभ समाचार की शुभ शुरुआत अंगारकी संकष्टी चतुर्थी के साथ करेंगे। गणपति उत्सव समाप्त हुए अभी चंद दिन हुए हैं, मगर बप्पा के जयकारों की गूंज अभी तक सुनाई दे रही है। आज अंगारकी संकष्टी चतुर्थी है और इस शुभ दिन पर गणपति मंदिरों में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। भगवान गणेश के दर्शन और आशीर्वाद के लिए सुबह से ही श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में भी बप्पा के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। मंदिरों में भक्तिमय माहौल है और चारों ओर गणपति बप्पा मोरया के जयकार गूंज रहे हैं। तो वहीं पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में भी बप्पा का भव्य और दिव्य श्रृंगार किया गया। फूलों और आभूषणों और आकर्षक सजावट से सजे विघ्नहर्ता के मनमोहक स्वरूप ने भक्तों का मन मोह लिया। बप्पा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पूरा मंदिर परिसर गणपति बप्पा मोरया के जय घोष से गूंज उठा।

तो सुबह से ही गणपति मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार है। सुबह सवेरे बप्पा की मंगला आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, बप्पा का आशीर्वाद लिया। ये तस्वीरें आप देखिए, विघ्नहर्ता की पूजा किस तरीके से की जा रही है। पूजा पाठ में कई श्रद्धालु सुबह सवेरे पहुंचे और आज अंगार की संकष्टी चतुर्थी है और इसी खास मौके पर बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं।

अंगार की संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश की आराधना का खास दिन है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। ये दिन भगवान गणेश की पूजा और आराधना के लिए विशेष माना जाता है। जब यही संकष्टी चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ती है तो इसे अंगार की संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। गणेश भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, बप्पा की पूजा अर्चना करते हैं और चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत का पारण करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और इसी खास मौके पर मुंबई के सिद्धिविनायक का भव्य और दिव्य श्रृंगार हुआ। फूलों, आभूषणों और आकर्षक सजावट से सजे बप्पा के मनमोहक स्वरूप के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। बप्पा के दिव्य स्वरूप को देखकर भक्त भाव विभोर नजर आए।

0: तो वहीं गुजरात के प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर में भाद्रवी पूनम महामेले के समापन के बाद शुद्धिकरण की विशेष प्रक्षालन विधि की गई। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह और चौक की विधिवत सफाई की गई। वहीं माताजी के गहनों समेत पूजा अर्चना में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का भी शुद्धिकरण किया गया। हर साल भाद्रवी पूनम के मौके पर लगने वाले महामेले में देश भर से लाखों श्रद्धालु जगत जननी मां अंबा के दर्शन के लिए अंबाजी पहुंचते हैं। मेले के समापन के बाद मंदिर में प्रक्षालन की ये परंपरा निभाई जाती है।
1: प्रक्षालन विधि संपन्न की गई है। जो माता जी का मंदिर 1 बजे बंद हो गया था वो रात के 9 बजे माता जी की आरती होगी और जो ये शास्त्रोक्त विधि अनुसार पूजा अर्चना करके माता जी का शास्त्रोक्त विधि अनुसार शास्त्रीय परंपरा अनुसार माता जी का शुद्धिकरण के लिए ये विधि की जाती है।
2: और चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। सितंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है और इस आखिरी हफ्ते में उत्तर पश्चिम भारत में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। न सिर्फ पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश देखने को मिल रही है बल्कि मैदानी राज्यों में भी झमाझम बारिश देखने को मिली। मौसम के मिजाज में इस बदलाव के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक सितंबर में ही लोगों को नवंबर जैसी ठंड का एहसास होने लगा है। देखिए नजारा है केदारनाथ का, किस तरह से आपको पहाड़ों की चोटियां बर्फ से लदी नजर आएंगी मानो किसी ने पहाड़ों का श्वेत श्रृंगार कर दिया हो। और सितंबर के महीने में ये हाल है तो आप सोचिए कि जैसे जैसे आगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर आएगा तो सर्दी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी से ही लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं मैदानी इलाकों में भी मौसम का मिजाज जो है वो बदल गया है। हल्की गुलाबी सर्दी सी महसूस होने लगी है, अभी से ठंड का एहसास होने लगा है। और ये तस्वीरें आप देखिए केदारनाथ में किस तरह से बर्फ पड़ चुकी है और ये नज़ारा है सितंबर के महीने का, जब पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी नजर आ रही हैं। कितनी ठंड इस वक्त हो गई है, जो श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं वो बेहद ठंड का एहसास कर रहे हैं और लगातार मंदिर में दर्शन का सिलसिला जारी है। हजारों भक्त इस वक्त केदारनाथ घाटी पहुंचे हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन पाने के लिए और लगातार आप देखिए ठंड बढ़ती ही जा रही है। और ये तस्वीर अब मनाली से देखिए, मनाली में भी ठंड जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है। मौसम जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है। सितंबर का ये महीना है लेकिन ठंड का एहसास नवंबर जैसा हो रहा है और अभी से अगर ठंड होने लगेगी तो आगे बढ़ते हुए महीनों के साथ ठंड ज्यादा बढ़ जाएगी। तो देखिए मनाली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि चारों तरफ आप देखिए पहाड़ियां जो हैं वो ठंड का एहसास लोगों को दिला रही हैं और ये तस्वीरें 3 तस्वीरें आपके सामने मनाली से हम आपको दिखा रहे हैं और केदारनाथ की तस्वीर आप देखिए और वहीं तीसरी तस्वीर आप देखिए धर्मशाला की, जहाँ पहाड़ियाँ जो हैं वो बर्फ से ढकी नजर आ रही हैं। तो इस वक्त चाहे वो मनाली की तस्वीर हो, चाहे वो उत्तराखंड में केदारनाथ घाटी की तस्वीर हो और चाहे वो हिमाचल में धर्मशाला की तस्वीर हो, तीनों तस्वीरों में आप देखिए ठंड का एहसास आपको देखते ही हो जाएगा। जो पहाड़ियां हैं वो बर्फ से ढकी नजर आ रही हैं पूरी तरह से और सितंबर के महीने का ये हाल है तो आप सोचिए जैसे जैसे महीने आगे बढ़ेंगे दिसंबर तक ये ठंड कितनी ज़्यादा हो जाएगी। इस बार ठंड थोड़ा जल्दी आ गई है, दस्तक ठंड ने जल्दी दे दी है और सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं मैदानी इलाकों में भी लोग ठंड का एहसास कर रहे हैं।
0: चलिए मौसम के बाद अब आगे बढ़ते हैं। श्राद्ध परंपरा हमारी सनातन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसी को लेकर आगे खबर। दरअसल सीधे तौर पर आम लोगों की आस्था, कृतज्ञता और पारिवारिक मूल्यों से ये जुड़ा हुआ है। ये 15 दिन हमें अपनी जड़ों को हमेशा याद रखने की सीख देते हैं क्योंकि अगर जड़ें मजबूत होंगी तभी मजबूत भविष्य बनेगा। तभी तो केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है ये, बल्कि जीवित और दिवंगत पीढ़ियों के बीच एक अटूट संबंध को दर्शाने का एक माध्यम भी है। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज और गया जी, जहां पर श्रद्धालु अपने अपने पुरखों की शांति और मोक्ष के लिए पिंडदान और तर्पण करवा रहे हैं।
3: सुबह सनातनी परंपरा में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा आभार का विशेष अवसर पितृपक्ष चल रहा है। ये वो पवित्र मौका है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी पहचान केवल हमारे कर्मों से नहीं, हमारी जड़ों से भी बनती है। कहते हैं कि जिस घर में पुरखों का सम्मान है, उन्हें याद किया जाता है, वहाँ संस्कार पीढ़ियों तक जीवित रहते हैं। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में श्राद्ध के 15 दिनों में लोग पवित्र नदियों घाटों पर दुनिया से चले गए अपने पितरों का पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं। संगम तट पर मंत्रोच्चार, हाथों में पिंड, सामने गंगा यमुना का पवित्र संगम और आंखों में अपने पूर्वजों की याद। पितृपक्ष में विधि विधान से किया जा रहा ये श्राद्ध कर्म पितरों के प्रति अपने दायित्व और सम्मान की अभिव्यक्ति ही है। वो पितर जिन्होंने हमें जीवन और संस्कार दिए, इसलिए उनका स्मरण करना हमारी परंपरा ही नहीं बल्कि हमारा दायित्व भी है।
4: हमारे घर में सुख शांति प्राप्त हो, इसीलिए हम यही कामना करके पिंड दान करने आए हुए
5: तो सुख शांति के लिए यहाँ पर आए हैं हम लोग, और ये 3 दिन तक का जो कार्यक्रम चलेगा इसमें हम लोग सब पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। हम अपने पितरों को मोक्ष दिलाने और सुख शांति के लिए यहाँ आए।
3: मगर इस बार जो लोग किसी कारणवश प्रयागराज नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए भी यहां के तीर्थ पुरोहितों ने एक नई व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत अब ऐसे श्रद्धालु ऑनलाइन माध्यम से भी अपने पितरों का पिंडदान और तर्पण करा सकते हैं।
6: और यहां पर काफी संख्या में लोग देश विदेश से लोग आ रहे हैं यहां पिंडदान करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज ये कि एक व्यवस्था तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से लागू हुई है कि जो लोग विदेश में बैठे हैं यहां पे आके पिंडदान नहीं कर सकते, जो वृद्ध विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, जो आने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है।
3: घर परिवार में अक्सर सुना भी गया है कि श्रद्धा से किया गया स्मरण खुद को विनम्र और कृतज्ञ बनाता है। ऐसे में पितृपक्ष बीते हुए कल को याद करके वर्तमान को बेहतर बनाने और आने वाली पीढ़ियों को संस्कार देने का ही अवसर है, और इस अवसर को इन दिनों बिहार के गया में खूब जिया भी जा रहा है।
7: व्यवस्था सही है, बढ़िया व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, और सभी विधि विधान से सब कार्य चल रहा है। पितृपक्ष में जो भी होता है पिंडदान और जलदान वगैरह, वो सब क्रम से चल रहा है।
8: अब ये तो भगवान को पता है, विष्णु जी को पता है कि हम अपने मन पूर्वक अपने पिता श्री वगैरह का पिंडदान कर रहे हैं, अब सब ऊपर वाले की लीला है।
3: दरअसल यहाँ 15 दिनों तक पितृपक्ष मेला होता है, जिसमें देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करने आ रहे हैं। गया में उमड़ी अपार श्रद्धा यहाँ के विष्णुपद मंदिर में हो या फिर फल्गु नदी के आसपास, इस पूरे दायरे में ही श्रद्ध अनुष्ठानों का दौर नजर आ रहा है।
9: यहाँ का महत्व यह है कि क्यों बड़ो ग्रंथों के हिसाब से कहा गया है कि अपने माता पिताओं का पिंडदान करने से मोक्ष प्राप्त होती है।
10: पिंडदान करने से पितृलोक तृप्ति होते हैं, पितृलोक को पुण्य मिलता है, इसीलिए हम लोग यहाँ गया जी में पिंडदान करने के लिए आए हैं अपने पितरों के नाम।
11: यहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है, फिर उनको इस तरह से कोई भटकना नहीं पड़ता है, इस विश्वास से हम लोग यहाँ पर अपने जीवन में एक बार भी मतलब पिंडदान करने का इच्छा जो थी वो जो संपूर्ण माँ जी को साथ में लेके हम लोग आए हैं, और उसी हिसाब से यहाँ देने से पितरों का जो विश्वास है, सनातन में जो विश्वास है, उस विश्वास को कायम रखते हुए हम लोग इसमें गया जी में आकर पिंडदान करने के लिए हम लोग आए।
3: श्राद्ध मेले में अपार उमड़ी ये वो अटूट आस्था ही है जिसमें तीसरे दिन एक ही दिन में 3,95,000 श्रद्धालु आए। इसके अलावा जिला प्रशासन ने मेडिकल, व्हील चेयर और खोया पाया जैसी सुविधाएं भी श्रद्धालुओं के लिए मुहैया करवाई है। सनातनी परंपरा में पूर्वजों की स्मृतियां परिवार की वो धरोहर हैं जिसे समय भी मिटा नहीं सकता, क्योंकि पूर्वज हमारे अतीत की कहानी नहीं है बल्कि हमारे वर्तमान की नींव और भविष्य के संस्कार हैं। तभी तो सदियों पुरानी और संवेदनशील श्राद्ध परंपरा आज भी भारतीय जनमानस की आस्था और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। गया से पंकज कुमार और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं किस तरह से चैंपियंस का भारत पहुंचने पर स्वागत किया गया।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
13: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की अनबन। 7:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इंस्टा स्टोरी में बाप को उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाते हैं एशियन गेम्स से भारत को शूटिंग में मिला एक और मेडल, विमेन्स ट्रैप टीम ने जीता सिल्वर मेडल, भारत के पास अब तक कुल 46 मेडल। महाराष्ट्र में अंगारकी संकष्टी चतुर्थी की रौनक, मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में आस्था का मेला, पुणे दगड़ूशेठ मंदिर में भी दर्शन पूजन। अंबाजी शक्ति में भादरवी मेले के बाद शुद्धिकरण समारोह, गर्भगृह से लेकर मां के गहनों की हुई सफाई, भजन कीर्तन का भी आयोजन। दिल्ली में शारदीय नवरात्र की तैयारियां तेज, कालीबाड़ी में मां की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार, भक्तों में भारी उत्साह।

0: हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज, धर्मशाला की पहाड़ियों का श्वेत श्रृंगार, बर्फबारी से तापमान में गिरावट।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से

एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का शुभ समाचार में। बात कर लेते हैं एशियन गेम्स की, एशिया के सबसे बड़े खेल मंचों में से जो कि एक है, जहां पर देश के बेहतरीन खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए उतरते हैं। ट्रैक से लेकर रिंग तक, मैदान से लेकर कोर्ट तक, भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत, जुनून और जज्बे से देश को गौरवान्वित किया। किसी खिलाड़ी ने पदक जीतकर तिरंगा लहराया, किसी ने शानदार प्रदर्शन से अपनी पहचान बनाई। यूं कहें कि एशियन गेम्स में भारत की दमक लगातार बढ़ रही है। अलग अलग खेलों में भारतीय खिलाड़ी देश का मान बढ़ा रहे हैं। अब तक भारत की झोली में 4 गोल्ड, 20 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज समेत कुल 45 मेडल आ चुके हैं और भारत पदक लिस्ट में 12वें स्थान पर है। जेवलिन थ्रो में भी भारत ने एक साथ 2 पदक अपने नाम किए। यशवीर सिंह ने सिल्वर जबकि रोहित यादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर तिरंगे की शान बढ़ाई। पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी है तो परिवार, दोस्त और फैंस भी अपने चैंपियंस की उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं। एशियन गेम्स में देश का मान बढ़ाकर लौट रहे चैंपियंस का जोरदार तरीके से स्वागत हो रहा है। एयरपोर्ट से लेकर अलग अलग शहरों तक फैंस अपने चेहरे स्टार्स का दिल खोलकर वेलकम कर रहे हैं।

0: ये पल लंबे इंतजार के बाद आया है। खुशियों की सौगात कड़ी मेहनत के बाद हासिल हुई है, लिहाजा जश्न तो लंबा चलेगा। 20वें एशियन गेम्स में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर जब भारत के कबड्डी स्टार पुष्पा राणा, भावना ठाकुर और ज्योति ठाकुर धर्मशाला पहुंची, तो साइंस सेंटर पर ढोल नगाड़ों के साथ गोल्डन गर्ल्स का जोरदार स्वागत हुआ। भारतीय महिला कबड्डी टीम के कप्तान पुष्पा राणा ने अपने नेतृत्व में एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने ईरान को 37-34 के अंतर से हराया। जाहिर है ये वो लम्हा है जिसका पुष्पा राणा को लंबे वक्त से इंतजार था और जिसके लिए वो लगातार कड़ी मेहनत करती आ रही थी।
1: और इस चीज का सपना हम लोग लिटरली मतलब 4 साल से हम कंटिन्यू इस चीज की मेहनत कर रहे थे और ये वाला सपना मेरा इसलिए भी पूरा ज्यादा लग रहा है क्योंकि मैं एज अ कैप्टन टीम में लीड कर रही थी और मेरे परिवार वालों का, मेरे मम्मी पापा का बहुत टाइम से ये वेटिंग में भी थे कि शायद कब मिले तो अभी जब मुझे कैप्टनसी मिली और मेरी कैप्टनसी में गोल्ड मेडल आया तो वो भी बहुत ज्यादा खुश है और मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ।
0: त्रिवेंद्रम में एशियन गेम्स की डबल सिल्वर मेडल विजेता विदर्शा के विनोद का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। उन्हें रिसीव करने केरलम खेल विभाग के अधिकारी भी पहुंचे। विदर्शा ने जापान के नागोया में चल रहे एशियन गेम्स में शूटिंग में 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। केरल के कोझिकोड की रहने वाले इस स्टार परफॉर्मर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में सोनम मस्कर और इलावेनिल वलार्विन के साथ सिल्वर मेडल जीता, तो वहीं महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में तिलोत्मा सेन और आशी चौकसी के साथ पोडियम शेयर किया। लिहाजा इस शानदार कामयाबी के बाद ये जश्न और स्वागत तो बनता है। एशियन गेम्स में कुराश में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पिंकी बलहारा के घर भी जश्न का माहौल है। आस पड़ोस से बधाई देने वालों का तांता लगा है और पूरा परिवार बेटी की कामयाबी का जश्न मना रहा है। कुराश दरअसल मध्य एशिया की एक पारंपरिक मार्शल

0: मार्शल आर्ट और जैकेट रेसलिंग का ही रूप है। पिंकी बलहारा का ये एशियन गेम्स में लगातार दूसरा सिल्वर मेडल रहा। पिंकी के परिवार को उम्मीद है कि बेटी देश के लिए गोल्ड लाने का सपना भी एक दिन जरूर साकार करेगी।
1: हमें फख्र है मेरी कोख से वो जनी है कि बाहर जाके 7 बच्चे गए थे, हमारी पिंकी बलहारा 3rd आई है चोट लगने के बाद, नहीं तो वो 2nd या 1st आती। उसको एलिमेंट में चोट लग गई, उसे उम्मीद थी कि मैं 1st आऊँगी, तो मुझे फर्क वो गर्व है कि बाहर देश जाके उसने भारत का झंडा लहराया।
0: एशियन गेम्स में अब तक भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है, लिहाजा भारत में खेल प्रेमियों को अभी जश्न मनाने के कई मौके मिलेंगे। धर्मशाला से पूजा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: एशियन गेम्स में आज का दिन भारत के लिए काफी अहम रहने वाला है। एथलेटिक्स इवेंट के आखिरी दिन रिले टीमें पदक की दौड़ में होंगी शामिल। तो बॉक्सिंग में भारत के 3 सेमीफाइनल्स मुकाबले हैं, परवीन हुडा, नरेंद्र बरवाल और अंकुश पंगाल आज एक्शन में दिखेंगे। इसके अलावा शूटिंग, स्क्वैश, वॉलीबॉल में भी भारतीय खिलाड़ी पदक की 2 दावेदारी पेश करेंगे। वहीं कल 9वें दिन भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। कल भारत ने 8 मेडल जीते। भारत ने अब तक 4 गोल्ड, 21 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इसके साथ ही 46 मेडल के साथ भारत पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। जैवलिन थ्रो में भारत ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता। यशवीर सिंह ने सिल्वर और रोहित यादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। कुराश में पिंकी बलहारा ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। शूटिंग में ईशा सिंह ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में सिल्वर पर निशाना साधा। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर ने सिल्वर मेडल जीता। मेंस में 1500 मीटर रेस में गुलवीर सिंह ने सिल्वर मेडल जीता। चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली वालों को मिलने वाली बड़ी सौगात की। दरअसल आज लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। पूर्वी दिल्ली को साउथ दिल्ली से जोड़ने वाले बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर का आज उद्घाटन होगा। ये 1330 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ राजधानी का सबसे अहम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे और इस एलिवेटेड कॉरिडोर के शुरू होते ही पूर्वी दिल्ली दक्षिणी दिल्ली के बीच सफर पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज और आसान हो जाएगा। मयूर विहार फेज 1 से एम्स, INA, साउथ एक्स और सरोजनी नगर तक वाहन बिना किसी ट्रैफिक सिग्नल के सीधे पहुंच जाएंगे। यहां अभी इस सफर में 50 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का समय लग जाता है, तो वहीं कॉरिडोर खुलने के बाद ये दूरी महज 10 से 15 मिनट में तय की जा सकेगी। इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, वेस्ट विनोद नगर और आसपास के इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को मिलेगा। इसके अलावा NH24, DND फ्लाईओवर और साथ ही सराय कालेखां और रिंग रोड पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होने की उम्मीद है।

0: तक। तो 15 मिनट में अब सफर पूरा होगा। एक बड़ी सौगात दिल्लीवासियों को मिलने वाली है। खुद गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे और इस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। तो आज राजधानी दिल्ली में ये बड़ी सौगात लोगों के लिए। दरअसल केंद्रीय मंत्री अमित शाह कुछ देर में पहुंचने वाले हैं और वो इसका उद्घाटन करेंगे। दिल्ली दक्षिणी दिल्ली का सफर अब इससे आसान हो जाएगा। लगभग 15 मिनट में मयूर विहार से एम्स पहुंचा जा सकेगा।
1: दिल्ली वालों को आज एक बड़ी सौगात जो है वो मिलने जा रही है। मयूर विहार अक्षरधाम से जो लोग एम्स का सफर तय करते थे, जिनको कई घंटों जाम से जूझना पड़ता था, उस जाम से निजात दिलाने के लिए 12 पुला फेज 3 जो है आज उसकी शुरुआत होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका आज उद्घाटन करेंगे। मयूर विहार फेज 1 से ये पूरा सफर जो है वो शुरू होगा और एम्स तक पहुंचेगा। लगभग अगर कहा जाए तो कई किलोमीटर का ये पूरा सफर है और इस सफर को पूरा करने में लगभग अब 20 से 25 मिनट जो है वो लगेंगे, जहां पर पहले 2 से 2.5 घंटे आपको अक्षरधाम और उसके अलावा आईटीओ की तरफ जाने पर जाम से जूझना पड़ता था। इस खास तौर पर अगर बात की जाए तो इस पूरे रूट पर सरायकाले खां की भी कनेक्टिविटी जो है वो रहेगी। 3 लाइन का ये पूरा फ्लाईओवर का निर्माण जो है वो किया गया है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे साइड में आपको साइकिल ट्रैक भी जो है वो आपको नजर आएगा। यमुना के ऊपर ये पूरा फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। यमुना का जो रिवर व्यू है और जो ग्रीन बेल्ट है उसका भी जो लोग है यहाँ पर लुफ्त उठा सके, उसके लिए बकायदा यहाँ पर आप देखेंगे ग्लासेस के जरिए कवर जो है वो किया गया, ताकि लोग ग्रीन व्यू और यमुना का व्यू भी जो है वो देख सके। साइकिल ट्रैक है ताकि लोग साइकिल से भी सफर तय कर सके। सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आए उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और अगर बात की जाए तो काफी लंबे वक्त से 2015 में इस पूरे 12 पुला फेज 3 के का निर्माण का काम जो है वो शुरू हुआ था। एक दशक लग गए इस काम को पूरा होने पे। बीजेपी की जब सरकार आई तो दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने सबसे पहले इस फ्लाईओवर का जो है निरीक्षण किया था और उस काम को पूरा करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को बोला था कि जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि लोग घंटों जाम से जूझते थे। खासतौर पर यह जाम लगता था सरायकाले खां, रिंग रोड, अक्षरधाम, इन तमाम हिस्सों में काफी लंबे जाम से लोग जो है वो जूझते थे। लेकिन फिलहाल अब इससे राहत जो है वो लोगों को मिलेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो ये निर्माण जो है वो बहुत तेजी के साथ हुआ है और उम्मीद है कि जल्द ही इस पूरे निर्माण के बाद से जो लोग सफर करते थे, जो लोगों को अब राहत जो है वो मिलेगी। हालांकि ऑफिशियल तौर पर अगर कहा जाए तो आज इसका उद्घाटन जो है वो होगा और उसके बाद कल से पूर्ण रूप से इस पूरे फ्लाईओवर को जो है आम पब्लिक के लिए जो है वो खोल दिया जाएगा। कैमरा पर्सन संजय के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली।
0: बॉलीवुड डीवा ऐश्वर्या राय बच्चन का फैशन की दुनिया में फिर से डंका बजा है। उन्होंने पेरिस फैशन वीक के लिए रैंप वॉक किया। लंबे समय बाद रैंप पर बॉलीवुड डीवा ने अपने जलवे दिखाए। एक्ट्रेस की खूबसूरती और दिलकश अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया। उनका लुक खास था। अपने रॉयल लुक से ऐश्वर्या ने हर किसी को इम्प्रेस कर दिया। तो एक बार फिर से रॉयल लुक में नजर आई ऐश्वर्या राय बच्चन और पेरिस फैशन वीक में ऐश्वर्या राय का आप जलवा देखिए किस तरह से फैंस ने जो है वो वाहवाही की रॉयल लुक में ऐश्वर्या राय बच्चन की तस्वीरें।

0: और चलिए आपको लिए चलते हैं हांगकांग के विक्टोरिया पार्क में, जहां वर्ल्ड लालटेन फेस्टिवल मनाया जा रहा है। रोशनी के रंगों से सराबोर इस अनोखे उत्सव में 20 देशों की 3,000 से ज्यादा लालटेन दिखाई दी है।
1: हांगकांग के विक्टोरिया पार्क में रोशनी का मेला सजा है। यहां वर्ल्ड लालटेन बुलेवार्ड देखने बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। रोशनी के रंगों से सराबोर इस प्रदर्शनी में 20 देशों की 3,000 से ज्यादा लालटेन दिखाई गई है। अद्भुत अनूठी लालटेन से सजे इस रास्ते पर दुनिया भर के डिजाइन, कलाकारी और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिल रही है। 25 सितंबर को मिड ऑटम फेस्टिवल खत्म होने के बाद से यहां बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ रही है। खास बात यह है कि इस प्रदर्शनी में दक्षिण कोरिया के जिंजो की सिल्क की लालटेन भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल पारंपरिक रूप से परिवार के सदस्यों की सेहत और खुशहाली की कामना के लिए किया जाता है। इसके अलावा ब्राजील की रंग बिरंगी पैचवर्क वाली लालटेन और पोलैंड की लालटेन भी यहाँ मौजूद है, जिनमें पारंपरिक लोक कला और पेपर कटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। विक्टोरिया पार्क में रोशनी से सजी शाम का लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और इन जगमगाती लालटेन के साथ फोटो लेकर खुशनुमा यादों को भी सजो रहे हैं। यूं तो ये प्रदर्शनी 27 सितंबर को खत्म होने वाली थी, लेकिन लोगों की भारी मांग की वजह से इसे 4 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंटरनेशनल लालटेन एग्जीबिशन का हिस्सा बन पाए, यहां रोशनी से सजी शामों का आनंद ले पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: सेनेगल के समुद्र में ऐसा नजारा दिखा जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। सैकड़ों तैराकों ने खुले अटलांटिक में उतरकर एक कठिन चुनौती को पूरा किया। लहरों से जूझते हुए ये तैराक डकार से गोरे द्वीप तक पहुंचे और यहां पर जीत के साथ हौसले और जज्बे की भी एक तस्वीर देखने को मिली।
2: सेनेगल में एक अनोखी तैराकी रेस हुई। 900 से ज्यादा तैराक अटलांटिक महासागर में उतरे और डकार से गोरे द्वीप तक तैर कर पहुँचे। रेस आसान नहीं थी, इसलिए तैराकों की सुरक्षा के लिए पुलिस, सेना और बचाव दल भी समंदर में मौजूद थे। हर पल नजर रखी जा रही थी ताकि किसी को परेशानी हो तो तुरंत मदद मिल पाए। कोई तेज तैर रहा है, कोई अपनी रफ्तार बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। तैराक लगातार आगे बढ़ रहे थे। हाल ही में हुई तेज बारिश के बाद समंदर में लहरें भी ज्यादा थीं। तैराकों की रफ्तार बढ़ती गई और आखिरकार सबसे पहले गोरे द्वीप पहुंचते हैं ओसेनो डियो। पानी से बाहर आते ही उनके चेहरे पर जीत की खुशी साफ दिखाई देती है। दूसरे तैराक भी एक एक कर मंजिल तक पहुँचने लगे। लेकिन इतनी लंबी रेस में हर पल आसान नहीं था। करीब 5 किलोमीटर लंबे इस सफर में तैराकों को तेज धूप और मुश्किल समुद्री लहरों का सामना करना पड़ा। एक तैराक रेस के दौरान थककर समंदर में गिर पड़ा, लेकिन उसे तुरंत बचाव नाव की मदद से किनारे लाया गया। वहीं एक दिव्यांग तैराक ने भी घंटों तैरने के बाद गोरे द्वीप तक पहुंचकर हिम्मत की मिसाल पेश की। किनारे पर लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। हर तैराक के पहुंचने पर तालियां बज रही थीं और हौसला बढ़ाया जा रहा था। किसी के लिए ये जीत की रेस थी तो किसी के लिए खुद को साबित करने की चुनौती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: हवाई द्वीप से आई ये तस्वीरें जितनी हैरान करने वाली हैं, उतनी ही कुदरत की ताकत का एहसास भी कराती हैं। अंधेरे में धधकता लावा और आसमान तक उठती इसकी चमक किलाओं के भीतर जारी हलचल को साफ दिखाती हैं। कैमरे में कैदी नजारा वाकई बेहद शानदार है।
3: ये तस्वीरें हवाई के किलाऊआ ज्वालामुखी की हैं। रात के अंधेरे में ज्वालामुखी से गर्म लावा बाहर निकल रहा है। लावा फवारे की तरह ऊपर उठता है और फिर ढलान पर नीचे की तरफ बहने लगता है। लावा इतना गर्म है कि उसका लाल रंग रात के अंधेरे में साफ नजर आ रहा है। जैसे जैसे लावा नीचे की तरफ बढ़ता है, आसपास का इलाका भी उसकी रोशनी से चमक उठता है। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण यानी USGS के अनुसार किलाऊआ ज्वालामुखी के लिए अलर्ट लेवल अभी ऑरेंज यानी वॉच पर है। इसका मतलब है कि ज्वालामुखी पर लगातार नजर रखी जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आगे लावा के बड़े फव्वारे निकलने की संभावना बनी हुई है। किलाऊआ में रुक रुक कर ज्वालामुखी गतिविधि जारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक किलाऊआ में ये गतिविधि 23 दिसंबर 2024 से रुक रुक कर जारी है। किलाऊआ दुनिया के सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। फिलहाल वैज्ञानिक लगातार ज्वालामुखी की निगरानी कर रहे हैं। लावा का ये नजारा जितना खूबसूरत नजर आ रहा है, उतना ही ये याद दिलाता है कि प्रकृति कितने रहस्यों से भरी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: बात कर लेते हैं गाजा की, जहां नन्हे बच्चे बड़े सपने देख रहे हैं। गाजा के कई इलाकों में जहां कभी घर थे, गलियां थी, खेल के मैदान थे, वहां आज सिर्फ मलबा है। इसी मलबे के बीच बच्चों ने नई राह तलाश ली है। विनाश की निशानियों के बीच अपने लिए नया खेल का मैदान तैयार कर लिया है। संदेश बस इतना सा है कि टूटती उम्मीदों के बीच भी हौसला कायम है।

0: इन बच्चों के लिए स्केटबोर्ड सिर्फ खेल का जरिया नहीं है, ये मुश्किल हालात में इनका सुकून है। इनकी हंसी, इनकी तालियां और स्केटबोर्ड पर इनकी छोटी छोटी छलांगें मलबे के बीच जिंदगी की एक अलग तस्वीर दर्शा रही हैं। गाजा के इन इलाकों में जहां कभी घर थे, गलियां थी, खेल के मैदान थे, वहां आज सिर्फ मलबा है। इसी मलबे के बीच बच्चों ने नई राह तलाश ली है, विनाश की निशानियों के बीच अपने लिए नया खेल का मैदान तैयार कर लिया है। संदेश बस इतना सा है कि टूटती उम्मीदों के बीच भी हौसला कायम है।
1: طبعا احنا لجأنا لهذه الاماكن المدمرة لانه احنا خسرنا حدائق التزلج اللي احنا كنا بنحلم فيها وعندما تحققت في غزة للاسف الحرب هذه دمرت كل شيء فاضطرينا ان احنا نلجأ لهذه الاماكن المدمرة.
0: راجب بچوں کو سکیٹ بورڈ چلانا سکھاتے ہیں پر اب ان کے پاس سادھن بہت کم ہیں صرف 5 سکیٹ بورڈ بچے ہیں جس سے درجنوں بچوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے 22 سال کے حمزہ سے لے کر 12 سال کی جینا تک सभी यहाँ स्केट बोर्डिंग करते हैं। वो जानते हैं कि ये जगह खेलने के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ उनका आना उम्मीद को जिंदा रखने जैसा है। जिस खेल से प्यार है उसे भला छोड़ा कैसे जा सकता है।
2: وهذا المكان خطير بس يعني احنا مضطرين لهذا المكان مضطرين لهذا الشيء انه نتدرب فيه نمارس رياضتنا فيه।
0: मलबे के बीच स्केटबोर्ड पर दौड़ते ये बच्चे मुश्किल वक्त में उम्मीद की नई कहानी गढ़ रहे हैं जो जज्बे और हौसले से भरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो गया इंस्टा स्टोरी का, आपको उस कलाकार की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसा रहे हैं। देखिए आयशा जुल्का की फनी इंस्टा स्टोरी।
4: गणेश जी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। एक बात बता, जब मैं अकल बांट रहा था तो तुझे सकल के लाइन में कौन लगने बोला था?
5: अरबिक में गाएगा सेम चुनरी चुनरी, तो कैसा गाएगा तू?
6: अल्लाह, बहुत मुश्किल है मेरे को, मैं मुश्किल से चुनरी चुनरी याद किया है। और तू बोलते है अरबिक में गाओ।
5: कोई अरबिक गाना है कोई?
6: ना कर सलमान, ना कर।
3: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
8: क्या आपको बार बार व्यापार में धोखा मिलता है? क्या आपके रिश्तों में भी धोखे की स्थिति बन जाती है? क्या आपके नजदीकी दोस्त ही आपको धोखा दे देते हैं? क्या है धोखे का कारण और क्या है निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें
12: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
13: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
16: गुड न्यूज टुडे।
15: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
13: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की अनबन। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स में भारत को शूटिंग में मिला एक और मेडल, विमेन्स ट्रैप टीम ने जीता सिल्वर मेडल, भारत के पास अब तक कुल 46 मेडल। महाराष्ट्र में अंगार की संकष्टी चतुर्थी की रौनक, मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में आस्था का मेला, पुणे दगड़ूशेठ मंदिर में भी दर्शन पूजन। अंबाजी शक्ति में भादरवी मेले के बाद शुद्धिकरण समारोह, गर्भगृह को लेकर मां के गहनों की हुई सफाई, भजन कीर्तन का भी आयोजन।
2: सुंदर भी स्मार्ट भी एटम वर्क बीएलडीसी फैंस।
4: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे धोखे की, प्रेम में, विवाह में, दोस्ती में कब धोखा मिलता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में। देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि जीवन की अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग मामलों में धोखा कब मिलता है और धोखे से बचने के उपाय क्या हैं। हर आदमी को जीवन में धोखा नहीं मिलता और कुछ को लगातार मिलता है, आखिर कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं इसके लिए। देखिए, आम जीवन में हम लोगों से काम के लिए या भावनाओं के लिए जुड़ते हैं, उस समय जब लोगों से जुड़ते हैं, लोगों का साथ पकड़ते हैं, तो उस समय व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। जब वो व्यक्ति हमारे भरोसे के अनुरूप काम नहीं करता या भरोसे के विपरीत काम करता है तो इसको धोखा कहा जाता है। ज्योतिष में भरोसा तोड़ने के मामले में और धोखा देने के लिए चार ग्रहों की विशेष भूमिका होती है, चंद्रमा, बुध, शनि और राहु। हालांकि अन्य ग्रह भी इन ग्रहों के हिसाब से मिलकर अलग अलग समय पर भूमिका निभाते हैं। जो जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इनको सबसे ज्यादा धोखा जीवन में मिलता है। कर्क, वृश्चिक और मीन वालों को धोखा सर्वाधिक मिलता है। और पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर, सामान्यतः ये राशियां सबसे ज्यादा धोखा देती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पृथ्वी तत्व की सारी राशियों वाले धोखेबाज होते हैं, लेकिन पृथ्वी तत्व की राशियों के अंदर चालाकी पाई जाती है और उस चालाकी का इस्तेमाल करके ये लोग धोखा देने का प्रयास करते हैं। काफी हद तक, लगभग 50-60% तक पृथ्वी तत्व के लोग चालबाजियां दिखा देते हैं। मेष राशि, व्यर्थ के विवादों से आपको बचना चाहिए, खान पान का ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलती दिखाई दे रही है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। धोखा व्यापार में, पार्टनरशिप में, कारोबार में काफी होता है। पार्टनरशिप किसी के साथ की, उसने बेवकूफ बनाया और सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया, आपको बाहर कर दिया। व्यापार के मामले में, कारोबार के मामले में धोखा कब मिलता है? कुंडली का सप्तम भाव जो आपके पार्टनर का है, जो आपके व्यापार का है, अगर ये भाव कमजोर हो तो व्यापार में, कारोबार में धोखा होता है। अगर कुंडली के आठवें भाव में पाप ग्रह बैठे हों, शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल, तो भी धोखा कारोबार में मिल सकता है। राहु के ऊपर या राहु का सूर्य या चंद्र पर प्रभाव हो तो भी ये व्यापार में, कारोबार में धोखा दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है और आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में धोखे की संभावना बहुत होती है। जिनका बुध कमजोर हो ऐसे लोग सोच समझ कर व्यापार करें, वरना व्यापार में झटका जरूर लगेगा। अगर आपकी कुंडली में व्यापार में धोखे के योग हैं तो क्या करें? साझेदारी में, पार्टनरशिप में व्यापार कभी मत करिएगा। व्यापार का लेन देन मंगलवार को बिल्कुल मत करिएगा और संभव हो तो बुधवार को भी ना करें। और अगर आपकी कुंडली में व्यापार में धोखे का योग है तो रोज सुबह भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। ऐसा करने से व्यापार में धोखे से बच जाएंगे। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, छोटी यात्रा हो सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होती फिलहाल दिखाई दे रही हैं, काम की बाधाएं समाप्त होंगी, व्यर्थ की चिंता ना करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रोजगार के प्रयास सफल होंगे, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, सबसे ज्यादा धोखा जो मिलता है और लोग कहते भी हैं, वो प्रेम और विवाह के मामले का धोखा है। आपको बताया गया कि लड़का इंजीनियर है, पता चला लड़का कुछ करता ही नहीं है। आपको बताया गया कि लड़की बिल्कुल ठीक है, पता चला लड़की को कोई बड़ी बीमारी है। तो प्रेम और विवाह के मामले में भी धोखा मिलता है। कब मिलता है? अगर आपकी कुंडली में शुक्र के साथ सूर्य का या मंगल का संबंध हो तो इस तरह का धोखा जरूर होता है। शुक्र के साथ सूर्य वाले बड़े लापरवाह होते हैं रिश्तों के मामले में और अक्सर धोखे के शिकार हो जाते हैं। सातवें स्थान में अगर चंद्रमा बैठ गया या बृहस्पति बैठ गया तो ऐसी स्थिति में या तो विवाह होता नहीं, या अगर विवाह हुआ तो विवाह में धोखे की संभावना ज्यादा होती है। अगर बृहस्पति खराब है, खास तौर से किसी महिला का बृहस्पति अगर खराब है, तो विवाह के मामले में उसे धोखा जरूर मिलता है। पति पत्नी के जो ग्रह हैं आपसी, अगर उनमें मित्रता नहीं है तो विवाह में धोखा मिलता है। आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सब गड़बड़ हो जाता है और विवाह में धोखे की संभावना बनती है। पुरुष का शुक्र खराब हो, पुरुष को धोखा मिलेगा। महिला का बृहस्पति खराब हो, महिला को धोखा जरूर मिलेगा। अब अगर आपकी कुंडली में विवाह या प्रेम के मामले में धोखे के योग हैं तो क्या करें? शादी या प्रेम में बहुत ज्यादा अपेक्षा मत पालिए। जो लोग बहुत ज्यादा ठोंकने बजाने लगते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं शादी या प्रेम में, उनको धोखा जरूर मिलता है। अगर आपकी कुंडली में प्रेम या विवाह के मामले में धोखे के योग हैं तो काले और भूरे रंग के कपड़ों का प्रयोग जीवन में कम करिएगा। खास तौर से ब्राउन कलर का ज्यादा प्रयोग करने से राहु एक्टिव हो जाता है, धोखा अवश्य मिलता है। राधा कृष्ण को रोज प्रातः गुलाबी फूल चढ़ाइए। अगर कुंडली में धोखे का योग है प्रेम या विवाह के मामले में, देखिए, अगर आप पुरुष हैं या स्त्री हैं और आपकी कुंडली में ऐसे संकेत हैं कि विवाह के मामले में या प्रेम के मामले में धोखा मिलेगा, अगर धोखे के योग प्रबल हैं तो हीरा कभी मत पहनिएगा। हीरा पहनना आपको धोखे तक खींच करके ले जाएगा, इसलिए अगर कुंडली में धोखे के योग हो तो हीरा धारण ना करें। देखिए, प्रेम और विवाह के अलावा जिस मामले में सबसे ज्यादा धोखा मिलता है आज के समय में, वो दोस्ती है। आपने दोस्त पर भरोसा करके उसकी सहायता की, आपको सहायता की जरूरत है, आपके दोस्त ने फोन बंद कर दिया, मुंह फेर लिया, तो दोस्ती में धोखा बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोगों को मिलता है। कारण क्या है? चंद्रमा या शुक्र अगर कुंडली में खराब हैं आपके, तो हमेशा दोस्ती में सावधानी रखें, क्योंकि ऐसी दशा में धोखे की संभावना ज्यादा होती है। चंद्रमा खराब होगा तो आपकी दोस्ती ही गलत लोगों से होगी जो अपना काम निकाल कर चलते बनेंगे। शुक्र खराब होगा तो अपोजिट जेंडर के साथ आपकी मित्रता होगी, पुरुष हैं तो स्त्री से, स्त्री हैं तो पुरुष से, और वो मौका पड़ने पे धोखा देंगे। तो चंद्र या शुक्र खराब हो तो धोखे की संभावना बड़ी प्रबल होती है दोस्ती में। अगर किसी का बुध खराब है तो आपको जो दोस्त मिलेंगे जीवन में वो अपने स्वार्थ के लिए मिलेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों के मित्र स्वार्थ के लिए उनके साथ जुड़ते हैं और स्वार्थ पूरा होने के बाद अपने रास्ते पर चले जाते हैं। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति मजबूत होता है ना, ऐसे लोग जानबूझकर धोखा खाते हैं। उन्हें पता होता है कि अगला आदमी मेरा फायदा उठा रहा है, फिर भी वो चुप रहकर इंतजार करते हैं कि सही समय आने पर बात करेंगे। बृहस्पति शुभता वाला प्लेनेट है, इसलिए कुंडली में अगर अच्छा होगा तो व्यक्ति शांत रहकर अपने साथ होते हुए धोखे को देखता है और सही समय पर इसका जवाब देता है। जिनका बुध खराब है वो दोस्ती में धोखा खाते भी हैं, और बुध अगर चौपट है तो वो धोखा देते भी हैं, तो जैसा करते हैं वैसा जीवन में उनको मिलता है। अब अगर आपको लगता है कि भाई आपके साथ दोस्ती में बार बार धोखा हो जाता है, बार बार दोस्तों की तरफ से धोखे की स्थिति बन जाती है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। भगवान कृष्ण को रोज सवेरे पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करिए, क्योंकि भगवान कृष्ण से ज्यादा मूल्यवान मित्र कोई भी नहीं है। और अगर दोस्ती में बार बार धोखा मिल रहा है तो एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में, राइट हैंड में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें। सूर्य का एक रत्न आता है, उसे कहते हैं गार्नेट। एक गार्नेट का लॉकेट बनवा लें और इसको तांबे या सोने के लॉकेट में बनवा कर अपने गले में पेंडेंट की तरह धारण करें। इससे भी आप धोखा खाने से बचेंगे, धोखा मिलने के पहले आप सतर्क हो जाएंगे। धनु राशि, पारिवारिक समस्या परेशान कर सकती है, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, शत्रु और विरोधी शांत होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, करियर की बाधा समाप्त होगी, जल्दबाजी में काम ना करें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति में बराबर उतार चढ़ाव रहता हो, कभी पैसा ज्यादा, कभी पैसा कम, कभी बिल्कुल नहीं, तो एक स्टील का छल्ला बनवा लीजिए। स्टील का छल्ला दाहिने हाथ की राइट हैंड की मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में अगर आप धारण कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अशुभ है और अशुभ बृहस्पति की दशा चल रही है तो क्या करें? बृहस्पति की अशुभ दशा में अधिक से अधिक शिव जी की उपासना करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें और हर बृहस्पतिवार को केले का दान करें। और बृहस्पति की अगर अशुभ दशा चल रही है तो पीला रंग और पीले रंग की वस्तुओं से परहेज करें। बृहस्पति की कितनी भी अशुभता है, अगर आप निरंतर शिव जी की पूजा करेंगे तो बृहस्पति की अशुभता दूर हो जाएगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
5: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की अनबन। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

या तो तुम्हें छोड़ो, काय को ढकोसले में पड़े, 20-21 बार आओगे, किराया लगेगा, खर्चा होगा, मनहीन होगा, मन में तरह तरह के सवाल जवाब आएंगे, झंझट खत्म करो, मत आओ, घर रहो, तो या तो तुम इन्हें छोड़ो या इन पर छोड़ दो, बस इतना करो। और इतना किया नहीं कि तुम्हारा जीवन बनना तय है। हर पल सन्यासी बाबा तुम्हें चमत्कार करते दिखाई पड़ेंगे, तुम्हारी अर्जी लग जाए, तुम्हारे बच्चे खुशी रहे, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए, और जो जो मनोरथ लेकर आए हो आज के ही दरबार से पूरे हो जाए, ऐसा आशीर्वाद है। और जाओ, तुम्हें स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई दे ताकि ये भरोसा हो जाए तुम्हारी अर्जी लग गई है। इतना हम कह सकते, अभिमान में तो हम बोलते नहीं कभी, गुरु के स्वाभिमान में बोलते हैं, क्योंकि हमारी तो कोई औकात या क्षमता है नहीं। हम तो गांव के छोटे से गवार आदमी, अनपढ़ आदमी है भैया, हमारी तो कोई औकात नहीं। लोग हमारा बात का बतंगड़ बना देते हैं क्योंकि आदमी हम थोड़ा टेढ़े मेढ़े, हमारी बातों को लोग उल्टा फुल्टा ले लेते हैं, और ले लेना चाहिए क्योंकि हमारा काम सीधा सीधा है। धर्म तो हम धंधा होने नहीं देंगे, हमारा काम सीधा सीधा है। चोट तो हम खतरनाक मारते हैं आदमी को अपनी बातों से, लोग चलाते होंगे गोलियां, हम तो बोलियां चलाते। लोगों को तो मरना होता गोली खा के, हम इतने खतरनाक आदमी के हम बोली से आदमी को निपटवाते। हाँ, हमारी बातें सुनकर कई लोगों की हम नींद हराम कर देते, इतने खतरनाक आदमी है कि सोने नहीं देते लोगों को और हम आराम से सोते, इतने अद्भुत आदमी। क्योंकि बात तो हम चोखी चोखी कहते, सीधी सीधी कहते, तुम्हारे समाज के लोगों को डर लगता है हमारा, और लगना भी चाहिए, ये तो भारत है। सिंगापुर सरकार ने हमारा वीजा रद्द कर दिया, और इस बात पे रद्द कर दिया कि ये आदमी खतरनाक है, इसको हमारे देश में मत आने दिया जाए। तो हमने पूछवाया सरकार के लोगों से कि भला हमने ऐसा क्राइम क्या किया, हमने कभी लोग नहीं मारे, हमने कभी दंगे नहीं करवाए, फिर हमें क्यों रोका गया। तो वहां की सरकार ने मेल में जवाब दिया कि आई एम सो सॉरी, आपकी बातों से लोग भड़क जाते हैं, इसलिए हम आपको आने नहीं दे सकते, हमारे देश का माहौल बिगड़ जाएगा। हमने जो जवाब लिखा वो उस पर ही भड़क गए। हमने जवाब ये दिया कि ऑलरेडी तुम्हारे देश का माहौल भड़का, हम ठीक करने आ रहे हैं। और वो इस बात से ही भड़क गए, बोले बस ऐसी तो तुम उल्टी बातें करते हो, इसलिए तो हम आने नहीं दे रहे। तो हमने भी जो दूसरा जवाब दिया वो चौंक गए, हम कहा भाड़ में जाओ, चूल्हे में जाओ, तुम्हारे ही देश का भला होना है, हमारा क्या हलवा भला होना है, हम नहीं आ रहे, जाओ। अभी खबर मिली कुछ दिन पहले कि अब आप आ सकते हैं, हम लोगों ने बात कर ली है। हमारी तो बातों से ही लोगों को आग लग जाती, आज के जमाने में लोग सूर्य से कम जलते हैं, हमारी बातों से ज्यादा जलते हैं। देखो तो तुम, हमारी लकड़ी की खड़ाऊ गोल्डन बना दी गई सोने की, आज हम नई खड़ाऊ पहन के लाए, जरा लाना बेटा खड़ाऊ उठाओ, हमारी सोने की खड़ाऊ बना दी लकड़ी की। और देखो तो तुम, भारत के क्या एशिया के सबसे अमीर आदमी के घर में उसके मकान की चर्चा नहीं हो रही, बिचारे
अंबानी जी के घर में अंबानी जी की बात होनी चाहिए, बात हो रही अमीर के घर में एक फकीर की खड़ाऊ की। आज हम काली पहन कर आए, हम पहले ही बता दें ये लकड़ी की है। कल के दिन तुम इसको ब्लैक डायमंड मत बोल देना कि ये ब्लैक डायमंड है, लकड़ी है भैया, वो सोने वाली सोने की बनने गई है, इसलिए हम काली पहन करके आए। और भैया भरोसा ना होता हो चेक कर लो अभी, ये देखो लोग समंदर खंगालने में लगे हैं, जिनमें खुद में कमियां हैं वो हम में कमियां निकालने में लगे हैं, अरे जिनके लंगोट फटे हुए हैं वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हैं। देखो तो तुम लकड़ी की खड़ाऊ सोने की बना रहे हैं। खैर इतना जलवा तो होना चाहिए, हमारे चेलों को तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे गुरु की बातें चलती रहती हैं, और बातें उसी की चलती जिसमें कोई बात होती, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बाप प्रभु बढ़िया गुरु पाया है। और हमने तो तुम्हें 3 साल पहले ही कहा था हमारे जैसा गुरु तुम लालटेन लेके खोजोगे तब भी नहीं मिलेगा, हमने तो पहले ही कहा, और हमने 3 साल पहले कहा था, अभी भी कह रहे कि यहां आना मत, और धोखे से तुम यहां आ गए तो होश में रहना, जल्दी निकल जाना। तुम ज्यादा देर हमारे सामने बैठे, ज्यादा देर तुमने हमको देखा और हमारी बातें सुनी, फिर तुम्हारा जाने का रास्ता बंद। हाँ तो बाद में मत कहना कि गड़बड़ हो गई है, हमारे यहां आने का रास्ता है जाने का नहीं है, और हो भी नहीं सकता है। प्रेम गली अति सांकरी ता में दो न समाए, मेरे पागल रास्ता तो प्रेम का है, और प्रेम के रास्ता में कौन जाना चाहता, कौन लौटना चाहता, कौन भागना चाहता, किसको पड़ी है भागने की, इसलिए मेरे पागल तुम सदा सदा के लिए बालाजी के प्रेम में पड़ जाओ, तुम्हारे दिन बदल जाएं, यही प्रार्थना हम करते हैं। और जाओ सबकी अर्जी स्वीकार हो ऐसा आशीर्वाद। आज का दरबार, आज के प्रवचन और आज का ज्ञान खत्म, आज का दरबार हम शुरू कर रहे हैं। प्रेम पूर्वक बैठें, कोई खड़ा नहीं होगा, कोई आगे नहीं आएगा। माता जी आगे क्यों आ रही, वहीं जाओ वापस, अभी वहीं जाओ, बिल्कुल नहीं आना, पर्चा बाद में लेंगे, अभी बैठना है, चढ़ जाएंगे, चढ़ जाए, सबका पर्चा चढ़ेगा, हम चढ़ाएंगे, हमारा पड़ोसी थोड़ी चढ़ाएगा, हम ही चढ़ाएंगे। हे जगत जननी माता, ओ लाल माता, ओ लाल साड़ी वाली मैया, ओ जगत जननी त्रिपुर सुंदरी, बैठ जा माता आसन ले ले। सीताराम पागलों

दीक्षित चेला है जिनने दीक्षा ले रखी, वो कई दिनों से मिल नहीं पाए थे तो शिकायत कर रहे थे। कल सुबह 11 बजे अपना कार्ड टांग कर कंप्यूटर में चेक करवा कर हॉल में बैठ जाना, हम अपने चेलों को कल मिलेंगे। जिन्होंने दीक्षा ले रखी है बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। कल भैया कलाकार बुला लो पूरे, अभी बोल दो। दूसरी सूचना, पितृपक्ष में इस बार हम गयाजी नहीं जा रहे। इस बार का पितृपक्ष का उपाय गंगा के किनारे ऋषिकेश में करवाया जाएगा। 108 श्रीमद् भागवत पुराण होंगे वहां, तो किसी को अपने पितरों के निमित्त चलना हो तो कार्यालय में नाम लिखवा देना, रुकने का, पंडित जी का रुकने का, सामान का, भोजन का दक्षिणा तुम्हें लगेगा, पंडित जी और पूजा की दक्षिणा हम दे देंगे। तो आपको यदि चलना हो तो 100 ही लोग जा पाएंगे, ज्यादा लोग उसमें जा नहीं पाएंगे। हम तो एक दिन के लिए भर जाएंगे क्योंकि हमारी पद यात्रा है, तो रथ यात्रा है। नवरात्रि में हम छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़, इन 5 जिलों की 500 किलोमीटर की रथ यात्रा करने जा रहे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नवरात्रि में छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़, इन 5 जिलों में हजारों लोगों के साथ, कई 100 संतों के साथ रथ यात्रा लेकर हम निकल रहे हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। और 5 जिलों में 4 रातें जहां जहां रुकेंगे, हर जगह हजारों हजारों लोगों को हनुमान जी का हवन करवाएंगे और भारत हिंदू राष्ट्र का संकल्प दिलवाएंगे। तो पहले हमने पद यात्रा की, अब सभी मंडलों में जाकर रथ यात्रा करने वाले हैं, क्योंकि पदयात्रा में समय ज्यादा लगता था, डिस्टेंस कम पूरा हो पाता था, 200 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल पाते। रथ यात्रा में समय कम लग रहा, जगह ज्यादा जा रहे। फिर एक रथ यात्रा यूपी में भी निकाली जाएगी। और यूपी में जाएंगे अयोध्या, और यूपी में एक दिन का कार्यक्रम करेंगे मथुरा में, जन्मभूमि के सामने, और पुकारेंगे कि कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे, और हर कृष्ण लला भी बैठ करके ही रहेंगे। हाँ, अब जिनको आग लगती हो तो लगती रहे, हम तो अपना काम करेंगे, जो काम है हम वो तो करेंगे ही करेंगे। बोलो हाँ या ना भाई, साधु का काम क्या, धर्म का प्रचार करना, बोलो हाँ या ना, गरीबों की मदद करना, बोलो हाँ या ना, अन्नपूर्णा भंडारा चलाना, बोलो हाँ या ना, गरीब बेटियों की विवाह करवाना, बोलो हाँ या ना। तो साधु अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? अब हम डांस थोड़ी करें, अरे साधु है, हिंदुत्व का काम हमारा करना है, हम करेंगे। और जब तक जिएंगे तब तक हिंदू होकर हिंदू के काम आएंगे, जब तक जिएंगे तब तक मनुष्य होकर एक एक व्यक्ति के काम आएंगे। और तुम चिंता ना करो, मरने के पहले तो तुम्हारा पर्चा बन ही जाएगा।
जाओ, इतनी दम तुम रखो।

नो प्रॉब्लम, हम तो दम रखे हैं कि जब तक हमें जिंदा रहना तब तक जो हमें विद्या शक्ति मिली है इसका सदुपयोग हमें जीवन भर करना ही। तो पन्ना, छतरपुर, दमोह, सागर जिले, टीकमगढ़ जिले से कितने लोग बैठे जरा हाथ उठाओ। पन्ना से, छतरपुर से, सागर से, दमोह से, टीकमगढ़ से जरा हाथ उठा लो। अच्छा, सूचना भेज देना यूपी वाले कितने बैठे, एमपी वाले कितने बैठे, बिहार वाले, झारखंड वाले, दिल्ली वाले, हरियाणा वाले, भारत वाले। अच्छा, हाथ नीचे कर लो। तो इस रथ यात्रा में जितने भी मंडल हैं सब तैयार हो जाएं। सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना के सभी मंडल तैयार हो जाएं, अपनी अपनी जगह पर हवन का एरिया देखें और उसके साथ साथ आप लोग रथ यात्रा में जिनको जाना हो हम बसें लगवा देंगे। नवरात्रि में 5 दिन रोज पांचों जगह हवन और 5 दिन रथ यात्रा करके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकलेंगे। हरे हरे मां। ये दूसरी सूचना है। और तीसरी सूचना ये है, 26 तारीख से 30 तारीख तक हम लुधियाना में हैं। वहां कथा है, एक दिवसीय

उसके बाद में फिर हम कहां जाएंगे, अभी थोड़ी बताएंगे। तुम कौन सा डायरी बना रहे हो? बाद में बताएंगे। 6 मार्च को कन्या विवाह में आओगे? पक्का? अच्छा, अब अपना धाम कैसा लगने लगा? बदला बदला लग रहा ना? दोनों हाथ जोड़ लो। तुम तो सोच रहे कि गुरुजी बातें बंद करो, पर्चा बनाओ, हम तुम्हारे मन की जानते हैं, ठटरी के बरे हरो। तुम्हें क्या लेना देना हिंदू राष्ट्र से या हमसे? तुम्हें पर्चा से लेना देना? तुम्हें क्या लेना देना कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा? गुरुजी बाद में मर जाइयो, पहले हमारा पर्चा बना दो। यही कहेंगे। यदि हम मरघट भी जा रहे होंगे ना, तो लोग जगा के कहेंगे, गुरुजी, गुरुजी, एक बार वो बता दो, वो शादी कर लें कि ना करें, फिर मर जाओ। हम कह, अरे भैया हम मरे धरे, गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी, इतना सारा गुरु। और हम जल रहे होंगे, तब तक एक भागता भागता, गुरुजी, आपने वो व्यापार का नहीं बताया था क्या करना है? अरे मर गए हैं, जल रहे हैं, गुरुजी बता जा, बता जा। है? हाँ या ना? नहीं? सही में? पक्का? तो हम भी नहीं। टेंशन ना लो, अभी हमें बहुत जीना है। तुम मुस्कुराओ। तुम लोग ना हमारे चेला नहीं हो, परिवार वाले। कौन हो? फैमिली, परिवार वाले हो। हमारा तो घर छूट ही गया, हमारा घर ही तुम्हें तो एक दिन की छुट्टी मिल जाती, हमें तो कोई दिन छुट्टी नहीं।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
7: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
8: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
9: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
10: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
11: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ है यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
6: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
12: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
6: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
13: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
6: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
14: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
15: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
14: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
12: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
16: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
10: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
17: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
18: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
6: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
19: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। टू ईयर्स बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
6: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
20: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
6: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
13: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
21: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
8: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
22: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
23: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरे तरीके से राहत है।
0: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: एक साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
8: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
22: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
12: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की अनबन। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स में भारत को शूटिंग में मिला एक और मेडल, वुमेन्स ट्रैक टीम ने जीता सिल्वर मेडल, भारत के पास अब तक कुल 46 मेडल। महाराष्ट्र में अंगारकी संकष्टी चतुर्थी की रौनक, मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में आस्था का मेला, पूरे डगरुशेठ मंदिर में भी दर्शन पूजन जारी। पुणे में दिखे आस्था और संस्कृति के रंग, तुलजा भवानी के पलुंग उत्सव का भव्य आयोजन, 12वीं शताब्दी से चली आ रही परंपरा। हम नोएडा से 20 मिनट में पहुंचेंगे एम्स, बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर बनके हुआ तैयार, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे इसका उद्घाटन। हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज, धर्मशाला के पहाड़ियों का श्वेत श्रृंगार, बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: महाराष्ट्र में आस्था का मेला, मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में अंगार के संकष्टी चतुर्थी की दिख रही रौनक। मंगलवार और अंगार की चतुर्थी के दुर्लभ संयोग पर सुबह से उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, भक्तिमय माहौल में डूबा पूरा मंदिर परिसर, रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया पूरा मंदिर परिसर, सीसीटीवी कैमरे, मेटल डिटेक्टर और स्कैनर के जरिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत डगरू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में भी बप्पा का भव्य श्रृंगार, चारों ओर गणपति बप्पा मोरिया की जय घोष। सुबह सवेरे बप्पा की मंगला आरती में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, लिया बप्पा का आशीर्वाद। अंबाजी शक्ति में सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार शुद्धिकरण समारोह का आयोजन, भादरवी पूनम में मेले के समापन के बाद आयोजित होता है शुद्धिकरण समारोह। मां के गर्भगृह से लेकर उनके दिव्य आभूषणों और पूरे मंदिर परिसर की होती है गहन सफाई, साफ सफाई के इस विशेष अनुष्ठान को दिया गया है शुद्धिकरण समारोह का नाम। अंबाजी मंदिर के कर्मचारी और पुजारी समेत सोनी परिवार और गांव के लोग लेते हैं इसमें हिस्सा, 5 पीढ़ियों से शुद्धिकरण विधि में हिस्सा ले रहे हैं अहमदाबाद के सोनी परिवार। इस समारोह के दौरान भजन कीर्तन का भी होता है आयोजन, सोनी परिवार द्वारा माताजी को सोने की एक छोटी प्रतिकृति भी दान में भेंट की गई। भादरवी मेले के दौरान देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालु के दर्शन करने के बाद मंदिर की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए हर साल किया जाता है ये विशेष अनुष्ठान, पूरी श्रद्धा से भक्त करते हैं सफाई। पुणे में दिखा आस्था और संस्कृति का रंग, तुलजा भवानी के पलंग उत्सव का हुआ भव्य आयोजन। ग्रामीणों ने बड़े ही उत्साह और भक्तिभाव के साथ पलंग का स्वागत किया, जगह जगह पारंपरिक वाद्यों की गूंज के बीच गेहूं के आटे से बनाए गए प्रसाद का किया गया वितरण। करीब 12वीं शताब्दी में राजा रामदेव राय के काल से जारी है घुड़गांव से तुलजापुर भेजे जाने वाले पलंग की परंपरा, श्रद्धालु पूरे रास्ते पलंग को अपने कंधों पर उठाकर तुलजापुर तक ले जाते हैं। मान्यता के अनुसार विजयादशमी से कोजागिरी पूर्णिमा तक मां तुलजा भवानी की मुख्य मूर्ति इसी पलंग पर विश्राम करती है, पिछले वर्ष के पलंग को होम में किया जाता है विसर्जित। इस दौरान प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती पाठ भजन महाआरती पारंपरिक अनुष्ठान किए जाते हैं आयोजित, भक्तगण पूरी श्रद्धा के साथ होते हैं इसमें सम्मिलित। जूनागढ़ के ऐतिहासिक ऊपरकोट किले में सैलानियों के लिए एक नए आकर्षण की शुरुआत, किले में भव्य लाइट एंड साउंड शो का हुआ आगाज। इस शो के जरिए दर्शाया जाएगा जूनागढ़ का इतिहास, 1472 से शुरू होकर 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ की आजादी तक के सफर की गौरवशाली यात्रा होगी प्रदर्शित। रोजाना शाम 7:15 पर आयोजित किया जाएगा लाइट एंड साउंड शो, शुरुआती 2 हफ्ते तक ₹50 होगी टिकट की कीमत। ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया सूफी संत मसूर शाह औलिया की दरगाह पर गए और उर्स में हुए शामिल। दरगाह पर सिंधिया ने चढ़ाई चादर, पुरानी शाही परंपरा के तहत हर साल उर्स में शामिल होता है सिंधिया परिवार। बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर का तीसरा फेज आज से शुरू, गृह मंत्री अमित शाह के हाथों होगा इसका उद्घाटन। 15 मिनट में तय होगा मयूर विहार से एम्स तक का सफर, दिल्ली के सड़क नेटवर्क और यातायात व्यवस्था को मिली नई रफ्तार। इस प्रोजेक्ट से पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच सिग्नल फ्री होगी कनेक्टिविटी, ट्रैफिक जाम में भी आएगी भारी कमी। झांसी में बुंदेलखंड की बलिनी की 9वीं वार्षिक आम सभा का हुआ आयोजन, पशुपालन के जरिए 1 लाख से ज्यादा आत्मनिर्भर बनी महिलाओं ने लिया इसमें हिस्सा। इस कार्यक्रम में देखी बुंदेलखंड की समृद्ध संस्कृति की झलक, कई लोक नृत्य और लोक कलाओं का हुआ मंचन। दीपोत्सव 2026 में अयोध्या में दिव्यता और भव्यता की बिखरेगी चमक, रामनगरी में 30 लाख दीपों से मनाया जाएगा दीपोत्सव। 1 अक्टूबर से खुलेगा सरिस्का, रणथंबोर, मुकुंदरा सहित सभी टाइगर रिजर्व, पर्यटक ले सकेंगे टाइगर और जंगल का आनंद। श्रीनगर में म्यूजिकल इवेंट में शामिल हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला संगीत का आनंद लेते हुए नजर आए। फिल्म स्टार गोविंदा पहुंचे मां बगलामुखी के दरबार, पूजन दर्शन कर लिया मां का आशीर्वाद, अभिनेता की एक झलक पाने के लिए लगी प्रशंसकों की भीड़। प्रयागराज जंक्शन पर आरपीएसएफ जवानों ने विषय महिला यात्री की जान, चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते समय प्लेटफॉर्म पर गिरी महिला का रेस्क्यू। एशियन गेम्स में भारत की शानदार शुरुआत, महिला ट्रैप टीम इवेंट में जीता सिल्वर। भारत की नीरू आशम अलावत और मनीषा कीर की टीम ने दिलाया मेडल, 328 अंक हासिल किए। आईसीसी 1 अक्टूबर को जारी करेगा वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा ये टूर्नामेंट। वर्ल्ड कप में पहली बार 14 टीमें 57 मैचों में लेंगे हिस्सा, इस टूर्नामेंट में 12 वेन्यू भी शामिल। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील के खिलाफ फीफा फ्रेंडली मैच खेलने के लिए कोलकाता पहुंची भारतीय टीम, 3 अक्टूबर को सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा यह महामुकाबला। एशियन गेम्स में कुराश खेल में कांस्य पदक जीतने वाली स्टार खिलाड़ी पिंकी बलहारा के घर मना जश्न, परिवार की महिलाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, पिंकी की उपलब्धि पर जताई खुशी। एशियन गेम्स में भारत के लिए मेडल लाने वाली बेटी विदर्शा के विनोद का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, परिवार के साथ अन्य रिश्तेदार भी खिलाड़ी का स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचे, एयरपोर्ट पर ही उन्हें दिए गए उपहार। विदर्शा के विनोद वो एशियाई खेलों में शूटिंग में पदक जिताने वाली केरलम की पहली महिला खिलाड़ी है। एशियन गेम्स में देश के लिए गोल्ड जीतने वाली गोल्डन गर्ल पुष्पा राणा का धर्मशाला में ढोल नगाड़ों के साथ हुआ भव्य स्वागत, पुष्पा राणा को पहनाए गए फूलों की मालाएं, साथियों ने फूलों की वर्षा करके उनका स्वागत। अपने दोस्तों और साथियों के साथ खुशी से नाचती झूमती नजर आई खिलाड़ी पुष्पा, एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जीता है गोल्ड। एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट सुरुचि सिंह का झज्जर में हुआ सम्मान, परिवार में भी खुशी के लहर। देश के लिए एशियन गेम्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली खिलाड़ी पारुल चौधरी ने किया खुशी का इजहार, ओलंपिक्स पर नजर। दो दिन की बारिश थमते ही बर्फ की सफेद चादर में ढका केदारनाथ धाम नजर आ रहा बेहद भव्य नजारा। हिमाचल में फिर बदला मौसम का मिजाज, धौलाधार की पहाड़ियों पर हुआ ताजा हिमपात, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में हर तरफ श्वेत श्रृंगार, तापमान में गिरावट दर्ज, नवंबर जैसी ठंड का एहसास। मनाली और उसके ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी हुई बर्फबारी, सफेद चादर से ढक गए हैं पहाड़ियां। प्रकृति का सुंदर नजारा पेश कर रहे हैं बर्फ से ढकी चोटियों के बीच घिरी वादी। बर्फबारी के बाद सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद। हिमाचल में बारिश का दौर लगातार जारी, 30 सितंबर से मौसम खुलने की संभावना। शिमला में बदले मौसम का मजा ले रहे हैं सैलानी, मॉल रोड पर दिखे सैलानियों की भारी भीड़। बाराबंकी में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है सरयू, कटान से कई गांव प्रभावित, रेस्क्यू का इंतजार। वाराणसी में गंगा का बड़ा जलस्तर, प्रशासन ने घाटों पर नाव संचालन किया बंद। कुशीनगर में नारायणी नदी का तटबंध टूटा, कई गांवों पर बाढ़ का खतरा, ग्रामीणों पर सुरक्षित स्थानों पर निशाने की सलाह। सुकमा में बाढ़ के बीच एनडीआरएफ के जवान बने देवदूत, जिले में 2000 से ज्यादा लोगों का किया गया सफल रेस्क्यू। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा, राहत कार्यों में तेजी लाने के दिए कड़े निर्देश। श्रावस्ती में मूसलाधार बारिश के बाद राप्ती का पानी बढ़ा, रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ की टीमें। 14 लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया, बचाव कार्य पर प्रशासन की लगातार नजर। नेपाल के मुस्तांग में पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरा, एक यात्री ने अपने कैमरे में किया ऐसे रिकॉर्ड। भूस्खलन के बाद काली गंडकी नदी का बहाव बाधित। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, आपको बता दें कि इस वक्त की शानदार खबर जो है वो भारत के लिए यहाँ पर सामने आ गई है। बता दें कि एशियन गेम्स जो है जापान में चल रहा है, भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है और अब आपको बता दें कि भारत को अपना 5वां गोल्ड मेडल मिल गया है। ये शानदार खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नीरू ढांडा ने भारत को गोल्ड मेडल जिताया है, वो महिलाओं के ट्रैप इवेंट में पहले स्थान पर रही हैं और इसके साथ ही अगर कुल मेडल्स की संख्या की अगर हम बात करें, मेडल टैली की हम बात करें, तो 47 मेडल भारत अब तक जीत चुका है, जिसमें 5 गोल्ड, 21 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। तो जापान में इस वक्त एशियन गेम्स चल रहे हैं, जिसमें भारत जो है लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है और एक और गोल्ड की आस जो थी वो अब पूरी होते हुए आपको बता दें कि 5वां गोल्ड मेडल भारत के नाम। नीरू ने विमेन्स ट्रैप इवेंट में ये गोल्ड मेडल हासिल किया है, जो भारत के लिए वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे आगे जैसे ये गेम्स बढ़ते हैं तो भारत अपने नाम कितने मेडल्स जीतता है। तो देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि एशियन गेम्स में भारत जो है लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, 46 मेडल्स अब तक कुल जीत चुका था और एक गोल्ड मेडल अब भारत के खाते में और इसके साथ ही 47 मेडल्स जो हैं भारत जीत चुका है। एशियन गेम्स में भारत को 5वां गोल्ड मेडल मिल गया है, जो वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें कि नीरू ने वुमेन्स ट्रैप टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है और इसके साथ ही मेडल टैली की अगर हम बात करें तो भारत ने अब तक 47 मेडल जीत लिए हैं, इससे पहले 46 मेडल भारत अपने नाम कर चुका था और अब आस है कि आगे आने वाले समय में भारत और कितने मेडल्स और खास करके गोल्ड मेडल अपने नाम करता है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूली। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लेग्जेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद। यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जर्नल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में ये है इंद्रायन। ये है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: रहे, पत्रकारिता करते हैं, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: भारत को एशियन गेम्स में मिला पांचवा गोल्ड, नीरू ने ट्रैप शूटिंग में दिलाया पदक। भारत के पास अब तक कुल 47 मेडल्स। महाराष्ट्र में अंगार की संकष्टी चतुर्थी की रौनक, मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में आस्था का मेला, पूरे डगरूशेठ मंदिर में भी दर्शन पूजन। पुणे में दिखे आस्था संस्कृति के रंग, तुलजा भवानी के पलंग उत्सव का भव्य आयोजन, 12वीं शताब्दी से चली आ रही है ये परंपरा। हम नोएडा से 20 मिनट में पहुंचेंगे एम्स, 12 पुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर हुआ तैयार, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे इसका उद्घाटन। हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज, धर्मशाला की पहाड़ियों का हुआ श्वेत श्रृंगार, बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। और देखिए, जीएनटी स्पेशल में आज हम बात करने वाले हैं आस्था भक्ति के खनक की। आज आपको हम लेकर चलेंगे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, जहां के सावलिया सेठ मंदिर में आस्था और विश्वास का अद्भुत संसार जो है वो समाया हुआ है, जहां देश भर से लाखों श्रद्धालु अपने मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। और देखिए, कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि सावलिया सेठ के दरबार में भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। कोई अपनी मुराद लेकर आता है तो कोई मन्नत पूरी होने के बाद अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुंचता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आस्था और भक्ति की। और आपको बता दें कि अब इस आस्था के केंद्र से करोड़ों के चढ़ावे का जो आंकड़ा है वो भी सामने आ गया है। चतुर्दशी को परंपरा के अनुसार मंदिर की दान पेटियां खोली गई, और जब ये दान पेटियां खोली तो नोटों की गड्डियां और सिक्कों का अंबार निकला। 8 चरण की गिनती पूरी हुई तो सामने करीब 29 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का चढ़ावा सामने आया। इन आंकड़ों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सावलिया सेठ में भक्तों का विश्वास कितना ज्यादा अधिक है।

0: बुला लेना।
1: मेवाड़ के विश्व प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सावलिया सेठ के प्रति भक्तों की आस्था अत्यंत गहरी है। यहाँ हर दिन देश और दुनिया से भक्त आते हैं और सावलिया सेठ का दर्शन कर भाव विभोर हो जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ सच्चे दिल से मन्नत मांगने पर सावलिया सेठ उसे जरूर पूरा करते हैं। मनोकामना पूरी होने पर भक्त यहाँ दिल खोल कर चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। इस बार चढ़ावे की गिनती के दौरान मिल रही भारी भरकम राशि को देखकर साफ हो जाता है कि सावलिया सेठ के प्रति आस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही है। चतुर्दशी को परंपरा के अनुसार खोले गए दान पात्र की आठवें चरण तक की गणना पूरी हो चुकी है, जिसके बाद मंदिर को कुल 29,06,31,230 रुपए की नकद दान राशि प्राप्त हो चुकी है। प्रथम चरण में 7,53,60,000 रुपए, दूसरे चरण की गणना में 7,51,94,000, तीसरे चरण की गणना में 5,58,02,000 राशि, चौथे चरण में 4,97,26,600, पांचवे चरण में 1,86,00,000, छठे चरण में 81

0: 1,65,000, सातवें चरण में 25,85,000 राशि की गणना की गई और आठवें चरण की गणना में 51,68,630 रुपए की गणना की गई। हालांकि झलझुलनी का मेला होने के कारण चढ़ावे की गिनती को रोक दिया गया था। अब 30 अक्टूबर से एक बार फिर गिनती शुरू होगी। हालांकि सावलिया सेठ के दरबार में केवल नकदी ही नहीं बल्कि भक्तों की मन्नतें पूरी होने पर वो दिल खोलकर सोने चांदी के आभूषण भी चढ़ाते हैं और ऑनलाइन दान भी दिया जाता है, लेकिन उसकी गणना भी अभी बाकी है। आपको बता दें कि सावलिया सेठ मंदिर में मिले चढ़ावे की गणना काफी पारदर्शी तरीके से की जाती है। गणना के दौरान मंदिर मंडल बोर्ड के अध्यक्ष हजारी दास, वैष्णव, प्रशासनिक अधिकारी, मंदिर मंडल के अधिकारी, कर्मचारी और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि श्री सावलिया सेठ पर अर्पित प्रत्येक भेंट केवल दान नहीं बल्कि विश्वास, समर्पण और भक्ति की अभिव्यक्ति है, जो इस पावन धाम की आध्यात्मिक महिमा को और अधिक गौरवान्वित करती है। पीयूष मुंड्रा, चित्तौड़गढ़, गुड न्यूज टुडे।
1: भगवान श्री कृष्ण की पूजा तो ब्रज से द्वारका तक देश के कोने कोने में होती है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में सावलिया सेठ के नाम से क्यों पूजे जाते हैं शाम, इसके पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है। देखिए, एक ऐतिहासिक गाथा है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दूर दूर से लोग साल भर मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में सावलिया सेठ के दर्शन पूजन के लिए पहुँचते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि भगवान की वही प्रतिमा इस मंदिर में स्थापित है जिनकी पूजा स्वयं संत मीराबाई किया करती थी।

0: ये भगवान श्री कृष्ण का अनोखा धाम है, जहां वासुदेव पूरी करते हैं सबकी मुराद। सांवले सलूने श्याम सबकी झोली भर देते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। वैसे तो देश भर में भगवान श्री कृष्ण के असंख्य मंदिर हैं, लेकिन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित इस मंदिर की बात ही निराली है, क्योंकि यहाँ कुंज बिहारी कृष्ण कन्हैया योगेश्वर श्री कृष्ण की पूजा सावलिया सेठ के रूप में होती है। सावलिया का अर्थ है सांवला रंग, जो श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप से जुड़ा है, और सेठ इसलिए क्योंकि यहाँ भगवान अपने भक्तों के व्यापार में साझेदार माने जाते हैं और उन्हें अपार धन समृद्धि का वरदान देते हैं। सावलिया सेठ का ये मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया गांव में मौजूद है, और इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई, इसके पीछे सदियों पुरानी बड़ी दिलचस्प कहानी है। इस मंदिर का बड़ा ही रोचक इतिहास है। असल में भगवान सावलिया सेठ को महान संत मीराबाई के गिरिधर गोपाल के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि मीराबाई इस मंदिर में स्थापित प्रतिमा की पूजा किया करती थी। मुगल शासक औरंगजेब के काल में मंदिरों को तोड़े जाने के डर से संत दयाराम ने इस प्रतिमा समेत चार मूर्तियों को बांगुड़ भातसोड़ा में एक वट वृक्ष के नीचे छिपा दिया था। सवाल है कि ये मूर्ति फिर आम लोगों की नजर में कैसे आई और कैसे इस रूप में इसकी पूजा शुरू हुई, तो ये भी जान लीजिए। संत दयाराम के निधन के बाद मूर्तियां कई सालों तक वहीं दबी रहीं। 1840 में मंडफिया गांव के ग्वाले भोलाराम गुर्जर को सपने में चार मूर्तियां दबे होने का संकेत मिला। खुदाई के बाद मूर्तियां निकाली गईं। सबसे बड़ी मूर्ति को भातसोड़ा ले जाकर मेवाड़ राजघराने ने संत पुराजी भगत के मार्गदर्शन में मंदिर बनवाया। दूसरी मूर्ति को प्राकट्य स्थल पर ही स्थापित किया गया। तीसरी मूर्ति को मंडफिया में भोलाराम गुर्जर ने अपने घर में स्थापित किया। चौथी प्रतिमा खुदाई के दौरान खंडित हो गई और इसे उसी स्थान पर वापस दबा दिया गया। यहीं से शुरू हुई सावलिया सेठ के रूप में भगवान श्री कृष्ण की औपचारिक पूजा अर्चना। ये मंदिर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। आम श्रद्धालुओं से लेकर व्यापारी, किसान और उद्योगपतियों समेत तमाम लोग यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं। लोग मानते हैं कि अगर सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना की जाए तो सावलिया सेठ हर मनोकामना पूरी करते हैं। हालांकि इस मंदिर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण को सावलिया सेठ क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी अनोखी कहानी है। किंवदंतियों और लोक मान्यताओं के अनुसार सैकड़ों साल पहले आर्थिक संकट में फंसे एक व्यापारी ने भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने प्रार्थना की। उसने मन ही मन भगवान से कहा कि अगर व्यापार चल पड़ा तो मैं आपको अपना साझेदार बना लूंगा। कहते हैं कुछ ही समय बाद उसका व्यापार तेजी से बढ़ गया। इसके बाद उसने अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए मुनाफे का हिस्सा मंदिर में चढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे मेवाड़ और मेवाड़ ही नहीं बल्कि दूर दूर के इलाकों के व्यापारियों में फैल गई। तब से व्यापारी समुदाय विशेष रूप से यहां आकर सावलिया सेठ के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगा। मेवाड़ ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और गुजरात के अलावा देश के दूसरे हिस्सों से भी व्यापारी यहां आकर सावलिया सेठ से अपने कारोबार में समृद्धि की मन्नत मांगते हैं, और मन्नत पूरी होने पर यहां बड़े चढ़ावे भी चढ़ाते हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर में आने वाले व्यापारी वही अनोखी परंपरा निभाते आ रहे हैं जो किंवदंती से शुरू हुई थी। व्यापारी अपने व्यापार में सावलिया सेठ को साझेदार यानी बिजनेस पार्टनर मानते हैं। वे नया व्यापार शुरू करते समय मंदिर में आकर पूजा करते हैं, अपना बही खाता भगवान के सामने रखते हैं और फिर व्यापार के मुनाफे का एक निश्चित हिस्सा मंदिर में चढ़ाते हैं। आमतौर पर लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर मंदिरों में दान करते हैं, लेकिन सावलिया सेठ के दरबार की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ आने वाले हजारों छोटे बड़े व्यापारी भगवान को अपने कारोबार में कानूनी तौर पर पार्टनर मानते हैं। कोई अपने दुकान के मुनाफे का 2% हिस्सा भगवान के नाम पर अलग कर देता है, तो कोई कमाई का आधा हिस्सा सावलिया सेठ के लिए तय कर देता है। इसके तहत कई कारोबारी श्रद्धालुओं ने अपनी बैलेंस शीट में सावलिया सेठ के नाम का कॉलम बना रखा है, और मुनाफा बढ़ने पर भगवान का हिस्सा उनके खजाने में पहुंचा देते हैं। मान्यता है कि व्यापारी कारोबार के फलने फूलने की जिम्मेदारी भगवान को अर्पित कर देते हैं और व्यापार में हिस्सेदार बनने के बाद भगवान व्यापारियों के कारोबार को अपना मान लेते हैं, जिससे व्यापार में घाटा नहीं होता, मुनाफा ही मुनाफा होता है। वहीं सावलिया सेठ के मंदिर में आने वाले आम लोग भी यहाँ दिल खोल कर चढ़ावा चढ़ाते हैं। 2026 में फरवरी मार्च के दौरान डेढ़ महीने में ही मंदिर में 46.5 करोड़ से ज्यादा नकद, 3 किलो सोना और 152 किलो चांदी का रिकॉर्ड दान प्राप्त हुआ। इससे पहले नवंबर 2025 में 51 करोड़ से ज्यादा की नकद राशि यहां पर दान की गई। 2024 में मंदिर को करीब 124 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड वार्षिक दान मिला। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 30 सालों में मंदिर का चढ़ावा 340 गुना बढ़ा है और ये 225 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इस तरह सावलिया सेठ मंदिर में हर साल करोड़ों का विशाल चढ़ावा आता है, जिसमें कैश के अलावा सोना, चांदी, नकदी और कीमती हीरे जवाहरात भी शामिल हैं। दान में मिले इस धन का उपयोग मंदिर ट्रस्ट की ओर से समाज सेवा के कामों में किया जाता है। हर साल यहां जन्माष्टमी और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े दूसरे पर्व त्योहारों पर यहां भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं, क्योंकि मेवाड़ की इस पावन धरती पर स्थित सावलिया सेठ का ये मंदिर केवल भक्ति और आस्था ही नहीं बल्कि भगवान के प्रति लोगों के अटूट विश्वास का बड़ा केंद्र बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: मेवाड़ की धरती पर भक्ति और आस्था की एक ऐसी कहानी भी जुड़ी हुई है जो सदियों से लोगों के विश्वास का हिस्सा रही है। दरअसल मान्यता है कि भगवान श्री सावलिया सेठ को ही संत मीराबाई के आराध्य गिरधर गोपाल का स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि मीराबाई ने अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया था। उनके लिए गिरधर गोपाल ही उनके लिए सब कुछ थे। उनकी भक्ति, प्रेम और समर्पण की गूंज आज भी भक्ति परंपरा में सुनाई देती है और यही वजह है, यही कारण है कि सावलिया सेठ का दरबार सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि भक्ति, विश्वास और सदियों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक भी माना जाता है।

मेवाड़ जिसकी धरा में जन्मे वीर शिरोमणि, जिसकी माटी को सींचा है शूरवीरों के रक्त ने, जहां आज भी खिलते हैं शौर्य और स्वाभिमान के फूल। शौर्य तीर्थ मेवाड़ की उसी माटी में कभी भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का ऐसा बीज पड़ा था जो आज भी आस्था का विशाल वट वृक्ष बनकर चित्तौड़ की धरा पर लहलहा रहा है और सुना रहा है किस्से प्रेम के, भक्ति के, मीरा और उनके गिरिधर गोपाल के।

0: ये अनोखा धाम है चित्तौड़ का श्री सांवलिया सेठ मंदिर। वैसे तो देश भर में भगवान श्री कृष्ण के असंख्य मंदिर हैं, लेकिन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित इस मंदिर की बात निराली है, क्योंकि यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण की पूजा सांवलिया सेठ के रूप में होती है। सांवलिया का अर्थ है सांवला रंग, जो श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप से जुड़ा है, और सेठ इसलिए क्योंकि यहाँ भगवान अपने भक्तों के व्यापार में साझेदार माने जाते हैं और उन्हें अपार धन समृद्धि का वरदान देते हैं। सांवलिया सेठ का ये मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया गांव में मौजूद है, और इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई इसके पीछे सदियों पुरानी कहानी है, जो खुद में समेटे है भारत के इस भूभाग का रोचक इतिहास। असल में भगवान सांवलिया सेठ को महान संत मीराबाई के गिरधर गोपाल के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि मीराबाई इस मंदिर में स्थापित प्रतिमा की पूजा किया करती थी। मुगल शासक औरंगजेब के काल में मंदिरों को तोड़े जाने के डर से संत दयाराम ने इस प्रतिमा सहित चार मूर्तियों को बांगुड़ भादसोड़ा में एक वट वृक्ष के नीचे छिपा दिया था। सवाल है कि ये मूर्ति फिर आम लोगों की नजर में कैसे आई और कैसे इस रूप में इसकी पूजा शुरू हुई। दरअसल संत दयाराम के निधन के बाद मूर्तियां कई वर्षों तक वहीं दबी रही। 1840 में मंडफिया गांव के एक नौजवान भोला राम गुर्जर को सपने में चार मूर्तियां दबे होने का संकेत मिला। खुदाई के बाद मूर्तियां निकाली गईं। सबसे बड़ी मूर्ति को भादसोड़ा ले जाकर मेवाड़ राजघराने ने संत पुराजी भगत के निर्देशन में मंदिर बनवाया। दूसरी मूर्ति को प्राकट्य स्थल पर ही स्थापित कर दिया गया, जबकि तीसरी मूर्ति को मंडफिया में भोला राम गुर्जर ने अपने घर में स्थापित कर लिया, और चौथी मूर्ति खुदाई के दौरान खंडित हो गई थी और इसी स्थान पर उसे वापस दबा दिया गया।
1: ठाकुर जी की स्थापना का अगले 200 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं, महिमा तब से ही चली आ रही है। लाख 200 वर्षों से पहले ठाकुर जी पति से उत्पन्न हुए थे, यहाँ से 7 की उम्र थी, तो अब तो पुजारी परिवार के वंशज थे और उनके ऊपर एक भोलेराम जी थे, तो उनके जो सपना में आए थे और उनके साथ में स्थापना हुई 200 वर्षों से। चमत्कार के रूप में देखा जाए तो सारी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। लोग यहाँ पार्टनरशिप साझेदारी उसके लिए भी ठाकुर जी विख्यात है।
0: यहीं से शुरू हुई सांवलिया सेठ के रूप में भगवान श्री कृष्ण की औपचारिक रूप से पूजा। ये मंदिर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। आम श्रद्धालुओं से लेकर व्यापारी, किसान और उद्योगपतियों सहित तमाम लोग यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं। लोग मानते हैं कि अगर सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना की जाए तो सांवलिया सेठ हर मनोकामना पूरी करते हैं। हालांकि इस मंदिर में स्थापित भगवान श्री कृष्ण को सांवलिया सेठ क्यों कहा जाता है इसके पीछे भी कहानी अनोखी है। किंवदंतियों और लोक मान्यताओं के अनुसार सैकड़ों साल पहले आर्थिक संकट में फंसे एक व्यापारी ने भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने प्रार्थना की। उसने मन ही मन भगवान से कहा कि अगर व्यापार चल पड़ा तो मैं आपको अपना साझेदार बना लूंगा। कहते हैं कुछ ही समय बाद उसका व्यापार तेजी से बढ़ गया। इसके बाद उसने अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए मुनाफे का हिस्सा मंदिर में चढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे मेवाड़ और मेवाड़ ही नहीं बल्कि दूर दूर के इलाकों के व्यापारियों में फैल गई। तब से व्यापारी समुदाय विशेष रूप से यहाँ आकर सांवलिया सेठ के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगा। मेवाड़ ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान और गुजरात के अलावा देश के दूसरे भागों के व्यापारी भी यहाँ आकर सांवलिया सेठ से अपने कारोबार में समृद्धि की मन्नत मांगते हैं, और मन्नत पूरी होने पर यहाँ बड़ा चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर में आने वाले व्यापारी वही अनोखी परंपरा निभाते आ रहे हैं जो किंवदंती के रूप में कभी शुरू हुई थी। व्यापारी अपने व्यापार में सांवलिया सेठ को साझेदार यानी बिजनेस पार्टनर मानते हैं। वे नया व्यापार शुरू करते समय मंदिर में आकर पूजा करते हैं, अपना बही खाता भगवान के सामने रखते हैं और फिर व्यापार के मुनाफे का एक निश्चित हिस्सा मंदिर में चढ़ाते हैं। आमतौर पर लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर मंदिरों में दान किया करते हैं, लेकिन सांवलिया सेठ के दरबार की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ आने वाले हजारों छोटे बड़े व्यापारी भगवान को अपने कारोबार में कानूनी तौर पर पार्टनर मानते हैं। कोई अपनी दुकान के मुनाफे का 2% हिस्सा भगवान के नाम पर अलग कर देता है, तो कोई कमाई का आधा हिस्सा सांवलिया सेठ के लिए तय कर देता है। इसके तहत कई कारोबारी श्रद्धालुओं ने अपनी बैलेंस शीट में सांवलिया सेठ के नाम का कॉलम बना रखा है और मुनाफा बढ़ने पर भगवान का हिस्सा उनके खजाने में पहुंचा देते हैं। आपको बता दें कि हर साल यहां जन्माष्टमी और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े दूसरे पर्व त्योहारों पर भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से आकर लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। शौर्य तीर्थ मेवाड़ में शान से खड़ा ये मंदिर आज भी जिंदा रखे है मीराबाई और उनके गिरिधर गोपाल की आस्था में पगी कहानियों को, और उन्हीं कहानियों की डोर थामे इस दिव्य धाम को देखने दुनिया भर के भक्त यहां आते हैं और श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की अनबन। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
2: नन्ही नन्ही बच्चियां प्यारी सी मुस्कान और गणपति बप्पा के मूषक वाहन पर शानदार नृत्य प्रस्तुति। सुंदर वेशभूषा में सजी इन बच्चियों ने अपने हर स्टेप से लोगों का दिल जीत लिया। तालियों की गूंज के बीच बच्चियों का एक एक डांस मूव देखने लायक रहा। चेहरे के भाव हों या डांस के स्टेप, हर अंदाज में बच्चियों ने गजब का तालमेल दिखाया। सोशल मीडिया पर भी लोग इनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।

0: एक तरफ छोटे छोटे बच्चे और दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड, दोनों के बीच शुरू हुआ टग ऑफ वॉर का मुकाबला। बच्चे भी पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींच रहे थे, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा दांव चला कि पूरा खेल ही पलट गया। गार्ड ने बच्चों की तरफ कैंडी फेंक दी, कैंडी देखते ही बच्चों ने रस्सी छोड़ दी और कैंडी उठाने दौड़ पड़े। बस फिर क्या था, गार्ड ने मुकाबला जीत लिया। कपड़े धोने के लिए आपने वॉशिंग मशीन तो खूब देखी होगी, लेकिन ये जुगाड़ शायद पहली बार देखा होगा। वीडियो में बीच में आटा है, उस पर पटरी रखी है, एक तरफ पत्नी बैठी है और दूसरा तरफ पति पटरी को घुमा रहा है। पटरी के घूमते ही कपड़े धोने का काम भी होता नजर आ रहा है। इस देसी जुगाड़ को देखकर लोग हैरान हैं और सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा दिमाग आया कहां से। हुनर, खूबसूरती और संस्कृति का ऐसा संगम कि देखने वाले बस देखते रह जाएं। मराठा लुक में तैयार इस महिला का अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। पारंपरिक वेशभूषा में महिला ने ऐसा हुनर दिखाया कि हर कोई हैरान रह गया। गोल सर्कल को बड़े ही अनोखे अंदाज में चारों तरफ गोल गोल घुमाने का उनका तरीका बेहद दिलचस्प है। खूबसूरती के साथ हुनर का ये मेल लोगों को खूब पसंद आ रहा है। बारिश हो रही है, सड़कें भीग रही हैं, लेकिन इस महिला के डांस का जोश जरा भी कम नहीं हुआ। बारिश की बूंदों के बीच महिला ने ऐसा डांस किया कि देखने वाले भी घरों से बाहर निकल आए। गाने की धुन बजती रही और महिला के कदम उसी ताल पर थिरकते रहे। हर स्टेप में जबरदस्त एनर्जी नजर आई। बारिश में महिला का ये डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: भारत को एशियन गेम्स में मिला पांचवां गोल्ड, नीरू ने ट्रैप शूटिंग में दिलाया पदक, भारत के पास अब तक कुल 48 मेडल। महाराष्ट्र में अंगार की संकष्टी चतुर्थी की रौनक, मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में आस्था का मेला, पुणे दगड़ूशेठ मंदिर में भी दर्शन पूजन। पुणे में दिखे आसा संस्कृति के रंग, तुलजा भवानी के पंगोत्सव का भव्य आयोजन, 12वीं शताब्दी से चली आ रही है परंपरा। नोएडा से 20 मिनट में पहुंचेंगे एम्स, बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज, धर्मशाला की पहाड़ियों का श्वेत श्रृंगार, बर्फबारी से तापमान में गिरावट।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
3: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल।
4: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं, हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट 25 अच्छी खबरों के साथ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
3: महाराष्ट्र में आस्था का मेला, मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में अंगार की संकष्टी चतुर्थी की रौनक। पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में बप्पा का भव्य श्रृंगार हुआ, चारों तरफ गणपति बप्पा मोरिया सुनाई दे रहा। अंबाजी मंदिर में सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार शुद्धिकरण समारोह का आयोजन किया गया, भादरवी पूनम मेले के समापन के बाद आयोजित होता है शुद्धिकरण समारोह। पुणे में दिखे आसा संस्कृति के रंग, तुलजा भवानी के पंगोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। जूनागढ़ के ऐतिहासिक ऊपरकोट किले में सैलानियों के लिए एक नए आकर्षण की शुरुआत, किले में भव्य लाइट एंड साउंड शो का आगाज हुआ।
4: ग्वालियर पहुंचने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया सूफी संत मंसूर शाह औलिया की दरगाह पर गए और उर्स में शामिल हुए। दीपोत्सव 2026 में अयोध्या में दिव्यता और भव्यता की बिखरेगी चमक, रामनगरी में 30 लाख दीपों से मनाया जाएगा दीपोत्सव। एक अक्टूबर से खुलेगा सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा सहित सभी टाइगर रिजर्व, पर्यटक ले सकेंगे टाइगर और जंगल का आनंद। बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर का तीसरा फेज आज से शुरू, 15 मिनट में तय होगा मयूर विहार से एम्स तक का सफर। झांसी में बुंदेलखंड के बलिनी की नवी वार्षिक आम सभा का आयोजन, कई लोक नृत्य और लोक कलाओं का हुआ मंचन।
3: एशियन गेम्स में नीरू ढांडा ने रचा इतिहास, विमेन्स ट्रैप स्पर्धा में भारत के लिए जीता गोल्ड मेडल। इससे पहले भारत की बेटियों ने आज दिलाई शानदार शुरुआत, महिला ट्रैप टीम इवेंट में जीता सिल्वर मेडल। भारत श्रीलंका में होगा एशियन गेम्स के मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल, बारिश के कारण रद्द हुए चारों क्वार्टर फाइनल। फिडे एक्सीलेंस अवार्ड्स में बेस्ट चेस प्लेयर फीमेल चुनी गई हैं, भारतीय चेस ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख, एक साल में उनके खिताबी प्रदर्शन को देखते हुए मिला उनको सम्मान। आईसीसी 1 अक्टूबर को जारी करेगा वनडे वर्ल्ड कप 2027 का स्केड्यूल। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में खेला जाएगा टूर्नामेंट।
4: मुंबई में फिल्म रामायण के प्रमोशनल इवेंट से पहले रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे ने हनुमान जी की पूजा अर्चना। मशहूर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट भी इवेंट में पहुंचे। पब्लिक की मांग पर रणबीर ने उनसे जय श्री राम बोलने को कहा। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म द वन ने ओपनिंग वीकेंड पर की शानदार कमाई। वीकेंड में फिल्म की कुल कमाई 34,63,00,000 रुपए पहुंची। बिहार समेत मास सर्किट में फिल्म का प्रदर्शन मजबूत रहा। शहरी इलाकों और मल्टीप्लेक्स में भी शनिवार और रविवार को अच्छी ऑक्यूपेंसी देखने को मिली। एक्ट्रेस मीनाक्षी चौधरी ने तिरुमाला मंदिर पहुंचकर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए, फैंस के साथ ली सेल्फी। मीनाक्षी की फिल्म विश्वकर्मा 4 दिसंबर को हो रही है रिलीज।
3: हिमाचल में फिर बदला मौसम, धौलाधार की पहाड़ियों पर हुआ ताजा हिमपात, चारों तरफ दिखाई दी बर्फ की सफेद चादर। मनाली और उसके ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी, सफेद चादर से ढकी नजर आ रही पहाड़ियां। जॉर्जिया अरमानी ने लॉन्च किया महिलाओं के परिधान का एक नया कलेक्शन, कंपनी के सिग्नेचर स्टाइल का दिखाई दिया जलवा। शंघाई में 48वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का समापन हुआ, प्रतियोगिता में एआई केंद्रित कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। यरूशलम में सुक्कोट पर्व के दौरान आयोजित विशेष प्रार्थना में शामिल हुए हजारों यहूदी श्रद्धालु।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
4: 25 अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से, आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है।
3: तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के तमाम ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
4: भारत को एशियन गेम्स में मिला 5वां गोल्ड, नीरू ने ट्रैप शूटिंग में दिलाया पदक। भारत के पास अब तक कुल 37 मेडल।
3: अब नोएडा से 20 मिनट में पहुंचेंगे एम्स बारापुला, फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, गृहमंत्री अमित शाह करेंगे इसका उद्घाटन।
4: हिमाचल में बदला मौसम, धर्मशाला की पहाड़ियों का शेष श्रृंगार, बर्फबारी से तापमान में गिरावट।
3: दिल्ली में शारदीय नवरात्र की तैयारियां तेज, कालीबाड़ी में मां की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं मूर्तिकार, भक्तों में दिखाई दे रहा उत्साह।
4: भारतीय दवा कंपनियों को बड़ी राहत, स्पेशल ड्रग्स पर टैरिफ नहीं लगाएगा अमेरिका, भारत के साथ 20 देशों को भी राहत।
5: मेरा ज्येष्ठ पुत्र

0: और चलिए लंच टाइम में सबसे पहले बात रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण की। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी फिल्म रामायण में रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में नजर आएंगे। रामायण के ट्रेलर ने इस फिल्म की छोटी सी झलक दिखा दी है और फिल्म देखने की दर्शकों की बेकरारी को काफी हद तक अब उन्होंने बढ़ा दिया है।
1: अब रामायण के मेकर्स ने फैंस की बेताबी और बढ़ाते हुए इस फिल्म का एक खास बीटीएस वीडियो शेयर किया, जिसमें राम के लिए रणबीर कपूर को चुने जाने से लेकर उनके ट्रांसफॉर्मेशन की झलक दिखाई गई है। साथ ही फिल्म में काम करने वाले कलाकारों से लेकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने राम के किरदार को लेकर अपने अनुभव भी शेयर किए हैं।

0: आकार लेकर उसकी
1: 70 mm के पर्दे पर दस्तक देने जा रही रामायण महज एक फिल्म नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का संसार है जिसे पर्दे पर उतारना आसान नहीं। राम महज एक किरदार नहीं, करोड़ों लोगों के दिलों में बसी एक छवि है, दिव्य, आकर्षक और मर्यादा से परिपूर्ण।
2: विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार।
1: जाहिर है जब ऐसे किरदारों को पर्दे पर उतारना हो तो उस किरदार के साथ न्याय करने के लिए उसे निभाने वाले कलाकारों को ही नहीं पूरी टीम को खुद को झोंक देना होगा।
2: निर्णय मैं ले चुका हूँ, एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है।
1: रामायण में राम का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर के 44वें जन्मदिन पर मेकर्स ने फिल्म की मेकिंग का एक खास BTS वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके रोल के लिए चुने जाने और उनके ट्रांसफॉर्मेशन की झलक दिखाई गई है। इस वीडियो में रणबीर कपूर से लेकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीता का रोल निभाने वाली साई पल्लवी, दशरथ का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल, टीम के तमाम सदस्यों ने राम को लेकर अपने अनुभव शेयर किए हैं।
3: रामायण को परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसकी डेफिनेशन नहीं है कोई, बल्कि हम ये कहें कि रामायण हमारा गौरव है, रामायण हमारा मान है, हमारा अभिमान है, हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, सब कुछ हमारे यहाँ, हमारे लिए रामायण है।
4: श्री राम की कास्टिंग मतलब ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हम केवल प्रयास कर सकते हैं।
5: भगवान राम की सबसे बड़ी शक्ति उनका धनुष नहीं था, उनकी क्षमा थी, हिज एबिलिटी टू फॉरगिव।
1: रणबीर कपूर ने वीडियो में साफ कहा है कि भगवान राम का किरदार पाकर वो सिर्फ एक्साइटेड नहीं हो गए थे बल्कि इसे उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर लिया। उनके मुताबिक इस किरदार को निभाने का मतलब सिर्फ स्क्रीन पर राम बनना नहीं बल्कि उन करोड़ों लोगों के भरोसे को कामयाब रखना भी है जिनके लिए भगवान राम आस्था का प्रतीक है।
5: रोल नहीं है, इट्स नॉट कि मुझे एक फिल्म ऑफर हुई है और ये रोल एक्साइटिंग है, ये एक जिम्मेदारी है।
1: रामायण के सेट का माहौल कैसा रहा होगा, अपने किरदार में रणबीर कपूर किस कदर डूबे होंगे, इसके बारे में बताते हुए अरुण गोविल ने कहा कि रणबीर का व्यवहार पूरी तरह सादगी से परिपूर्ण था, कुछ ऐसा जिसकी कल्पना वो भगवान राम के किरदार को लेकर करते थे।
3: सोचता था कि राम ऐसे चलते होंगे, ऐसे बैठते होंगे, ऐसे देखते होंगे, ऐसे बात करते होंगे, तो दोनों तीनों चीजें हैं उनमें। नॉर्मली यू डोंट एक्सपेक्ट के एक स्टार जो है वो आकर पहुंच हुए मेरे, he always does it।
1: साई पल्लवी कहती है कि बचपन में हमने एक इमेज इमेजिन की थी कि राम भगवान है और उनके साथ सीता है, अब मैं उन राम को रणबीर में देखकर हैरान थी।
6: अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार।
7: Very slender Ram and his head is a little tilted and there's this bow this way and there's a very small petite Sita and there's a Ram on the other side. So that's the image I remember from my childhood. Now suddenly I could see that Ram that I'd seen in my childhood and I was awestruck.
1: फिल्म में लक्ष्मण का किरदार निभा रहे रवि दुबे ने भी रणबीर की तारीफ की। उन्होंने रणबीर की आंखों में वही शांति महसूस की जिसे वो भगवान राम की सादगी से जोड़कर देखते हैं।
8: मुझे लगता है कि ये एक बीट, ये सिंपलिसिटी जो श्री राम की है, मैं यही सिंपलिसिटी मैं रणबीर भाई की आंखों में भी कई दफा देखता हूं।
1: इस वीडियो में दिखाया गया कि रामायण की कहानी भले ही भारतीय पौराणिक परंपरा और भगवान राम से जुड़ी हो लेकिन इसे बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी में भारतीय और इंटरनेशनल टीम ने साथ काम किया है। फिल्म के एक्शन डायरेक्टर टेरी नोट्री ने रणबीर को एक्शन सीक्वल के लिए ट्रेनिंग दी है। टेरी बड़े इंटरनेशनल प्रोडक्शन पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। BTS वीडियो में दुनिया भर से आए स्टंट और एक्शन प्रोफेशनल्स को फिल्म के सीक्वल और किरदारों पर काम करते देखा जा सकता है। रामायण के इस BTS वीडियो ने फैंस को फिल्म की तैयारी और रणबीर के किरदार के पीछे की मेहनत की झलक दे दी है। अरुण गोविल की तारीफ, नितेश तिवारी का भरोसा और रणबीर की अपनी जिम्मेदारी वाली बात ने इस वीडियो को और खास बना दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बड़े पर्दे पर रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार को किस तरह जीवंत करते हैं। रामायण पार्ट 1 6 नवंबर को दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: रामायण पार्ट 1 इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है जो दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ऐसे में मेकर्स और कलाकार अब फिल्म के प्रमोशन में जुट चुके हैं। यही नहीं, मेकर्स ने फिल्म के ग्लोबल प्रमोशन की भी तैयारी शुरू कर दी है।
9: और देखिए, हाल ही में रामायण का एक प्रमोशनल इवेंट रखा गया जिसमें दुनिया के सबसे पॉपुलर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट भी शामिल हुए। इस इवेंट में मिस्टर बीस्ट की मौजूदगी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। मिस्टर बीस्ट ने इवेंट के दौरान हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया और फिर भारतीय संस्कृति और भगवान राम के प्रति अपना सम्मान जाहिर करते हुए जय श्री राम का जयकारा भी लगाया।
10: आइए दादू भैया।
9: और चलिए अब बात करते हैं अंगार की संकष्टी चतुर्थी पर गणपति पूजा की।

0: तो वहीं गणपति उत्सव समाप्त हुए अभी चंद दिन हुए हैं, मगर बप्पा के जयकारों की गूंज अभी तक सुनाई दे रही है। आज अंगार की संकष्टी चतुर्थी है और इस शुभ दिन पर गणपति मंदिरों में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। भगवान गणेश के दर्शन और आशीर्वाद के लिए सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में भी बप्पा के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली।
1: और देखिए, मंदिरों में भक्तिमय माहौल है, चारों तरफ गणपति बप्पा मोरया के जयकारे गूंज रहे हैं। पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर में बप्पा का भव्य और दिव्य श्रृंगार हुआ। फूलों, आभूषणों, आकर्षक सजावट से सजे विघ्नहर्ता के मनमोहक स्वरूप ने भक्तों का मन मोह लिया। बप्पा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पूरा मंदिर परिसर गणपति बप्पा मोरया के जयघोष के साथ गूंज उठा।

और देखिए सुबह से ही गणपति मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें दिखी। आज के विशेष दिन बप्पा से आशीर्वाद लेने सुबह सवेरे बड़ी संख्या में भक्त पहुंच गए। बप्पा की मंगला आरती में शामिल हुए और बप्पा का आशीर्वाद देते हुए भी देखे गए।

0: तो वहीं अंगारकी संकष्ट चतुर्थी के मौके पर जालना के राजूर स्थित राजूरेश्वर गणपति मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ गया। रात से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु बप्पा के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए। गणपति के गर्भगृह को फूलों से भव्य रूप से सजाया गया और पूरे मंदिर परिसर को आकर्षक विद्युत रोशनी से जगमगाया गया।
1: और देखिए, रात के समय रोशनी से मंदिर का नजारा बेहद भव्य दिखाई दिया। अंगारकी चतुर्थी के मौके पर जालना के जिलाधिकारी के हाथों गणराय की विशेष पूजा अर्चना आरती भी संपन्न हुई। आरती के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। राजूरेश्वर गणपति मंदिर को श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र मानते हैं और संकष्टी चतुर्थी के साथ अंगारकी चतुर्थी पर यहाँ बड़ी संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। और देखिए, अंगारकी संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश की आराधना का खास दिन है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। ये दिन भगवान गणेश की पूजा आराधना के लिए विशेष मानते हैं। जब यही संकष्टी चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ती है तो इसे अंगारकी संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। गणेश भक्त इस दिन व्रत करते हैं, बप्पा की पूजा अर्चना करते हैं, चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत का पारण करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। इस खास मौके पर मुंबई के सिद्धि विनायक का भव्य दिव्य श्रृंगार हुआ। फूलों, आभूषणों, आकर्षक सजावट से सजे बप्पा के मनमोहक स्वरूप के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। बप्पा के दिव्य स्वरूप को देखकर भक्तिभाव में विभोर हो गए।

0: तो इन गुजरात के प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर में भादरवी पूनम महामेले के समापन के बाद शुद्धिकरण की विशेष प्रक्षालन विधि की गई और इस दौरान मंदिर के गर्भगृह और चौक की विधिवत सफाई भी की गई है। वहीं माताजी के गहने इसके साथ ही पूजा अर्चना में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का भी शुद्धिकरण किया गया। हर साल भादरवी पूनम के मौके पर लगने वाले महामेले में देशभर से लाखों श्रद्धालु जगत जननी मां अंबा के दर्शन के लिए अंबाजी पहुंचते हैं। मेले के समापन के बाद मंदिर में प्रक्षालन की ये परंपरा निभाई जाती है।
1: प्रक्षालन विधि संपन्न की गई है। जो माता जी का मंदिर 1 बजे बंद हो गया था वो रात के 9 बजे माता जी की आरती होगी और जो ये शास्त्रोक्त विधि अनुसार पूजा अर्चना करके माता जी के शास्त्रों विधि अनुसार शास्त्रीय परंपरा अनुसार माता जी के शुद्धिकरण के लिए ये विधि की जाती है।
2: देखिए, श्राद्ध परंपरा हमारी सनातन संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सीधे तौर पर हम लोगों की आस्था, कृतज्ञता और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ा है। ये 15 दिन हमें अपनी जड़ों को हमेशा याद रखने की सीख देते हैं, क्योंकि अगर जड़ें मजबूत होंगी तो भविष्य भी मजबूत बनेगा।
0: तभी तो ये केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है बल्कि जीवित और दिवंगत पीढ़ियों के बीच अटूट संबंध को दर्शाने का एक माध्यम है। तो चलिए आपको लेकर चलते प्रयागराज और गया जी, जहां पर श्रद्धालु अपने अपने पुरखों की शांति, मोक्ष के लिए पिंडदान और तर्पण करवा रहे हैं। तो क्या है इन दोनों की शहरों में श्राद्ध को लेकर नई व्यवस्थाएं, चलिए आपको दिखाते हैं।
3: सनातनी परंपरा में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा आभार का विशेष अवसर पितृपक्ष चल रहा है। ये वो पवित्र मौका है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी पहचान केवल हमारे कर्मों से नहीं, हमारी जड़ों से भी बनती है। कहते हैं कि जिस घर में पुरखों का सम्मान है उन्हें याद किया जाता है, वहाँ संस्कार पीढ़ियों तक जीवित रहते हैं। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में श्राद्ध के 15 दिनों में लोग पवित्र नदियों, घाटों पर दुनिया से चले गए अपने पितरों का पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं। संगम तट पर मंत्रोच्चार, हाथों में पिंड, सामने गंगा यमुना का पवित्र संगम और आंखों में अपने पूर्वजों की याद। पितृपक्ष में विधि विधान से किया जा रहा ये श्राद्ध कर्म पितरों के प्रति अपने दायित्व और सम्मान की अभिव्यक्ति ही है। वो पितर जिन्होंने हमें जीवन और संस्कार दिए, इसलिए उनका स्मरण करना हमारी परंपरा ही नहीं बल्कि हमारा दायित्व भी है।
4: हमारे घर में सुख शांति प्राप्त हो, इसीलिए हम यही कामना करके पिंड दान करने आए हुए
5: तो सुख शांति के लिए यहाँ पर आए हैं हम लोग, और ये 3 दिन तक का जो कार्यक्रम चलेगा इसमें हम लोग सब पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। हम अपने पितरों को मोक्ष दिलाने और सुख शांति के लिए यहाँ आए।
3: मगर इस बार जो लोग किसी कारणवश प्रयागराज नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ के तीर्थ पुरोहितों ने एक नई व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत अब ऐसे श्रद्धालु ऑनलाइन माध्यम से भी अपने पितरों का पिंडदान और तर्पण करा सकते हैं।
6: और यहाँ पर काफी संख्या में लोग, देश विदेश से लोग आ रहे हैं यहाँ पिंडदान करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज ये कि एक व्यवस्था तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से लागू हुई है कि जो लोग विदेश में बैठे हैं यहाँ पे आके पिंडदान नहीं कर सकते, या जो वृद्ध विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, जो आने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है।
3: घर परिवार में अक्सर सुना भी गया है कि श्रद्धा से किया गया स्मरण खुद को विनम्र और कृतज्ञ बनाता है। ऐसे में पितृपक्ष बीते हुए कल को याद करके वर्तमान को बेहतर बनाने और आने वाली पीढ़ियों को संस्कार देने का ही अवसर है, और इस अवसर को इन दिनों बिहार के गया में खूब जिया भी जा रहा है।
7: व्यवस्था सही है, बढ़िया व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, और सभी विधि विधान से सब कार्य चल रहा है। पितृपक्ष में जो भी होता है पिंडदान और जलदान वगैरह वो सब क्रम से चल रहा है।
8: अब ये तो भगवान को पता है, विष्णु जी को पता है कि हम अपने मन पूर्वक अपने पिता श्री वगैरह का पिंडदान कर रहे हैं, अब सब ऊपर वाले की लीला है।
3: दरअसल यहाँ 15 दिनों तक पितृपक्ष मेला होता है, जिसमें देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करने आ रहे हैं। गया में उमड़ी अपार श्रद्धा यहाँ के विष्णुपद मंदिर में हो या फिर फल्गु नदी के आसपास, इस पूरे दायरे में ही श्राद्ध अनुष्ठानों का दौर नजर आ रहा है।
9: यहाँ का महत्व यह है कि क्यों बड़ों ग्रंथों के हिसाब से कहा गया है कि अपने माता पिताओं का पिंडदान करने से मोक्ष प्राप्त होती है।
10: पिंडदान करने से पितृलोक तृप्ति होते हैं, पितृलोक को पुण्य मिलता है, इसीलिए हम लोग यहाँ गया जी में पिंडदान करने के लिए आप आए हैं अपने पितरों के नाम।
8: यहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है, फिर उनको इस तरह से कोई भटकना नहीं पड़ता है, इस विश्वास से हम लोग यहाँ पर अपने जीवन में एक बार भी मतलब पिंडदान करने का इच्छा जो थी वो जो संपूर्ण माँ जी को साथ में लेके हम लोग आए हैं, और उसी हिसाब से यहाँ देने से पितरों का जो विश्वास है, सनातन में जो विश्वास है, उस विश्वास को कायम रखते हुए हम लोग इसमें गया जी में आकर पिंडदान करने के लिए हम लोग आए।
3: श्राद्ध मेले में अपार उमड़ी, ये वो अटूट आस्था ही है जिसमें तीसरे दिन एक ही दिन में 3,95,000 श्रद्धालु आए। इसके अलावा जिला प्रशासन ने मेडिकल, व्हील चेयर और खोया पाया जैसी सुविधाएं भी श्रद्धालुओं के लिए मुहैया करवाई हैं। सनातनी परंपरा में पूर्वजों की स्मृतियां परिवार की वो धरोहर हैं जिसे समय भी मिटा नहीं सकता, क्योंकि पूर्वज हमारे अतीत की कहानी नहीं है बल्कि हमारे वर्तमान की नींव और भविष्य के संस्कार हैं। तभी तो सदियों पुरानी और संवेदनशील श्राद्ध परंपरा आज भी भारतीय जनमानस की आस्था और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। गया से पंकज कुमार और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए अब बात बदले बदले मौसम की कर लेते हैं। पहाड़ों पर मौसम ने करवट ली है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती को बढ़ा दिया। ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर में लिपटी नजर आ रही हैं, तो निचले इलाकों में बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया। बर्फ से ढकी चोटियां और बदलते मौसम के खूबसूरत नजारे पर्यटकों के लिए किसी सौगात से कम नहीं। पहाड़ों की सफेदी, बादलों की आवाजाही, ठंडी हवाएं, हर तस्वीर अपने आप में कहानी कह रही है। मनाली और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का ये बदला मिजाज आने वाले दिनों में पर्यटन के लिहाज से दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहा है। और चलिए तस्वीरें आपको पहाड़ों की दिखा रहे हैं जहां पर मौसम बदला बदला सा है।
0: चलिए अब कुछ तस्वीरें धर्मशाला की आपको दिखाते हैं। खूबसूरत सा नजारा हर किसी का मन मोह रहा है। तस्वीर देखिए, आसमान में बादलों का डेरा, नीचे हरियाली, मॉनसून के बाद ये नजारा बेहद दिलकश नजर आ रहा है। अब पहाड़ों पर भी ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है, मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ रही है, तो पहाड़ों पर बर्फबारी का आनंद लेने के लिए भी सैलानी पहुंच रहे हैं उसका लुत्फ उठाने के लिए। हालांकि ये तस्वीर आप धर्मशाला की देख रहे हैं, ड्रोन व्यू जिसमें दिलकश नजारा कैद हुआ।
2: और ये देखिए मनाली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों पर श्वेत श्रृंगार, सुंदर नजारा आपको नजर आएगा। ड्रोन व्यू से ली गई ये मजेदार सी तस्वीरें हैं जहां पर हर तरफ आपको हरियाली छाई हुई दिखाई देगी। दिलकश नजारा पर्यटकों को अपनी तरफ लगातार आकर्षित कर रहा है और पर्यटक भी बड़ी तादाद में इन नजारों को देखने के लिए यहां का रुख कर रहे हैं। देखिए, ना सिर्फ पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश देखने को मिल रही है बल्कि मैदानी राज्यों में झमाझम बारिश देखने को मिली है। मौसम के मिजाज में इस बदलाव के चलते तापमान में गिरावट आई है, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक सितंबर में ही लोगों को नवंबर जैसी ठंड का एहसास होने लगा है।
3: ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानों में झमाझम बारिश, मौसम का ये मिजाज सितंबर के आखिरी हफ्ते में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें धर्मशाला की हैं, जहां धौलाधार की ऊंची चोटियों पर फिर से बर्फबारी हुई। सितंबर महीने में ये दूसरा मौका है जब धौलाधार की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी देखने को मिली है। इस बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट आई है और लोगों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े तक निकालने पड़ रहे हैं।
11: जो हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू में, और यहाँ पे हल्की बर्फबारी रिपोर्ट की गई, तो अभी भी देखिए आज अर्ली मॉर्निंग से ही प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट्स में हल्के से मध्यम बारिश का दौर जारी है और लगभग पूरे प्रदेश में क्लाउडिंग छाई हुई है।
12: ठंड भी बढ़ रही है और मौसम भी बदल रहा है।
13: तो कोई खास दिक्कत है, चैलेंजेस, सावधानियां क्या ले रहे हैं?
12: चैलेंजेस एक्चुअली बैग में रेनकोट डाल के रखें और अम्ब्रेला साथ में रखें। बाकी धर्मशाला वैसे भी सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है हिमाचल प्रदेश में, सो बी केयरफुल।
3: धौलाधार की बर्फबारी ने जहां मौसम को खुशनुमा बना दिया है, वहीं पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान ला दी है। पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि मौसम का ये बदलाव आने वाले दिनों में सैलानियों को आकर्षित करेगा और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज से मौसम में सुधार आने की संभावना है। इस दौरान कांगड़ा और मंडी के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 30 सितंबर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ होने की संभावना है।
11: संभावना है कि प्रदेश में, पूरे प्रदेश में लगभग मौसम खुल जाएगा। इसी तरह अगर तापमानों की अगर बात करें तो हमारे लगभग ये जो एक्टिविटी है जो बीते 48 घंटे से चल रही है, तो इसके चलते जो तापमान है दिन के वो औसतन 2 से 4 डिग्री सामान्य से कम आके गए हैं। सबसे देखिए जो फॉल देखा गया वो कल्पा में देखा गया, जहाँ पे जो दिन का तापमान था वो 8 डिग्री के आसपास, जो कि सामान्य से 12 डिग्री कम था।
3: हिमाचल के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी कमोवेश मौसम का ऐसा ही मिजाज देखने को मिला है। वहाँ भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ये तस्वीर केदारनाथ धाम की है।

0: कि 29 और 30 सितंबर को राज्य के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। शिमला से विकास शर्मा और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद देखिए चैंपियंस का वेलकम।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
11: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की अनबन। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: भारत को एशियन गेम्स में मिला 5वां गोल्ड, नीरू ने ट्रैप शूटिंग में दिलाया पदक, भारत के पास अब तक कुल 48 मेडल। रुद्रप्रयाग में चौथे दिन खुला केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग, खराब मौसम के चलते रुकी थी आवाजाही, आस्था की डगर पर बम बम भोले का जयघोष। अब नोएडा से 20 मिनट में पहुंचेंगे एम्स बारापुला, फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, गृहमंत्री अमित शाह करेंगे इसका उद्घाटन। यूपी के प्रयागराज में बढ़ा संगम का जलस्तर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर तक पानी, प्रशासन की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। रणबीर कपूर ने मनाया 44वां जन्मदिन, बंगले के बाहर काटे 3 केक, आलिया भट्ट के साथ फैंस को कहा थैंक यू।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। एशियन गेम्स की बात कर लेते हैं। आज भारत की अच्छी शुरुआत एक बार फिर से रही। आज भारत ने सुबह से अब तक 3 मेडल अपने नाम किए, जिसमें एक गोल्ड है, एक सिल्वर है, एक ब्रॉन्ज मेडल भारत की झोली में आया है।
1: तो एथलेटिक्स इवेंट के आखिरी दिन रिले टीमें पदक की दौड़ में शामिल होंगी। तो बॉक्सिंग में भारत के 3 सेमीफाइनल मुकाबले हैं। परवीन हुड्डा और अंकुश पंघाल आज एक्शन में दिखे। इसके अलावा कई खेलों में भी भारतीय खिलाड़ी पदक की दावेदारी पेश करेंगे।
0: और देखिए 10वें दिन भारत ने 3 मेडल जीते। आज भारत ने महिला ट्रैप इवेंट और विमेन्स ट्रैप टीम में पदक जीता। महिला ट्रैप इवेंट में भारत की नीरू ढांडा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। विमेन्स ट्रैप टीम में भारत ने सिल्वर पदक जीता। बॉक्सिंग में भारत ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। भारत ने अब तक 5 गोल्ड, 21 सिल्वर, 22 ब्रॉन्ज अपने नाम किए हैं। इसके साथ ही 48 मेडल्स के साथ भारत पदक तालिका में 12वें नंबर पर बना हुआ है।
1: एशिया के सबसे बड़े खेल मंचों में से एक एशियन गेम्स, जहां देश के बेहतरीन खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से तिरंगे की शान बढ़ाने उतरते हैं। ट्रैक से लेकर रिंग तक, मैदान से लेकर कोर्ट तक, भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत, जुनून और जज्बे से देश को गौरवान्वित किया है। किसी खिलाड़ी ने पदक जीतकर तिरंगा लहराया तो किसी ने शानदार प्रदर्शन से अपनी पहचान बनाई। या यूं कहें कि एशियन गेम्स में भारत की दमक लगातार बढ़ रही है। अलग अलग खेलों में भारतीय खिलाड़ी देश का मान बढ़ा रहे हैं। अब तक भारत की झोली में 4 गोल्ड, 20 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज समेत कुल 45 मेडल आ चुके हैं और भारत पदक लिस्ट में 12वें स्थान पर है। जेवलिन थ्रो में भी भारत ने एक साथ 2 पदक अपने नाम किए। यशवीर सिंह ने सिल्वर, जबकि रोहित यादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर तिरंगे की शान बढ़ाई। पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी है तो परिवार, दोस्त और फैंस भी अपने चैंपियंस की उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहे हैं। एशियन गेम्स में देश का मान बढ़ाकर लौट रहे चैंपियंस का जोरदार स्वागत हो रहा है। एयरपोर्ट से लेकर अलग अलग शहरों तक फैंस अपने चहीते स्टार्स का दिल खोलकर वेलकम कर रहे हैं।

0: ये पल लंबे इंतजार के बाद आया है। खुशियों की सौगात कड़ी मेहनत के बाद हासिल हुई है, लिहाजा जश्न तो लंबा चलेगा। 20वें एशियन गेम्स में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर जब भारत के कबड्डी स्टार पुष्पा राणा, भावना ठाकुर और ज्योति ठाकुर धर्मशाला पहुंची, तो साइंस सेंटर पर ढोल नगाड़ों के साथ गोल्डन गर्ल्स का जोरदार स्वागत हुआ। भारतीय महिला कबड्डी टीम के कप्तान पुष्पा राणा ने अपने नेतृत्व में एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने ईरान को 37-34 के अंतर से हराया। जाहिर है ये वो लम्हा है जिसका पुष्पा राणा को लंबे वक्त से इंतजार था और जिसके लिए वो लगातार कड़ी मेहनत करती आ रही थी।
1: और इस चीज का सपना हम लोग लिटरली मतलब 4 साल से हम कंटिन्यू इस चीज की मेहनत कर रहे थे और ये वाला सपना मेरा इसलिए भी पूरा ज्यादा लग रहा है क्योंकि मैं एज अ कैप्टन टीम में लीड कर रही थी लाइक और मेरे परिवार वालों का, मेरे मम्मी पापा का बहुत टाइम से ये वेटिंग में भी थे कि शायद कब मिले लाइक तो अभी जब मुझे कैप्टनसी मिली और मेरी कैप्टनसी में गोल्ड मेडल आया तो वो भी बहुत ज्यादा खुश है और मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ।
0: त्रिवेंद्रम में एशियन गेम्स की डबल सिल्वर मेडल विजेता विदर्शा के विनोद का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। उन्हें रिसीव करने केरलम खेल विभाग के अधिकारी भी पहुंचे। विदर्शा ने जापान के नागोया में चल रहे एशियन गेम्स में शूटिंग में 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। केरल के कोझिकोड की रहने वाले इस स्टार परफॉर्मर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में सोनम मस्कर और इलावेनिल वलारविन के साथ सिल्वर मेडल जीता, तो वहीं महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में तिलोत्मा सेन और आशी चौकसी के साथ पोडियम शेयर किया। लिहाजा इस शानदार कामयाबी के बाद ये जश्न और स्वागत तो बनता है। एशियन गेम्स में कुराश में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पिंकी बलहारा के घर भी जश्न का माहौल है। आस पड़ोस से बधाई देने वालों का तांता लगा है और पूरा परिवार बेटी की कामयाबी का जश्न मना रहा है। कुराश दरअसल मध्य एशिया की एक पारंपरिक मार्शल आर्ट और जैकेट रेसलिंग का ही रूप है। पिंकी बलहारा का ये एशियन गेम्स में लगातार 2रा सिल्वर मेडल रहा। पिंकी के परिवार को उम्मीद है कि बेटी देश के लिए गोल्ड लाने का सपना भी एक दिन जरूर साकार करेगी।
2: हमें फकर है मेरी कोख से वो जनी है कि बाहर जाके 7 बच्चे गए थे, हमारी पिंकी बलहारा 3rd आई है चोट लगने के बाद, नहीं तो वो 2nd या 1st आती, उसको एलिमेंट में चोट लग गई, उसे उम्मीद थी कि मैं 1st आऊंगी, तो मुझे फर्क वो गर्व है कि बाहर देश जाके उसने भारत का झंडा लहराया।
0: एशियन गेम्स में अब तक भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है, लिहाजा भारत में खेल प्रेमियों को अभी जश्न मनाने के कई मौके मिलेंगे। धर्मशाला से पूजा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हांगकांग के विक्टोरिया पार्क में, जहां वर्ल्ड लैंटर्न फेस्टिवल मनाया जा रहा है। रोशनी के रंगों से सराबो इस अनोखे उत्सव में 20 देशों की 3000 से ज्यादा लालटेन दिखाई गई हैं।
4: हांगकांग के विक्टोरिया पार्क में रोशनी का मेला सजा है। यहां वर्ल्ड लैंटर्न बुलेवार्ड देखने बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। रोशनी के रंगों से सराबोर इस प्रदर्शनी में 20 देशों की 3000 से ज्यादा लालटेन दिखाई गई है। अद्भुत अनूठी लालटेन से सजे इस रास्ते पर दुनिया भर के डिजाइन, कलाकारी और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिल रही है। 25 सितंबर को मिड ऑटम फेस्टिवल खत्म होने के बाद से यहां बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ रही है। खास बात ये है कि इस प्रदर्शनी में दक्षिण कोरिया के जिंजो की सिल्क की लालटेन भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल पारंपरिक रूप से परिवार के सदस्यों की सेहत और खुशहाली की कामना के लिए किया जाता है। इसके अलावा ब्राजील की रंग बिरंगी पैचवर्क वाली लालटेन और पोलैंड की लालटेन भी यहां मौजूद है, जिनमें पारंपरिक लोक कला और पेपर कटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।
5: 你見到有唔同國家嘅特色嘅 lantern， 咁樣就想 capture 翻啦，咁留咗兩三卷菲林過嚟影，就想留翻低啦。跟住有幾個特別中意嘅位置，就係譬如係土耳其啦，或者係中東嗰幾個位咧，就有少少mosaic少少嘅感覺，咁就有特登留念翻啦。同埋有啲係類似星空嘅排法，咁嗰啲位置我都幾中意。
4: Victoria Park 咪 रोशनी से सजी शाम का लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और इन जगमगाती लालटेन्स के साथ फोटो लेकर खुशनुमा यादों को भी सजो रहे हैं। यूं तो ये प्रदर्शनी 27 सितंबर को खत्म होने वाली थी, लेकिन लोगों की भारी मांग की वजह से इसे 4 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंटरनेशनल लालटेन्स एग्जीबिशन का हिस्सा बन पाए, यहाँ रोशनी से सजी शामों का आनंद ले पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: सेनेगल के समुद्र में ऐसा नजारा दिखा जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। सैकड़ों तैराकों ने खुले अटलांटिक में उतरकर एक कठिन चुनौती को पूरा किया। लहरों से जूझते हुए ये तैराक डकार से गोरे द्वीप तक पहुंचे, जहां पर जीत के साथ हौसले और जज्बे की भी तस्वीर देखने को मिली।
6: सेनेगल में एक अनोखी तैराकी रेस हुई। 900 से ज्यादा तैराक अटलांटिक महासागर में उतरे और डकार से गोरे द्वीप तक तैरकर पहुंचे। रेस आसान नहीं थी, इसलिए तैराकों की सुरक्षा के लिए पुलिस, सेना और बचाव दल भी समंदर में मौजूद थे। हर पल नजर रखी जा रही थी ताकि किसी को परेशानी हो तो तुरंत मदद मिल पाए। कोई तेज तैर रहा है, कोई अपनी रफ्तार बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। तैराक लगातार आगे बढ़ रहे थे। हाल ही में हुई तेज बारिश के बाद समंदर में लहरें भी ज्यादा थीं। तैराकों की रफ्तार बढ़ती गई और आखिरकार सबसे पहले गोरे द्वीप पहुंचते हैं ओसेनो डियो। पानी से बाहर आते ही उनके चेहरे पर जीत की खुशी साफ दिखाई देती है। दूसरे तैराक भी एक एक कर मंजिल तक पहुंचने लगे। लेकिन इतनी लंबी रेस में हर पल आसान नहीं था। करीब 5 किलोमीटर लंबे इस सफर में तैराकों को तेज धूप और मुश्किल समुद्री लहरों का सामना करना पड़ा। एक तैराक रेस के दौरान थककर समंदर में गिर पड़ा, लेकिन उसे तुरंत बचाव नाव की मदद से किनारे लाया गया। वहीं एक दिव्यांग तैराक ने भी घंटों तैरने के बाद गोरे द्वीप तक पहुंचकर हिम्मत की मिसाल पेश की। किनारे पर लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, हर तैराक के पहुंचने पर तालियां बज रही थीं और हौसला बढ़ाया जा रहा था। किसी के लिए ये जीत की रेस थी तो किसी के लिए खुद को साबित करने की चुनौती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: हवाई द्वीप से सामने आई ये तस्वीरें जितनी हैरान करने वाली हैं उतनी ही कुदरत की ताकत का एहसास भी करवाती हैं। अंधेरे में धधकता लावा आसमान तक उठती इसकी चमक किलाउआ के भीतर जारी हलचल को साफ दिखाती है। कैमरा में कैद ये नजारा वाकई बेहद शानदार है, देखिए।
6: ये तस्वीरें हवाई के किलाउआ ज्वालामुखी की हैं। रात के अंधेरे में ज्वालामुखी से गर्म लावा बाहर निकल रहा है। लावा फवारे की तरह ऊपर उठता है और फिर ढलान पर नीचे की तरफ बहने लगता है। लावा इतना गर्म है कि उसका लाल रंग रात के अंधेरे में साफ नजर आ रहा है, जैसे जैसे लावा नीचे की तरफ बढ़ता है आसपास का इलाका भी उसकी रोशनी से चमक उठता है। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण यानी USGS के अनुसार किलाउआ ज्वालामुखी के लिए अलर्ट लेवल अभी ऑरेंज यानी वॉच पर है। इसका मतलब है कि ज्वालामुखी पर लगातार नजर रखी जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आगे लावा के बड़े फव्वारे निकलने की संभावना बनी हुई है। किलाउआ में रुक रुक कर ज्वालामुखी गतिविधि जारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक किलाउआ में ये गतिविधि 23 दिसंबर 2024 से रुक रुक कर जारी है। किलाउआ दुनिया के सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। फिलहाल वैज्ञानिक लगातार ज्वालामुखी की निगरानी कर रहे हैं। लावा का ये नजारा जितना खूबसूरत नजर आ रहा है उतना ही ये याद दिलाता है कि प्रकृति कितने रहस्यों से भरी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए इसी के साथ लंच टाइम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: चलिए बात कर लेते हैं गाजा की, जहां पर नन्हे बच्चे बड़े सपने देख रहे हैं। गाजा के कई इलाकों में जहां कभी घर थे, गलियां थी, खेल के मैदान थे, वहां आज सिर्फ मलबा है, और इसी मलबे के बीच बच्चों ने नई राह तलाश ली है।
7: और देखिए विनाश की निशानियों के बीच में अपने लिए नया खेल का मैदान भी इन बच्चों ने तैयार कर लिया है। संदेश बस इतना सा है कि टूटती उम्मीदों के बीच भी हौसला बना हुआ है।
8: इन बच्चों के लिए स्केटबोर्ड सिर्फ खेल का जरिया नहीं है, ये मुश्किल हालात में इनका सुकून है। इनकी हंसी, इनकी तालियां और स्केटबोर्ड पर इनकी छोटी छोटी छलांगें मलबे के बीच जिंदगी की एक अलग तस्वीर दर्शा रही हैं। गाजा के इन इलाकों में जहां कभी घर थे, गलियां थी, खेल के मैदान थे, वहां आज सिर्फ मलबा है। इसी मलबे के बीच बच्चों ने नई राह तलाश ली है। विनाश की निशानियों के बीच अपने लिए नया खेल का मैदान तैयार कर लिया है। संदेश बस इतना सा है कि टूटती उम्मीदों के बीच भी हौसला कायम है।
9: طبعا احنا لجأنا لهذه الاماكن المدمره لانه احنا خسرنا حدائق التزلج اللي احنا كنا بنحلم فيها، وعندما تحققت في غزه للاسف الحرب هذه دمرت كل شيء، فاضطرينا ان احنا نلجا لهذه الاماكن المدمره.
8: راجب بچوں کو سکیٹ بورڈ چلانا سکھاتے ہیں، پر اب ان کے پاس سادھن بہت کم ہیں، صرف 5 سکیٹ بورڈ بچے ہیں जिससे दर्जनों बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। 22 साल के हमजा से लेकर 12 साल की जैना तक सभी यहाँ स्केटबोर्डिंग करते हैं। वो जानते हैं कि ये जगह खेलने के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ उनका आना उम्मीद को जिंदा रखने जैसा है। जिस खेल से प्यार है उसे भला छोड़ा कैसे जा सकता है।
10: بس يعني احنا مضطرين لهذا المكان مضطرين لهذا الشيء انه نتدرب فيه نمارس رياضتنا فيه
8: ملبے کے بیچ سکیٹ بورڈ پر دوڑتے یہ بچے مشکل وقت میں امید کی نئی کہانی گڑھ رہے ہیں جو جذبے اور حوصلے سے بھری ہے بیورو رپورٹ گڈ نیوز ٹوڈے
6: ساتھ ان تمام خبروں کے بعد لنچ ٹائم میں آج کے لیے بس اتنا ہی
7: اور چلیے ہم دونوں کو اجازت دیجیے اچھی اور پازیٹو خبریں دن بھر جاری ہیں آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹوڈے
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को
11: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की अनबन दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है
6: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
7: नोएडा से 20 मिनट में पहुंचेंगे एम्स, बारामूला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर का गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। भारत को एशियन गेम्स से मिला 5वां गोल्ड, नीरू ने ट्रैप शूटिंग में दिलाया पदक, भारत के पास अब तक कुल 48 मेडल। रुद्रप्रयाग में 4th दिन खुला केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग, खराब मौसम के चलते रुकी थी आवाजाही, आस्था की डगर पर बम बम भोले का जय घोष। यूपी के प्रयागराज में बड़ा संगम का जलस्तर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर तक पानी, प्रशासन के लोगों से सावधानी बरतने की अपील। रणबीर कपूर ने मनाया 44वां जन्मदिन, बंगले के बाहर काटे 3 केक, आलिया भट्ट के साथ फैंस को कहा शुक्रिया।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
7: एशियन गेम्स में नीरू डांचा ने रचा इतिहास, विमेन्स ट्रैप स्पर्धा में भारत के लिए जीता गोल्ड। नीरू ने फाइनल में 28 अंक हासिल कर बनाया नया एशिया रिकॉर्ड, मौजूदा एशियन गेम्स में ही भारत का पांचवा गोल्ड मेडल। इंडिविजुअल इवेंट में देश के लिए पहला गोल्ड, इससे पहले टीम इवेंट में आए थे चारों गोल्ड। इससे पहले भारत की बेटियों ने ही आज दिलाई शानदार शुरुआत, महिला ट्रैप टीम इवेंट में जीता सिल्वर। भारत की नीरू आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की टीम ने दिलाया मेडल, 328 अंक हासिल किए। नरेंद्र बेरवाल ने मुक्केबाजी में जीता कांस्य पदक, पुरुषों के 90 प्लस किलोग्राम वर्ग में दिलाया मेडल। मौजूदा विश्व चैंपियन एबेक और लबे से हुआ नरेंद्र का सामना, भारत की झोली में अब तक 48 पदक। बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल ने भी देश के लिए मेडल किया पक्का, 80 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंचे हैं अंकुश। अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल्स में वर्ल्ड चैंपियन फजलुद्दीन एरकिन बोएव को खिलाफ जीत दर्ज की, उन्होंने 4-1 से मुकाबला अपने नाम किया। भारत श्रीलंका में होगा एशियन गेम्स के मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल, बारिश के कारण रद्द हुए चारों क्वार्टर फाइनल। एशियन गेम्स में कुराश खेल में कांस्य पदक जीतने वाली स्टार खिलाड़ी पिंकी बल्हारा के घर जश्न, परिवार की महिलाओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। एशियन गेम्स में भारत के लिए मेडल लाने वाली बेटी विदर्शा के विनोद का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पर दिए गए उपहार। एशियन गेम्स में देश के लिए गोल्ड जीतने वाली गोल्डन गर्ल पुष्पा राणा का धर्मशाला में ढोल नगाड़ों के साथ हुआ भव्य स्वागत, पहनाई गई फूलमालाएं। एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट सुरुचि सिंह का झज्जर में हुआ सम्मान, परिवार में भी खुशी की लहर। देश के लिए एशियन गेम्स में दो ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली खिलाड़ी पारुल चौधरी ने किया खुशी का इजहार, अब ओलंपिक्स पर नजर। FIDE एक्सीलेंस अवार्ड में बेस्ट चेस प्लेयर फीमेल चुनी गई भारतीय चेस ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख के, एक साल में उनकी खिताबी प्रदर्शन को देखते हुए मिला सम्मान। भारत ने लगातार तीसरी बार नोना ग्रेपिंडाश्वली ट्रॉफी अपने नाम की, इससे पहले भारतीय टीम ने 2022 में चेन्नई और 2024 में बुडापेस्ट में हुए चेस ओलंपियाड में ये ट्रॉफी जीती थी। आईसीसी के 1 अक्टूबर को जारी करेगा वनडे वर्ल्ड कप 2027 का स्केड्यूल, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा टूर्नामेंट। वर्ल्ड कप में पहली बार 14 टीमें 57 मैचों में लेंगी हिस्सा, इस टूर्नामेंट में 12 वेन्यू भी शामिल। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील के खिलाफ फीफा फ्रेंडली मैच खेलने के लिए कोलकाता पहुंची भारतीय टीम, 3 अक्टूबर को सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा महामुकाबला। बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर का तीसरा फेज आज से शुरू, गृह मंत्री अमित शाह के हाथों उद्घाटन। पंद्रह मिनट में तय होगा मयूर विहार से एम्स तक का सफर, दिल्ली के सड़क नेटवर्क और यातायात व्यवस्था को मिली नई रफ्तार। इस प्रोजेक्ट से पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच सिग्नल फ्री होगी कनेक्टिविटी, ट्रैफिक जैम में भी आएगी भारी कमी। अस्पतालों में लंबी लाइन से मिलेगी छुट्टी, यूपी ट्रेड शो में प्रदर्शित डीओडी मशीन से 10 मिनट में होंगे 75 से ज्यादा बॉडी टेस्ट। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्टॉल पर डीओडी यानी डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी मशीन की गई पेश, वजन बीपी शुगर से लेकर 25 से ज्यादा लंग्स फंक्शन टेस्ट करती है ये मशीन। महाराष्ट्र में आस्था का मेला, मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में अंगार की संकष्टी चतुर्थी की रौनक। मंगलवार और अंगार की चतुर्थी के दुर्लभ संयोग पर सुबह से ही उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, भक्ति में माहौल में डूबा पूरा मंदिर परिसर। रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया पूरा मंदिर, सीसीटीवी कैमरे मेटल डिटेक्टर और स्कैनर के जरिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुंबई के प्रसिद्ध श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में भी बप्पा का भव्य श्रृंगार, चारों ओर गणपति बप्पा मोरिया। सुबह सवेरे बप्पा की मंगला आरती में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, लिया बप्पा का आशीर्वाद। जालना में राजूरेश्वर गणपति मंदिर में अंगारकी संकष्टी चतुर्थी पर आस्था का सैलाब, उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गणपति मंदिर के गर्भगृह में फूलों से की गई आकर्षक सजावट, रात से ही दर्शन के लिए लंबी कतार में खड़े हैं श्रद्धालु। महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से एक संपूर्ण शक्तिपीठ के रूप में मशहूर है राजूर स्थित राजूरेश्वर गणपति देवस्थान, श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र। रंग बिरंगी रोशनी से की गई पूरे मंदिर परिसर की सजावट, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के जय घोष से गूंज उठा पूरा परिसर। मंगलवार के दिन पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को कहा जाता है अंगार की संकष्टी चतुर्थी, भगवान गणेश को समर्पित और सभी संकष्टी चतुर्थी व्रतों में सबसे उत्तम मानी जाती है। अंबाजी शक्ति में सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार शुद्धिकरण समारोह का आयोजन, भादरवी पूनम मेले के समापन के बाद आयोजित होता है शुद्धिकरण समारोह। मां के गर्भगृह से लेकर उनके दिव्य आभूषणों और पूरे मंदिर परिसर की होती है गहरी सफाई, साफ सफाई के इस विशेष अनुष्ठान को दिया गया है शुद्धिकरण समारोह का नाम। अंबाजी मंदिर के कर्मचारियों पुजारी समेत सोनी परिवार और गांव के लोग लेते हैं हिस्सा, 5 पीढ़ियों से शुद्धिकरण विधि में हिस्सा ले रहे हैं अहमदाबाद के सोनी परिवार। समारोह के दौरान भजन कीर्तन का भी होता है आयोजन, सोनी परिवार द्वारा माताजी को सोने की एक छोटी प्रतिकृति भी दान में भेंट की गई। भादरवी मेले के दौरान देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के दर्शन करने के बाद मंदिर की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए हर साल किया जाता है विशेष अनुष्ठान, पूरी श्रद्धा से भक्त करते हैं सफाई। पुणे में दिखे आस्था और संस्कृति के रंग, तुलजा भवानी के पलंगोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। ग्रामीणों ने बड़े उत्साह और भक्तिभाव के साथ पलंग का स्वागत किया, जगह जगह पारंपरिक वाद्यों की गूंज के बीच गेहूं के आटे से बनाए गए प्रसाद का किया गया वितरण। करीब 12वीं शताब्दी में राजा रामदेव राय के काल से जारी है घोड़गांव से तुलजापुर भेजे जाने वाले पलंग की परंपरा, श्रद्धालु पूरे रास्ते पलंग को अपने कंधों पर उठाकर तुलजापुर तक ले जाते हैं। मान्यता के अनुसार विजयदशमी से कोजागिरी पूर्णिमा तक मां तुलजा भवानी की मुख्य मूर्ति इसी पलंग पर विश्राम करती है, पिछले वर्ष के पलंग को होम में किया जाता है विसर्जित। इस दौरान प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती पाठ, भजन, महाआरती और पारंपरिक अनुष्ठान किए जाते हैं आयोजित, भक्तगण पूरी श्रद्धा के साथ होते हैं सम्मिलित। जूनागढ़ के ऐतिहासिक ऊपरकोट किले में सैलानियों के लिए एक आकर्षण की शुरुआत, किले में भव्य लाइट एंड साउंड शो का होगा आगाज। शो के जरिए दर्शाया जाएगा जूनागढ़ का इतिहास, 1472 से शुरू होकर 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ की आजादी तक के सफर की गौरवशाली यात्रा होगी प्रदर्शित। रोजाना शाम 7:15 पर आयोजित किया जाएगा लाइट एंड साउंड शो, शुरुआती 2 हफ्ते तक ₹50 होगी टिकट की कीमत। ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, सूफी संत मंसूर शाह औलिया की दरगाह गए और उर्स में हुए शामिल। दरगाह पर सिंधिया ने चढ़ाई चादर, पुरानी शाही परंपरा के तहत हर साल उर्स में शामिल होता है ये परिवार। झांसी में बुंदेलखंड की बलिनी की नवी वार्षिक आमसभा का आयोजन, पशुपालन के जरिए 1 लाख से ज्यादा आत्मनिर्भर बनी महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में दिखी बुंदेलखंड की समृद्ध संस्कृति की झलक, कई लोक नृत्य और लोक कलाओं का हुआ मंचन। दिल्ली के एक युवक ने उठाया मुनाक नहर की सफाई का बीड़ा, साथ में जुटे करीब 1600 से ज्यादा वॉलंटियर्स। भारतीय दवा कंपनियों को बड़ी राहत, स्पेशल ड्रग्स पर टैरिफ नहीं लगाएगा अमेरिका, भारत के साथ 20 देशों को भी राहत। रक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए गुड न्यूज, तेजस MK1A के इंजन की सप्लाई में आएगी तेजी। इस साल के आखिर तक भारत को GE एरोस्पेस के 12 और F404 इंजन मिलने की उम्मीद। दीपोत्सव 2026 में अयोध्या में दिव्यता और भव्यता की बिखरेगी चमक, रामनगरी में 30 लाख दीपों से मनाया जाएगा दीपोत्सव। 1 अक्टूबर से खुलेगा सरिस्का, रणथंबोर, मुकुंद्रा सहित सभी टाइगर रिजर्व, पर्यटक ले सकेंगे टाइगर जंगल का आनंद। श्रीनगर में म्यूजिकल इवेंट में शामिल हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, संगीत का आनंद लेते दिखे। फिल्म स्टार गोविंदा पहुंचे मां बगलामुखी के दरबार, पूजन दर्शन कर लिया आशीर्वाद, अभिनेता की एक झलक पाने के लिए लगी प्रशंसकों की भीड़। प्रयागराज जंक्शन पर RPSF जवानों ने बचाई महिला यात्री की जान, चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते समय प्लेटफॉर्म पर गिरी महिला का रेस्क्यू किया गया। दो दिन की बारिश थमते ही बर्फ की सफेद चादर में ढका केदारनाथ धाम नजर आ रहा है बेहद भव्य नजारा। हिमाचल में फिर बदला मौसम, धौलाधार की पहाड़ियों पर हुआ तेज हिमपात, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में हर तरफ श्वेत श्रृंगार, तापमान में गिरावट दर्ज की गई, नवंबर जैसी ठंड का एहसास हुआ। मनाली और उसके ऊंची पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी, सफेद चादर से ढक गई पहाड़ियां। प्रकृति का सुंदर नजारा पेश कर रही है बर्फ से ढकी चोटियों के बीच घिरी वादी, बर्फबारी के बाद सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद। हिमाचल में बारिश का दौर जारी, 30 सितंबर से मौसम खुलने की संभावना। शिमला में बदले मौसम का मजा ले रहे हैं सैलानी, मॉल रोड पर दिखी सैलानियों की भारी भीड़। बाराबंकी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है सरयू, कटान से कई गांव प्रभावित, रेस्क्यू का इंतजार। वाराणसी में गंगा का बड़ा जलस्तर, प्रशासन ने घाटों पर नाव संचालन किया बंद। कुशीनगर में नारायणी नदी का तटबंध टूटा, कई गांवों पर बाढ़ का खतरा, ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह। सुकमा में बाढ़ के बीच NDRF के जवान बने देवदूत, जिले में 2000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा, राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्रावस्ती में मूसलाधार बारिश के बाद राप्ती का पानी बढ़ा, रेस्क्यू में जुटी SDRF की टीमें। 14 लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया, बचाव कार्य पर प्रशासन की लगातार नजर। नेपाल के मुस्तांग में पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरा, एक यात्री ने अपने कैमरे में किया रिकॉर्ड, भूस्खलन के बाद काली गंडकी नदी का बहाव बाधित। जॉर्जियो अरमानी ने लॉन्च किया महिलाओं के परिधान का नया कलेक्शन, कंपनी के सिग्नेचर स्टाइल का दिखा जलवा। कंपनी के इस नए कलेक्शन का शीर्षक है एवोल्यूशन, इसमें आइवरी, काला और सुनहरे रंग को किया गया है शामिल। कलेक्शन में 80 के दशक से पहले शार्प शोल्डर जैकेट्स, घुटने तक की ट्राउजर्स, बोल ज्योमेट्री और बॉडी स्किमिंग इवनिंग गाउन को किया गया है पेश। इटली का यह फैशन हाउस बाहरी निवेशकों को शुरुआती 15% हिस्सेदारी बेचने की योजना पर कर रहा है काम। अरमानी ने पहली बार परिवार से बाहर किसी शख्स विटाली को एम्पोरियो अरमानी और जॉर्जियो अरमानी एक्सेसरीज का क्रिएटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। शांघाई में 48वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का समापन, प्रतियोगिता में AI केंद्रित कार्यक्रमों की हुई शुरुआत। की बदलती मांगों के साथ तालमेल बिठाने के लिए पारंपरिक कौशल के मूल्यांकन मानकों को बढ़ाया गया। चीन ने खोली 4 नई हाई स्पीड रेलवे लाइन, जिससे दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क का हुआ विस्तार। उत्तर पश्चिमी चीन के शांगसी प्रांत की राजधानी शियान और उसी प्रांत के एक नए शहर अनकांग को जोड़ती है ये रेलवे लाइन। दोनों शहरों के बीच का सफर अब महज 45 मिनट में होगा तय। पहले ये सफर तय करने में लगते थे लगभग 3 घंटे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
8: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की अनबन। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: अब नोएडा से 20 मिनट में पहुंचेंगे एम्स। बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर का गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। भारत को एशियन गेम्स में मिला 5वां गोल्ड, नीरू ने ट्रैप शूटिंग में दिलाया पदक, भारत के पास अब तक कुल 48 मेडल। रुद्रप्रयाग में चौथे दिन खुला केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग, खराब मौसम के चलते रुकी थी आवाजाही, आस्था के डगर पर बम बम भोले का जय घोष। यूपी के प्रयागराज बड़ा संगम का जलस्तर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर तक पानी, प्रशासन की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। रणबीर कपूर ने मनाया 44वां जन्मदिन, बंगले के बाहर काटे 3 केक, आलिया भट्ट के साथ फैंस को कहा शुक्रिया।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
4: दोस्तों मैं हूँ रिंकी भाभी और लेकर आई हूँ आपके लिए मनोरंजन जगत की मसालादार खबरें। सीरियल्स का सस्पेंस हो, रियलिटी शोज का हंगामा या फिर वेब सीरीज का तड़का, सास बहू और बेटियां के शो में आपको मिलेगी मनोरंजन की हर खबर। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले देखते हैं आज की खास खबरें।
5: वो मेरी वजह से हॉस्पिटलाइज्ड है। क्या जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ है वो साफ चला रही
6: है। सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में मायरा करेगी नया तमाशा, अरमान देगा मायरा का साथ।

0: अपराजित और रक्षित की शुरू होगी आशिकी, शुरू होगा ट्रक वाला रोमांस।
1: क्या हुआ?
2: जो हो रहा है वो होगा नहीं, और जो होगा वो होना नहीं चाहिए।
1: मतलब
2: पुलिस आ रही है।
3: फैक्ट्री में एक टाइम मशीन में शॉर्ट सर्किट हुआ, एक वर्कर को करंट लगाया और पता नहीं कैसे पूरी फैक्ट्री में जहरीली गैस फैल।
0: खतरे में पड़ेगी संजय की जान, घर वाले होंगे परेशान।

कलर्स पर आ गया है नया शो शायद यही है प्यार, जिसके लॉन्च के नज़ारे आपके लिए लेकर आया है सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां।

0: सीरियल मन अति सुंदर में राध्या अंतरा का पर्दाफाश करने में लगी है, लेकिन अपनी इस कोशिश में राध्या नाकाम हो जाती है और प्रथम भी राध्या पर भड़क जाता है। ऐसे में राध्या अब क्या करेगी, चलिए देखते हैं।
1: राध्या ने किया अंतरा का खुलासा। उल्टा पड़ा राध्या का प्लान। घर में शुरू हुआ तमाशा। दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में आज फिर एक बार हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया है, जहां पर सबूत के साथ राध्या पहुंची है घर वालों के सामने और उन्हें बता दिया है कि अंतरा प्रेग्नेंट नहीं है। साथ ही ये फाइल भी है जो बता रही है कि प्रेगनेंसी नेगेटिव है।
2: हमें आपको कुछ बताना है।
3: क्या बात?
2: अंतरा जी हमारी बच्ची की माँ नहीं बनने वाली।
3: तुम इतनी बड़ी बात किस बेसिस पर बोल रही हो?
2: डॉक्टर के पास गई कि वो कभी माँ नहीं बन सकती है।
4: राध्या, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो? मैं ये कैसे पता चला कि मैं डॉक्टर के पास गई थी? कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रही हो? नजर तो नहीं लग रही हो मुझ पे?
3: इससे पता चलेगा कि सच है क्या।

0: इस फाइल में लिखा है कि प्रेगनेंसी नेगेटिव।
1: भाई राध्या को लगा कि उसने अंतरा का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन यहाँ तो बाजी उल्टी ही पड़ गई, क्योंकि प्रथम ने बताया प्रेगनेंसी रिपोर्ट नेगेटिव जरूर है, लेकिन ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट अंतरा की है ही नहीं, बल्कि फाइल्स एक्सचेंज हो गई है।
2: अंतरा जी बस कीजिए, अब और झूठ मत बोलिए, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ।
0: अंतरा झूठ नहीं बोल रही, मतलब ये कि इस रिपोर्ट में प्रेगनेंसी नेगेटिव है, लेकिन ये रिपोर्ट अंतरा की नहीं।
1: और इसी के साथ दादी को फिर एक बार मिल गया है मौका राध्या को खरी खोटी सुनाने का।
2: की गलती हमारे मध्य में बढ़ गई, तुम खुद अंतरा के पीछे पीछे डॉक्टर के वहाँ गई, अब ये अधूरी बातें सुनकर आई वहाँ से और झूठी फाइल लेकर आई, उसके बाद मेरे कानों में ये बात है दादी कि अंतरा प्रेग्नेंट नहीं है। बड़ी चालाकी से मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चला दी तुमने और आज मुझे दोषी ठहरा रही हो।
1: भाई ऐसे में बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि एकता का गुस्सा राध्या पर फूटता है और वो उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन अंतरा अपनी बहन एकता को रोक लेती है।
2: अंतरा

0: अपनी बातचीत बताई। साथ ही डॉक्टर भी आ गई, जिसने बताया कि रिपोर्ट्स चेंज हो गई थी, जिसके बाद घर वालों को राध्या पर नहीं बल्कि अंतरा पर विश्वास हो गया।
1: किसी और की गलत रिपोर्ट आ गई, नहीं तो मैं ये बात भी साबित कर सकती थी।

0: बाकी घर वाले तो राध्या के खिलाफ थे ही, अब प्रथम भी हो गया। देखिए कैसे वो उसे खरी खोटी सुना रहा है, इतना कि उसने राध्या का दिल ही तोड़ दिया।
1: डॉक्टर से गलती हुई, लेकिन राध्या तुमने बड़ी आसानी से सारा एग्जाम अंतरा के सर मर दिया। एक तो ऊपर की आई होकर तुम्हारी लिए सरोगेट मदर बन रही है, उसको पूरी जिंदगी दुनिया समाज के ताने सुनने पड़ेंगे। उसके बावजूद भी अगर घर में उसे इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तो उसका असर उसके बच्चे पर नहीं पड़ेगा, बोलो।
2: तुमने बिल्कुल सही कहा। ये क्या चल रहा है कल से इस घर? मैंने कल ही आपको समझाया था ना कि आधी अधूरी बात खतरनाक होती है, लेकिन आज तुम फिर से शुरू हो। क्या ये सब?
3: सीरियसली राध्या, क्या ये सब? कल दवाई, फिर वो जूस, फिर बबीका और आज ये। अगर तुम्हें अंतरा में कोई शक था, कोई प्रॉब्लम थी, तो उसे डायरेक्टली जाके बात क्यों नहीं करती तुम?
4: प्रॉब्लम यही है।

वही राधे और प्रथम की बात चल ही रही होती है कि फिर एक बार अंतरा ड्रामा शुरू कर देती है। तो भाई अंतरा तो बड़ी खिलाड़ी है और वो सभी को फंसा रही है। अब देखना होगा कि कैसे राध्या खुद को बेगुनाह साबित करती है और अंतरा के झूठ का खुलासा करती है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

तो देखते हैं रणबीर के इस 44th बर्थडे के खास पल। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

जमाना। और इनकी बर्थडे पार्टी में कई सितारे हुए हैं शामिल, जैसे कि आप सबकी प्यारी अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली, जो खास इस पार्टी में पहुंची है सना को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां देने के लिए।

तारक मेहता की बबीता जी का रियल लाइफ बर्थडे। आज व्हाइट और गोल्डन ड्रेस में बबीता जी बिल्कुल सोने की तरह चमक रही हैं। काश यहाँ जेठा भाई होते। क्या जेठा भाई तो नहीं है, लेकिन अपने कुछ साथियों के साथ इन्होंने अपना बर्थडे मनाया। लेकिन बहुत खास था इनकी मम्मी का साथ। जी हाँ, मम्मी के साथ केक काटा, दोस्तों और फैंस के साथ फोटो खिंचाई।

तो ये था तारक मेहता की बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता का रियल लाइफ बर्थडे, जिसके कुछ खास पल हम आपके लिए लेकर आए। तो सास बहू बेटिया की तरफ से मुनमुन दत्ता को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

0: रोज नए ट्विस्ट, रोज नए हंगामे। टेलीविजन की दुनिया में ड्रामे कभी खत्म नहीं होते। आज किस सीरियल की कहानी में आया है कौन सा बड़ा ट्विस्ट, देखना मजेदार होगा। तो चलते हैं सीरियल्स की मजेदार दुनिया में।
1: महादेव एंड सन्स।
2: अजय से क्या हुआ आपको? बताइए क्या परेशानी है? हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे।
3: कलर्स टीवी के सीरियल महादेव एंड सन्स में भाई मोगरा ने फिर एक बार अपने ससुराल वालों को बर्बाद करने की ठान ली है। तभी तो देखिए कैसे आशीष को उसने नशे में धुत करवाया और उसके बाद में उसने उस सच्चाई को उगलवा लिया जो महादेव एंड सन्स का पूरा परिवार छुपा रहा है। जी हाँ, मोगरा को ये पता चल गया है कि मोंटी का मर्डर महादेव की बहू रानी यानी कि रज्जी ने किया है। लेकिन देखिए कैसे उसने अपनी माँ को जेल से बाहर निकालने के लिए यश के साथ रच दिया नया षड्यंत्र।

0: हो ना, जेल में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना?
1: अरे बेटा कोई परेशानी नहीं हुई, अपनी अम्मा को जानती नहीं होगा? उनके नरक में रहे तो वहाँ पे भी अपना साम्राज्य बना ले। ये तो फिर भी अंडर ट्रायल की जेल थी, खूब ऐसे रहे।
2: ऐसे में जैसे ही यश को ये बात पता चल गई है कि मोंटी के मर्डर के पीछे धीरज का हाथ है, देखिए कैसे वो पहुंच गया सपना रघुवंशी के घर पर।
0: मोंटी राजवंश का धीरज ने मर्डर कर दिया है और बॉडी कहीं और दफना दी है।
3: सिंह साहब, हम यश वाजपेयी, मानो वाजपेयी के छोटे भाई, नाम तो सुना ही होगा।
4: वो ईंट पट्टे वाले?
3: हाँ। पर क्या है ना सिंह साहब, हमारे पास कुछ बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है जो मैडम को बताना बहुत जरूरी है। वो जो आप महादेव एन परिवार के बारे में तफ्तीश कर रहे हैं ना, जांच पड़ताल कर रहे हैं, हम उनके पड़ोसी भी हैं और रिश्तेदार भी, इसलिए हमारा सपना मैडम से मिलना बहुत जरूरी है।
2: ऐसे में अब आने वाले वक्त में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई यश ने सपना के सामने सारी सच्चाई बता दी है।
5: राजवंश से मिलने के लिए
1: मेरे बेटे के बारे में बात करने आए हैं, है ना?
3: जी वो
4: बोलिए।
6: लेकिन असली सवाल ये है कि हमारे पड़ोसी यश वाजपेयी को कैसे पता चला इस बारे में?

0: आप रूप माथुर मेरे साथ बचपन में गलत हरकत करने की वजह से आप जेल में जाएंगे।
1: स्टार प्लस की सीरियल तेरा फितूर में भाई फाइनली सौम्या ने अपने लिए स्टैंड लेने का फैसला कर लिया है। सालों से हो रहे उसके साथ बदसुलूकी का अब उसने करारा जवाब देने का ठान लिया है।
0: मुझे ये बात बताने में शर्म नहीं आनी चाहिए थी, मुझे गिल्टी फील नहीं करना चाहिए था। तो आज मैं न रोऊंगी, न सोऊंगी और न ही डरूंगी। आज मैं समाज के सबके सामने खुल के अपना सच कहूंगी ताकि बाकी लड़कियों को भी उदाहरण मिले और वो भी अपनी चुप्पी तोड़े। और अब जैसे घटिया आदमियों में डर बने रहे कि किसी लड़की को उसकी मर्जी के बिना छूने से पहले हजार बार सोचिए।
1: और इसके बाद सौम्या की मम्मी और उनकी ताई जी ने भी अपनी बेटी का साथ देने का फैसला किया है। तभी तो पुलिस वालों के सामने उन्होंने बिना डरे सारी सच्चाई बता दी।
2: अपनी बेटी को चुप करवाती आई, लेकिन आज मैं इसकी आवाज बनूंगी।
3: अरे ये क्या मजाक है, अरे ये तो उसकी माँ है और माँ जो है हमेशा अपने बच्चे की तरफ से बोलेगी, उसी की तरफदारी करेगी। अरे मधु जी ये बताइए सबूत है?
2: मैं तो आपकी पत्नी हूं ना, मैं कहती हूं ये आदमी गुनहगार है।

0: चाहे तो कोरे कागज पर दस्तखत करवा लीजिए या कोर्ट में गवाही दिलवा दीजिए, ये आदमी गुनहगार है।
1: क्या बकवास कर रही हो उमा, होश में तो हो?

0: जब मैं आपसे पहली बार मिली थी तो मुझे लगा था कि आप बहुत खड़ूस हो।
1: मुझे भी लगा था कि तुम खड़ूस टाइप हो,
0: पर अब लग रहा है कि आप उतने भी खड़ूस नहीं है।
1: मैंने भी जैसा सोचा था तुम बिल्कुल वैसी नहीं हो।
2: स्टार प्लस के सीरियल सयोनी में मई सानवी पहुँच गयी है अपने असली घर।
0: क्या मुझे देख कर गले लगाएंगी? माँ बाप रिश्तेदार पहचान क्या है तुम्हारी? मेरी यही पहचान है कि मेरा नाम सानवी है और मैं आश्रम में रहती थी।
3: कभी सोचा है तुमने तुम अनाथ आश्रम में क्यों पली बढ़ी हो?
4: क्योंकि तुम्हारी माँ हद में नहीं रही होगी, लेकिन तुम अपनी हद में रहना।
3: मेरे घर में आकर मेरी फैमिली के साथ रहकर अपनी माँ वाली गलती मत दोहराना।
0: आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वेलवेट कंपनी की माया मैम आपकी माँ है, आपको तो खुश होना चाहिए थी। पता नहीं रितु, कुछ समझ में नहीं आया। माता जी ने कहा था कि मुझे कोई लेने आएगा वहां, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे कोई लेने आएगा भी या नहीं।
5: प्लस टीवी पर शुरू हुआ नया सीरियल जिसका नाम है शायद यही है प्यार, और बीती शाम हुई इसकी लॉन्च पार्टी जहां इस सीरियल की टीम ने नाच गाने संग इवेंट को रंगीन कर दिया। अब इस सीरियल में खास क्या है, चलिए इन्हीं सितारों से जानते हैं।

मुंबई में लॉन्च हुआ नया शो शायद यही है प्यार, जिसमें कथा की कथा यानी अदिति शर्मा एक बार फिर से लौट कर आई हैं। इस बार किरदार काफी अलग है। इस बार अदिति बन गई हैं प्रीति और उनकी जोड़ी बन गई है आरव यानी दक्ष पुरी के साथ। तो प्रीति और आरव की लव स्टोरी थोड़ी अनकन्वेंशनल है लेकिन रिलेटेबल है और यही शो का थीम है। तो मुंबई में लॉन्च हुआ शायद यही है प्यार, जब पूरी कास्ट क्रू ने स्टेज पर फोटोशूट एक साथ स्टेज पर अपनी ग्रैंड एंट्री भरी और उसके बाद एक छोटा सा स्किट पेश किया जिसमें इस सीरियल की पूरी कहानी कुछ इस अंदाज में समझाई गई।

0: हाय, मैं हूँ प्रीति, प्रीति अरोड़ा, 35 साल की इंडिपेंडेंट दिल्ली की कुड़ी। अपनी मेहनत से और मम्मी पापा के सपोर्ट से मैंने अपना करियर बनाया। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी खुशी की क्या बात है, मैं क्यों इतना नाच गा रही हूँ। एक्चुअली है क्योंकि आज मेरी लाइफ का ना बहुत बड़ा दिन है। क्या होने वाला है अभी थोड़ी देर में बताती हूँ।
1: प्रीति पुत्र, क्या सोनी लग रही है।
0: थैंक यू पापा, आपको तो पता है ना आज मेरी लाइफ का कितना बड़ा दिन है। पर ना मम्मी ने ना मुझे बोल बोल के कि शादी की डेट फिक्स करके आना, शादी की डेट फिक्स करके आना बोल के ना इतना प्रेशर दे दिया। आई एम फीलिंग सो।
1: तू शादी वादी की टेंशन मत ले, अपने प्रमोशन पे फोकस कर। प्रमोशन तुझे ही मिलेगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस।
0: थैंक यू पापा, आप ना वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो।
1: चलो
0: ओके पापा, रात को गुड न्यूज देती हूँ।
1: चलो
0: ऑल द बेस्ट, बाय।
2: ओहो मेरी प्रीति, कहाँ जा रही है?
0: सैंडी यार ना, मैं अभी ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रही हूँ। तुझसे मैं शाम को मिलती हूँ और तुझे एक गुड न्यूज देती हूँ।
2: गुड न्यूज?
0: नहीं, एक्चुअली दो गुड न्यूज देती हूँ, एक प्रमोशन और एक शादी।
2: व्हाट रियली? 5 साल के बाद? वैसे तेरी माँ मिली थी, आंटी कह रही थी कि बेटा तू प्रीति की बेस्ट फ्रेंड है, तू उससे शादी की बात कर, लेकिन मैंने हाँ हाँ करके टाल दिया।
0: यार मेरी माँ भी ना
2: यार, लेकिन गलत तो नहीं बोल रही, सुन मेरी बात।
0: हाँ
2: 5 साल हो गए हैं तुझे और गौरव को साथ में, मतलब टाइमलाइन नाम की भी कोई चीज होती है ना, उससे कुछ लोग तो डरते हैं। और देख मेरी दोस्त, अब तू 35 साल की भी हो गई है।
0: सैंडी यार तू भी शुरू हो गई है।
2: मैं प्रेशर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन देख कंग्रेचुलेशंस, तूने अपनी शादी की डेट फिक्स करने की ठान ली। वेरी गुड।
0: या आई थिंक इसे कहते हैं ना, देर आए पर दुरुस्त आए।
2: एब्सोल्युटली
0: है ना।
2: मैं तेरे लिए इतनी खुशी होती
0: सैंडी। चल मैं निकलती हूँ। ओके
2: ओके ओके,
0: चल बाय
2: बाय
0: बाय बाय बाय। आंधी हाय, नमस्ते। वो मैं ऑफिस।
2: अरे मुझे पहले ये बता, तेरी शादी फिक्स हुई कि नहीं?
0: शादी नहीं अभी तो नहीं।
3: अरे रे रे पुत्र, जल्दी कर ले वरना हाथों में लगाने वाली मेहंदी बालों में लगानी पड़ जाएगी।
0: जी आंटी, ओके।
2: तू बुरा क्यों मान रही है, हम तो तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं ना।
0: नहीं नहीं मैं कोई बुरा थोड़ी मान रही हूँ, ये तो रोज का ही है। कोई नहीं, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ।
3: अरे अरे सुन तो सही
0: जी,
3: चली जाना लेकिन शादी की खुशखबरी जल्दी जल्दी सुना दे।
0: थैंक यू, बाय
2: बाय।
0: सॉरी
4: प्रीति।
0: हाय सर, गुड मॉर्निंग सर।
4: 10:30?
0: यस सर, सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गई सर।
4: लेट हो गई?
0: यस सर।
4: सिंगल हो तुम? yes, ना तुम्हारा कोई पति है ना बच्चा, फिर लेट क्यों हो गई?
0: सॉरी सर, सर आज ना मुझे थोड़ा जल्दी भी जाना है।
4: वाओ, लेट आई हो ये बोलने के लिए जल्दी आना है, वाओ दैट्स अमेजिंग।
0: नहीं सर, कोई आज एक कमिटमेंट है, पर्सनल।
4: वैसे प्रीति एक बात बताऊं?
0: यस सर।
4: अभी पर्सनल चीजों के लिए तुम्हें बहुत सारा टाइम मिलेगा, बिकॉज़ यू नो व्हाई।
0: यस सर।
4: प्रमोशन हिमांशु को मिला है।
0: हिमांशु? सब तो बोल रहे थे कि मैं ही प्रमोशन डिजर्व करती हूँ, और हिमांशु तो इस डेजिग्नेशन के लिए क्वालिफाइड भी नहीं। नो, मुझे अपना मूड नहीं खराब करना। इट्स ओके। ओके, आज मेरी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट दिन है, एंड आई डिसाइड टू बी इन अ गुड मूड। आई हैव टू मीट गौरव। यस, आई विल बी इन अ गुड मूड।
5: प्रमोशन भी नहीं मिली, यू डिजर्व द प्रमोशन। क्या प्रीति लाइफ में पीछे रह गई है?

0: प्यार में इंसान अंधा हो ही जाता है।
1: आरव, तुम वापस कब आए?
0: मैं आपसे दूर गया ही कब था?
1: तुम ना बिल्कुल नहीं बदले हो।
0: आओ, आओ, आओ।
1: सैंडी के छोटे भाई नहीं होते ना तो मार मार के भरता बना देती तुम्हारा। बिल्कुल नहीं बदले हो।
0: बदले तो आप भी नहीं हो।
1: हाँ, अभी थोड़ी देर पहले भी किसी ने यही कहा।
0: What do you mean?
1: Nothing.
0: प्रीतो, क्या हुआ यार? चलो बैठ के बात करते हैं। बताओ, आराम से इधर बैठो और मुझे सब बताओ।
1: आज का दिन ही मनहूस है। मैंने सोचा था मुझे प्रमोशन मिलेगा, आई एम सो गुड एट माई जॉब, पर मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं अपने बॉस की चमची नहीं हूं ना, इसलिए। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, आज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने वाली थी और अपनी शादी की डेट फिक्स करने वाली थी, गौरव। सॉरी, नॉट माई बॉयफ्रेंड, माई एक्स, पर उसने मुझे डंप कर दिया। लाइक यू सेड, ही सेड मैं अभी भी बिल्कुल वैसी की वैसी
0: हूँ। सॉरी, मैं आपको ऑफेंड नहीं करना चाहता था।
1: नो नो,
0: नहीं सही में मेरा मतलब ये था कि जो चीज सही है, परफेक्ट है, वो वैसी ही रहनी चाहिए ना, है ना? So what do you say, how about we discuss this on a date? I know I like biryani. Do you like biryani?
1: नहीं, अभी टाइम नहीं आ रहा।
0: अरे यार, मैं गेम डेवलपर हूँ, हर चीज का सोल्यूशन है मेरे पास। You know what? Let's go on a 2-minute date. Huh? मतलब no biryani, just surprises. I know you like surprises, so surprise number one. आओ, चलो।
1: पागल हो यार।
0: अरे पीतो, just go with the flow ना यार। Come on, let the magic happen. Yeah? Come. This. अरे भैया जल्दी करो, टाइम नहीं है मैडम के पास।
1: अरे
2: अरे भैया, ओके
1: This ice cream is really good.
2: Yeah?
0: Wow. Yavka.
1: Barish?
2: Barish.
1: Are you? Barish.
0: Are you Pito? Aao na, kya kar rahe ho?
1: Are you? No.
0: Are you? Aao yaar, Barish hi to hai.
1: Are you? No.
0: Come on. Barish hi to hai, Pito. Come on.
1: Oh, oh.

0: इसके बाद मेकर्स और पूरी कास्ट स्टेज पर आई, सबने ढेर सारे सवालों का जवाब दिया और साथ साथ प्यार की डेफिनेशन भी समझी और समझाई।
1: मेरे लिए प्यार शायद फर्ज है।
2: मेरे लिए प्यार शायद भरोसा है।
3: मेरे लिए प्यार एक नहीं दो वर्ड है, अगेन शायद रिस्पेक्ट और भरोसा।
4: मेरे लिए प्यार आई थिंक एक्सेप्टेंस भी है, बट आई थिंक इन वन वे इट्स लाइफ, इट्स जिंदगी है, प्यार जिंदगी है।
5: चार कैरेक्टर्स ने प्यार को अलग नजरिए से एक्सप्लेन किया एंड आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ द शो। एवरीवन विल लुक एट इट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू एंड ट्राई एंड गेट समथिंग दैट इज क्लोजर टू देयर हार्ट्स। और मेरे लिए प्यार मस्ती है।
6: नहीं, मेरे लिए प्यार शायद एक सुकून है।
7: मेरे लिए प्यार मजा और अंडरस्टैंडिंग।
8: मेरे लिए प्यार भगवान है।
9: मेरे लिए प्यार सैक्रिफाइस भी है, दोस्ती भी है और कंफर्ट भी है।
10: One word.
9: एक वर्ड में नहीं बता सकती, तीनों वर्ड हैं।
6: सर शायद है ना, शायद ये भी है।
3: You know they say birds of the same feather flock together. तो मेरा यही आंसर था एक्सेप्टेंस। प्यार मेरे लिए शायद एक्सेप्टेंस है, but I'm glad that Preeti and Sandy think alike.
11: यार और हम तो करण जोहर के पिक्चर देख के बड़े हुए, तो प्यार तो दोस्ती है।
12: तो भाई लॉन्च के नजारे तो आपने देख लिए, अब बारी इनसे मुलाकात करने की। तो सास बहू और बेटियां ने की कास्ट से खास मुलाकात और जानी सीरियल और इनके किरदार के बारे में कई बातें।
13: There's a joke and we
14: कुछ भी हंसते हैं।
13: We call our show what? Can I say that? Yeah.
14: 1, 2, 3.
13: शायद यही है प्यार। सैंडी ये वाली भी देख जरा प्लीज। सैंडी यार बताना कौन सी अच्छी लगेगी, ब्लैक या रेड?
6: कोई भी नहीं।
13: सैंडी नहीं है। हेलो हेलो
15: हेलो
13: तू
15: एक्सक्यूज मी
13: तू यहां?
15: क्या कर रहे हैं?
13: अपने व्यूज बताएंगे। सो यार
6: मैं तो हूं
13: ऑल एक्साइटेड। 23 दिसंबर वाज व्हेन आई शॉट लास्ट। सो यार 23 दिसंबर, सो अभी तो हमारे शो को बनते बनते भी टाइम हो गया। सो ऑलमोस्ट 2.5 साल का ब्रेक था मेरा। सो यार आई एम एक्साइटेड एंड आई एम सो एक्साइटेड दैट आई एम एक्चुअली ओवरवेल्म्ड कि इतने सारे लोग आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर दिस वन। दे वर टेलिंग मी कि वी वर वेटिंग फॉर यू एंड इट्स फील सो फैंटास्टिक दैट पीपल स्टिल रिमेंबर माई प्रीवियस शोज, माई प्रीवियस वर्क एंड दे आर गोइंग टू वॉच इट बिकॉज मैंने पीछे वाला शो देखा, जो भी मेरा पीछे वाला शो था।
6: बहुत ड्रामा है, बहुत मतलब बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो इन दोनों की लाइफ में रंग भी लाते हैं और मतलब बहुत सारी चीज़ें लाते हैं। बहुत बहुत लोग नोकझोंक बहुत सारी चीज़ें हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि जब ये दोनों मिलते हैं तो एक बहुत ही अलग सा एक like you know ek high like, vibe create hota hai, like you know there is something in the air and in the rain.
13: I think bahut sare beautiful characters hain other than Arav and Preeti, jitne bhi hamare surrounding bahut sare characters hain, wo sab bahut beautifully likhe hue hain, bahut beautifully unhe actors kar rahe hain. Aur at the same time ek ye jo Arav aur Preeti ka relationship hai uske sath sath jo Preeti ki self discovery ki ek journey hai, jahan par she starts prioritizing her happiness more than what society is telling her to do. I think वो भी बहुत important है। थिएटर करती थी पहले, अभी कुछ टाइम हुआ है कि नहीं कर रही हूँ। सो मुझे एकदम से जब कल रिहर्सल हो रही थी तो मुझे फील हुआ दैट आई शुड गेट बैक टू स्टेज एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग है बींग ऑन स्टेज।
6: मेरा एक्सपीरियंस मैम के साथ बहुत ही मतलब ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था, लाइक यू नो इट वाज वेरी फ्लुएंट लाइक क्योंकि दोनों मतलब उस सेम इंटेंशन से अगर कॉन्वर्सेशन भी करते हैं तो वो सेम इंटेंशन से करते हैं, सेम प्योरिटी है, वो पता चल जाती है. तो वो इक्वेशन जो बनी है हमारी, पहली बात तो खाने से बनी है. तो खाने से बड़ी चीज़ जो आपको इक्वेशन बनाने में लगती है, बनाने में हेल्प करती है, कोई हो नहीं सकती. एंड आई एम बिग फूडी एंड लाइक यू नो इफ समबडी बॉन्ड्स विद मी ओवर फूड देन दैट पर्सन इज ऑलरेडी इन माय सर्कल. सो एंड आई थिंक दैट वाज that's the experience that was one of the best experiences there.
13: He made me feel very comfortable. Daksh made me feel very comfortable. It was very very easy to gel with him and we got talking very soon. Jab hum promo shoot karne gaye tabhi humne gappe marni shuru kar di and then we would gossip and we would not miss any meal and we would sit for food time. Khana to khade the baki kaam jo chal raha hai khana kya khaye was the main thing. So I think we connected easily. So touch wood.
10: इससे अच्छा तो बादाम ही खरीद लेते. मेमोरी तो शार्प होती.
4: क्यों, क्या हुआ मेरी मेमोरी को?
10: टोटल लॉस. और क्या, तभी तो बोल रही हो.
4: क्या बोल रही हूँ मैं?
10: यही कि नए कपड़े अपनी खुशी के लिए पहने जाते हैं, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं.
4: जनरली लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नए कपड़े पहनते.
10: नॉट मी. You know what, Preeto? जिस दिन आदमी अपने लिए तैयार होता है ना, उस दिन उसे मिलता है असली प्यार खुद से.
4: You are a turned philosopher. First impression.
13: पहले तो मतलब मेरा ऑडिशन डे जो था, मेरा मॉक शूट डे था ना, इतना अच्छा नहीं चल रहा था. मैं थोड़ी नर्वस थी और काफ़ी ब्रेक के बाद आई वॉज लाइक ऑडिशनिंग. सो आई वॉज वेरी नर्वस एंड देन फिर मुझे अंदर के अंदर ना शूट करते करते ही गिल्ट होने लग गया. मैं कहा यार मेरी वजह से इस लड़के का भी ऑडिशन ख़राब हो जाए. सो दैट वॉज द फर्स्ट थिंग. बट थोड़ी ही देर बाद ना आई एकदम से आई रियलाइज, किसी ने इनफैक्ट शायद मुझे बोला, श्वेता करके हैं उन्होंने, शायद उन्होंने मुझे बोला दैट ही लुक्स लाइक रणबीर कपूर. तो मैंने इसको देखा, मैंने कहा हाँ यार ही लुक्स लाइक रणबीर कपूर. सो देन आई वाज लाइक
6: तभी कनेक्ट किया.
13: नहीं
6: यार इसको मैं वैसे मैचिंग करूं तो
13: हाउ आई वाज सीइंग यू दैट डे. सो या ही लुक लाइक अ वेरी ऑनेस्ट बॉय टू मी एट द वेरी फर्स्ट लुक. आई फेल्ट ही इज अ आई विल कनेक्ट विद. सो व्हाट
6: वुड यू लाइक टू ऐड? नॉट मच यार, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट लाइक टू गिव सच थिंग्स words or like you know adjectives or anything like that. It's just jab kuch cheez aise connect ho jati hai na to wo ho jati hai naturally, like it just flows and you just don't think about it too much. You just like spending time with this person, you like talking to this person, you like sharing things with this person, and yeah, you don't think much about it. I did not think much about it when I started speaking to her.
13: Yeah,
6: first impression, of course I was super nervous because mera pehla mock tha aur main to मैं डरा हुआ था.
13: सुपर नर्वस.
6: नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस था. आप तो फिर भी ठीक है, बट मैं तो मेरे को था कि यार फिर जब नहीं मेरे को ऐसा लग रहा था, मेरे को लग रहा था कि मैं उनको कंफर्टेबल फील करा रहा हूँ क्या, मैं ज़्यादा अनकंफर्टेबल तो नहीं फील करा रहा तो जिसके कारण वो परेशान लग रहे हैं या फिर मैं परेशान हो रहा हूँ. हमें धूप बहुत लग रही है, फिर हमें एक कॉमन चीज़ मिल गई, धूप लग रही है, इस पर ब्लेम कर देते हैं, धूप लग रही है. हाँ तो हम दोनों सॉर्ट ऑफ एक जैसी हैं.
13: आई थिंक जब हम पहले दिन मिले थे, जब हमारा मॉक शूट ही था, तब ऑलरेडी इतनी नर्वसनेस होती है कि आई डोंट थिंक ईदर ही वाज जजिंग मी और आई वाज जजिंग हिम. वो तो बाद में जब हम मिले एंड वी गॉट टू नो दैट एंड व्हेन वी एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग सम रिहर्सल्स फॉर आवर शो, आई थिंक दैट्स द पॉइंट वी कनेक्टेड.
14: 10th
16: 10 नंबर मैडम 10
14: नंबर. हाय आरव.
17: कायरा.
14: Nice name.
17: Thank you.
14: By the way, Kara, do I look like a stalker?
17: What? No way. I mean, you're so well-dressed. I'm impressed.
18: Don't waste your compliment, Kara. Ye normal log ki tarah dusro ko impress karne ke liye dress up nahi hota hai, balki khud apna pyar paane ke liye dress up hota hai.
14: Absolutely. Wo kya hai na, Kara, kuch log dusro ko impress karte karte apne bare mein to bhool hi jaate hain.
17: Wait. मतलब आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो?
14: She's my sister.
18: Best friend. I mean, he's my best friend's brother.
17: Oh.
14: Yeah.
16: थैंक यू अंकल,
8: बाय।
13: ऑफ स्क्रीन बहुत सही है, आई थिंक ऑन स्क्रीन से बेटर हम ऑफ स्क्रीन गप्पे मारते हैं।
16: हर आई थिंक एवरी
13: डे देयर इज समथिंग
16: समथिंग कुछ
13: समथिंग टू लाफ अबाउट एंड वी मेक फुल यूज ऑफ इट। सी आई थिंक जब हम 12-12, 13-13 घंटे साथ में काम करते हैं, जस्ट टू हैव दैट गुड एनर्जी अराउंड, वी जस्ट वी जोक अराउंड, वी टॉक, वी मोर देन गॉसिप, इट इज मोर फन ऑन द सेट। There's law, touch wood, there's very good vibe on the set, so we chill on the set. Actually, marriage mein phir bhi itna tough nahi tha, because jab maine shuru kiya tha TV mein kaam karna, I was just married. But I think after having your kids, it's quite tough. Kyunki wo to bachche hi after all, and they have their own things and demands. Thankfully, aapko koi support system hona chahiye, and my support system is my husband. वो भी एक्टर हैं और हम एक एक करके डिसाइड करते हैं। एंड आई वॉन्टेड टू वर्क, सो ही सेड कि चलो ठीक है, आई एम देयर। सो वन ऑफ द पेरेंट्स भी डिसाइडेड शुड बी विद द किड्स, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। सो होता है, बट आई थिंक बिकॉज आई हैव दैट दैट थिंग इन माई हेड दैट ओके दैट पार्ट इज सॉर्टेड, तो मैं सेट पर इतनी चिल रह पाती हूँ। अगर कोई मुझे फ़ोन करके बोले, अगर ऐसा होता कि मुझे फ़ोन करके बोलते कि ओ दिस इज़ नॉट हैपनिंग, और ये कैसे करूँ, तो आई डोंट नो मैं कैसी होती सेट पर। बट मैं बहुत रिलैक्स होती हूँ, लाइक आई नो कि अच्छा ब्रेक टाइम हुआ था, अब वीडियो कॉल करूँ। ऐसा नहीं होता कि मुझे बार बार बीच में फ़ोन चेक करना होता है। सो आई थिंक थैंक्स टू माई हस्बैंड फॉर दैट। काम तो अच्छा काम होता है, चाहे वो मैं कहीं भी करूँ, आई फील यू नो, बट एनी प्लेटफॉर्म। बट डेफिनेटली आई थिंक आज के टाइम पे OTT सीरीज आर फैंटेस्टिक, एंड आई रियली होप समथिंग गुड हैपन्स। अभी तक तो कुछ नहीं आया मेरे आगे इंटरेस्टिंग, कुछ मिलेगा तो डेफिनेटली वाई नॉट। टिल देन आई एम वेरी हैप्पी डूइंग प्रीति, आई एम लविंग हर। आई थिंक फॉर मी what is more important is the story. I honestly get sold on the story, and then comes my part ki okay, is this challenging enough to keep me pepped up to come on shoot every day. So I think this one is that, so I sleep peacefully. Aapko maze mein dekhna chahiye, puri family ye show dekh sakti hai, aur bade beautiful characters hain hamare show mein, so please watch it. I think there's a lot of entertainment. और एज गैप जो है ये कैरेक्टर्स के बीच में इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द शो, इट इज नॉट द शो।
16: बहुत बहुत सारी बहुत सारा हंगामा है, बहुत बहुत पूरे दिल से बनाया है, दिल दोस्ती हंगामा।
13: आई थिंक इट्स वेरी रिलेटेबल आल्सो, जब आप जो देखेंगे इट्स वेरी रिलेटेबल, ऑल द कैरेक्टर्स आर वेरी रिलेटेबल।

0: ये प्रीति यहाँ क्या कर रही है? अमित,
1: मैडम एक मिनट। गौरव सर केबिन में नहीं है।
2: पर अभी अभी तो आपने कहा ना कि वो केबिन में है।
1: मैम कुछ कंफ्यूजन हो गया था। गौरव सर इस वाले केबिन में नहीं है, दूसरे ऑफिस के दूसरे केबिन में है मैडम, ये कहना चाह रहा था मैं।
2: अच्छा।

भाई ये थे लॉन्च के नज़ारे, जहाँ पर फोटोशूट हुआ, डांस हुआ और लगा एंटरटेनमेंट का फुल ऑन तड़का। साथ ही आपने जाना कि इस नए शो में क्या कुछ खास होने वाला है। तो आप सब भी हो जाइए तैयार, शायद यही है प्यार देखने के लिए, क्योंकि इसमें है अनोखी लव स्टोरी। आगे आगे चलकर पता चलेगा कैसे ये प्यार परवान चढ़ता है और इस प्यार में क्या क्या ट्विस्ट आते हैं।

0: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में घर में बवाल मचा है। जहां एक तरफ घर वालों के सवालों से घिरी है मायरा, तो वहीं इस बार अरमान ने दिया मायरा का साथ। और ये देख मायरा भी हैरान है, आखिर क्यों दिया अरमान ने मायरा का साथ, चलिए देखते हैं।
2: मायरा की बगावत से परेशान अभीरा,
3: बाप के होते बेटी कभी अकेली नहीं होती, मैं इसके साथ
2: जाऊं। अरमान ने दिया मायरा का साथ। फिर से शुरू होंगी पापा और बेटी के बीच गलत फहमियां। स्टारप्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों अभीरा बेहद परेशान है। ऐसे में विद्या उसे समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभीरा उसे अपनी बेटी पर गुस्सा आ रहा है। इसी बीच वहां पर मायरा भी आती है, जो उनकी बातें सुन लेती है कि तभी वहां पर पहुंच जाता है क्रिश और अपना मोबाइल देखकर न्यूज पढ़कर सभी को बताता है कि कबीर का एक्सीडेंट हो गया है। बस फिर क्या, ये बात सुनते ही मायरा के होश उड़ गए और वो इन सबकी कसूरवार अपने आप को ठहराने लगी। इतना ही नहीं, उसने तो फैसला ले लिया है कि अब वो अपने कबीर से मिलने जरूर जाएगी। ऐसे में पीछे से आकर अभीरा उसे रोक लेती है और मायरा को लगता है कि उसके पापा ने रोका है, लेकिन जैसे ही मायरा पलटती है तो अपने सामने माँ को पाती है, जो उसे अस्पताल जाने से रोक रही है।
4: आपने देखा ही है, कुछ समय से क्रिश जो है वो अरमान और अबीरा के खिलाफ हो गया और वो एक तरह से बदला निकालना चाहता है, बिकॉज तानिया के सामने अरमान ने उसे खरी खोटी सुना दी थी और उस तानिया को ये बता दिया था कि ये एक्चुअली मूव ऑन नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए, क्योंकि तुम मूव ऑन हो रही हो, तुम आगे जाके शादी कर रही हो, तो ये सिर्फ बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो यहाँ पर क्रिश ठान लेता है कि मैं इनसे बदला लूँगा और वो ज़रिया लेता है मायरा का। अब वो मायरा को उल्टी पट्टी सुनाता है, सिखाता है। और यहाँ पर जैसा आपने सीन में देखा था कि सुबह मायरा जो है वो खोई हुई सी है, हम लोग दुखी हैं कि अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, चीज़ें कैसी होंगी। और यहीं मायरा जो है उसे, क्रिश जो है उसे बोलता है कि कबीर का एक्सीडेंट हो गया, जब वो विसर्जन के बाद जा रहा था घर और उसका एक्सीडेंट हो गया। तो मायरू अपने आप को ब्लेम करती है और वो इसलिए करती है क्योंकि मायरू ने ही उसे बोला था कि आप तुम यहाँ से जाओ, और उसे बोला था कि मेरे पेरेंट्स से कोई बदतमीजी से बात नहीं कर सकता, तुम जाओ यहाँ से बस, और थोड़ा सा रूड हुई थी उसके साथ। तो इसलिए उसको लगता है कि मैंने, मेरी वजह से मैंने उसको थोड़ा दुखी कर दिया, मैंने उसका फोकस यू नो इधर उधर कर दिया, इसीलिए उसका एक्सीडेंट हो गया यहाँ से जाने के बाद। तो वो इसी बात पर दुखी है।
2: वही यहाँ तो माँ और बेटी के बीच बहसबाजी बढ़ती जा रही है। ये बहसबाजी झगड़े में तब्दील ना हो, वहाँ पर आ जाता है अरमान, जो अभीरा का हाथ मायरा के हाथ से हटाता है। ये देख अभीरा भी हैरान हो रही है और साथ ही साथ मायरा भी हैरान है।
5: मैं इसकी भलाई का सोच कैसे रोक रही हूँ?
3: मैं भी इसकी भलाई का उसके हाथ पांव कांप रहे हैं। ये अगर अभी हॉस्पिटल ले गई तो बड़ा सोच सोच के अपनी तबीयत खराब कर लेगी। अगर रुक गई तो खिड़की से कूद के जाएगी और चोट लगा लेगी। इसलिए कबीर के पास से जाना।
0: हाँ, दबाने से इसके पीछे पड़ जाएगी। ये अकेली
3: बाप के होते बेटी कभी अकेली नहीं होती। मैं इसके साथ जाऊंगा।
4: मीरा शॉक्ड हो जाती है कि, और हम सब शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा क्यों कर रही हो, तो क्यों कर रहा है। तो अरमान बोलता है कि वो तो वैसे भी दुखी है ना, अभी हम उसे रोक भी देंगे तो क्या होगा, वो तो चली जाएगी, वो खिड़की से कूद के चली जाएगी, भाग जाएगी चुपके से और हमें पता भी नहीं चलेगा, तो बेहतर यही कि मैं उसको लेके जाऊँ और मैं जाऊँगा उसके साथ। और यहाँ पर विद्या को थोड़ा ठीक लगता है ये, बिकॉज विद्या हमेशा से इस विचार में है, इस सोच में है कि अगर हमें बच्चों से कुछ बातें करनी है या बच्चों को समझाना है तो उसे हमें सही तरीके से और प्यार से बात करके समझाना चाहिए, ना कि उनको डांट कर, उन पर झड़प कर, उन पर गुस्सा दिखा कर। बिकॉज अगर हम उन पर गुस्सा दिखाएंगे, खासतौर से जो उम्र मायरा की है अभी 18 साल की, बहुत नाजुक उम्र होती है, तो वो कोई भी कदम उठा सकती है और ऐसा कदम ना उठा ले किससे जिससे हम सबको पछतावा हो, पूरे पोद्दार फैमिली को। तो ये था सीन बेसिकली।
2: अब अरमान खुद अपनी बेटी को अस्पताल ले जा रहा है, ऐसे में ये देखकर अभीरा भी हैरान है और साथ ही साथ मायरा खुद हैरान है, क्योंकि उसके पापा हमेशा उन दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन अरमान सिर्फ यही चाहता है कि उसकी बेटी कबीर से मिल सके, उसे देख सके, और होता भी वैसा ही है। मायरा तो कबीर को देखने के लिए

0: नहीं जानती कि इस हादसे से अरमान खुद अनजान है। खैर, अरमान तो पूरी कोशिश कर रहा है अपनी बेटी को समझाने की, इसलिए देखिए कैसे वो रेस्टोरेंट में बैठकर उसे समझाने की पूरी जी तोड़ कोशिश कर रहा है। लेकिन मायरा उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ नाराजगी है। देखना होगा कि पापा बेटी की नाराजगी और कितनी हद तक चलेगी। मुंबई से कैमरामैन अजय उरेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: सीरियल तुम देना साथ मेरा में रक्षित ने दिया अपराजिता को सरप्राइज, लेकिन ये सरप्राइज पड़ गया दोनों पर भारी और इनके पीछे पड़ गई पुलिस। ऐसे में कैसे शुरू हुआ दोनों के बीच ट्रक वाला रोमांस, चलिए देखते हैं।
2: अपराजिता के लिए रक्षित का सरप्राइज। अपराजिता और रक्षित फंसे इस होटल में।
3: जो हो रहा है वो होगा नहीं, और जो होगा वो होना नहीं चाहिए।
4: मतलब
3: पुलिस आ रही है।
2: शुरू हुआ पुलिसिया ड्रामा।
5: ये रुक, आप किधर हैं? रुक।
4: पुलिस
3: के तुम
2: प्लस के सीरियल ओ हम नफा तुम देना साथ मेरा में आज अपराजिता और रक्षित पहुंचे हैं इस होटल में, क्योंकि आज रक्षित ने अपराजिता को ये प्यारा रोमांटिक सरप्राइज जो दिया है। लेकिन लगता है कि अपराजिता को ये होटल कुछ पसंद नहीं आया है।
4: तो किसी सीक्रेट फिल्म का सेटअप लग रहा है।
3: सिर्फ सीक्रेट लग गया और कुछ नहीं। ये चद्दर बदलू होटल,
4: वही तो मैं कह रही हूँ, 5 बार बदलवाऊंगी चद्दर। चोर कहीं के
3: तुम चलो यार।
4: अरे क्या चलो यहाँ से? 5,000 कमरे के, 3,000 डेकोरेशन के, जब तक वसूल नहीं करूँगी कहीं नहीं जाऊंगी। शैम्पू मॉइस्चराइजर सब फल रखा है कहती हूँ।
3: पानी
4: पानी पानी पानी ला तू पानी।
2: की नोक झोक चल ही रही होती है कि आ गया रोमांटिक पल जहां दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन इससे पहले कि इनका प्यार परवान चढ़ता आ गई पुलिस। जी हां, इस होटल में पुलिस की रेड पड़ चुकी है, जिससे बचते फिर रहे हैं रक्षित और अपराजिता और बाकी के सभी होटल वाले। देखिए कैसे पुलिस से छुप रहे हैं अपराजिता और रक्षित। भाई आज तो ये दोनों बुरे फंसे हैं।
3: यहाँ पर तो तुम्हारे अरमान पूरे करने के लिए आए थे ना, अब तो फुल वसूली होगी। 5 टाइम चादर बदलना चाहती थी ना तुम, तो 5 टाइम चादर बदलेंगे। इन गुलाब की पंखुड़िया का गुलाब चंद बनाएंगे, इन दो हंसों के जोड़े अमीन अजीब से जोड़े का ये काट देंगे। वो होगा इसका हमें बेसब्री से इंतजार है। लोकेशन डजंट मैटर, नवाके बंद करो और ये सोचो कि तुम मानती

0: क्या हुआ?
1: जो हो रहा है वो होगा नहीं, और जो होगा वो होना नहीं चाहिए।
0: मतलब
1: पुलिस आ रही है।
0: अरे आप मॉल्डीव्स में वापस आएगी? हम मॉल्डीव्स में ना।
1: अरे मॉल्डीव्स में नहीं है, हम चत्तर बदल होटल में हैं। रेड पड़ रही है होटल में।
0: तो हमें क्या?
1: हमें क्या?
0: हम तो शादीशुदा है। चलिए हम जाके बता देते कि हम पति पत्नी हैं।
1: सारे कमरों से जो जो निकलेंगे ना सब यही बोलते हैं कि हम पति पत्नी हैं। पता है उसके बाद क्या होता है?
0: क्या होता है?
1: डंडे पड़ते हैं।
0: किसे?
1: अरे किसे नहीं है, पूछो कहाँ।
0: कहाँ नहीं जाना मुझे। अब हम क्या करेंगे?
1: वही जो बाकी सब लोग करेंगे।
0: क्या?
1: भागो।
0: ये
1: तुम
0: चलिए चलिए।
1: क्या कर रही हो? नेशनल अवार्ड लेने जा रही हो?
0: नहीं।
1: मुंह ढको ना। पूरे दिन के पैसे दिए थे ना?
0: हाँ।
1: आधा घंटा यूज किया।
0: हाँ?
1: चलो और यूज करते हैं।
0: बच गए।
1: क्या बच गए? मर गए। मतलब ये कि पूरे इंदौर में तुम्हें यही होटल मिला था?
0: हाँ, दिल बच गए। और जब मुझे समझ आया मैं निकलना चाहती थी।

0: आपने रोका?
1: मैंने रोका, तुम रुके? बस तो तुम मेरी कोई बात मानती नहीं हो, आज ही बात मानेंगे।
0: मैं बात भी नहीं मानती।
1: नहीं
0: तो मैं आपको सरप्राइज करने के लिए यहाँ लेकर आई और आपको कदर नहीं। मेरी कट्टी
1: मेरी डबल कट्टी।
0: डबल कट्टी
1: कौन रुका? बेड के ऊपर होने के बदले हम बेड के नीचे हैं।
2: सर आपने सही कहा था।
1: उसका सियारी
0: आप पति पत्नी है।
2: जैसे आप लोग युद्ध महायुद्ध कर रहे हैं वैसे असली पति पत्नी ही करते हैं सर।
3: भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो?
1: घंटे के हिसाब से आप भी आते हो क्या?
0: सर मैं तो है ही, लेकिन आप तो यहाँ क्या कर रहे हैं सर? अरे आपकी तो शादी हो गई है, फिर किस बात के लिए छुपना सर?
1: सर घर का पलंग टूट गया है क्या?
2: टूट गया?
1: कुछ हुआ भी नहीं। बोलो
0: सो सैड सर, कुछ नहीं हुआ, पलंग तोड़ रहा है, काम नहीं आए। ओहो सुसाइड।
1: एक और बार सुसाइड कहा ना तो सुसाइड करने पर मजबूर कर दूंगा तुझे।
4: तो इसी के लिए यहाँ पे आए? इससे पहले कुछ करते, उससे पहले रेंज पड़ गई। कुछ लोगों की किस्मत में सर बहुत खराब होती है, जैसे आप दोनों को।
5: कहाँ भाग रहे हो?
1: मैम हम भाग नहीं रहे थे, हम तो चल के जा रहे।
5: तो चलो।
1: चलिए मैम। नहीं नहीं चल सकते ना, हम शादी शुदा है मैम।
5: हाँ, पति है मेरे।
1: कम पत्नी है मेरी। मंगलसूत्र दिखाओ।
5: ये
1: हमने घंटे के हिसाब से रूम नहीं लिया, पूरे दिन की बुकिंग की है। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं।
5: चलो शादी के फेरे मैं करवा देती हूँ। चलो
6: हमने करनी है।
1: चलो चलो, चलो, चलो बता रहा हूँ सर, हम वैसे नहीं है। अरे जाने दीजिए ना, कुछ किया ही नहीं मैंने। अरे नमस्ते गोपाल जी।
7: भाई जैसे तैसे बचते बचाते ये पुलिस से भाग तो गए हैं और आ पहुंचे हैं इस ट्रक में। वैसे यहाँ भी इन्होंने रोमांस का मौका नहीं छोड़ा, शुरू हो गया इनका ट्रक वाला रोमांस।

0: दिल में फैक्ट्री में फंस गया है संजय, जहां उसकी जान खतरे में है, और इसके पीछे कविता की चाल है। हालांकि वृंदा कविता का सच जानती है, अब ऐसे में वृंदा कैसे करेगी कविता का पर्दाफाश? चलिए देखते हैं।
1: फैक्ट्री में एक टाइम मशीन में शॉर्ट सर्किट हुआ, एक वर्कर को करंट लगाया और पता नहीं कैसे पूरी फैक्ट्री में जहरीली गैस फैल गई।
2: फैक्ट्री में फंसा संजय। घर वाले हुए परेशान। हुआ संजय की माँ और वृंदा का बुरा हाल। जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में आज आ गया है बड़ा ट्विस्ट, जहाँ घर वाले संजय को लेकर काफी परेशान हो रहे हैं। असल में संजय कहीं मिल नहीं रहा है। ऐसे में घर वालों को पता चलता है कि फैक्ट्री में जहरीली गैस फैल गई है और संजय भी वहीं पर है। इस बात का पता चलते ही देखिए कैसे संजय की माँ, वृंदा और घर वाले काफी परेशान हो गए हैं।
1: अरे तो सब लोग सेफ है कि नहीं? ओके ओके ओके, लेट मी सी व्हाट इट इज। या आई गेट दैट। फैक्ट्री में एक टाइम मशीन में शॉर्ट सर्किट हुआ, एक वर्कर को करंट लगाया और पता नहीं कैसे पूरी फैक्ट्री में जहरीली गैस फैल गई। गॉड,
2: वहीं दूसरी तरफ बाबूजी भी नीरव को ढूंढ रहे हैं, जो घर से नदारद है। असल में ये सारा प्लान कविता और गौतम का है, जिसने नीरव को फंसाया है और संजय को भी, ताकि एमडी कविता बन जाए। तभी तो देखिए कैसे सिचुएशन को संभालने में लगी हुई है कविता।
3: नीरव कहाँ? नीरव,
1: पापा सो रहे हैं।
3: सो रहे हैं? अरे यहाँ हम सब लोग परेशान हैं, उसे नींद आ रही है, जाओ बुला के लाओ उसको।
1: पापा प्लीज रहने दीजिए। तू क्यों घबरा रही है? मैं जाके बुलाती हूँ उसे। नहीं, मैं जा रही हूँ। जाओ
3: तो जाओ।
1: और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, गैस लीक हो गया है, पॉइजनस गैस है पूरी फैक्ट्री में, एक वर्कर।
3: ओके बस करो।
1: पापा कोशिश कीजिए ना। महा माँ टेंशन मत लो, मैं भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ।
4: एक्चुअली चक्कर ये है कि नीरव ने कुछ मशीन के, मतलब जो भी है उसमें पैसे का गफला किया है। उस चक्कर में एक वर्कर इंजर्ड हो गया है और फैक्ट्री में पूरा जहरीला गैस फैल गया है। तो मुझे जब फ़ोन आता है गौतम का, तो वो मुझे पता चलता है कि अच्छा, तो ये बेसिकली हमारा ही प्लान है जिसमें हमें नीरव को फंसाना है। और एक बार अगर किसी को कुछ होता है तो एमडी के ऊपर आता है, और एमडी संजू है। तो बस मैं चाह रही हूँ कि ये जो भी है मामला, ये इस तरीके से हो जाए कि मैं कंपनी की एमडी बन जाऊँ।
2: खैर, संजय बच पाएगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इससे पहले भी डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार जब बैठा था, तब वृंदा परेशान नजर आ रही थी। ऐसे में बाबूजी उसे पूछते हैं कि उसकी परेशानी क्या है, लेकिन वृंदा बताती नहीं। भाई असल परेशानी तो ये है कि वृंदा ने कविता और गौतम को एक साथ देख लिया है, और कहीं ना कहीं उसे पता है कि कविता षड्यंत्र रच रही है।
3: लेकिन तुम्हारी शक्ल तो कोई दूसरी खराब नहीं। क्या अगर तुम नहीं बताओगी क्या परेशानी है तो ठीक है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। जब तक तुम बताओगी नहीं, मैं सच में खाना नहीं खाऊंगा।
2: लेकिन वृंदा बहाना कर बता देती है कि विसर्जन में कविता तबीयत खराब होने की वजह से नहीं आई और राज खुलते खुलते रह जाता है।
3: कविता इधर आओ बेटा। तुम्हें क्या लगा था हमें पता नहीं चलेगा?
1: क्या हुआ पापा?
3: क्या हुआ? अरे तुम बताओ क्या हुआ? ऐसी क्या वजह थी कि तुम्हें ये सारी बातें हमसे छिपानी पड़ी, जिसने ये बता दिया है कि तुम गणपति विसर्जन के लिए क्यों नहीं है?
1: पापा, वो
3: अरे किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है। हाँ, किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है। अगर तबीयत खराब हो रही थी तो अपनी माँ को बताती।
1: कम से कम मुझे बता रही थी। ये क्या बात है? हाँ, सब सही है। कैसे बताती है? आप लोग विसर्जन में थे ना? कुछ ज्यादा नहीं हुआ था माँ, बस अचानक से चक्कर आ गए थे, पर ठीक हूँ मैं अब। ये परफेक्टली फैशन। अच्छा चल।
4: इतने सालों से, मतलब पता नहीं कितने सालों से, जब मैंने छुपा के रखा था कि मेरी शादी हो चुकी है, बट उस वृंदा ने, ऑफ कोर्स मैं उसे अम्मू नाम से जानती हूँ, अम्मू ने मुझे और गौतम को साथ में देख लिया है, तो बस अब मेरे लिए वो बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है और उसके लिए मैं बहुत बड़ा खतरा बन चुकी हूँ जी, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बुलाया है और इस तरह से मेरी पूरी फैमिली मुझे देख रही है, तो वहाँ पे अम्मू को देख के मुझे ऐसा लगता है कि इसने मेरी फैमिली को सब कुछ बता दिया है, जो इतने सालों का जो सीक्रेट है वो आउट हो गया है गौतम से रिलेटेड, तो वही है और उसी में मैं बहुत डरी हुई हूँ, बट लकीली मुझे पता चलता है कि अम्मू ने बताया है कि मैं बीमार थी इसलिए मैं विसर्जन में नहीं आई थी, तो कहीं ना कहीं मुझे ये अब यकीन होना शुरू हुआ है कि अम्मू इतनी जल्दी नहीं बता रही है, बट उसे डराने का मौका नहीं छोड़ रही हूँ मैं, ताकि वो किसी को बताए भी नहीं।
2: लेकिन कहीं ना कहीं कविता को पता है कि वृंदा उसका सच जानती है, ऐसे में दोनों में लुका छिपी चल रही है। अब देखना होगा इस लुका छिपी के चलते कहानी में कौन कौन से नए मोड़ आने वाले हैं। मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
0: आपके दिन को खास बनाने और चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हम हाजिर हैं कुछ बेहद रॉकिंग और शॉकिंग खबरों के साथ, तो चलिए आपको दिखाते हैं मनोरंजन की दुनिया के अलग अलग रंग और देखते हैं क्या है आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें।
5: वालों, आसपास है आपके वीकली राशन के आइटम्स, जो भी आइटम्स कार्य के अंत में डिलीवर होंगे वो राशन में से।
2: पेश है बॉलीवुड, ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बात करते हैं बिग बॉस की। वही होने वाला है बिग बॉस में नया टास्क, जो कि होगा कैप्टेंसी टास्क, जिसमें शुरू हो जाएगा नया बवाल। देख लीजिए इसकी खास झलक।
6: और भी 36 लोग हैं यहाँ पर, पता नहीं कौन सी दुश्मनी निभाता रहता है आके मुझसे।
2: रवि किशन जल्द नजर आएंगे हिंदी फिल्म में बतौर सोलो लीड। महावीर जैन लेकर आ रहे हैं डिवोशनल ड्रामा, जिसमें रवि किशन नजर आने वाले हैं।

सामने आया है सनी कौशल का नया म्यूजिक वीडियो जिसका नाम है शानदार। ऐसे में विकी कौशल ने अपने भाई के म्यूजिक वीडियो की ये झलक सोशल मीडिया पर पोस्ट की है उनके बर्थडे के मौके पर।

0: शहनाई
1: जी टीवी लेकर आ रहा है नया शो जिसका नाम है शुभ शगुन शहनाइयां। सामने आया है इसका पोस्टर।
0: शहनाई मुहूर्त पर ही बजेगी नया धारावाहिक शुभ शगुन शहनाइयां, बहुत जल्द जी टीवी पर।
1: मिस्टर फैजू जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। ऐसे में युविका चौधरी ने शेयर किया है सोशल मीडिया पर इनका वेडिंग कार्ड जिसमें शादी की डेट आ गई है। बहन की शादी 18 अक्टूबर को होगी और रिसेप्शन 19 अक्टूबर को।

0: show you edges of my house.
1: Oh my god! Ye to Faizu ki shaadi finally ho rahi hai. Oh my god!
0: Faizu West Tanya.
1: Oh my, I can't believe this, यार. हम लोग 50 अपना जो शो था
0: रियलिटी शो हम वहाँ पे बहुत सारी बातें करते थे और वहाँ उसने बोला था कि मैं बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ. तब मुझे लगा, मैंने कहा इट्स अ नाइस थॉट बट आई डिडंट नो कि इतनी जल्दी. आई एम सो हैप्पी एंड आई टोल्ड हिम कि तेरी शादी में हम बहुत मजे करेंगे. हाउ स्वीट Faizu, अमेजिंग न्यूज. बाप रे, वाओ. अब दोस्तों की शादी हो और शादी में मस्ती ना हो. ये कहाँ होने वाली, मैं आपको एड्रेस दिखा सकती हूँ. ऑलराइट, 19th. व्हाट? नो नो, 19th को मेरी बेटी का बर्थडे है.
2: दंगल टीवी के शो इश्क जुनूनी में नेगेटिव किरदार में एंट्री होने वाली है गुम है किसी के प्यार में फेम एक्ट्रेस नेहा भावसार की.

0: आंटी, पहचाना?
1: देख लीजिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये नया प्रोमो, जहां पर पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे गोकुल धाम वासी और शुरू होगा नया ड्रामा।
0: हेलो आंटी, पहचाना?
2: आंटी
0: सोनू,

0: कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर में नहीं होती, वो हमारे दिल और दिमाग में रह जाती हैं।
1: राजकुमार राव जल्द नजर आने वाले हैं उनकी आने वाली नई फिल्म प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निगम में, जिसका ट्रेलर सामने आया है। साथ ही राजकुमार राव का इस पर क्या कहना है, आइए जानते हैं।
0: कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर में नहीं होती, वो हमारे दिल और दिमाग में रह जाती हैं। ऐसी एक तारीख है 26/11, वो तारीख जो हमें हमेशा याद रहेगी। प्रहार द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निगम।
2: के लिए खत्म होता है सास बहू और बेटियां का सफर। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और इसी तरह जारी रहेगा मनोरंजन का सिलसिला। तब तक के लिए नमस्कार।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
6: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
7: दिल्ली वालों को गृह मंत्री अमित शाह ने दी सौगात, बारामूला के नए एलिवेटेड रोड का हुआ शुभारंभ, अब मयूर विहार से एम्स तक फ्री सिग्नल कनेक्टिविटी। भारत को एशियन गेम्स में 5वां गोल्ड, ट्रैप शूटिंग में सोना जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी नीरू, भारत के पास अब तक कुल 48 मेडल। भारत की रक्षा शक्ति में होगा इजाफा, साल के अंत तक आएंगे तेजस MK-1A फाइटर जेट के 12 और इंजन, HAL के पास 27 एयरफ्रेम तैयार। उत्तर प्रदेश के भदोही में होगा इंडियन कारपेट एक्सपो, 65 देशों के खरीदार होंगे इसमें शामिल, ब्रिक्स देशों के लिए विशेष इंतजाम। अयोध्या की सुरक्षा भेद्य बनाने की तैयारी, राम मंदिर से हनुमानगढ़ी तक बढ़ाई गई NSG की जिम्मेदारी, प्रमुख धार्मिक स्थलों का भी किया गया निरीक्षण। पितृपक्ष में बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल में श्रद्धालुओं की भीड़, पितरों की मोक्ष कामना के लिए कर रहे तर्पण, पिंडदान समेत धार्मिक अनुष्ठान।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
7: एशियन गेम्स में नीरू ढांडा ने रचा इतिहास, वुमेन्स ट्रैप स्पर्धा में भारत के लिए जीता गोल्ड, नीरू ने फाइनल में 28 अंक हासिल कर बनाने एशियाई रिकॉर्ड, मौजूदा एशियन गेम्स में भारत का 5वां गोल्ड मेडल। इससे पहले भारत की बेटियों ने ही आज दिलाई शानदार शुरुआत, महिला ट्रैप टीम इवेंट में जीता सिल्वर। भारत के नीरू आश्रमा अहलावत और मनीषा कीर की टीम ने दिलाया मेडल, 328 अंक हासिल किए। नरेंद्र बेरवाल ने मुक्केबाज में जीता कांस्य पदक, पुरुषों के 90 प्लस किलोग्राम वर्ग में दिलाया मेडल। FIDE एक्सेलेंस अवार्ड में बेस्ट चेस प्लेयर फीमेल चुने गए भारतीय चेस ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख, एक साल में उनके खिताबी प्रदर्शन को देखते हुए मिला उन्हें सम्मान। भारत ने लगातार तीसरी बार नोना ग्रैंडी शवली ट्रॉफी अपने नाम की, इससे पहले भारतीय टीम ने साल 2022 में चेन्नई और 2024 में बुडापेस्ट में हुए चेस ओलंपियाड में ये ट्रॉफी जीती थी। ICC 1 अक्टूबर को जारी करेगा वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा टूर्नामेंट। वर्ल्ड कप में पहली बार 14 टीमें 57 मैचों में लेंगी हिस्सा, इस टूर्नामेंट में 12 वेन्यू भी शामिल। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील के खिलाफ फीफा फ्रेंडली मैच खेलने के लिए कोलकाता पहुंची भारतीय टीम, 3 अक्टूबर को सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा यह महामुकाबला। बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर का तीसरा फेज आज से शुरू, गृहमंत्री अमित शाह के हाथों उसका उद्घाटन। 15 मिनट में तय होगा मयूर विहार से एम्स तक का सफर, दिल्ली के सड़क नेटवर्क और यातायात व्यवस्था को मिली नई रफ्तार। इस प्रोजेक्ट से पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच सिग्नल फ्री होगी कनेक्टिविटी, ट्रैफिक जाम में भी आई भारी कमी। अस्पतालों में लंबी लाइन से मिलेगी छुट्टी, यूपी ट्रेड शो में प्रदर्शित DOD मशीन से 10 मिनट में होंगे 75 से ज्यादा बॉडी टेस्ट। राजकीय आयुर्वेद संस्थान के स्टॉल पर DOD यानी डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी मशीन के गए पेश, वजन BP शुगर से लेकर 25 से ज्यादा लंग फंक्शन टेस्ट करती है मशीन। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को नए स्तर पर ले जाने की तैयारियां शुरू, बढ़ाई जा रही है NSD की भूमिका। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था का आकलन कर नए सुरक्षा प्लान के लिए तैयारी कर रही है NSD, कई प्रमुख स्थानों का कर रही है निरीक्षण। दीपोत्सव 2026 में अयोध्या में दिव्यता और भव्यता की बिखरेगी चमक, रामनगरी में 30 लाख दीपों से मनाया जाएगा दीपोत्सव। पितृपक्ष में बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल में श्रद्धालुओं की भीड़, पितरों के मोक्ष के कामना के लिए कर रहे हैं तर्पण। देश के अलग अलग हिस्सों से अपने पितरों और पूर्वजों के मोक्ष की कामना के लिए बद्रीनाथ पहुंच रहे श्रद्धालु, पिंडदान समेत धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आस्था का मेला, मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में अंगारकी संकष्टी चतुर्थी की दिखी रौनक। मंगलवार और अंगारकी चतुर्थी के दुर्लभ संयोग पर सुबह से ही उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, भक्ति में माहौल में डूबा पूरा मंदिर परिसर। रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया पूरा मंदिर परिसर, CCTV कैमरे, मेटल डिटेक्टर और स्कैनर के जरिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत डगरुशेठ हलवाई गणपति मंदिर में भी बप्पा का भव्य श्रृंगार, चारों ओर गणपति बप्पा मोरया। सुबह सवेरे बप्पा की मंगला आरती में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, लिया बप्पा का आशीर्वाद। जालना में राजेश्वर गणपति मंदिर में अंगार की संकष्टी चतुर्थी पर आस्था का उमड़ा जनसलाम, उमड़ी श्रद्धालु की भारी भीड़। गणपति मंदिर के गर्भगृह में फूलों से की गई आकर्षक सजावट, रात से ही दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें। महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से एक संपूर्ण शक्तिपीठ के रूप में मशहूर है राजूर स्थित राजेश्वर गणपति देवस्थानम, श्रद्धालु की आस्था का प्रमुख केंद्र। रंग बिरंगी रोशनी से की गई पूरे मंदिर परिसर की सजावट, गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया के जयघोष से गूंज उठा पूरा मंदिर परिसर। मंगलवार के दिन पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को कहा जाता है अंगार की संकष्टी चतुर्थी, भगवान गणेश को समर्पित और सभी संकष्टी चतुर्थी व्रतों में सबसे उत्तम मानी जाती है। अंबाजी शक्ति में सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार शुद्धिकरण समारोह का हुआ आयोजन, भादरवी पूनम मेले के समापन के बाद आयोजित होता है शुद्धिकरण समारोह। मां के गर्भगृह से लेकर उनके दिव्य आभूषणों और पूरे मंदिर परिसर के होते हैं गहन सफाई, साफ सफाई के इस विशेष अनुष्ठान को दिया गया है शुद्धिकरण समारोह का नाम। अंबाजी मंदिर के कर्मचारियों पुजारी समेत सोनी परिवार और गांव के लोग लेते हैं इसमें हिस्सा, 5 पीढ़ियों से शुद्धिकरण विधि में हिस्सा ले रहे हैं अहमदाबाद के सोनी परिवार। इस समारोह के दौरान भजन कीर्तन का भी हुआ आयोजन, सोनी परिवार द्वारा माता जी को सोने की एक छोटी प्रतिकृति भी दान में भेंट की गई। भादरवी मेले के दौरान देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के दर्शन करने के बाद मंदिर की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए हर साल किया जाता है ये विशेष अनुष्ठान। पूरी श्रद्धा से भक्त करते हैं सफाई। पुणे में दिखे आस्था और संस्कृति के रंग, तुलजा भवानी के पलंग उत्सव का हुआ भव्य आयोजन। ग्रामीणों ने बड़े ही उत्साह और भक्तिभाव के साथ पलंग का स्वागत किया। जगह जगह पारंपरिक वाद्यों की गूंज के बीच गेहूं के आटे से बनाए गए प्रसाद का किया गया वितरण। करीब 12वीं शताब्दी में राजा रामदेव राय के काल से जारी है घोड़गांव से तुलजापुर भेजे जाने वाले पलंग की यह परंपरा। श्रद्धालु पूरे रास्ते पलंग को अपने कंधे पर उठाकर तुलजापुर तक लेके जाते हैं। मान्यता के अनुसार विजयादशमी से पूजागिरी पूर्णिमा तक मां तुलजा भवानी की मुख्य मूर्ति इसी पलंग पर विश्राम करती है। पिछले वर्ष के पलंग को होम में किया जाता है विसर्जित। इस दौरान प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती पाठ, भजन, महाआरती, पारंपरिक अनुष्ठान किए जाते हैं। आयोजित भक्तगण पूरी श्रद्धा के साथ होते इसमें सम्मिलित।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। ये है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: दिल्ली वालों को गृह मंत्री अमित शाह ने दी सौगात, बारापुला के नए एलिवेटेड रोड का हुआ शुभारंभ, मयूर विहार से एम्स तक फ्री सिग्नल कनेक्टिविटी। भारत को एशियन गेम्स में 5वां गोल्ड, ट्रैप शूटिंग में सोना जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी नीरू, भारत के पास अब तक कुल 48 मेडल्स। भारत की रक्षा शक्ति में होगा इजाफा, साल के अंत तक आएंगे तेजस एम के 1A फाइटर जेट के 12 और इंजन, एचएएल के पास 27 एयरफ्रेम तैयार। उत्तर प्रदेश के भदोही में होगा इंडिया कारपेट एक्सपो, 65 देशों के खरीदार होंगे इसमें शामिल, ब्रिक्स देशों के लिए विशेष इंतजाम। अयोध्या की सुरक्षा अभेद बनाने की तैयारी, राम मंदिर से हनुमानगढ़ी तक बढ़ाई गई एनएसजी की जिम्मेदारी, प्रमुख धार्मिक स्थलों का भी किया गया निरीक्षण। पितृपक्ष में बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल में श्रद्धालुओं की भीड़, पितरों के मोक्ष कामना के लिए कर रहे तर्पण, पिंडदान समेत धार्मिक अनुष्ठान।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। आज बताएंगे आपको पितृपक्ष के महाप्रयोगों के बारे में। पितृपक्ष चल रहा है, पितरों को श्राद्ध और तर्पण करके लोग पूर्वजों से खुशियों का आशीर्वाद पाते हैं और पितृगण भी पितृपक्ष में अपने लोगों पर कृपा बरसाते हैं। माना जाता है इन दिनों किसी न किसी जीव के रूप में पितृ धरती पर आते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं, इसीलिए पशु पक्षियों की सेवा करना बेहद जरूरी माना जाता है। हम आपको इसी से जुड़ी जानकारी आज के कार्यक्रम में देने जा रहे हैं। देखिए कैसे पशु पक्षियों की सेवा करके आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और पितृपक्ष में क्या है पंच बलि का महत्व, आइए आपको बताते हैं।

0: अद्भुत है पितरों की कृपा दिलाने वाली पंचबली। पूर्वजों को संतुष्टि दिलाने वाली रीत है सबसे भली। पितृपक्ष में पशु पक्षी भी बन जाते हैं तारणहार। पंचबलि से अर्पण पितरों का विधिवत करें सत्कार। धर्मग्रंथ कहते हैं कि पंचबलि कर्म करने से पूर्वज तृप्त होकर अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है कि ये परंपरा प्रकृति का आभार प्रकट करने के साथ ही जीव जंतुओं के प्रति करुणा और पंच तत्वों के प्रति आभार जताने का मार्ग है, क्योंकि पितृपक्ष में आप पर अपना आशीर्वाद बरसाने आ गए हैं आपके पूर्वज। जानकार बताते हैं कि महालय पक्ष के 15 दिनों में आप विधिवत पूर्वजों का सत्कार करते हैं तो इसे पूर्वज प्रसन्न होकर आपको वरदान देते हैं।
1: श्राद्ध पक्ष में पितरों की कृपा पाने के लिए नित्य पितरों का अनुष्ठान, उनका ध्यान, उनके लिए तर्पण, उनके लिए पिंड प्रदान, उनके लिए दान धर्म इत्यादि जब आप करेंगे, अन्नदान करना, गौ सेवा करना, नित्य तिलोदक तर्पण देना, पंचबलि निकालना, पशुओं की सेवा करना, ऐसे कार्य करेंगे, पितरों त्वरित प्रसन्न होकर के उनका कृपा पात्र बन जाएंगे।
0: कर्मकांड से जुड़े विशेषज्ञ मानते हैं कि पितरों की कृपा से हर काम बन जाता है, कुल का उद्धार हो जाता है, घर से कलह, गरीबी और गृह दोष का खात्मा हो जाता है। आज हम अपनी खास पेशकश में आपको बताने वाले हैं कि महालय पक्ष में क्यों किया जाता है पंचबलि का प्रयोग, कौन से हैं पंचबलि के 5 प्रतीक और इस महा उपाय से कैसे आप पर बरस सकती है पितरों की अनुकंपा। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पितृ धरती पर आकर हमें आशीर्वाद देते हैं। ये पितृ पशु पक्षियों के माध्यम से हमारे निकट आते हैं। जिन जीवों और पशु पक्षियों के माध्यम से पितृ आहार ग्रहण करते हैं वे हैं गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी। श्राद्ध के समय इनके लिए भी आहार का एक अंश निकाला जाता है, तभी श्राद्ध कर्म पूर्ण होता है। श्राद्ध करते समय पितरों को अर्पित करने वाले भोजन के 5 अंश निकाले जाते हैं, गाय, कुत्ता, चींटी।

0: के पितृपक्ष में हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं और परिवारजनों को खुशियों का वरदान देते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में कौआ, गाय, चींटियों आदि जीवों की सेवा करने का विधान है और इसके लिए दी जाती है पंचबलि। कर्मकांड के जानकार बताते हैं कि पितृपक्ष में पंचबलि की अद्भुत महिमा है। माना जाता है कि पितरों के नाम से अर्पित की जाने वाली ये सामग्री आपके जीवन में शुभता का संचार कर सकती है। माना जाता है कि पितृपक्ष में पंचबलि का संदेश जीवों के प्रति दया रखना भी है।
1: पितृपक्ष में कौवा, श्वान, गऊ को ग्रास देना, इन पर दया दिखाना, इनकी सेवा करना, पशुओं की मछलियों को कुछ आटा खिलाना इत्यादि शास्त्रीय परंपरा विधान है ये। ऐसा करने से पितृ संतुष्ट हो जाते हैं और धार्मिक कार्य में पितृ सेवा का ये काम करता है जब आप पशु पक्षियों की सेवा करते हैं।
0: मान्यता है कि पितरों के निमित्त 5 अलग अलग भोज्य सामग्री को भोग के रूप में समर्पित करने की परंपरा को पंचबलि कहते हैं। पंचबलि के साथ ही श्राद्ध कर्म पूर्ण माना जाता है। श्राद्ध में भोजन का अंश ग्रहण करने वाले इन 5 जीवों का विशेष महत्व होता है। चलिए आपको बताते हैं कि कौन से हैं वो 5 जीव और पंचबलि को समर्पित करने का क्या है विधान। चलिए ये भी बताते हैं।
1: जिनके पूर्वज पितृ नहीं हैं, वो अपने घर में नित्य जो भोजन पकवान शुद्ध भोजन बन रहे हैं, सात्विक भोजन बन रहे हैं, जिसमें तामसी कोई भी पदार्थ नहीं बन रहे हैं, उन भोजनों के 5 कटोरी में निकाल करके 5 जगह ये स्थान में गऊ को, कुत्ता को, कौवा को, चींटियों को, यम को रखने के लिए बतलाया गया कि उसे ले करके संकल्प बोल करके पंचबलि के आधारित में इस महालय पक्ष में नित्य पंचबलि करना ये 15 दिन तक, तो बहुत विशेष पितृ संतुष्ट हो जाते।
0: सबसे पहले भोजन की 3 आहुति कंडा जलाकर दी जाती है। श्राद्ध कर्म में भोजन के पूर्व 5 जगह पर अलग अलग भोजन का थोड़ा थोड़ा अंश निकाला जाता है। गाय, कुत्ता, चींटी और देवताओं के लिए पत्ते पर और कौवे के लिए भूमि पर अंश रखा जाता है। प्रार्थना की जाती है कि इनके माध्यम से हमारे पितर प्रसन्न हों। धर्म ग्रंथों में गाय को माता माना गया है। गाय के संपूर्ण स्वरूप में देवी देवताओं का वास माना जाता है। सनातन संस्कृति में गाय पूजनीय है। माना जाता है कि पितृपक्ष में केवल गाय की सेवा मात्र से ही पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन श्वान, कौवा, चींटी और देवों के निमित्त पंचबलि निकालने पर ही संपूर्ण विधान होता है।
1: गौ से पितरों का बहुत कनेक्टिंग है, बहुत ही उनका आपस में जुड़ाव है। इसलिए गौ सेवा, गौ को अन्न देना, गौ ग्रास खिलाना, गौ गौमूत्र, गोबर, गौमय इत्यादि का प्रयोग, श्राद्धीय परंपरा में इसका प्रयोग करना कि गौ सेवा से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रीय प्रमाण भी है और पितृदोष से भी गौ सेवा करने से छुटकारा मिलता है।
0: गाय को पृथ्वी तत्व और पितृ स्वरूप माना गया है। पितृपक्ष में गाय की सेवा से पितरों को मुक्ति मोक्ष मिलता है। गाय की सेवा करने से कुंडली के बृहस्पति और शुक्र मजबूत होने की मान्यता है। श्वान को जल तत्व और भैरव देव का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि श्वान को भोजन देने से यमराज की कृपा मिलती है, साथ ही आने वाले संकटों से अभय का वरदान मिलता है। धर्म ग्रंथों में कौवे को वायु तत्व, यमदूत और पितरों का रूप माना गया है। मान्यता है कौवे को भोजन देने से भोज्य सीधे पितर ग्रहण करते हैं। चींटियों को अग्नि तत्व का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि चींटियों को भोजन देने से राहु, केतु और शनि की शांति होती है। श्राद्ध कर्म में देवताओं की उपस्थिति और संतुष्टि अनिवार्य मानी गई है। देवताओं को अन्न अर्पित करने से एक साथ पूर्वजों और देव शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। कर्मकांड के विशेषज्ञ बताते हैं कि पितृपक्ष में जो भी अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करता है, उनका तर्पण करता है, पितृ उस पर कृपा बरसाते हैं, उसके दुखों को दूर कर देते हैं, विशेषकर दान पुण्य करना। इस दौरान गरीब निर्धन की यथाशक्ति मदद करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सुखद जीवन का आशीर्वाद देते हैं।
1: पितृपक्ष में दान का महत्व है, षोडश महादान, पंच महादान, अष्ट महादान, शय्यादान, प्रत्यक्ष गोदान।

0: दान, सुवर्ण दान, रजत दान, भूमि दान इत्यादि बतलाया गया है। पितृ संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारा पुत्र हमारे उद्धार के निमित्तिक ऐसे पुण्य तीर्थों में आकर के ये दान धर्म कर रहा है। जो पुण्य तीर्थ ना आ पाए, जैसे कहीं आकाशी प्रयाग इत्यादि नहीं जा पाए, तो अपने अपने स्थान में भी उचित रूप में ब्राह्मणों को, गरीबों में कुछ अन्नदान करे।
1: तो इस बार पितृपक्ष में कर लीजिए अपने पितरों को प्रसन्न, क्योंकि जब पितृ प्रसन्न होंगे तभी होगा आपका जीवन धन्य। आगे हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष की और किन वस्तुओं को श्राद्ध कर्म करते समय उपयोगी माना गया है। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। पशु पक्षियों की सेवा से कैसे जीवन की बाधाओं का अंत हो सकता है, ये तो आपने जान लिया। श्राद्ध और तर्पण से पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, इनके कृपा से जीवन की तमाम परेशानियों का भी अंत हो जाता है। पितृपक्ष में आप कुछ विशेष वस्तुओं का अद्भुत प्रयोग बताने जा रहे हैं। कौन सी वो वस्तुएं हैं जिनसे मिल सकता है आपको पितरों का आशीर्वाद, आइए देखिए।

0: अद्भुत और मोक्षदायिनी है श्रद्ध का विधान। समर्पण की वस्तुओं में निहित है पूर्वजों का उद्धार। पूर्वजों की तृप्ति से परिवार का होगा कल्याण। चमत्कारी मानी गई हैं पितृपक्ष की वस्तुएं। कर्मकांड के विशेषज्ञ बताते हैं कि जीवन में शांति और समृद्धि के लिए पितरों का तर्पण करना बहुत जरूरी होता है। माना जाता है कि पितरों की शांति और उनके आशीर्वाद से ही ईश्वर भी आप पर कृपा लौटाते हैं। सनातन धर्म के संस्कार कहते हैं कि जो अपने पितरों का सत्कार नहीं करता, ईश्वर भी उससे मुंह फेर लेते हैं। आज हम अपनी खास पेशकश में आपको बता रहे हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करते समय उपयोग की जाने वाली अद्भुत वस्तुओं के बारे में। माना जाता है कि इन वस्तुओं के प्रयोग के बिना श्राद्ध कर्म और तर्पण पूर्ण नहीं होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहली वस्तु की।
1: जल का जो प्रधान महत्व है, मूल द्रव्य जो है, वो तर्पण के लिए उपयोग किया जाता है। कुश जो है, दर्भ जो है, वो पवित्र कर्मकांड जो हम करते हैं श्राद्धीय परंपरा के अनुसार, उसमें उसका बड़ा महत्व है। पवित्रीकरण के लिए, आसन के लिए, इत्यादि के लिए दर्भ का प्रधान मूल है।
0: जल में खड़े होकर अंजुलि में जल लेकर पितरों को जल देना सर्वोत्तम होता है। पितृपक्ष में सूर्योदय के पूर्व पीपल में जल डालने से पितरों को शांति प्राप्त होती है। पितृपक्ष में अगर जल की बर्बादी की जाए तो पितृ पूजा स्वीकार नहीं करते। कर्मकांड के विशेषज्ञ बताते हैं कि श्राद्ध और तर्पण करते समय जल के प्रयोग को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए पूर्वजों के तर्पण में इसका इस्तेमाल जरूरी होता है। जल के बाद दूसरी वस्तु जिसका इस्तेमाल पूर्वजों के तर्पण में किया जाता है वो है अग्नि।
1: अग्नि जो है वो देवताओं को हवि पहुंचाना, पितरों को हवि पहुंचाने का उनका कार्य है, और यज्ञ माध्यम से, होम हवन के माध्यम से पितरों के लिए हम स्वाहा कार और उसका आहुति देते हैं, जो पितृ उसके ऊर्जा तत्व को, उसके हवि को स्वीकार करते हैं, तो अग्नि का प्रधान कार्य है।
0: ऐसी मान्यता है कि अग्नि में देवी आहुति सीधे देवताओं तक पहुंचती है। श्राद्ध में संपूर्ण भोजन की सबसे पहली आहुति अग्नि में ही दी जाती है। नियमित रूप से अग्नि में सुगंध की पांच

0: आपको बता रहे हैं, उनके बारे में जानकार कहते हैं कि इन चीजों का प्रयोग भौतिक जीवन में भी लाभकारी है, इसीलिए इनका प्रयोग तर्पण के लिए भी किया जाता है। पितरों की शांति के लिए उड़द की दांत का भी खास प्रयोग बताया गया है। चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं।
1: कुछ परंपराओं में और श्राद्धीय परंपराओं में श्राद्धान्न की सामग्री में उड़द का बड़ा महत्व दिया गया है। पितरों उड़द को बड़ा पसंद करते हैं, इसलिए कई क्षेत्रों में उड़द का वड़ा इत्यादि बना करके ब्राह्मणों को गरीबों में बंटवाया जाता है, खिलाया जाता है, ऐसा बताया गया। पितरों जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं।
0: उड़द की दाल ज्योतिष में शनि और राहु से संबंध रखती है। पितरों को अर्पित की जाने वाली खाने वाली वस्तुओं में उड़द की वस्तुओं की प्रधानता होती है। काल में काले तिल के प्रयोग के बिना पिंडदान हो ही नहीं सकता। कथा है कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को प्रताड़ित किया था, जिससे श्रीहरि के क्रोध से निकली पसीने की बूंदों से काले तिल की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए इसे भगवान विष्णु का स्वरूप और गंगाजल के समान पवित्र माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं कि तिल के प्रयोग से कैसे शुभता जुड़ी है।
1: तो इसमें तिल, कुश, जल, अन्न, पिंड, दीप इत्यादि ये सभी वस्तुएं जो है जादुई रूप में आती है। अगर इनका प्रयोग सही रूप से कर रहे हैं तो आपको अवश्य ही उन सभी पितरों का आशीर्वाद मिलता है।
0: काला तिल संपन्नता का प्रतीक भी है और शांति का भी। काले तिल का दान अज्ञात बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। काले तिल डालकर सूर्य को जल देने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अग्नि में काले तिल की आहुति देने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। किसी भी परिवार की सुरक्षा के पहले ढाल उसके पितर ही होते हैं। यही वजह है कि पूर्वजों की शांति, उनके पारलौकिक जीवन के सुख की चिंता धरती पर मौजूद उनके परिजन करते हैं और पितृपक्ष में उनकी शांति के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। चलिए अब आपको कुश के प्रयोग के बारे में बताते हैं। माना जाता है कि कुश श्रीहरि विष्णु के अंश से बना है। ये भी माना जाता है कि कुश के अंदर अमृत तत्व का वास है। कुश के जल से शिवजी का अभिषेक करने से तमाम तरह की बाधाएं दूर होती हैं और पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। कुश हाथ में लेकर पितरों को जल अर्पित करने से ही श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी होती है। पितृपक्ष में जल में कुश डालकर स्नान करने से मन की पीड़ा दूर होती है। कर्मकांड के विशेषज्ञ बताते हैं कि जब साधक की सारी सामग्री के साथ पिंडदान करता है और साथ ही अपने सामर्थ्य अनुसार दान करता है तो निश्चित ही पूर्वजों की प्रीति का पात्र बनता है।
1: वस्त्रों का दान करें, गौ सेवा करें, जरूरतमंदों की मदद करें, कुछ गरीबों में नित्य भंडारा कराएं, इससे पितरों त्वरित रूप में प्रसन्न हो जाते हैं। और दान जो होता है अपनी सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए। शास्त्रीय परिपालन करके अगर आप इसे करेंगे तो अवश्य ही पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलेगा।
0: तो देखा आपने, पितृपक्ष में इन सामग्रियों के बिना श्राद्ध और तर्पण नहीं हो सकता है। तो अगर आपने भी अब तक अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण या श्राद्ध कर्म नहीं किया हो तो विशेषज्ञ की सलाह से इसे अवश्य ही करें, ताकि आपको मिल सके आपके पितरों से सुखद जीवन का वरदान।
2: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर। जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं हांगकांग के विक्टोरिया पार्क, जहां वर्ल्ड लैंटर्न फेस्टिवल मनाया जा रहा है। रोशनी के रंगों से सराबोर इस अनोखे उत्सव में 20 देशों के 3,000 से ज्यादा लालटेन दिखाई गई हैं।
11: हांगकांग के विक्टोरिया पार्क में रोशनी का मेला सजा है। यहाँ वर्ल्ड लैंटर्न्स बुलेवार्ड देखने बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। रोशनी के रंगों से सराबोर इस प्रदर्शनी में 20 देशों की 3,000 से ज्यादा लालटेन दिखाई गई है। अद्भुत अनूठी लालटेन से सजे इस रास्ते पर दुनिया भर के डिजाइन, कलाकारी और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिल रही है। 25 सितंबर को मिड ऑटम फेस्टिवल खत्म होने के बाद से यहां बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ रही है। खास बात ये है कि इस प्रदर्शनी में दक्षिण कोरिया के जिंजो की सिल्क की लालटेन भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल पारंपरिक रूप से परिवार के सदस्यों की सेहत और खुशहाली की कामना के लिए किया जाता है। इसके अलावा ब्राजील की रंग बिरंगी पैचवर्क वाली लालटेन और पोलैंड की लालटेन भी यहाँ मौजूद है, जिनमें पारंपरिक लोक कला और पेपर कटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। Victoria Park में रोशनी से सजी शाम का लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और इन जगमगाती लालटेन्स के साथ फोटो लेकर खुशनुमा यादों को भी सजो रहे हैं। यूं तो ये प्रदर्शनी 27 सितंबर को खत्म होने वाली थी, लेकिन लोगों की भारी मांग की वजह से इसे 4 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंटरनेशनल लालटेन्स एग्जीबिशन का हिस्सा बन पाए, यहाँ रोशनी से सजी शामों का आनंद ले पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: सेनेगल के समुद्र में ऐसा नजारा दिखा जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। सैकड़ों तैराकों ने खुले अटलांटिक में उतरकर एक कठिन चुनौती को पूरा किया। लहरों से जूझते हुए ये तैराक डकार से गोरे द्वीप तक पहुंचे, जहां पे जीत के साथ हौसले और जज्बे की तस्वीर भी देखने को मिली।
12: सेनेगल में एक अनोखी तैराकी रेस हुई। 900 से ज्यादा तैराक अटलांटिक महासागर में उतरे और डकार से गोरे द्वीप तक तैरकर पहुंचे। रेस आसान नहीं थी, इसलिए तैराकों की सुरक्षा के लिए पुलिस, सेना और बचाव दल भी समंदर में मौजूद थे। हर पल नजर रखी जा रही थी, ताकि किसी को परेशानी हो तो तुरंत मदद मिल पाए। कोई तेज तैर रहा है, कोई अपनी रफ्तार बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। तैराक लगातार आगे बढ़ रहे थे। हाल ही में हुई तेज बारिश के बाद समंदर में लहरें भी ज्यादा थी। तैराकों की रफ्तार बढ़ती गई और आखिरकार सबसे पहले गोरे द्वीप पहुंचते हैं ओसेनो डियो, पानी से बाहर आते ही उनके चेहरे पर जीत की खुशी साफ दिखाई देती है। दूसरे तैराक भी एक एक कर मंजिल तक पहुंचने लगे। लेकिन इतनी लंबी रेस में हर पल आसान नहीं था। करीब 5 किलोमीटर लंबे इस सफर में तैराकों को तेज धूप और मुश्किल समुद्री लहरों का सामना करना पड़ा। एक तैराक रेस के दौरान थककर समंदर में गिर पड़ा, लेकिन उसे तुरंत बचाव नाव की मदद से किनारे लाया गया। वहीं एक दिव्यांग तैराक ने भी घंटों तैरने के बाद गोरे द्वीप तक पहुंचकर हिम्मत की मिसाल पेश की। किनारे पर लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। हर तैराक के पहुंचने पर तालियां बज रही थीं और हौसला बढ़ाया जा रहा था। किसी के लिए ये जीत की रेस थी तो किसी के लिए खुद को साबित करने की चुनौती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: हवाई द्वीप से सामने आई ये तस्वीरें जितनी हैरान करने वाली हैं उतनी ही कुदरत की ताकत का एहसास भी कराने वाली हैं। अंधेरे में धधकता लावा और आसमान तक उठती इसकी चमक किलाउआ के भीतर जारी हलचल को साफ दिखाती है। कैमरे में कैद ये नजारा वाकई शानदार है, आप भी देखिए।
9: ये तस्वीरें हवाई के किलाउआ ज्वालामुखी की हैं। रात के अंधेरे में ज्वालामुखी से गर्म लावा बाहर निकल रहा है। लावा फवारे की तरह ऊपर उठता है और फिर ढलान पर नीचे की तरफ बहने लगता है। लावा इतना गर्म है कि उसका लाल रंग रात के अंधेरे में साफ नजर आ रहा है। जैसे जैसे लावा नीचे की तरफ बढ़ता है, आसपास का इलाका भी उसकी रोशनी से चमक उठता है। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण यानी USGS के अनुसार किलाउआ ज्वालामुखी के लिए अलर्ट लेवल अभी ऑरेंज यानी वॉच पर है। इसका मतलब है कि ज्वालामुखी पर लगातार नजर रखी जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आगे लावा के बड़े फव्वारे निकलने की संभावना बनी हुई है। किलाउआ में रुक रुक कर ज्वालामुखी गतिविधि जारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक किलाउआ में ये गतिविधि 23 दिसंबर 2024 से रुक रुक कर जारी है। किलाउआ दुनिया के सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। फिलहाल वैज्ञानिक लगातार ज्वालामुखी की निगरानी कर रहे हैं। लावा का ये नजारा जितना खूबसूरत नजर आ रहा है उतना ही ये याद दिलाता है कि प्रकृति कितने रहस्यों से भरी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात गाजा की, जहां नन्हे बच्चे बड़े सपने देख रहे हैं। गाजा के कई इलाकों में जहां कभी घर थे, गलियां थी, खेल के मैदान थे, वहां आज सिर्फ मलबा ही मलबा बिखरा पड़ा है। इसी मलबे के बीच बच्चों ने नई राह तलाश ली है। विनाश की निशानियों के बीच अपने लिए नया खेल का मैदान तैयार कर लिया है। संदेश बस इतना सा है कि टूटती उम्मीदों के बीच भी हौसला बुलंद है।

0: इन बच्चों के लिए स्केटबोर्ड सिर्फ खेल का जरिया नहीं है, ये मुश्किल हालात में इनका सुकून है। इनकी हंसी, इनकी तालियां और स्केटबोर्ड पर इनकी छोटी छोटी छलांगें मलबे के बीच जिंदगी की एक अलग तस्वीर दर्शा रही हैं। गाजा के इन इलाकों में जहां कभी घर थे, गलियां थी, खेल के मैदान थे, वहां आज सिर्फ मलबा है। इसी मलबे के बीच बच्चों ने नई राह तलाश ली है, विनाश की निशानियों के बीच अपने लिए नया खेल का मैदान तैयार कर लिया है। संदेश बस इतना सा है कि टूटती उम्मीदों के बीच भी हौसला कायम है।
1: طبعا احنا لجأنا لهذه الاماكن المدمره لانه احنا خسرنا حدائق التزلج اللي احنا كنا بنحلم فيها، وعندما تحققت في غزه للاسف الحرب هذه دمرت كل شيء، فاضطرينا ان احنا نلجأ لهذه الاماكن المدمره.
0: راجب بچوں کو اسکیٹ بورڈ چلانا سکھاتے ہیں، پر اب ان کے پاس سادھن بہت کم ہیں۔ صرف 5 اسکیٹ بورڈ بچے ہیں جس سے درجنوں بچوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ 22 سال کے حمزہ سے لے کر 12 سال کی جینا تک सभी यहाँ स्केट बोर्डिंग करते हैं। वो जानते हैं कि ये जगह खेलने के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ उनका आना उम्मीद को जिंदा रखने जैसा है। जिस खेल से प्यार है उसे भला छोड़ा कैसे जा सकता है।
2: وهذا المكان خطير بس يعني احنا مضطرين لهذا المكان مضطرين لهذا الشيء انه نتدرب فيه نمارس رياضتنا فيه।
0: मलबे के बीच स्केटबोर्ड पर दौड़ते ये बच्चे मुश्किल वक्त में उम्मीद की नई कहानी गढ़ रहे हैं, जो जज्बे और हौसले से भरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा है।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: भारत की रक्षा शक्ति में होगा इजाफा, साल के अंत तक आएंगे तेजस MQ-1A फाइटर जेट के 12 और इंजन, HAL के पास 27 एयरफ्रेम तैयार। यूपी के भदोही में होगा इंडियन कार्पेट एक्सपो, 65 देशों के खरीदार होंगे शामिल, ब्रिक्स देशों के लिए विशेष इंतजाम। दिल्ली वालों को गृहमंत्री अमित शाह ने दी सौगात, बारापुला के नए एलिवेटेड रोड का शुभारंभ, अब मयूर विहार से एम्स तक फ्री सिग्नल कनेक्टिविटी। अयोध्या की सुरक्षा अवैध बनाने की तैयारी, राम मंदिर से हनुमानगढ़ी तक बढ़ाई गई NSG की जिम्मेदारी, प्रमुख धार्मिक स्थलों का भी किया निरीक्षण। पितृपक्ष में बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल में श्रद्धालुओं की भीड़, पितरों की मोक्ष कामना के लिए कर रहे तर्पण, पिंडदान समेत धार्मिक अनुष्ठान। भारत को एशियन गेम्स में 5वां गोल्ड, ट्रैप शूटिंग में सोना जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी नीरू, भारत के पास अब तक कुल 48 मेडल।

0: में चांदी में खेल, अजब कहानी गजब आज इसी को लेकर चर्चा होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। दरअसल अमेरिका और ईरान की जंग के बीच सोना और चांदी और साथ ही साथ शेयर बाजार आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। वैसे आमतौर पर जंग के हालात में देखा जाता है कि सोने और चांदी के दाम हमेशा बढ़ते ही हैं। निवेशक कीमती धातुओं में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, उनमें निवेश करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो सोने और चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो आज चर्चा सोने और चांदी के उतार चढ़ाव पर ही होगी। सोने चांदी का बदला स्वभाव कैसा, दबाव सहमा शेयर बाजार, क्यों थमी रफ्तार, कच्चे तेल ने बिगाड़ा मूड, क्रूर क्यों क्रूड, और जंग का भारत के सराफा बाजार पर क्या होगा असर, इन फैक्टर्स की वजह से निवेशकों का रुख बदला है, आगे क्या होगा, गिरे दाम क्या तूफान से पहले की शांति है, इन तमाम पहलुओं को लेकर आज बाजार के जानकारों से चर्चा करेंगे।
1: पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है और आने वाले दिनों में जो है शादियों का सीजन भी जो है वो शुरू होने वाला है। ऐसे में अगर सोने के दामों की बात करें तो लगातार जो है गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है। पीयूष गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो सवाल ये, बीच में जो सोने के दाम थे वो 180 के आसपास जो है वो पहुंच गए थे, लेकिन लगातार कमी जो देखी जा रही है इसके पीछे की वजह क्या है?
2: इसका बहुत साधारण रीजन है जी कि क्या हो रहा है कि जैसे जैसे वॉर की टेंशन एस्केलेशन बढ़ रही है, इस चक्कर में क्या हो रहा है, जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो ऊपर जा रही हैं। तो जब ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो US की जो सेंट्रल बैंक है विच इज़ फेडरल बैंक, वो ब्याज दर बढ़ाता है। वो ब्याज दर इसलिए बढ़ाता है कि बिकॉज उसको इन्फ्लेशन कम करना होता है। तो जब वो ब्याज दर बढ़ाता है तो उस वजह से क्या होता है, जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स या जो बाकी इन्वेस्टमेंट होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं गोल्ड से कंपैरिजन में। तो लोग क्या करते हैं, लोग गोल्ड से पैसा निकाल के उसके अंदर लगाते हैं। दैट इज़ द प्राइम रीजन व्हाई गोल्ड फॉल्स व्हेन वॉर गोज अप। जनरली वॉर से गोल्ड का प्राइसेस ऊपर जाना चाहिए, बट जब वॉर होती है, जैसे मिडिल ईस्ट की वॉर है, बहुत टेंशन हो रही है ऑल अराउंड वर्ल्ड, यूरोप और रशिया के बीच में कुछ कुछ चल रहा है, तो इसको लेके जो टेंशन बढ़ रही है उस वजह से तेल के दाम ऊपर जा रहे हैं और उस वजह से गोल्ड के प्राइसेस गिर रहे हैं।
1: क्या लगता है कि कब तक इसी तरीके की सिचुएशन जो रहने वाली, क्योंकि अगर लोगों को देखे तो उनके लिए तो ये अच्छी खबर है कि दाम कम हो रहे हैं, ऊपर से जो है शादियों का सीजन की भी जो शुरुआत होने वाली है, तो कब तक इसी तरीके से आपको लगता है?
2: इस तरीके का जब तक रहेगा जी, कहना तो बहुत मुश्किल है कि ये कब तक रहने वाला है, बट हाँ, जब तक ये वॉर की टेंशन मार्केट के अंदर तेज रहेगी तब तक ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि गोल्ड के दाम किस दिशा में मूव करेंगे। और गोल्ड के प्राइसेस गिरने और बढ़ने से बहुत फर्क नहीं पड़ता कंज्यूमर को स्टेबिलिटी से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे जैसे अब बीच में बढ़ रहे थे तो मार्केट के अंदर काफी बिक्री आई थी, जब क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अब यहाँ से ऊपर जाने वाला, पर जैसे जैसे गिर रहे हैं तो मार्केट के अंदर फिर से इंस्टेबिलिटी आ गई और लोग फिर अभी कंफ्यूज है कि अभी और गिरने वाला है या बढ़ेगा तब लें या लें, उसको लेके कंफ्यूजन है मार्केट के अंदर।
1: हालांकि अभी तो श्राद्ध है, श्राद्ध चल रहे, तो इसलिए मार्केट में जो है वो सन्नाटा भी देखा जा रहा है, लेकिन इसके बाद नवरात्रों की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद शादियों के सीजन में, तो लगता है कि कहीं ना कहीं वहां पर जो है वो कंफ्यूजन लोगों के अंदर रहेगी या लोग जो है खरीदना पसंद करेंगे?
2: नहीं, लोग खरीदना पसंद करेंगे, पर लोग कॉशियस बाइंग करेंगे। लोग उतना ही बाइंग करेंगे जितना उनको फेस्टिवल के हिसाब से या यूसेज के हिसाब से लेना है, पर लोग एक्स्ट्रा बाइंग करेंगे या जो कहेंगे चलो सोना सस्ता है ले लेते हैं, वो अभी वेट एंड वॉच करेंगे। ऐसा पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो उछल पटक हुई है सोने के भाव के अंदर, उसको देख के लगता है।
0: तो मेरे से कोई मनीषा बात कर रही थी सराफा बाजार में एक्सपर्ट्स के साथ कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो सोने चांदी में भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। सुबह चांदी करीब 2000 रुपए गिरी थी और अब ये गिरावट और ज्यादा बढ़ गई है। और अगर हम सोने के दामों की बात करें तो करीब करीब 1000 रुपए गिरावट यहां भी दर्ज की जा रही है। 22 कैरेट सोने का भाव आज 1,34,000 के करीब है। वहीं आज 1 किलो चांदी का भाव 2,24,000 के करीब है। वहीं सोने और चांदी में सोमवार को भी गिरावट दर्ज की गई थी। सोना कल 2500 तो चांदी 5000 रुपए गिरा था। यानी सोने चांदी में तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है। सोना और चांदी जनवरी में अपने हाई पर थे और इसी साल जनवरी में चांदी 4 लाख के पार थी, तो अब चांदी 2.5 लाख के काफी नीचे आ गई है। सोने और चांदी में कमजोरी की बहुत सारी वजह है। अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने की भी आशंका है, अमेरिकी बॉन्ड से ज्यादा रिटर्न की उम्मीद है, वहीं अमेरिकी डॉलर की मजबूती भी एक बहुत बड़ी वजह है। साथ ही साथ कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल, ये भी एक मुख्य वजह इसके पीछे देखे जा रहे हैं। निवेशकों की ओर से मुनाफे के लिए बिकवाली हो रही है, तो सोने चांदी के दाम में कब तक रहेगी गिरावट, ये एक अहम सवाल है। सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव क्यों आ रहा है और सोने चांदी का आगे क्या होने वाला है? क्या और गिरेंगे दाम या फिर उठेगा सोना? क्या गोल्ड सिल्वर की फिर से होगी चांदी? ये तमाम ऐसा सवाल है जो आज हर किसी के जहन में है। इसको लेकर चर्चा करेंगे। भारत से लेकर अमेरिका तक देखा जाए तो आज चर्चा इसको लेकर हो रही है, यानी कि सोने और चांदी दोनों सस्ते हुए हैं। सोने चांदी और शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की जा रही है और इसकी मुख्य वजह अमेरिकी बाजार से जुड़े वैश्विक संकेत, मजबूत डॉलर, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। और यही वजह है कि भारत में भी इसकी खरीदारी में कम मांग शामिल है। असल में पितृपक्ष चल रहा है, शादियों का सीजन है, शादियों का सीजन नहीं है और सरकार ने भी लोगों से कम सोना खरीदने की अपील की है, जिससे सोने चांदी में कमजोरी को एक बहुत बड़ी वजह भी माना जा रहा है।

0: खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। चर्चा की शुरुआत फिर करेंगे, अनुराग रस्तोगी हेड नॉर्थ इंडिया इंडियन बुलेन एंड ज्वेलर एसोसिएशन से हमारे साथ हैं। डॉक्टर रवि आर कुमार मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर धीरेश हमारे साथ इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में योगेश सिंगल जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन डॉक्टर रवि मैं आपसे चर्चा की धीरेश जी से शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर धीरेश हमारे साथ हैं। वजह सबसे बड़ी प्रोफेसर धीरेश क्या देखी जा रही है इसके पीछे?
1: नवजोत जी नमस्कार। बड़ा अच्छा विषय रखा है कि वजह क्या है। तो मूल कारण तो यूएस में जो ब्याज दरों की वृद्धि है वही है, क्योंकि 29 सितंबर को ये आशंका थी बाजार में कि फेड रेट की हाई की संभावना करीब 70% आंकी जा रही थी, तो वो मूल कारण यही है यूएस डॉलर में। दूसरा कारण यूएस डॉलर मजबूत हो रहा है। यूएस डॉलर में मजबूती के कारण भी सबसे बड़ा जो रीजन है वो डॉलर डिनोमिनेटेड बुलियन अन्य मुद्राओं में महंगा होता है, जिससे कि सोने और चांदी में हम लोगों को उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है क्रूड ऑयल में जो है ना कीमतों में उछाल आना। और अगर क्रूड ऑयल में इस तरीके से उछाल आता रहा तो निश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव जो पड़ रहा है खासतौर पर हमारे स्टॉक मार्केट पर भी आ रहा है, और खासतौर पर हमारी जो चांदी और सोने की कीमतें इस पर आ रहा है। मिडिल ईस्ट की सप्लाई डिसरप्शन होने से उसकी उस कारण से भी एक चिंता बड़ी है। ऑयल प्राइस बढ़े हैं जिससे होता क्या है मैम, अगर हम लोग इकोनॉमिक्स में इसको समझने की कोशिश करें तो कहते हैं इन्फ्लेशन का प्रेशर बढ़ता है, और इन्फ्लेशन जब प्रेशर देखते हैं मार्केट में जब ये दिखता है तो निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट बाजार में हमें देखने को मिलता है, जो हमें देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो लास्ट जो रीजन है मैं उसको समअप कर दूं, ग्लोबल इन्फ्लेशन, क्योंकि महंगा एनर्जी क्राइसिस या एनर्जी की जो प्राइसेस हैं जो जो रेट्स हैं जो जो कीमतें हैं वो महंगी हो गई हैं, सप्लाई डिस्ट्रप्शन है और इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन है, ये कारण है मूल रूप से हमें जो सोने और चांदी में महंगाई के रूप में देखने को।
0: ठीक है, एक बार डॉक्टर रवि से भी समझ लेते हैं, क्योंकि रवि जी देखिए जो स्थिति है जो इसराइल और ईरान युद्ध की वहां पर जो तनाव की स्थिति है इसको लेकर हम लगातार देख रहे हैं। और ऐसी युद्ध की स्थिति में अक्सर ये देखा जाता है कि स्पेसिफिकली अगर सोने की बात करें तो क्योंकि सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने को माना ही गया है तो सोने की कीमतें बढ़ दी, लेकिन यहां पर सोने की कीमतें कम हुई हैं, डॉलर का रेट ज्यादा बढ़ा है। और कोई स्थिति ऐसी हो गई है रवि जी कि आज की तारीख में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अभी देखिए इससे पहले देखा जाए 65 तक सोना पहुंच गया था, आज अगर देखें तो 1.5 लाख से भी थोड़ा नीचे आ रहा है सोना। क्या प्रेडिक्शन पॉसिबल है, और ऐसे में जबकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है वो भी हम जान रहे हैं?
2: देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब हम गोल्ड के प्राइस की बात करते हैं तो गोल्ड के प्राइस में सबसे बड़ा हम इन्फ्लेशन को लेते हैं, दूसरा हम यूएस का फेड इंटरेस्ट की बात करते हैं। अगर मैं डॉलर में बात करूं, क्योंकि गोल्ड या फिर क्रूड ऑयल ये यूएस डोमिनेटेड प्रोडक्ट है, इंडियन डोमिनेटेड प्रोडक्ट नहीं है। इंडिया ना तो सबसे बड़ा कंज्यूमर है और ना तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अगर हमें लगता है कि हम घर के लिए जो ज्वेलरी खरीदते हैं इससे गोल्ड का प्राइस बढ़ता और घटता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करंट मार्केट प्राइस टेम्पररी अगर देखा जाए जो करंट मार्केट प्राइस गोल्ड का है ये गोल्ड का एक डिमांड है, और यहां से गोल्ड के कीमतों में हम 7,000 का इजाफा देख रहे हैं, लेकिन इसके बाद गोल्ड का प्राइस जो अगर कुछ लोग ये कह रहे कि 1 लाख से नीचे हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बात है कि डॉलर गोल्ड के प्राइस के साथ साथ अगर आप बात करें तो 2011 की बात करें तो डॉलर गोल्ड का जो इंटरनेशनल प्राइस था 1950 और अभी गोल्ड का प्राइस चल रहा है 4,100 समथिंग। तो आप बोलेंगे गोल्ड का प्राइस आप कह रहे हैं 2011 से अभी तक दुगना हुआ है, दुगना से ज्यादा हुआ है। मैंने कहा जी बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, लेकिन इस दौरान 2011 से लेके हमारा इंडियन करेंसी डिवेल्यूएट हुआ है। इंडियन करेंसी डिवेल्यूएशन अभी रिसेंटली हम लोगों ने उस पर ड्यूटी लगाया, तो अगर सही प्राइस जो निकाला जाए 1,29,000 विदाउट करेंसी डिवेल्यूएशन, लेकिन इंडिया में उसका प्राइस आ रहा है 1,49,000, क्योंकि हमारे पर ड्यूटी भी बहुत ज्यादा लगता है। दूसरी बात है कि गोल्ड का प्राइस इंडस्ट्रियल डिमांड और इंडस्ट्रियल सप्लाई से चलता है। इंडस्ट्रियल डिमांड और सप्लाई की बात करें तो इंडिया में के इंडस्ट्रियल डिमांड सप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम फोन बनाते हैं, चिप बनाते हैं, हम पूरी दुनिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाते हैं, तो उसमें गोल्ड की कीमतों में कोई कारण बिल्कुल नीचे चला जाएगा। दिस इज द राइट डिमांड एरिया फॉर कपल ऑफ वीक, और यहां से गोल्ड का प्राइस में आप इस हफ्ते इजाफा देखेंगे। तीसरी बात है लोग क्रूड के बारे में बात कर रहे हैं कि क्रूड की कीमतों को बढ़ने से लोग गोल्ड का प्राइस नीचे आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पूर्णतः गलत है। क्योंकि क्रूड का प्राइस सबसे हाईएस्ट पीक पे जुलाई 2008 में 148 डॉलर 100 BBL का प्राइस था, अभी जो प्राइस चल रहा है $92 का चल रहा है। कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ पे जो ज्यादा इंपैक्ट आता है वो करेंसी डिवेल्युएशन, और कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको लगता है कि अब गोल्ड से हम यूज नहीं कर पाए। करंट जो गिरावट आप देख रहे हैं कोई गिरावट नहीं है, ये प्रोफेशनल्स के लिए डिमांड और सप्लाई का बाइंग और शॉर्ट सेलिंग है और ये चलता रहेगा। अगर कोई बहुत सस्ता होने की उम्मीद कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं होगा। आए वो सोच रहे गोल्ड 2 लाख के पार हो जाएगा, और भी बिल्कुल नहीं होगा। गोल्ड का सबसे हाईएस्ट प्राइस अगर था तो ये जनवरी में था। जनवरी में ना तो ईरान इराक का कोई ना तो ईरान इसराइल का कोई युद्ध था, ना तो ईरान और यूएस के बीच में कोई युद्ध चल रहा था। तो गोल्ड अपने डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग चल रहा है, और पूरी दुनिया में गोल्ड का प्रोडक्ट चिप के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम के डिमांड में रहेगा ही रहेगा। तो यहां से तो मैं यही कहूंगा कि सही डिमांड जोन देख के बाय करना चाहिए।
0: रवि जी, एक चीज और मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को समझाइए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि देखिए अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, जो उसकी स्थिति है, 40 ट्रिलियन का कर्ज है, और ये भी एक कारण है कि डॉलर वहां पर महंगा हो रहा है। डॉलर अगर इसी तरीके से महंगा होता रहा तो क्या असर सोने पर, कितना असर सोने पर पड़ेगा?
2: देखिए, हम लोग इंडिया में सोचते हैं ना कि हम अमेरिका के बिना जीवन व्यतीत कर लेंगे, और ये पूर्णतः गलत है। अमेरिका में $40 ट्रिलियन का कर्ज है, लेकिन अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, और अमेरिका के ऊपर कर्ज है, लेकिन अमेरिका के पास 5-5 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी भी है। एनवीडिया है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अल्फाबेट है, और टेस्ला स्पेस सक्सेसिव कंपनी भी है। तो एक तरफ अगर हम कर्ज में है और अगर हमारे पास इनकम नहीं है तो कर्ज मेरे लिए बहुत पेनफुल रहेगा, और अगर हम कर्ज में हैं और मेरे ऊपर अगर मेरे पास अगर इनकम है तो हम वो कर्ज हमारे लिए बहुत बड़ा नहीं है। आज हमारे पास पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि हमने 2016 देखा, डिमोनिटाइजेशन देखा, हमने 2020 देखा, आपने कुछ नहीं देखा। अगर आज गूगल बंद हो जाए तो ना तो आपका आधार किसी काम का, ना यूपीआई किसी काम का, सबके पास गूगल का एक ईमेल आईडी है, हमारे पास व्हाट्सएप का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अमेरिका की इकोनॉमी को जो लोग कहते हैं कि अमेरिका एक कर्ज में डूबी हुई इकोनॉमी है, ये सिर्फ और सिर्फ झूठा दिलासा दिलाने वाली बातें हैं। अमेरिका इकोनॉमी के बाजार में हम सबसे ऊपर है। अब समझिए, मैं कोई देशभक्त देशद्रोह की बातें नहीं कर रहा हूं। 40 ट्रिलियन डॉलर 4 ट्रिलियन डॉलर में फर्क होता है। अभी जिस दौरान हमारा बाजार -10%, अगर आप इंडियन मार्केट का ग्रोथ देखेंगे तो निफ्टी का ग्रोथ -10% प्रति वर्ष है, अमेरिका का बाजार +24% प्रति वर्ष है। नेस्डेक, S&P, डाउ जोन्स, रसल, ये सब नीचे नहीं आए। अगर इसी दौरान देखेंगे अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च किया। तो ये जो कर्ज की अमेरिका पूरी दुनिया को डोमिनेट करता है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं ना कि अमेरिका ने अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से डिमांड कम होगा। आप एक बात समझिए, अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट इसलिए बढ़ाया क्योंकि अमेरिका अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में बेच रहा है, चाहे वो सर्विसेज के माध्यम हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से हो, मैक के माध्यम से हो, एप्पल के माध्यम से हो, आईओएस के माध्यम से हो, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, फेसबुक, गूगल। अगर मैं सर्विसेज की बात करूं तो हम इंडिया में कहीं खरीद नहीं, इंडिया का पूरी दुनिया में कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है अमेरिका का अभी। तो ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो डेफिनेटली ये इंटरेस्ट रेट का बोझ इंडिया पर आएगा, और वो इंटरेस्ट रेट हमसे लेंगे। तो फेड ने जो अभी इंटरेस्ट रेट 0.25 BPS का बढ़ाया, तो इस इंटरेस्ट रेट का सबसे बड़ा जो नुकसान भारत को होने वाला है, क्योंकि हम जो है हम एक डिपेंडेंट इकोनॉमी है, और
0: जी
2: हम इस कर्ज का भरपाई करेंगे, अमेरिका इस कर्ज का भरपाई नहीं करेगा। अमेरिका तो मानते हैं कि अमेरिका के ऊपर 40 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप समझिए कि अमेरिका में इनकम कितना है, अमेरिका का एरिया कितना है, और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना है। उस दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस, अगर आप अमेरिकन एयरलाइंस या यूनाइटेड या डेल्टा से अगर इंडिया के किसी एयरलाइंस को कनेक्ट करेंगे तो नहीं होगा।
0: जी
2: अगर आप एक छोटे से स्टेट, अगर कैलिफोर्निया स्टेट की बात करेंगे, कैलिफोर्निया स्टेट का जो GDP है वो 4.95 है, आपके भारत देश का GDP 4 ट्रिलियन के करीब है। तो एक एक छोटा सा न्यूयॉर्क 2 माइल लंबा शहर हमारे पूरे देश के ऊपर भारी है। तो उनके पास सोने का अंडा देने वाला जो मुर्गी बोलते हैं वो है, हमारे पास नहीं है, और हमारे पास ना हॉस्पिटल डेवलप्ड है ना सड़क डेवलप्ड है। और
0: जी जी
2: हम लोग बेसिकली अभी किसी भी कारण से हो, चाहे हो
0: चलिए
2: चाहे
0: रवि जी, रवि जी लौटती हूँ। एक तस्वीर तो आपने क्लियर कर दी, 40 ट्रिलियन डॉलर का जो कर्ज की आपने बात कही, तो कहा यही जाता है कि सोने का अंडा जो देता है कर्ज उसी को मिलता है, ये भी कहा जाता है। अनुराग रस्तोगी जी, तस्वीर बिल्कुल साफ है, क्योंकि मैं अब र्यूमर्स पर आती हूँ। जो दाम घट रहे हैं या जो बढ़ रहे हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे मार्केट एक्सपर्ट, बुलियन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 2000 26 की हम बात कर लेते हैं, नवंबर दिसंबर आते आते, यानी कि जिस वक्त शादियों का सीजन शुरू होगा, सोना 2 लाख के पार चला जाएगा। रवि जी ने पिक्चर क्लियर की है, आप भी इसको क्लियर कीजिए, क्या 2 लाख के पार जाएगा, या फिर अभी ये भी सुनने में आया दो तीन दिन पहले कि अभी थोड़ा और वेट कर लीजिए, सोना तो 1 लाख तक भी आ सकता है, पिक्चर क्या है सर? अनाज जी ऑडियो शायद म्यूट है आपका।
3: आपके सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार, मैं रवि कुमार जी को बहुत ध्यान से सुन रहा था इतनी देर से, और चूंकि वो एक अच्छे मार्केट एक्सपर्ट हैं, टाइम टाइम पे हम लोग साथ होते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका का एक गुणगान किया और उसको पूरे देश का उनके सामने हमको बिल्कुल एकदम जीरो बना के खड़ा कर दिया।
0: नहीं नहीं, वो कानों को हाथ लगा रहे, कह रहे मैंने गुणगान नहीं किया है किसी का, मैंने क्लियर पिक्चर दिखाई।
3: आई एम वेरी सॉरी भले, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि भारत ने भी आज 8वीं और 7वीं वहां से इकोनॉमी से आ करके आज 3rd इकोनॉमी बनके की तरफ अग्रसर है, और हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास कुछ नहीं है और हम उनकी हर चीजों की भरपाई करेंगे। भारत सरकार भी आज पूरी तरीके से तैयार है, बहुत कुछ नया हो रहा है, हमारे देश में भी रेवोल्यूशन आया है, चेंजेस आए हैं, आज हम सेमी कंडक्टर बना रहे हैं, अच्छा आयुध बना रहे हैं, जाने कहां कहां हम लोग भी अपनी चीजों को लेकर के चल रहे हैं। तो किसी देश की बड़ाई करना ठीक है, लेकिन इतनी बड़ाई करना कि हमारे पास हम तो केवल उनके ऊपर डिपेंड है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज हम दूसरे देशों से तेल ना खरीद रहे होते। तो पहले रवि जी सॉरी, लेकिन मैं थोड़ा सा आहत हुआ, तो आप उसको अन्यथा ना लीजिएगा। अब रह गया आपकी बात। देखिए मैडम, सीधी सी बात है कि इस वक्त जो मार्केट के अंदर जो एक्चुअल स्थिति है, और सारे मार्केट के एक्सपर्ट मेरी बातों से वो करेंगे कि सारे डाटा को लेकर के बात करना और पॉइंट टू पॉइंट बात करने में सिर्फ इतना अंतर है कि इस वक्त जो पूरे विश्व की प्रायोरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें हैं, ऑयल, गैस और हथियार। इन 3 चीजों के ऊपर दुनिया सोच नहीं पा रही है। आज की तारीख में सिर्फ इन 3 चीजों पे ही डिपेंड हो गई है दुनिया, क्योंकि सारी सरकारों ने, तमाम देशों ने अपने सोने को उल्टा बेचना शुरू कर दिया है। आज उनकी स्थिति यह बन गई है कि सोने की खरीद जो अभी तक हो रही थी, एक तरफा खरीद हो रही थी एक तरफा, लेकिन अभी कितनी देशों को अपनी मिलिट्री क्रिएट करनी पड़ रही है, उनके पास में सोने के अलावा कुछ नहीं है, और कितने देशों को महसूस हो रहा है कि हमें अपनी मिलिट्री क्रिएट करनी है। तो इन सब परिस्थितियों में आज की तारीख में जैसी फेडरल बैंक को ब्याज दर बढ़ने की आशंका थी, हालांकि मीटिंग में ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी, और सीधी सी बात यह है कि अमेरिका ने जो शांति प्रस्ताव खारिज किया, सीधा सा असर उसका आया है, इसके अलावा कोई ऐसा असर नहीं। जब अमेरिका ने अभी पिछले रैली आई थी तो अपना बॉन्ड उन्होंने बायबैक करना शुरू किया था, $2 मिलियन रोज की जगह $4 मिलियन का करना शुरू किया था, जिसकी वजह से इतनी तेजी आई गई थी मार्केट में। और तब भी मैंने आपके चैनल पे भी बैठ के कहा था कि कतई किसी आम निवेशक को इस रैली में भागने की जरूरत नहीं है, स्टैंड बाई मोड पे रहना चाहिए और देखना चाहिए कि जब भी कोई देश या कोई बड़ा स्टेप होता है तो उसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी होती है, और उसको देखने के बाद ही आम निवेशक को या एक आम उसको करना चाहिए। आम ग्राहक हमेशा इससे दूर होता है, आम ग्राहक को इस पूरे वैश्विक वातावरण से कभी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब उसके जेब में पैसा होता है उसको मार्केट दिखती है और उसको अपना जो भी उसकी सोच है या उसकी खरीदी है उसको कर लेना चाहिए, क्योंकि आम निवेशक का कभी किसी भी भाव में नुकसान नहीं होता। आप चाहे 26,000 रुपए से लेकर के और 1,90,000 रुपए तक के मेरे सारे स्टेटमेंट को उठाकर देखेंगे, मैंने हमेशा आम निवेशक को यही राय दी है कि आप जब जेब में पैसा हो खरीदिए, आपका कभी नुकसान नहीं। मैं आज भी बोलता हूँ, आज के भाव में भी उसका नुकसान नहीं होगा, 1,90,000 रुपए खरीदेगा तो भी उसका नुकसान नहीं।
0: अच्छा, जल्दी से एक क्रॉस क्वेश्चन, सोने चांदी में अब फायदा निवेशक को होगा या ट्रेडर को होगा?
3: नहीं, दो फर्क है। देखिए, ट्रेडर का तो एक सीमित होता है, ट्रेडर तो जब भी ट्रेडिंग करेगा उसका एक लिमिटेशन होता है, उसका तो एक दायरा फिक्स होता है कि उसको 0.02% या 0.01% ये उसका फिक्स होता है। लेकिन जो आम निवेशक होता है, जब वो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है तो वो एक बहुत अच्छा मुनाफा कमाता है, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर हमेशा धोखा खाता है, उसका हमेशा नुकसान होता है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर सोने या चांदी में निवेश करना है तो हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए सोच के करें, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए मैं कभी भी कोई ऐसी नफे की सलाह नहीं देता, उसमें हमेशा उसका नुकसान होने की आशंका बनी रहती है।
0: जी चलिए, योगेश जी मैं आपके पास आऊंगी, मेरा वो सवाल अनुराग जी ने जवाब नहीं रखा लेकिन आप रख दीजिए, जो ये र्यूमर्स हैं कि 2 लाख पार चला जाएगा 2027 आते आते, या फिर अभी हाल फिलहाल में और एक हफ्ता 4-5 दिन रुक जाइए, 1 लाख से भी कम आ जाएगा, स्थिति आपको क्या लगती है? आपने तीनों वक्ताओं को सुना है। योगेश जी आपसे है सवाल मेरा।
4: अच्छा, मेरे से?
0: जी।
4: देखिए, ये जो अफवाह उड़ाने वाले हैं वो भी अमेरिका के लोग हैं, जो ठगने वाले हैं, जिन्होंने 5 लाख 7 लाख चांदी कह के और 4,30,000 रुपए तक चांदी लोगों के घर में घुसा दी, आज वो 2-2.5 लाख रुपए के 2.25 लाख रुपए के भाव में आ गई है, तो वो नुकसान में बैठे हैं। लेकिन हमें रूमर में नहीं जाना चाहिए, हमें फैक्ट देखने चाहिए। 2022 से 2026 के बीच का सफर देखना चाहिए कि हमारा कितने टाइम सोना चांदी बढ़ा है। मैंने पहले भी बताया था आपके चैनल पे कि 2022 में 50,000 रुपए सोने का भाव था और 65,000 रुपए चांदी का था। जब अमेरिका ने $300 बिलियन रूस के फ्रीज किए, तभी से हर देश के अंदर पैनिक माहौल आ गया कि ये हमारे को भी फ्रीज कर सकता है, हमारी इकोनॉमी का भी बट्टा बैठा सकता है। तो उन्होंने अपने डॉलर को गोल्ड में रिजर्व में कन्वर्ट करके करके और ये भाव 7 गुना चांदी और 4 गुना सोने का। अब उसमें 2026 में करेक्शन ये देश पूरा मांग रहा है, पूरे वर्ल्ड में सभी देशों ने, सेंट्रल बैंक की बात करें तो सभी सेंट्रल बैंक तकरीबन अपनी बाय कर चुके हैं चाइना को छोड़ के, क्योंकि चाइना वर्ल्ड ऑर्डर में डॉलर की जगह अपने सुपने देखता है कि हमारा युआन भी डॉलर की जगह कहीं आ सकता है, तो वो सिर्फ सोने के माध्यम से। ऐसी हमारे अगर देश की बात करें तो सभी जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनके घर में 1,93,000 रुपये तक का सोना और 4,30,000 रुपये तक की चांदी। अब ये आप पिछला इतिहास 2008 का 11 का आप उठा के देखिए तो 40% तकरीबन सोने में और 55% और 60% चांदी में करेक्शन आता है। ये बढ़ बढ़ के जो करेक्शन आ रहा है, 1,65,000 रुपये भी गया था नीचे में, फिर से वही पोजिशन आ चुकी है कि आज 1,46,000 रुपये नीचे में बिक गया। तो ये एक करेक्शन है, इससे हमें नहीं घबराना चाहिए। हमको हर बाई ऑन डिप्स रखना चाहिए, हर नए लो पे हमको सोना खरीदना चाहिए और कहीं भी अगर तेजी आती है तो मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि 2 लाख रुपए दिवाली पे आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सोना कोई भी खदानें बंद नहीं होने वाली है, ना ही कोई ऐसा अकाल पड़ने वाला सोने का, ना ही सेंट्रल बैंकों की बहुत बड़ी बाइंग आने वाली है। तो हमको इतनी घबराहट नहीं रखनी चाहिए। अभी 1,93,000 रुपए तक तो सोने को पहुंचने दीजिए। 1 लाख रुपए जो सोने की बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपए सोना आ सकता था यदि 9% कस्टम ड्यूटी नहीं बढ़ी होती या 12% एक साल में रुपया कमजोर नहीं होता तो 1 लाख रुपए भी सोना आ जाता। अभी भी इतनी मंदी नहीं देखनी चाहिए कि 1 लाख या 2 लाख, अभी हमको रेंज बाउंड पोजिशन में रहना चाहिए कि 1,40,000 रुपये और 1,70,000 के बीच का सफर है, ये ऊपर नीचे होता रहे। अभी फेड रेट जो बढ़ाए हैं अमेरिका ने, उसके साथ साथ जापान ने भी बढ़ाए और भी देशों ने बढ़ाए, तो इसका असर पूरे वर्ल्ड पे आता है क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर में सिर्फ डॉलर ही अभी मान्यता प्राप्त है। अगर कहीं इसका कोई सब्स्टिट्यूट आ जाता है तो फिर अमेरिका के रेट बढ़ाने से, फेड रेट के या कोई और कदम उठाने से पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट नहीं आएगा। जब तक ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज नहीं होगा, जब तक हर देश के ऊपर इसका इफेक्ट आता है, जैसे ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा या हमारे ट्रंप साहब जो है ये मध्यावधि चुनाव में हार जाएंगे तो और सुलझावा राष्ट्रपति आएगा, तब जाके समस्या खत्म होगी। क्योंकि वो एक स्टेटमेंट रात को दे देते हैं शनिवार की रात को, ईरान के साथ हमारा समझौता नहीं होगा और हम ये शर्त नहीं मानेंगे, सोमवार को बाजार नीचे गिर जाता है, तो निवेशकों का लाखों करोड़ रुपया, मुझे तो ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब के कोई संबंधी या कोई मित्र वो सट्टा बाजारी में मतलब इन्वॉल्व है, क्योंकि वो कभी कुछ स्टेटमेंट देते हैं सोना तेज करने का, कभी सोना मंदा करने का। तो इससे हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें हर भाव में अभी जो भाव चल रहे हैं उसमें भी सोना खरीदना चाहिए। इससे नीचे भी अगर 10-5 हजार भी गिरता है तो वहां पर भी खरीदना चाहिए। 1 लाख रुपए हो जाएगा या फ्री हो जाएगा ऐसा नहीं है। अगर सभी देशों ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया, डॉलर का बहिष्कार कर दिया, सोना 2 लाख रुपए भी आ सकता है, 2.5 लाख रुपए।
0: खैर वो अभी दूर की कौड़ी। एक बार प्रोफेसर धीरेज, जो रवि जी ने बात कही थी जिसको लेकर अनुराग जी उनकी बात से सहमत नहीं, एक रिएक्शन उस पर भी चाहूंगी आपका। और दूसरा देखिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ईरान के साथ जंग की जो स्थिति पैदा हुई, जो अभी भी चल रहा है तनाव, उसका अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर असर तो पड़ा है। और दूसरी बात यह है कि 3 नवंबर को चुनाव भी होने वाले हैं, और यदि मान लीजिए कि अगर मेजोरिटी नहीं मिलती है, एक एक ऑप्शन ये लेके चलते, तो चैलेंज कितना बड़ा हो जाएगा फिर?
1: बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, लेकिन रवि जी ने जो बात कही वो बात सच है, कहीं ना कहीं सच है कि इंडिया या पूरे विश्व को जो डोमिनेंट तरीके से यूएस देख रहा है या यूएस की इकोनॉमी है वो सच है। लेकिन जो अनुराग जी ने भी कही वो बैलेंसिंग बात कही, वो ये है कि भारत 144 करोड़ के साथ कंज्यूमर इकोनॉमी है, और अगर ऐसा नहीं होता तो यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप को अभी ब्रिक्स के तुरंत बाद जो है ना चाइना के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग को बुलाना नहीं पड़ता, रेड कारपेट बिछा के उनको वेलकम नहीं करना पड़ता। यानी कि अमेरिका अगर ये चाहे कि जो दादागिरी से वो पहले चलता रहा वो उस तरीके से आज की डेट में इंडिया और चाइना ब्रिक्स में ये दो कंट्रीज ऐसे हैं जिनको वो इग्नोर नहीं कर सकता, और अगर मैं जोड़ लूं इंडोनेशिया तो इंडोनेशिया को भी नहीं कर सकता। तो ये मेरा जो आपका प्रश्न था उस पर था कि अनुराग जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इग्नोरेंस इज नॉट पॉसिबल इन द करेंट सिचुएशन, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं इकोनॉमीज के बेस पे फंसा हुआ अभी इस वक्त दिखता है। ये सच है कि उसकी इकोनॉमी अच्छी है, ये सच है कि उसकी इकोनॉमी डेवलप्ड है, ये सच है कि जो है ना उसका कर्ज $40 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुका है, इन्फ्लेशन हाई रेट पे जा रहा है, लेकिन ये भी सच है कि कहीं ना कहीं उसे जब मार्केट में देखना होगा तो हमें अमेरिका को इस पे समझना होगा कि चाइना और इंडिया को इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। रही बात इसकी कि मैं top 10 इकोनॉमीज को लूं, जो अनुराग जी ने बात की अपने कि ऑयल और नेचुरल गैस और डिफेंस, तो मैं ये बात से सहमत हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर्स 2024 में जो ग्लोबल प्रोडक्शन था अगर मैं 1/5 वो यूएस था, विश्व के सबसे बड़े गैस प्रोड्यूसर्स में यूएस था। और जबकि अगर हम उसके डिफेंस में देखें, वेपन्स की रिक्वायरमेंट्स को देखें, तो लगभग लगभग $956 बिलियन के आसपास उसकी सबसे हाईएस्ट जो है ना रिक्वायरमेंट थी। यानी कि आज भी दुनिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं
0: जी
1: वो बेसिक नीड से हटके, मैडम वो कहाँ जा रहे हैं, $954 बिलियन वेपन्स में इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना $336 बिलियन, जर्मनी 114 है, और अगर हम अपने देश की बात करें तो लगभग 96 के आसपास हम लोग जो है ना कहीं $92 मिलियन के आसपास हम लोग जाके टिकते हैं।
0: ठीक
1: कहने का मतलब यह है कि तेजी से बढ़ती हुई ऑयल डिमांड, इंपोर्ट डिपेंडेंसी और गैस डिमांड भी जो बढ़ रही है, जो फर्टिलाइजर्स पावर और इंडस्ट्रीज रिक्वायरमेंट है, तो भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी
0: ठीक
1: है,
0: है
1: उसका कारण यह है। ये बात सच है, देखिए ग्रोथ हमारी बहुत हाई है,
0: ठीक है
1: देखिए
0: धीरे जी,
1: इकोनॉमी
0: मुझे ब्रेक
1: हम
0: लेना।
1: पढ़ते
0: हाँ
1: हैं,
0: ठीक
1: डॉक्टर
0: है,
1: रवि को भी, मैं रवि को यहाँ
0: नहीं, यहीं
1: नहीं
0: से अपनी
1: करना।
0: बात को आप आगे बढ़ाएगा, मेरे दूसरे सवाल का जवाब अभी रहता है, यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं, आप रहिए हमारे साथ।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: सोने चांदी में खेल अजब कहानी गजब इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। धीरे जी ब्रेक पर जाने से पहले सवाल अधूरा रह गया था, 3 नवंबर को जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर अगर मेजोरिटी नहीं आती है तो फिर।
1: जी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने पूछ लिया कि अगर मेजोरिटी नहीं आती है तो किधर जाएगा। तो निश्चित रूप से ये लगता है कि जो वर्ल्ड का जो डिसऑर्डर अभी बना हुआ है, इकोनॉमिक डिसऑर्डर, अगर हम लोग बात करें, मैम देखिए यूएस भी आज की डेट में, नवजोत जी हमें समझना होगा कि एशिया पे ही डिपेंड है, चाहे वो मिडिल ईस्ट एशिया हो, चाहे वो हमारा सदर्न एशिया हो, चाहे वो हमारा नॉर्थ एशिया हो, एशियन इकोनॉमी, हम ऑयल से लेके सारी चीजें सप्लाई कर रहे हैं। जो बेसिक ऑयल एंड एनर्जीज की बात करें जिसमें कि रसिया भी आता है, वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर्स एशियन इकोनॉमी से ही आता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर नहीं आया तो नहीं आया तो मैं ये देख सकता हूं कि विश्व की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। नहीं आया तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर जो अनरेस्ट क्रिएट हो रहा है, जो डिसऑर्डर है ड्यू टू दी कॉन्फ्लिक्ट, जैसे इसराइल है, ईरान है, और इसके साथ जो यूएस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो मुझे लगता है कि उम्मीद करते हैं सभी लोग, जैसा कि योगेश सिंघल जी ने कहा कि अगर ये नहीं रहते हैं ट्रंप साहब और आगे अगर कुछ ऐसा होता है तो निश्चित रूप से हम
0: नहीं, ट्रंप
1: पॉजिटिव
0: साहब तो अभी
1: पॉजिटिव।
0: रहेंगे, लेकिन ये है कि अब अपनी नीतियां उस हिसाब से अगर नहीं आती है तो ये सारा प्रेडिक्शन है।

0: हमारे बड़े भाई अनुराग भाई, धीरेन्द्र भाई, मैं माफी चाहता हूँ। मेरा तो एक ही कहना था कि हम जिस सिस्टम पे बैठकर अभी इस डिबेट को कर रहे हैं ना, ये भी अमेरिका का है, हमारे इंडिया में सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा था। खैर, तो इलेक्शन से इसका बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रंप साहब को पता है कि अगली बार हम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि 2 बार का उनका कार्यकाल खत्म, उसके बाद वो कार्यकाल में नहीं आएंगे। बाजार में मैंने अभी अभी आपको बताया कि मैं अगले हफ्ते तक यहां से प्राइस को 7,000 रुपये ऊपर देख रहा हूं, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का पूरा मैकेनिज्म है। दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर, हम डिमांड और सप्लाई से चलते हैं, ना कि वो प्रिडिक्शन पे चलते हैं। प्रिडिक्शन नाम का कोई भी शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं है। प्रिडिक्शन भी डिमांड और सप्लाई से, कितना सप्लाई होगा कितना डिमांड होगा। अगर गोल्ड की बात किया जाए, क्रूड की बात किया जाए, नेचुरल गैस की बात किया जाए, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पूरी दुनिया में है तो अमेरिकन इकोनॉमी है। चाहे हेनरी हब की बात कर लें, जहां नेचुरल गैस है, चाहे आप बात कर लें वेनेजुएला पे कब्जा करने का कारण था क्रूड का बड़ा सप्लाई बनना। तो प्राइस इस यही बम्प एंड डंप में रहेगा। अभी कोई भी ऐसे बड़े इन्वेस्टर नहीं है बाजार में कि गोल्ड में बहुत ज्यादा चंक डाल देंगे, और कोई ऐसे नहीं है जो कहेंगे चलो चलते हैं गोल्ड का प्राइस नीचे। गोल्ड विल रिमेन गोल्ड, लेकिन गोल्ड का प्राइस को बहुत सस्ता देख रहे हैं वो भी नहीं होगा, ऊपर देख रहे हैं। हमारे अकॉर्डिंग इलेक्शन से इस पे गोल्ड पे फर्क नहीं पड़ेगा, जो प्राइस ऊपर नीचे चल रहा है एक वो हर्ट बीट की तरह चलता रहेगा।
1: रवि जी, मैं आपको एक दो और एजेंसीज की रिपोर्ट्स के बारे में बताती हूँ जिसको लेकर चर्चा लगातार हो रही है। जेपी मॉर्गन है, बैंक ऑफ अमेरिका, ये तमाम ऐसी एजेंसी हैं और ये उन्हीं का अनुमान है कि 2027 में सोने का रेट डबल हो जाएगा। ये लगातार अनुमान आ रहा है। पिछली कुछ चर्चाओं में हमारे साथ नहीं थे, प्रोफेसर धीरेश हमारे साथ थे, योगेश जी लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन इस पर मैं एक रिएक्शन आपका चाहूंगी। आपने कहा कि कोई 2 लाख के ऊपर नहीं जाएगा, 1 लाख के नीचे नहीं आएगा, धीरे धीरे सोना अपनी चाल चलता रहेगा, लेकिन ये बड़ी एजेंसीज हैं जो अनुमान ये लगा रही है कि 27 में डबल रेट हो सकता है। अब इस पर आप क्या कहेंगे?
0: मैं छोटी मुंह बड़ी बात, अगर मैनिपुलेशन का सबसे पहले केस करना चाहिए तो इन लोगों पर करना चाहिए। इन लोगों ने तो बोला था कि 1 लाख के ऊपर निफ्टी चला जाएगा। झुंझुनवाला साहब का पोस्ट था कि निफ्टी 50,000 के ऊपर चला जाएगा, झुंझुनवाला साहब तो रहे नहीं। अगर मॉर्गन बैंक ऑफ अमेरिका बैंक है, बैंक का व्यू 30 ईयर्स का होता है, लोकल ट्रेडर और इन्वेस्टर का व्यू 30 ईयर्स का नहीं है। अगर मैनिपुलेशन की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि चलो जी 50,000 का चला जाएगा। निफ्टी, मैं निफ्टी से एग्जाम्पल लेता हूँ, तो रिटेल ट्रेडर, रिटेल इन्वेस्टर पैसा डालना शुरू करते हैं, उनको बाजार का बम्प एंड डंप नहीं पता है, और ऊपर जाके वही लोग सबसे बड़ा शॉर्ट सेलिंग करते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग तो रिटेल ट्रेडर को नहीं आता है ना। तो ये चाहे कुछ भी कह लीजिए, बाजार का प्योर मैनिपुलेशन है, जो कि लीगल क्राइम कहा जाता है इसको, कि आप एक रिपोर्ट दिए कि ये ऐसा हो रहा है। मैं अगर 50 रिपोर्ट कर लूं, गोल्डमैन सेक का, मॉर्गन स्टेनले का, बैंक ऑफ अमेरिका का, या बड़े बड़े इन्वेस्टर का, इन्होंने कहा, जिन लोगों ने कहा कि 2020 में निफ्टी 50,000 का हो जाएगा, अब किस पे आप कंप्लेन करेंगे? उनका काम है कहना, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट को ऊपर में खरीद रखा है, और जब तक रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर पैसा नहीं डालेंगे तब तक प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। प्राइस ऊपर नहीं जाएगा तो बेचेंगे कैसे? तो प्राइस डालने के लिए उन्होंने कहा, ये हमारी राय है। राय है, वह राय का मतलब क्या होता है? आपकी एक राय के बेसिस पे लोग पैसा डाल देते हैं,
1: और
0: लेकिन
1: वहीं से राय से र्यूमर्स बन जाती है।
0: एक क्रिमिनल और फाइनेंशियल क्रिमिनल में अंतर क्या हुआ? तो लोगों को समझेगा कि एक सही सोर्स से आ रहा है। लेकिन आप बताइए ना कि मेरे पास तो 50 रिपोर्ट है, मैं डेट के साथ बता सकता हूँ जहां मॉर्गन स्टेनले के तरफ से रिपोर्ट आई कि निफ्टी 50,000 क्रॉस कर जाएगा। डेट बताइए ना। मैं बोलता हूं कि हम 100 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे, कब तक? इसका मतलब
1: पर
0: अगर
1: रवि
0: अगर
1: जी, ये भरोसेमंद एजेंसियां हैं ना, ऐसी तमाम एजेंसियां हैं, भरोसा करते लोग इन पे।
0: बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। पॉलिटिक्स और व्यापार दोनों का मकसद आज के रेट में पैसा कमाना है, तीसरा कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स झूठे वादे बेच के पैसे कमाए जाते हैं, और व्यापार में भी वादे बेच के पैसे कमाए जाते हैं। क्राइम का तरीका अलग होता है और कुछ नहीं होता है। आप हमें हम 50 रिपोर्ट बताते हैं ना, आप इससे अलग नहीं हट सकते हैं कि बहुत बार मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट आई 50,000 निफ्टी। हमें तो नहीं लगता है कि निफ्टी को हम 50,000 2027 में भी देखेंगे, या 26,000 24 सितंबर 2024 का रेट था 26,000 का, और आज रेट है 22,700 का रेट है। तो वो कब होगा? ये लोग ऊपर में बाइंग बना हुआ है, जाता है प्राइस ऊपर से बेच देते हैं। इंफोसिस का प्राइस आधा है, एचडीएफसी बैंक का प्राइस आधा है, आईटीसी का प्राइस आधा है। तो जो ये बातें करते हैं, ये बातें अलग है, बातों करने में और डेटा तथ्य एजेंसी है, तो एजेंसी ट्रेडर है, वो ट्रेडिंग एजेंसी जो है वो अपना डेटा देंगी कि हम जी

0: यहाँ तक पहुंच जाएगा ताकि आप खरीदें और वहां से बेचेंगे, तो
1: ठीक
0: उस
1: है।
0: डेट
1: हाँ
0: क्यों? अगर अगर उससे ऊपर प्राइस जाने की उम्मीद थी तो अब तो बाजार में सब कुछ पब्लिकली अवेलेबल है, तो मॉर्गन स्टेनली ने उस डेट में क्यों बेचा, अपने अपने पोर्टफोलियो को उसी रेट में क्यों निकाला? अगर सब कुछ पे जाता तो आपने शॉर्ट सेल क्यों किया? इसका मतलब यह है कि हाथी का दांत दिखाने का अलग होता है, खाने का अलग होता है। मैं इस साल भी सिर्फ यूएस मार्केट को बहुत गौर से देखने के लिए 128 दिन अमेरिका में बिताया हूं, फरवरी से लेकर अभी तक, मार्च से लेकर अभी तक, फरवरी के पहले तो बिताया ही, तो मैं देखता हूं कि किस तरह से बाजार सोचते हैं। मुझे को अमेरिकी नागरिकता लेने का शौक नहीं है, किसी से अगर सीखना है तो सीखना चाहिए कि गोल्ड के प्राइस को कंट्रोल करें, सीबोर्ड कंट्रोल करें, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज कंट्रोल कर रही है, और वो सब आज का एक्सचेंज नहीं है, वो सब सैकड़ों वर्ष पुराने एक्सचेंज है। इंडियन मार्केट ही बना 1979 में, हमारा बाजार चैनलाइज हुआ सेंसेक्स से। तो ये डेटा मैनिपुलेशन अपने जगह पे, प्लस इंश्योरेंस कंपनियों का जो डेटा आता है उस पर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो हमसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि उनका व्यू 40 साल का है, वैनगार्ड का व्यू, मिड लाइफ का व्यू, बैंक ऑफ अमेरिका का व्यू, ट्रेडिंग एजेंसी नहीं है। ट्रेडिंग एजेंसी का रिपोर्ट अलग होता है, इन्वेस्टमेंट एजेंसी का रिपोर्ट अलग होता है, उनको उनको रिटर्न बहुत कम देना होता है।
1: ठीक
0: अगर लोग, बहुत सारे लोग ये भी कह के बेचते हैं कि आप म्यूचुअल फंड ले लीजिए, और कहते हैं म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर इक्विटी मार्केट नहीं बढ़ा, आपका और बाजार नहीं बढ़ा, तो म्यूचुअल फंड कहां बढ़ गया? तो इसमें मुझे किसी प्रकार का आपको ना क्लेम कर रहे ना ब्लेम कर रहे हैं। तो एजेंसी अपनी जगह पे है, ओएनएससी का डायलॉग है, जागो ग्राहक जागो, अपने आप पूर्णतः प्रयोग कीजिए।
1: एक बार जल्दी से प्रोफेसर धीरेश, मैं अनुराग जी आपके पास आती हूँ, जल्दी से 30 सेकंड में इसका जवाब रखिएगा। मैंने एजेंसियों वाली बात की और आपको याद होगा एजेंसियों के कोट पर हमने कितनी चर्चाएं की हैं, और अभी योगेश जी भी बता रहे थे कि र्यूमर्स फैलाई जाती हैं, कितना
2: देखिए
1: भरोसा करें।
2: देखिए, ये सच है कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जेपी मॉर्गन एक बहुत ही अच्छी एजेंसी है। उसने 5,243 ओंस का 2026 में एवरेज निकाला था, 6,000 अभी आ चुका है और 6,300 वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं 2027 के लिए। तो मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं वो मार्केट को इम्पैक्ट तो डालते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि मार्केट में एक एक मैम हमारे यहाँ थ्योरी है कीन्स ने दी इकोनॉमिक्स में, जैसे कहते हैं नैरेटिव सेट करना। बेसिकली ये जो रवि जी कह रहे हैं ना, ये सच है कि यूएस के अंदर ऐसी ऐसी एजेंसीज हैं जो ट्रेडिंग तो नहीं है बट वो पूरे दुनिया में जो है ना मार्केट का जो है ना मूड माइंड नैरेटिव सेट करते हैं, उसमें एक जेपी मॉर्गन है। मैं इतना ही कहूंगा, इससे
1: ठीक
2: ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा कि जेपी मॉर्गन के ऊपर काफी स्टडी की जाती है और उससे देश दुनिया की अर्थव्यवस्था चलती है, ये जानते हैं क्योंकि
1: हाँ
2: सारे इकोनॉमिस्ट और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में उसको पढ़ाया जाता है। जियो पॉलिटिकल रिस्क की भी बात कर रहे हैं मैम जेपी मॉर्गन, यूएस ईरान इसराइल जियो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्रिडिक्शन है, लेकिन उस प्रिडिक्शन में इंडस्ट्रियल डिमांड कितनी होगी ये उन्होंने कहीं नहीं कहा है। यानी कि ये बात सच है कि ट्रेडिंग एजेंसीज को दरकिनार कर रही है जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट, ये मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूं, मेरे
1: ठीक
2: पास
1: है,
2: रिपोर्ट है, मैंने
1: चलिए
2: उसको स्टडी किया है मैं।
1: जल्दी
2: जी
1: से एक बार अनुराग जी आपके पास आना चाहूंगी, इस पर भी आप अगर अपना जवाब रखना चाहें तो रखिएगा, लेकिन साथ ही साथ स्थिति जरा चांदी की भी समझाते चलिए सर।
3: देखिए, जैसा अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे, रवि जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से बात करी, धीरेज जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से बात करी है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब, देखिए, एक मिनट आपकी बात र्यूमर पे आज कर लेते हैं, फिर आगे आपके चांदी के ऊपर भी जवाब दे दूंगा। देखिए, जब र्यूमर के ऊपर सबसे बड़ा आज दिक्कत क्या आ रही है कि जो अमेरिकी एजेंसियां हों, चाहे वर्ल्ड की कोई भी एजेंसियां हों, उन्होंने भी आम निवेशक की नब्ज पकड़ ली है। वो जानते हैं कि आज सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन्स हैं, और जब भी आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये रिपोर्ट जा चुकी है कि सोने और चांदी का कितना परसेंटेज आज की तारीख में माइंस में अवेलेबल है और कितना स्टॉक किस देश के पास उपलब्ध है, कब किस देश को अपना माल बेचना है, कब किस देश को अपना माल खरीदना है। बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं, शायद आप लोगों को नहीं पता, जो हिडन रूप में काम करती हैं, अलग अलग सरकारों के लिए काम करती हैं, अलग अलग देशों के लिए काम करती हैं, और वो इस तरीके के र्यूमर क्रिएट्स किए जाते हैं कि जब अगर चाइना को माल खरीदना है या अमेरिका को माल खरीदना है या किसी को माल बेचना है, उस हिसाब से र्यूमर्स मार्केट में लाए जाते हैं। मैं जेपी मॉर्गन पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन इस तरीके के तमाम र्यूमर्स बहुत बड़ा काम करते हैं, और जो आम निवेशक होता है जिसको कुछ भी नहीं पता होता, उसको बस ये पता होता है कि ये वर्ल्ड की बहुत बड़ी एजेंसी है और इसने ऐसा बोला है तो ऐसा हो जाएगा। मैं हमेशा, मैंने आपके टीवी चैनल पे भी कई बार बोला है कि आम निवेशक को भी कभी भी कोई अचानक कोई रैली आए उसमें एकदम से भाग नहीं लेना चाहिए, पहले उसको स्टैंड बाई मोड पे रहना चाहिए, देखना चाहिए कि ये क्यों हुआ, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, तभी जाके उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए करनी चाहिए, कभी शॉर्ट सेलर नहीं बनना चाहिए। लोग क्या करते हैं, अचानक से कोई र्यूमर आया, जेपी मॉर्गन ने बोला 27 में ऐसा हो जाएगा। देखिए, आप एक छोटी सी सुई भी खरीदने जाते हैं तो आप उसके लिए पहले पूरी तरीके से सोचते हैं, हर चीज देखते हैं, तब आप एक रुपए का आइटम खरीदते हैं। आप जब सोने और चांदी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपनी बुद्धिमानी का भी प्रयोग करिए, अपने लोगों का भी प्रयोग करिए। और इसमें मैं एक बात और सलाह दूंगा, मैं बार बार सारे आपके निवेशक को बहुत बड़ी सलाह देने जा रहा हूं, मेरी इस बात को ध्यान से सब लोग समझ लें। जो आप इतने बड़े बड़े चैनल्स पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, हम जैसे लोगों को बुलाते हैं, हम लोग मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, हमको जो लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल काम करते हैं, उससे आदमी को ज्यादा सबक लेना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पे आए हुए र्यूमर्स से। आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो क्या क्या समझाती है सुबह से शाम तक, तो उस पे नहीं जाना चाहिए लोगों को। लोगों को पहले अपने लोकल चैनल,
1: इसीलिए आप तमाम एक्सपर्ट्स को बुलाया है गुड न्यूज टुडे पर, ताकि आप एकदम पिक्चर क्लियर कर दें। सर जल्दी से, वक्त की कमी है, चांदी पर आ जाते हैं।
3: एक मिनट आपका और लूंगा। चांदी के ऊपर भी मेरा यही प्रेडिक्शन है कि जैसे अभी योगेश जी ने भी थोड़ी देर पहले बोला था, रवि जी ने और धीरेश जी ने भी, मैं आपसे यही कहूंगा कि इन लोगों ने जो भी तरीके का एक र्यूमर करके आज आम आदमी के घर में 4.5 लाख रुपए के भाव की चांदी इकट्ठा कर दी है, पूरे विश्व के सारे निवेशक के घर में, और आज की तारीख में वही चांदी 2 लाख 2.25 लाख रुपए के ऊपर घूम रही। इसका भी कारण कहीं ना कहीं र्यूमर ही है, क्योंकि उस समय लोगों को लग रहा था अब चांदी दोबारा मिलेगी नहीं, खरीद लो वरना चांदी दोबारा मिलेगी नहीं। आज खरीद रहा था, कल फायदा हो रहा था। मैं अभी भी कहूंगा चांदी में कोई अभी ऐसी तेजी आने वाली नहीं है, सोने में भी कोई ऐसी, जैसे योगेश जी ने कहा, मैं सहमत हूं उनसे, कोई भागम भाग की आवश्यकता नहीं है। लोगों को बहुत ही ठंडे दिमाग से इन्वेस्टमेंट करने की तरफ सोचना चाहिए। अभी मुझे कोई इतनी तेजी, मैं बोल दूं दिवाली तक भी सोना मैक्सिमम 1,65,000 से ऊपर नहीं जाएगा, और चांदी भी हद से हद 2.5 लाख रुपए के आसपास ही रन करेगी, ऐसा मेरा अनुमान है, अगर इन बीच में कोई अलग कोई सिनेरियो क्रिएट ना हुआ।
1: ये बहुत इंपॉर्टेंट बात अनुराग जी आप कर रहे हैं, और दोनों एक्सपर्ट्स हमारे यही राय दे रहे हैं कि बिल्कुल पैनिक नहीं कीजिए, र्यूमर्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, जो एक्चुअल तस्वीर है वो लगातार हम आपको यहाँ गुड न्यूज टुडे पर दिखा रहे हैं। जल्दी से, क्योंकि 2 ही मिनट का वक्त बचा है, योगेश जी एक आखिरी सवाल 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। सर आज की तारीख में अगर मुझे सोना खरीदना है तो किस फॉर्म में खरीदना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन को लेकर भी बहुत सारे लोगों को है।
4: देखिए आज की तारीख में अगर सोना खरीदना है तो फिजिकल तो बेस्ट है आज की तारीख में,
1: ठीक है,
4: क्योंकि वर्ल्ड में पूरी जगह तानाशाही चल रही है, वर्ल्ड में सारी ये ना डिसऑर्डर हुआ पड़ा है, तो सोना अपने को आई हैंड रखना चाहिए, क्यों कभी भी कोई भी मुसीबत में हम लोग खर्च कर सकते हैं।
1: चलिए, फिजिकल गोल्ड सबसे बेस्ट है। दिनेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख दीजिए जल्दी से।
2: मैम चूंकि गोल्ड जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट की बात की थी, जेपी मॉर्गन ने क्वार्टर 26 में मैम 6,000 औंस की बात की थी, जबकि दूसरी एजेंसी है यहाँ पे गोल्डमैन सैच, वो 4,900 औंस की बात करता है ना। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि जेपी मॉर्गन कुछ और डेटा दे रहा है, एक दूसरी एजेंसी की भी बात हम लोग कर लें, ताकि ये ना हो कि हम किसी को यहाँ क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक गोल्डमैन सैच भी जो ना टॉप 2 एजेंसीज में आता है, 2026 में वो कह रहा है कि 225 टन पर क्वार्टर की बात कर रहा है गोल्डमैन आपका जो जेपी मॉर्गन, और ये केवल 50 टन पर मंथ की बात कर रहा है गोल्डमैन सच। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एजेंसीज अपना डेटा देती हैं, एनिमल स्प्रिट जैसा कि मैंने आपको बात कहा था कि थ्योरी है वो नैरेटिव सेट करने के लिए होती है, तो वो होता है, लेकिन हम लोग सारे प्रैक्टिकल लोग हैं। गुड न्यूज टूडे का साधुवाद है कि आप लोग बुलाते और एक एक्चुअल पिक्चर सामने रखते हैं दर्शकों के लिए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद।
1: बिल्कुल, कोशिश यही रहती है कि जो असली तस्वीर है वो लोगों तक पहुंचे। 30 सेकंड का वक्त है, चलते चलते रवि जी आपसे जानना चाहूंगी, आज की तारीख में निवेश के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म कौन सा है, अगर मैं मेटल्स के मामले में बात करूं तो?
0: सोना है सोना ही रहेगा, और मैं तो वर्चुअल फॉर्म में हर प्रोडक्ट को खरीदता हूँ, सही प्राइस है गलत प्राइस है, सही स्टॉप लॉस लगाता हूँ, ट्रेड करता हूँ, और ट्रेड करने के बाद उस प्राइस से हम निकल जाते हैं। तो प्लेटफॉर्म तो एग्जैक्टली हम किसी ब्रोकर की बात नहीं कर सकते,
1: वर्चुअल या फिजिकल, क्योंकि योगेश फिजिकल के बारे में बोल रहे हैं कि वो ज्यादा बेटर आपके हाथ में, एटलीस्ट वो सॉलिड चीज होती है।
0: लॉन्ग टर्म व्यू नहीं रखता हूँ कि मुझे 50 साल का व्यू रखना है, मैं वर्चुअल के साथ जाता हूँ।
1: ठीक है अनुराग जी, क्या सलाह देंगे?
3: मेरी ये सलाह है कि अगर आपका 100 रुपए अगर आपको इन्वेस्ट करने हैं तो आपको 60 रुपए फिजिकल में, 60 से 70 रुपए फिजिकल में करने चाहिए, लेकिन 30 रुपए आपको वर्चुअल में भी करना।
1: चलिए ये सबसे अच्छी सलाह है, फिजिकल और वर्चुअल आप दोनों में कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
1: न सिर्फ पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, बल्कि मैदानी राज्यों की बात करें तो झमाझम बारिश यहां भी हो रही है। मौसम के मिजाज में इस बदलाव के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक सितंबर में ही लोगों को नवंबर जैसा एहसास हो रहा है।
7: ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानों में झमाझम बारिश, मौसम का ये मिजाज सितंबर के आखिरी हफ्ते में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें धर्मशाला की हैं, जहां धौलाधार की ऊंची चोटियों पर फिर से बर्फबारी हुई। सितंबर महीने में ये दूसरा मौका है जब धौलाधार की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी देखने को मिली है। इस बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट आई है और लोगों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े तक निकालने पड़ रहे हैं।
8: जो हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू में, और यहाँ पे हल्की बर्फबारी रिपोर्ट की गई, तो अभी भी देखिए आज अर्ली मॉर्निंग से ही प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट्स में हल्के से मध्यम बारिश का दौर जारी है और लगभग पूरे प्रदेश में क्लाउडिंग छाई हुई है।
9: ठंड भी बढ़ रही है और मौसम भी बदल रहा है।
10: तो कोई खास दिक्कत है, चैलेंजेस सावधानियां क्या ले रहे हैं?
9: चैलेंजेस एक्चुअली बैग में रेनकोट डाल के रखें और अम्ब्रेला साथ में रखें। बाकी धर्मशाला वैसे भी सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है हिमाचल प्रदेश में, सो बी केयरफुल।
7: धौलाधार की बर्फबारी ने जहां मौसम को खुशनुमा बना दिया है, वहीं पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान ला दी है। पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि मौसम का ये बदलाव आने वाले दिनों में सैलानियों को आकर्षित करेगा और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज से मौसम में सुधार आने की संभावना है। इस दौरान कांगड़ा और मंडी के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद 30 सितंबर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ होने की संभावना है।
8: संभावना है कि प्रदेश में, पूरे प्रदेश में लगभग मौसम खुल जाएगा। इसी दौरान अगर तापमानों की अगर बात करें तो हमारे लगभग ये जो एक्टिविटी है जो बीते 48 घंटे से चल रही है, तो इसके चलते जो तापमान है दिन के वो औसतन 2 से 4 डिग्री सामान्य से कम आके गए हैं। सबसे देखिए जो फॉल देखा गया वो कल्पा में देखा गया, जहाँ पे जो दिन का तापमान था वो 8 डिग्री के आसपास, जो कि सामान्य से 12 डिग्री कम था।
7: हिमाचल के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी कमोबेश मौसम का ऐसा ही मिजाज देखने को मिला है। वहाँ भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ये तस्वीर केदारनाथ धाम की है, जहाँ ताज़ा बर्फबारी से केदारनाथ में ठंड बढ़ गई है। ठंडी हवाओं के बीच सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट का असर साफ महसूस किया जा रहा है। नौबत ये है कि धाम में मौजूद श्रद्धालु गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि 29 और 30 सितंबर को राज्य के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। शिमला से विकास शर्मा और रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: क्या आपके विदेश यात्रा में बाधाएं आ रही हैं? क्या विदेश में बसने में समस्याओं का सामना कर रहे हैं? कौन से ग्रहों का विदेश से है संबंध और कैसे उठाएं इनका लाभ, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
2: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। आज चर्चा पहाड़ों की करें, क्योंकि मौसम वहाँ बदल चुका है और उसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। और देखिए, सितंबर में ही हम लोग को नवंबर वाला एहसास हो रहा है, और आज सबको चाय पीने में बहुत मजा आएगा।
11: क्यों? कल से ही मजा आ रहा है।
12: चाय का कोई फीडबैक चाहता है तो आई कैन गिव, डेफिनेटली
1: बताइए
11: कैसी है। बताइए,
12: अच्छी चाय
11: ले लो,
12: तो हमें पीने
11: जिस जिसको चाय पसंद है वो ले सकता है।
1: चलिए, इस चाय के साथ आपको आगे मौसम और पहाड़ों की खूबसूरत तस्वीरें दिखाएंगे।
13: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। देखिए, अभी भी चाय टेस्ट हमने यहाँ पर कर लिया है, और हमारी वाली जो चाय है ना, आज वाली, आज इलायची वाली चाय है, थोड़ी सी लॉन्ग है इसमें, और ये बिल्कुल मौसम के हिसाब से परफेक्ट है। क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भी जो बाकी जगह पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है ना, उसका असर यहाँ पर भी मैदानी इलाकों में पड़ रहा है, तो हल्की हल्की ठंड यहाँ पर हो रही है, शिमला सा एहसास हो रहा है। तो पहाड़ों पर बर्फबारी अक्सर लोगों के लिए कुछ चुनौतियां भी लेकर आती है। हिमाचल के किन्नौर में आपको बता दें, पहाड़ों पर फंसा पर्वतारोहियों का दल खराब मौसम के बीच से सुरक्षित वापस आ गया है। इस रेस्क्यू अभियान की तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे।
1: नमस्कार, मैं आशा गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। बात चारधाम यात्रा की करेंगे। केदारनाथ में बाबा केदार का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को आज गुड न्यूज मिल गई है। 3 दिनों के बाद यात्रा शुरू होते ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा, उसकी तस्वीरें आई हैं, दिखाएंगे। यहां का मौसम कैसा है, इसका अपडेट भी आगे आपको देंगे।
14: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो देखिए, बात होगी मौसम की, क्योंकि थोड़ी ठंडक का एहसास तो होने लगा है, और बात करेंगे भारत के त्योहारों की। देखिए, भारत जो है वो त्योहारों का देश है, यहां एक त्योहार की उमंग खत्म होती नहीं कि दूसरे त्योहार के रौनक जो है वो दिखने लगली जाती है। गणपति बप्पा को विदाई देने के बाद अब महाराष्ट्र में नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पुणे से मां तुलजा भवानी की पवित्र पलंग यात्रा की तस्वीरें आपको दिखाएंगे।
13: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। देखिए, इसके बाद बात एशियन गेम्स से आई गुड न्यूज की भी करेंगे। आज किस तरह नीरू डांडा ने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, साथ ही विजेताओं के स्वदेश लौटने पर किस तरह से जोरदार उनका स्वागत किया गया है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं देश भर की बड़ी खबरें।
15: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
13: भारत की रक्षा शक्ति में होगा इजाफा, साल के अंत तक आएंगे तेजस MK-1A फाइटर जेट के 12 और इंजन, HAL के पास 27 एयर फ्रेम तैयार। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास नेशनल हाईवे 911 मिलिट्री रनवे में बदला, भारतीय सेना की एविएशन यूनिट्स ने हाईवे पर की लैंडिंग की प्रैक्टिस। यूपी के भदोही में होगा इंडिया कार्पेट एक्सपो, 65 देशों के खरीदार होंगे शामिल, ब्रिक्स देशों के लिए विशेष इंतजार। अयोध्या में सुरक्षा अवैध बनाने की तैयारी, राम मंदिर से हनुमान गढ़ी तक बढ़ाई गई NSG की जिम्मेदारी, प्रमुख धार्मिक स्थलों का भी किया निरीक्षण। पितृपक्ष में बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल में श्रद्धालुओं की भीड़, पितरों की मोक्ष कामना के लिए कर रहे तर्पण, पिंडदान समेत धार्मिक अनुष्ठान। भारत को एशियन गेम्स में 5वां गोल्ड, ट्रैप शूटिंग में सोना जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी नीरू, भारत के पास अब तक कुल 48 मेडल।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: बारिश से वादियां गुलजार है, हमें यहाँ ठंड लग रही है, बताइए कैसा लग रहा है?
1: मैंने विंटर ड्रेस पहन ली है। नहीं नहीं, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि आपका एसी बंद हुआ है?
2: एसी बंद हो गया, पंखा भी बंद हो गया कल रात।
0: क्या बात है, अभी 21 का टेम्परेचर लगा के आप कुछ दिनों पहले तक 21 डिग्री चल रहा था आपके घर में,
2: दो दिन पहले
0: ज्यादा पूरा नहीं, बात नहीं है।
2: सब कुछ बदल गया,
0: इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर ठंड आ गई है, लोगों को ठंड लगने लगा है। तो देखिए, सितंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन पहाड़ों पर मौसम ने सर्दियों वाला रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कश्मीर से हिमाचल तक ऊंची चोटियां बर्फ से ढक गई हैं। गुलमर्ग के अफरवाद पीक से लेकर हिमाचल की धौलाधार और मनाली की चोटियों तक ताजा हिमपात ने मौसम का मिजाज बदल दिया है।
3: वहीं बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ ढके हुए हैं, कहीं बारिश है, ठंडी हवाओं ने तापमान में गिरावट भी लाई है। कांगड़ा की धौलाधार पहाड़ियों पर इस महीने दूसरी बार बर्फ की सफेद रंगत देखने को मिल रही है, जिससे सितंबर में ही नवंबर जैसी ठंड का एहसास हो गया है। तो पहाड़ों पर मौसम मेहरबान है, सैलानी भी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। दिसंबर या जनवरी का इंतजार न करते हुए अभी से ही सैलानियों ने पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। तो अगर आप भी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जाना चाह रहे हैं छुट्टियां बिताने के लिए, तो अभी से ही अपनी पैकिंग में गर्म कपड़े जरूर रख लीजिएगा।

0: कश्मीर की वादियों में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी के साथ बारिश और गरज चमक भी देखने को मिली है। यानी सितंबर के आखिरी दिनों में ही कश्मीर की पहाड़ियों ने सर्दियों की आहट दे दी है। गुलमर्ग के ऊंचे पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी ने नजारे को बेहद खूबसूरत बना दिया है। आफरवाद पीक पर गिरी बर्फ ने पहाड़ों को सफेद चादर ओढ़ा दी है। बर्फ की सफेदी और बादलों की आवाजाही के बीच गुलमर्ग का मौसम सर्द एहसास करा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी बर्फबारी से सजे खूबसूरत पहाड़ों का दीदार हो रहा है। कठुआ के ज्यादा ऊंचाई वाले कैलाशकुंड पहाड़ों और चतरगला बाईपास इलाके में ताजा बर्फबारी हुई है। ऊंचे इलाकों में मौसम बदलने के साथ ही करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढका नजारा दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने ऊपरी इलाकों में ठंड बरकरार रहने और हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है। प्रशासन ने ऊंचाई वाले मार्गों पर यात्रियों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी है। अगर आप भी पहाड़ों की इस ताजी रंगत का दीदार करना चाहते हैं, तो कठुआ की सुंदर वादियां आपका इंतजार कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सितंबर के आखिरी दिनों में यहां भी मौसम सर्द हो गया। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से कांगड़ा की धौलाधार पर्वतमाला ने एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सितंबर में दूसरी बार हुई बर्फबारी से धौलाधार की ऊंची चोटियां चांदी के मुकुट की तरह चमक उठी हैं। बादलों के बीच बर्फ से ढकी चोटियों का ये नजारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। धौलाधार की सफेद चोटियां, नीचे छाए बादल और बारिश से धुली हरियाली कांगड़ा की वादियों की खूबसूरती को चार चांद लगा रही है। सिर्फ धौलाधार ही नहीं, हिमाचल के दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में भी ताजा हिमपात हुआ है। किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी हुई है। धर्मशाला और आसपास के इलाकों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई। सितंबर के आखिरी हफ्ते में ही मौसम ने ऐसा रंग बदला कि पहाड़ों पर सर्दी का एहसास होने लगा।
1: बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एक दो स्थानों में हैवी रेनफॉल दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश कांगड़ा स्टेशन में रिकॉर्ड की गई थी, लगभग 70 mm के आसपास। उसके उपरांत जो सेकंड हाईएस्ट है धर्मशाला में 60 mm के आसपास रिकॉर्ड की गई थी। वहीं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं शिमला, सिरमौर, मंडी और किन्नौर, यहाँ पे मॉडरेट कैटेगरी की बारिश रिपोर्ट की गई। और जो हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं स्पेशली डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू में, और यहाँ पे हल्की बर्फबारी रिपोर्ट की गई।
0: सितंबर में बर्फ और बारिश की दस्तक बता रही है कि हिमाचल की पहाड़ियों पर सर्द मौसम ने एक बार फिर से कुछ जल्दी ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ताजा हिमपात से हिमाचल में मनाली के पहाड़ों की खूबसूरती भी निखर आई है। ऊंची पहाड़ी चोटियों पर हुई ताजा बर्फबारी के बाद ये खूबसूरत नजारा दिखा। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी पहाड़ियां और उन पर पड़ती सुबह की सुनहरी धूप, मानो आसमान से उतरकर सफेद रंग ने पूरी वादियों को अपनी आगोश में ले लिया हो। ताजा बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई है और मनाली की फिजाओं में ठंडक पड़ गई है। सितंबर के आखिर में मनाली का ये नजारा सर्दियों की आहट का एहसास करा रहा है। बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और धूप में चमकती चोटियां, मनाली की खूबसूरती इस वक्त देखते ही बन रही है। धर्मशाला से पूजा शर्मा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: अब ऐसी तस्वीरें देखेंगे तो मन तो करेगा ना पहाड़ों पे जाने का। हाँ मैं जा आई हूँ, मेरे को कोई ना बोले ये दो दिन के लिए गई थी यार,
3: और वहीं से आप इतना अच्छा मौसम भी लेकर आए हो।
2: Exactly. देखो मैं आई तो फिर आपके साथ ये ठंडी वादियां भी आ गई है ना।
3: अब मैं जाऊंगी तो
2: दीपू जाने वाली है।
4: अच्छा वाह,
3: और लेकर
2: कहाँ प्लान है दीपू जाने का?
3: पहाड़ों में ही जाएगी कहीं जहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेट हो मौसम।
2: अच्छा,
4: ज्यादा ठंड नहीं,
3: ज्यादा ठंड।
2: तो कहाँ जाना चाहते हो?
4: मैं तो अभी तो आप हो आई, आपने बताया बड़ा अच्छा वहाँ पे रुकने उकने का भी इंतजाम था। अभी अब दीपिका भी हो आएंगी तो मुझे लगता है कि दोनों का सुन लेते हैं, उसके बाद कहीं वीकेंड प्लान बनाते हैं।
2: नवजोत कहाँ जाने का?
5: मैं फिर ये भी आ जाए तो तीनों बनाती
2: हूं। ये तो है ही पहाड़ों की, ये हमें ले ही चले
5: उत्तराखंड। ऐसा करो सब छुट्टी लो और मेरे साथ चलो उत्तराखंड।
4: चैनल बंद हो
5: जाए, वहीं पर चाय पिएंगे और वहीं से चर्चा कर लेंगे।
2: ये गुड प्लान है वैसे पहाड़ों में जाके चाय पे चर्चा। लेकिन देखिए किन्नौर में ऊंचाई वाले इलाके से एक राहत भरी खबर सामने आई है। माउंट लियो पारगिल 2 के अभियान पर निकला
0: कोलकाता का 12 सदस्य पर्वतारोही दल अब सुरक्षित वापस लौट आया है। हिमालय राज बीकन का ये दल खराब मौसम के बीच में मुश्किल में फंस गया था।
5: देखिए, अचानक हुई तेज बारिश और बर्फबारी ने हालात चुनौतीपूर्ण बना दिए। तापमान -20 डिग्री तक जा पहुंचा और बर्फ की मोटी चादर ने रास्ते जो है वो मुश्किल कर दिए। ऐसे में अभियान को रोकना पड़ा। दल की मदद के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ ITBP और स्थानीय लोग भी जुट गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार पूरा दल सुरक्षित इलाके से बाहर आ गया।

0: अचानक बदला मौसम, तेज बारिश के बाद तापमान -20 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में किन्नौर में माउंट लियो पारगिल 2 की ओर बढ़ रही कोलकाता की 12 सदस्यीय हिमालयाज बीकन टीमें आधे रास्ते में फंस गईं।
1: लेकिन हम लोग का समिट जो दिन था, हम लोग समिट में पहुंचा, समिट से थोड़ा नीचे हम लोग का छोड़ के आने पड़ा है ड्यू टू द हाई एल्टीट्यूड सिकनेस ऑफ वन ऑफ द मेंबर। एंड हम लोग देन वी आर रिटर्न बैक फ्रॉम बेस कैंप दैट डे।
0: बर्फबारी से रास्ते ढक चुके थे, लौटना भी आसान नहीं था, लेकिन बिगड़ते मौसम के बीच टीम के पास वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।
1: बीच में बहुत स्नो गिरा है तो उसमें वो लोग का चलने का दिक्कत हो रहा था, तो हमारा पास भी 2-3 आदमी था जो थोड़ा से उम्र में ज़्यादा है, वो लोग को सबसे चलने में दिक्कत होता था, तो उसी टाइम हम सोचा है हमको असिस्टेंट जरूरी है।
0: बर्फीली वादियों में फंसी टीम ने मदद के लिए स्थानीय पुलिस और आईटीबीपी से संपर्क किया, साथ ही स्थानीय लोगों से भी मदद मांगी, जिसके बाद तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया।
1: जहां तक हम लोग का आदमी को मिले उतना तक वो लोग पहुंचे, क्यों ना वो लोग अगर उसको मिल जाएगा तो उसको भी थोड़ा साहस मिल जाएगा जे हमारा लिए आदमी आ गया, रेस्क्यू टीम आ रहा है। तो उसका बाद तासी जी खुद चला गया ऊपर में वो लोग का रूट देखने के लिए, पुलिस भी इतना में आ गया था, पुलिस का जो टीम था, तो तासी जी पुलिस टीम को लेके भी उधर छोड़ा है।
0: इसके बाद आईटीबीपी के जवान मेडिकल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव अभियान में जुट गए।
1: आईटीबीपी पूरा मेडिकल टीम लेकर आया, आईटीबीपी का सबसे बड़ा असिस्टेंट जो था हम लोग का लिए, उसका मेडिकल टीम रेडी रहता है हमेशा।
0: राहत बचाव टीम और स्थानीय लोग पहुंचे तो सभी ने राहत की सांस ली। टीम ने एक बीमार पर्वतारोही को सुरक्षित बाहर निकाला।
1: सही सलामत सब सेफ्टी में हम लोग यहाँ तक पहुंच गया, सबको असिस्टेंट मिला के हम लोग का पूरा टीम सेफ पहुंच गया नाको में।
0: मदद पहुंची तो हालात संभले और आखिरकार बर्फीली मुश्किलों के बीच फंसी टीम सकुशल नाको पहुंच गई। किन्नौर से विशेषर नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देखिए मौसम की खबरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी फुल ऑन प्लानिंग चल रही थी कि किस तरीके से हम कौन सी जगह चूज करें और कहाँ पर जाएं। तो आपने कौन सी जगह चूज की है?
3: देखिए आपने टिहरी बताया, तो टिहरी इज वहाँ डैम है, वाटर स्पोर्ट्स। मुझे कोई बहुत शौक नहीं है वाटर स्पोर्ट्स का, मुझे डर लगता है ऑनेस्टली, तो मुझे अच्छी पहाड़ की वादी है, मुझे वो मुसाफिर कैफे जाना है। वहाँ जाना है और मुझे वहाँ सुबह सुबह अदरक वाली चाय पीनी है। हाँ, अगर चंदर आ जाए तो और अच्छा रहेगा।
4: प्रीति को बुरा लगेगा
5: और मान निकल गए लड़कियों के यहाँ पे।
2: आप कहाँ पर जाने का प्लान कर रहे हैं?
4: मैं तो वैसे अभी मेरा भी कुछ ऐसा ही है, मतलब वी हैव द सिमिलर लाइकिंग्स।
3: कोई बात नहीं, आपको आपको प्रीति सर
4: पहाड़ों तो हूँ ही मैं, मेरे घर में लोगों को पहाड़ ज्यादा पसंद है, कुछ लोगों को बीचेस बहुत पसंद है
2: ना, लेकिन जिन लोगों को पहाड़ पसंद होते हैं बहुत रोमांटिक होते हैं
4: वो तो है।
6: नहीं नहीं, बीचेस वाले बड़े रोमांटिक, डोंट वरी।
4: पहाड़ की तो बात अलग है यार,
2: बिल्कुल।
4: पहाड़ की हो रही है, मुझे ये बताओ टिकट कहाँ की करवानी है, सब प्लान।
3: नहीं यार टिकट नहीं, अब तो आप उत्तराखंड की हैं राइट, और अब तो ऐसा है रास्ता इतना अमेजिंग है कि आराम से 4 घंटे में हम देहरादून है और फिर आगे
4: बस। तो चंपावत में मैं पूरी अरेंजमेंट करा देती हूँ, मेरा ननिहाल है, सब चली
3: चलते।
2: देखिए ये लोग तो रुकने नहीं वाले,
6: मुझे लगता है चाय पी लेंगे, हमारा प्लान ही बनेगा।
4: मुझे लगता है बाद में भी प्लानिंग जारी रहेगी कि चलते हैं।
2: मुझे आने के बाद भी प्लानिंग चालू रहेगी, तो पहले मैं होकर आती हूँ फिर आप लोग प्लानिंग। तो चलिए इसी के साथ आगे बात करते हैं। केदारनाथ में भी पिछले कुछ दिनों से खराब मौसम कुदरत की नई नई चुनौती लेकर आया है। लगातार बारिश की वजह से प्रशासन ने 3 दिनों के लिए केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी थी, लेकिन आज केदारनाथ के दर्शन करने वाले यात्रियों के लिए फिर से एक गुड न्यूज है।
7: चलिए गुड न्यूज मैं बता देती हूँ। मौसम साफ हुआ है, प्रशासन ने दोबारा यात्रा शुरू कर दी है और 3 दिनों तक जो यात्री फंसे हुए थे अब उनके चेहरों पर भी मुस्कान है क्योंकि वो अब यात्रा कर पा रहे हैं।
8: इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और बाबा केदार के भक्तों की यात्रा ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश ने केदारनाथ यात्रा पर रोक लगा दी थी। बाबा केदार के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं, लेकिन मौसम में आई अचानक तब्दीली की वजह से प्रशासन ने एहतियातन यात्रा रोकने का फैसला किया। यात्रा पर ब्रेक लगने से केदारनाथ दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु सोनप्रयाग में इंतजार करने पर मजबूर हो गए। 3 दिन में भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और दर्शन के लिए लोगों की बेसब्री भी बढ़ने लगी। लोगों की इस भीड़ को संभालना प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गया था। लेकिन मंगलवार की सुबह शिव भक्तों के लिए अच्छी खबर आई। मौसम मेहरबान हुआ और प्रशासन ने एक बार फिर से यात्रा शुरू करने का फैसला लिया। यात्रा शुरू होते ही यात्रा मार्ग पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन की आस लगाए जयकारों के साथ आगे बढ़ते चले गए। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों तक केदारनाथ धाम और आसपास के इलाकों में मौसम साफ रहेगा। दिन के समय खिली धूप श्रद्धालुओं के सफर को आसान बनाएगी, हालांकि रात के वक्त लुढ़कता पारा लोगों को ठंड का एहसास करा सकता है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: चलिए और अब बात कर लेते हैं अंगार की संकष्टी चतुर्थी पर गणपति पूजा की।

0: तो गणपति उत्सव संपन्न हुए अभी चंद दिन ही हुए हैं, लेकिन बप्पा के जयकारों की गूंज अभी तक सुनाई दे रही है। आज अंगारकी संकष्टी चतुर्थी है और इस शुभ दिन पर गणपति मंदिरों में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है।
1: देखिए, भगवान गणेश के दर्शन और आशीर्वाद के लिए सुबह से ही श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में बप्पा के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। मंदिरों में भक्तिमय माहौल है, चारों तरफ गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे हैं। पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में बप्पा का भव्य और दिव्य श्रृंगार हुआ। फूलों, आभूषणों और आकर्षक सजावट से सजे विघ्नहर्ता के मनमोहक स्वरूप ने सबका मन मोह लिया। बप्पा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पूरा मंदिर परिसर गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष के साथ गूंज उठा। तो गुजरात के प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर में भाद्रवी पूनम महामेले के समापन के बाद शुद्धिकरण की विशेष प्रलाक्षण विधि की गई। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह और चौक की विधिवत सफाई की गई। वहीं माता जी के गहनों समेत पूजा अर्चना में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का भी शुद्धिकरण किया गया।
2: और देखिए, हर साल भाद्रवी पूनम के मौके पर लगने वाले महामेले में देश भर से लाखों श्रद्धालु जगत जननी माँ अम्बा के दर्शन के लिए अम्बाजी पहुँचते हैं। मेले के समापन के बाद मंदिरों में प्रक्षालन की परम्परा निभाई जाती है।
3: जगत जननी माँ अम्बा का धाम अम्बाजी मंदिर, जो देश के 51 शक्तिपीठों में से एक और बेहद पवित्र, बेहद अलौकिक धाम माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ माँ सती का हृदय गिरा था और इसी वजह से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था इस पावन धाम से जुड़ी है। हर साल यहाँ भाद्रवी पूनम महामेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों भक्त पैदल चलकर माता जी के दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। लेकिन मेला संपन्न होने के तुरंत बाद मंदिर की पवित्रता और दिव्यता को बनाए रखने के लिए एक विशेष परंपरा निभाई जाती है, जिसे प्रक्षालन विधि कहा जाता है। इस साल भी मेले के समापन के बाद मंदिर ट्रस्ट की ओर से दोपहर 1 बजे से पारंपरिक प्रक्षालन विधि का आयोजन हुआ। इस दौरान गर्भगृह, चाचर चौक और पूजा सामग्री से लेकर पूरे मंदिर परिसर को जल से शुद्ध किया गया।
4: प्रक्षालन विधि संपन्न की गई है। जो माता जी का मंदिर 1 बजे बंद हो गया था, और रात के 9 बजे माता जी की आरती होगी, और जो ये शास्त्रोक्त विधि अनुसार पूजा अर्चना करके माता जी का शास्त्रोक्त विधि अनुसार शास्त्रीय परम्परा अनुसार माता जी का शुद्धिकरण के लिए ये विधि की जाती है।
3: माँ के जेवरात और दूसरे सामान को पवित्र करने के लिए हर साल की तरह इस साल भी अहमदाबाद से सोनी परिवार पहुंचा, जो पिछली 5 पीढ़ियों से इस सेवा को बिना किसी रुकावट के निभाता आ रहा है। इस साल भी सोनी परिवार के करीब 75 सदस्य खास तौर पर अहमदाबाद से अंबाजी पहुंचे। उन्होंने माता जी के विभिन्न आभूषणों, हार और सवारी की श्रद्धा पूर्वक सफाई की। सफाई सेवा पूरी होने के बाद सोनी परिवार की ओर से माता जी को सोने का एक सूक्ष्म उपहार भी भेंट किया गया। इस दौरान माता जी के पवित्र विसा यंत्र का आशीर्वाद लेने के लिए भी कई श्रद्धालु पहुंचे। शुद्धिकरण के इस महासमारोह में मंदिर के पुजारी, कर्मचारी, स्थानीय ग्रामीण और सोनी परिवार के लोग पूरी श्रद्धा के साथ मौजूद रहे। सदियों पुरानी इस प्रक्षालन परंपरा के साथ ही अम्बाजी मंदिर एक बार फिर नई दिव्यता और पवित्रता के साथ श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। शक्ति सिंह परमार, गुड न्यूज टुडे।
0: और गणपति बप्पा को विदाई देने के बाद अब महाराष्ट्र में नवरात्र की आहट सुनाई देने लगी है। यहाँ नवरात्र के स्वागत में एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें भक्ति के साथ सैकड़ों साल का इतिहास भी जुड़ा है।
1: पुणे के जुन्नर से माँ तुलजा भवानी का पवित्र पलंग तुलजापुर के लिए रवाना हुआ है। सदियों पुरानी इस परंपरा में श्रद्धालु माँ के पलंग को अपने कंधों पर लेकर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। अलग अलग पड़ाव से होते हुए श्रद्धालुओं का ये कारवां विजयदशमी के मौके पर तुलजापुर पहुंचेगा।
5: ये ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे जिले के जुन्नर की हैं, जहां मां तुलजा भवानी के पवित्र पलंग उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे श्रद्धा का कारवां भी बढ़ता जा रहा है। जहां जहां पलंग यात्रा पहुंची, पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज के बीच ग्रामीणों ने दिल खोलकर यात्रा का स्वागत किया। यात्रा के दौरान मां के पवित्र पलंग को श्रद्धालु अपने कंधों पर उठाए पैदल ही तुलजापुर की ओर निकल पड़े।
6: ये 12वीं सदियों से आई हुई परंपरा है। हमारा घर जो पलंगे परिवार है, ये उसको हमारी तरफ से माता को दिया जाता है। सदियों से आई परंपरा है और इसका बहुत ज़्यादा महत्व 3.5 शक्तिपीठ में जो तुलजा भवानी जो महाराष्ट्र की कुल स्वामिनी है उसके लिए ये शयासन बनाया जाता है। और वो जुन्नर में जुन्नर का ज़्यादा महत्व है। ठाकुर घराना इसकी बनाई करता है, वो पलंग बनाता है और ठाकुर जुन्नर में इसकी स्थापना होती है।
5: इस परंपरा की जड़ें करीब 12वीं शताब्दी तक जाती हैं। बताते हैं कि राजा रामदेव राय के काल से घोड़गांव से तुलजापुर तक मां के पलंग को ले जाने की परंपरा चली आ रही है। आज भी इस परंपरा को पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ निभाया जाता है।
7: ये परंपरा लगभग 400 साल की है। यहाँ तक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म इस जुन्नर तालुके में हुआ। यहाँ तक आज तक 400 साल हुआ और यहाँ 400 साल से आई तुलजा भवानी का पलंग यहाँ पे आता है। घोड़ेगांव से जुन्नर और जुन्नर से कुमशेत में, यहाँ पे कुमशेत में बहुत बड़ा मेला यहाँ से लगा जाता है। बहुत बड़ा उत्सव यहाँ होता है और आगे जुन्नर से या कुमशेत से या तुलजापुर से कोई बड़ा मेला या उत्सव यहाँ इतना बड़ा होता नहीं।
5: अलग अलग पड़ाव से होते हुए श्रद्धालुओं का ये कारवां विजयदशमी के मौके पर तुलजापुर पहुंचेगा। तुलजापुर में विजयदशमी से पूर्णिमा तक मां तुलजा भवानी की मुख्य मूर्ति इस पवित्र पलंग पर विश्राम करती है। परंपरा पुरानी है, लेकिन आस्था आज भी उतनी ही नई और जीवंत है। कंधों पर मां का पलंग, जुबा पर मां का नाम और दिल में अटूट विश्वास, जुन्नर से तुलजापुर तक का ये सफर सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की समृद्ध परंपरा और लोक आस्था की ऐसी तस्वीर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है। पुणे से रायचंद शिंदे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: श्राद्ध परंपरा सनातन संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो सीधे तौर पर आम लोगों की आस्था, कृतज्ञता और पारिवारिक मूल्यों के साथ जुड़ता है। ये 15 दिन हमें अपनी जड़ों को हमेशा याद रखने की सीख देते हैं, क्योंकि अगर जड़ें मजबूत होंगी तो भविष्य भी मजबूत बनेगा।
1: बिल्कुल, देखिए तभी तो ये केवल एक धार्मिक कर्म कांड नहीं है, बल्कि जीवित और दिवंगत पीढ़ियों के बीच ये एक अटूट संबंध को दर्शाता है। तो चलिए ऐसे में आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज और गया जी, जहां श्रद्धालु अपने अपने पुरखों की शांति और मोक्ष के लिए पिंड दान और तर्पण करवा रहे हैं। क्या है इन दिनों ही शहरों में श्राद्ध को लेकर नई व्यवस्थाएं, चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं।
8: सनातनी परंपरा में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा आभार का विशेष अवसर पितृपक्ष चल रहा है। ये वो पवित्र मौका है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी पहचान केवल हमारे कर्मों से नहीं, हमारी जड़ों से भी बनती है। कहते हैं कि जिस घर में पुरखों का सम्मान है, उन्हें याद किया जाता है, वहाँ संस्कार पीढ़ियों तक जीवित रहते हैं। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में श्राद्ध के 15 दिनों में लोग पवित्र नदियों घाटों पर दुनिया से चले गए अपने पितरों का पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं। संगम तट पर मंत्रोच्चार, हाथों में पिंड, सामने गंगा यमुना का पवित्र संगम और आंखों में अपने पूर्वजों की याद। पितृपक्ष में विधि विधान से किया जा रहा ये श्राद्ध कर्म पितरों के प्रति अपने दायित्व और सम्मान की अभिव्यक्ति ही है। वो पितर जिन्होंने हमें जीवन और संस्कार दिए, इसलिए उनका स्मरण करना हमारी परंपरा ही नहीं बल्कि हमारा दायित्व भी है।
9: हमारे घर में सुख शांति प्राप्त हो, इसीलिए हम यही कामना करके पिंड दान करने आए हुए हैं।
10: तो सुख शांति के लिए यहाँ पर आए हैं हम लोग, और ये 3 दिन तक का जो कार्यक्रम चलेगा इसमें हम लोग सब पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। हम अपने पितरों को मोक्ष दिलाने और सुख शांति के लिए यहाँ आए।
8: मगर इस बार जो लोग किसी कारणवश प्रयागराज नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए भी यहां के तीर्थ पुरोहितों ने एक नई व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत अब ऐसे श्रद्धालु ऑनलाइन माध्यम से भी अपने पितरों का पिंडदान और तर्पण करा सकते हैं।
11: और यहाँ पर काफी संख्या में लोग देश विदेश से लोग आ रहे हैं यहाँ पिंडदान करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज ये कि एक व्यवस्था तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से लागू हुई है कि जो लोग विदेश में बैठे हैं यहाँ पे आके पिंडदान नहीं कर सकते, या जो वृद्ध विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, जो आने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है।
8: घर परिवार में अक्सर सुना भी गया है कि श्रद्धा से किया गया स्मरण खुद को विनम्र और कृतज्ञ बनाता है। ऐसे में पितृपक्ष बीते हुए कल को याद करके वर्तमान को बेहतर बनाने और आने वाली पीढ़ियों को संस्कार देने का ही अवसर है, और इस अवसर को इन दिनों बिहार के गया में खूब जिया भी जा रहा है।
12: व्यवस्था सही है, बढ़िया व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, और सभी विधि विधान से सब कार्य चल रहा है। पितृपक्ष में जो भी होता है पिंडदान और जलदान वगैरह वो सब क्रम से चल रहा है।
13: अब ये तो भगवान को पता है, विष्णु जी को पता है कि हम अपने मन पूर्वक अपने पिता श्री वगैरह का पिंडदान कर रहे हैं, अब सब ऊपर वाले की लीला है।
8: दरअसल यहाँ 15 दिनों तक पितृपक्ष मेला होता है, जिसमें देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करने आ रहे हैं। गया में उमड़ी अपार श्रद्धा यहाँ के विष्णुपद मंदिर में हो या फिर फल्गु नदी के आसपास, इस पूरे दायरे में ही श्रद्ध अनुष्ठानों का दौर नजर आ रहा है।
14: यहाँ का महत्व यह है कि क्यों बड़ो ग्रंथों के हिसाब से कहा गया है कि अपने माता पिताओं का पिंड दान करने से मोक्ष प्राप्त होती है।
15: पिंड दान करने से पितृलोक तृप्ति होते हैं, पितृलोक को पुण्य मिलता है, इसीलिए हम लोग यहाँ गया जी में पिंडदान करने के लिए आए हैं अपने पितरों के नाम।
16: यहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है, फिर उनको इस तरह से कोई भटकना नहीं पड़ता है, इस विश्वास से हम लोग यहाँ पर अपने जीवन में एक बार भी मतलब पिंडदान करने का इच्छा जो थी वो जो संपूर्ण माँ जी को साथ में लेके हम लोग आए हैं, और उसी हिसाब से यहाँ देने से पितरों का जो विश्वास है, सनातन में जो विश्वास है, उस विश्वास को कायम रखते हुए हम लोग इसमें गया जी में आकर पिंडदान करने के लिए हम लोग आए।
8: श्राद्ध मेले में अपार उमड़ी ये वो अटूट आस्था ही है जिसमें तीसरे दिन एक ही दिन में 3,95,000 श्रद्धालु आए। इसके अलावा जिला प्रशासन ने मेडिकल, व्हील चेयर और खोया पाया जैसी सुविधाएं भी श्रद्धालुओं के लिए मुहैया करवाई हैं। सनातनी परंपरा में पूर्वजों की स्मृतियां परिवार की वो धरोहर हैं जिसे समय भी मिटा नहीं सकता, क्योंकि पूर्वज हमारे अतीत की कहानी नहीं है बल्कि हमारे वर्तमान की नींव और भविष्य के संस्कार हैं। तभी तो सदियों पुरानी और संवेदनशील श्राद्ध परंपरा आज भी भारतीय जनमानस की आस्था और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। गया से पंकज कुमार और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे फिल्म रामायण के राम के किरदार की इनसाइड स्टोरी।
17: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: तो ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं शायद चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: भारत की रक्षा शक्ति में होगा इजाफा, साल के अंत तक आएंगे तेजस MK-1A फाइटर जेट के 12 और इंजन, HAL के पास 27 एयर फ्रेम तैयार। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास नेशनल हाईवे 911 मिलिट्री रनवे में बदलाव, भारतीय सेना की एविएशन यूनिट्स ने हाईवे पर की लैंडिंग की प्रैक्टिस। तकनीकी खराबी के चलते बिजनौर में खेत में उतरा हेलीकॉप्टर, गांव में मचा हड़कंप, देखने उमड़े लोग, आसमान में उड़ता रहा दूसरा हेलीकॉप्टर। यूपी के भदोही में होगा इंडिया कार्पेट एक्सपो, 65 देशों के खरीदार होंगे शामिल, ब्रिक्स देशों के लिए विशेष इंतजाम। अयोध्या की सुरक्षा भेद बनाने की तैयारी, राम मंदिर से हनुमानगढ़ी तक बढ़ाई गई NSG की जिम्मेदारी, प्रमुख धार्मिक स्थलों का भी किया निरीक्षण। पितृपक्ष में बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल में श्रद्धालुओं की भीड़, पितरों की मोक्ष कामना के लिए कर रहे तर्पण, पिंडदान समेत धार्मिक अनुष्ठान।
9: तो चलिए अब बात करते हैं रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण की। रामायण की स्टार कास्ट के लिए, स्टोरी के लिए, रणबीर कपूर के लिए कितने एक्साइटेड हैं आप लोग?
10: देखिए रामायण के लिए तो एक्साइटेड हो सकते हो, लेकिन रणबीर कपूर को मैं एज अ राम समहाउ मैं नहीं सोच पा रही हूँ। देखना होगा कि वो कितना जस्टिफाई कर पाते हैं अपने कैरेक्टर को, कितना जस्टिस कर पाते हैं रामायण के, मतलब राम के रोल के लिए।
11: नहीं फॉर दैट मैटर मुझे तो सीता को लेके भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है।
6: मैं वही कहने वाली थी आपको, पता है साई पल्लवी की जो आवाज है वो डब की गई है क्योंकि शी इज नॉट वेरी फ्लुएंट विद हिंदी। अब देखने वाली बात ये होगी कि साउथ इंडियन सीता बड़ी है, साउथ इंडियन सीता को नॉर्थ इंडियंस कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं और रणबीर कपूर को कैसे राम के अवतार में विजुअलाइज कर पाते हैं।
10: मुझे यार ऑनेस्टली ऐसे लगता है कि किसी भी माइथोलॉजिकल किरदार में ढलने के लिए ना आपको उसके साथ जस्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज लोग आपको एक्सेप्ट इजीली नहीं करेंगे। एक तरफ हम इमेजिन करते हैं अरुण गोविल को, दूसरी तरफ हम मैं तो नहीं देख पा रही इनको।
9: पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो जेन जी होगा जिसको
10: आपके लिए
9: समझ
10: वाली जनरेशन के

0: का नाम दिया, हम लोग उसी से कनेक्ट करेंगे, तो हमें थोड़ा सा डाउट होगा।
1: देखिए आगे देखना होगा कि फिल्म में क्या कुछ निकल कर आता है। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी है, जिसमें रणबीर कपूर हैं जो भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे। रामायण के ट्रेलर ने इस फिल्म की छोटी सी झलक दिखा दी है और फिल्म देखने की दर्शकों की बेकरारी बढ़ती हुई जा रही है।
0: बिल्कुल, अब रामायण के मेकर्स ने फैंस की बेताबी को और बढ़ाते हुए फिल्म का एक खास BTS वीडियो शेयर किया है, जिसमें राम के लिए रणबीर कपूर को चुने जाने से लेकर उनके ट्रांसफॉर्मेशन की झलक दिखाई गई है। साथ ही साथ फिल्म में काम करने वाले कलाकारों से लेकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने राम के किरदार को लेकर अपने अनुभव शेयर किए हैं।

0: दिमाग लेकर उसकी
1: 70 mm के पर्दे पर दस्तक देने जा रही रामायण महज एक फिल्म नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का संसार है जिसे पर्दे पर उतारना आसान नहीं। राम महज एक किरदार नहीं, करोड़ों लोगों के दिलों में बसी एक छवि है, दिव्य, आकर्षक और मर्यादा से परिपूर्ण।
2: विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार।
1: जाहिर है जब ऐसे किरदारों को पर्दे पर उतारना हो तो उस किरदार के साथ न्याय करने के लिए उसे निभाने वाले कलाकारों को ही नहीं पूरी टीम को खुद को झोंक देना होगा।
2: निर्णय मैं ले चुका हूँ, एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है।
1: रामायण में राम का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर के 44वें जन्मदिन पर मेकर्स ने फिल्म की मेकिंग का एक खास BTS वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके रोल के लिए चुने जाने और उनके ट्रांसफॉर्मेशन की झलक दिखाई गई है। इस वीडियो में रणबीर कपूर से लेकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीता का रोल निभाने वाली साई पल्लवी, दशरथ का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल, टीम के तमाम सदस्यों ने राम को लेकर अपने अनुभव शेयर किए हैं।
3: रामायण को परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसकी डेफिनेशन नहीं है कोई, बल्कि हम ये कहें कि रामायण हमारा गौरव है, रामायण हमारा मान है, हमारा अभिमान है, हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, सब कुछ हमारे यहाँ हमारे लिए रामायण है।
4: श्री राम की कास्टिंग मतलब ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हम केवल प्रयास कर सकते हैं।
5: भगवान राम की सबसे बड़ी शक्ति उनका धनुष नहीं था, उनकी क्षमा थी, हिज एबिलिटी टू फॉरगिव।
1: रणबीर कपूर ने वीडियो में साफ कहा है कि भगवान राम का किरदार पाकर वो सिर्फ एक्साइटेड नहीं हो गए थे बल्कि इसे उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर लिया। उनके मुताबिक इस किरदार को निभाने का मतलब सिर्फ स्क्रीन पर राम बनना नहीं बल्कि उन करोड़ों लोगों के भरोसे को कामयाब रखना भी है जिनके लिए भगवान राम आस्था का प्रतीक है।
5: रोल नहीं है, इट्स नॉट कि मुझे एक फिल्म ऑफर हुई है और ये रोल एक्साइटिंग है, ये एक जिम्मेदारी है।
1: रामायण के सेट का माहौल कैसा रहा होगा, अपने किरदार में रणबीर कपूर किस कदर डूबे होंगे, इसके बारे में बताते हुए अरुण गोविल ने कहा कि रणबीर का व्यवहार पूरी तरह सादगी से परिपूर्ण था, कुछ ऐसा जिसकी कल्पना वो भगवान राम के किरदार को लेकर करते थे।
3: सोचता था कि राम ऐसे चलते होंगे, ऐसे बैठते होंगे, ऐसे देखते होंगे, ऐसे बात करते होंगे, तो दोनों तीनों चीजें हैं उनमें। नॉर्मली यू डोंट एक्सपेक्ट के एक स्टार जो है वो आकर पहुंच हुए मेरे, he always does it।
1: साई पल्लवी कहती है कि बचपन में हमने एक इमेज इमेजिन की थी कि राम भगवान है और उनके साथ सीता है। अब मैं उन राम को रणबीर में देखकर हैरान थी।
6: अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार।
7: Very slender Ram and his head is a little tilted and there's this bow this way and there's a very small petite Sita and there's a Ram on the other side. So that's the image I remember from my childhood. Now suddenly I could see that Ram that I'd seen in my childhood and I was awestruck.
1: फिल्म में लक्ष्मण का किरदार निभा रहे रवि दुबे ने भी रणबीर की तारीफ की। उन्होंने रणबीर की आंखों में वही शांति महसूस की जिसे वो भगवान राम की सादगी से जोड़कर देखते हैं।
8: मुझे लगता है कि ये एक बीट, ये सिंपलिसिटी जो श्री राम की है, मैं यही सिंपलिसिटी मैं रणबीर भाई की आंखों में भी कई दफा देखता हूँ।

0: इस वीडियो में दिखाया गया कि रामायण की कहानी भले ही भारतीय पौराणिक परंपरा और भगवान राम से जुड़ी हो, लेकिन इसे बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी में भारतीय और इंटरनेशनल टीम ने साथ काम किया है। फिल्म के एक्शन डायरेक्टर टेरी नोट्री ने रणबीर को एक्शन सीक्वल के लिए ट्रेनिंग दी है। टेरी बड़े इंटरनेशनल प्रोडक्शन पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। BTS वीडियो में दुनिया भर से आए स्टंट और एक्शन प्रोफेशनल्स को फिल्म के सीक्वल और किरदारों पर काम करते देखा जा सकता है। रामायण के इस BTS वीडियो ने फैंस को फिल्म की तैयारी और रणबीर के किरदार के पीछे की मेहनत की झलक दे दी है। अरुण गोविल की तारीफ, नितेश तिवारी का भरोसा और रणबीर की अपनी जिम्मेदारी वाली बात ने इस वीडियो को और खास बना दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बड़े पर्दे पर रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार को किस तरह जीवंत करते हैं। रामायण पार्ट 1 6 नवंबर को दिवाली के मौके पर रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए इसके साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे गोल्डन गर्ल नीरू ढांडा की, जिन्होंने एशियन गेम्स में निशानेबाजी में गोल्ड जीता।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: क्या आपके विदेश यात्रा में बाधाएं आ रही हैं? क्या विदेश में बसने में समस्याओं का सामना कर रहे हैं? कौन से ग्रहों का विदेश से है संबंध और कैसे उठाएं इनका लाभ, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: चलिए और इस बीच आपको बता दें, शानदार खबर एशियन गेम्स से आ गई है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारत की झोली में एक और गोल्ड आ गया है। जी हां, भारतीय महिला रिले टीम ने 4x400 मीटर रिले रेस में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। ऐसा दम दिखाया कि पूरा स्टेडियम तिरंगे के रंग में रंग गया। भारतीय टीम ने 3:29.69 का शानदार समय दर्ज करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। रेस की शुरुआत से ही भारतीय धाविकाओं ने जबरदस्त तालमेल और रफ्तार दिखाई और आखिरी लैप में मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। लेकिन भारतीय टीम ने अपना दम बनाए रखा और फिनिश लाइन पार करते ही इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया।
2: और देखिए, सिर्फ एक गोल्ड मेडल नहीं है बल्कि भारतीय एथलेटिक्स के लिए गौरव का भी पल है। और देखिए, इसी के साथ गोल्ड मेडल भारत ने अपनी झोली में ला दिया है, जहां पर ये शानदार खबर गुड न्यूज टुडे पर आपको नजर आ रही है। भारत को एक और गोल्ड मेडल मिला है। 4x400 मीटर रेस में महिलाओं ने अपने नाम ये स्वर्ण पदक किया है। और देखिए, रेस की शुरुआत में भारतीय टीम ने अपना दमखम दिखाया।
1: इससे पहले आपको बता दें कि हरियाणा के 26 साल के निशानेबाज नीरू ढांडा ने एशियन गेम्स में इतिहास रच दिया। नीरू ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में 28 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीतकर भारत के लिए इस इवेंट का पहला महिला एशियाई स्वर्ण हासिल किया। नीरू ढांडा को फाइनल मुकाबले में 30 शॉट मिले, जिनमें से उन्होंने 28 पर सटीक निशाना साधकर एशियन गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो एशियन गेम्स की चैंपियन बनने के साथ साथ एशियन गेम्स में रिकॉर्ड होल्डर भी बन गई।
2: और देखिए, नीरू की गोल्डन बाजी से पहले भारत ने महिला ट्रैप टीम इवेंट में सिल्वर मेडल भी जीता। यानी एक ही दिन नीरू ने पहले टीम को पोडियम तक पहुंचाया, फिर व्यक्तिगत मुकाबले में सोने पर निशाना साधकर इतिहास अपने नाम कर लिया। नीरू के लिए साल लगातार बड़ी उपलब्धियों वाला रहा है। जुलाई में इटली में हुए शॉटगन वर्ल्ड कप में वो ट्रैप इवेंट में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। अब एशियन गेम्स में उन्होंने भारत के निशानेबाजी इवेंट में इस इतिहास में एक नया अध्याय भी जोड़ दिया है।
3: सुपर हाई लेवल पे फीलिंग है, मतलब काफी एक्साइटेड हूँ। अपने देश के लिए गोल्ड जीता है और नेशनल एंथम अपने देश का बजना, मतलब मेरे लिए काफी प्राउड की बात है। मेडल मेरी माँ को डेडिकेट करती हूँ सर, और मेरे कोच को डेडिकेट करती हूँ, और पूरे इंडिया को डेडिकेट करती हूँ। प्रिपरेशन हम करते हैं, जैसे ट्रेनिंग करते हैं तो प्रिपरेशन वैसे ही हम करते हैं। थोड़ा बैड वेदर में भी ट्रेनिंग करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये नॉर्मल था, पर रहता है थोड़ा कंडीशन हर एक कंट्री का अलग रहता है, तो यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी थी, लेकिन मैंने अपने आप को काम रखा और अपने आप पे फोकस किया एंड देन गोल्ड आया सर।
4: तो देखिए, एशियन गेम्स में देश का मान बढ़ाकर लौट रहे चैंपियंस का जोरदार स्वागत हो रहा है। एयरपोर्ट से लेकर अलग अलग शहरों तक फैंस अपने चहेते स्टार्स का दिल खोलकर वेलकम कर रहे हैं। देखिए कामयाबी के जश्न की कुछ शानदार तस्वीरें।

0: ये पल लंबे इंतजार के बाद आया है। खुशियों की सौगात कड़ी मेहनत के बाद हासिल हुई है, लिहाजा जश्न तो लंबा चलेगा। 20वें एशियन गेम्स में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर जब भारत के कबड्डी स्टार पुष्पा राणा, भावना ठाकुर और ज्योति ठाकुर धर्मशाला पहुंची, तो साइंस सेंटर पर ढोल नगाड़ों के साथ गोल्डन गर्ल्स का जोरदार स्वागत हुआ। भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा ने अपने नेतृत्व में एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने ईरान को 37-34 के अंतर से हराया। जाहिर है ये वो लम्हा है जिसका पुष्पा राणा को लंबे वक्त से इंतजार था और जिसके लिए वो लगातार कड़ी मेहनत करती आ रही थी।
1: और इस चीज का सपना हम लोग लिटरली मतलब 4 साल से हम कंटिन्यू इस चीज की मेहनत कर रहे थे, और ये वाला सपना मेरा इसलिए भी पूरा ज्यादा लग रहा है क्योंकि मैं एज अ कैप्टन टीम में लीड कर रही थी लाइक, और मेरे परिवार वालों का, मेरे मम्मी पापा का बहुत टाइम से ये वेटिंग में भी थे कि शायद कब मिले लाइक। तो अभी जब मुझे कैप्टनसी मिली और मेरी कैप्टनसी में गोल्ड मेडल आया तो वो भी बहुत ज्यादा खुश है और मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ।
0: त्रिवेंद्रम में एशियन गेम्स की डबल सिल्वर मेडल विजेता विदर्शा के विनोद का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। उन्हें रिसीव करने केरलम खेल विभाग के अधिकारी भी पहुंचे। विदर्शा ने जापान के नागोया में चल रहे एशियन गेम्स में शूटिंग में 2 सिल्वर मेडल जीते हैं। केरल के कोझिकोड की रहने वाले इस स्टार परफॉर्मर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में सोनम मस्कर और इलावेनिल वलार्विन के साथ सिल्वर मेडल जीता, तो वहीं महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में तिलोत्मा सेन और आशी चौकसी के साथ पोडियम शेयर किया। लिहाजा इस शानदार कामयाबी के बाद ये जश्न और स्वागत तो बनता है।
2: Grateful that I got medal and this was my first Asian Games and I have my medal. So I got my medal for my country, for my Kerala people and the love of I was not expecting this much and I'm so happy that the welcome I got it's awesome.
0: एशियन गेम्स में कुराश में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पिंकी बलहारा के घर भी जश्न का माहौल है। आस पड़ोस से बधाई देने वालों का तांता लगा है और पूरा परिवार बेटी की कामयाबी का जश्न मना रहा है। कुराश दरअसल मध्य एशिया की एक पारंपरिक मार्शल आर्ट और जैकेट रेसलिंग का ही रूप है। पिंकी बलहारा का ये एशियन गेम्स में लगातार 2रा सिल्वर मेडल रहा। पिंकी के परिवार को उम्मीद है कि बेटी देश के लिए गोल्ड लाने का सपना भी एक दिन जरूर साकार करेगी।
3: हमें फकर है मेरी कोख से वो जनी है कि बाहर जाके 7 बच्चे गए थे, हमारी पिंकी बलारा 3rd आई है चोट लगने के बाद, नहीं तो वो 2nd या 1st आती, उसको एलिमेंट में चोट लग गई, उसे उम्मीद थी कि मैं 1st आऊंगी, तो मुझे फर्क वो गर्व है कि बाहर देश जाके उसने भारत का झंडा लहराया।
0: एशियन गेम्स में अब तक भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है, लिहाजा भारत में खेल प्रेमियों को अभी जश्न मनाने के कई मौके मिलेंगे। धर्मशाला से पूजा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो हमारे लिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: देखिए, अगर जरूरी एहतियात बरते जाएं, खान पान के साथ व्यायाम का भी ख्याल रखा जाए, तो सेहत के साथ दिल का भी दुरुस्त रहना जरूरी हो जाता है। दिल की बीमारियों से बचाव के इन्हीं उपायों पर जागरूकता के मकसद से आज वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है।
2: हर साल 29 सितंबर को मनाए जाने वाले इस खास दिन का मकसद लोगों को दिल की सेहत दुरुस्त रखने में सहयोग करना है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मरीजों की मौत दिल से जुड़ी बीमारियों की वजह से होती है, लेकिन संतुलित आहार और नियमित व्यायाम को आदत में शुमार कर लिया जाए तो दिल पूरे जीवन सेहतमंद रह सकता है। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल, कल शाम 5 बजे चाय पर हमारे साथ मुलाकात।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: क्या आपके विदेश यात्रा में बाधाएं आ रही हैं? क्या विदेश में बसने में समस्याओं का सामना कर रहे हैं? कौन से ग्रहों का विदेश से है संबंध और कैसे उठाएं इनका लाभ, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
5: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
1: एशियन गेम्स में भारत को मिला एक और गोल्ड, रिले रेस में 4x400 रेस में जीता सोना, भारत के खाते में अब तक 6 गोल्ड, कुल मेडल 52 हुए। भारत की रक्षा शक्ति में होगा इजाफा, साल के अंत तक आएंगे तेजस MK-1A फाइटर जेट के 12 और इंजन, HAL के पास 27 एयर फ्रेम तैयार। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास नेशनल हाईवे 911 मिलिट्री रनवे में बदलाव, भारतीय सेना के एविएशन यूनिट्स ने हाईवे पर की लैंडिंग की प्रैक्टिस। तकनीकी खराबी के चलते बिजनौर में खेत में उतरा हेलीकॉप्टर, गांव में मचा हड़कंप, देखने उमड़े लोग, आसमान में उड़ता रहा दूसरा हेलीकॉप्टर। यूपी के भदोही में होगा इंडिया कारपेट एक्सपो, 65 देशों के खरीददार होंगे शामिल, ब्रिक्स देशों के लिए खास इंतजाम। अयोध्या की सुरक्षा भेद बनाने की तैयारी, राम मंदिर से हनुमानगढ़ी तक बढ़ाई गई एनएसजी की जिम्मेदारी, प्रमुख धार्मिक स्थलों का भी किया निरीक्षण।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात मौसम के बदले अंदाजो मिजाज की। सितंबर का महीना है और कायदे से अभी हर साल की तरह देश के तमाम हिस्सों में गर्मी का एहसास होना चाहिए था, लेकिन अब की बार सितंबर में मौसम ने गजब का रंग दिखाया है। सितंबर का आखिर है और ऐसा लग रहा है कि मानो दिसंबर की शुरुआत हो गई हो। मौसम की अंगड़ाई है और बिना बुलाए सितंबर में सर्दी आई है। पहाड़ों में सफेद बर्फ हर तरफ दिखाई दे रही है तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जाते मानसून के बीच में बढ़ी ठंडक सर्दी का एहसास करवा रही है। खास तौर से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर से लेकर सिक्किम तक हाल के दिनों में इतनी बर्फ पड़ी है कि सुनहरी धूप के दिन दिखाने वाला सितंबर पहाड़ों पर कपकपाहट और कोहरे भरे दिन दिखा रहा है। सितंबर के महीने में मैदान के लोग गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन अब की बार तो जरूरत ही नहीं क्योंकि मैदानों का मौसम पहले से सुहाना है। दिल्ली में रविवार को सितंबर का बीते 18 साल का सबसे सर्द दिन रहा। अब सवाल यह है कि आखिर सितंबर के महीने में गुलाबी सर्दी आई कहां से? क्या सर्दियों की शुरुआत अब की बार सितंबर से हो चुकी है और नहीं तो फिर मौसम की स्क्रीन पर सर्दियों का ये ट्रेलर कब तक जारी रहने वाला है? तो चलिए आपको सबसे पहले यही बताते हैं और दिखाते हैं।

0: खर्चा तो था, अभी गर्मी और सताएगी। हल्की हल्की ही सही, पर उमस अपने होने का एहसास दिलाएगी। सोचा था पहले अक्टूबर आएगा, फिर दिवाली का हाथ थाम कर सर्दी आएगी, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने आकर राजधानी में मौसम के सारे प्लान कुछ ऐसे डिस्टर्ब कर दिए कि सितंबर का वक्त, हालात, जज्बात सब बदल गया। अब आसमान में बादलों का डेरा है, राजधानी पर ठंडी हवाओं का पहरा है। ये सितंबर की सुबह है, बस दिसंबर का चेहरा है। जो सितंबर का महीना दिल्ली और आसपास के इलाकों में उमस भरी गर्मी और चिपचिपे मौसम के लिए जाना जाता रहा है, उसने अब के साल आखिरी दिनों में देश की राजधानी को एक ऐसा सरप्राइज दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दिल्ली NCR अचानक एक अनचाही अनजानी ठंड के आगोश में है। आखिर क्यों वक्त से पहले बदल गया मौसम का ये मिजाज? इसे देखकर दिल्ली वालों के मन में तुरंत सवाल उठा, कहीं ये दिल्ली की ट्रेडमार्क सर्दी का ट्रेलर तो नहीं? ये अंदेशा कुछ और मजबूत हुआ जब खबर मिली कि ठंड बस यहाँ भर नहीं है, बल्कि पहाड़ों पर तो सितंबर में ही विंटर वंडरलैंड सज गया है। कश्मीर से लेकर सिक्किम तक देश के कई पहाड़ी इलाकों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। हिमाचल का किन्नौर और रोहतांग पास 4 से 5 इंच तक बर्फ से ढक चुका है। वहीं सिक्किम के नाथुला पास और गुरुडोंगमार झील के पास के नज़ारे ये गवाही दे रहे हैं कि इस बार पहाड़ों पर विंटर सीजन ने बहुत जल्दी दस्तक दे दी है। वास्तव में पहाड़ों से आ रही इन्हीं बर्फीली और ठंडी उत्तर पूर्वी हवाओं ने दिल्ली NCR को गर्मी में भी सर्दी का एहसास करवा दिया है। खासकर दिल्ली के सफदरजंग, रिज और पालम जैसे इलाकों में तो पारा सामान्य से काफी नीचे चल रहा है। ये आलम देखकर दिल्ली वाले अभी सर्दी को वेलकम कहने ही वाले थे कि तभी मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि राजधानी का ये मौसम वास्तव में सर्दी की शुरुआत नहीं, बल्कि 3 बड़े मौसमी सिस्टम्स के संगम का नतीजा है।
1: दिल्ली की बात है तो एक जो है डीप डिप्रेशन, जिसने के जो हमारे ईस्ट कोस्ट से हमें क्रॉस किया था, ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट फ्रंट मूव करके उत्तर प्रदेश में आकर के आज सुबह के समय जो है वो एक लेसमार्क हो गया, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया से लेसमार्क हो गया है, जिसकी वजह से जो पूरा ये जो बेल्ट है इसमें काफ़ी अच्छी वर्षा देखने को मिली। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी यानी कि अति भारी वर्षा भी रिपोर्ट की गई थी। साथ साथ उत्तराखंड में काफ़ी अच्छी वर्षा हुई। इसके साथ साथ में पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है था वो भी, उसका भी असर देखने को मिला, जिसकी वजह से जो है पहाड़ों पर कुछ स्थानों पर बर्फबारी भी हुई और इसकी वजह से भी जो तापमान है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली। तो अभी दिल्ली की बात करेंगे तो अभी भी यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है नीचे चल रहे हैं।
0: आसान भाषा में समझें तो दिल्ली में बिन बुलाई सर्दी के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला कारण है सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ। भूमध्य सागर से उठी ठंडी और नमी से भरी हवाओं का एक मजबूत सिस्टम इस वक्त उत्तर भारत के ऊपर से गुजर रहा है, जिसने पहाड़ों पर बेवक्त बर्फबारी शुरू कर दी। दूसरा कारण है बंगाल की खाड़ी का डिप्रेशन। बंगाल की खाड़ी में हाल ही के दिनों में बना एक गहरा कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ते हुए MP और UP के रास्ते दिल्ली के करीब आ पहुंचा। जब इन दोनों विपरीत दिशा की हवाओं का टकराव हुआ तो दिल्ली और आसपास के राज्यों में झमाझम बारिश शुरू हो गई। और तीसरा कारण है मॉनसून की विदाई। दिल्ली से मॉनसून आधिकारिक रूप से सितंबर के आखिरी हफ्ते में विदा होता है, इस बार भी यही हुआ, लेकिन मॉनसून की विदाई के ठीक बाद आसमान साफ होने और हवाओं का रुख बदलते ही पहाड़ों की ठंडक सीधे मैदानी इलाकों में बिना किसी रुकावट के प्रवेश कर गई और दिल्ली को सर्दी का एहसास करवा गई।
2: बंगाल के अंदर जो है एक लो प्रेशर एरिया बना, उससे बहुत तेजी के साथ में बारिश हो गई। सितंबर में मेरे ख्याल से पिछले 25 साल में पहला या दूसरा एक ऐसा टाइम था कल रात को उत्तरी भारत के अंदर जो सबसे ठंडा दिन था, वरना के ना तो पश्चिमी विक्षोभ ऑलमोस्ट लुप्त रहते हैं सितंबर के महीने में और इतनी टेम्परेचर तो पड़ता ही नहीं है, बल्कि अक्टूबर के सेकेंड वीक में जाते जाते सर्दी अपने दस्तक देती है। तो दोनों विरोधाभास ली हुई चीजें हुई हैं जो कि हम लोग करते हैं, लेकिन ये वही चीज है कि ये आपने अनुमान लगाया है लंबे समय तक सुपर एलनिनो के चलते वो होना ही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज बीच में जो अनिश्चितता का एक जो फैक्टर होता है उसने अपना रंग दिखाया है।
0: बता दें कि मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली के सफदरजंग में पिछले रविवार को दर्ज हुआ 21 डिग्री सेल्सियस तापमान साल 2000 के बाद सितंबर का दूसरा सबसे कम तापमान है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इस साल कड़ाके की और लंबी ठंड पड़ेगी? IMD के मुताबिक इसका जवाब है नहीं। मौसम वैज्ञानिकों के हिसाब से ये केवल एक ट्रांजिशनल चेंज यानी मौसम का अस्थायी बदलाव है। अक्टूबर के पहले हफ्ते से आसमान पूरी तरह साफ होगा और तापमान फिर से 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच जा सकता है।
1: तो बर्फबारी भी हुई थी पहाड़ों पर कुछ स्थानों पर, वहां से ठंडी हवाएं भी आ रही थी, साथ साथ में वर्षा गतिविधि भी हुई, क्लाउडी कंडीशंस बनी हुई थी, जिसकी वजह से जो तापमान है उसमें गिरावट देखी गई थी। हालांकि आने वाले समय में जैसे जैसे कंडीशंस जो है साफ होंगी, बादल भी कम हो जाएंगे, साथ साथ में जो ठंडी हवा है इसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा, तो ये जो अभी के टेम्परेचर चल रहे हैं इसमें इजाफा देखने को मिलेगा। ये करीब करीब अपने नॉर्मल स्थिति में 3 से 4 दिन के बाद जो कि 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंचने की संभावना है।
0: पर्यावरण वैज्ञानिक इस घटना को क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के एक बड़े इशारे के रूप में भी देख रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक हिमालय में सितंबर में बर्फ गिरना प्राकृतिक है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब स्नो लाइन 4000 मीटर से ऊपर खिसक रही है। मौसम का इस तरह अनप्रेडिक्टेबल होना यानी कभी भारी सूखा तो कभी अचानक सितंबर में ठंडक का एहसास प्रकृति के बदलते संतुलन का बड़ा इशारा है।
2: हमारे इस मौसम में दो विलेन हैं, एक तो है कि क्लाइमेट चेंज और दूसरा है ये सुपर एलिनो जो लेके आया है। अब लॉन्ग टर्म का इफेक्ट हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं इतने सालों से, इतने टाइम से, मतलब पिछले एकाधिक महीने से, कि सुपर एलिनो की वजह से हमारा जो है इस बार पश्चिम विक्षोभ बहुत कम हो जाएंगे, सर्दी जितनी पड़ना चाहिए थी उतनी पड़ेगी नहीं, ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये होती है कि क्लाइमेट चेंज से जो भी चीजें हम लोग अनुमान लगाते हैं या कुछ होती है उसमें अनिश्चितता लाती है, तो ये दोनों चीजें अनिश्चितता की स्थिति लाती हैं।
0: भले ही सितंबर ने दिसंबर वाली सर्दी का एहसास करवाया है, लेकिन ये बदलाव टेम्प्रेरी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सर्दी अपने तय समय पर या थोड़ी देर से शुरू होगी। आने वाले दिनों में दिल्ली NCR का मौसम सूखा, आसमान साफ और तापमान 35 डिग्री के आसपास रहेगा, इसलिए त्योहारों की तैयारी करने निकलें तो गर्मी और उमस से लड़ने की तैयारी का भी ख्याल रखें।
3: ये 30 तारीख से दिल्ली जो उत्तर भारत दिल्ली में एकदम बादल छट जाएंगे पूरे, तो तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी चालू हो जाएगी। ये चूंकि यहाँ पे वर्षा की स्थिति थी, ऊपर से WDT ठंडी हवाएं आ रही थी और यहाँ से नमी जा रही थी, तो दिल्ली का जो एरिया है आप देखिए सघन है, खासकर वृक्षारोपण भी काफी मात्रा में है, तो जो नमी जमा हो जाती है और दिन में हीट बढ़ने के कारण से कन्वर्ट होके वो तापमान में गिरावट आई और ज्यादा दिन नहीं रहने वाली, करीब ये 30 तारीख से तापमान में बढ़ोतरी चालू हो जाएगी और पूरा 1 अक्टूबर से एकदम साफ हो जाएगा मानसून उत्तर भारत में। धीरे धीरे सिर्फ उत्तरांचल जो है ऊपर उत्तराखंड है वहां पे बादल बने रहेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मानसून की पूरी तरह से विदाई उत्तर भारत में हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि 15 अक्टूबर तक छुटपुट कुछ ना कुछ वर्षा, छोटे छोटे सिस्टम, कई बार लोकल स्तर पर नमी रहती है और तापमान बढ़ता है तो शाम को उसमें शहरों में रेन हो जाती है, तो ये स्थिति अभी 15 अक्टूबर तक मिलने वाली है, लेकिन बहुत तेजी से मानसून की विदाई 1-2 अक्टूबर तक शुरू हो जाएगी और साफ हो जाएगा, लेकिन तापमान में गिरावट अब आने की कोई फिलहाल संभावना नहीं है, क्योंकि बर्फबारी हो रही है उत्तर भारत वहाँ उत्तराखंड वगैरह ऊपर जा रही, तो उसका थोड़ा सा हवाओं का असर है, लेकिन जब ये राजस्थान से नॉर्थ वेस्ट से जब हवाएं आती है सूखी तो उस समय तापमान में उतनी गिरावट नहीं कर पाती, खासकर अक्टूबर में, लेकिन धीरे धीरे ठंड का प्रचलन बढ़ेगा, अक्टूबर के एंड से तापमान में गिरावट आएगी और जनवरी फरवरी तक मिलेगी।
0: फिलहाल दिल्ली NCR के लोग उमस भरी गर्मी से मिली इस अचानक राहत का आनंद ले रहे हैं। हवा साफ हो चुकी है और मौसम सुहाना है, लेकिन विज्ञान की चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सितंबर की ये गुलाबी ठंड हमें इस सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानी गतिविधियों ने हमारी वेदर साइकिल को किस हद तक प्रभावित कर दिया है। आज पहाड़ों पर बेमौसम बर्फ है, मैदानों के तापमान में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट है, कल मौसम का अगला रूप क्या होगा कहना जरा मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो तो मैदानों में गुलाबी सर्दी का एहसास है तो पहाड़ों पर फुल ऑन दिसंबर वाली फीलिंग चल रही है। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी नजर आ रही हैं। गुलमर्ग के अफरवाद पीक से लेकर हिमाचल की धौलाधार और मनाली की चोटियों तक ताजा हिमपात ने मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया है। सितंबर में ही देश के कई पहाड़ी इलाके विंटर वंडरलैंड में बदल गए हैं।

0: धरती पर बर्फ की धूल, शाखों पर बर्फ के फूल, कश्मीर में बर्फ ने कुदरत के घर से रंगों को बेदखल कर दिया है। सफेद और शफाफ अक्टूबर की चौखट पर खड़े मौसम ने सितंबर में ही अपना रंग बदल लिया। भला किसने सोचा होगा कि इस मौसम में बर्फबारी होगी और पहाड़ बर्फ से लद जाएंगे। लेकिन कश्मीर के गुलमर्ग से आई ये तस्वीरें देखिए। कश्मीर की वादियों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी के साथ बारिश हुई है। यानी सितंबर के आखिरी दिनों में ही कश्मीर की पहाड़ियों ने सर्दियों की आहट दे दी है। गुलमर्ग के ऊंचे पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी ने नजारे को बेहद खूबसूरत बना दिया है। अफरवाद पीक बर्फ का दुशाला ओढ़े खड़ा है। दूर दूर तक बिछी बर्फ और निगहबानी करते घने बादलों की आवाजाही के बीच गुलमर्ग का मौसम सितंबर में सर्दी का एहसास करवा रहा है। नजारा कश्मीर के कठुआ का भी कुछ कुछ ऐसा ही है। कठुआ में बर्फबारी से सजे खूबसूरत पहाड़ों का दीदार हो रहा है। कठुआ के ज्यादा ऊंचाई वाले कैलाश कुंड पहाड़ों और चत्तरगला बाईपास इलाके में ताजा बर्फबारी हुई है। ऊंचे इलाकों में मौसम बदल गया है। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से लकदक पहाड़ अपनी चमक बिखेर रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से 29 सितंबर को एक और पश्चिमी विक्षोभ का अनुमान जताया गया था, जिसके चलते ऊपरी इलाकों में ठंड बरकरार रहने और हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है।
1: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से काफी अच्छी एक्टिविटी हुई है, साथ साथ में जो ये डिप्रेशन था जो कि आ गया कि वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में कमजोर हुआ, फिर लो प्रेशर एरिया में, और आज सुबह जो है लेसमार्क हो गया, इसका भी असर देखने को मिला, जिसकी वजह से उत्तराखंड में और आसपास के जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर भी बर्फबारी देखने को मिली। आज भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो करीब 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के आसपास केंद्रित है, जिसको देखते हुए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर जो भारी वर्षा का जो है अलर्ट जारी किया गया है, साथ साथ में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है।
0: मौसम को देखते हुए प्रशासन ने ऊंचाई वाले मार्गों पर यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। अगर आप भी पहाड़ों की इस ताजा रंगत का दीदार करना चाहते हैं, तो कठुआ की ये सुंदर वादियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो सितंबर के आखिरी दिनों में यहाँ भी मौसम सर्द हो गया है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से कांगड़ा की धौलाधार पर्वतमाला गुलजार नजर आ रही है। सितंबर में दूसरी बार हुई बर्फबारी से धौलाधार की ऊंची चोटियां चांदी से जगमगा रही हैं। बादलों के बीच बर्फ से ढकी चोटियों का ये नजारा बेहद खूबसूरत दिख रहा है। धौलाधार की सफेद चोटियां, नीचे छाए बादल और बारिश से धुले पेड़ों का चटक रंग, कामना में कुदरत की कारीगरी खूब जम रही है। सिर्फ धौलाधार ही नहीं, हिमाचल के दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में भी ताजा हिमपात हुआ है। किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू की ऊंची चोटियां भी बर्फ से ढकी नजर आ रही है। धर्मशाला और आसपास के इलाकों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में ही मौसम का ऐसा रंग बदला कि पहाड़ों पर सर्दी का एहसास होने लगा।
2: बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एक दो स्थानों में हैवी रेनफॉल दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश कांगड़ा स्टेशन में रिकॉर्ड की गई, लगभग 70 एम एम के आसपास। उसके उपरांत जो सेकंड हाईएस्ट है धर्मशाला में 60 एम एम के आसपास रिकॉर्ड की गई। वहीं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं शिमला, सिरमौर, मंडी और किन्नौर, यहाँ पे मॉडरेट कैटेगरी की बारिश रिपोर्ट की गई। और जो हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं स्पेशली डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू में, और यहाँ पे हल्की बर्फबारी रिपोर्ट की गई।
0: सितंबर में बर्फ और बारिश की दस्तक बता रही है कि हिमाचल की पहाड़ियों पर सर्द मौसम ने इस बार कुछ जल्दी ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तो वही ताजा हिमपात से हिमाचल में मनाली के पहाड़ों की खूबसूरती भी निखर उठी है। बर्फ में लिपटी पहाड़ियों पर जब चमकती धूप खिली तो वादियाँ सुनहरी हो गईं। ताजा बर्फबारी के बाद यहाँ तापमान में गिरावट आई है और मनाली की फिजाओं में ठंडक बढ़ गई है। बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और धूप में चमकती चोटियां मनाली की खूबसूरती इस वक्त देखते ही बन रही है। ये सितंबर का आखिर है, लेकिन मनाली की वादियों में ये सर्दियों के आगाज की आहट है। धर्मशाला से पूजा शर्मा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जोरदार बर्फबारी ने इन इलाकों का मौसम भले ही सुहाना बना दिया हो, लेकिन निश्चित रूप से स्थानीय लोगों और पर्वतारोहियों के लिए मौसम चुनौतियों का दौर भी लेकर आया है। लेकिन तमाम चुनौतियों के बीच ही हिमाचल के किन्नौर से एक राहत भरी तस्वीर सामने आई। माउंट लियो पारगिल 2 के अभियान पर निकला कोलकाता का 12 सदस्यीय पर्वतारोही दल अब सुरक्षित वापस लौट आया है। हिमालय राज बीकन का ये दल खराब मौसम के बीच में मुश्किल में फंस गया था। अचानक हुई तेज बारिश और बर्फबारी ने हालात चुनौतीपूर्ण बना दिए। तापमान -20 डिग्री तक जा पहुंचा और बर्फ की मोटी चादर ने रास्ते मुश्किल कर दिए। ऐसे में अभियान को रोकना पड़ गया। दल की मदद के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ ITBP और स्थानीय लोग भी जुट गए और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पूरा दल सुरक्षित इलाके से बाहर आ गया।

0: अचानक बदला मौसम, तेज बारिश के बाद तापमान -20 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में किन्नौर में माउंट लियो पारगिल 2 की ओर बढ़ रही कोलकाता की 12 सदस्यीय हिमालयाज बीकन टीमें आधे रास्ते में फंस गईं।
1: इन हम लोग का समिट जो दिन था, हम लोग समिट में पहुंचा, समिट से थोड़ा नीचे हम लोग का छोड़ के आने पड़ा है ड्यू टू द हाई अल्टीट्यूड सिकनेस ऑफ वन ऑफ द मेंबर। एंड हम लोग देन वी आर रिटर्न बैक फ्रॉम बेस कैंप दैट डे।
0: बर्फबारी से रास्ते ढक चुके थे, लौटना भी आसान नहीं था, लेकिन बिगड़ते मौसम के बीच टीम के पास वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।
1: बीच में बहुत स्नो गिरा है तो उसमें वो लोग का चलने का दिक्कत हो रहा था, तो हमारा पास भी 2-3 आदमी था जो थोड़ा से उम्र में ज़्यादा है, वो लोग को सबसे चलने में दिक्कत होता था, तो उसी टाइम हम सोचा है हमको असिस्टेंट जरूरी है।
0: बर्फीली वादियों में फंसी टीम ने मदद के लिए स्थानीय पुलिस और आईटीबीपी से संपर्क किया, साथ ही स्थानीय लोगों से भी मदद मांगी, जिसके बाद तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया।
1: जहां तक हम लोग का आदमी को मिले उतना तक वो लोग पूछे कि ना वो लोग अगर उसको मिल जाएगा तो उसको भी थोड़ा साहस मिल जाएगा जे हमारा लिए आदमी आ गया, रेस्क्यू टीम आ रहा है। तो उसका बाद दासी जी खुद चला गया ऊपर में वो लोग का रूट देखने के लिए, पुलिस भी इतना में आ गया था, पुलिस का जो टीम था, तो दासी जी पुलिस टीम को लेके भी उधर छोड़ा है।
0: इसके बाद आईटीबीपी के जवान मेडिकल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव अभियान में जुट गए।
1: आईटीबीपी पूरा मेडिकल टीम लेकर आया, आईटीबीपी का सबसे बड़ा असिस्टेंट जो था हम लोग का लिए, उसका मेडिकल टीम रेडी रहता है हमेशा।
0: राहत बचाव टीम और स्थानीय लोग पहुंचे तो सभी ने राहत की सांस ली। टीम ने एक बीमार पर्वतारोही को सुरक्षित बाहर निकाला।
1: सही सलामत सब सेफ्टी में हम लोग यहाँ तक पहुंच गया, सबको असिस्टेंट मिला के हम लोग का पूरा टीम सेफ पहुंच गया नाको में।
0: मदद पहुंची तो हालात संभले और आखिरकार बर्फीली मुश्किलों के बीच फंसी टीम सकुशल नाको पहुंच गई। किन्नौर से विशेषर नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो सितंबर में मौसम की मनमर्जियां जारी हैं। मौसम की मनमानी का यही दौर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में नजर आया है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस और डीप डिप्रेशन की वजह से पिछले कुछ दिनों में राजस्थान के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई, तापमान गिरा, लेकिन अब दिल्ली की तरह वहां भी मौसम करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है। सीधे राजधानी जयपुर से राजस्थान के मौसम का हाल बता रही है हमारी सहयोगी रिदम जैन।
3: राजस्थान में सक्रिय हुए दो पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में खास बदलाव देखा गया। पिछले 24 घंटे में ये बदलाव बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखा गया है, क्योंकि मूसलाधार बारिश राजस्थान के कई कई इलाकों में दर्ज की गई है, जिसमें जयपुर, बीकानेर, चूरू संभाग शामिल है, और ऐसे में टेम्परेचर्स में भी भारी गिरावट देखी गई है। क्योंकि कुछ दिन पहले जहां रिकॉर्ड तोड़ गर्मी यहां पे दर्ज की जा रही थी कि सितंबर में 15 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटा था, वहीं एक दिन यानी कि सोमवार ने पूरा जो मौसम है वो बदल दिया। लगातार बारिश यहाँ पे देखी गई, जिसमें राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश जयपुर में ही 52 मिलीमीटर दर्ज की गई है, और ऐसे में इस बारिश की वजह से गर्मी से राहत जयपुर वासियों को और राजस्थान वालों को सभी को मिली है, और 2 से 7 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर्स में गिरावट भी दर्ज की गई है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये अभी भी मानसून जारी है या फिर ये मानसून की विदाई वाली बारिश है। तो ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि जब मानसून जा रहा होता है तब लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से बारिश होती है, मौसम में बदलाव लगातार देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ कल यानी कि सोमवार को देखने को मिला, जब लगातार 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्टिव हुए थे, तो ऐसे में मौसम में बदलाव देखा गया था। 260 डिग्री की गिरावट जरूर आई थी, पर साथ ही में मौसम विभाग का कहना है कि ये जो राहत है ये एक ही दिन की थी, क्योंकि अब वापस से मंगलवार से मौसम में बदलाव देखा गया, आसमान जो है वो कहीं ना कहीं वापस से साफ हो गया है। आने वाले 3 से 4 दिन इसी तरीके से जो मौसम है वो साफ ही रहने वाला है, और धीरे धीरे करके 4 से 5 डिग्री तक वापस से टेम्परेचर्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
2: तो चलिए, जब तक आप भी इंजॉय कर सकते हैं, इंजॉय कीजिए इस गुलाबी सर्दी को। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें दिन भर जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।

0: क्या आपके विदेश यात्रा में बाधाएं आ रही हैं? क्या विदेश में बसने में समस्याओं का सामना कर रहे हैं? कौन से ग्रहों का विदेश से है संबंध और कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: क्या आपके विदेश यात्रा में बाधाएं आ रही हैं? क्या विदेश में बसने में समस्याओं का सामना कर रहे हैं? कौन से ग्रहों का विदेश से है संबंध और कैसे उठाएं इनका लाभ, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल, महिला रिले रेस 4x400 रेस में जीता सोना, मेंस 4x100 मीटर रिले में मिला ब्रॉन्ज, भारत के खाते में अब तक 6 गोल्ड, कुल मेडल की संख्या 53। भारत की रक्षा शक्ति में होगा इजाफा, साल के अंत तक आएंगे तेजस MK-1A फाइटर जेट के 12 और इंजन, HAL के पास 27 एयर फ्रेम तैयार। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास नेशनल हाईवे 911 मिलिट्री रनवे में बदला, भारतीय सेना की एविएशन यूनिट्स ने हाईवे पर की लैंडिंग की प्रैक्टिस। तकनीकी खराबी के बिजनौर में खेत में उतरा हेलीकॉप्टर, गांव में मचा हड़कंप, देखने उमड़े लोग, आसमान में उड़ता रहा दूसरा हेलीकॉप्टर। यूपी के भदोही में होगा इंडिया कारपेट एक्सपो, 65 देशों के खरीदार होंगे शामिल, ब्रिक्स देशों के लिए खास इंतजाम।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
9: एशियन गेम्स में भारतीय महिला रिले टीम ने 4x400 मीटर में गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास, भारतीय टीम ने 3:29.69 का शानदार समय दर्ज करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रेस की शुरुआत से ही भारतीय धाविकाओं ने जबरदस्त तालमेल और रफ्तार दिखाई, आखिरी लैप में मुकाबला बेहद इंटरेस्टिंग हुआ। भारतीय पुरुष रिले टीम ने 4x400 मीटर में किया शानदार प्रदर्शन, ब्रॉन्ज जीतकर देश का बढ़ाया मान। इससे पहले एशियन गेम्स में नीरू ढांडा ने रचा इतिहास, वुमेन्स ट्रैप स्पर्धा में भारत के लिए जीता गोल्ड मेडल। नीरू ने फाइनल में 28 अंक हासिल कर बनाया नया एशियाई रिकॉर्ड। मौजूदा एशियन गेम्स में ये भारत का पांचवा गोल्ड मेडल। फिडे एक्सीलेंस अवार्ड में बेस्ट चेस प्लेयर फीमेल चुनी गई। भारतीय चेस ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख, एक साल में उनके खिताबी प्रदर्शन को देखते हुए मिला उनको सम्मान। भारत ने लगातार तीसरी बार नौना ट्रॉफी अपने नाम की। इससे पहले भारतीय टीम ने 2022 में चेन्नई और 2024 में बुडापेस्ट में हुए चेस ओलंपियाड में ये ट्रॉफी जीती थी। आईसीसी 1 अक्टूबर को जारी करेगा वनडे वर्ल्ड कप 2027 का स्केड्यूल। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में खेला जाएगा टूर्नामेंट। वर्ल्ड कप में पहली बार 14 टीमें 57 मैचों में लेंगी हिस्सा। इस टूर्नामेंट में 12 वेन्यू भी शामिल। पांच बार के वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील के खिलाफ फीफा फ्रेंडली मैच खेलने के लिए कोलकाता पहुंची भारतीय टीम। 3 अक्टूबर को सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा महामुकाबला। राजस्थान के डांटौर में NH-911 पर सेना ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग की ट्रेनिंग की। रुद्र ध्रुव चेतक ने हाईवे से टेक ऑफ और लैंडिंग का अभ्यास किया। भारत पाक सीमा के करीब सेना ने हाईवे को अस्थायी रनवे में बदला। इससे मुश्किल हालात में वैकल्पिक जगहों से ऑपरेशन की क्षमता परखी गई। कठिन रेगिस्तानी माहौल में सेना के एयरक्रू ने सटीक लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया। पायलटों के साथ ग्राउंड टीम ने भी तालमेल की ट्रेनिंग की। रुद्र ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टरों ने NH-911 पर ऑपरेशन किया। अभ्यास का मकसद एयरबेस के अलावा दूसरी जगहों से हेलीकॉप्टर चलाने की तैयारी। डांटौर का इलाका लंबी दूरी, गर्म मौसम और सीमित सुविधाओं के लिए चुनौतीपूर्ण है। इस माहौल में सेना ने वैकल्पिक लैंडिंग साइट पर अपनी तैयारी जांची। जोधपुर में एक्सरसाइज तरंग शक्ति जारी। पावर इन पार्टनरशिप है इस साल का थीम। जोधपुर एयरबेस के ऊपर आसमान में उड़ान भरते हुए नजर आए। इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाले देशों के फाइटर जेट और सपोर्ट एयरक्राफ्ट दिखा शानदार नजारा। भारत के अलावा 7 मित्र देश अपने लड़ाकू विमानों से अन्य संसाधनों के साथ हिस्सा ले रहे हैं। 32 अन्य देश ऑब्जर्वर के तौर पर। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स भी दिखा रहे अपना कमाल। एक्सरसाइज में राफेल, Su-30 MKI-LCA, तेजस, जैगुआर और MiG-29 शामिल। इस मेगा एक्सरसाइज में पहली बार अमेरिकी वायुसेना का पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 भारत की धरती पर किसी युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहा। बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर का तीसरा फेज आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने किया इसका उद्घाटन। पंद्रह मिनट में तय होगा मयूर विहार से एम्स तक का सफर। दिल्ली के सड़क नेटवर्क और यातायात व्यवस्था को मिली नई रफ्तार। इस प्रोजेक्ट से पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच में सिग्नल फ्री होगी कनेक्टिविटी। ट्रैफिक जाम में आएगी भारी कमी। अस्पतालों में लंबी लाइन से मिलेगी छुट्टी। यूपी ट्रेड शो में प्रदर्शित DOD मशीन से 10 मिनट में होंगे 75 से ज्यादा बॉडी टेस्ट। राज्य के आयुर्विज्ञान संस्थान के स्टॉल पर DOD यानी डॉक्टर ऑन ड्यूटी मशीन पेश की गई। वजन, BP, शुगर से लेकर 25 से ज्यादा लंग्स फंक्शंस टेस्ट करती है ये मशीन। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी शुरू। बढ़ाई जा रही NSG की भूमिका। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था का आंकलन कर नए सुरक्षा प्लान तैयार कर रही NSG कई प्रमुख स्थलों का निरीक्षण कर रही। दीपोत्सव 2026 में अयोध्या में दिव्यता और भव्यता की बिखरेगी चमक। रामनगरी

महाराष्ट्र में आस्था का मेला, मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में अंगारकी संकष्टी चतुर्थी की रौनक। मंगलवार और अंगारकी चतुर्थी के दुर्लभ संयोग पर सुबह से भक्तों की भीड़ लगी, भक्तिमय माहौल हुआ। रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया पूरा मंदिर, सीसीटीवी कैमरों, मेटल डिटेक्टर और स्कैनर के जरिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में बप्पा की भव्य श्रृंगार, चारों तरफ गणपति बप्पा मौर्य सुनाई दे रहा। सुबह सवेरे बप्पा की मंगला आरती में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, लिया बप्पा का आशीर्वाद। अकोला के मंदार गणपति मंदिर में 1968 से तने में दिखे गणेश स्वरूप की हो रही पूजा, भक्त से स्वयंभू गणपति मानते हैं। अंगारकी संकष्टी चतुर्थी पर मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी, गणपति बप्पा मौर्य के जयकारे सुनाई दिए। विसर्जन के कुछ दिन बाद ही भक्तों को फिर से मंदिरों तक पहुंचा दिया गया, अकोला में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर ट्रस्ट कहता है कि 1968 में मंदिर के तने में गणेश जी जैसा स्वरूप नजर आया था, तभी से यहां की पूजा परंपरा चलती आ रही। मान्यता है कि गणपति ने मंदार वृक्ष के नीचे वास और शमी पत्र को प्रिय होने का वरदान दिया था, इसी वजह से गणेश पूजा में दोनों का विशेष महत्व है। जालना में राजूरेश्वर गणपति मंदिर में इस चतुर्थी पर आस्था का सैलाब, उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गणपति मंदिर के गर्भगृह में फूलों से की गई आकर्षक सजावट, रात से ही दर्शन के लिए कतारें लगी। महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से एक संपूर्ण शक्तिपीठ के रूप में मशहूर है राजूर स्थित राजूरेश्वर गणपति देवस्थान, श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र। रंग बिरंगी रोशनी से की गई पूरी मंदिर परिसर की सजावट, गणपति बप्पा मौर्या सुनाई दिया। मंगलवार के दिन पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को कहते हैं अंगारकी संकष्टी चतुर्थी। अंबाजी शक्ति मंदिर में सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार शुद्धिकरण समारोह का आयोजन हुआ, भादरवी पूनम मेले के समापन के बाद आयोजित होता है यह समारोह। माता के गर्भगृह से लेकर उनके दिव्य आभूषणों पूरे मंदिर परिसर की होती है गहन सफाई, साफ सफाई भी की जाती है यहां पर। अंबाजी मंदिर के कर्मचारी और पुजारी समेत सोनी परिवार और गांव के लोग लेते हैं हिस्सा, 5 पीढ़ियों से शुद्धिकरण चला रहा। इस समारोह के दौरान भजन कीर्तन का आयोजन होता है, सोनी परिवार द्वारा माताजी को सोने की छोटी प्रतिकृति भी दान में दी जाती है। भादरवी मेले के दौरान देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के दर्शन के बाद मंदिर की शुद्धता पवित्रता बनाए रखने के लिए हर साल ये विशेष आयोजन यहां पर किया जाता है। पुणे में देखे आस्था संस्कृति के रंग, तुलजा भवानी के पलंगोत्सव का हुआ भव्य आयोजन। ग्रामीणों ने बड़े उत्साह और भक्तिभाव के साथ पलंग का स्वागत किया, जगह जगह पारंपरिक वाद्यों की गूंज सुनाई दी। करीब 12वीं शताब्दी में राजा रामदेव राय के काल से जारी है घोड़गांव से तुलजापुर भेजे जाने वाले पलंग की ये परंपरा। मान्यता के अनुसार विजयदशमी से कोजागिरी पूर्णिमा तक मां तुलजा भवानी की मुख्य मूर्ति से पलंग पर विश्राम करती है, पिछले वर्ष के पलंग को होम में किया जाता है विसर्जन। इस दौरान प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती पाठ, भजन, महाआरती और पारंपरिक अनुष्ठान किए जाते हैं आयोजित, भक्तगण पूरी श्रद्धा के साथ सम्मिलित होते हैं। सरकारी योजना से बदली सहारनपुर के देवेंद्र की जिंदगी, 2 लाख का लोन लेकर पुश्तैनी माटी कला कारोबार को रफ्तार दी। सरकारी मदद मिली तो फिर चाक संभाला और मिट्टी के कारोबार को नई पहचान दी, आर्थिक तंगी के दौरान घोड़ा बग्घी चलाते थे देवेंद्र। देवेंद्र को अब दूसरे शहरों से मिलने लगे हैं ऑर्डर, 4 लोगों को भी रोजगार दे रहे। देवेंद्र अब गमले, फ्लावर पॉट, गुल्लक, दीपक, मूर्तियां, फैंसी कैंपर बना रहे हैं, आसपास के शहरों में इनकी जबरदस्त मांग है। देवेंद्र के बनाए मिट्टी के उत्पादों की लखनऊ में लगी प्रदर्शनी, माटी कला के कारोबार से संवरा पूरा परिवार। राजस्थान में किसान

0: कर रहे चंदन की खेती, पारंपरिक खेती छोड़कर आधुनिक कृषि के जरिए सालाना अच्छी कमाई हो रही। उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन से आई राहत भरी खबर, भारी बर्फबारी के बीच में ऊंचाई वाले इलाकों से 27 ट्रैकर्स और पोर्टर्स को बचाया। कालिंदी पास जोगिनवान संतोपथ और बासुकी ताल क्षेत्र में हेलीकॉप्टर की मदद से चलाया गया बचाव अभियान, 40 सदस्यों को सुरक्षित निकाला। रणबीर कपूर ने फैन संग मनाया 44वां बर्थडे, अपने नए बंगले कृष्णराज के बाहर जमा फैंस और पैपराजी के साथ सेलिब्रेट किया। कैजुअल लुक में घर से बाहर निकले रणबीर ने पैपराजी के साथ काटे 3 बड़े केक, फैंस को कहा शुक्रिया। जूनागढ़ के ऐतिहासिक ऊपरकोट किले में सैलानियों के लिए एक नए आकर्षण की शुरुआत हुई, किले में भव्य लाइट एंड साउंड शो का आगाज हुआ। इस शो के जरिए दर्शाया जाएगा जूनागढ़ का इतिहास, 1472 से शुरू होकर 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ की आजादी तक के सफर की कहानी। रोजाना शाम 7:15 पर आयोजित किया जाएगा लाइट एंड साउंड शो, शुरुआती 2 हफ्ते तक ₹50 होगी टिकट की कीमत। ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, सूफी संत मंसूर शाह औलिया की दरगाह गए और उर्स में शामिल हुए। दरगाह पर सिंधिया ने चढ़ाई चादर, पुरानी शाही परंपरा के तहत हर साल उर्स में शामिल होता है सिंधिया परिवार। झांसी में बुंदेलखंड की बलिनी की 9वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन हुआ, पशुपालन के जरिए 1 लाख से ज्यादा आत्मनिर्भर बनी महिलाओं ने लिया हिस्सा। इस कार्यक्रम में दिखी बुंदेलखंड की समृद्ध संस्कृति की झलक, कई लोक नृत्य और लोक कलाओं का हुआ मंचन। जिले के एक युवक ने उठाया मुनाक नहर की सफाई का बीड़ा, साथ में जुटे करीब 1600 से ज्यादा वॉलंटियर्स। भारतीय दवा कंपनियों को बड़ी राहत, स्पेशल ड्रग्स पर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा अमेरिका की तरफ से, भारत के साथ 20 देशों को भी राहत। जल्द बनेगा तेजस MK-1A फाइटर जेट का स्क्वाड्रन, साल के अंत तक आएंगे 12 और इंजन। 2 दिन की बारिश थमते ही बर्फ की सफेद चादर में ढक गया केदारनाथ धाम, नजर आ रहा बेहद भव्य नजारा। हिमाचल में फिर से बदला मौसम, धौलाधार की पहाड़ियों पर हुआ ताजा हिमपात, चारों तरफ बिछी बर्फ। धर्मशाला और आसपास के क्षेत्रों में हर तरफ श्वेत श्रृंगार हुआ, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। मनाली और उसके ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी, सफेद चादर से ढक गई पहाड़ियां। प्रकृति का सुंदर नजारा पेश कर रही बर्फ से ढकी हुई चोटियों के बीच में घिरी वादी, बर्फबारी के बाद सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद। चीन का येलो रिवर डेल्टा लाल घास से चमक उठा, नजारा दिखाई दे रहा खूबसूरत। तापमान गिरते ही स्वेदा सेल्सा लाल हो गई, इससे पूरा वेटलैंड रंगीन दिखाई दे रहा। यहां हर साल पहुंचते हैं लाखों प्रवासी पक्षी, लाल घास उन्हें भोजन और आसरा देती है। इस मिट्टी से नमक सोखती है, शरद ऋतु में इसका रंग लाल हो जाता है। येलो रिवर एस्ट्यूरी को 2024 में मिली वैश्विक पहचान, यहां का वेटलैंड पक्षियों के लिए अहम। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ह्यूमनॉइड रोबोट घर साफ करेगा, $30 प्रति घंटे है इसका किराया। रोबोट वैक्यूम पोछा और सतहों की सफाई कर सकता है, बेड और बर्तन का काम भी सीख रहा। ये रोबोट कारपेट टाइल और लकड़ी के फर्श पर चल सकता है, हाथों से सफाई का सामान भी पकड़ लेता है। इस रोबोट को फिलहाल रिमोट ऑपरेटर संभालता है, कंपनी से पूरी तरह से ऑटोनोमस बनाने पर काम कर रही। कंपनी का कहना है कि रोबोट सफाई कर्मियों की जगह नहीं लेगा, इसका मकसद इंसानों के साथ काम करना। यूनान नेचर रिजर्व में वेस्टर्न ब्लैक क्रेसेंट गिबन का नया बच्चा मिला, 8 से बढ़कर 9 हुआ परिवार। नए बच्चे के जन्म के बाद वहां का सबसे बड़ा परिवार ये बन गया है। सिर्फ एशिया में मिलती है ये प्रजाति। वेस्टर्न ब्लैक क्रेस्टेड गिबन बेहद दुर्लभ और चीन में संरक्षित वन्यजीव है। यहां पर सबसे बड़ा बसेरा इनका माना गया। दुनिया में करीब 1500 ही बचे हैं, इनमें 600 से ज्यादा गिबन चीन के यूनान के पहाड़ों में पाए जाते हैं। पेट्रोलिंग टीम ने निगरानी के दौरान गिबन परिवार में नए बच्चे को देखा। यूनान में गिबन की जारी है निगरानी। चीन के जिलिन में रेस्क्यू डॉग्स का ऑटम ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू। डॉग्स ने बाद भी पार किया। चांगचुन में रेस्क्यू डॉग्स ने मुश्किल हालात में सर्च ऑपरेशन की ट्रेनिंग ली। मकसद आपदा के समय उनकी तैयारी मजबूत करना। इस ट्रेनिंग में डॉग्स को कमान मानने और तेजी से प्रतिक्रिया देने का अभ्यास करवाया। इससे उनकी ऑपरेशनल क्षमता बेहतर होगी। बार बार के ड्रिल से रेस्क्यू डॉग्स और उनके हैंडलर्स के बीच में तालमेल मजबूत हो रहा। दोनों मिलकर तकनीकी कौशल भी निखारते जा रहे। जिलिन के फायर एंड रेस्क्यू दल ने डॉग्स की खास ट्रेनिंग करवाई है। लक्ष्य है आपदा और मलबे वाले इलाकों में तेज सर्च ऑपरेशन।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: क्या आपके विदेश यात्रा में बाधाएं आ रही हैं? क्या विदेश में बसने में समस्याओं का सामना कर रहे हैं? कौन से ग्रहों का विदेश से है संबंध और कैसे उठाएं इनका लाभ, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हांगकांग के विक्टोरिया पार्क, जहां वर्ल्ड लैंटर्न फेस्टिवल मनाया जा रहा है। रोशनी के रंगों से सराबोर इस अनोखे उत्सव में 20 देशों की 3,000 से ज्यादा लालटेन दिखाई गई है।
7: हांगकांग के विक्टोरिया पार्क में रोशनी का मेला सजा है। यहाँ वर्ल्ड लैंटर्न्स बुलेवार्ड देखने बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। रोशनी के रंगों से सराबोर इस प्रदर्शनी में 20 देशों की 3,000 से ज्यादा लालटेन दिखाई गई है। अद्भुत अनूठी लालटेन से सजे इस रास्ते पर दुनिया भर के डिजाइन, कलाकारी और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिल रही है। 25 सितंबर को मिड ऑटम फेस्टिवल खत्म होने के बाद से यहां बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ रही है। खास बात ये है कि इस प्रदर्शनी में दक्षिण कोरिया के जिंजो की सिल्क की लालटेन भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल पारंपरिक रूप से परिवार के सदस्यों की सेहत और खुशहाली की कामना के लिए किया जाता है। इसके अलावा ब्राजील की रंग बिरंगी पैचवर्क वाली लालटेन और पोलैंड की लालटेन भी यहाँ मौजूद है, जिनमें पारंपरिक लोक कला और पेपर कटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। विक्टोरिया पार्क में रोशनी से सजी शाम का लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और इन जगमगाती लालटेन के साथ फोटो लेकर खुशनुमा यादों को भी सजो रहे हैं। यूं तो ये प्रदर्शनी 27 सितंबर को खत्म होने वाली थी, लेकिन लोगों की भारी मांग की वजह से इसे 4 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंटरनेशनल लालटेन एग्जीबिशन का हिस्सा बन पाए, यहाँ रोशनी से सजी शामों का आनंद ले पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: हवाई द्वीप से सामने आई ये तस्वीरें जितनी हैरान करने वाली हैं, उतनी ही कुदरत की ताकत का एहसास भी करवाती हैं। अंधेरे में धधकता दावा, आसमान तक उठती इसकी चमक, किलाउआ के भीतर जारी हलचल को साफ दिखाती है। कैमरा में कैप्चर हुआ ये शानदार नजारा आपको भी हैरान कर देगा।
9: ये तस्वीरें हवाई के किलाउआ ज्वालामुखी की हैं। रात के अंधेरे में ज्वालामुखी से गर्म लावा बाहर निकल रहा है। लावा फवारे की तरह ऊपर उठता है और फिर ढलान पर नीचे की तरफ बहने लगता है। लावा इतना गर्म है कि उसका लाल रंग रात के अंधेरे में साफ नजर आ रहा है, जैसे जैसे लावा नीचे की तरफ बढ़ता है आसपास का इलाका भी उसकी रोशनी से चमक उठता है। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण यानी USGS के अनुसार किलाउआ ज्वालामुखी के लिए अलर्ट लेवल अभी ऑरेंज यानी वॉच पर है। इसका मतलब है कि ज्वालामुखी पर लगातार नजर रखी जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आगे लावा के बड़े फव्वारे निकलने की संभावना बनी हुई है। किलाउआ में रुक रुक कर ज्वालामुखी गतिविधि जारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक किलाउआ में ये गतिविधि 23 दिसंबर 2024 से रुक रुक कर जारी है। किलाउआ दुनिया के सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। फिलहाल वैज्ञानिक लगातार ज्वालामुखी की निगरानी कर रहे हैं। लावा का ये नजारा जितना खूबसूरत नजर आ रहा है, उतना ही ये याद दिलाता है कि प्रकृति कितने रहस्यों से भरी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: दिल्ली की सड़कों पर CEC के विरोध में जुट गए लोग। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाखों लोगों का हल्ला बोल। यूपी में महिला टीचर पर फेंका गया अंडा। गुरु शिष्य का दिल जीतने वाला रिश्ता। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
11: असंभव खुद बताता है कि
4: संभव मुझ में ही है।
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
11: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड और ब्रोंज। महिला रिले रेस 4x400 रेस में जीता सोना, मेंस 4x100 मीटर रिले में मिला ब्रोंज। भारत के खाते में अब तक 6 गोल्ड, कुल मेडल 53। भारत की रक्षा शक्ति में होगा इजाफा, साल के अंत तक आएंगे तेजस MQ-1A फाइटर जेट के 12 और इंजन, HAL के पास 27 एयर फ्रेम तैयार। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास नेशनल हाईवे 911 मिलिट्री रनवे में बदला, भारतीय सेना के एविएशन यूनिट्स ने हाईवे पर की लैंडिंग की प्रैक्टिस। तकनीकी खराबी के बिजनौर में खेत में उतरा हेलीकॉप्टर, गांव में मचा हड़कंप, देखने उमड़े लोग, आसमान में उड़ता रहा दूसरा हेलीकॉप्टर। यूपी के भदोही में होगा इंडिया कार्पेट एक्सपो, 65 देशों के खरीदार होंगे शामिल, ब्रिक्स देशों के लिए विशेष इंतजाम।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की, भारत को आज एशियन गेम्स में 5वां गोल्ड मिला है, हरियाणा की 6ठा गोल्ड अब मिल चुका है। आपको बता दें कि हरियाणा की 26 साल की निशानेबाज ने एशियन गेम्स के महिला ट्रैप व्यक्तिगत मुकाबले में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। इतना ही नहीं, नीरू ने नया इतिहास भी रचा है, एशियाई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो है एशियन गेम्स में नीरू ढांडा का गोल्डन निशाना।
12: आपको बता दें कि नीरू राणा ने एशियन गेम्स में भारत के निशानेबाजी इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। नीरू ने न केवल ट्रैप इवेंट में गोल्ड जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गई हैं, बल्कि उन्होंने एशिया खेलों में नया रिकॉर्ड भी बना दिया है। नीरू राणा को फाइनल मुकाबले में 30 शॉट मिले, जिनमें से उन्होंने 28 पर सटीक निशाना साधकर एशियन गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एशियाई खेलों के इतिहास में ट्रैप शूटिंग की एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली नीरू पहली भारतीय महिला शूटर बनी है। नीरू ने क्वालिफिकेशन राउंड में भी टॉप किया था। क्वालिफिकेशन राउंड में वो कतर की शूटर के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रही थी। दोनों का स्कोर 118 का रहा था। इससे पहले नीरू आशिमा एलावत और मनीषा कीर की तिकड़ी ने महिला ट्रैप इवेंट में 328 के संयुक्त स्कोर के साथ सिल्वर जीता।
13: एशियाई खेल में भारत को आखिरकार मिल गया एक इंडिविजुअल स्वर्ण पदक, क्योंकि आज का दिन जो है हमने देखा नीरू धांडा महिला के ट्रैप शूटिंग में उन्होंने ना केवल स्वर्ण पदक लेकिन सिल्वर मेडल भी हासिल कर दिया टीम इवेंट में। अब ये स्वर्ण पदक इतना ऐतिहासिक क्यों है इंडिया के लिए, क्योंकि अगर हम ट्रैप शूटिंग के इतिहास को देखेंगे 1978 में एशियाई खेल में रजिंदर सिंह ने मेंस ट्रैप शूटिंग में गोल्ड जीता था। उसके पहले और उसके बाद हमने ट्रैप शूटिंग में कभी मेडल जीता ही नहीं है। अब विमेंस की अगर हम बात करेंगे तो ना उससे पहले और आज हमने एक भी गोल्ड मेडल हासिल नहीं किया ट्रैप शूटिंग में। अब बात करते हैं नीरू धांडा की। फाइनल में 30 शॉट्स में उन्होंने 28 शॉट्स ऑन टारगेट उन्होंने हिट किया और इसके वजह से उनको मिल गया गोल्ड मेडल।
12: और नीरू की रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। लोग नीरू के अभिभावकों को लगातार बधाई दे रहे हैं। नीरू के गोल्ड जीतने के बाद उनके घर में जश्न का माहौल है। नीरू भी इस व्यक्तिगत उपलब्धि पर बेहद खुश हैं।
14: सर फीलिंग सुपर हाई लेवल पे फीलिंग है, मतलब काफी एक्साइटेड हूँ। अपने देश के लिए गोल्ड जीता है और नेशनल एंथम अपने देश का बजना मतलब मेरे लिए काफी प्राउड की बात है। सर उसके लिए प्रिपरेशन हम करते हैं, जैसे ट्रेनिंग करते हैं तो प्रिपरेशन वैसे ही हम करते हैं, थोड़ा बैड वेदर में भी ट्रेनिंग करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये नॉर्मल था। पर रहता है थोड़ा कंडीशन हर एक कंट्री का अलग रहता है, तो यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी थी, लेकिन मैंने अपने आप को काम रखा और अपने आप पे फोकस किया एंड देन गोल्ड आया। सर पापा फार्मर हैं, सर मदर हाउस वाइफ हैं, मम्मी का योगदान है मेरी लाइफ में पूरा, और मेरी बुआ जी हैं वो कबड्डी की प्लेयर रही हैं आजादो देवी, उनकी उनसे भी काफ़ी इंस्पायर हूँ मैं, और मेरे कोच का योगदान है मनसेर सिंह का, वो पिछले 6 साल से मेरे साथ हैं पूरे ग्रास रूट से और अब तक कंटिन्यू मैं उनके साथ ही करती हूँ।
12: आज अंगार की संकष्टी चतुर्थी है और शुभ दिन पर गणपति मंदिरों में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। भगवान गणेश के दर्शन और आशीर्वाद के लिए सुबह से ही श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है अंगार की संकष्टी चतुर्थी पर गणपति की आराधना। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में बप्पा के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मंदिरों में भक्तिमय माहौल है और चारों ओर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे गूंज रहे हैं।

0: अंगार की संकष्टी चतुर्थी यानी गणपति बाप्पा का आशीर्वाद पाने का शुभ दिन। वो खास दिन जब गणपति पूजा से बाप्पा कष्ट हरते हैं। इस दिन पर गणेश मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ता है। मुंबई हो, पुणे हो या फिर जालना, अंगार की संकष्ट चतुर्थी पर महाराष्ट्र के तमाम गणपति मंदिरों में भक्तों की कतार लगी है। हर तस्वीर बता रही है कि विघ्नहर्ता के प्रति भक्तों की आस्था कितनी गहरी है। मुंबई के सिद्धिविनायक से लेकर पुणे के दगड़ूशेठ गणपति और जालना के राजू राजेश्वर गणपति तक सुबह से बाप्पा के दरबार में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। दूर दूर से भक्त बाप्पा के दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं और मौका अंगार की संकष्टी चतुर्थी का हो तो इस मौके पर बाप्पा का भव्य दिव्य श्रृंगार किया गया है। दरअसल अंगार की संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश की आराधना का खास दिन है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। ये दिन भगवान गणेश की पूजा और आराधना के लिए विशेष माना जाता है और जब यही संकष्टी चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ती है तो इसे अंगार की संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। गणेश भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, बाप्पा की पूजा अर्चना करते हैं और चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत का पारण करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और इसी खास मौके पर मुंबई के सिद्ध विनायक का भव्य और दिव्य श्रृंगार हुआ। फूलों, आभूषणों और आकर्षक सजावट से सजे बाप्पा के मनमोहक स्वरूप के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। बाप्पा के दिव्य स्वरूप को देखकर भक्त भाव विभोर नजर आए। गजानन के दर्शन पूजन के लिए महाराष्ट्र जालना में राजू राजेश्वर गणपति मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। रात से ही श्रद्धालु लंबी कतारों में खड़े रहे। किसी के हाथ में फूल और प्रसाद तो किसी की आंखों में बाप्पा के दर्शन की आस नजर आई। अंगार की चतुर्थी के मौके पर मंदिर के गर्भगृह को फूलों से सजाया गया है जबकि पूरा मंदिर परिसर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है।
1: आज अंगार चतुर्थी का विशेष योग है। इस अवसर पर महाराष्ट्र के साथ साथ दूर दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु राजूरेश्वर गणपति महाराज के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। भक्त बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ बप्पा के चरणों में अपनी मनोकामना रखते हैं और प्रार्थना करते हैं।
0: साल भर जालना के राजूरेश्वर गणपति मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं लेकिन संकष्टी चतुर्थी और खासकर अंगार की संकष्टी चतुर्थी के मौके पर यहां श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है।
1: व्यापार युग से जुड़ा हुआ प्राचीन और जागृत देवस्थान माना जाता है। गणपति के 3.5 पीठों में से श्री राजूरेश्वर गणपति महाराज का स्थान पूर्ण पीठ के रूप में माना जाता है। श्री राजूरेश्वर गणपति महाराज को नवशाला पावनारा गणपति अर्थात भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले गणपति के रूप में श्रद्धालु से माना जाता है।
0: दूर दूर से भक्त राजूरेश्वर गणपति के दरबार में पहुंचते हैं और बप्पा के दर्शन कर सुख समृद्धि और मनोकामना की प्रार्थना करते हैं। गौरव विजयशाली, जालना, महाराष्ट्र, गुड न्यूज टुडे।
2: हर साल भादरवी पूनम महामेला खत्म होने के बाद अंबाजी मंदिर में शुद्धिकरण की विधि की जाती है। ये विधि प्रक्षालन विधि कहलाती है। शुद्धिकरण समारोह के दौरान अंबाजी मंदिर के गर्भगृह, माताजी के गहनों और पूजा समारोह में इस्तेमाल होने वाले सभी सामानों की सफाई की जाती है। ऐसे में आज की ये हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। अंबाजी में गहनों की सफाई के बाद मंदिर में भजन। जी हाँ, आपको बता दें इस साल भी भादरवी मेले के समापन के बाद मंदिर ट्रस्ट की ओर से पारंपरिक प्रक्षालन विधि का आयोजन किया। इस दौरान गर्भगृह और पूजा सामग्री से लेकर पूरे मंदिर परिसर को जल से शुद्ध किया गया। मां के जेवरात और दूसरे सामान को पवित्र करने के लिए हर साल की तरह इस साल भी निभाता आ रहा। इस साल भी सोनी परिवार के करीब 75 सदस्य खासतौर पर अहमदाबाद से अंबाजी पहुंचे। उन्होंने माता जी के विभिन्न आभूषणों, हार और सवारी की श्रद्धापूर्वक सफाई की। सफाई सेवा पूरी होने के बाद सोनी परिवार की ओर से माता जी को सोने का एक उपहार भी भेंट किया। इस दौरान माता जी के पवित्र विसायंत्र का आशीर्वाद लेने के लिए भी कई श्रद्धालु पहुंचे। शुद्धिकरण के इस महासमारोह में मंदिर के पुजारी, कर्मचारी, स्थानीय ग्रामीण और सोनी परिवार के लोग पूरी श्रद्धा के साथ मौजूद रहे। शुद्धिकरण समारोह में अंबाजी मंदिर के कर्मचारी, अंबाजी मंदिर के पुजारी, सालों से आ रहे सोनी परिवार और गांव के लोग हमेशा की तरह शुद्धिकरण समारोह में शामिल हुए। श्राद्ध परंपरा सनातन संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सीधे तौर पर आम लोगों की आस्था, कृतज्ञता और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ा है। तभी तो ये केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि जीवित और दिवंगत पीढ़ियों के बीच के अटूट संबंध को दर्शाने का एक माध्यम है। इस साल भी पूर्वजों का पिंडदान शुरू हो गया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है ऑनलाइन माध्यम से पूर्वजों के पिंडदान की सुविधा। आपको बता दें कि प्रयागराज और गया जी में श्रद्धालु अपने अपने पुरखों की शांति और मोक्ष के लिए पिंडदान और तर्पण करवा रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार यहां पर ऑनलाइन पिंडदान भी करवाया जा रहा है।
3: सनातनी परंपरा में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा आभार का विशेष अवसर पितृपक्ष चल रहा है। ये वो पवित्र मौका है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी पहचान केवल हमारे कर्मों से नहीं हमारी जड़ों से भी बनती है। कहते हैं कि जिस घर में पुरखों का सम्मान है उन्हें याद किया जाता है, वहाँ संस्कार पीढ़ियों तक जीवित रहते हैं। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में श्राद्ध के 15 दिनों में लोग पवित्र नदियों घाटों पर दुनिया से चले गए अपने पितरों का पिंडदान और तर्पण कर रहे हैं। संगम तट पर मंत्रोच्चार, हाथों में पिंड, सामने गंगा यमुना का पवित्र संगम और आंखों में अपने पूर्वजों की याद। पितृपक्ष में विधि विधान से किया जा रहा ये श्राद्ध कर्म पितरों के प्रति अपने दायित्व और सम्मान की अभिव्यक्ति ही है। मगर इस बार जो लोग किसी कारणवश प्रयागराज नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए भी यहां के तीर्थ पुरोहितों ने एक नई व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत अब ऐसे श्रद्धालु ऑनलाइन माध्यम से भी अपने पितरों का पिंडदान और तर्पण करा सकते हैं।
4: और यहाँ पर काफी संख्या में लोग देश विदेश से लोग आ रहे हैं यहाँ पिंडदान करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज ये कि एक व्यवस्था तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से लागू हुई है कि जो लोग विदेश में बैठे हैं यहाँ पे आके पिंडदान नहीं कर सकते, ये जो वृद्ध विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, जो आने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है।
3: घर परिवार में अक्सर सुना भी गया है कि श्रद्धा से किया गया स्मरण खुद को विनम्र और कृतज्ञ बनाता है। ऐसे में पितृपक्ष बीते हुए कल को याद करके वर्तमान को बेहतर बनाने और आने वाली पीढ़ियों को संस्कार देने का ही अवसर है और इस अवसर को इन दिनों बिहार के गया में खूब जिया भी जा रहा है।
5: व्यवस्था सही है, बढ़िया व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई वो नहीं है और सभी विधि विधान से सब कार्य चल रहा है। पितृपक्ष में जो भी होता है पिंडदान और जलदान वगैरह वो सब क्रम से चल रहा है।
6: अब ये तो भगवान को पता है, विष्णु जी को पता है कि हम अपने मन पूर्वक अपने पिता श्री वगैरह का पिंडदान कर रहे हैं। अब सब ऊपर वाले की लीला है।
3: दरअसल यहाँ 15 दिनों तक पितृपक्ष मेला होता है जिसमें देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करने आ रहे हैं। सनातनी परंपरा में पूर्वजों की स्मृतियां परिवार की वो धरोहर हैं जिसे समय भी मिटा नहीं सकता, क्योंकि पूर्वज हमारे अतीत की कहानी नहीं है बल्कि हमारे वर्तमान की नींव और भविष्य के संस्कार हैं। तभी तो सदियों पुरानी और संवेदनशील श्राद्ध परंपरा आज भी भारतीय जनमानस की आस्था और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। गया से पंकज कुमार और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: महाराष्ट्र में नवरात्रि के स्वागत में एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हो चुकी है जिसमें भक्ति के साथ सैकड़ों साल का इतिहास भी जुड़ा है। यहां पर मां तुलजा भवानी के पलंगोत्सव की शुरुआत हो चुकी है जिसमें पूरे धूमधाम से श्रद्धालु इसमें हिस्सा लेते हैं। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है मां तुलजा भवानी के पवित्र पलंगोत्सव की शुरुआत। आपको बता दें कि पुणे के जुन्नर से मां तुलजा भवानी का पवित्र पलंग तुलजापुर के लिए रवाना हो चुका है। सदियों पुरानी इस परंपरा में श्रद्धालु मां के पलंग को अपने कंधों पर लेकर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करते हैं। अलग अलग पड़ाव से होते हुए श्रद्धालुओं का ये कारवां विजयादशमी के मौके पर तुलजापुर पहुंचेगा।

0: ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे जिले के जुन्नर नगर की है, जहां माँ तुलजा भवानी के पवित्र पलंगोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे श्रद्धा का कारवा भी बढ़ता जा रहा है। जहां जहां पलंग यात्रा पहुंची, पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। पारंपरिक वाद्यों की गूंज के बीच ग्रामीणों ने दिल खोलकर स्वागत किया। यात्रा के दौरान मां के पवित्र पलंग को श्रद्धालु अपने कंधों पर उठाए पैदल तुलजापुर की ओर निकल चुके हैं।
1: 12वीं सदियों से आई हुई परंपरा है। हमारा घर जो पलंगे परिवार है, ये उसको हमारी तरफ से माता को दिया जाता है। सतियों से आई परंपरा है और इसका बहुत ज़्यादा महत्व 3.5 शक्तिपीठ में जो तुलजा भवानी जो महाराष्ट्र की कुल स्वामिनी है, उसके लिए ये शयासन बनाया जाता है। अलग अलग गांव में उत्सव करते हुए माता का पलंग दशहरे के पूर्व संध्या में वो तुलजापुर में दाखिल होता है, जो शारदीय नवरात्र होता है उसमें।
0: अलग अलग पड़ाव से होते हुए श्रद्धालु का ये कारवा विजयदशमी की पूर्व संध्या पर तुलजापुर पहुँचता है, जहाँ इसका जोरदार तरीके से ग्रामीण स्वागत करते हैं। तुलजापुर में विजयदशमी से पूर्णिमा तक माँ तुलजा भवानी की मुख्य मूर्ति इसी पवित्र पलंग पर विश्राम करती है। परंपरा पुरानी है, लेकिन आस्था आज भी उतनी ही नई और जीवंत है। कंधों पर माँ का पलंग, जुबा पर माँ का नाम और दिल में अटूट विश्वास। जुन्नर के तुलजापुर तक का ये सफर सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की समृद्ध परंपरा और लोक आस्था की ऐसी तस्वीर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही है। रायचंद शिंदे के साथ पुणे, गुड न्यूज टुडे।
2: गुजरात के जूनागढ़ का ऐतिहासिक ऊपरकोट किला इन दिनों चर्चा में है। यहाँ एक भव्य लाइट एंड साउंड शो का आगाज हुआ है, जिसने पर्यटकों का दिल जीत लिया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो 6 गुड न्यूज है वो है लाइट एंड साउंड शो से जगमग ऊपरकोट का किला। जी हाँ, गुजरात के जूनागढ़ का ऐतिहासिक ऊपरकोट का इतिहास बेहद रोमांचक है। ऊपरकोट की दीवारों ने सदियों तक उतार चढ़ाव देखे हैं, राजपूतों से लेकर मुगलों और नवाबों के दौर और फिर जूनागढ़ की आजादी के लिए लड़ी गई जंग तक। इस गौरवशाली इतिहास को पर्यटकों के लिए किले की दीवारों पर लाइट एंड साउंड शो के जरिए उतारा जा रहा है।

0: अंधेरे में जगमगाता ऐतिहासिक ऊपरकोट किला, किले की दीवारों पर पड़ती रंग बिरंगी रोशनी, ये गाथा है जूनागढ़ की आजादी के लिए लड़ी गई उस ऐतिहासिक लड़ाई की, जिसमें संघर्ष था, संकल्प था और अपनी धरती को आजाद कराने का जुनून था।
1: धन्य हो गया, आज मेरा मस्तक दान में मांग कर तुमने मुझे इतिहास में नाम अमर करने का अवसर दे दिया।
0: ये कहानी है उस दौर की जब जूनागढ़ के इतिहास ने करवट ली, जब रियासत के भविष्य को लेकर उठे सवालों के बीच एक अस्थायी सरकार का गठन हुआ और जूनागढ़ को भारत में शामिल कराने के लिए एक निर्णायक संघर्ष शुरू हुआ।
1: मच गई। उस दौरान उनकी रानियों में से एक सोमर दे रानी ने पुत्र को जन्म दे दिया और पुत्र दासी को सौंप कर कहती है,
2: बाल बाल जाओ बोली दरगाह में जाकर मेरे धर्म भाई देवाय गोदर को कहना कि मेरे नौगुण को बड़ा करके जूनागढ़ की गद्दी पर बिठा के धर्म का पालन करे।
0: 1472 से शुरू होकर 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ की आजादी तक का ये सफर अब ऊपरकोट जिले की दीवारों पर रोशनी और आवाज के जरिए जीवंत हो रहा है।
1: फिर बारहवीं बार जूनागढ़ पर चढ़ाई कर 12 बरस तक किले की घेराबंदी की थी, फिर भी ऊपरकोट का किला अड़िग रहा था।
3: जूनागढ़ का इतिहास 2500 साल पुराना है। 2500 साल पुराना इतिहास को 20 मिनट में दिखाना बहुत मुश्किल बात है, फिर भी इस लाइट एंड साउंड शो में ये सभी बातें दिखाई गई है। तो पूरे दुनिया के जो लोग हैं और टूरिस्ट है, विद्यार्थी है, वो जो लोग ऊपरकोट के ये लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए आएंगे, उसको पता चलेगा कि जूनागढ़ का 2500 साल का पुराना इतिहास कैसा रहा था।
0: मोहम्मद घोरी के दौर से लेकर राजपूत और मुगलों के शासन तक, नवाबों के दौर से लेकर जूनागढ़ की आजादी की निर्णायक लड़ाई तक, हर दौर की कहानी को लाइट साउंड विजुअल इफेक्ट्स के जरिए पेश किया जा रहा है। इसे बनाने में करीब 4 साल की कड़ी मेहनत लगी है।
4: अच्छी बात यह है कि करीब 4 साल की मेहनत लगी है इसकी स्टोरी लाइन डेवलप करने में, लेकिन जो सबका अभिप्राय आया है वो ऑलमोस्ट परफेक्ट के आसपास आया है। पूरा जूनागढ़ का इसमें इतिहास कवर हुआ है, रा नवगण के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोका के बारे में, किले पर जब 12 साल तक घेराबंदी रही थी उसमें युद्ध का क्या परिणाम आया था, पूरा सब कुछ कवर किया गया है। और ये इतना ही इन्वॉल्विंग था कि एक एक सेकंड तक सभी लोग दर्शक उसमें इन्वॉल्व रहे थे, तो ये बहुत अच्छा अभिप्राय हमको मिला हुआ है।
0: इस लाइट एंड साउंड शो का मकसद है जूनागढ़ में आने वाले पर्यटकों के लिए रोमांच को बढ़ाना, यानी यहाँ सिर्फ किले की दीवारों को, प्राचीन संरचनाओं को देखकर पर्यटक वापस न लौटे बल्कि इन दीवारों के पीछे छिपी कहानी को भी महसूस करें। लाइट एंड साउंड शो के प्रमोशन कार्यक्रम में करीब 200 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसे देखने के बाद दर्शकों ने इसे सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जूनागढ़ के इतिहास को करीब से महसूस करने वाला अनुभव बताया। कभी जर्जर स्थिति में पहुंच चुका ऊपरकोट किला आज अपने पुराने गौरव को फिर से हासिल कर रहा है। सवाणी हेरिटेज कंपनी की ओर से किले का रिनोवेशन और रेस्टोरेशन किया गया है। 28 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसे पर्यटकों के लिए दोबारा खोला था। अब किले के 3 साल पूरे होने के मौके पर पूरे साल करीब 40 अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भार्गव जोशी के साथ जूनागढ़ कुन्नुशुरे।
5: सितंबर का महीना खत्म होने को है लेकिन पहाड़ों पर मौसम ने सर्दियों वाला रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कश्मीर से हिमाचल तक ऊंची चोटियां बर्फ से ढक गई है। गुलमर्ग के अफरवात पीक से लेकर हिमाचल की धौलाधार और मनाली की चोटियों तक ताजा हिमपात ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है वो है पहाड़ों पर बर्फकाल, मैदानों में ठंड का आगाज। जी हाँ, कहीं बर्फ की सफेद चादर है तो कहीं बारिश और ठंड हवाओं ने तापमान गिरा दिया है। कांगड़ा की धौलाधार पहाड़ियों पर इस महीने दूसरी बार बर्फ की सफेद रंगत देखने को मिली है, जिससे सितंबर में ही नवंबर जैसी ठंड का एहसास हो रहा है।
6: कश्मीर की वादियों में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी के साथ बारिश और गरज चमक भी देखने को मिली है। यानी सितंबर के आखिरी दिनों में ही कश्मीर की पहाड़ियों ने सर्दियों की आहट दे दी है। गुलमर्ग के ऊंचे पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी ने नजारे को बेहद खूबसूरत बना दिया है। अफरवात पीक पर गिरी बर्फ ने पहाड़ों को सफेद चादर ओढ़ा दी है। बर्फ की सफेदी और बादलों की आवाजाही के बीच गुलमर्ग का मौसम सर्द एहसास करा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी बर्फबारी से सजे खूबसूरत पहाड़ों का दीदार हो रहा है। कठुआ के ज्यादा ऊंचाई वाले कैलाश कुंड पहाड़ों और चतरगला बाईपास इलाके में ताजा बर्फबारी हुई है। ऊंचे इलाकों में मौसम बदलने के साथ ही करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढका नजारा दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सितंबर के आखिरी दिनों में यहां भी मौसम सर्द हो गया। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से कांगड़ा की धौलाधार पर्वतमाला ने एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सितंबर में दूसरी बार हुई बर्फबारी से धौलाधार की ऊंची चोटियां चांदी के मुकुट की तरह चमक उठी हैं। बादलों के बीच बर्फ से ढकी चोटियों का ये नजारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है।
7: बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एक दो स्थानों में हैवी रेनफॉल दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश कांगड़ा स्टेशन में रिकॉर्ड की गई थी, लगभग 70 mm के आसपास। उसके उपरांत जो सेकेंड हाईएस्ट है धर्मशाला में 60 mm के आसपास रिकॉर्ड की गई थी। वहीं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं शिमला सिरमौर मंडी और किन्नौर, यहाँ पे मॉडरेट कैटेगरी की बारिश रिपोर्ट की गई। और जो हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं स्पेशली डिस्ट्रिक्ट किन्नौर लाहौल स्पीति और कुल्लू में, और यहाँ पे हल्की बर्फबारी रिपोर्ट की गई।
6: सितंबर में बर्फ और बारिश की दस्तक बता रही है कि हिमाचल की पहाड़ियों पर सर्द मौसम ने एक बार फिर से कुछ जल्दी ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ताजा हिमपात से हिमाचल में मनाली के पहाड़ों की खूबसूरती भी निखर आई है। ऊंची पहाड़ी चोटियों पर हुई ताजा बर्फबारी के बाद ये खूबसूरत नजारा दिखा। बर्फ की सफेद चादर में लिपटी पहाड़ियाँ और उन पर पड़ती सुबह की सुनहरी धूप, मानो आसमान से उतरकर सफेद रंग ने पूरी वादियों को अपने आगोश में ले लिया हो। ताजा बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई है और मनाली की फिजाओं में ठंडक पड़ गई है। सितंबर के आखिर में मनाली का ये नजारा सर्दियों की आहट का एहसास करा रहा है। बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और धूप में चमकती चोटियां, मनाली की खूबसूरती इस वक्त देखते ही बन रही है। धर्मशाला से पूजा शर्मा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़। और
9: दिल्ली की सड़कों पर सीईसी के विरोध में जुट गए लोग। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाखों लोगों का हल्ला बोल। यूपी में महिला टीचर पर फेंका गया अंडा। गुरु शिष्य का दिल जीतने वाला रिश्ता। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए नवजोत रंधावा के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हमें अच्छाई जगाता है। वह पत्रकारिता करते हैं, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: क्या आपके विदेश यात्रा में बाधाएं आ रही हैं? क्या विदेश में बसने में समस्याओं का सामना कर रहे हैं? कौन से ग्रहों का विदेश से है संबंध और कैसे उठाएं इनका लाभ, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड और ब्रॉन्ज। महिला रिले रेस 4x400 रेस में जीता सोना। मेंस 4x100 मीटर रिले में मिला ब्रॉन्ज। भारत के खाते में अब तक 6 गोल्ड, कुल मिलाकर 53 मेडल। भारत की रक्षा शक्ति में होगा इजाफा, साल के अंत तक आएंगे तेजस एम के 1A फाइटर जेट के 12 और इंजन। एचएएल के पास 27 एयरफ्रेम तैयार। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास नेशनल हाईवे 911 मिलिट्री रनवे में बदला। भारतीय सेना की एविएशन यूनिट्स ने हाईवे पर की लैंडिंग की प्रैक्टिस। तकनीकी खराबी के चलते बिजनौर में खेत में उतरा हेलीकॉप्टर, गांव में मचा हड़कंप, देखने उमड़े लोग, आसमान में उड़ता रहा दूसरा हेलीकॉप्टर। यूपी के भदोही में होगा इंडिया कार्पेट एक्सपो, 65 देशों के खरीदार होंगे शामिल, ब्रिक्स देशों के लिए विशेष इंतजाम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़।
3: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, कभी कभी तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगे। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जांचे पर कहने सच मान लेते हैं, शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे फैक्ट चेक में। आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसको शेयर करके ये दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में ये प्रदर्शन हुआ और इसमें लोगों की भारी भीड़ होगी। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, बताएंगे आपको। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि वीडियो उत्तर प्रदेश का है, जहां पर एक महिला दलित टीचर पर अंडे फेंके गए। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, आगे बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़।
3: मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आम लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। बीते कुछ दिनों से ज्ञानेश कुमार के नाम पर काफी हंगामा हो रहा है। उन पर स्पेशल इंसेंसिव रिविजन यानी कि SIR में पक्षपात करने के आरोप लगाए जा रहे हैं और विपक्ष की पार्टियां इस पर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि आम लोग भी जब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में जुटने लगे, जंतर मंतर पर लाखों लोगों भीड़ पहुंच चुकी है और सबकी यही मांग है कि ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे। अब क्योंकि यह वीडियो और खबर तेजी से वायरल हो रही थी, इसीलिए हमने इसका सच जानने की कोशिश की।
4: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर हैं। उनके खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शन एक अखबार के उस रिपोर्ट के बाद हो रहा है, जिसमें बताया गया था कि दो चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में SIR सहित चुनाव आयोग के दूसरे फैसले को लेकर कम से कम 14 बार लिखित आपत्ति दर्ज की थी। हालांकि EC ने अपनी सफाई में ये साफ साफ कहा कि SIR से जुड़े सभी बड़े फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे। इन सबके बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें किसी जगह पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वीडियो में EVM हटाओ देश बचाओ का नारा भी सुनाई दे रहा है। वीडियो को इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि ये दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शन का है। एक्स पर ये वीडियो खूब ट्रेंड कर रहा है। इसमें लिखा हुआ है कि भारी बारिश के बावजूद दिल्ली में BJP सरकार की तानाशाही के खिलाफ EVM हटाओ और मुख्य चुनाव आयुक्त हटाओ का नारा बुलंद करते युवा जन भी एक बार फिर देश के युवा देश बचाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतर चुके हैं। EVM हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, BJP हटाओ, देश बचाओ, BJP हटाओ, संविधान बचाओ। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
3: बता दें कि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें दावा यह किया जा रहा था कि तीनों चुनाव आयुक्तों के बीच SIR, वोटर डेटा और फॉर्म 6 समेत कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद था, और इसके बाद विपक्षी पार्टियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियत पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि SIR से जुड़े सभी बड़े फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे और दो चुनाव आयुक्तों की कैबिनेट सचिव को भेजी गई चिट्ठियां आयोग की किसी नीति या फिर SIR के फैसले से जुड़ी नहीं थी। इसके बावजूद कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के सवाल खत्म नहीं हुए और देश भर में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इन सबके बीच अब ये वीडियो सामने आया है जिसमें हजारों की भीड़ एक जगह पर इकट्ठा है। EVM हटाओ देश बचाओ का नारा बुलंद किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर यह भीड़ जमा हुई और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में प्रदर्शन हुआ और उनका इस्तीफा मांगा गया। ये वीडियो हमारे सामने भी आया, हमने भी इसकी तहकीकात शुरू की। वायरल वीडियो को देखने पर

0: शक ये भी हुआ कि ये वीडियो हाल फिलहाल का नहीं है बल्कि सर्दी के मौसम का हो सकता है। ये सच है कि 25 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आयसा ने प्रदर्शन किया था, लेकिन इस प्रदर्शन में ऐसी भीड़ नहीं उमड़ी थी। प्रदर्शन शुरू होते ही कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस ने सबको वहां से हटा दिया था, क्योंकि उन लोगों ने प्रदर्शन के लिए परमिशन ही नहीं ली थी। वायरल हो रहे वीडियो में एक और गौर करने वाली बात नजर आई। वीडियो में लोग ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ का नारा लगा रहे हैं। ऐसे में हमारा पहला सवाल ये कि अगर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हुआ है तो फिर इसमें उनके खिलाफ नारा क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? दूसरा सवाल ये कि अगर ये वीडियो अभी का है तो फिर लोग गर्म कपड़ों में क्यों नजर आ रहे हैं? कई लोगों के हाथों में नीला झंडा भी नजर आया और इस तरह के झंडे का इस्तेमाल बहुजन समाज पार्टी से जुड़े लोग करते हैं। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल ये कि कहीं किसी और प्रदर्शन के पुराने वीडियो को जानबूझकर ज्ञानेश कुमार से जोड़कर वायरल तो नहीं किया जा रहा? सच और झूठ इस रिपोर्ट में जानिए।
1: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये वीडियो एक फेसबुक अकाउंट से 31 जनवरी 2024 को अपलोड किया हुआ मिला। वीडियो के साथ मौजूद कैप्शन में इसे ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन का बताया गया था। इस दौरान हमें ये वीडियो एक और फेसबुक अकाउंट से भी 31 जनवरी 2024 को ही अपलोड किया गया मिला, जिसमें इसे दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन का बताया गया था। जांच के दौरान हमें 31 जनवरी 2024 को एक वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में 31 जनवरी को जंतर मंतर पर भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी समेत 22 संगठनों ने प्रदर्शन किया था और इसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मोशराम ने संबोधित भी किया था। इसके बाद हमने वामन मोशराम के फेसबुक अकाउंट को भी खंगाला तो हमें वहां 31 जनवरी 2024 को जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़ी कई तस्वीरें मिली, जो वायरल वीडियो में दिख रहे दृश्यों से मेल खाती हैं। जांच में हमें 31 जनवरी 2024 को ही एक और फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया गया वीडियो भी मिला, जिसमें एनसीपी नेता शरद पवार उस कार्यक्रम को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में भी मौजूद दृश्य वायरल वीडियो से मेल खाते हैं। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहा वीडियो हाल फिलहाल का नहीं है। ये वीडियो 31 जनवरी 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर ईवीएम के खिलाफ हुए प्रदर्शन का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: बात एक और वायरल वीडियो की करते हैं। दावा ये किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, योगी राज में दलित सुरक्षित नहीं है। ये सारी बातें एक वीडियो की वजह से कही जा रही हैं और इस वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला पर अंडे फेंके गए। बताया गया कि महिला दलित शिक्षिका है और उसका सरेआम अपमान किया गया।
2: महिला पर अंडे फेंकते और इसके बाद जय श्री राम का नारा लगाते कुछ लोगों का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसे शेयर करने वाले कुछ लोगों का दावा है कि घटना उत्तर प्रदेश की है, जहां दलित समुदाय से आने वाली एक शिक्षिका पर अंडे फेंके गए। एक फेसबुक यूजर ने वायरल वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि उत्तर प्रदेश दलित शिक्षिका के साथ दुर्व्यवहार का मामला, दलित शिक्षिका पर जय श्री राम के नारे लगाकर अंडे फेंके, न्याय की मांग तेज, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: अब इस वीडियो में दो बातें गौर करने वाली हैं। एक तो महिला पर अंडे फेंके गए और दूसरा फेंकते समय जय श्री राम का नारा लगाया गया। अब इस वीडियो की टाइमिंग समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर यहां चुनावी माहौल बनने लगा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबानी जंग तेज हो गई है और इन सब के बीच इस वीडियो के आने से सोशल मीडिया पर सरकार को घेरने वालों का नया हथियार मिल गया। योगी सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हमेशा सख्ती दिखाने की कोशिश करती रही है, इसीलिए उनके राज में ऐसा होना सरकार की छवि के लिए ठीक नहीं है। इस वीडियो के जरिए इसे जातीय रंग देने की भी कोशिश की गई है। दलित टीचर पर अंडा फेंका गया और फेंकने वाला जय श्री राम का नारा लगा रहा है। नैरेटिव और चुनावी माहौल के मकसद समझ आ रहे हैं, इसीलिए हमारी फैक्ट चेक टीम ने इस वीडियो की जांच शुरू कर दी। ये वीडियो एक छोटे से ऑफिस का है,

0: मोबाइल फोन पर महिला किसी से बात कर रही है, कुछ सेकंड बाद उन पर अंडे से हमला होता है, लेकिन महिला डरती नहीं है, फोन पर बातचीत जारी रखती है। अमूमन अचानक हमला होने पर कोई भी चौंक सकता है या फिर सहम जाता है, पर यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि महिला को पहले से ही पता था कि उस पर हमला होगा। इसके बाद हमारा ध्यान महिला के कपड़ों पर गया। महिला ने जिस तरीके से साड़ी पहनी है वो बंगाली महिलाओं का तरीका, यानी बंगाली महिलाएं इस तरीके से साड़ी पहनती हैं, और महिला के हाथ में शाखा और पोला भी नजर आ रहा है। शाखा पोला भी बंगाली महिलाएं ही पहनती हैं। ऐसे में हमें ये शक हुआ कि जिस महिला पर हमला हुआ है वो कहीं बंगाली तो नहीं है। इसके अलावा एक और ध्यान देने वाली बात थी, इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। ऐसे वक्त में सिर्फ सोशल मीडिया पर ही इस वीडियो का आना, सोशल मीडिया पर ही इसका वायरल होना थोड़ा अजीब सा लगता है। ऐसे में हमने ये जानने की कोशिश की कि अगर उत्तर प्रदेश में एक दलित टीचर पर अंडा फेंका गया तो फिर ये मुद्दा क्यों नहीं बना। हमारा पहला सवाल ये कि विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से क्यों नहीं उठाया। महिला के पहनावे की वजह से हमारे सामने दूसरा सवाल ये था कि क्या ये महिला सचमुच में उत्तर प्रदेश की है। खबरों को खंगालने पर हमें यह भी पता चला कि अंडा फेंकने की घटनाएं पश्चिम बंगाल में काफी हुई हैं। बीजेपी की सरकार बनने के बाद वहां टीएमसी से जुड़े लोगों पर जगह जगह अंडे फेंके गए। ऐसे में हमारे सामने तीसरा सवाल यही था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पश्चिम बंगाल से जुड़े वीडियो को उत्तर प्रदेश का बताकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। सच इस रिपोर्ट में जानिए।
1: जरिए जो दावा किया जा रहा था उसकी सच्चाई बाहर निकालने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये एक न्यूज प्लेटफॉर्म पर मिली। खबर के मुताबिक ये वीडियो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित मटिगारा का है, जहाँ एक नंबर पंचायत की डिप्टी प्रधान रेखा मलिक पर अंडे फेंके गए थे। इस जानकारी की मदद से सर्च करने पर हमें कई फेसबुक पेजों पर ये वीडियो मिला। इन पोस्ट में कहीं भी देखा मलिक को टीचर नहीं बताया गया है। सर्च के दौरान ही हमें दावे से जुड़ी एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर मिली। इस पोस्ट को 20 सितंबर 2026 को शेयर किया गया था। यहाँ मौजूद जानकारी के मुताबिक महिला का नाम रेखा मलिक है और वो दार्जिलिंग जिले की माटीगाड़ा वन ग्राम पंचायत की डिप्टी प्रधान है। उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जबरदस्ती उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे और उन्होंने पंचायत ऑफिस में घुसकर लोगों को बंधक बना लिया था। इसके बाद रेखा मलिक के साथ बदसलूकी की गई और उनके चेहरे पर अंडा फेंका गया। रेखा मलिक ने 19 सितंबर को इसकी लिखित शिकायत भी की थी। उन्होंने बताया था कि वो दलित समुदाय से आती हैं, इसलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया। पश्चिम बंगाल युवा कांग्रेस के फेसबुक पेज पर 20 सितंबर के एक पोस्ट के जरिए आरोप लगाया गया कि रेखा मलिक की शिकायत के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। यूथ कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने रेखा से मुलाकात भी की थी। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने रेखा मलिक से बात की। इस दौरान उन्होंने बताया कि ये बात सच है कि वो दलित समुदाय से आती है और उनके खिलाफ जातिवादी टिप्पणी भी की गई थी, लेकिन उनका साफ कहना था कि वो ना तो कभी टीचर रही हैं और ना ही इस घटना का उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना है। 4 मई को जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद से बीजेपी की तरफ से पंचायत प्रधान और उनके ऊपर लगातार इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की टिकट से जीतने वाली रेखा ने इस्तीफा नहीं दिया। 15 सितंबर को जब पंचायत में बोर्ड मीटिंग चल रही थी तब बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता वहां आ गए और दोबारा इस्तीफे की मांग की और सहमत न होने पर उनके ऊपर अंडे फेंके गए। रेखा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भी एक वीडियो के जरिए वायरल हो रहे वीडियो पर सफाई दी।
2: आप सभी लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक महिला के ऊपर अंडे फेंके गए हैं और बहुत से वीडियो में मैंने देखा कि उस वीडियो में उस महिला का परिचय यूपी की एक हेड टीचर का दिया गया है। मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहती हूँ कि जो उस वीडियो में जो महिला है वो मैं खुद स्वयं रेखा मलिक हूँ और ये मैं पश्चिम बंगाल में की रहने वाली हूँ। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला के सिलीगुड़ी शहर के माटीगरा ब्लॉक के माटीगरा अंचल की डेपुटी प्रधान हूँ। रिजाइन देने से मैंने मना किया तो उन लोगों ने मुझे बहुत अपशब्द कहे। इसके बाद उन लोगों ने मेरे पे अंडे फेंके।
1: इस तरह हमारी जांच में वायरल दावा गलत साबित हुआ। असल में ये घटना उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की है। वायरल वीडियो में दिख रही महिला का नाम रेखा मलिक है। वो टीचर नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के माटीगाड़ा ब्लॉक के माटीगाड़ा अंचल की डिप्टी प्रधान है। रितेश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: और फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
4: आदिशक्ति के आगमन का संयोग, दिल्ली में बंगाल का संस्कृति मेला, पूर्वजों का पिंडदान ऑनलाइन, दिल्ली में देखिए हौसले की नहर, देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला।
0: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
10: एक छोटी बच्ची अपने नन्हे से पल के ठेले पर बैठी हुई है, पूरे दिन का हिसाब लगा रही थी और हिसाब कुछ खास नहीं था। सुबह से शाम हो गई मगर एक भी ग्राहक नहीं आया। उसकी आंखों में जो मायूसी थी उसे छुपाना मुश्किल हो रहा था। बड़ी मासूमियत से उसने अपनी परेशानी शब्दों में बयां कर दी, आज तो एक भी फल नहीं बिका। तभी अचानक वहाँ से गुजर रहे एक अजनबी की नजर उस पर पड़ी। उसने बिना कुछ सोचे समझे रुक कर एक अनानास खरीद लिया, वो भी सिर्फ 50 रुपए का। लेकिन उस छोटी सी बात ने जैसे पूरा माहौल ही बदल दिया। बच्चे के चेहरे पर जो उदासी थी वो पल भर में गायब हो गई और उसकी जगह एक ऐसी मुस्कान आ गई जो शायद उस दिन की सबसे खूबसूरत चीज थी। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को रिश्तों की अहमियत भी समझ आती है। टीचर और छात्रों का रिश्ता सिर्फ किताबों और होमवर्क तक सीमित नहीं रहता, कई बार शिक्षक बच्चों के लिए परिवार के किसी सदस्य जैसे बन जाते हैं। खासकर महिला टीचरों के साथ छोटे बच्चों का लगाव कई बार बेहद प्यारा नजर आता है। ऐसा ही एक प्यारा नजारा एक सरकारी स्कूल में देखने को मिला, जहां एक बच्चा अपनी मैडम के लिए घर में उगाई हुई लौकी लेकर स्कूल पहुंचा और उन्हें प्यार से तोहफे में दी। मैडम ने भी बच्चे के इस छोटे से तोहफे को खुशी के साथ स्वीकार किया। इस छोटे से तोहफे के पीछे बच्चे का अपनापन और अपने टीचर के लिए सम्मान साफ नजर आता है। चौराहे पर उत्सव का माहौल है जहां भारी पुलिस बल तैनात है। इसी बीच सफेद कुर्ता पैजामा और नारंगी पटका पहने एक छोटा बच्चा हाथ में डंडा लेकर आगे बढ़ता है। बच्चा बिल्कुल भी हिचकिचाए बिना सीधे ऑन ड्यूटी खड़े एक पुलिसकर्मी के सामने जाकर रुकता है। इसके बाद वो लाठी घुमाने की ऐसी कलाबाजी शुरू करता है कि वहां मौजूद हर व्यक्ति हिटक कर देखने लगता है। हवा में लाठी घुमाने और संभालने का बच्चों का संतुलन और गति देखकर पुलिस अधिकारी भी मुस्कुराने लगते हैं और उसकी इस प्रतिभा को सराहते नजर आते हैं। छोटी है लेकिन महादेव के प्रति आस्था और श्रद्धा बेहद गहरी है। इस नन्हे भक्त की भक्ति देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे। बहती गंगा के किनारे भगवान शिव की विशाल प्रतिमा है और ये बच्चा पूरी निष्ठा के साथ महादेव की प्रतिमा को साफ करता नजर आ रहा है। छोटे छोटे हाथों से भोलेनाथ की सेवा करते इस बच्चे की तस्वीर लोगों का दिल जीत रही है। नन्हे भक्त की ये श्रद्धा सोशल मीडिया पर भी खूब पसंद की जा रही है।

खुशियाँ ढूंढने निकले तो छोटी छोटी चीजों में भी मिल जाती है, और खुश रहने के लिए किसी बड़ी वजह की जरूरत नहीं होती। इन महिलाओं को ही देख लीजिए, घर के कामकाज से थोड़ा वक्त निकाला और शुरू हो गया मस्ती भरा गेम। आटे के ऊपर रखा है आलू और हाथ पीछे करके उसे मुंह से उठाना है। एक एक करके महिलाएं कोशिश करती हैं, लेकिन आलू उठाने से पहले ही आटे में सिर गिरता है, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की हंसी नहीं रुकती। ये मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

शेष है वही तो विशेष है। और जब यारों की महफिल सज जाए तो फिर डांस तो बनता है। उम्र भले ही बड़ी हो गई हो लेकिन दिल आज भी बच्चा है। कुछ ऐसा ही नजारा इस वीडियो में देखने को मिल रहा है, जहां दोस्तों की टोली एक साथ जमकर डांस करती नजर आ रही है। हर कोई अपने ही अंदाज में ठिरक रहा है। दोस्तों की ये मस्ती देखकर आसपास मौजूद लोगों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे।

0: ये ऑटो रिक्शा बड़ी बड़ी लग्जरी कारों को भी मात दे रहा है। ऑटो ड्राइवर ने ग्राहकों की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा है। ऑटो के अंदर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। इसके अलावा यात्रियों के मुंह का स्वाद मीठा करने के लिए खास चॉकलेट ट्रे बनाई गई है। साथ ही पीने का साफ पानी, टिश्यू बॉक्स, सैनिटाइजर और कचरे के लिए डस्टबिन की पूरी व्यवस्था है। वही छत पर सुंदर झूमर, रंग बिरंगी लाइट, सुंदर पर्दे, हरियाली के लिए एक प्यारा सा पौधा भी ऑटो के अंदर लगाया गया है। अगर सफर के दौरान कोई बच्चा रोने लगे या बोर हो जाए तो ड्राइवर के पास एक मजेदार बबल गन भी मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑटो में बुजुर्गों और भारतीय सैनिकों के लिए विशेष निःशुल्क सेवा का बोर्ड और हरे कृष्णा भगवान की सुंदर तस्वीरें भी लगी है। प्यार की भाषा इंसान ही नहीं जानवर भी बखूबी समझते हैं। तुर्की का एक वीडियो इसकी खूबसूरत मिसाल है। जूते चमका कर गुजारा करने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास हर सुबह एक बिल्ली पहुंचती है और फिर बड़े आराम से ब्रश करवाने लगती है। बुजुर्ग भी बड़े प्यार से बिल्ली के साथ वक्त बिताते हैं। दोनों के बीच का ये अनोखा रिश्ता देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बिल्ली का रोज ब्रश करवाने पहुंचना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। बिना शर्त प्यार और भरोसे का रिश्ता कैसा होता है, ये नज़ारा उसकी खूबसूरत मिसाल है। जहाँ हाथी और इंसान के बीच का अपनापन साफ नजर आ रहा है। हाथी अपनी सूंड से इंसान को प्यार करता दिख रहा है तो इंसान भी उसे बड़े प्यार से पकड़कर दुलार रहा है। दोनों के बीच की ये बॉन्डिंग देखकर आसपास मौजूद लोग भी मुस्कुराने लगे। सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और हाथी इंसान की इस अनोखी दोस्ती की तारीफ कर रहे हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
3: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। आदिशक्ति आने वाली है, उससे पहले दिल्ली में लगा है बंगाल की संस्कृति का मेला। पितृपक्ष में पिंडदान का चल रहा है सिलसिला, ऑनलाइन भी उतरेगा ऋण। और दिल्ली में एक नहर के कायाकल्प की कोशिश, हौसले की इस नहर के बारे में आगे आपको डिटेल्स देंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
6: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड और ब्रॉन्ज। महिला रिले रेस 4x400 रेस में जीता सोना। मेंस 4x100 मीटर रिले में ब्रॉन्ज। भारत के खाते में अब तक 6 गोल्ड, कुल मिलाकर 53 मेडल। भारत की रक्षा शक्ति में होगा इजाफा। साल के अंत तक आएंगे तेजस MQ-1A फाइटर जेट के 12 और इंजन। HAL के पास 27 एयरफ्रेम तैयार। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास नेशनल हाईवे 911 मिलिट्री रनवे में तब्दील। भारतीय सेना की एविएशन यूनिट्स ने हाईवे पर की लैंडिंग की प्रैक्टिस। तकनीकी खराबी के चलते बिजनौर में खेत में उतरा हेलीकॉप्टर। गांव में मचा हड़कंप, देखने के लिए उमड़े लोग। आसमान में उड़ता रहा दूसरा हेलीकॉप्टर। यूपी के भदोही में होगा इंडिया कार्पेट एक्सपो। 65 देशों के खरीदार शामिल होंगे। ब्रिक्स देशों के लिए विशेष इंतजाम।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
3: अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात आदिशक्ति की, उनके आगमन की, जिनके दर्शन कर आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब से बस कुछ ही दिन बाद वो घड़ी आने वाली है जब माँ दुर्गा पधारेंगी और हर तरफ नवरात्र के दिव्य रंग देखने को मिलेंगे। हालांकि उससे पहले इस पावन त्योहार से ही जुड़े रंग दिल्ली में अभी से ही दिखने लग रहे हैं, लेकिन मेले के रूप में। चित्तरंजन पार्क में बंगाली समाज का ये मेला दुर्गा पूजा से पहले लगता है।

0: आदि शक्ति का आगमन होने वाला है। जल्द ही अब मां दुर्गा पधारने वाली हैं। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होगा, जिसको लेकर देश भर में तैयारियां चल रही हैं। मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमाओं को साकार करने में जुटे हैं। मां के आह्वान के लिए दिव्य और भव्य पंडाल भी अस्तित्व में आने लगे हैं। दुर्गा पूजा, इस त्योहार का जिक्र आते ही पश्चिम बंगाल की तस्वीर सामने उभरती है। वहां मां के नौ स्वरूपों की आराधना सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि परंपरा, संस्कृति और भावनाओं का हिस्सा है। दुर्गा पूजा धार्मिक आस्था का ही पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मेलजोल का भी अवसर है। यही वजह है कि दिल्ली में दुर्गा पूजा से पहले जगह जगह बंगाल का रंग देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली के चितरंजन पार्क इलाके की हैं, जहां हथकरघा और हस्तशिल्प मेला सजा हुआ है।
1: देखिए, जब माँ आती हैं तो माँ के स्वागत के लिए बहुत सारी तैयारियां होती है, खाना पीना, सजना सवरना, और उसके लिए हर चीज हर कोई चाहता है कि नई हो। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है फ्रॉम कोलकाता दुर्गा पूजा टू दिल्ली दुर्गा पूजा, कि सही मायने में ना एक दिन में 3 से 4 साड़ियां चेंज की जाती हैं। तो इसीलिए मैं आपको इस वक्त ले आई हूँ 41st प्री दुर्गा पूजा एग्जीबिशन, जो कि बंगिया समाज की तरफ से यहाँ पर लगाई जाती है, और इस साल 41वां साल है। और प्रमाणशुदा हमारे साथ मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी हैं बंगिया समाज के। दादा, बहुत स्वागत है आपका।
2: यस, थैंक यू।
1: मतलब पूरी तैयारी आप लोगों ने कर दी है कि इस बार फुल ऑन शॉपिंग हर कोई यहीं से करे।
2: बिल्कुल, इधर आप देखिए सामने सेनको गोल्ड्स है, देन देर आर डिफरेंट ऑर्नामेंटल स्टॉल्स, देन देर आर हैंडीक्राफ्ट्स एंड सो हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स दोनों ही इधर मिल रहे हैं।
1: और ये कितने दिन तक चलेगा?
2: ये चलेगा 12 अक्टूबर तक।
1: 12 अक्टूबर तक मेला चलेगा,
2: 1 days of मेला।
1: 21 दिन का मेला, 41वां साल है ये।
0: इस प्री पूजा हैंडलूम एक्सपो में सबसे पहले साड़ियों के स्टॉल सबका ध्यान खींच रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से लाई गई तांत, ढकाई, जामदानी और कॉटन सिल्क की एक से बढ़कर एक साड़ियां महिलाओं का ध्यान खींचने में कामयाब हो रही हैं।
1: तो देखिए, जब आप एंटर होंगे तो शुरुआत में आपको बहुत सारी साड़ी शॉप्स नजर आ जाएंगी, और सबसे खास बात इस मेले की होती है जो आपको कहीं नहीं मिलती हैं चीजें, वो होती हैं यहाँ के ब्लाउजेस, जो नॉर्मली दुर्गा पूजा ब्लाउज होते हैं जिसके पीछे बांकी मूर्ति या फिर पूरा दरबार एक तरीके से बना होता है। तो ये ब्लाउजेस आपको सिर्फ यहाँ मिलेंगे, फ्रॉम कॉटन टू ढाकाई साड़ी टू सिल्क, टसर, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं।
3: भाई, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स भी हैं जहाँ आपको रियल ढाकाई साड़ी मिल जाएगी, एंड इफ़ यू आर रियली फॉन्ड ऑफ रियल ढाकाई साड़ी, मैं सच बता रही हूँ कि बहुत खूबसूरत साड़ी है, बहुत ज़्यादा, और इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। वैसे फेस्टिवल दुर्गा पूजा के लिए दिस इज़ द बेस्ट कलर, लेकिन वही अपनी चॉइस होती है। दादा, ये कितने की साड़ी पड़ेगी?
4: ये 3500 की।
1: 3500, नॉट टू मच। और इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, आपको ग्रीन मिल जाएगा, आपको ग्रीन के साथ पिंक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, बहुत सुंदर ग्रीन पिंक कॉम्बिनेशन है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है। इफ यू वांट टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ साड़ी, बहुत सुंदर है ये, आपको सही मायने में बिल्कुल रेट के हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक ढाकाई साड़ी के लिए दिस इज द परफेक्ट, आप कभी भी पहन सकते हैं किसी भी ओकेजन पे।
5: दिस रेड वन इज रियली ऑसम।
0: अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ सिर्फ महिलाओं के श्रृंगार से जुड़े ही उत्पाद मिल रहे हैं तो आपका अंदाजा सही नहीं है। यहाँ 500 स्टॉल्स ऐसे भी हैं जहाँ पुरुष अपने लिए परिधान देख सकते हैं।
1: 500 स्टॉल्स हैं यहाँ पे। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ लेडीज के स्टॉल्स हैं, यकीन मानिए जेंट्स की शॉपिंग यहाँ बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं फेस्टिव कुर्ताज में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं बंगाली कुर्ताज में, बहुत ही खूबसूरत, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं आपको एक ही छत के नीचे हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी। दादा, ये बताइए किस रेंज से स्टार्ट है कुर्ता?
6: कुर्ता हमारा 1500 से स्टार्ट है, 30% डिस्काउंट दे रहे हैं।
1: ये कुर्ता मैं चाहूंगी कि आप दिखाइए जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, जिसके लिए आपको स्पेशली यहाँ आना चाहिए अपनी फैमिली के साथ।
6: स्पेशल बाबू मोशाय,
1: ये बाबू मोशाय कुर्ता है इसीलिए
6: बंगाली।
1: अच्छा, ये बाबू मोशाय कुर्ता कितने का है?
6: ये है आपका 1600 का।
1: 1600 का, इस पर डिस्काउंट मिलेगा?
6: डिस्काउंट वही
0: 30%। त्योहारों और ज्वेलरी यानी आभूषण का रिश्ता सदियों पुराना और गहरा है। त्योहारों में ज्वेलरी सिर्फ सजने संवरने का साधन नहीं है बल्कि इसके धार्मिक सांस्कृतिक और आर्थिक मायने भी हैं। ऐसे में ज्वेलरी स्टॉल्स भी महिलाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं।
1: तो अगर आपका मन है इस बार साड़ी के साथ ताजमहल कैरी करने का तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीस है जो यहाँ पे आप कैरी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ भाई देखिए क्योंकि ये बंगिया समाज का पूरा मेला है तो यहाँ पर आपको कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल भी नजर आ जाएगा और इसी के साथ बहुत सारी खूबसूरत ज्वेलरीज यहाँ पर हैं। आपको यहाँ पर माँ की मूर्ति भी नजर आ जाएगी। ये कौन सा मेटल है?
7: ये ब्रास का ज्वेलरी है, 65% कॉपर और 35% जिंक का एलॉय का जो होता है वो कास्टेड है यहाँ पे।
1: अच्छा ये बताइए कि कितने से शुरुआत हो रही है अगर हम नेक पीसेस की?
7: स्टार्टिंग इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1500 गोज अप टिल 5000।
1: और अगर हम इयररिंग्स की बात करें क्योंकि इयररिंग्स भी बहुत सुंदर है
7: 400 से स्टार्टिंग है 1080 तक।
1: आई गेस दिस इज चोकर।
7: ये चोकर है, ये
1: बंद गले के साथ, बंद गले के ब्लाउज के साथ यू कैन कैरी दिस आल्सो। इसके अलावा कुछ कोलकाता विंडोज भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, मतलब पूरा बंगाल लेके आई आप इस बार यहाँ।
7: हाँ हाँ एकदम बिल्कुल।
1: और इसी के साथ अगर आपको ट्रेडिशनल नहीं पहनना है, थोड़ा वेस्टर्नाइज करना है तो यहाँ पर आपको इयररिंग्स की बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएंगी। ओ माय गॉड दिस इज सो कूल, सो कूल।
0: हाथकरघा और हस्तशिल्प मेले में क्रॉकरी के स्टॉल्स भी हैं।
1: लाल साड़ी मस्त है अगर आप दुर्गा पूजा में कहीं भी किसी भी जगह जा रहे हैं, पंडाल हॉपिंग कर रहे हैं, और तो लाल साड़ी मैंने आपको ढाकाई लाल साड़ी दिखाई थी और उसके ठीक बगल वाली शॉप पे अगर आप आएंगे तो आपको ये बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी मिल जाएगी। ये ट्रेडिशनल बंगाली बैंगल्स होती है, इसको कहते क्या है मुझे पता नहीं मैम, आप बताइए।
8: ये टिपिकल बंगाली गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है, ये 2 ग्राम गोल्ड प्लेटेड है जिसके अंदर माइक्रो मिलीग्राम के हिसाब से गोल्ड चढ़ी हुई है, इसी कारण हम इसकी रीसेल वैल्यू भी देते हैं और कलर गारंटी 2 साल की है इसकी। हम 2 साल बोलते हैं लेकिन ये मेरा पुराना कस्टमर बैठे हुए है ये सब बोल पाएंगे, 10 साल से ज्यादा इनके सामान हो गया लेकिन आज तक खराब नहीं हुआ।
1: ठीक है, ये कितने की ये वाली बैंगल्स कितने?
8: ये 450 का है, फाइबर की है, ओरिजिनल शंखा नहीं है ये बंगाली लोग हम शगुन के तौर से पहनते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल वाला भी मेरे पास है जो शंख से बनता है ओरिजिनल, वो 1500 लेके और ज़्यादा तक है, लेकिन अभी तो पूजा के टाइम तो ज्वेलरी हम पसंद करते हैं पहनना।
1: सब नई ज्वेलरी होती है। अब आपने कहा कि आपके बहुत पुराने कस्टमर्स हैं, मैम आपसे आप कितने सालों से आ रहे हैं?
9: हम ये तो याद तो नहीं है, बहुत पुराना है, मतलब हाँ 10 बरस।
1: यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे खूबसूरत क्रॉकरी स्टैंड्स भी मिल जाएंगे, मतलब सिर्फ साड़ीज ज्वेलरीज ही आपको यहाँ नहीं मिलेंगी, कपड़े ही नहीं मिलेंगे बल्कि यहाँ आपको हर चीज मिलेगी।
0: सीआर पार्क में बड़ी संख्या में बंगिया समाज के लोग रहते हैं और यहाँ हर साल दुर्गा पूजा से पहले ये मेला लगता है।
10: एक्चुअली आई एम हियर फ्रॉम चाइल्डहुड, हाँ सो मैंने तो ये बनते स्टार्ट होते हुए भी देखा है। नंबर ऑफ स्टॉल्स तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हैं, पहले इतने नहीं होते थे, एम्पोरियम्स ज़्यादा होते थे, प्राइवेट लोग कम होते थे, लेकिन अब जैसे बहुत ज़्यादा है वैरायटी।
1: प्राइसिंग वाइज आपको कैसा लगता?
10: प्राइसिंग ठीक है, इट्स ओके।
0: ये वो मेला है जो लगा तो दिल्ली में है लेकिन यहाँ बंगाली संस्कृति से जुड़े रंग देखने को मिलते हैं, यानी दुर्गा पूजा से पहले आपके पास बंगाल की विरासत और कला का दिल्ली में ही दीदार करने का बेहतरीन मौका है। दिल्ली से गुड न्यूज टुडे के लिए नवजोत रंधावा की रिपोर्ट।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पितृपक्ष की। बिहार के गया जी में पितृपक्ष का मेला चल रहा है तो प्रयागराज में भी तर्पण और पिंडदान के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष दिलाने के उद्देश्य से लोग अनुष्ठान कर रहे हैं। खास बात यह है कि प्रयागराज में आस्था और तकनीक का मेल भी देखने को मिल रहा है। यहाँ ऑनलाइन पिंडदान की सुविधा भी तीर्थ पुरोहितों ने उपलब्ध करवाई है।
11: देश के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों ऐसी तस्वीरें दिखाई पड़ रही है, विशेषकर बिहार के गया जी और यूपी में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी और तीर्थ राज प्रयागराज में। इन जगहों पर लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति और उनके प्रति अपनी आस्था जताने के लिए तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं। पितृ पक्ष की ये सदियों पुरानी परंपरा है, जिसके लिए दूर दूर से लोग विशेष धार्मिक स्थलों पर पहुंच रहे हैं और पूरे विधि विधान के साथ इस परंपरा को निभा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में पितृ पक्ष में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। स्नान ध्यान कर वो अपने पुरखों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि यहाँ मोबाइल और इंटरनेट के दौर में आस्था और तकनीक का बेल भी दिखाई पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ तीर्थ पुरोहित वीडियो कॉल के जरिए भी पितृपक्ष का अनुष्ठान करा रहे हैं। मोबाइल स्क्रीन पर दूसरी तरफ मौजूद श्रद्धालुओं को आप देख सकते हैं, वो विधि विधान के साथ पिंडदान कर रहे हैं। दरअसल दूर दराज रहने वाले लोग, बुजुर्ग या किसी वजह से तीर्थ स्थलों तक नहीं पहुंच पाने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज में ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पिंडदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।
12: काफी संख्या में लोग देश विदेश से लोग आ रहे हैं यहाँ पिंडदान करने के लिए, और सबसे बड़ी चीज ये कि एक व्यवस्था तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से लागू हुई है कि जो लोग विदेश में बैठे हैं यहाँ पे आके पिंडदान नहीं कर सकते, या जो वृद्ध विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, जो आने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। जी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है। ऑनलाइन व्यवस्था स्पेशली जो NRI लोग बैठे हुए विदेशों में, ये इनके लिए है, और साथ ही जो दिव्य वृद्ध विकलांग हैं, जो चलने में असमर्थ है, उनके लिए। नहीं तो बाकी जो कॉमन पर्सन है और जो आ सकते हैं, तो उनके लिए ऑफलाइन ही व्यवस्था है।
11: प्रयागराज के तीर्थ पुरोहितों ने विशेष रूप से विदेश में रहने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पिंडदान की ये व्यवस्था की है, ताकि वो अपने पूर्वजों और अपनी परंपराओं से जुड़े रह सके। हालांकि यहां बड़ी संख्या में देश के अलग अलग जगहों से लोग तर्पण और पिंडदान करने के लिए पहुंच रहे हैं।
13: बैतूल से आए हैं, मध्य प्रदेश से, पितरों का पिंडदान करने के लिए, ताकि हमारे पितरों को आत्मा की शांति मिले, हमारे घर में सुख शांति प्राप्त हो, इसीलिए हम यही कामना करके पिंडदान करने आए हुए हैं।
14: हम अपने पितरों को मोक्ष दिलाने और सुख शांति के लिए यहाँ आए।
11: बिहार के गया जी में 15 दिनों का पितृपक्ष मेला चल रहा है। पितृपक्ष में तर्पण, पिंडदान और कर्म कांड के जरिए लोग पितरों को मोक्ष दिलाने की कामना करते हैं। बिहार के गया जी में 15 दिनों का पितृपक्ष मेला चल रहा है। यहाँ के विष्णुपद मंदिर क्षेत्र के फल्गु नदी के तट के पास पिंडदान, श्राद्ध, कर्म और तर्पण करने का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति और पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। इसीलिए पितृ पक्ष के दौरान यहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ अनुष्ठान संपन्न करते हैं।
15: व्यवस्था सही है, बढ़िया व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, और सभी विधि विधान से सब कार्य चल रहा है। पितृपक्ष में जो भी होता है, पिंडदान और जलदान वगैरह, वो सब क्रम से चल रहा है।
16: यहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है, फिर उनको इस तरह से कोई भटकना नहीं पड़ता है। इस विश्वास से हम लोग यहाँ पर अपने जीवन में एक बार भी मतलब पिंडदान करने का इच्छा जो थी, वो जो संपूर्ण माँ जी को साथ में लेके हम लोग आए हैं।
17: हम ग्वाड से आए हम लोग, और यहाँ माता पिता का श्राद्ध करने के लिए गया जी तीर्थ में आए हैं हम लोग। तो सुना है यहाँ पिंडदान करने से पितृलोक तृप्ति होते हैं, पितृलोक को पुण्य मिलता है, इसीलिए हम लोग यहाँ गया जी में पिंडदान करने के लिए आए हैं अपने पितरों के नाम।
11: पक्ष में तर्पण और पिंडदान के लिए प्रयागराज, वाराणसी और गया जी के अलावा बद्रीनाथ धाम भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम को मोक्ष धाम के रूप में विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है। इस धाम में स्थित ब्रह्म कपाल को पितृ तर्पण और पिंडदान के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही यहाँ श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो जाती है और दिन भर यहाँ तर्पण, पिंडदान और धार्मिक अनुष्ठान का सिलसिला चलता रहता है।
18: पक्ष चल रहा है, महाकाली में काफी संख्या में लोग श्रद्धालु अपने पितरों का पिंडदान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, अपने पितरों को मोक्ष की कामना कर रहे हैं। कहा गया है इस स्थान पर पिंड देने से 7 पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर भगवान बद्री विशाल के बाल मोक्ष मनुष्य अपने पितरों को पिंड और तर्पण देता है, 7 पीढ़ी के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आप देख रहे हैं आजकल पितृपक्ष में काफी संख्या में लोग अपने पितरों को उद्धार के लिए महाकाली आ रहे हैं।
11: मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने के बाद पितरों को मोक्ष प्राप्ति होती है और दूसरे स्थानों पर पिंडदान की आवश्यकता नहीं रहती। इस आस्था के चलते पितृपक्ष में ब्रह्म कपाल में श्रद्धालुओं की संख्या कहीं अधिक बढ़ी हुई है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गया जी से पंकज कुमार और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
19: और अब बात दिल्ली में एक ऐसी नहर की जो पिछले 20 साल में बड़े नाले में तब्दील हो गई। 2 दशक में उसकी पहचान बदबू, कचरा और काले गंदे पानी तक सीमित रह गई। मूनक नहर की ऐसी दुर्दशा देखकर एक सामाजिक कार्यकर्ता के नेतृत्व में वहां रहने वाले लोगों ने उसको जीवनदान देने की ठान ली और महज 8 से 9 महीने के अंदर वो नाले से नहर बनने की ओर बढ़ गई।

0: दशकों से इसकी पहचान बदबू, कचरा और काले गंदे पानी से रही। नाम कुछ और है पर पहचान नाले की रही। दिल्ली के वजीरपुर से होकर बहने वाली ये मुनक नहर कब और कैसे गंदे पानी के नाले में तब्दील हो गई ये पता नहीं चला, लेकिन जब युवाओं ने प्रण लिया, अपनी जिम्मेदारी समझी, तो अब मुनक भी नाले से नहर बनती जा रही है।
1: वजीरपुर के मुनक नहर का अब दो रूप आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन पहले इसका सिर्फ एक रूप हुआ करता था जो गंदा था, जिसमें गंदगी थी चारों तरफ, उसमें बहुत सारी जलकुंभियां थी और जिसका पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल करने के लायक नहीं था, नहर नाला बन चुकी थी। लेकिन आज आपको मुनक नहर के दो रूप दिखाई पड़ते हैं। एक रूप ये है जिस पर काम चल रहा है, जिसकी सफाई हो चुकी है और अब कहा जा रहा है कि छठ से पहले पहले इसे साफ कर दिया जाएगा ताकि छठ पूजा इसमें आसानी से मनाई जा सके।
0: वर्षों तक मुनक नहर की दुर्दशा देखने और गंदगी की दास्तान सुनाने के लिए मजबूर राहगीरों के लिए इन तस्वीरों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। कोई दूर दूर तक सोच नहीं सकता कि मुनक नहर की भी तस्वीर बदल सकती है। व्रत त्योहारों के बाद मुनक नहर का इस्तेमाल पूजा अनुष्ठान से जुड़ी सामग्री फेंकने के लिए भी होता था। आसपास कलेक्शन प्वाइंट होने की वजह से लोग इसी नहर में देवी देवताओं की प्रतिमाओं को भी विसर्जित कर देते थे। जाने अनजाने आस्था के इसी अपमान ने मुनक नहर के साफ सफाई के अभियान की नींव रख दी।
1: विनय दास मेरे साथ में है। आजकल आप इनका अगर इंस्टा पेज देखेंगे तो इनके कुछ वीडियोस बहुत वायरल हैं, कई लोग उन्हें देख रहे हैं। हाल ही में गणेश विसर्जन हुआ और इसी नहर में गणेश जी की जो मूर्तियां थी वो लोगों ने डाली पूजा के बाद, लेकिन वो अच्छे हालात में नहीं थी। विनय और उनकी टीम ने मिलकर उन मूर्तियों को बाहर निकाला। सिर्फ गणेश विसर्जन नहीं बल्कि कई जो पूजा पाठ होते हैं इनमें मूर्तियां ऐसे नहर नालों में फेंक दी जाती हैं। विनय कोशिश करते हैं कि उन देवी देवताओं का अपमान ना हो, इसलिए खुद अपनी टीम के साथ नहर में उतरते हैं और मूर्तियों को बाहर निकालते हैं।
0: विनय दास नाम के सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली की जे कॉलोनी के रहने वाले हैं, जिनके नेतृत्व में 1600 से ज्यादा बच्चों और युवाओं ने कचरे के साथ एक साल में नहर से देवी देवताओं की 2500 से ज्यादा मूर्तियां निकाली। इनमें 35 किलो का शिवलिंग भी शामिल है।
2: गणेश चतुर्थी पे काम पूरा हुआ, उसको यहाँ पर कूड़े के बीच में फेंक जाना, आप सोचिए क्या दिल में ठेस पहुँचती हम लोगों के। और मेरे साथ इतने सारे बच्चे हैं, 200-250 बच्चे एक साथ लगे थे, लास्ट 6 सितंबर को भी लगे थे। उसी दिन केवल हमने एक दिन में ही 600 से 700 मूर्तियां कलेक्ट करी और उसमें एक 35 किलो का शिवलिंग भी निकला।
1: 35 किलो का शिवलिंग?
2: जी भाई साहब, बिल्कुल 35 किलो का। और वो मुझे हैरानी हो रही थी, ना जाने ये शिवलिंग कितने समय से यहाँ पर रहा होगा। तो ये बड़ी शर्म की बात थी कि हम आज धर्म की तरफ तो चल रहे हैं, हम गर्व करते हैं हिंदू होने पर, लेकिन कुछ एक हिंदू ऐसे है ना जो अपने धर्म का सम्मान नहीं कर पा रहे।
0: इस सफाई अभियान के दौरान विनय और उनकी टीम को कई चुनौतियों और चोटों का सामना करना पड़ा। कचरे में कांच, सुई और जहरीले रसायन होने के बावजूद उन्होंने अपनी इस मुहिम को जारी रखा।
2: सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि हम नहर में जब कूद रहे थे तो आप मान के चलेंगे कि कूड़ा जो था वो लगभग कूड़ा इतने शेप में था कि वो उसको 2 फिट का था, वो एक बार में उगता। और यहाँ तक का पानी था, हमारी कमर तक का पानी था और लगभग उसमें पानी था ही नहीं। वो पूरा जो होता है ना कि कूड़ा कचरा जो होता है वो पानी में भीग भीग के सिमट जाता है, जितना हमने सोचा था उससे बहुत भयंकर था जब हम कूदे थे। पहली बात तो हमने सेफ्टी बूट यूज़ करे थे, लेकिन उसके बावजूद वो सेफ्टी बूट के अंदर भी पानी भर जाना, हमको कई कीड़े मच्छरों ने भी काटा और मेरे कई वॉलेंटियर्स को भी काटा, सदस्यों को काटा। मेरे भी अभी लास्ट संडे परसों ही हमने सफाई की है, जिसमें हमने जलकुंभियाँ उठाई, उसमें मूर्तियाँ नहीं थी, तो उसमें भी काफ़ी सबसे बड़ा खतरा तो हमें इंजेक्शंस का ही रहता है, लेकिन सेफ्टी बूट से कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस हो जाता है।
0: विनय का बचपन जे कॉलोनी में ही बीता। वे एक बेहद साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता चपरासी के पद पर थे। अपनी शिक्षा का खर्च उठाने के लिए उन्होंने महज 7 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया। पर्यावरण संरक्षण के अलावा उन्होंने वंचित वर्ग के बच्चों को मुफ्त ट्यूशन देने और झुग्गी झोपड़ियों के आसपास सफाई अभियान चलाने जैसे अभियान भी छेड़ रखे हैं, जिनमें मुनक नहर की सफाई शामिल है। विनय की इस मुहिम के बाद अब मुनक नहर की सफाई के लिए सरकारी स्तर पर भी काम शुरू हो गया, जिसके बाद ये उम्मीद है कि इस बार छठ पूजा के दौरान सूर्य देव को अर्घ लोग साफ सुथरी मुनक नहर में खड़े होकर देंगे।
1: सफाई के जरिए आप सोचिए बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं, अच्छी संगत में जा रहे हैं, कम से कम अगर किसी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी के बच्चे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये नहर अब जो साफ हो रही है, जो इस पर काम चल रहा है, वो कहीं ना कहीं उसमें विनय की बहुत बड़ी भूमिका है। और अब हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार छठ पूजा जब हो तो बात सिर्फ यमुना की ना हो, बल्कि लोग मुनक नहर में भी उतरकर आसानी से साफ सफाई के बीच सूर्य देवता को अर्घ दे पाएंगे। मनीष और असिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
3: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत सिंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे विदेश यात्रा के बारे में और विदेश में बसाने वाले योगों के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक विशेष उपाय के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 सितंबर 2026 दिन बुधवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, दोपहर 2:55 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, प्रातः 7:36 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 1:13 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं विदेश यात्रा के बारे में और विदेश में बसने के बारे में। विदेश यात्रा के योग के होने का अर्थ क्या है? कब व्यक्ति विदेश की यात्रा करता है, विदेश जाता है? देखिए, विदेश यात्रा का अर्थ होता है ज्योतिष में समुद्र पार करने की यात्रा। सामान्यतः पहले ऐसा मानते थे कि कोई भी लंबी यात्रा जिसमें कम से कम 3 लगें, 9 लगें, वो विदेश यात्रा समझी जाती थी। कुंडली में पंचम, नवम और द्वादश भाव मुख्य रूप से विदेश यात्रा से संबंधित होते हैं। अष्टम भाव की भी विदेश यात्रा में भूमिका देखी गई है। क्रूर और पाप ग्रहों की विदेश यात्रा में बड़ी भूमिका होती है। ज्योतिष में राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा विदेश जाने में सहायता करता है। इसके बाद शनि और मंगल भी विदेश यात्रा में सहायता करते हैं। जब किसी व्यक्ति की शनि की 7.5 चले या शनि की 2.5 चले तो भी व्यक्ति विदेश जाता है या विदेश यात्रा में सहायता मिलती है। मेष राशि, धन का लाभ इस समय आपको हो सकता है। परिवार में व्यस्तता रहेगी, किसी अतिथि का आगमन होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। हरे फल का दान कर दें
तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी।

कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो विदेश जा करके परमानेंटली वहीं बस जाते हैं, वहीं रह जाते हैं, बाकी जीवन उनका वहीं बीतता है। तो कब व्यक्ति विदेश जाकर स्थायी रूप से बस जाता है? आम तौर पर शनि या राहु के मजबूत होने पर ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति घर से दूर जाकर स्थायी रूप से बस जाता है। सूर्य अगर कुंडली में कमजोर हो या चंद्रमा अगर कमजोर हो तो ऐसे लोग भी विदेश जाकर स्थायी रूप से बस जाते हैं। वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के विदेश में बस जाने की संभावना ज्यादा होती है। जिनकी जन्मतिथि महीने की 2, 11, 20 या 29 हो उनके विदेश में बस जाने की संभावना ज्यादा होती है। जैसा आपको पहले बताया कि कुंडली में अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, कुंडली का 12वां, 8वां या 4था भाव अगर पीड़ित हो, निगेटिव इन्फ्लुएंस हो, तो व्यक्ति विदेश जाता है और उसके विदेश में बसने की संभावना बहुत होती है। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, चोट चपेट से सावधान रहें, भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, कोई यात्रा इस समय हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि विदेश जाने में या विदेश यात्रा में बाधाएं कब आती हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा या शुक्र मजबूत हो तो आदमी अपने मदर या मदरलैंड से दूर नहीं जा पाता
और अगर जाता है तो लौट कर वापस आता

0: रहा है। अगर कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा चल रही हो तो भी विदेश यात्रा में या विदेश जाने में दिक्कतें आती हैं। अगर आपके पासपोर्ट के नंबर में या वीजा के नंबर में 1, 5 या 9 अंक की प्रधानता हो तब भी विदेश जाने में बाधा आती है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म तारीख 4, 13, 22 या 31 तारीख हो तो या तो व्यक्ति बहुत बार विदेश जाता है या जीवन में ऐसे मौके ही नहीं आते, कभी नहीं जा पाता। अगर व्यक्ति की कुंडली जल तत्व प्रधान हो तो ये मदरलैंड से दूर नहीं जाने देती। व्यक्ति अपनी मातृभूमि से, अपने देश से दूर नहीं जा पाता, विदेश जाने में बाधा जरूर आती है। धनु राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, पुरस्कार सम्मान का लाभ मिलेगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का अपने इस समय ध्यान बनाए रखें, सेहत का ध्यान दें, परिवार में विवादों से बचाव करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन का लाभ होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं और विदेश यात्रा करने में बाधा आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो क्या उपाय करेंगे? शनि के तांत्रिक मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें। कुंडली का जो नवम भाव है उसके स्वामी ग्रह को मजबूत करें। हल्के नीले रंग के, लाइट ब्लू कलर के कपड़ों का खूब प्रयोग करें और एक बार नदी पार करके नाव से या स्टीमर वगैरह से कोई यात्रा जरूर कर लें। अगर ऐसा कर लेते हैं तो विदेश जाने की संभावना बन जाएगी। अब आप विदेश यात्रा तो कर लेते हैं, चले भी जाते हैं, चले भी आते हैं, लेकिन वास्तव में आप विदेश में बसना चाहते हैं तो इसके लिए क्या उपाय करेंगे? स्नान के जल में जरा सी हल्दी मिलाकर नियमित रूप से स्नान करें, एक कांच की छोटी सी शीशी में हल्दी भरकर अपने सिरहाने रख लें और रोज सुबह मां दुर्गा को एक लाल फूल अर्पित करें और माता से प्रार्थना करें कि आपको विदेश में बसने में सुविधा हो। देखिए, कलम या किताब को बिना वजह के, बिना कारण खुला हुआ मत रखिए। आपने किताब पढ़ ली, किताब बंद कर दीजिए। आपने लिखने का काम कर लिया, कलम बंद कर दें, उसका कैप लगा दें। अगर आप अपनी पेन या अपनी किताब कॉपी सामान्यतः खुला रखते हैं तो ऐसा करने से आपकी याददाश्त कमजोर होगी। अगर आपको सर से, ब्रेन से संबंधित कोई समस्या है तो क्या करेंगे, एक नारियल ले लीजिए, इस पर सिंदूर से स्वस्तिक बनाइए और सर पर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 9 बार घुमा लीजिए। उसके बाद एक बार में नारियल को पटक करके तोड़ दें, फोड़ दें। स्वास्थ्य की चिंताएं और समस्याएं दूर होंगी। इस उपाय को करने के साथ आप डॉक्टर का परामर्श भी मानें, उनकी दवाइयां भी लें। 6 महीने में एक बार अगर आप ये उपाय करें तो आपको लाभ होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: चलिए, अब आपको लिए चलते हैं हांगकांग के विक्टोरिया पार्क, जहां पर वर्ल्ड लैंटर्न फेस्टिवल मनाया जा रहा है। रोशनी के रंगों से सराबोर इस अनोखे उत्सव में 20 देशों की 3,000 से ज्यादा लालटेन दिखाई गई हैं।
3: हांगकांग के विक्टोरिया पार्क में रोशनी का मेला सजा है। यहां वर्ल्ड लैंटर्न बुलेवार्ड देखने बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। रोशनी के रंगों से सराबोर इस प्रदर्शनी में 20 देशों की 3,000 से ज्यादा लालटेन दिखाई गई है। अद्भुत अनूठी लालटेन से सजे इस रास्ते पर दुनिया भर के डिजाइन्स, कलाकारी और सांस्कृतिक परंपराओं की झलक देखने को मिल रही है। 25 सितंबर को मिड ऑटम फेस्टिवल खत्म होने के बाद से यहां बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ रही है। खास बात यह है कि इस प्रदर्शनी में दक्षिण कोरिया के जिंजो की सिल्क की लालटेन भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल पारंपरिक रूप से परिवार के सदस्यों की सेहत और खुशहाली की कामना के लिए किया जाता है। इसके अलावा ब्राजील की रंग बिरंगी पैचवर्क वाली लालटेन और पोलैंड की लालटेन भी यहाँ मौजूद है, जिनमें पारंपरिक लोक कला और पेपर कटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।
4: 見到有唔同國家嘅特色嘅lantern，咁樣就想capture翻啦。咁留咗兩三卷菲林過嚟影，就想留翻低啦。跟住有幾個特別中意嘅位，就係譬如係土耳其啦，或者係中東嗰幾個位咧，就有少少暮色，少少嘅感覺，咁就有特登留連翻啦。同埋有啲係類似星空嘅排法，咁嗰啲位我都幾中意。
3: विक्टोरिया पार्क में रोशनी से सजी शाम का लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं और इन जगमगाती लालटेन्स के साथ फोटो लेकर खुशनुमा यादों को भी सजो रहे हैं। यूं तो ये प्रदर्शनी 27 सितंबर को खत्म होने वाली थी, लेकिन लोगों की भारी मांग की वजह से इसे 4 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंटरनेशनल लालटेन्स एग्जीबिशन का हिस्सा बन पाए, यहाँ रोशनी से सजी शामों का आनंद ले पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबर।
8: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
9: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
8: एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड और ब्रोंज। महिला रिले रेस 4x400 रेस में जीता सोना, मेंस 4x200 मीटर रिले में मिला ब्रोंज। भारत के खाते में अब तक 6 गोल्ड, कुल मेडल 53। केदारनाथ पैदल मार्ग स्थित चरबासा स्लाइडिंग जोन में एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, करीब 9000 यात्रियों को सुरक्षित रास्ता पार कराया। भारत की रक्षा शक्ति में होगा इजाफा, साल के अंत तक आएंगे तेजस MK-1A फाइटर जेट के 12 और इंजन, HAL के पास 27 एयरफ्रेम तैयार। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास नेशनल हाईवे 911 मिलिट्री रनवे में बदला, भारतीय सेना की एविएशन यूनिट्स ने हाईवे पर की लैंडिंग की प्रैक्टिस। तकनीकी खराबी की वजह से बिजनौर में खेत में उतरा हेलीकॉप्टर, गांव में मचा हड़कंप, देखने उमड़े लोग, आसमान में उड़ता रहा दूसरा हेलीकॉप्टर। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा एक्टर नानी के तुला दान की भी है। देखिए,
10: अंकल हमारे गाँव के किसी खम्भे में लाइट नहीं है, हम बच्चे लोग डरते हैं बाहर निकलने में।
11: यूपी के कौशाम्बी जिले में 3 मासूम बच्चों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तीनों बच्चे हाथ जोड़कर डीएम अंकल से स्ट्रीट लाइट लगवाने की अपील करते नजर आ रहे हैं।
10: हम लोगों को डर लगता है इसलिए लाइट लगवा दी,
11: और फिर हाथ में टॉर्च लेकर सूने खम्भे और गलियों में फैला अंधेरा भी दिखा रहे हैं। बच्चे बता रहे हैं कि उनके लिए ये अंधेरा कितना खतरनाक है, उनके घरों के आसपास जंगल है जहां से जंगली जानवरों का भी डर बना रहता है। वीडियो कौशाम्बी जिले के म्योहर गांव का बताया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि बच्चों की ये गुहार डीएम अंकल ने सुन ली है। वीडियो संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी अमित पाल ने वहां के XCN और वीडियो को जांच कर लाइट लगवाने का आदेश दिया है। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत यूं ही नहीं बनी है। कानपुर के इस चोर को ही देख लीजिए, 10 दिन पहले चोरी की थी, पुलिस पकड़ नहीं पाई, लेकिन इसकी एक गलती ने इसे खुद पुलिस के पास पहुंचा दिया। कहानी यूं है कि 10 दिन पहले चांदी व्यापारी किशोर सिंह के यहां 30 किलो चांदी की चोरी हुई। पुलिस चोर को ढूंढ रही थी लेकिन किसी को पहचान नहीं पा रही थी। CCTV में एक व्यक्ति बैग लेकर जाते हुए दिखा लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। इसी बीच जब इलाके के एक व्यक्ति ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई और पूछा कि क्या मैं चोरी में वांटेड हूँ, तो बात पुलिस तक पहुँची। पुलिस चौंकी, कड़ियां जोड़ी और उस शख्स को पकड़कर पूछताछ शुरू की तो पूरी कहानी सामने आ गई, और चोरी हुई 30 किलो चांदी में से 22 किलो चांदी की बरामदगी भी हो गई। बाकी चांदी और कैश की तलाश चल रही है। इस शख्स का नाम सुधांशु अग्रवाल है, सुधांशु ने MCA किया है। ये दिलचस्प घटना कानपुर के फीरखाना इलाके की है। इसे तुला दान कहते हैं, अपने वजन के बराबर कोई खास चीज दान करना। तेलंगाना के प्रसिद्ध मंदिर में अभिनेता नानी भी ये सदियों पुरानी परंपरा निभाते दिखे। यहाँ के मुलुगु जिले में स्थित ऐतिहासिक मेदाराम समक्का सरलम्मा मंदिर में उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की और फिर किया तुला दान। यहाँ तुला दान के लिए गुड़ के दान की परंपरा है, सो नानी ने भी अपने वजन के बराबर गुड़ देवी को अर्पित किया। इस दौरान उनके साथ उनकी हालिया रिलीज फिल्म द पैराडाइज की टीम भी वहाँ मौजूद रही। मेदाराम स्थित समक्का सरलम्मा मंदिर तेलंगाना के आदिवासी इतिहास और संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र है। जहां भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर अपने वजन के बराबर गुड़ चढ़ाने की परंपरा निभाते हैं। आपको बता दें कि अभिनेता नानी और राघव जुयाल की फिल्म द पैराडाइज बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन कर रही है। फिल्म महज 5 दिनों में ही 150 करोड़ के आंकड़े की बेहद करीब पहुँच गयी है। ग्वालियर में ऐतिहासिक महाराज बाड़े के गोरखे परिसर में ये पूजा अर्चना सिंधिया राजवंश के 300 साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है, जिसे केंद्रीय मंत्री और सिंधिया राजवंश के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निभाया और मंसूर शाह की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। सिंधिया राज परिवार की इस परंपरा के पीछे एक दिलचस्प कहानी प्रचलित है। बताया जाता है कि सिंधिया राजवंश के संस्थापक महादजी सिंधिया जब पानीपत के युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तब महादजी की मां और पत्नी सूफी संत मंसूर शाह के पास पहुंची। संत ने उन्हें महादजी के जीवित लौटने का भरोसा दिलाया और जब वो लौटे तो मंसूर शाह ने उन्हें आधी रोटी दी और उन्हें 5 पीढ़ियों तक राज करने का आशीर्वाद दिया। इस आधी रोटी को सिंधिया परिवार ने एक अनमोल धरोहर के रूप में आज भी संभाल कर रखा है। देवघर में इसी रोटी के अवशेष और संत से जुड़ी दूसरी वस्तुओं की पूजा की जाती है। गणपति की विदाई के बाद अब देश भर में नवरात्रि की तैयारी है। ऐसे में पुणे में सदियों पुरानी परंपरा निभाई गई। यहां महाराष्ट्र की कुलस्वामिनी तुलजापुर की मां तुलजा भवानी के पवित्र पलंग को पुणे के जुन्नर से तुलजापुर की ओर रवाना किया गया। करीब 12वीं शताब्दी से चली आ रही इस परंपरा को लोग आज भी उसी श्रद्धा भाव से निभाते दिखे। इस परंपरा के तहत कुमक्षेत्र गाँव से पलंग को कुकड़ी नदी के पात्र से हापुस बाग की ओर ले जाया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने बड़े उत्साह और भक्तिभाव के साथ पलंग का स्वागत किया। जगह जगह पारंपरिक वाद्यों की गूंज रही। गेहूं के आटे से बनाए गए प्रसाद बांटे गए। जुन्नर, नारायणगांव, आली, पारनेर और नगर होते हुए ये पलंग विजयदशमी की पूर्व संध्या पर तुलजापुर पहुंचता है। विजयदशमी से कोजागिरी पूर्णिमा तक माँ तुलजा भवानी की मुख्य मूर्ति इसी पलंग पर विश्राम करती है।
8: और अब बात करते हैं पहाड़ों पर बर्फबारी और मौसम में हो रहे बदलाव की। कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे कि मौसम का मिजाज बदल गया है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आमतौर पर मौसम का ये रंग नवंबर के आखिरी हफ्ते और दिसंबर की शुरुआत में दिखता था, लेकिन इस बार सितंबर के अंत में ही मौसम मेहरबान हो गया। वहीं हिमाचल के किन्नौर में ट्रेकिंग के दौरान कोलकाता की 12 सदस्यीय टीम आधे रास्ते में फंस गई, जिसका आईटीबीपी और स्थानीय लोगों ने सुरक्षित रेस्क्यू करके उन्हें बचा लिया।

0: पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल गया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी और लगातार हो रही बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं निचले इलाकों में बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया है। पहाड़ों पर मौसम ने करवट ली है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ताज़ा बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर में लिपटी नजर आ रही हैं। मनाली और धर्मशाला के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम का ये बदला मिजाज आने वाले दिनों में पर्यटन के लिहाज से भी दिलचस्प तस्वीर पेश कर रहा है, तो वहीं गुलमर्ग के ऊंचे पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी ने नज़ारे को और बेहद खूबसूरत बना दिया है। कश्मीर के खूबसूरत वादियों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी के साथ बारिश भी देखने को मिली है, यानी सितंबर के आखिरी दिनों में ही कश्मीर की पहाड़ियों ने सर्दियों की आहट दे दी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी ने पूरे इलाके को स्वर्ग सा बना दिया है। अफरवाद पीक पर गिरी बर्फ ने पहाड़ों को सफेद चादर से ढक दिया है। यहां हो रही बर्फबारी और बादलों की आवाजाही के बीच गुलमर्ग का मौसम सर्द एहसास दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी और ठंडी हवाओं के कारण मैदानी इलाकों में दिन के तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। बता दें कि दिसंबर से फरवरी के दौरान गुलमर्ग में भारी बर्फबारी होती है, जो विंटर टूरिज्म और स्कीइंग के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी बर्फबारी से सजे खूबसूरत पहाड़ों का दीदार हो रहा है। करीब 14,000 फीट पर स्थित कैलाश कुंड की पहाड़ियों और चटरगला बाईपास इलाके में ताज़ा बर्फबारी से पूरा इलाका सफेद चादर में ढक गया। ऊंचाई वाले इलाकों में बदले मौसम के बीच बर्फ से ढके पहाड़ों का खूबसूरत नजारा बेहद आकर्षक है। मौसम विभाग ने ऊपरी इलाकों में ठंड बरकरार रहने और हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है। प्रशासन ने भी ऊंचाई वाले मार्गों पर यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो धौलाधार की सफेद चोटियां, नीचे छाए बादल और बारिश से धुली हरियाली कांगड़ा की वादियों की खूबसूरती देखते ही बन रही है। धौलाधार ही नहीं बल्कि हिमाचल के दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू की ऊंची चोटियां भी बर्फ से ढकी नजर आ रही हैं। सितंबर में दूसरी बार हुई बर्फबारी से धौलाधार की ऊंची चोटियां चांदी के मुकुट की तरह चमक उठे हैं। बादलों के बीच बर्फ से ढकी चोटियों का ये नजारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। वहीं धर्मशाला और आसपास के इलाकों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सितंबर के आखिरी हफ्ते में ही मौसम ने ऐसा रंग बदला कि पहाड़ों पर सर्दी का एहसास होने लगा। मौसम के जानकारों के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से कांगड़ा की धौलाधार पर्वतमाला ने एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है।
1: बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एक दो स्थानों में हैवी रेनफॉल दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश कांगड़ा स्टेशन में रिकॉर्ड की गई, लगभग 70 एमएम के आसपास। उसके उपरांत जो सेकंड हाईएस्ट है धर्मशाला में 60 एमएम के आसपास रिकॉर्ड की गई। वहीं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं शिमला, सिरमौर, मंडी और किन्नौर, यहाँ पे मॉडरेट कैटेगरी की बारिश रिपोर्ट की गई। और जो हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं स्पेशली डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू में, और यहाँ पे हल्की बर्फबारी रिपोर्ट की गई।
0: बर्फ की सफेद चादर में लिपटी पहाड़ियाँ और उन पर पड़ती सुबह की सुनहरी धूप, मानो आसमान से उतरकर सफेद रंग ने पूरी वादियों को अपने आगोश में ले लिया हो। ताज़ा बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट आई है और मनाली की फिजाओं में ठंडक बढ़ गई है। ताज़ा बर्फबारी से हिमाचल में मनाली के पहाड़ों की खूबसूरती भी निखर गई है। वहीं बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और धूप में चमकती चोटियां, सितंबर के आखिर में मनाली का ये नज़ारा सर्दियों की आहट का एहसास करा रहा है। हिमाचल के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी कमोबेश मौसम का सही मिजाज देखने को मिला है। वहां भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ये तस्वीरें केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की हैं, जहां ताज़ा बर्फबारी से ठंड पड़ गई है। ठंडी हवाओं के बीच सुबह और शाम के वक्त तापमान में गिरावट का असर साफ महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 29 और 30 सितंबर को राज्य के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है।
2: डिस्टर्बेंस की वजह से काफ़ी अच्छी एक्टिविटी हुई है। साथ साथ में जो ये डिप्रेशन था जो कि आगे जाके वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में कमज़ोर हुआ, फिर लो प्रेशर एरिया में, और आज सुबह जो है लेसमार्क हो गया, इसका भी असर देखने को मिला, जिसकी वजह से उत्तराखंड में और आसपास के जो पहाड़ी राज्य हैं वहाँ पर भी बर्फबारी देखने को मिली। आज भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो करीब 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के आसपास केंद्रित है, जिसको देखते हुए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर जो भारी वर्षा का जो है अलर्ट जारी किया गया है, साथ साथ में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है।
0: पहाड़ों पर हो रही ताज़ा बर्फबारी और बारिश की वजह से अचानक मौसम बदला तो पहाड़ों पर ट्रैकिंग कर रहे पर्वतारोहियों की मुसीबतें बढ़ गईं। हिमाचल के किन्नौर में माउंट लियो पारगिल 2 की ओर बढ़ रही कोलकाता की 12 सदस्यीय हिमालयाज बीकन टीम आधे रास्ते में फंस गई।
3: लियो पारगिल हम लोग एक्सपीडिशन में थे, लियो पारगिल 2, लियो पारगिल नॉट लियो पारगिल, लियो पारगिल एंड लियो पारगिल देयर इज टू पीक, देयर अटेम्प्ट लियो पारगिल 2। लेकिन हम लोग का समिट जो दिन था, हम लोग समिट में पहुंचा, समिट से थोड़ा नीचे हम लोग का छोड़ के आने पड़ा है ड्यू टू द हाई अल्टीट्यूड सिकनेस ऑफ वन ऑफ द मेंबर, एंड हम लोग देन वी आर रिटर्न बैक फ्रॉम बेस कैंप दैट डे। द स्नोफॉल स्टार्ट फ्रॉम द मिडनाइट एंड देयर इज कंटिन्यूअस स्नोफॉल।
0: बर्फबारी से रास्ते ढक चुके थे और लौटना भी आसान नहीं था, लेकिन बिगड़ते मौसम के बीच टीम के पास लौटने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं था, लिहाजा बर्फ में फंसी टीम ने मदद के लिए स्थानीय पुलिस और आईटीबीपी से संपर्क किया।
3: बीच में बहुत स्नो गिरा है तो उसमें वो लोग का चलने का दिक्कत हो रहा था, तो हमारा पास भी 2-3 आदमी था जो थोड़ा से उम्र में ज्यादा है, वो लोग को सबसे चलने में दिक्कत होता था, तो उसी टाइम हम सोचा है हमको असिस्टेंट जरूरी है, तो हम लोग पहले आईटीबीपी से कांटेक्ट किया, उसके बाद पुलिस से कांटेक्ट किया, तो आईटीबीपी पुलिस थोड़ा बोलता है देर लगेगा हम लोग का अरेंज करने में।
0: साथ ही स्थानीय लोगों से भी मदद मांगी गई, जिसके बाद तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया।
3: तो ऊपर में तक जहाँ तक हम लोग का आदमी को मिले उतना तक वो लोग पहुंचे, क्यों ना वो लोग अगर उसको मिल जाएगा तो उसको भी थोड़ा साहस मिल जाएगा जे हमारे लिए आदमी आ गया, रेस्क्यू टीम आ रहा है, तो उसका बाद दासी जी खुद चला गया ऊपर में वो लोग का रूट देखने के लिए, पुलिस भी इतना में आ गया था, पुलिस का जो टीम था तो दासी जी पुलिस टीम को लेके भी उस उधर छोड़ा है।
0: इसके बाद आईटीबीपी के जवान अपनी मेडिकल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव अभियान में जुट गए।
3: बाद में आईटीबीपी पूरा मेडिकल टीम लेकर आया, आईटीबीपी का सबसे बड़ा असिस्टेंट जो था हम लोग का लिए उसका मेडिकल टीम रेडी रहता है हमेशा, तो हमारा अगर कोई मेडिकल असिस्टेंट रहता है तो वो लोग जरूर देता है, तो इस बार तो वो नेपाली एवं पुलिस का जो बंदा था वो लोग सबसे पहले पहुंच गया था रेस्क्यू के लिए, तो हमारा जो एक बंदा था वो जो चल नहीं सकता है उसको नेपाली लोग कंधा में उठाया, रोप से उठा के नीचे लेके आया, तो यहाँ तो वो हम लोग का जो स्नो का लिए जो दिक्कत हो रहा था वो तो सारा रास्ता ही वो दिक्कत हम लोग बोझ रहे।
0: राहत बचाव टीम और स्थानीय लोग पहुंचे तो सभी ने राहत की सांस ली, टीम ने एक बीमार पर्वतारोही को सुरक्षित बाहर निकाला।
3: सही सलामत सब सेफ्टी में हम लोग यहाँ तक पहुंच गया, सबको असिस्टेंट मिला के हम लोग का पूरा टीम सेफ पहुंच गया नाकों में। सबसे बड़ा इसमें रोल था हम लोग का नाकों का जो हमारा होमस्टे का जो ओनर है दासी जी, वो सारा दिन इसमें ही बिता दिया और रेस्क्यू में, उसका भी एक बड़ा भूमिका था इस हम लोग का रेस्क्यू ऑपरेशन में, तो हम लोग का अभी जो मेंबर है सारा मेंबर ठीक ठाक है।
0: आईटीबीपी की टीम और स्थानीय की मदद के बाद आखिरकार बर्फीली मुश्किलों के बीच फंसी टीम सकुशल सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई। मौसम विभाग के अनुसार देश के ज्यादातर हिस्सों से मॉनसून की विदाई शुरू हो चुकी है, जिसके कारण आने वाले दिनों में मौसम में काफी बदलाव देखने को मिलेगा।
2: बर्फबारी भी हुई थी पहाड़ों पर कुछ स्थानों पर, वहां से ठंडी हवाएं भी आ रही थी, साथ साथ में वर्षा गतिविधि भी हुई, क्लाउडी कंडीशन बनी हुई थी, जिसकी वजह से जो तापमान है उसमें गिरावट देखी गई थी। हालांकि आने वाले समय में जैसे जैसे कंडीशन जो है साफ होंगी, बादल भी कम हो जाएंगे, साथ साथ में जो ठंडी हवा है इसमें भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, तो ये जो अभी के टेम्परेचर चल रहे हैं इसमें इजाफा देखने को मिलेगा। देखिए मुख्य रूप से हम देखेंगे तो कोई खास जो है ऐसी वर्षा गतिविधि नहीं है, हालांकि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जरूर जो हमारा राजस्थान का क्षेत्र है पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान वहां पर हो सकती है, साथ साथ में भारी वर्षा जो है पंजाब हरियाणा में कुछ स्थानों पर हो सकती है।
0: वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों में आने वाले दिनों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। कुल मिलाकर पूरे देश के स्तर पर देखा जाए तो आने वाले हफ्तों में बारिश की मात्रा सामान्य से कम रहने की उम्मीद है। किन्नौर से विशेषर नेगी, धर्मशाला से पूजा शर्मा, शिमला से विकास शर्मा और चमोली से कमलन सिलोड़ी के साथ दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे।
4: अयोध्या में इस बार दीपोत्सव पर राम की पैड़ी 30 लाख दियों से रोशन हो गया। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: दिल्ली नोएडा के ट्रैफिक से जूझने वालों को आज बड़ी सौगात मिली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये कॉरिडोर पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 को सराय काली खां से जोड़ेगा, जिससे एम्स और दक्षिणी दिल्ली की तरफ जाना आसान होगा। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा नोएडा और पूर्वी दिल्ली से दक्षिणी दिल्ली की तरफ जाने वाले लोगों को होगा। कई रास्तों पर जाम की समस्या कम होगी। रामनगर अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव भव्य और बेहद खास होने जा रहा है। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के मुताबिक इस बार राम की पैड़ी 30 लाख दीपों से रोशन होगी। ड्रोन शो, लेजर शो और आतिशबाजी के आयोजन के साथ सरयू घाट पर 2100 वैदिक आचार्य महाआरती में हिस्सा लेंगे। 240 से अधिक मंदिर मठों में दीप प्रज्वलन का आयोजन होगा। इसके अलावा रामकथा पार्क से लेकर राम की परिधि तक लगभग एक दर्जन स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होंगे। देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए UPSTDC ने खास दीपोत्सव अयोध्या टूर पैकेज भी तैयार किया है। यूपी के भदोही में 4 अक्टूबर से इंडिया कार्पेट एक्सपो आयोजित होने जा रहा है। 4 दिवसीय इस कार्पेट एक्सपो में 65 देशों के 300 से अधिक बायर शामिल होंगे। इस बार आयोजकों का ब्रिक्स देशों पर अधिक फोकस है और यहां के बायर्स के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। फेयर में 200 से ज्यादा भारतीय कालीन निर्यातक अपने उत्पाद पेश करेंगे। इसके लिए निर्यातकों ने नए और आकर्षक डिजाइन सैंपल तैयार किए हैं। 7 अक्टूबर तक ये एक्सपो चलेगा। इसका शुभारंभ सीएम योगी करेंगे। तीन दिन से थमी बाबा केदार की यात्रा मौसम खुलने के बाद फिर शुरू हो गई है। बारिश की वजह से यात्रा रोक दी गई थी और श्रद्धालु सोनप्रयाग में मौसम ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में चौथे दिन जैसे ही केदारनाथ की पैदल यात्रा खुली, यात्रा मार्गों पर रौनक लौट आई। पुलिस की मौजूदगी में श्रद्धालुओं को जत्थों में केदारनाथ के लिए रवाना किया गया। अंगार की संकष्ट चतुर्थी के मौके पर महाराष्ट्र के गणपति मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। जालना के राजुरेश्वर गणपति मंदिर के गर्भगृह में फूलों से आकर्षक सजावट की गई, तो वहीं अकोला के स्वयंभू मंदार गणपति मंदिर में भी भगवान गणेश की पूजा के लिए लोग लंबे लंबे कतारों में खड़े नजर आए।
4: और अब बात गोल्डन गर्ल की। भारत की गोल्डन गर्ल नीरू ढांडा ने इतिहास रच दिया है। निशानेबाज नीरू ने एशियन गेम्स के महिला ट्रैप व्यक्तिगत मुकाबले में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। इतना ही नहीं, नीरू ने 28 के स्कोर के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। नीरू के लिए ये साल बड़ी उपलब्धियों वाला रहा। जुलाई में इटली में हुए शॉटगन वर्ल्ड कप में वो ट्रैप इवेंट में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। वहीं एशियन गेम्स में देश का मान बढ़ाकर लौट रहे चैंपियंस का एयरपोर्ट से लेकर अलग अलग शहरों में फैंस गर्म जोशी से स्वागत कर रहे हैं।

0: इसे कहते हैं अचूक निशाना। भारत की बेटी नीरू ढांडा ने एशियन गेम्स के 75 साल के इतिहास में पहली बार वो कर दिखाया जिसे इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया गया। नीरू ढांडा ने महिलाओं की इंडिविजुअल ट्रैप शूटिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। ये भारत को एशियन गेम्स 2026 में मिलने वाला 5वां गोल्ड मेडल रहा। नीरू ने लाजवाब प्रदर्शन करते हुए गोल्ड पर निशाना लगाकर भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया।
1: एशियाई खेल में भारत को आखिरकार मिल गया एक इंडिविजुअल स्वर्ण पदक, क्योंकि आज का दिन जो है हमने देखा नीरू ढांडा महिला के ट्रैप शूटिंग में उन्होंने ना केवल स्वर्ण पदक लेकिन सिल्वर मेडल भी हासिल कर दिया टीम इवेंट में। अब ये स्वर्ण पदक इतना ऐतिहासिक क्यों है इंडिया के लिए, क्योंकि अगर हम ट्रैप शूटिंग के इतिहास को देखेंगे 1978 में एशियाई खेल में रजिंदर सिंह ने मेंस ट्रैप शूटिंग में गोल्ड जीता था। उसके पहले और उसके बाद हमने ट्रैप शूटिंग में कभी मेडल जीता ही नहीं है। अब विमेंस की अगर हम बात करेंगे तो ना उससे पहले और आज हमने एक भी गोल्ड मेडल हासिल नहीं किया ट्रैप शूटिंग में।
0: नीरू न केवल ट्रैप इवेंट में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है बल्कि उन्होंने एशियाई खेलों में नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। नीरू ने फाइनल में 30 में से 28 सटीक निशाने लगाए और नया एशियाई रिकॉर्ड बनाए। एशियाई खेलों के इतिहास में ट्रैप शूटिंग की एकल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली नीरू पहली भारतीय महिला शूटर बनी है। नीरू ने क्वालिफिकेशन राउंड में भी टॉप किया था। क्वालिफिकेशन राउंड में वो कतर की शूटर के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रही थी और दोनों का स्कोर 118 का रहा था। इससे पहले नीरू आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की तिकड़ी ने महिला ट्रैप टीम इवेंट में 328 के संयुक्त स्कोर के साथ सिल्वर जीता।
1: फाइनल में 30 शॉट्स में उन्होंने 28 शॉट्स ऑन टारगेट उन्होंने हिट किया और इसके वजह से उनको मिल गया गोल्ड मेडल। अब पिस्टल राइफल इवेंट्स में हमने जो नाकामयाबी हासिल की थी अब ट्रैप शूटिंग में हमने उसको ठीक कर दिया है, क्योंकि ये ऐतिहासिक है बहुत से चीजों के लिए। लेकिन नीरू ढांडा के लिए इतिहास रचाना कोई नई बात नहीं है। 2026 के वर्ल्ड कप में हमने देखा था कि वो पहली भारतीय खिलाड़ी बनी जिन्होंने ट्रैप शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया था। उससे पहले 2025 के एशियन चैंपियनशिप्स जो शिमकेंट में हुआ था उसमें भी ट्रैप शूटिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया था। 100% नहीं 200% फोकस गोल्ड मेडल के लिए, यही है नीरू ढांडा का मंत्र।
0: नीरू ढांडा भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर तैनात हैं और ये साल नीरू के लिए काफी अच्छा रहा। हरियाणा के जिंद के 26 साल की नीरू ट्रैप इवेंट में वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। जुलाई में इटली में हुए शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में भी उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। वो ये उपलब्धि हासिल करने वाली देश की पहली महिला शूटर बनी थी।
1: इंडियन आर्मी में जो सर्व करती है नायब सूबेदार के रैंक में, तो इसलिए जो फोकस और डिटर्मिनेशन चाहिए होता है नीरू ढांडा के लिए वो काबिले तारीफ है। तो एशियन गेम्स के 10वें दिन में भारत को मिला एक इंडिविजुअल स्वर्ण पदक और ये ऐतिहासिक है बहुत से कारणों की वजह से।
0: नीरू के गोल्ड जीतने के बाद उनके घर में जश्न का माहौल है और उनकी इस बड़ी सफलता पर उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। लोग नीरू के माता पिता और परिवार वालों को बधाई दे रहे हैं और नीरू भी अपनी उपलब्धि पर बेहद खुश है।
2: फीलिंग सुपर हाई लेवल पे फीलिंग है, मतलब काफी एक्साइटेड हूँ। अपने देश के लिए गोल्ड जीता है और नेशनल एंथम अपने देश का बजना मतलब मेरे लिए काफी प्राउड की बात है। प्रिपरेशन हम करते हैं, जैसे ट्रेनिंग करते हैं तो प्रिपरेशन वैसे ही हम करते हैं, थोड़ा बैड वेदर में भी ट्रेनिंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये नॉर्मल था, पर रहता है थोड़ा कंडीशन हर एक कंट्री का अलग रहता है तो यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी थी, लेकिन मैंने अपने आप को काम रखा और अपने आप पे फोकस किया एंड देन गोल्ड आया सर।
0: नीरू के कोच मनशेर सिंह बताते हैं कि कंपटीशन के शुरू होने से 10 दिन पहले नीरू अस्पताल में भर्ती थी, उन्हें बुखार था। इसके बावजूद लगन और धुन के पक्के नीरू ने ट्रेनिंग पर वापसी की और शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड जीत कर इतिहास रच दिया।
3: She's been very, very ill. Only 10 days ago, she was in hospital for 3 days back in Delhi. She came here late with Ashwini, our physio.
0: नीरू बताती हैं कि उनके पिता किसान और माँ गृहिणी हैं। उनका कहना है कि उन्हें घर परिवार के साथ ही पूरी टीम का सपोर्ट मिला जिससे वो गोल पर निशाना लगाने में कामयाब हुई।
2: पापा फार्मर हैं सर, मदर हाउस वाइफ हैं, मम्मी का योगदान है मेरी लाइफ में पूरा, और मेरी बुआ जी हैं वो कबड्डी की प्लेयर रही हैं आजादो देवी, उनकी उनसे भी काफ़ी इंस्पायर हूँ मैं, और मेरे कोच का योगदान है मनसेर सिंह का, वो पिछले 6 साल से मेरे साथ हैं पूरे ग्रास रूट से और अब तक कंटिन्यू मैं उनके साथ ही करती हूँ, और मेरी पूरी टीम है, विक्रम सर हैं, पीटर विल्सन कोच हैं जो अभी ओलंपिक चैंपियन हैं, और हम इंडियन टीम के साथ काम कर रहे हैं, और हमारे साथ अश्वनी मैम, फिजियो टीजे सर, साइकोलॉजिस्ट एंड मेरी पूरे टीममेट्स सबका सपोर्ट था।
0: खुशियों की सौगात कड़ी मेहनत के बाद हासिल हुई है और ये पल लंबे इंतजार के बाद आया है। नीरू ढांडा से पहले एशियन गेम्स में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर जब भारत की कबड्डी स्टार पुष्पा राणा, भावना ठाकुर और ज्योति ठाकुर धर्मशाला पहुंची, तो साइंस सेंटर पर ढोल नगाड़ों के साथ गोल्डन गर्ल्स का जोरदार स्वागत हुआ। भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान पुष्पा राणा की टीम ने एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने ईरान को 37-34 के अंतर से हराया। जाहिर है ये वो लम्हा है जिसका पुष्पा राणा को लंबे वक्त से इंतजार था और जिसके लिए वो लगातार कड़ी मेहनत कर रही थी।
4: चीज़ का सपना हम लोग लिटरली मतलब 4 साल से हम कंटिन्यू इस चीज़ की मेहनत कर रहे थे, और ये वाला सपना मेरा इसलिए भी पूरा ज़्यादा लग रहा है क्योंकि मैं एज अ कैप्टन टीम में लीड कर रही थी लाइक, और मेरे परिवार वालों का, मेरे मम्मी पापा का बहुत टाइम से ये वेटिंग में भी थे कि शायद कब मिले लाइक, तो अभी जब मुझे कैप्टनसी मिली और मेरी कैप्टनसी में गोल्ड मेडल आया तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश है और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश।
0: केरल के तिरुवनंतपुरम में एशियन गेम्स की डबल सिल्वर मेडल विजेता विदर्शा विनोद का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर केरलम खेल विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। जाहिर है विदर्शा के लिए ये यादगार पल है। उन्होंने जापान के नागोया में चल रहे एशियन गेम्स में शूटिंग में 2 सिल्वर मेडल जीता। केरल के कोझिकोड की रहने वाली इस स्टार परफॉर्मर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में सोनम मस्कर और इलावेनिल वलारिवन के साथ सिल्वर मेडल जीता, तो वहीं महिलाओं के 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में तिलोत्तमा सेन और आशी चौकसे के साथ पोडियम शेयर किया।
5: ग्रेटफुल दैट आई गॉट मेडल एंड दिस वाज माय फर्स्ट एशियन गेम्स एंड आई हैव माय मेडल, सो आई गॉट माय मेडल फॉर माय कंट्री, फॉर माय केरला पीपल एंड द लव ऑफ आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच एंड आई एम सो हैप्पी दैट द वेलकम आई गॉट इट्स ऑसम।
0: एशियन गेम्स में कुराश में ब्रॉन्ज जीतने वाली पिंकी बलहारा के घर जश्न का माहौल है। उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा है और पूरा परिवार बेटी की कामयाबी का जश्न मना रहा है। कुराश दरअसल मध्य एशिया के एक पारंपरिक मार्शल आर्ट और जैकेट रेसलिंग का ही रूप है। पिंकी बलहारा का ये एशियन गेम्स में लगातार 2वां सिल्वर मेडल रहा। पिंकी के परिवार को उम्मीद है कि बेटी देश के लिए गोल्ड लाने का सपना भी एक दिन जरूर पूरा करेगी।
6: फकर है मेरी कोख से वो जनी है कि बाहर जाके 7 बच्चे गए थे, हमारी पिंकी बलारा 3rd आई है चोट लगने के बाद, नहीं तो वो 2nd या 1st आती, उसको एलिमेंट में चोट लग गई, उसे उम्मीद थी कि मैं 1st आऊँगी, तो मुझे फर्क वो गर्व है कि बाहर देश जाके उसने भारत का झंडा लहराया।
0: एशियन गेम्स में अब तक भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है। भारत ने अब तक 52 मेडल जीते हैं। 4 अक्टूबर तक चलने वाले खेलों के इस महामेले में अभी कई कीर्तिमान रचे जाने बाकी हैं। लिहाजा भारत में खेल प्रेमियों को भी जश्न मनाने के कई मौके मिलेंगे। वहीं चैंपियंस के स्वागत अभिनंदन की ये तस्वीरें युवा खेल प्रतिभागियों के लिए प्रेरणा बनेगी और खेल की दुनिया में भारत की साख और मजबूत होगी। धर्मशाला से पूजा शर्मा के साथ दिल्ली से सिद्धार्थ विश्वनाथन, गुड न्यूज टुडे।
7: और इसी बीच ये शानदार खबर सामने आई है, एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड मिला है। जी हां, आपको बता दें कि भारत ने एशियन गेम्स के 4x400 मीटर महिला रिले रेस में गोल्ड जीत लिया है। टीम ने 3:29.69 सेकंड में रेस पूरी की है। इसके साथ ही एशियन गेम्स में भारत को 6 गोल्ड मिल चुके हैं। मंगलवार को भारतीय टीम ने एशियन गेम्स में लगातार 6ठी बार 50 मेडल का आंकड़ा भी पार किया। एशियन गेम्स हर साल 4 साल में हर बार होते हैं और 2006 से भारत हर बार 50 या ज्यादा मेडल जीत रहा है, और इस बार अभी तक का भी आपको बता दें कि 53 मेडल हमारी झोली में आ चुके हैं। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
8: हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट रही। मंगलवार 29 सितंबर को सेंसेक्स 243 अंक गिरकर 72,529 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 64 अंक फिसला, ये गिरकर 22,716 पर आ गया। दिल्ली में सोने की कीमतें 2 महीने में पहली बार 1.5 लाख रुपए के नीचे आई। स्थानीय स्तर पर मांग कम होने और अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के कारण दिल्ली सराफा बाजार में सोना 1400 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,48,600 रुपए हो गई। हालांकि चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 2,32,000 रुपए पर स्थिर है। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और अमेरिका ईरान के बीच बातचीत की उम्मीद से डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। मंगलवार को रुपया 2 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 95.95 रुपए हो गई।
7: चलिए न्यूज वक्त में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड और ब्रोंज। महिला रिले रेस 4x400 रेस में जीता सोना। मेंस 4x100 मीटर रिले में मिला ब्रोंज। भारत के खाते में अब तक 6 गोल्ड, कुल मेडल 53। केदारनाथ पैदल मार्ग स्थित चिरबासा स्लाइडिंग जोन में एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। करीब 9,000 यात्रियों को सुरक्षित रास्ता पार कराया। भारत की रक्षा शक्ति में होगा इजाफा। साल के अंत तक आएंगे तेजस MQ-1A फाइटर जेट के 12 और इंजन। HAL के पास 27 एयर फ्रेम तैयार। चलिए न्यूज वक्त में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
8: स्टेज पर सजी धजी खड़ी इन नन्ही बच्चियों ने अपनी मासूमियत से हर किसी का दिल जीत लिया। भरतनाट्यम की प्रस्तुति के लिए पारंपरिक पोशाक में तैयार बच्चों के चेहरे की क्यूटनेस और उनकी प्यारी अदाएं देखते ही बन रही हैं। इशारों से भाव जताती ये बच्चियां बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। उनकी मासूमियत और नटखट अंदाज ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सोशल मीडिया पर बच्चियों की ये प्यारी तस्वीरें और वीडियो खूब पसंद किए जा रहे हैं। प्यास किसे नहीं लगती, इंसान हो या जानवर, पानी हर किसी की जरूरत है। लेकिन इस हाथी का पानी पीने का अंदाज कुछ अलग ही है। पहले हाथी अपनी सूंड में पानी भरता है और फिर बड़े आराम से उसी पानी को अपने मुंह में डालकर पीता है। पानी पीने का यह अनोखा तरीका देखकर हर कोई हैरान है। हाथी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। उम्र छोटी है लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। कंधे पर ईंटों का बोझ उठाए ये बच्चा मेहनत करता नजर आ रहा है। बचपन खेलने और मुस्कुराने की उम्र होती है, लेकिन हालात जब जिम्मेदारियां बढ़ा दें तो छोटी उम्र में ही बड़े काम करने पड़ते हैं। बच्चे के कंधे पर रखा ईंटों का बोझ उसकी मेहनत और जिम्मेदारी दोनों की कहानी बयां कर रहा है। सोशल मीडिया पर बच्चे का ये वीडियो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।

0: अरुणाचल प्रदेश के वानू गांव की तीन छोटी बहनें अपनी सुरीली आवाज से इंटरनेट पर छा गई हैं। बिना किसी फैंसी सेटअप और बिना किसी फिल्टर के तीनों बहनों ने अपनी मासूम मुस्कान और खूबसूरत आवाज से लोगों का दिल जीत लिया। साथ में गाती इन बच्चियों का अंदाज बेहद प्यारा है। उनकी आवाज में मासूमियत भी है और हुनर भी। सोशल मीडिया पर बच्चियों का ये वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है और लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। खुश रहने के लिए दौलत नहीं, बस जज्बा चाहिए। इस महिला को देखकर जिंदगी का यही सबक मिलता है। सिर पर ईंटों का बोझ है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बरकरार है। इतना ही नहीं, ईंटों का वजन सिर पर संभालते हुए महिला शानदार तरीके से डांस भी करती नजर आ रही है। मुश्किल हालात के बीच उसका ये अंदाज हर किसी का ध्यान खींच रहा है। सोशल मीडिया पर महिला के हुनर और उसके गजब के बैलेंस की खूब तारीफ हो रही है।
1: न्यूज पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश में ट्रैफिक चालान की वसूली को लेकर सुझाए गए तरीके की। ये सुझाव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। देश में ट्रैफिक ई चालान की कमजोर वसूली पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ चालान जारी करना काफी नहीं, जुर्माना वसूलना भी जरूरी है। सुनवाई में कोर्ट को बताया गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 45,000 करोड़ रुपए के ई चालान हुए। इनमें से 25,000 करोड़ वसूले गए हैं, जबकि 20,000 करोड़ बकाया है। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस जेवी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों से चालान वसूल करने के कई तरीके पर चर्चा की। इनमें एक तरीका ये सुझाया गया कि बकाया चालान की राशि को वाहन मालिक के बिजली बिल से जोड़ दिया जाए। बिजली बिल नहीं चुकाया तो कनेक्शन कट जाएगा। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि बकाया चालान वाले वाहनों को परिवहन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट करने की व्यवस्था पर विचार हो। दूसरे तरीकों में बताया गया कि चालान का भुगतान होने तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नवीनीकरण, डुप्लीकेट आरसी और वाहन का मालिकाना हक ट्रांसफर रोका जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि चालान बकाया वाले वाहनों को फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्र भी ना दिए जाए। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण रोकने या फिर मौजूदा लाइसेंस निलंबित करने पर भी विचार। सुप्रीम कोर्ट में कोयम्बटूर के ऑर्थोपेडिक सर्जन एस राजशेखरन ने 2012 में रोड सेफ्टी को लेकर एक जनहित याचिका डाली थी, जिसमें ई चालान व्यवस्था और वसूली का मामला भी जुड़ा हुआ है। चालान वसूली को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बताए गए विकल्पों को लेकर हमने जयपुर में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
2: जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो जनता से पूछ रहे हैं कि उसको लाइट के साथ जोड़ दें, मेरे हिसाब से जोड़ देना चाहिए, क्योंकि जनता पे जब तक कानून की पालना कराने के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेंगे तब तक जनता मानेगी नहीं। और कुछ जगह सरकार को भी ऐसे काम करने चाहिए, जैसे कहाँ कहाँ चालान है, कहाँ स्पीड का कहाँ चालान हो रहा है, किस जगह हो रहे हैं, वहाँ पे सूचना के वो बोर्ड लगने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना चाहिए कि आप ट्रैफिक के लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ रेड लाइट पर रुकना है या कहाँ कितनी स्पीड चलानी। हाईवे पर मैं देखता हूँ, मेरे खुद के एक चालान हुआ है, मेरे जैसे मैसेज आया मुझे खुद को पता ही नहीं चला कि ये चालान कैसे हुआ मेरा। बाद में पता चला कि मैंने स्पीड जहाँ 80 थी वहाँ मैंने 90-100 पे चला रहा था, उसकी वजह से हुआ। तो पहले सबसे पहले तो जनता को जागरूक करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ चालान है, कितनी स्पीड कहाँ होनी चाहिए, बोर्ड लगे होने चाहिए। कई बार ऐसी भी होती है सरकार सूचना के वो बोर्ड नहीं होते कि कहाँ कितनी स्पीड होनी चाहिए। कार भी उसी स्पीड में चल रही है, ट्रक भी उसी स्पीड में चल रहा है, तो थोड़ा सा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड लगने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का है कि लाइट के कनेक्शन के साथ साथ और भी सीधा, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर देश के ने जो कानून बना दिया सरकार ने, उसकी अगर पालना नहीं होता था, पालना नहीं हो रही, तो आप लाइट के बिल के साथ नहीं, डायरेक्ट अकाउंट से उसको जोड़ दे और एक और ऐसा डिसीजन लेके आए ताकि कि भाई आप अगर इनको नहीं जमा कराओगे तो आपके इस तरह का सजा का प्रावधान रहेगा या फिर आप पे और भी कोई इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। तो देखो, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती है, तो इस कानून को पालन कराने के लिए कठोर होनी चाहिए।
3: सुप्रीम कोर्ट ने जो सजेशन दिया है वो आम जनता के हिसाब से तो ठीक नहीं है, क्योंकि आम जनता को अगर बिल के साथ, अगर बिजली के बिल के साथ इस चीज़ को जोड़ा जाता तो बहुत से लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि अगर लोगों को भरना होता तो सारे लोग गाड़ियां चला रहे हैं वो गाड़ियों के चालान ही भर देते। बिजली के बिल को जोड़ने से बहुत सी चीज़ों को अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसपोर्ट जो नियम है उनको थोड़ा सा और सख्ती से पालन किया जाए कि 5, 10, 15 जितने भी चालान है इसके बाद में गाड़ी को सीज कर दिया जाए या उसी को इंश्योरेंस में जोड़ दिया जाए या गाड़ी की किसी न किसी कुछ ही कंडीशन ऐसी लगा दी जाए जिससे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उन चीज़ों को हैंडल करे। आम
1: नवरात्रि से पहले प्रेम मोल लिया फिल्म का जय अंबे सॉन्ग जारी हुआ। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें

0: प्रेम मोलिया की टीम ने फैंस को एक और म्यूजिकल तोहफा दिया है। फिल्म के टाइटल ट्रैक के बाद अब नवरात्रि के रंग में रंगा गाना जय अम्बे बोल रिलीज हो गया है। भक्ति और जश्न से भरपूर इस गाने को हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया है, जबकि हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल ने इसे अपनी आवाज दी है। गीत के बोल मयूर पुरी ने लिखे हैं। सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी फिल्म में आयुष्मान खुराना और शर्वरी मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म 27 नवम्बर को रिलीज होगी।
1: और अब बात रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण की। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म रामायण में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे। रामायण के ट्रेलर ने इस फिल्म की छोटी सी झलक भी दिखा दी है, लेकिन अब रामायण के मेकर्स ने फैंस की बेताबी को और बढ़ाते हुए फिल्म का एक खास BTS वीडियो शेयर किया है, जिसमें राम के लिए रणबीर कपूर को चुने जाने से लेकर उनके ट्रांसफॉर्मेशन की झलक भी दिखाई गई है।

0: कर उसकी
1: 70 mm के पर्दे पर दस्तक देने जा रही रामायण महज एक फिल्म नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का संसार है जिसे पर्दे पर उतारना आसान नहीं। राम महज एक किरदार नहीं, करोड़ों लोगों के दिलों में बसी एक छवि है, दिव्य, आकर्षक और मर्यादा से परिपूर्ण।
2: विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार।
1: जाहिर है जब ऐसे किरदारों को पर्दे पर उतारना हो तो उस किरदार के साथ न्याय करने के लिए उसे निभाने वाले कलाकारों को ही नहीं पूरी टीम को खुद को झोंक देना होगा।
2: निर्णय मैं ले चुका हूँ, एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है।
1: रामायण में राम का किरदार निभा रहे रणबीर कपूर के 44वें जन्मदिन पर मेकर्स ने फिल्म की मेकिंग का एक खास BTS वीडियो शेयर किया है जिसमें उनके रोल के लिए चुने जाने और उनके ट्रांसफॉर्मेशन की झलक दिखाई गई है। इस वीडियो में रणबीर कपूर से लेकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीता का रोल निभाने वाली साई पल्लवी, दशरथ का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल, टीम के तमाम सदस्यों ने राम को लेकर अपने अनुभव शेयर किए हैं।
3: रामायण को परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसकी डेफिनेशन नहीं है कोई, बल्कि हम ये कहें कि रामायण हमारा गौरव है, रामायण हमारा मान है, हमारा अभिमान है, हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, सब कुछ हमारे यहाँ हमारे लिए रामायण है।
4: श्री राम की कास्टिंग मतलब ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हम केवल प्रयास कर सकते हैं।
2: भगवान राम की सबसे बड़ी शक्ति उनका धनुष नहीं था, उनकी क्षमा थी, हिज एबिलिटी टू फॉरगिव।
1: रणबीर कपूर ने वीडियो में साफ कहा है कि भगवान राम का किरदार पाकर वो सिर्फ एक्साइटेड नहीं हो गए थे बल्कि इसे उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर लिया। उनके मुताबिक इस किरदार को निभाने का मतलब सिर्फ स्क्रीन पर राम बनना नहीं बल्कि उन करोड़ों लोगों के भरोसे को कामयाब रखना भी है जिनके लिए भगवान राम आस्था का प्रतीक है।
2: रोल नहीं है, इट्स नॉट कि मुझे एक फिल्म ऑफर हुई है और ये रोल एक्साइटिंग है, ये एक जिम्मेदारी है।
1: रामायण के सेट का माहौल कैसा रहा होगा, अपने किरदार में रणबीर कपूर किस कदर डूबे होंगे, इसके बारे में बताते हुए अरुण गोविल ने कहा कि रणबीर का व्यवहार पूरी तरह सादगी से परिपूर्ण था, कुछ ऐसा जिसकी कल्पना वो भगवान राम के किरदार को लेकर करते थे।
3: सोचता था कि राम ऐसे चलते होंगे, ऐसे बैठते होंगे, ऐसे देखते होंगे, ऐसे बात करते होंगे, तो दोनों तीनों चीजें हैं उनमें। नॉर्मली यू डोंट एक्सपेक्ट के एक स्टार जो है वो आकर पांव छुए मेरे, ही ऑलवेज डज इट।
1: साई पल्लवी कहती है कि बचपन में हमने एक इमेज इमेजिन की थी कि राम भगवान है और उनके साथ सीता है। अब मैं उन राम को रणबीर में देख कर हैरान थी।
5: अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार।
6: There is a very slender Ram and his head is a little tilted and there's this bow this way and there's a very

0: small, petite Sita and there's a Ram on the other side. So that's the image I remember from my childhood. Now suddenly I could see that Ram that I'd seen in my childhood and I was awestruck.
1: फिल्म में लक्ष्मण का किरदार निभा रहे रवि दुबे ने भी रणबीर की तारीफ की. उन्होंने रणबीर की आंखों में वही शांति महसूस की जिसे वो भगवान राम की सादगी से जोड़कर देखते हैं.
2: तो मुझे लगता है कि ये एक बीट, ये सिंपलिसिटी जो श्री राम की है, मैं यही सिंपलिसिटी मैं रणबीर भाई की आंखों में भी कई दफा देखता हूँ.
1: इस वीडियो में दिखाया गया कि रामायण की कहानी भले ही भारतीय पौराणिक परंपरा और भगवान राम से जुड़ी हो, लेकिन इसे बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी में भारतीय और इंटरनेशनल टीम ने साथ काम किया है. फिल्म के एक्शन डायरेक्टर टेरी नोट्री ने रणबीर को एक्शन सीक्वल के लिए ट्रेनिंग दी है. टेरी बड़े इंटरनेशनल प्रोडक्शन पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं. बीटीएस वीडियो में दुनिया भर से आए स्टंट और एक्शन प्रोफेशनल्स को फिल्म के सीक्वल और किरदारों पर काम करते देखा जा सकता है. रामायण के इस बीटीएस वीडियो ने फैंस को फिल्म की तैयारी और रणबीर के किरदार के पीछे की मेहनत की झलक दे दी है. अरुण गोविल की तारीफ, नितेश तिवारी का भरोसा और रणबीर की अपनी जिम्मेदारी वाली बात ने इस वीडियो को और खास बना दिया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि बड़े पर्दे पर रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार को किस तरह जीवंत करते हैं. रामायण पार्ट 1 6 नवंबर को दिवाली के मौके पर रिलीज होगी. ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.
3: जॉर्जियो अरमानी ने लॉन्च किया इवोल्यूशन कलेक्शन. आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां दुनिया भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार.
4: फैशन की दुनिया में जॉर्जियो अरमानी ने महिलाओं के परिधानों का नया कलेक्शन लॉन्च किया है. इवोल्यूशन नाम के इस कलेक्शन में अरमानी के सिग्नेचर स्टाइल की झलक साफ दिखाई दी. आइवरी, ब्लैक और सुनहरे रंगों को खास तौर पर शामिल किया गया है. कलेक्शन में 80 के दशक से पेट, शार्प शोल्डर जैकेट, घुटने तक के ट्राउजर, बोल्ड ज्योमेट्री और बॉडी स्कीमिंग इवनिंग गाउन पेश किए गए. इस बीच फैशन हाउस बाहरी निवेशकों को शुरुआती 15% हिस्सेदारी बेचने की योजना पर भी काम कर रहा है. चीन ने अपने हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क का और विस्तार किया है. देश में 4 नई हाई स्पीड रेलवे लाइनें खोली गई हैं. इनमें एक अहम लाइन उत्तर पश्चिम चीन के सांगशी प्रांत की राजधानी शियान को उसी प्रांत के अनकांग शहर से जोड़ती है. नई रेल सेवा शुरू होने के बाद दोनों शहरों के बीच का सफर महज 45 मिनट में पूरा होगा. खास बात यह है कि पहले इसी दूरी को तय करने में करीब 3 घंटे लगते थे. नई लाइनों के साथ चीन का दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क और बढ़ गया है. SpaceX का अगली पीढ़ी का स्टारशिप रॉकेट इंजन की समस्या के बावजूद कक्षा तक पहुंचने में कामयाब रहा. करीब 40 मंजिला ऊंचा मानव रहित रॉकेट मेक्सिको की खाड़ी के किनारे स्थित स्टार बेस से लॉन्च किया गया. मिशन का मकसद स्टारलिंक उपग्रहों के पहले बैच को तैनात करना था. रॉकेट में सुपर हेवी बूस्टर और उसके ऊपर स्टारशिप का ऊपरी चरण मौजूद था. लाइव स्ट्रीम के दौरान एक इंजन के समय से पहले बंद होने की जानकारी दी गई. इसके बावजूद मिशन ने कक्षा तक पहुंचकर कामयाबी हासिल की. शंघाई में 48वीं वर्ल्ड स्कस प्रतियोगिता का समापन हो गया. दुनिया भर के प्रतिभागियों ने अलग अलग कौशल क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. इस बार प्रतियोगिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI केंद्रित कार्यक्रमों की भी शुरुआत की गई. बदलती तकनीक और रोजगार की जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने के लिए पारंपरिक कौशल के मूल्यांकन मानकों को भी आगे बढ़ाया गया. प्रतियोगिता के जरिए युवाओं को भविष्य के बदलते कार्यक्षेत्र की जरूरतों के मुताबिक तैयार करने और आधुनिक तकनीक के साथ कौशल को जोड़ने पर जोर दिया गया.
3: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा. ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर.
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ.
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
3: अविश्वास में विश्वास बसता है.
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
1: भारतीय चेस ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख को मिला बेस्ट फीमेल चेस प्लेयर का FIDE एक्सलेंस अवार्ड। खेल जगत से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर।
2: भारत अंडर 19 ने पहले यूथ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को पारी और 48 रन से हरा दिया। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने पहली पारी में 494 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 217 और दूसरी पारी में 229 रन पर ही सिमट गई। भारतीय टीम की जीत में लक्ष्य रायचंदानी के दोहरे शतक ने बड़ी भूमिका निभाई। ये दो मैचों की सीरीज है। इससे पहले वनडे सीरीज को भारत ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। भारतीय चेस ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख बेस्ट फीमेल चेस प्लेयर बन गई हैं। उन्हें फिडे एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। पिछले एक साल में वुमेन्स वर्ल्ड कप में उनके खिताबी प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें ये सम्मान मिला है। समरकंद में हुए 46वें चेस ओलंपियाड के बाद हुए फीड एक्सीलेंस अवार्ड्स में भारतीय चेस का दबदबा रहा। ओपन और वुमेन्स नेशनल टीमों को सभी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा कम्बाइंड पॉइंट्स हासिल करने के लिए बेस्ट टीम चुना गया। वहीं भारत ने लगातार तीसरी बार नोना गैब्रिएन्डाश्विली ट्रॉफी अपने नाम की।
1: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी सोच।
1: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
1: एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड और ब्रॉन्ज। महिला रिले रेस 4x400 रेस में जीता सोना। मेंस 4x100 मीटर रिले में मिला ब्रॉन्ज। भारत के खाते में अब तक 6 गोल्ड, कुल मेडल 53। केदारनाथ पैदल मार्ग स्थित चिरबासा स्लाइडिंग जोन में एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। करीब 9,000 यात्रियों को सुरक्षित रास्ता पार कराया। भारत की रक्षा शक्ति में होगा इजाफा। साल के अंत तक आएंगे तेजस MK-1A फाइटर जेट के 12 और इंजन। HAL के पास 27 एयरफ्रेम तैयार। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास नेशनल हाईवे 911 मिलिट्री रनवे में बदला। भारतीय सेना की एविएशन यूनिट्स ने हाईवे पर की लैंडिंग की प्रैक्टिस। तकनीकी खराबी की वजह से बिजनौर में खेत में उतरा हेलीकॉप्टर। गांव में मचा हड़कंप, देखने उमड़े लोग। आसमान में उड़ता रहा दूसरा हेलीकॉप्टर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना।
1: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष की, जिसमें पूर्वजों की मोक्ष के लिए तर्पण और पिंडदान का विधान है। और इसके लिए भारी तादाद में लोग प्रयागराज, वाराणसी और सबसे ज्यादा गया जी में पहुंच रहे हैं। आज आपको इन तीनों जगहों के अलावा बद्रीनाथ धाम के पास ब्रह्म कपाल के बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि मान्यता ये है कि यहाँ पितरों के लिए किए गए अनुष्ठान से उनको मुक्ति मिलती है। लेकिन इसके साथ ही बात होगी ऑनलाइन तर्पण या पिंडदान की। बदलते दौर में लोगों की सुविधा के मुताबिक प्रयागराज के पुरोहित ऑनलाइन तर्पण करा रहे हैं, लेकिन वहीं पर इसे लेकर वाराणसी में विरोध है। क्या मोबाइल पर मोक्ष की पूजा मुमकिन है? आज इस पर भी हम बात करेंगे। पितृपक्ष की शुरुआत के साथ ही पवित्र तीर्थ स्थान जैसे प्रयागराज और वाराणसी में भीड़ उमड़ने लगी। पूर्वजों के मोक्ष के लिए तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठान किए जा रहे हैं। विधि विधान तो वही है, लेकिन बदलते दौर में तौर तरीके जरूर बदल गए हैं। प्रयागराज और काशी जैसे तीर्थ स्थलों पर जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, वहीं पर अब मोबाइल के जरिए ऑनलाइन तर्पण और पिंडदान की सुविधा भी मिल रही है। विदेश में रहने वाले या किसी वजह से तीर्थ नहीं पहुंच पाने के कारण लोग इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन कर्मकांड को लेकर पुरोहितों और श्रद्धालुओं के बीच मतभेद है। रिपोर्ट देखिए।

0: धारा प्रवाह मंत्र बांचते पुरोहित और नियम पूर्वक पिंडदान करते यजमान। पितृपक्ष में पूर्वजों के लिए पूजा और तर्पण करने वंशजों की भारी भीड़ है। चाहे तीर्थराज प्रयाग हो या फिर काशी का घाट, लेकिन पुरोहित और यजमान का जो ये सीधा कनेक्शन है उसमें अब इंटरनेट और मोबाइल फोन की भी एंट्री हो चुकी है। तर्पण हो पिंडदान, विधि विधान नहीं बदले, पर बदलते दौर में इतनी सुविधा तो हो गई है कि अगर किसी कारणवश प्रयागराज या काशी नहीं पहुंच पाए तो ऑनलाइन पूजा करा सकते हैं। ऑनलाइन दर्शन और ऑनलाइन अनुष्ठान की तरह ही पुरोहित ऑनलाइन पिंडदान की सुविधा दे रहे हैं, खासकर ऐसे लोग जो विदेश में हैं या दिव्यांग हैं, उनके लिए ये सुविधा बड़ी राहत है।
1: यहाँ पर काफी संख्या में लोग देश विदेश से लोग आ रहे हैं यहाँ पिंडदान करने के लिए, और सबसे बड़ी चीज ये कि एक व्यवस्था तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से लागू हुई है कि जो लोग विदेश में बैठे हैं यहाँ पे आके पिंडदान नहीं कर सकते, या जो वृद्ध विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, जो आने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। साथ ही यहाँ पर ऑफलाइन लोग आ रहे हैं और ये हमेशा से आते चले आ रहे थे। आप देख सकते हैं संगम क्षेत्र में चारों तरफ तीर्थ पुरोहितों के घाट में हर जगह से यात्री आए हुए हैं, मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, एमपी, यूपी, न जाने कहां कहां से लोग आ रहे हैं और अपने पितरों का पिंडदान सर्वप्रथम प्रयागराज में करके इसके बाद काशी जाएंगे, काशी के बाद गया जाएंगे, विष्णु मुख प्रयाग, विष्णु नाभि काशी, विष्णु चरण गया, तो तीनों जगह पिंडदान होगा।
2: ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है?
1: जी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है। ऑनलाइन व्यवस्था स्पेशली जो एनआरआई लोग बैठे हुए विदेशों में, ये इनके लिए है, और साथ ही जो दिव्य वृद्ध विकलांग है, जो चलने में असमर्थ है, उनके लिए है। नहीं तो बाकी जो कॉमन पर्सन है और जो आ सकते हैं तो उनके लिए ऑफलाइन व्यवस्था है।
0: मान्यता है कि पितृपक्ष में पवित्र तीर्थ स्थलों पर पिंडदान करने से पूर्वजों को शांति मिलती है, परिवार में सुख शांति समृद्धि आती है, और पूर्वजों का आशीर्वाद मिले तो बिगड़े काम बनते हैं। इसलिए देश के कोने कोने से लोग प्रयागराज और काशी आते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये धार्मिक परंपरा इसी तरह निभाई जाती है। जो आ सकते हैं सब परिवार आए हैं और पूरे नियम से पिंडदान कर रहे हैं।
3: बैतूल से आए हैं, मध्य प्रदेश से, पितरों का पिंडदान करने के लिए, ताकि हमारे पितरों को आत्मा की शांति मिले, हमारे घर में सुख शांति प्राप्त हो, इसीलिए हम यही कामना करके पिंडदान करने आए हुए हैं। अभी प्रयागराज आए हुए, यहाँ से हम काशी जाएंगे, वहाँ से गया जी जाएंगे।
4: पितृदान करने आए हैं और पितृ सुख शांति के लिए यहाँ पर आए हैं हम लोग, और ये 3 दिन तक का जो कार्यक्रम चलेगा इसमें हम लोग सब पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। हम अपने पितरों को मोक्ष दिलाने और सुख शांति के लिए यहाँ।
0: हालांकि सभी के लिए ये मुमकिन नहीं कि पितृपक्ष में प्रयागराज या वाराणसी पहुंच पाए, पर पूर्वजों के प्रति मन में श्रद्धा है और उनके लिए दान करने का भाव है। ऐसे लोग मोबाइल फोन के जरिए यानी ऑनलाइन तर्पण करा रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि पिंडदान के लिए प्रयागराज और वाराणसी का विशेष महत्व है।
1: किसी कारणवश नहीं आ पा रहे, कोई बीमार है, कोई चल फिर नहीं पा रहा, कोई दिव्यांग है, आने में असमर्थ है, विदेश में है, वो आ नहीं सकता है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है ऑनलाइन व्यवस्था हम लोगों ने प्रारंभ की है। और इस अभी हम लोग जो है अभी एक अमेरिका में करा चुके हैं, और आज जो ये पिंडदान करा रहे थे हम लोग, ये मलेशिया में करा रहे थे, तो ऐसे थे लोग
2: धार्मिक परंपरा
1: जी धार्मिक परंपरा जुड़े रहे। लोग विदेश चले जाते हैं मगर अपने मूल संस्कृति को नहीं भूलते हैं, और अब तो ऐसी व्यवस्था हो गई कि जो नहीं भी कर पाते थे विदेश में रहने के बाद, अब वो लोग भी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक अच्छी व्यवस्था लागू हुई है कि किसी के मनोरथ, किसी का मनोकामना है वो पूर्ण होगा, किसी के पितर जो है तरेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। बस एक बात को ध्यान रखना, ये व्यवस्था उन लोगों को लिए जो आने में असमर्थ हैं, जो समर्थ हैं अगर वो अगर ऐसा करते हैं ये उचित नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर आकर करें।
0: ऑनलाइन पिंडदान से यजमान तो प्रसन्न है और पुरोहित को भी समस्या नहीं, पर ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पूजा पाठ और भावना में ऑनलाइन दखलंदाजी पसंद नहीं आ रही।
5: बार बार मैं जब से ऑनलाइन श्राद्ध चालू हुआ, मैंने ऑनलाइन श्राद्ध से भरोसे किया, ऑनलाइन श्राद्ध होता ही नहीं है, ऑनलाइन से पूजा भी कुछ नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या है, चलो भाई दर्शन हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ऑनलाइन आप देख सकते हैं। श्राद्ध का मतलब मुझे स्वयं अपने हाथ से करना है, मैं ऑनलाइन आपको भोजन भेज रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, तो मैं श्राद्ध भी चढ़ाने को तैयार हूँ, मैं वर्जित रखा हूँ, लेकिन बहुत से ब्राह्मण है जो हमारे बिना अनुमति से शराब है जिसको मैं मना करता हूँ, लेकिन उन्होंने चाहे गुरु जी पीछे से आया है अधिकारी ने बोला है करा दीजिए, तो इसलिए थोड़ा सा निवेदन है कि ऑनलाइन शराब के लिए फले ही नहीं, निर्माण अगर अनुरोध नहीं करेगा पंडित चराएगा नहीं।
0: देखिए तो ये विरोधाभास है, क्योंकि जहां प्रयागराज में पुरोहित ऑनलाइन तर्पण या पिंडदान के लिए तैयार हैं, वहीं वाराणसी के पिशाच मोचन तीर्थ पर ऑनलाइन श्राद्ध को वर्जित कर दिया गया है और पुरोहितों का एक बड़ा तबका इसके विरोध में है। यहां आने वाले यजमान भी मानते हैं कि पूर्वजों के लिए पूजा अपने हाथ से ही हो तो बेहतर है।
6: जो कार्य अपने निष्ठा से और हाथों से बढ़िया से हो जाए, यहां पे मौजूद होके पितृ पक्ष में जो है पिशाच मोचन में वो कार्य अच्छा है और ऑनलाइन साधन से कोई मतलब नहीं हमारे हिसाब से। नहीं नहीं है तो सही, वो जो कार्य किया गया है वो बढ़िया है, जो ऑनलाइन साधन है उसमें क्या होता है क्या नहीं होता उसका कुछ पता नहीं है क्या करते हैं पंडित जी लोग, लेकिन जो आपके सामने होता है आप भी संतुष्ट रहते हैं। सबसे मेन व्यक्ति तो आदमी का संतुष्टि के लिए, जब आप संतुष्टि नहीं रहेंगे तो फिर श्राद्ध कराने से क्या फायदा है।
5: नहीं ऑनलाइन इससे बेहतर है, ऑनलाइन से पूजा नहीं है, इट्स ऑफ योर लाइक मन को संतोष नहीं है, अगर पुराना सभ्यता को मानते हैं तो यहाँ पर पुरानी सभ्यता के अनुसार नहीं चलना चाहिए।
0: पिशाच मोचन पर श्राद्ध तर्पण, त्रिपिंडी श्राद्ध पिंडदान और नारायण बलि श्राद्ध का विशेष महत्व है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं और पुरोहितों के निर्देश पर मंत्रोच्चार के साथ कर्म कांड पूरा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ ऑनलाइन पर पूरी तरह रोक लग गई हो, किसी और शहर में रहने वाले अपने यजमानों को पुरोहित ये सुविधा दे रहे हैं। हाँ, मोबाइल का इस्तेमाल खुलेआम नहीं किया जाता। पूर्वजों के लिए पिंडदान या तर्पण ऑनलाइन हो या नहीं, इसे लेकर बहस हो सकती है, लेकिन अज्ञात लोगों के लिए यानी जिनका कोई वंशज न हो, कोई भी पिंडदान कर सकता है। और पिछले कई वर्षों से ये झांसी में ये काम जितेंद्र तिवारी कर रहे हैं। इस साल भी अज्ञात अनाथ और लावारिश दिवंगत आत्माओं के लिए सामूहिक तर्पण और पिंड पूजन किया गया। इसमें पुरोहितों और धर्माचार्यों के साथ बड़ी तादाद में आम लोग भी शामिल हुए और इसके साथ ही 878 परिवारों के पूर्वजों के पिंड लेकर सामाजिक कार्यकर्ता गया जी के लिए रवाना हुए।
7: देखिए, जिनका संसार में कोई नहीं है, अज्ञात अनाथ लावारिस या जिनका कोई और नहीं है संसार में, उनका आज हमने झांसी के सिपरी बाजार पहुंच नदी पर पिंड पूजन का काम किया और कल हम लोग 8:30 बजे चंबल एक्सप्रेस से उनका पिंडों को लेकर, पवित्र पिंडों को लेकर तीर्थराज ग्याजी में पिंडदान करने के लिए जाएंगे। मैं बता दूं आपको कि उसके साथ साथ वो परिवारों का भी पिंड लेकर मैं जा रहा हूं जो किसी कारण पर तीर्थराज गया जी नहीं जा सकते, किसी की आस्था बहुत है लेकिन असमर्थ है जाने में गया जी। तो पिछली बार मुझे 500 से अधिक परिवारों ने अपने दिवंगतों का नाम नोट कराया था, पूर्व परिजनों का, और इस बार 878 से अधिक परिवारों ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, अपने पूर्वजों का नाम अंकित कराया, तो मैं उनके पवित्र पिंडों को लेकर कल तीर्थराज ग्याजी जा रहा हूँ। इस प्रकार का विचार, जब मैं अपने माता पिता का पिंडदान करने तीर्थराज ग्याजी गया तो वहाँ पर पंडा पुरोहितों ने जब हमसे संकल्प कराया तो उन्होंने कहा कि संसार में जिसका भी पिंडदान नहीं होता, इवन जीव जंतु पशु पक्षी का भी, तब वो दिवंगत आत्मा को मोक्ष की प्राप्त नहीं होती है। तब मैंने उनसे प्रश्न किया कि महाराज, यदि जिनका संसार में कोई नहीं होगा तो उनका कैसे होगा? तो उन्होंने कहा उसका संकल्प या तो देश के राजा को लेना चाहिए या कोई भी अन्य व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से बिना पैसा लिए यदि उनका पिंडदान करेगा तो उनकी दिवंगत आत्मा को मोक्ष की गति प्राप्त होगी। तो मैंने उस संकल्प को लिया और लगातार कई वर्षों से मैं उनका पिंडदान करने जा रहा हूँ।
0: ये प्रण इस भावना से जुड़ा है कि ज्ञात हो या अज्ञात, सभी आत्माओं की शांति और संतुष्टि के लिए पिंडदान जरूरी है और पितृपक्ष का महत्व भी इसीलिए है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: पिंडदान और तर्पण के लिए जो महत्व प्रयागराज और वाराणसी का है, वैसा ही महत्व बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल का भी है, जहां पर देखिए देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु अपने पितरों और पूर्वजों की मोक्ष की कामना करने के लिए पहुंच रहे हैं। ब्रह्म कपाल में सुबह से शाम तक पिंडदान और तर्पण का सिलसिला जारी है। मान्यता है कि यहां पिंडदान और तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मान्यता है कि यहां पर पिंडदान करने के बाद अन्य स्थानों पर पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं होती। पौराणिक कथा के अनुसार अगर हम देखें तो भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले यहाँ पर पिंडदान किया था, इसके लिए भी इसका महत्व माना जाता है। अपनों के जाने के बाद भी उनसे जुड़ी यादें और जिम्मेदारियां हमारे साथ रहती हैं। पितृपक्ष में यही भाव गयाजी में आस्था बनकर नजर आ रहा है। बारिश की बूंदों के बीच भी श्रद्धालुओं के कदम नहीं रुक रहे। कोई तर्पण कर रहा है तो कोई पिंडदान के जरिए अपने पितरों की सदगति की कामना कर रहा है। गयासुर की प्राचीन कथा हो या माता सीता के पिंडदान की मान्यता, गयाजी में हर परंपरा अपने साथ आस्था और विश्वास की कहानी समेटे है। रिपोर्ट देखिए।
9: दान, तर्पण और प्रार्थना, ये उस अटूट विश्वास का प्रमाण है कि गया जी में की गई ये पूजा पूर्वजों की मुक्ति का मार्ग है। बारिश की बूंदे बरस रही है, किसी के हाथ पे छाता है तो किसी ने प्लास्टिक की ओट ले रखी है, लेकिन श्रद्धा की राह में मौसम आड़े नहीं आता। गया के देव घाट पर श्रद्धालु अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। कोई मंत्रों उच्चार के बीच तर्पण कर रहा है तो कोई पूरे विधि विधान से पिंड अर्पित कर रहा है। होठों पर मंत्र है और मन में अपनों के लिए आत्मिक शांति की कामना।
10: हम अपने माँ बाबू जी का
11: क्या बात है यार?
10: ऐसा सुना जा रहा जाता है कि पिंड बैठा देने पर वो लोग को मुक्ति मिल जाएगी, भक्त मिल जाएगा। अब तो वो तो करना ही होगा, बारिश हो क्या आंधी हो कि तूफान हो, तो करना ही होगा। माँ बाबूजी के लिए तो इतना करेंगे।
9: गया जी में 15 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले में देश विदेश से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। गया के विष्णुपद मंदिर क्षेत्र और फल्गु नदी के किनारे कर्म कांड किए जा रहे हैं। कोई माता पिता के लिए आया है तो कोई पति या परिवार के दूसरे सदस्यों को स्मरण कर रहा है। बेटा ही क्यों, ये बेटी के लिए भी अपने पुरखों के प्रति श्रद्धा भाव दिखाने का अवसर है।
12: माता पिता का श्राद्ध करने के लिए गया जी तीर्थ में आए हैं हम लोग। तो सुना है यहाँ पिंडदान करने से पितृलोक तृप्ति होते हैं, पितृलोक को पुण्य मिलता है, इसीलिए हम लोग यहाँ गया जी में पिंडदान करने के लिए आए हैं अपने पितरों के नाम।
9: सनातन परंपरा में मनुष्य पर देव ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण बताए गए हैं। पितृ पक्ष में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने को इसी दायित्व से जुड़ा कर्म माना जाता है। गया को इसी वजह से पितृ तीर्थ और मोक्ष की भूमि कहा जाता है। गरुड़ प्राण और विष्णु प्राण में भी गया में पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध की महिमा का उल्लेख मिलता है। इसी धार्मिक विश्वास के चलते हर साल बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। गया जी की पहचान से जुड़ी एक प्राचीन कथा गयासुर की भी है। मान्यता है कि गयासुर ने कठोर तपस्या कर ऐसा वर प्राप्त किया था जिससे उसकी देह पवित्र हो गई। देवताओं ने यज्ञ के लिए उसका शरीर मांगा और गयासुर उसके लिए तैयार हो गया। कहा जाता है कि लेटने पर उसका शरीर 5 कोस तक फैल गया और इसी क्षेत्र का नाम गया पड़ा। बाद में उसने वर मांगा कि यहाँ श्रद्धा से कर्म करने वाले लोगों के पितरों को सदगति मिल जाए। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने उसकी इच्छा स्वीकार की।
13: यहाँ गयासुर नाम का एक राक्षस था, उसके ऊपर यज्ञ किया था देवताओं ने, तो यज्ञ 100 साल यज्ञ किया, उसके बाद फिर भी वो मरा नहीं, और जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो वो उठ के चल दिया तो सभी देवता परेशान हुए। तो भगवान विष्णु आए, भगवान विष्णु ने अपना उसके ऊपर पैर रखा, पूरा वजन रखा, तब उसके प्राण निकले। तो फिर भगवान ने कहा कि आप जो भी मांगना चाहें वो आप मांग सकते हैं, मैं भगवान हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं बस केवल एक ही चीज़ मांगता हूँ कि मेरे यहाँ पर जो भी यहाँ अपने पितरों का पिंडदान करेगा या अस्थि दान करेगा, तो उसका पिता या जो उनके बुजुर्ग लोग हैं जो शरीर पूरा कर चुके हैं, उनके लिए मुक्ति मिले, स्वर्ग मिले, ये मेरी कामना है। तो जी, तो ऐसा ही वर दे करके, और उसी जगह के लिए एक विष्णुपदी यहाँ पर स्थान है, ये तो फल्गु गंगा है, ये विष्णुपदी जगह है, वहाँ पर भगवान विष्णु का पद बना हुआ है वो ही।
9: इसी परंपरा से जुड़ी एक और कथा भगवान श्री राम और माता सीता की है। मान्यता है कि राजा दशरथ का श्राद्ध करने दोनों गया पहुँचे थे। कहा जाता है कि श्री राम पूजा की सामग्री लेने गए तो माता सीता के सामने दशरथ का हाथ प्रकट हुआ और उन्होंने पिंड देने की इच्छा जताई। इसके बाद सीता ने फल्गु नदी की रेत से पिंड बनाकर उन्हें अर्पित किया। आज भी ये कथा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के बीच आस्था का हिस्सा बनी हुई है। महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान और भी अलग अलग स्थानों से लोग गया पहुँचे हैं। यहाँ आए श्रद्धालु भी इसी भावना के साथ गया जी पहुँचते हैं। वो अपने माता पिता के लिए पिंड दान कर रहे हैं। पितृपक्ष के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुविधाओं और सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया है। गया में सोमवार को 3,95,000 श्रद्धालुओं की मौजूदगी दर्ज हुई। 9,768 लोगों ने मेडिकल सुविधा ली, जबकि 70 बुजुर्गों ने व्हीलचेयर का इस्तेमाल किया। अब तक गया पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या 4,60,200 दर्ज की गई है। गया जी सिर्फ आम श्रद्धालुओं के लिए ही आस्था का केंद्र नहीं है, देश की जानी मानी हस्तियां भी यहां पितरों के लिए कर्म कांड करने पहुंचती रही है। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने 2024 में पितृपक्ष के दौरान विष्णुपद मंदिर में अपने माता पिता की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण किया था। वहीं देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी भी अपने बेटे अनंत अंबानी के साथ पिछले साल विष्णुपद मंदिर पहुंचे थे। मंदिर परिसर में बनाए गए विशेष स्थान पर दोनों ने पिंडदान किया था और इसके बाद फल्गु नदी में तर्पण किया था। बारिश में भी थमी नहीं आस्था की ये यात्रा। छाते और प्लास्टिक के सहारे श्रद्धालु अपने संकल्प को पूरा करने में जुटे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों की जुबां पर अपने पुरखों की याद है और हाथों में श्रद्धा का अर्पण। गया जी में जारी ये पितृपक्ष मेला परंपरा, विश्वास और अपनों के प्रति कर्तव्य की उस भावना को दिखा रहा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। गया से पंकज कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
15: क्या आपके विदेश जाने में अड़चन आ रही है? क्या आप विदेश में बसना चाहते हैं लेकिन असफलता मिल रही है? कौन से ग्रहों का विदेश से है संबंध और कौन से ग्रह विदेश में देते हैं लाभ, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
16: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
16: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
18: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
16: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
18: अविश्वास में विश्वास बसता है,
16: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
16: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
17: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
16: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: क्या आपके विदेश जाने में अड़चन आ रही है? क्या आप विदेश में बसना चाहते हैं लेकिन असफलता मिल रही है? कौन से ग्रहों का विदेश से है संबंध और कौन से ग्रह विदेश में देते हैं लाभ, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड और ब्रॉन्ज, महिला रिले रेस 4x400 रेस में जीता सोना, मेंस 4x100 मीटर रिले में ब्रॉन्ज, भारत के खाते में अब तक 6 गोल्ड, कुल मेडल 53। कोलकाता में भारत ब्राजील के बीच ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडली फुटबॉल मैच की तैयारी अंतिम दौर में, 3 अक्टूबर को खेला जाएगा मैच। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए छोटी सड़कों पर चलाई जाएंगी 30 ईवी स्वीपिंग मशीनें, IIT दिल्ली बताएगा प्रदूषण का रियल टाइम सोर्स। केदारनाथ पैदल मार्ग स्थित चिरबासा स्लाइडिंग जोन में SDRF ने संभाला मोर्चा, करीब 9,000 यात्रियों को सुरक्षित रास्ता पार कराया। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास नेशनल हाईवे 911 मिलिट्री रनवे में बदला। भारतीय सेना की एविएशन यूनिट्स ने हाईवे पर की लैंडिंग की प्रैक्टिस।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
9: एशियन गेम्स में भारतीय महिला रिले टीम ने 4x400 मीटर में गोल्ड मेडल जीतकर रच दिया इतिहास। भारतीय टीम ने 3:29.69 का शानदार समय दर्ज करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रेस की शुरुआत से ही भारतीय धाविकाओं ने जबरदस्त तालमेल और रफ्तार दिखाई। आखिरी लैप में मुकाबला बहुत रोमांचक रहा, लेकिन भारतीय टीम ने अपना दम बनाए रखा। भारतीय पुरुष रैली टीम ने भी 4x400 मीटर में किया शानदार प्रदर्शन, ब्रॉन्ज जीत कर देश का नाम बढ़ाया। इससे पहले एशियन गेम्स में नीरू ढांडा ने रचा इतिहास, विमेंस ट्रैप स्पर्धा में भारत के लिए जीता गोल्ड। नीरू ने फाइनल में 28 अंक हासिल करके बनाया नया एशिया रिकॉर्ड। मौजूदा एशिया गेम्स में यह भारत का 5वां गोल्ड। फिडे एक्सीलेंस अवार्ड में बेस्ट चेस प्लेयर फीमेल चुनी गई भारतीय चेस ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख। भारत ने लगातार तीसरी बार लोना ग्रैंड प्री डाशविली ट्रॉफी अपने नाम की। आईसीसी 1 अक्टूबर को जारी करेगा वनडे वर्ल्ड कप 2027 का शेड्यूल। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा टूर्नामेंट। वर्ल्ड कप में पहली बार 14 टीमें 57 मैचों में लेंगी हिस्सा। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील के खिलाफ फीफा फ्रेंडली मैच खेलने के लिए कोलकाता पहुंची भारतीय टीम। 3 अक्टूबर को सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। राजस्थान के डांटोर में NH-911 पर सेना ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग की ट्रेनिंग की। भारत पाक सीमा के करीब सेना ने हाईवे को अस्थायी रनवे में तब्दील किया। इससे मुश्किल हालात में वैकल्पिक जगहों से ऑपरेशन की क्षमता परखी गई। कठिन रेगिस्तानी माहौल में सेना के एयर क्रू ने सटीक लैंडिंग टेक ऑफ का अभ्यास किया। रुद्र ध्रुव और चेतक हेलीकॉप्टर्स ने NH-911 पर ऑपरेशन किया। डांटोर का इलाका लंबी दूरी, गर्म मौसम और सीमित सुविधाओं के लिए चुनौतीपूर्ण है। इसी माहौल में सेना ने वैकल्पिक लैंडिंग साइट पर अपनी तैयारी जांच। जोधपुर में एक्सरसाइज तरंग शक्ति जारी, पावर इन पार्टनरशिप है साल की थीम। जोधपुर एयरबेस के ऊपर आसमान में उड़ान भरते नजर आए। इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने वाले देशों के फाइटर जेट्स और सपोर्ट एयरक्राफ्ट। भारत के अलावा 7 मित्र देश अपने लड़ाकू विमानों और सैन्य संसाधनों के साथ हिस्सा उन्होंने लिया। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स भी दिखा रहे हैं कमाल। एक्सरसाइज में राफेल, SU-30 MKI, LCA तेजस, जगुआर और MiG-29 शामिल। इस मेगा एक्सरसाइज में पहली बार अमेरिकी वायुसेना का 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 हो रहा है शामिल। बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर का तीसरा फेज शुरू गृहमंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। 15 मिनट में तय होगा मयूर विहार से एम्स तक का सफर। दिल्ली के सड़क नेटवर्क और यातायात व्यवस्था को मिली नई रफ्तार। इस प्रोजेक्ट से पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच सिग्नल फ्री हो गई कनेक्टिविटी, ट्रैफिक जैम से भी मिलेगी राहत। अस्पतालों में लंबी लाइन से मिलेगी छुट्टी। उत्तर प्रदेश ट्रेड शो में प्रदर्शित DOD मशीन से 10 मिनट में होंगे 75 से ज्यादा बॉडी टेस्ट। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्टॉल पर डीओडी यानी डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी मशीन की गई पेश। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी शुरू, बढ़ाई जा रही है एनएसजी की भूमिका। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था का आंकलन करके नए सुरक्षा प्लान तैयार कर रही है एनएसजी, कई प्रमुख स्थलों का कर रही है निरीक्षण। दीपोत्सव 2026 में अयोध्या में दिव्यता और भव्यता की बिखेरेगी चमक, रामनगरी में 30 लाख दीपों से जगमगाएगा दीपोत्सव। पितृपक्ष में बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल में श्रद्धालुओं की भीड़, पितरों की मोक्ष कामना के लिए कर रहे हैं तर्पण। देश के अलग अलग हिस्सों से अपने पितरों और पूर्वजों की मोक्ष कामना के लिए बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। महाराष्ट्र में आस्था का मेला, मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में अंगार की संकष्टी चतुर्थी की रौनक। मंगलवार और अंगार की चतुर्थी के दुर्लभ संयोग पर सुबह से ही उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया पूरा मंदिर, सीसीटीवी कैमरे, मेटल डिटेक्टर और स्कैनर के जरिए नजर। पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में बप्पा की भव्य श्रृंगार किया गया, चारों ओर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। सुबह सवेरे बप्पा की मंगल आरती में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु, आशीर्वाद दिया। अकोला के मंदार गणपति मंदिर में 1968 से तने में दिखे गणेश स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। अंगार की संगष्ठी चतुर्थी पर मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। विसर्जन के कुछ दिन बाद ही अंगार की चतुर्थी ने भक्तों को फिर से मंदिरों तक पहुंचा दिया। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 1968 में मंदिर के तने में गणेश जी जैसा स्वरूप नजर आया था। मान्यता है कि गणपति ने मंदार वृक्ष के नीचे वास और शमी पत्र को प्रिय होने का वरदान दिया था। जाला में राजूरेश्वर गणपति मंदिर में

तीन शक्तिपीठों में से एक संपूर्ण शक्तिपीठ के रूप में मशहूर है राजूर स्थित राजूरेश्वर गणपति देवस्थान। रंग बिरंगी रोशनी से की गई मंदिर की भव्य सजावट, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे। मंगलवार के दिन पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को कहा जाता है अंगार की संकष्टी चतुर्थी, भगवान गणेश को समर्पित और सभी संकष्टी चतुर्थी व्रतों में सबसे उत्तम माना जाता है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आई भारतीय रेलवे, दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के दौरान चलेंगी 12 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। कक्षा 9 में टैक्स की पढ़ाई, नई एनसीईआरटी किताब, छात्रों को आयकर की गणना सिखाई जाएगी। शासन के प्रतियोगियों की छात्रों को मिलेगी जानकारी, किताब में सत्यमेव जयते और सेंगुल का जिक्र। छात्र जानेंगे लिज्जत पापड़ की कहानी, 7 महिलाओं ने 80 रुपए से शुरू किया था कारोबार, किताब में इसे महिला उद्यमियों का उदाहरण बताया गया। छात्रों को भारत के 120 से ज्यादा यूनिकॉर्न की जानकारी भी मिलेगी। धौलपुर के समाजसेवी डॉक्टर आरएस गर्ग और मधु गर्ग के संघर्ष की कहानी केबीसी तक पहुंची, गुड न्यूज टुडे पर कहानी दिखाने के बाद केबीसी ने दंपत्ति को शो में बुलाया। केबीसी में अमिताभ बच्चन ने करीब 5 मिनट तक डॉक्टर दंपत्ति से उनकी संघर्ष की गाथा सुनी। बेटी मयूरी के इलाज और पढ़ाई के दौरान डॉक्टर गर्ग ने धौलपुर में विशेष स्कूल खोलने का किया था फैसला। विशेष विद्यालय की शुरुआत बेटी समेत 6 बच्चों के साथ हुई थी, आज 70 से ज्यादा बच्चे यहां पर रहकर निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मुंबई से लौटे डॉक्टर दंपत्ति ने गुड न्यूज टुडे पर का आभार जताया, कहा जीएनटी की वजह से उनकी कहानी केबीसी तक पहुंच गई। सरकारी योजना से बदल गई, सहारनपुर के देवेंद्र की जिंदगी, 2 लाख का लोन लेकर पुश्तैनी माटी कला कारोबार को रफ्तार। सरकारी मदद मिली तो फिर चाक संभाला और मिट्टी के कारोबार को नई पहचान दी। देवेंद्र को अब दूसरे शहरों से भी मिलने लग गए हैं ऑर्डर्स। देवेंद्र अब गमले, फ्लावर पॉट्स, गुल्लक, दीपक, मूर्तियां भी तैयार कर रहे हैं। देवेंद्र के बनाए मिट्टी के उत्पादों की लखनऊ में लगी है प्रदर्शनी, माटी कला के कारोबार से संवरा परिवार। चिरबासा स्लाइडिंग जोन में एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, टीम ने करीब 9,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर 14 दिन फिर आवाजाही हो गई शुरू, एसडीआरएफ जवानों की मौजूदगी में श्रद्धालु चिरबासा स्लाइडिंग जोन से सुरक्षित बाहर निकले। चिरबासा में मुश्किल हालात के बीच एसडीआरएफ ने यात्रियों को दी बड़ी राहत। केरल में बीपीएल परिवारों के लिए 1 अक्टूबर से ट्रोपोनिन टी टेस्ट मुफ्त। ट्रोपोनिन टी टेस्ट से हार्ट अटैक का जल्दी पता लगाने में मिलती है मदद। राजस्थान में किसान कर रहे हैं चंदन की खेती, पारंपरिक खेती छोड़कर आधुनिक कृषि के जरिए सालाना कर रहे हैं अच्छी आय। उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन से आई राहत भरी खबर, भारी बर्फबारी के बीच ऊंचाई वाले इलाकों से 27 ट्रैकर्स और पोर्टर्स को बचाया गया। कालिंदी पास, जोगिन वन, संतो पंत और वासुकी ताल क्षेत्र में हेलीकॉप्टर्स की मदद से चला जा रहा है अभियान। रणबीर कपूर ने फैंस के संग मनाया 44वां बर्थडे, अपने नए बंगले कृष्ण राज के बाहर जमा हुए फैंस। कैजुअल लुक में नजर आए रणबीर कपूर। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ह्यूमनॉइड रोबोट घर साफ करेगा, $30 प्रति घंटे की किराया। रोबोट वैक्यूम, पोछा और सतहों की सफाई कर सकता है, बेड और बर्तन का काम भी सीख रहा है। रोबोट कारपेट, टाइल और लकड़ी के फर्श पर चल सकता है। रोबोट को फिलहाल रिमोट ऑपरेटेड संभालता है, कंपनी इसे पूरी तरीके से ऑटोमेटेड बनाना चाहती है। कंपनी का कहना है कि रोबोट सफाई कर्मियों की जगह नहीं लेगा। चीन का येलो रबर डेल्टा लाल घास से चमक उठा।

0: नजारा दिख रहा है खूबसूरत। तापमान गिरते ही स्वेटर साल साल लाल हो गई। यहां हर साल पहुंचते हैं लाखों प्रवासी पक्षी, लाल घास उन्हें भोजन और आसरा देती है। स्वेडा सालसा मिट्टी से नमक सूखती है, शरद ऋतु में इसका रंग लाल हो जाता है। येलो रिवर एस्ट्यूरी को 2024 में मिली वैश्विक पहचान। यूना नेचर रिजर्व में वेस्टर्न ब्लैक क्रिस्टेड गिब्बन का नया बच्चा मिला। नए बच्चे के जन्म के बाद ये वहां का सबसे बड़ा परिवार बन गया है। सिर्फ एशिया में मिलती है प्रजाति। वेस्टर्न ब्लैक क्रिस्टेड गिब्बन बहुत दुर्लभ है और चीन में संरक्षित वन्यजीव है। दुनिया में करीब 1500 ही बच्चे हैं, इनमें से 600 से ज्यादा गिब्बन चीन के यूनान में प्राप्त। पेट्रोलिंग टीम ने निगरानी के दौरान ना गिब्बन परिवार में बच्चे को देखा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
0: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: हिमाचल के किन्नौर में ऊंचाई वाले इलाके से एक रात भरी खबर निकलकर सामने आई है। माउंट लियो पारगिल 2 के अभियान पर निकला कोलकाता का 12 सदस्यीय पर्वतारोही दल अब सुरक्षित वापस लौट आया। लिहाजा हिमालयास बीकन का ये दल खराब मौसम के बीच मुश्किल में फंस गया था। अचानक हुई तेज बारिश और बर्फबारी ने हालात को और चुनौतीपूर्ण बना दिया। तापमान -20 डिग्री तक जा पहुंचा और बर्फ की मोटी चादर ने रास्ते मुश्किल कर दिए। ऐसे में अभियान को रोकना पड़ा। दल की मदद के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ ITBP और स्थानीय लोग भी जुटे। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार पूरा दल सुरक्षित इलाके से बाहर आ गया।

0: अचानक बदला मौसम, तेज बारिश के बाद तापमान -20 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में किन्नौर में माउंट लियो पारगिल 2 की ओर बढ़ रही कोलकाता की 12 सदस्यीय हिमालयाज बीकन टीमें आधे रास्ते में फंस गईं।
1: लेकिन हम लोग का समिट जो दिन था, हम लोग समिट में पहुंचा, समिट से थोड़ा नीचे हम लोग का छोड़ के आने पड़ा है ड्यू टू द हाई एल्टीट्यूड सिकनेस ऑफ वन ऑफ द मेंबर। एंड हम लोग देन वी आर रिटर्न बैक फ्रॉम बेस कैंप दैट डे।
0: बर्फबारी से रास्ते ढक चुके थे, लौटना भी आसान नहीं था, लेकिन बिगड़ते मौसम के बीच टीम के पास वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।
1: बीच में बहुत स्नो गिरा है तो उसमें वो लोग का चलने का दिक्कत हो रहा था, तो हमारा पास भी 2-3 आदमी था जो थोड़ा से उम्र में ज़्यादा है, वो लोग को सबसे चलने में दिक्कत होता था, तो उसी टाइम हम सोचा है हमको असिस्टेंट जरूरी है।
0: बर्फीली वादियों में फंसी टीम ने मदद के लिए स्थानीय पुलिस और आईटीबीपी से संपर्क किया, साथ ही स्थानीय लोगों से भी मदद मांगी, जिसके बाद तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया।
1: जहां तक हम लोग का आदमी को मिले उतना तक वो लोग पूछे कि ना वो लोग अगर उसको मिल जाएगा तो उसको भी थोड़ा साहस मिल जाएगा जे हमारा लिए आदमी आ गया, रेस्क्यू टीम आ रहा है। तो उसका बाद तासी जी खुद चला गया ऊपर में वो लोग का रूट देखने के लिए, पुलिस भी इतना में आ गया था, पुलिस का जो टीम था तो तासी जी पुलिस टीम को लेके भी उधर छोड़ा है।
0: इसके बाद आईटीबीपी के जवान मेडिकल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव अभियान में जुट गए।
1: आईटीबीपी पूरा मेडिकल टीम लेकर आया, आईटीबीपी का सबसे बड़ा असिस्टेंट जो था हम लोग का लिए उसका मेडिकल टीम रेडी रहता है हमेशा।
0: राहत बचाव टीम और स्थानीय लोग पहुंचे तो सभी ने राहत की सांस ली। टीम ने एक बीमार पर्वतारोही को सुरक्षित बाहर निकाला।
1: सही सलामत सब सेफ्टी में हम लोग यहाँ तक पहुंच गया, सबको असिस्टेंट मिला के हम लोग का पूरा टीम सेफ पहुंच गया नाको में।
0: मदद पहुंची तो हालात संभले और आखिरकार बर्फीली मुश्किलों के बीच फंसी टीम सकुशल नाको पहुंच गई। किन्नौर से विशेषर नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
8: एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड और ब्रॉन्ज, महिला रिले रेस 4x400 रेस में जीता सोना, मैंस 4x400 मीटर रिले में मिला ब्रॉन्ज, भारत के खाते में अब तक 6 गोल्ड, कुल मेडल 53। कोलकाता में भारत ब्राजील के बीच ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडली फुटबॉल मैच की तैयारियां अंतिम दौर में 3 अक्टूबर को खेला जाएगा मैच। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए छोटी सड़कों पर चलाई जाएंगी 30 ईवी स्वीपिंग मशीनें। आईटी दिल्ली बताएगा प्रदूषण का रियल टाइम सोर्स। केदारनाथ पैदल मार्ग स्थित चिरबासा स्लाइडिंग जोन में एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। करीब 9,000 यात्रियों को सुरक्षित रास्ता पार कराया। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास नेशनल हाईवे 911 मिलिट्री रनवे में बदला। भारतीय सेना की एविएशन यूनिट्स ने हाईवे की लैंडिंग की प्रैक्टिस की।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के गुड लक के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कब व्यक्ति के जीवन में ऐसा मौका आता है कि वो विदेश जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, कौन से ग्रह होते हैं जो इसके पीछे होते हैं जो उसे विदेश ले जाते हैं, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: देखिए, कलम या किताब को बिना वजह के, बिना कारण खुला हुआ मत रखिए। आपने किताब पढ़ ली, किताब बंद कर दीजिए। आपने लिखने का काम कर लिया, कलम बंद कर दें, उसका कैप लगा दें। अगर आप अपनी पेन या अपनी किताब कॉपी सामान्यतः खुला रखते हैं तो ऐसा करने से आपकी याददाश्त कमजोर होगी।
0: और आइए जान लेते हैं 30 सितंबर 2026 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 30 सितंबर 2026 दिन बुधवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, दोपहर 2:55 तक। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, प्रातः 7:36 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 1:13 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए जानेंगे हम पंडित जी से ही कि ज्योतिष के अनुसार विदेश यात्रा के योग का क्या अर्थ है, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं।
1: देखिए, आज हम बात कर रहे हैं विदेश यात्रा के बारे में और विदेश में बसने के बारे में। विदेश यात्रा के योग के होने का अर्थ क्या है, कब व्यक्ति विदेश की यात्रा करता है, विदेश जाता है। देखिए, विदेश यात्रा का अर्थ होता है ज्योतिष में समुद्र पार करने की यात्रा। सामान्यतः पहले ऐसा मानते थे कि कोई भी लंबी यात्रा जिसमें कम से कम 3 लगें, 9 लगें, वो विदेश यात्रा समझी जाती थी। कुंडली में पंचम, नवम और द्वादश भाव मुख्य रूप से विदेश यात्रा से संबंधित होते हैं। अष्टम भाव की भी विदेश यात्रा में भूमिका देखी गई है। क्रूर और पाप ग्रहों की विदेश यात्रा में बड़ी भूमिका होती है। ज्योतिष में राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा विदेश जाने में सहायता करता है। इसके बाद शनि और मंगल भी विदेश यात्रा में सहायता करते हैं। जब किसी व्यक्ति की शनि की 7:30 चले या शनि की 2:30 चले तो भी व्यक्ति विदेश जाता है या विदेश यात्रा में सहायता मिलती है।
0: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
1: मेष राशि, धन का लाभ इस समय आपको हो सकता है, परिवार में व्यस्तता रहेगी, किसी अतिथि का आगमन होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में सफलता मिलेगी, वाद विवाद से बचाव करें, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब जान लेंगे कि कब व्यक्ति विदेश जाकर स्थायी रूप से वहां बस जाता है।
1: आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो विदेश जा करके परमानेंटली वहीं बस जाते हैं, वहीं रह जाते हैं, बाकी जीवन उनका वहीं बीतता है। तो कब व्यक्ति विदेश जाकर स्थायी रूप से बस जाता है? आम तौर पर शनि या राहु के मजबूत होने पर ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति घर से दूर जाकर स्थायी रूप से बस जाता है। सूर्य अगर कुंडली में कमजोर हो या चंद्रमा अगर कमजोर हो तो ऐसे लोग भी विदेश जाकर स्थायी रूप से बस जाते हैं। वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के विदेश में बस जाने की संभावना ज्यादा होती है। जिनकी जन्मतिथि महीने की 2, 11, 20 या 29 हो उनके विदेश में बस जाने की संभावना ज्यादा होती है। जैसा आपको पहले बताया कि कुंडली में अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, कुंडली का 12वां, 8वां या 4वां भाव अगर पीड़ित हो, निगेटिव इन्फ्लुएंस हो, तो व्यक्ति विदेश जाता है और उसके विदेश में बसने की संभावना बहुत होती है।
0: और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के राशिफल को जानने का।
1: कर्क राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ होगा।
0: और चलिए अब जान लेते हैं आज का पहला सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
1: जी, आज का पहला प्रश्न सुष्मिता जी ने हमें लिखा है, कोलकाता पश्चिम बंगाल से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 मार्च 1980, जन्म का समय सुबह के 9:30, जन्म स्थान है कोलकाता। सुष्मिता जी कह रही हैं कि इनका एक पुराना मकान है, वो पारिवारिक विवाद में फंसा हुआ है, तो कब तक ये विवाद हल होगा और मकान इनको कब तक मिल पाएगा और कब तक उसको दोबारा बना पाएंगी। सुष्मिता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से जो पारिवारिक संपत्ति का मामला है वो साल 2027 के मध्य में हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कुछ पैसे रुपए देने पड़ेंगे लेकिन आपका मामला बड़ी आसानी से हल हो जाएगा और अगले ही साल जून जुलाई के बाद अगर आप चाहें तो अपना मकान दोबारा से बनवा सकती हैं। फिलहाल ऐसा करिए, सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपको लाभ होगा।
0: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी उसका जवाब दें तो आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अपने सवाल भेजने के लिए हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और इसी के साथ वक्त हो गया आज के दूसरे प्रश्न का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का दूसरा प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
1: जी, अगला प्रश्न नारद जी ने हमें लिखा है और नारद जी हमें मेल लिखते हैं देवरिया उत्तर प्रदेश से, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 9 अक्टूबर 1992, जन्म का समय शाम के 3:11, जन्म स्थान है देवरिया। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब तक होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। नारद जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से उनके विवाह का समय चल रहा है साल 2027 के शुरुआती समय में, उनके विवाह के योग बनते हैं। जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि इनके वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। शीघ्र और बेहतर विवाह के लिए इनको एक मोती बनवा के पहनाइए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती इनको धारण कराएं और अपनी पुत्री से कहें कि ये रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए अब जान लेते हैं कि हम विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन विदेश यात्रा में कब ऐसा होता है कि लगातार बाधाएं आती रहती हैं, आइए जानते हैं।
1: अब ये जानते हैं कि विदेश जाने में या विदेश यात्रा में बाधाएं कब आती हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा या शुक्र मजबूत हो तो आदमी अपने मदर या मदरलैंड से दूर नहीं जा पाता, और अगर जाता है तो लौटकर वापस आता है। अगर कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा चल रही हो तो भी विदेश यात्रा में या विदेश जाने में दिक्कतें आती हैं। अगर आपके पासपोर्ट के नंबर में या वीजा के नंबर में 1, 5 या 9 अंक की प्रधानता हो तब भी विदेश जाने में बाधा आती है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म तारीख 4, 13, 22 या 31 तारीख हो तो या तो व्यक्ति बहुत बार विदेश जाता है या जीवन में ऐसे मौके ही नहीं आते, कभी नहीं जा पाता। अगर व्यक्ति की कुंडली जल तत्व प्रधान हो तो ये मदरलैंड से दूर नहीं जाने देती, व्यक्ति अपनी मातृभूमि से, अपने देश से दूर नहीं जा पाता, विदेश जाने में बाधा जरूर आती है।
0: और चलिए अब जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
1: तुला राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, चोट चपेट से सावधान रहें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, कोई यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, पुरस्कार सम्मान का लाभ मिलेगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: अगर विदेश यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तो क्या क्या उपाय हैं जो आपको करने चाहिए जिससे आपकी विदेश यात्रा का जो सफर है वो बिल्कुल आसान हो जाए, आइए जानते हैं।
1: अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं और विदेश यात्रा करने में बाधा आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो क्या उपाय करेंगे? शनि के तांत्रिक मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा। मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करें। कुंडली का जो नवम भाव है उसके स्वामी ग्रह को मजबूत करें। हल्के नीले रंग के लाइट ब्लू कलर के कपड़ों का खूब प्रयोग करें और एक बार नदी पार करके नाव से या स्टीमर वगैरह से कोई यात्रा जरूर कर लें। अगर ऐसा कर लेते हैं तो विदेश जाने की संभावना बन जाएगी।
0: अगर आप विदेश में बसना चाहते हो तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, चलिए जान लेते हैं पंडित जी से।
1: अब आप विदेश यात्रा तो कर लेते हैं, चले भी जाते हैं, चले भी आते हैं, लेकिन वास्तव में आप विदेश में बसना चाहते हैं तो इसके लिए क्या उपाय करेंगे? स्नान के जल में जरा सी हल्दी मिलाकर नियमित रूप से स्नान करें। एक कांच की छोटी सी शीशी में हल्दी भरकर अपने सिरहाने रख लें और रोज सुबह माँ दुर्गा को एक लाल फूल अर्पित करें और माता से प्रार्थना करें कि आपको विदेश में बसने में सुविधा हो।
0: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशिफल के बारे में जानने का, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के राशिफल को जानने का।
1: मकर राशि, स्वास्थ्य का अपने इस समय ध्यान बनाए रखें, सेहत का ध्यान दें, परिवार में विवादों से बचाव करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, धन का लाभ होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और आइए अब जानते हैं आज का तीसरा प्रश्न, पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
1: जी, अगला प्रश्न राजेश जी ने हमें लिखा है, मध्य प्रदेश सागर से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 जून 1970। जन्म का समय रात में 10 बजे। जन्म स्थान है सागर, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं काफी समय से व्यापार करता हूं, लेकिन मेरा व्यापार आजकल अच्छा नहीं चल रहा है और मेरे ऊपर कर्ज भी हो गया है। तो व्यापार में सुधार कब तक होगा, कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी। राजेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से मई 2027 तक आपको सावधानी रखनी चाहिए बड़े धन के नुकसान से या मुश्किलों से बचना चाहिए। मई 2027 के बाद जीवन बेहतर होना शुरू होगा, उसके बाद व्यापार भी बेहतर होगा और आप कर्जे भी चुका सकेंगे। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और एक पन्ना लगभग 8-9 रत्ती का चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को अगर आप धारण करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
0: इसी के साथ गुडलक में वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से आज का अंतिम प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
1: जी,

कृष्ण प्रसाद जी ने हमें लिखा है, पटना बिहार से मेल लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 10 सितंबर 1994 सुबह के 11 बजे, जन्म स्थान है पटना बिहार। कृष्ण प्रसाद जी पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र के करियर में बार बार उतार चढ़ाव आता है, फिलहाल तो वो एक ठीक ठाक नौकरी पा गया है, लेकिन आने वाले समय में करियर में उतार चढ़ाव ना हो इसके लिए मेरे पुत्र को क्या करना चाहिए। देखिए, आपके पुत्र की जो कुंडली बनती है उसमें शनि की जो स्थिति है वो करियर में बार बार उतार चढ़ाव दिखाती है, तो आप अपने पुत्र से कहें कि वो रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और एक मूंगा लगभग 10-12 रत्ती का

0: सवेरे अगर धारण करवाएं तो बेहतर रहेगा।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।

0: दिन 30 सितंबर को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर की स्थिति मजबूत बनी रहेगी, धन की स्थिति में सुधार होता जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव से बचिएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का अगर जप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया इसी के साथ आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: देखिए, आज की जिज्ञासा ये है कि लोग कहते हैं कि अगर मारक दशा चले तो उसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्या वास्तव में मारक दशा में मृत्यु होना ही है, होती ही है? देखिए, मारक दशा में मृत्यु हो जाए ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन मारक दशाओं में अक्सर काफी कठिनाई का और कष्ट का सामना करना पड़ता है। अगर कुंडली में सुरक्षा के ग्रह मजबूत हों तो मारक दशा में कष्ट कम हो जाता है और व्यक्ति की रक्षा अवश्य होती है।
1: और चलिए अब जानते हैं 30 सितंबर 2026 यानी कि बुधवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 30 सितंबर 2026 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा, ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 30 सितंबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: और चलिए अब जान लेते हैं गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग पूजा में किस चीज का प्रयोग जरूर करें। आज की गुडलक राशि है कुंभ। इनको पूजा में सुगंधित धूप बत्ती का प्रयोग जरूर करना चाहिए, ऐसा करने से इनकी मानसिक स्थिति और इनकी एकाग्रता बेहतर बनी रहेगी।
1: और इसी के साथ हम पहुंच गए आज के एपिसोड के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से ही कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर आपको सर से ब्रेन से संबंधित कोई समस्या है तो क्या करेंगे। एक नारियल ले लीजिए, इस पर सिंदूर से स्वस्तिक बनाइए और सर पर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 9 बार घुमा लीजिए। उसके बाद एक बार में नारियल को पटक करके तोड़ दें, फोड़ दें। स्वास्थ्य की चिंताएं और समस्याएं दूर होंगी। इस उपाय को करने के साथ आप डॉक्टर का परामर्श भी माने, उनकी दवाइयां भी लें, 6 महीने में एक बार अगर आप ये उपाय करें तो आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: बात करते हैं आदिशक्ति की। इनके दर्शन करके आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब से कुछ दिन बाद ही वो घड़ी आने वाली है जब माँ दुर्गा पधारेंगी और हर तरफ नवरात्र के दिव्य रंग देखने को मिलेंगे। हालांकि उससे पहले इस पावन त्योहार से ही जुड़े रंग दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मेला के रूप में चितरंजन पार्क में बंगाली समाज का ये मेला दुर्गा पूजा से पहले लगता है।

0: आदिशक्ति का आगमन होने वाला है। जल्द ही अब माँ दुर्गा पधारने वाली हैं। 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होगा, जिसको लेकर देश भर में तैयारियां चल रही हैं। मूर्तिकार माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को साकार करने में जुटे हैं। माँ के आह्वान के लिए दिव्य और भव्य पंडाल भी अस्तित्व में आने लगे हैं। दुर्गा पूजा, इस त्योहार का जिक्र आते ही पश्चिम बंगाल की तस्वीर सामने उभरती है। वहाँ माँ के नौ स्वरूपों की आराधना सिर्फ पूजा नहीं बल्कि परंपरा, संस्कृति और भावनाओं का हिस्सा है। दुर्गा पूजा धार्मिक आस्था का ही पर्व नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मेलजोल का भी अवसर है। यही वजह है कि दिल्ली में दुर्गा पूजा से पहले जगह जगह बंगाल का रंग देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली के चितरंजन पार्क इलाके की हैं, जहां हथकरघा और हस्तशिल्प मेला सजा हुआ है।
1: देखिए, जब माँ आती हैं तो माँ के स्वागत के लिए बहुत सारी तैयारियां होती है, खाना पीना, सजना सवरना, और उसके लिए हर चीज हर कोई चाहता है कि नई हो। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है फ्रॉम कोलकाता दुर्गा पूजा टू दिल्ली दुर्गा पूजा, कि सही मायने में ना एक दिन में 3 से 4 साड़ियां चेंज की जाती हैं। तो इसीलिए मैं आपको इस वक्त ले आई हूँ 41st प्री दुर्गा पूजा एग्जीबिशन, जो कि बंग्या समाज की तरफ से यहाँ पर लगाई जाती है, और इस साल 41वां साल है। और प्रमानशुदा हमारे साथ मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी हैं बंग्या समाज के। दादा, बहुत स्वागत है आपका।
2: यस, थैंक यू।
1: मतलब पूरी तैयारी आप लोगों ने कर दी है कि इस बार फुल ऑन शॉपिंग हर कोई यहीं से करे।
2: बिल्कुल, इधर आप देखिए सामने सेनको गोल्ड्स है, देन देर आर डिफरेंट ऑर्नामेंटल स्टॉल्स, देन देर आर हैंडीक्राफ्ट्स एंड सो हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स दोनों ही इधर मिल रहे हैं।
1: और ये कितने दिन तक चलेगा?
2: ये चलेगा 12 अक्टूबर तक।
1: 12 अक्टूबर तक मेला चलेगा,
2: 1 days of मेला।
1: 21 दिन का मेला, 41वां साल है ये।
0: इस प्री पूजा हैंडलूम एक्सपो में सबसे पहले साड़ियों के स्टॉल सबका ध्यान खींच रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से लाई गई तांत, ढकाई, जामदानी और कॉटन सिल्क की एक से बढ़कर एक साड़ियाँ महिलाओं का ध्यान खींचने में कामयाब हो रही है।
1: तो देखिए, जब आप एंटर होंगे तो शुरुआत में आपको बहुत सारी साड़ी शॉप्स नजर आ जाएंगी, और सबसे खास बात इस मेले की होती है जो आपको कहीं नहीं मिलती हैं चीजें, वो होती हैं यहाँ के ब्लाउजेस, जो नॉर्मली दुर्गा पूजा ब्लाउज होते हैं जिसके पीछे बांह की मूर्ति या फिर पूरा दरबार एक तरीके से बना होता है। तो ये ब्लाउजेस आपको सिर्फ यहाँ मिलेंगे, फ्रॉम कॉटन टू ढाकाई साड़ी टू सिल्क, टसर, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं।
3: भाई, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स भी हैं जहाँ आपको रियल ढाकाई साड़ी मिल जाएगी, एंड इफ़ यू आर रियली फॉन्ड ऑफ रियल ढाकाई साड़ी, मैं सच बता रही हूँ कि बहुत खूबसूरत साड़ी है, बहुत ज़्यादा, और इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। वैसे फेस्टिवल दुर्गा पूजा के लिए दिस इज़ द बेस्ट कलर, लेकिन वही अपनी चॉइस होती है। दादा, ये कितने की साड़ी पड़ेगी?
4: ये 3,500 की।
1: 3500, नॉट टू मच। और इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, आपको ग्रीन मिल जाएगा, आपको ग्रीन के साथ पिंक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, बहुत सुंदर ग्रीन पिंक कॉम्बिनेशन है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है। इफ यू वांट टू गो फॉर दिस काइंड ऑफ साड़ी, बहुत सुंदर है ये आपको सही मायने में। बिल्कुल रेट के हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक ढाकाई साड़ी के लिए दिस इज द परफेक्ट, आप कभी भी पहन सकते हैं किसी भी ओकेजन पे।
5: बट दिस रेड वन इज रियली ऑसम।
0: अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ सिर्फ महिलाओं के श्रृंगार से जुड़े ही उत्पाद मिल रहे हैं तो आपका अंदाजा सही नहीं है। यहाँ 500 स्टॉल्स ऐसे भी हैं जहाँ पुरुष अपने लिए परिधान देख सकते हैं।
1: 500 स्टॉल्स हैं यहाँ पे। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ लेडीज के स्टॉल्स हैं, यकीन मानिए जेंट्स की शॉपिंग यहाँ बहुत अच्छी हो सकती है अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं फेस्टिवल कुर्ताज में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं बंगाली कुर्ताज में, बहुत ही खूबसूरत, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं आपको एक ही छत के नीचे हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी। दादा, ये बताइए किस रेंज से स्टार्ट है कुर्ता?
6: कुर्ता हमारा 1500 से स्टार्ट है, 30% डिस्काउंट दे रहे हैं।
1: ये कुर्ता मैं चाहूंगी कि आप दिखाइए जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, जिसके लिए आपको स्पेशली यहाँ आना चाहिए अपनी फैमिली के साथ।
6: स्पेशल बाबू मोशाय,
1: ये बाबू मोशाय कुर्ता है इसीलिए
6: बंगाली।
1: अच्छा, ये बाबू मोशाय कुर्ता कितने का है?
6: ये है आपका 1600 का।
1: 1600 का, इसमें डिस्काउंट मिलेगा?
6: डिस्काउंट वही 30%।
0: त्योहारों और ज्वेलरी यानी आभूषण का रिश्ता सदियों पुराना और गहरा है। त्योहारों में ज्वेलरी सिर्फ सजने संवरने का साधन नहीं है बल्कि इसके धार्मिक सांस्कृतिक और आर्थिक मायने भी हैं। ऐसे में ज्वेलरी स्टॉल्स भी महिलाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं।
1: तो अगर आपका मन है इस बार साड़ी के साथ ताजमहल कैरी करने का तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीस है जो यहाँ पे आप कैरी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ भाई देखिए क्योंकि ये बंगिया समाज का पूरा मेला है तो यहाँ पर आपको कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल भी नजर आ जाएगा और इसी के साथ बहुत सारी खूबसूरत ज्वेलरीज यहाँ पर हैं। आपको यहाँ पर माँ की मूर्ति भी नजर आ जाएगी। ये कौन सा मेटल है?
7: ये ब्रास का ज्वेलरी है, 65% कॉपर और 35% जिंक का अलॉय का जो होता है वो कास्टेड है यहाँ पे।
1: अच्छा ये बताइए कि कितने से शुरुआत हो रही है अगर हम नेक पीसेस की?
7: स्टार्टिंग इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1500 गोज अप टिल 5000।
1: और अगर हम इयररिंग्स की बात करें क्योंकि इयररिंग्स भी बहुत सुंदर है
7: 400 से स्टार्टिंग है 1080 तक।
1: आई गेस दिस इज चोकर।
7: ये चोकर है ये
1: बंद।

0: स्कूल। हथकरघा और हस्तशिल्प मेले में क्रॉकरी के स्टॉल्स भी हैं।
1: लाल साड़ी मस्त है, अगर आप दुर्गा पूजा में कहीं भी किसी भी जगह जा रहे हैं, पंडाल हॉपिंग कर रहे हैं, और तो लाल साड़ी मैंने आपको ढाकाई लाल साड़ी दिखाई थी, और उसके ठीक बगल वाली शॉप पे अगर आप आएंगे तो आपको ये बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी मिल जाएगी। ये ट्रेडिशनल बंगाली बैंगल्स होती है, इसको कहते क्या है मुझे पता नहीं मैम, आप बताइए।
2: ये टिपिकल बंगाली गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है, ये 2 ग्राम गोल्ड प्लेटेड है जिसके अंदर माइक्रो मिलीग्राम के हिसाब से गोल्ड चढ़ी हुई है, इसी कारण हम इसकी रीसेल वैल्यू भी देते हैं, और कलर गारंटी 2 साल की है इसकी। हम 2 साल बोलते हैं लेकिन ये मेरा पुराना कस्टमर बैठे हुए है, ये सब बोल पाएंगे 10 साल से ज्यादा इनके सामान हो गया लेकिन आज तक खराब नहीं हुआ।
1: ठीक है, ये कितने की ये वाली बैंगल्स कितने की?
2: ये 450 का है, फाइबर की है, ओरिजिनल शंखा नहीं है, ये बंगाली लोग हम शगुन के तौर से पहनते हैं, लेकिन वो ओरिजिनल वाला भी मेरे पास है जो शंख से बनता है ओरिजिनल, वो 1500 लेके और ज़्यादा तक है, लेकिन अभी तो पूजा के टाइम तो ज्वेलरी हम पसंद करते हैं पहनना।
1: बिल्कुल, सब नई ज्वेलरी होती है। अब आपने कहा कि आपके बहुत पुराने कस्टमर्स हैं, मैम आपसे आप कितने सालों से आ रहे हैं?
3: हम ये तो याद तो नहीं है, बहुत पुराना है, मतलब हाँ 10 बरस।
1: यहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे खूबसूरत क्रॉकरी स्टैंड्स भी मिल जाएंगे, मतलब सिर्फ साड़ीज ज्वेलरीज ही आपको यहाँ नहीं मिलेंगी, कपड़े ही नहीं मिलेंगे, बल्कि यहाँ आपको हर चीज मिलेगी।
0: सीआर पार्क में बड़ी संख्या में बंगे समाज के लोग रहते हैं, और यहाँ हर साल दुर्गा पूजा से पहले ये मेला लगता है।
4: Actually, I'm here from childhood. हाँ, so मैंने तो ये बनते स्टार्ट होते हुए भी देखा है। नंबर ऑफ स्टॉल्स तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, पहले इतने नहीं होते थे, एम्पोरियम्स ज्यादा होते थे, प्राइवेट लोग कम होते थे, लेकिन अब जैसे बहुत ज्यादा है वैरायटी।
1: प्राइसिंग वाइज आपको कैसा लगता है?
4: प्राइसिंग ठीक है, इट्स ओके।
0: ये वो मेला है जो लगा तो दिल्ली में है, लेकिन यहाँ बंगाली संस्कृति से जुड़े रंग देखने को मिलते हैं। यानी दुर्गा पूजा से पहले आपके पास बंगाल की विरासत और कला का दिल्ली में ही दीदार करने का बेहतरीन मौका है। दिल्ली से गुड न्यूज टुडे के लिए नवजोत रंधावा की रिपोर्ट।
5: बात करते हैं पितृपक्ष की। बिहार के गया जी में पितृपक्ष का मेला चल रहा है, तो प्रयागराज में भी तर्पण और पिंडदान के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष दिलाने के उद्देश्य से लोग अनुष्ठान कर रहे हैं। खास बात यह है कि प्रयागराज में आस्था और तकनीक का मेल भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ऑनलाइन पिंडदान की सुविधा भी तीर्थ पुरोहित उपलब्ध करा रहे हैं।
6: देश के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों ऐसी तस्वीरें दिखाई पड़ रही है, विशेषकर बिहार के गया जी और यूपी में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी और तीर्थ राज प्रयागराज में। इन जगहों पर लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति और उनके प्रति अपनी आस्था जताने के लिए तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं। पितृपक्ष की ये सदियों पुरानी परंपरा है जिसके लिए दूर दूर से लोग विशेष धार्मिक स्थलों पर पहुंच रहे हैं और पूरे विधि विधान के साथ इस परंपरा को निभा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में पितृपक्ष में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। स्नान ध्यान कर वो अपने पुरखों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि यहाँ मोबाइल और इंटरनेट के दौर में आस्था और तकनीक का बेल भी दिखाई पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ तीर्थ पुरोहित वीडियो कॉल के जरिए भी पितृपक्ष का अनुष्ठान करा रहे हैं। मोबाइल स्क्रीन पर दूसरी तरफ मौजूद श्रद्धालुओं को आप देख सकते हैं, वो विधि विधान के साथ पिंडदान कर रहे हैं। दरअसल दूर दराज रहने वाले लोग, बुजुर्ग या किसी वजह से तीर्थ स्थलों तक नहीं पहुंच पाने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज में ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पिंडदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।
7: काफी संख्या में लोग देश विदेश से लोग आ रहे हैं यहाँ पिंडदान करने के लिए, और सबसे बड़ी चीज ये कि एक व्यवस्था तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से लागू हुई है कि जो लोग विदेश में बैठे हैं यहाँ पे आके पिंडदान नहीं कर सकते, या जो वृद्ध विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, जो आने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। जी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है। ऑनलाइन

0: था, स्पेशली जो एनआरआई लोग बैठे हुए विदेशों में, ये इनके लिए है, और साथ ही जो दिव्य वृद्ध विकलांग है, जो चलने में असमर्थ है, उनके लिए है। नहीं तो बाकी जो कॉमन पर्सन है और जो आ सकते हैं, तो उनके लिए ऑफलाइन व्यवस्था है।
1: प्रयागराज के तीर्थ पुरोहितों ने विशेष रूप से विदेश में रहने वाले श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन पिंडदान की ये व्यवस्था की है, ताकि वो अपने पूर्वजों और अपनी परंपराओं से जुड़े रह सके। हालांकि यहां बड़ी संख्या में देश के अलग अलग जगहों से लोग तर्पण और पिंडदान करने के लिए पहुंच रहे हैं।
2: बैतूल से आए हैं, मध्य प्रदेश से, पितरों का पिंडदान करने के लिए, ताकि हमारे पितरों को आत्मा की शांति मिले, हमारे घर में सुख शांति प्राप्त हो, इसीलिए हम यही कामना करके पिंडदान करने आए हुए हैं।
3: हम अपने पितरों को मोक्ष दिलाने और सुख शांति के लिए यहाँ आए।
1: बिहार के गया जी में 15 दिनों का पितृपक्ष मेला चल रहा है। पितृपक्ष में तर्पण, पिंडदान और कर्मकांड के जरिए लोग पितरों को मोक्ष दिलाने की कामना करते हैं। बिहार के गया जी में 15 दिनों का पितृपक्ष मेला चल रहा है। यहाँ के विष्णुपद मंदिर क्षेत्र के फल्गु नदी के तट के पास पिंडदान, श्राद्ध, कर्म और तर्पण करने का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति और पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। इसीलिए पितृ पक्ष के दौरान यहाँ देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ अनुष्ठान संपन्न करते हैं।
4: व्यवस्था सही है, बढ़िया व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई वो नहीं है और सभी विधि विधान से सब कार्य चल रहा है। पितृपक्ष में जो भी होता है, पिंडदान और जलदान वगैरह, वो सब क्रम से चल रहा है।
5: यहाँ पिंडदान करने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है, फिर उनको इस तरह से कोई भटकना नहीं पड़ता है। इस विश्वास से हम लोग यहाँ पर अपने जीवन में एक बार भी मतलब पिंडदान करने का इच्छा जो थी, वो जो संपूर्ण माँ जी को साथ में लेके हम लोग आए हैं।
6: हम ग्वाड़ से आए हम लोग, और यहाँ माता पिता का श्राद्ध करने के लिए गया जी तीर्थ में आए हैं हम लोग। तो सुना है यहाँ पिंडदान करने से पितरी लोग तृप्ति होते हैं, पितृलोक को पुण्य मिलता है, इसीलिए हम लोग यहाँ गया जी में पिंडदान करने के लिए आए हैं अपने पितरों के नाम।
1: पक्ष में तर्पण और पिंडदान के लिए प्रयागराज, वाराणसी और गया जी के अलावा बद्रीनाथ धाम भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम को मोक्ष धाम के रूप में विशेष धार्मिक महत्व प्राप्त है। इस धाम में स्थित ब्रह्म कपाल को पितृ तर्पण और पिंडदान के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही यहाँ श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो जाती है और दिन भर यहाँ तर्पण, पिंडदान और धार्मिक अनुष्ठान का सिलसिला चलता रहता है।
7: पितृपक्ष चल रहा है, कपाली में काफी संख्या में लोग श्रद्धालु अपने पितरों का पिंडदान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, अपने पितरों को मोक्ष की कामना कर रहे हैं। कहा गया है इस स्थान पर पिंड देने से 7 पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर भगवान बद्री विशाल के बाल मोक्ष मनुष्य अपने पितरों को पिंड और तर्पण देता है, 7 पीढ़ी के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आप देख रहे हैं आज के पितृपक्ष में काफी संख्या में लोग अपने पितरों को उद्धार के लिए कपाली आ रहे हैं।
1: मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने के बाद पितरों को मोक्ष प्राप्ति होती है और दूसरे स्थानों पर पिंडदान की आवश्यकता नहीं रहती। इस आस्था के चलते पितृपक्ष में ब्रह्म कपाल में श्रद्धालुओं की संख्या कहीं अधिक बढ़ी हुई है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गया जी से पंकज कुमार और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: बात करते हैं दिल्ली में एक ऐसी नहर की जो पिछले 20 साल में बड़े नाले में तब्दील हो गई थी। 2 दशक से उसकी पहचान बदबू, कचरा और काले गंदी पानी तक सीमित रह गई थी। मुनक नहर की ऐसी दुर्दशा देखकर एक सामाजिक कार्यकर्ता के नेतृत्व में वहां रहने वाले लोगों ने उनको जीवन दान देने की ठान ली और महज 8-9 महीने के अंदर वो नाले से नहर बनने की ओर बढ़ गई है।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात मौसम के बदले अंदाजो मिजाज की। सितंबर का महीना है और कायदे से अभी हर साल की तरह देश के तमाम हिस्सों में गर्मी का एहसास होना चाहिए था, लेकिन अब की बार सितंबर में मौसम ने गजब का रंग दिखाया है। सितंबर का आखिर है और ऐसा लग रहा है कि मानो दिसंबर की शुरुआत हो गई हो। मौसम की अंगड़ाई है और बिना बुलाए सितंबर में सर्दी आई है। पहाड़ों में सफेद बर्फ हर तरफ दिखाई दे रही है तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जाते मानसून के बीच में बढ़ी ठंडक सर्दी का एहसास करवा रही है। खास तौर से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर से लेकर सिक्किम तक हाल के दिनों में इतनी बर्फ पड़ी है कि सुनहरी धूप के दिन दिखाने वाला सितंबर पहाड़ों पर कपकपाहट और कोहरे भरे दिन दिखा रहा है। सितंबर के महीने में मैदान के लोग गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन अब की बार तो जरूरत ही नहीं क्योंकि मैदानों का मौसम पहले से सुहाना है। दिल्ली में रविवार को सितंबर का बीते 18 साल का सबसे सर्द दिन रहा। अब सवाल यह है कि आखिर सितंबर के महीने में गुलाबी सर्दी आई कहां से? क्या सर्दियों की शुरुआत अब की बार सितंबर से हो चुकी है, और नहीं तो फिर मौसम की स्क्रीन पर सर्दियों का ये ट्रेलर कब तक जारी रहने वाला है? तो चलिए आपको सबसे पहले यही बताते हैं और दिखाते हैं।

0: सोचा तो था अभी गर्मी और सताएगी, हल्की हल्की ही सही पर उमस अपने होने का एहसास दिलाएगी। सोचा था पहले अक्टूबर आएगा, फिर दिवाली का हाथ थाम कर सर्दी आएगी, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने आकर राजधानी में मौसम के सारे प्लान कुछ ऐसे डिस्टर्ब कर दिए कि सितंबर का वक्त, हालात, जज्बात सब बदल गया। अब आसमान में बादलों का डेरा है, राजधानी पर ठंडी हवाओं का पहरा है, ये सितंबर की सुबह है, बस दिसंबर का चेहरा है। जो सितंबर का महीना दिल्ली और आसपास के इलाकों में उमस भरी गर्मी और चिपचिपे मौसम के लिए जाना जाता रहा है, उसने अब के साल आखिरी दिनों में देश की राजधानी को एक ऐसा सरप्राइज दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दिल्ली NCR अचानक एक अनचाही अनजानी ठंड के आगोश में है। आखिर क्यों वक्त से पहले बदल गया मौसम का ये मिजाज? इसे देखकर दिल्ली वालों के मन में तुरंत सवाल उठा, कहीं ये दिल्ली की ट्रेडमार्क सर्दी का ट्रेलर तो नहीं? ये अंदेशा कुछ और मजबूत हुआ जब खबर मिली कि ठंड बस यहाँ भर नहीं है, बल्कि पहाड़ों पर तो सितंबर में ही विंटर वंडरलैंड सज गया है। कश्मीर से लेकर सिक्किम तक देश के कई पहाड़ी इलाकों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। हिमाचल का किन्नौर और रोहतांग पास 4 से 5 इंच तक बर्फ से ढक चुका है। वहीं सिक्किम के नाथुला पास और गुरुडोंगमार झील के पास के नज़ारे ये गवाही दे रहे हैं कि इस बार पहाड़ों पर विंटर सीजन ने बहुत जल्दी दस्तक दे दी है। वास्तव में पहाड़ों से आ रही इन्हीं बर्फीली और ठंडी उत्तर पूर्वी हवाओं ने दिल्ली NCR को गर्मी में भी सर्दी का एहसास करवा दिया है। खासकर दिल्ली के सफदरजंग, रिज और पालम जैसे इलाकों में तो पारा सामान्य से काफी नीचे चल रहा है। ये आलम देखकर दिल्ली वाले अभी सर्दी को वेलकम कहने ही वाले थे कि तभी मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि राजधानी का ये मौसम वास्तव में सर्दी की शुरुआत नहीं, बल्कि 3 बड़े मौसमी सिस्टम्स के संगम का नतीजा है।
1: दिल्ली की बात है तो एक जो है डीप डिप्रेशन, जिसने के जो हमारे ईस्ट कोस्ट से में क्रॉस किया था, ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट फ्रंट मूव करके उत्तर प्रदेश में आकर के आज सुबह के समय जो है वो एक लेसमार्क हो गया, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया से लेसमार्क हो गया है, जिसकी वजह से जो पूरा जो बेल्ट है इसमें काफी अच्छी वर्षा देखने को मिली। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी यानी कि अति भारी वर्षा भी रिपोर्ट की गई थी, साथ साथ उत्तराखंड में काफी अच्छी वर्षा हुई। इसके साथ साथ पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो भी, उसका भी असर देखने को मिला, जिसकी वजह से जो है पहाड़ों पर कुछ स्थानों पर बर्फबारी भी हुई और इसकी वजह से भी जो तापमान है में काफी गिरावट देखने को मिली। तो अभी दिल्ली की बात करेंगे तो अभी भी यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है नीचे चल रहे हैं।
0: आसान भाषा में समझें तो दिल्ली में बिन बुलाई सर्दी के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला कारण है सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ। भूमध्य सागर से उठी ठंडी और नमी से भरी हवाओं का एक मजबूत सिस्टम इस वक्त उत्तर भारत के ऊपर से गुजर रहा है, जिसने पहाड़ों पर बेवक्त बर्फबारी शुरू कर दी। दूसरा कारण है बंगाल की खाड़ी का डिप्रेशन। बंगाल की खाड़ी में हाल ही के दिनों में बना एक गहरा कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ते हुए MP और UP के रास्ते दिल्ली के करीब आ पहुंचा। जब इन दोनों विपरीत दिशा की हवाओं का टकराव हुआ तो दिल्ली और आसपास के राज्यों में झमाझम बारिश शुरू हो गई। और तीसरा कारण है मॉनसून की विदाई। दिल्ली से मॉनसून आधिकारिक रूप से सितंबर के आखिरी हफ्ते में विदा होता है, इस बार भी यही हुआ, लेकिन मॉनसून की विदाई के ठीक बाद आसमान साफ होने और हवाओं का रुख बदलते ही पहाड़ों की ठंडक सीधे मैदानी इलाकों में बिना किसी रुकावट के प्रवेश कर गई और दिल्ली को सर्दी का एहसास करवा गई।
2: बंगाल के अंदर जो है एक लो प्रेशर एरिया बना, उससे बहुत तेजी के साथ में बारिश हो गई। सितंबर में मेरे ख्याल से पिछले 25 साल में पहला या दूसरा एक ऐसा टाइम था कल रात को उत्तरी भारत के अंदर जो सबसे ठंडा दिन था, वरना के ना तो पश्चिमी विक्षोभ ऑलमोस्ट लुप्त रहते हैं सितंबर के महीने में और इतनी टेम्परेचर तो पड़ता ही नहीं है, बल्कि अक्टूबर के सेकेंड वीक में जाते जाते सर्दी अपने दस्तक देती है। तो दोनों विरोधाभास ली हुई चीजें हुई हैं जो कि हम लोग करते हैं, लेकिन ये वही चीज है कि ये आपने अनुमान लगाया है लंबे समय तक सुपर एलनिनो के चलते वो होना ही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज बीच में जो अनिश्चितता का एक जो फैक्टर होता है उसने अपना रंग दिखाया है।
0: बता दें कि मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली के सफदरजंग में पिछले रविवार को दर्ज हुआ 21 डिग्री सेल्सियस तापमान साल 2000 के बाद सितंबर का दूसरा सबसे कम तापमान है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इस साल कड़ाके की और लंबी ठंड पड़ेगी? IMD के मुताबिक इसका जवाब है नहीं। मौसम वैज्ञानिकों के हिसाब से ये केवल एक ट्रांजिशनल चेंज यानी मौसम का अस्थायी बदलाव है। अक्टूबर के पहले हफ्ते से आसमान पूरी तरह साफ होगा और तापमान फिर से 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच जा सकता है।
1: तो बर्फबारी भी हुई थी पहाड़ों पर कुछ स्थानों पर, वहां से ठंडी हवाएं भी आ रही थी, साथ साथ में वर्षा गतिविधि भी हुई, क्लाउडी कंडीशंस बनी हुई थी, जिसकी वजह से जो तापमान है उसमें गिरावट देखी गई थी। हालांकि आने वाले समय में जैसे जैसे कंडीशंस जो है साफ होंगी, बादल भी कम हो जाएंगे, साथ साथ में जो ठंडी हवा है इसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा, तो ये जो अभी के टेम्परेचर चल रहे हैं इसमें इजाफा देखने को मिलेगा। ये करीब करीब अपने नॉर्मल स्थिति में 3 से 4 दिन के बाद जो कि 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंचने की संभावना है।
0: पर्यावरण वैज्ञानिक इस घटना को क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के एक बड़े इशारे के रूप में भी देख रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक हिमालय में सितंबर में बर्फ गिरना प्राकृतिक है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब स्नो लाइन 4000 मीटर से ऊपर खिसक रही है। मौसम का इस तरह अनप्रेडिक्टेबल होना यानी कभी भारी सूखा तो कभी अचानक सितंबर में ठंडक का एहसास प्रकृति के बदलते संतुलन का बड़ा इशारा है।
2: हमारे इस मौसम में दो विलेन है, एक तो है कि क्लाइमेट चेंज और दूसरा है ये सुपर एलिनो जो लेके आया है। अब लॉन्ग टर्म का इफेक्ट हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं इतने सालों से, इतने टाइम से, मतलब पिछले एकाधिक महीने से, कि सुपर एलिनो की वजह से हमारा जो है इस बार पश्चिम विक्षोभ बहुत कम हो जाएंगे, सर्दी जितनी पड़ना चाहिए थी उतनी पड़ेगी नहीं। ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये होती है कि क्लाइमेट चेंज से जो भी चीजें हम लोग अनुमान लगाते हैं या कुछ होती है उसमें अनिश्चितता लाती है, तो ये दोनों चीजें अनिश्चितता की स्थिति लाती हैं।
0: भले ही सितंबर ने दिसंबर वाली सर्दी का एहसास करवाया है, लेकिन ये बदलाव टेम्पररी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सर्दी अपने तय समय पर या थोड़ी देर से शुरू होगी। आने वाले दिनों में दिल्ली NCR का मौसम सूखा, आसमान साफ और तापमान 35 डिग्री के आसपास रहेगा, इसलिए त्योहारों की तैयारी करने निकलें तो गर्मी और उमस से लड़ने की तैयारी का भी ख्याल रखें।
3: ये 30 तारीख से दिल्ली जो उत्तर भारत दिल्ली में एकदम बादल छट जाएंगे पूरे, तो तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी चालू हो जाएगी। ये चूंकि यहाँ पे वर्षा की स्थिति थी, ऊपर से WDT ठंडी हवाएं आ रही थी और यहाँ से नमी जा रही थी, दिल्ली का जो एरिया है आप देखिए सघन है, खासकर वृक्षारोपण भी काफी मात्रा में है, तो जो नमी जमा हो जाती है और दिन में हीट बढ़ने के कारण से कन्वर्ट होके वो तापमान में गिरावट आई और ज्यादा दिन नहीं रहने वाली, करीब ये 30 तारीख से तापमान में बढ़ोतरी चालू हो जाएगी और पूरा 1 अक्टूबर से एकदम साफ हो जाएगा मानसून उत्तर भारत में। धीरे धीरे सिर्फ उत्तरांचल जो है ऊपर उत्तराखंड है वहां पे बादल बने रहेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मानसून की पूरी तरह से विदाई उत्तर भारत में हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि 15 अक्टूबर तक छुटपुट कुछ ना कुछ वर्षा, छोटे छोटे सिस्टम, कई बार लोकल स्तर पर नमी रहती है और तापमान बढ़ता है तो शाम को उसमें शहरों में रेन हो जाती है, तो ये स्थिति अभी 15 अक्टूबर तक मिलने वाली है। लेकिन बहुत तेजी से मानसून की विदाई 1-2 अक्टूबर तक शुरू हो जाएगी और साफ हो जाएगा, लेकिन तापमान में गिरावट अब आने की कोई फिलहाल संभावना नहीं है, क्योंकि बर्फबारी हो रही है उत्तराखंड वगैरह ऊपर जा रही, तो उसका थोड़ा सा हवाओं का असर है। लेकिन जब ये राजस्थान से नॉर्थ वेस्ट से जब हवाएं आती हैं सूखी, तो उस समय तापमान उतनी गिरावट नहीं कर पाती, खासकर अक्टूबर में, लेकिन धीरे धीरे ठंड का प्रचलन बढ़ेगा, अक्टूबर के एंड से तापमान में गिरावट आएगी और जनवरी फरवरी तक मिलेगी।
0: फिलहाल दिल्ली NCR के लोग उमस भरी गर्मी से मिली इस अचानक राहत का आनंद ले रहे हैं। हवा साफ हो चुकी है और मौसम सुहाना है, लेकिन विज्ञान की चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सितंबर की ये गुलाबी ठंड हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानी गतिविधियों ने हमारी वेदर साइकिल को किस हद तक प्रभावित कर दिया है। आज पहाड़ों पर बेमौसम बर्फ है, मैदानों के तापमान में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट है, कल मौसम का अगला रूप क्या होगा कहना जरा मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो मैदानों में गुलाबी सर्दी का एहसास है तो पहाड़ों पर फुल ऑन दिसंबर वाली फीलिंग चल रही है। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी नजर आ रही हैं। गुलमर्ग के अफरवाद पीक से लेकर हिमाचल की धौलाधार और मनाली की चोटियों तक ताजा हिमपात ने मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया है। सितंबर में ही देश के कई पहाड़ी इलाके विंटर वंडरलैंड में बदल गए हैं।

0: धरती पर बर्फ की धूल, शाखों पर बर्फ के फूल, कश्मीर में बर्फ ने कुदरत के घर से रंगों को बेदखल कर दिया है, सफेद और शफाफ। अक्टूबर की चौखट पर खड़े मौसम ने सितंबर में ही अपना रंग बदल लिया। भला किसने सोचा होगा कि इस मौसम में बर्फबारी होगी और पहाड़ बर्फ से लद जाएंगे। लेकिन कश्मीर के गुलमर्ग से आई ये तस्वीरें देखिए। कश्मीर की वादियों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी के साथ बारिश हुई है, यानी सितंबर के आखिरी दिनों में ही कश्मीर की पहाड़ियों ने सर्दियों की आहट दे दी है। गुलमर्ग के ऊंचे पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी ने नजारे को बेहद खूबसूरत बना दिया है। अफरवाद पीक बर्फ का दुशाला ओढ़े खड़ा है। दूर दूर तक बिछी बर्फ पर निगहबानी करते घने बादलों की आवाजाही के बीच गुलमर्ग का मौसम सितंबर में सर्दी का एहसास करवा रहा है। नजारा कश्मीर के कठुआ का भी कुछ कुछ ऐसा ही है। कठुआ में बर्फबारी से सजे खूबसूरत पहाड़ों का दीदार हो रहा है। कठुआ के ज्यादा ऊंचाई वाले कैलाश कुंड पहाड़ों और चत्तरगला बाईपास इलाके में ताजा बर्फबारी हुई है। ऊंचे इलाकों में मौसम बदल गया है। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से लकदक पहाड़ अपनी चमक बिखेर रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से 29 सितंबर को एक और पश्चिमी विक्षोभ का अनुमान जताया गया था, जिसके चलते ऊपरी इलाकों में ठंड बरकरार रहने और हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है।
1: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से काफी अच्छी एक्टिविटी हुई है, साथ साथ में जो ये डिप्रेशन था जो कि आ गया कि वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में कमजोर हुआ, फिर लो प्रेशर एरिया में, और आज सुबह जो है लेसमार्क हो गया, इसका भी असर देखने को मिला, जिसकी वजह से उत्तराखंड में और आसपास के जो पहाड़ी राज्य है वहां पर भी बर्फबारी देखने को मिली। आज भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो करीब 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के आसपास केंद्रित है, जिसको देखते हुए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर जो भारी वर्षा का जो अलर्ट है जारी किया गया है, साथ साथ में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है।
0: मौसम को देखते हुए प्रशासन ने ऊंचाई वाले मार्गों पर यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। अगर आप भी पहाड़ों की इस ताजा रंगत का दीदार करना चाहते हैं, तो कठुआ की ये सुंदर वादियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो सितंबर के आखिरी दिनों में यहाँ भी मौसम सर्द हो गया है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से कांगड़ा की धौलाधार पर्वतमाला गुलजार नजर आ रही है। सितंबर में दूसरी बार हुई बर्फबारी से धौलाधार की ऊंची चोटियां चांदी से जगमगा रही हैं। बादलों के बीच बर्फ से ढकी चोटियों का ये नजारा बेहद खूबसूरत दिख रहा है। धौलाधार की सफेद चोटियां, नीचे छाए बादल और बारिश से धुले पेड़ों का चटक रंग, कांगड़ा में कुदरत की कारीगरी खूब जम रही है। सिर्फ धौलाधार ही नहीं, हिमाचल के दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में भी ताजा हिमपात हुआ है। किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू की ऊंची चोटियां भी बर्फ से ढकी नजर आ रही है। धर्मशाला और आसपास के इलाकों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में ही मौसम का ऐसा रंग बदला कि पहाड़ों पर सर्दी का एहसास होने लगा।
2: बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एक दो स्थानों में हैवी रेनफॉल दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश कांगड़ा स्टेशन में रिकॉर्ड की गई, लगभग 70 एम एम के आसपास। उसके उपरांत जो सेकंड हाईएस्ट है धर्मशाला में 60 एम एम के आसपास रिकॉर्ड की गई। वहीं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं शिमला, सिरमौर, मंडी और किन्नौर, यहाँ पे मॉडरेट कैटेगरी की बारिश रिपोर्ट की गई। और जो हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं स्पेशली डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू में, और यहाँ पे हल्की बर्फबारी रिपोर्ट की गई।
0: सितंबर में बर्फ और बारिश की दस्तक बता रही है कि हिमाचल की पहाड़ियों पर सर्द मौसम ने इस बार कुछ जल्दी ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तो वहीं ताजा हिमपात से हिमाचल में मनाली के पहाड़ों की खूबसूरती भी निखर उठी है। बर्फ में लिपटी पहाड़ियों पर जब चमकती धूप खिली तो वादियाँ सुनहरी हो गईं। ताजा बर्फबारी के बाद यहाँ तापमान में गिरावट आई है और मनाली की फिजाओं में ठंडक बढ़ गई है। बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और धूप में चमकती चोटियां मनाली की खूबसूरती इस वक्त देखते ही बन रही है। ये सितंबर का आखिर है, लेकिन मनाली की वादियों में ये सर्दियों के आगाज की आहट है। धर्मशाला से पूजा शर्मा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जोरदार बर्फबारी ने इन इलाकों का मौसम भले ही सुहाना बना दिया हो, लेकिन निश्चित रूप से स्थानीय लोगों और पर्वतारोहियों के लिए मौसम चुनौतियों का दौर भी लेकर आया है। लेकिन तमाम चुनौतियों के बीच ही हिमाचल के किन्नौर से एक राहत भरी तस्वीर सामने आई। माउंट लियो पारगिल 2 के अभियान पर निकला कोलकाता का 12 सदस्यीय पर्वतारोही दल अब सुरक्षित वापस लौट आया है। हिमालय राज बीकन का ये दल खराब मौसम के बीच में मुश्किल में फंस गया था। अचानक हुई तेज बारिश और बर्फबारी ने हालात चुनौतीपूर्ण बना दिए। तापमान -20 डिग्री तक जा पहुंचा और बर्फ की मोटी चादर ने रास्ते मुश्किल कर दिए। ऐसे में अभियान को रोकना पड़ गया। दल की मदद के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ ITBP और स्थानीय लोग भी जुट गए और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पूरा दल सुरक्षित इलाके से बाहर आ गया।

0: अचानक बदला मौसम, तेज बारिश के बाद तापमान -20 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में किन्नौर में माउंट लियो पारगिल 2 की ओर बढ़ रही कोलकाता की 12 सदस्यीय हिमालयाज बीकन टीमें आधे रास्ते में फंस गईं।
1: कि हम लोग का समिट जो दिन था, हम लोग समिट में पहुंचा, समिट से थोड़ा नीचे हम लोग का छोड़ के आने पड़ा है ड्यू टू द हाई अल्टीट्यूड सिकनेस ऑफ वन ऑफ द मेंबर। एंड हम लोग देन वी आर रिटर्न बैक फ्रॉम बेस कैंप दैट डे।
0: बर्फबारी से रास्ते ढक चुके थे, लौटना भी आसान नहीं था, लेकिन बिगड़ते मौसम के बीच टीम के पास वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।
1: बीच में बहुत स्नो गिरा है तो उसमें वो लोग का चलने का दिक्कत हो रहा था, तो हमारा पास भी 2-3 आदमी था जो थोड़ा से उम्र में ज़्यादा है, वो लोग को सबसे चलने में दिक्कत होता था, तो उसी टाइम हम सोचा है हमको असिस्टेंट जरूरी है।
0: बर्फीली वादियों में फंसी टीम ने मदद के लिए स्थानीय पुलिस और आईटीबीपी से संपर्क किया, साथ ही स्थानीय लोगों से भी मदद मांगी, जिसके बाद तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया।
1: जहां तक हम लोग का आदमी को मिले उतना तक वो लोग पूछे कि ना वो लोग अगर उसको मिल जाएगा तो उसको भी थोड़ा साहस मिल जाएगा जे हमारे लिए आदमी आ गया, रेस्क्यू टीम आ रहा है। तो उसका बाद दासी जी खुद चला गया ऊपर में वो लोग का रूट देखने के लिए, पुलिस भी इतना में आ गया था, पुलिस का जो टीम था तो दासी जी पुलिस टीम को लेके भी उस उधर छोड़ा है।
0: इसके बाद आईटीबीपी के जवान मेडिकल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव अभियान में जुट गए।
1: आईटीबीपी पूरा मेडिकल टीम लेकर आया, आईटीबीपी का सबसे बड़ा असिस्टेंट जो था हम लोग का लिए उसका मेडिकल टीम रेडी रहता है हमेशा।
0: राहत बचाव टीम और स्थानीय लोग पहुंचे तो सभी ने राहत की सांस ली। टीम ने एक बीमार पर्वतारोही को सुरक्षित बाहर निकाला।
1: सही सलामत सब सेफ्टी में हम लोग यहाँ तक पहुंच गया, सबको असिस्टेंट मिला के हम लोग का पूरा टीम सेफ पहुंच गया नाको में।
0: मदद पहुंची तो हालात संभले और आखिरकार बर्फीली मुश्किलों के बीच फंसी टीम सकुशल नाको पहुंच गई। किन्नौर से विशेषर नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो सितंबर में मौसम की मनमर्जियां जारी हैं। मौसम की मनमानी का यही दौर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में नजर आया है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस और डीप डिप्रेशन की वजह से पिछले कुछ दिनों में राजस्थान के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई, तापमान गिरा, लेकिन अब दिल्ली की तरह वहां भी मौसम करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है। सीधे राजधानी जयपुर से राजस्थान के मौसम का हाल बता रही है हमारी सहयोगी रिदम जैन।
3: राजस्थान में सक्रिय हुए दो पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में खास बदलाव देखा गया। पिछले 24 घंटे में ये बदलाव बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखा गया क्योंकि मूसलाधार बारिश राजस्थान के कई कई इलाकों में दर्ज की गई है, जिसमें जयपुर, बीकानेर, चूरू संभाग शामिल है, और ऐसे में टेम्परेचर्स में भी भारी गिरावट देखी गई है। क्योंकि कुछ दिन पहले जहां रिकॉर्ड तोड़ गर्मी यहां पे दर्ज की जा रही थी कि सितंबर में 15 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटा था, वहीं एक दिन यानी कि सोमवार ने पूरा जो मौसम है वो बदल दिया। लगातार बारिश यहाँ पे देखी गई, जिसमें राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश जयपुर में ही 52 मिलीमीटर दर्ज की गई है, और ऐसे में इस बारिश की वजह से गर्मी से राहत जयपुर वासियों को और राजस्थान वालों को सभी को मिली है, और 2 से 7 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर्स में गिरावट भी दर्ज की गई है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये अभी भी मानसून जारी है या फिर ये मानसून की विदाई वाली बारिश है। तो ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि जब मानसून जा रहा होता है तब लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से बारिश होती है, मौसम में बदलाव लगातार देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ कल यानी कि सोमवार को देखने को मिला, जब लगातार 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्टिव हुए थे, तो ऐसे में मौसम में बदलाव देखा गया था। 260 डिग्री की गिरावट जरूर आई थी, पर साथ ही में मौसम विभाग का कहना है कि ये जो राहत है ये एक ही दिन की थी, क्योंकि अब वापस से मंगलवार से मौसम में बदलाव देखा गया। आसमान जो है वो कहीं ना कहीं वापस से साफ हो गया है। आने वाले 3 से 4 दिन इसी तरीके से जो मौसम है वो साफ ही रहने वाला है, और धीरे धीरे करके 4 से 5 डिग्री तक वापस से टेम्परेचर्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
2: तो चलिए, जब तक आप भी एंजॉय कर सकते हैं, एंजॉय कीजिए इस गुलाबी सर्दी को। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें दिन भर जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।

हिमाचल के किन्नौर में ऊंचाई वाले इलाके से एक रात भरी खबर निकलकर सामने आई है। माउंट लियो पारगिल 2 के अभियान पर निकला कोलकाता का 12 सदस्यीय पर्वतारोही दल अब सुरक्षित वापस लौट आया। लिहाजा हिमालयास बीकन का ये दल खराब मौसम के बीच मुश्किल में फंस गया था। अचानक हुई तेज बारिश और बर्फबारी ने हालात को और चुनौतीपूर्ण बना दिया। तापमान -20 डिग्री तक जा पहुंचा और बर्फ की मोटी चादर ने रास्ते मुश्किल कर दिए। ऐसे में अभियान को रोकना पड़ा। दल की मदद के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ ITBP और स्थानीय लोग भी जुटे। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार पूरा दल सुरक्षित इलाके से बाहर आ गया।

0: अचानक बदला मौसम, तेज बारिश के बाद तापमान -20 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में किन्नौर में माउंट लियो पारगिल 2 की ओर बढ़ रही कोलकाता की 12 सदस्यीय हिमालयाज बीकन टीमें आधे रास्ते में फंस गईं।
1: इन हम लोग का समिट जो दिन था, हम लोग समिट में पहुंचा, समिट से थोड़ा नीचे हम लोग का छोड़ के आने पड़ा है ड्यू टू द हाई अल्टीट्यूड सिकनेस ऑफ वन ऑफ द मेंबर। एंड हम लोग देन वी आर रिटर्न बैक फ्रॉम बेस कैंप दैट डे।
0: बर्फबारी से रास्ते ढक चुके थे, लौटना भी आसान नहीं था, लेकिन बिगड़ते मौसम के बीच टीम के पास वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।
1: बीच में बहुत स्नो गिरा है तो उसमें वो लोग का चलने का दिक्कत हो रहा था, तो हमारा पास भी 2-3 आदमी था जो थोड़ा से उम्र में ज़्यादा है, वो लोग को सबसे चलने में दिक्कत होता था, तो उसी टाइम हम सोचा है हमको असिस्टेंट जरूरी है।
0: बर्फीली वादियों में फंसी टीम ने मदद के लिए स्थानीय पुलिस और आईटीबीपी से संपर्क किया, साथ ही स्थानीय लोगों से भी मदद मांगी, जिसके बाद तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया।
1: जहां तक हम लोग का आदमी को मिले उतना तक वो लोग पूछे कि ना वो लोग अगर उसको मिल जाएगा तो उसको भी थोड़ा साहस मिल जाएगा जे हमारे लिए आदमी आ गया, रेस्क्यू टीम आ रहा है। तो उसका बाद दासी जी खुद चला गया ऊपर में वो लोग का रूट देखने के लिए, पुलिस भी इतना में आ गया था, पुलिस का जो टीम था तो दासी जी पुलिस टीम को लेके भी उस उधर छोड़ा है।
0: इसके बाद आईटीबीपी के जवान मेडिकल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव अभियान में जुट गए।
1: आईटीबीपी पूरा मेडिकल टीम लेकर आया, आईटीबीपी का सबसे बड़ा असिस्टेंट जो था हम लोग का लिए उसका मेडिकल टीम रेडी रहता है हमेशा।
0: राहत बचाव टीम और स्थानीय लोग पहुंचे तो सभी ने राहत की सांस ली। टीम ने एक बीमार पर्वतारोही को सुरक्षित बाहर निकाला।
1: सही सलामत सब सेफ्टी में हम लोग यहाँ तक पहुंच गया, सबको असिस्टेंट मिला के हम लोग का पूरा टीम सेफ पहुंच गया नाको में।
0: मदद पहुंची तो हालात संभले और आखिरकार बर्फीली मुश्किलों के बीच फंसी टीम सकुशल नाको पहुंच गई। किन्नौर से विशेषर नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड और ब्रॉन्ज। महिला रिले रेस 4x400 रेस में जीता सोना। मैंस 4x400 मीटर रिले में मिला ब्रॉन्ज। भारत के खाते में अब तक 6 गोल्ड, कुल मेडल 53। कोलकाता में भारत ब्राजील के बीच ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडली फुटबॉल मैच की तैयारियां अंतिम दौर में। 3 अक्टूबर को खेला जाएगा मैच। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए छोटी सड़कों पर चलाई जाएंगी 30 ईवी स्वीपिंग मशीनें। आईटी दिल्ली बताएगा प्रदूषण का रियल टाइम सोर्स। केदारनाथ पैदल मार्ग स्थित चिरबासा स्लाइडिंग जोन में एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। करीब 9,000 यात्रियों को सुरक्षित रास्ता पार कराया। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास नेशनल हाईवे 911 मिलिट्री रनवे में बदला। भारतीय सेना की एविएशन यूनिट्स ने हाईवे की लैंडिंग की प्रैक्टिस की।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष की, जिसमें पूर्वजों की मोक्ष के लिए तर्पण और पिंडदान का विधान है और इसके लिए भारी तादाद में लोग प्रयागराज, वाराणसी और सबसे ज्यादा गया जी में पहुंच रहे हैं। आज आपको इन तीनों जगहों के अलावा बद्रीनाथ धाम के पास ब्रह्म कपाल के बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि मान्यता यह है कि यहाँ पितरों के लिए किए गए अनुष्ठान से उनको मुक्ति मिलती है। लेकिन इसके साथ ही बात होगी ऑनलाइन तर्पण या पिंडदान की। बदलते दौर में लोगों की सुविधा के मुताबिक प्रयागराज के पुरोहित ऑनलाइन तर्पण करा रहे हैं, लेकिन वहीं पर इसे लेकर वाराणसी में विरोध है। क्या मोबाइल पर मोक्ष की पूजा मुमकिन है? आज इस पर भी हम बात करेंगे। पितृपक्ष की शुरुआत के साथ ही पवित्र तीर्थ स्थान जैसे प्रयागराज और वाराणसी में भीड़ उमड़ने लगी। पूर्वजों के मोक्ष के लिए तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठान किए जा रहे हैं। विधि विधान तो वही है, लेकिन बदलते दौर में तौर तरीके जरूर बदल गए हैं। प्रयागराज और काशी जैसे तीर्थ स्थलों पर जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, वहीं पर अब मोबाइल के जरिए ऑनलाइन तर्पण और पिंडदान की सुविधा भी मिल रही है। विदेश में रहने वाले या किसी वजह से तीर्थ नहीं पहुंच पाने के कारण लोग इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन कर्मकांड को लेकर पुरोहितों और श्रद्धालुओं के बीच मतभेद है। रिपोर्ट देखिए।

0: धारा प्रवाह मंत्र बांचते पुरोहित और नियम पूर्वक पिंडदान करते यजमान। पितृपक्ष में पूर्वजों के लिए पूजा और तर्पण करने वंशजों की भारी भीड़ है। चाहे तीर्थराज प्रयाग हो या फिर काशी का घाट, लेकिन पुरोहित और यजमान का जो ये सीधा कनेक्शन है उसमें अब इंटरनेट और मोबाइल फोन की भी एंट्री हो चुकी है। तर्पण हो पिंडदान, विधि विधान नहीं बदले, पर बदलते दौर में इतनी सुविधा तो हो गई है कि अगर किसी कारणवश प्रयागराज या काशी नहीं पहुंच पाए तो ऑनलाइन पूजा करा सकते हैं। ऑनलाइन दर्शन और ऑनलाइन अनुष्ठान की तरह ही पुरोहित ऑनलाइन पिंडदान की सुविधा दे रहे हैं, खासकर ऐसे लोग जो विदेश में हैं या दिव्यांग हैं, उनके लिए ये सुविधा बड़ी राहत है।
1: यहाँ पर काफी संख्या में लोग देश विदेश से लोग आ रहे हैं यहाँ पिंडदान करने के लिए, और सबसे बड़ी चीज ये कि एक व्यवस्था तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से लागू हुई है कि जो लोग विदेश में बैठे हैं यहाँ पे आके पिंडदान नहीं कर सकते, या जो वृद्ध विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, जो आने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। साथ ही यहाँ पर ऑफलाइन लोग आ रहे हैं और ये हमेशा से आते चले आ रहे थे। आप देख सकते हैं संगम क्षेत्र में चारों तरफ तीर्थ पुरोहितों के घाट में हर जगह से यात्री आए हुए हैं, मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, एमपी, यूपी, न जाने कहां कहां से लोग आ रहे हैं और अपने पितरों का पिंडदान सर्वप्रथम प्रयागराज में करके इसके बाद काशी जाएंगे, काशी के बाद गया जाएंगे, विष्णु मुख प्रयाग, विष्णु नाभि काशी, विष्णु चरण गया, तो तीनों जगह पिंडदान होगा।
2: ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है?
1: जी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है। ऑनलाइन व्यवस्था स्पेशली जो NRI लोग बैठे हुए विदेशों में ये इनके लिए है, और साथ ही जो दिव्य वृद्ध विकलांग है, जो चलने में असमर्थ है, उनके लिए, नहीं तो बाकी जो कॉमन पर्सन है और जो आ सकते हैं तो उनके लिए ऑफलाइन व्यवस्था है।
0: मान्यता है कि पितृपक्ष में पवित्र तीर्थ स्थलों पर पिंडदान करने से पूर्वजों को शांति मिलती है, परिवार में सुख शांति समृद्धि आती है, और पूर्वजों का आशीर्वाद मिले तो बिगड़े काम बनते हैं। इसलिए देश के कोने कोने से लोग प्रयागराज और काशी आते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये धार्मिक परंपरा इसी तरह निभाई जाती है। जो आ सकते हैं सब परिवार आए हैं और पूरे नियम से पिंडदान कर रहे हैं।
3: बैतूल से आए हैं, मध्य प्रदेश से, पितरों का पिंडदान करने के लिए, ताकि हमारे पितरों को आत्मा की शांति मिले, हमारे घर में सुख शांति प्राप्त हो, इसीलिए हम यही कामना करके पिंडदान करने आए हुए हैं। अभी प्रयागराज आए हुए, यहाँ से हम काशी जाएंगे, वहाँ से गया जी जाएंगे।
4: पितृदान करने आए हैं और पितृ सुख शांति के लिए यहाँ पर आए हैं हम लोग, और ये 3 दिन तक का जो कार्यक्रम चलेगा इसमें हम लोग सब पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। हम अपने पितरों को मोक्ष दिलाने और सुख शांति के लिए यहाँ।
0: हालांकि सभी के लिए ये मुमकिन नहीं कि पितृपक्ष में प्रयागराज या वाराणसी पहुंच पाएं, पर पूर्वजों के प्रति मन में श्रद्धा है और उनके लिए दान करने का भाव है। ऐसे लोग मोबाइल फोन के जरिए यानी ऑनलाइन तर्पण करा रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि पिंडदान के लिए प्रयागराज और वाराणसी का विशेष महत्व है।
1: किसी कारणवश नहीं आ पा रहे, कोई बीमार है, कोई चल फिर नहीं पा रहा, कोई दिव्यांग है, आने में असमर्थ है, विदेश में है, वो आ नहीं सकता है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है ऑनलाइन व्यवस्था हम लोगों ने प्रारंभ की है। और इस अभी हम लोग जो है अभी एक अमेरिका में करा चुके हैं, और आज जो ये पिंडदान करा रहे थे हम लोग, ये मलेशिया में करा रहे थे। तो ऐसे थे लोग
2: धार्मिक परंपरा जुड़े
1: जी धार्मिक परंपरा जुड़े रहे, लोग विदेश चले जाते हैं मगर अपने मूल संस्कृति को नहीं भूलते हैं। और अब तो ऐसी व्यवस्था हो गई कि जो नहीं भी कर पाते थे विदेश में रहने के बाद, अब वो लोग भी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक अच्छी व्यवस्था लागू हुई है कि किसी के मनोरथ, किसी का मनोकामना है वो पूर्ण होगा, किसी के पितर जो है तरेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। बस एक बात को ध्यान रखना, ये व्यवस्था उन लोगों को लिए जो आने में असमर्थ हैं, जो समर्थ हैं अगर वो अगर ऐसा करते हैं तो ये उचित नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर आकर करें।
0: ऑनलाइन पिंडदान से यजमान तो प्रसन्न है और पुरोहित को भी समस्या नहीं, पर ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पूजा पाठ और भावना में ऑनलाइन दखलंदाजी पसंद नहीं आ रही।
5: बार बार मैं जब से ऑनलाइन श्राद्ध चालू हुआ, मैंने ऑनलाइन श्राद्ध से भरोसे किया कि ऑनलाइन श्राद्ध होता ही नहीं है, ऑनलाइन से पूजा भी कुछ नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या है, चलो भाई दर्शन हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ऑनलाइन आप देख सकते हैं। श्राद्ध का मतलब मुझे स्वयं अपने हाथ से करना है, मैं ऑनलाइन आपको भोजन भेज रहा हूँ, आप कर लीजिएगा तो मैं श्राद्ध भी चढ़ाने को तैयार हूँ। मैं वर्जित रखा हूँ, लेकिन बहुत से ब्राह्मण है जो हमारे बिना अनुमति से चढ़ाते हैं, जिसको मैं मना करता हूँ, लेकिन उन्होंने चाहे गुरु जी पीछे से आया है, अधिकारी ने बोला है करा दीजिए, तो इसलिए थोड़ा सा निवेदन है कि ऑनलाइन श्राद्ध के लिए फले ही नहीं, निर्माण अगर अनुरोध नहीं करेगा पंडित चढ़ाएगा नहीं।
0: देखिए तो ये विरोधाभास है, क्योंकि जहां प्रयागराज में पुरोहित ऑनलाइन तर्पण या पिंडदान के लिए तैयार हैं, वहीं वाराणसी के पिशाच मोचन तीर्थ पर ऑनलाइन श्राद्ध को वर्जित कर दिया गया है और पुरोहितों का एक बड़ा तबका इसके विरोध में है। यहां आने वाले यजमान भी मानते हैं कि पूर्वजों के लिए पूजा अपने हाथ से ही हो तो बेहतर है।
6: जो कार्य अपने निष्ठा से और हाथों से बढ़िया से हो जाए, यहां पे मौजूद होके पक्ष में जो है पिशाच मोचन में वो कार्य अच्छा है और ऑनलाइन श्राद्ध से कोई मतलब नहीं हमारे हिसाब से। नहीं नहीं है तो सही, वो जो कार्य किया गया है वो बढ़िया है, जो ऑनलाइन श्राद्ध है उसमें क्या होता है क्या नहीं होता उसका कुछ पता नहीं है क्या कर से है पंडित जी लोग, लेकिन जो आपके सामने होता है आप भी संतुष्ट रहते हैं। सबसे मेन व्यक्ति तो आदमी का संतुष्टि के लिए, जब आप संतुष्टि नहीं रहेंगे तो फिर श्राद्ध कराने से क्या फायदा है। नहीं ऑनलाइन से बेहतर है, ऑनलाइन से पूजा नहीं है, इट्स ऑफ योर लाइक मन को संशोधित नहीं है। ये जो सभ्यता पुरानी है वही होनी चाहिए, अगर पुराना सभ्यता को मानते हैं तो यहाँ पर पुरानी सभ्यता के अनुसार ही चलना चाहिए।
0: पिशाच मोचन पर श्राद्ध तर्पण, त्रिपिंडी श्राद्ध पिंडदान और नारायण बलि श्राद्ध का विशेष महत्व है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं और पुरोहितों के निर्देश पर मंत्रोच्चार के साथ कर्मकांड पूरा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ ऑनलाइन पर पूरी तरह रोक लग गई हो, किसी और शहर में रहने वाले अपने यजमानों को पुरोहित ये सुविधा दे रहे हैं। हाँ, मोबाइल का इस्तेमाल खुलेआम नहीं किया जाता। पूर्वजों के लिए पिंडदान या तर्पण ऑनलाइन हो या नहीं, इसे लेकर बहस हो सकती है, लेकिन अज्ञात लोगों के लिए यानी जिनका कोई वंशज न हो, कोई भी पिंडदान कर सकता है। और पिछले कई वर्षों से ये झांसी में ये काम जितेंद्र तिवारी कर रहे हैं। इस साल भी अज्ञात अनाथ और लावारिश दिवंगत आत्माओं के लिए सामूहिक तर्पण और पिंड पूजन किया गया। इसमें पुरोहितों और धर्माचार्यों के साथ बड़ी तादाद में आम लोग भी शामिल हुए और इसके साथ ही 878 परिवारों के पूर्वजों के पिंड लेकर सामाजिक कार्यकर्ता गया जी के लिए रवाना हुए।
7: देखिए, जिनका संसार में कोई नहीं है, अज्ञात अनाथ लावारिस या जिनका कोई और नहीं है संसार में, उनका आज हमने झांसी के सिपरी बाजार पहुंच नदी पर पिंड पूजन का काम किया और कल हम लोग 8:30 बजे चंबल एक्सप्रेस से उनका पिंडों को लेकर, पवित्र पिंडों को लेकर तीर्थराज ग्याजी में पिंडदान करने के लिए जाएंगे। मैं बता दूं आपको कि उसके साथ साथ वो परिवारों का भी पिंड लेकर मैं जा रहा हूं जो किसी कारण पर तीर्थराज गया जी नहीं जा सकते, किसी की आस्था बहुत है लेकिन असमर्थ है जाने में गया जी। तो पिछली बार मुझे 500 से अधिक परिवारों ने अपने दिवंगतों का नाम नोट कराया था, पूर्व परिजनों का, और इस बार 878 से अधिक परिवारों ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, अपने पूर्वजों का नाम अंकित कराया, तो मैं उनके पवित्र पिंडों को लेकर कल तीर्थराज ग्याजी जा रहा हूँ। इस प्रकार का विचार, जब मैं अपने माता पिता का पिंडदान करने तीर्थराज ग्याजी गया तो वहाँ पर पंडा पुरोहितों ने जब हमसे संकल्प कराया तो उन्होंने कहा कि संसार में जिसका भी पिंडदान नहीं होता, इवन जीव जंतु पशु पक्षी का भी, तब वो दिवंगत आत्मा को मोक्ष की प्राप्त नहीं होती है। तब मैंने उनसे प्रश्न किया कि महाराज, यदि जिनका संसार में कोई नहीं होगा तो उनका कैसे होगा? तो उन्होंने कहा उसका संकल्प या तो देश के राजा को लेना चाहिए या कोई भी अन्य व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से बिना पैसा लिए यदि उनका पिंडदान करेगा तो उनकी दिवंगत आत्मा को मोक्ष की गति प्राप्त होगी। तो मैंने उस संकल्प को लिया और लगातार कई वर्षों से मैं उनका पिंडदान करने जा रहा हूँ।
0: ये प्रण इस भावना से जुड़ा है कि ज्ञात हो या अज्ञात, सभी आत्माओं की शांति और संतुष्टि के लिए पिंडदान जरूरी है और पितृपक्ष का महत्व भी इसीलिए है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: पिंडदान और तर्पण के लिए जो महत्व प्रयागराज और वाराणसी का है, वैसा ही महत्व बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल का भी है, जहां पर देखिए देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु अपने पितरों और पूर्वजों की मोक्ष की कामना करने के लिए पहुंच रहे हैं। ब्रह्म कपाल में सुबह से शाम तक पिंडदान और तर्पण का सिलसिला जारी है। मान्यता है कि यहां पिंडदान और तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मान्यता है कि यहां पर पिंडदान करने के बाद अन्य स्थानों पर पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं होती। पौराणिक कथा के अनुसार अगर हम देखें तो भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले यहाँ पर पिंडदान किया था, इसके लिए भी इसका महत्व माना जाता है। अपनों के जाने के बाद भी उनसे जुड़ी यादें और जिम्मेदारियां हमारे साथ रहती हैं। पितृपक्ष में यही भाव गया जी में आस्था बनकर नजर आ रहा है। बारिश की बूंदों के बीच भी श्रद्धालुओं के कदम नहीं रुक रहे। कोई तर्पण कर रहा है तो कोई पिंडदान के जरिए अपने पितरों की सदगति की कामना कर रहा है। गया सुर की प्राचीन कथा हो या माता सीता के पिंडदान की मान्यता, गया जी में हर परंपरा अपने साथ आस्था और विश्वास की कहानी समेटे है। रिपोर्ट देखिए।
9: दान, तर्पण और प्रार्थना, ये उस अटूट विश्वास का प्रमाण है कि गया जी में की गई ये पूजा पूर्वजों की मुक्ति का मार्ग है। बारिश की बूंदे बरस रही है, किसी के हाथ पे छाता है तो किसी ने प्लास्टिक की ओट ले रखी है, लेकिन श्रद्धा की राह में मौसम आड़े नहीं आता। गया के देव घाट पर श्रद्धालु अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। कोई मंत्रों उच्चार के बीच तर्पण कर रहा है तो कोई पूरे विधि विधान से पिंड अर्पित कर रहा है। होठों पर मंत्र है और मन में अपनों के लिए आत्मिक शांति की कामना।
10: हम अपने माँ बाबू जी का
11: क्या बात है
10: ऐसा सुना जा रहा जाता है कि पिंड बैठा देने पर वो लोग को मुक्ति मिल जाएगी, भक्त मिल जाएगा। अब तो वो तो करना ही होगा, बारिश हो क्या आंधी हो कि तूफान हो, तो करना ही होगा। माँ बाबू जी के लिए तो इतना करेंगे ही।

0: मंदिर क्षेत्र और फल्गु नदी के किनारे कर्म कांड किए जा रहे हैं। कोई माता पिता के लिए आया है तो कोई पति या परिवार के दूसरे सदस्यों को स्मरण कर रहा है। बेटा ही क्यों, ये बेटी के लिए भी अपने पुरखों के प्रति श्रद्धा भाव दिखाने का अवसर है।
1: माता पिता का श्राद्ध करने के लिए गया जी तीर्थ में आए हैं हम लोग, तो सुना है यहाँ पिंडदान करने से पितृलोक तृप्ति होते हैं, पितृलोक को पुण्य मिलता है, इसीलिए हम लोग यहाँ गए जी में पिंडदान करने के लिए आए हैं अपने पितरों के नाम।
0: सनातन परंपरा में मनुष्य पर देव ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण बताए गए हैं। पितृ पक्ष में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने को इसी दायित्व से जुड़ा कर्म माना जाता है। गया को इसी वजह से पितृ तीर्थ और मोक्ष की भूमि कहा जाता है। गरुड़ प्राण और विष्णु प्राण में भी गया में पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध की महिमा का उल्लेख मिलता है। इसी धार्मिक विश्वास के चलते हर साल बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। गया जी की पहचान से जुड़ी एक प्राचीन कथा गयासुर की भी है। मान्यता है कि गयासुर ने कठोर तपस्या कर ऐसा वर प्राप्त किया था जिससे उसकी देह पवित्र हो गई। देवताओं ने यज्ञ के लिए उसका शरीर मांगा और गयासुर उसके लिए तैयार हो गया। कहा जाता है कि लेटने पर उसका शरीर 5 कोस तक फैल गया और इसी क्षेत्र का नाम गया पड़ा। बाद में उसने वर मांगा कि यहाँ श्रद्धा से कर्म करने वाले लोगों के पितरों को सदगति मिल जाए। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने उसकी इच्छा स्वीकार की।
2: यहाँ गयासुर नाम का एक राक्षस था, उसके ऊपर यज्ञ किया था देवताओं ने, तो यज्ञ 100 साल तक यज्ञ किया, उसके बाद फिर भी वो मरा नहीं, और जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो वो उठ के चल दिया तो सभी देवता परेशान हुए, तो भगवान विष्णु आए, भगवान विष्णु ने अपना उसके ऊपर पैर रखा, पूरा वजन रखा, तब उसके प्राण निकले, तो फिर भगवान ने कहा कि आप जो भी मांगना चाहें वो आप मांग सकते हैं, मैं भगवान हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं बस केवल एक ही चीज़ मांगता हूँ कि मेरे यहाँ पर जो भी यहाँ अपने पितरों का पिंडदान करेगा या अस्थि दान करेगा तो उसका पिता या जो उनके बुजुर्ग लोग हैं जो शरीर पूरा कर चुके हैं उनके लिए मुक्ति मिले, स्वर्ग मिले, ये मेरी कामना है। तो जी, तो ऐसा ही वर दे करके और उसी जगह के लिए एक विष्णुपदी यहाँ पर स्थान है, ये तो फल्गु गंगा है, ये विष्णुपदी जगह है, वहाँ पर भगवान विष्णु का पद बना हुआ है वो ही।
0: इसी परंपरा से जुड़ी एक और कथा भगवान श्री राम और माता सीता की है। मान्यता है कि राजा दशरथ का श्राद्ध करने दोनों गया पहुँचे थे। कहा जाता है कि श्री राम पूजा की सामग्री लेने गए तो माता सीता के सामने दशरथ का हाथ प्रकट हुआ और उन्होंने पिंड देने की इच्छा जताई। इसके बाद सीता ने फल्गु नदी की रेत से पिंड बनाकर उन्हें अर्पित किया। आज भी ये कथा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के बीच आस्था का हिस्सा बनी हुई है। महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान और भी अलग अलग स्थानों से लोग गया पहुँचे हैं। यहाँ आए श्रद्धालु भी इसी भावना के साथ गया जी पहुँचते हैं। वो अपने माता पिता के लिए पिंड दान कर रहे हैं। पितृपक्ष के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुविधाओं और सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया है। गया में सोमवार को 3,95,000 श्रद्धालुओं की मौजूदगी दर्ज हुई। 9,768 लोगों ने मेडिकल सुविधा ली जबकि 70 बुजुर्गों ने व्हीलचेयर का इस्तेमाल किया। अब तक गया पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या 4,60,200 दर्ज की गई है। गया जी सिर्फ आम श्रद्धालुओं के लिए ही आस्था का केंद्र नहीं है, देश की जानी मानी हस्तियां भी यहां पितरों के लिए कर्म कांड करने पहुंचती रही है। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने

0: 2024 में पितृपक्ष के दौरान विष्णुपद मंदिर में अपने माता पिता की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण किया था। वहीं देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी भी अपने बेटे अनंत अंबानी के साथ पिछले साल विष्णुपद मंदिर पहुंचे थे। मंदिर परिसर में बनाए गए विशेष स्थान पर दोनों ने पिंडदान किया था और इसके बाद फल्गु नदी में तर्पण किया था। बारिश में भी थमी नहीं आस्था की ये यात्रा। छाते और प्लास्टिक के सहारे श्रद्धालु अपने संकल्प को पूरा करने में जुटे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों की जुबां पर अपने पुरखों की याद है और हाथों में श्रद्धा का अर्पण। गया जी में जारी ये पितृपक्ष मेला परंपरा, विश्वास और अपनों के प्रति कर्तव्य की उस भावना को दिखा रहा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। गया से पंकज कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: बात करते हैं दिल्ली में एक ऐसी नहर की जो पिछले 20 साल में बड़े नाले में तब्दील हो गई थी। दो दशक से उसकी पहचान बदबू, कचरा और काले गंदी पानी तक सीमित रह गई थी। मुनक नहर की ऐसी दुर्दशा देखकर एक सामाजिक कार्यकर्ता के नेतृत्व में वहां रहने वाले लोगों ने उनको जीवन दान देने की ठान ली और महज 8-9 महीने के अंदर वो नाले से नहर बनने की ओर बढ़ गई है।

0: दशकों से इसकी पहचान बदबू, कचरा और काले गंदे पानी से रही। नाम कुछ और है पर पहचान नाले की रही। दिल्ली के वजीरपुर से होकर बहने वाली ये मुलक नहर कब और कैसे गंदे पानी के नाले में तब्दील हो गई ये पता नहीं चला। लेकिन जब युवाओं ने प्रण लिया, अपनी जिम्मेदारी समझी, तो अब मुलक भी नाले से नहर बनती जा रही है।
1: वजीरपुर के मुनक नहर का अब दो रूप आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन पहले इसका सिर्फ एक रूप हुआ करता था, जो गंदा था, जिसमें गंदगी थी चारों तरफ, उसमें बहुत सारी जलकुंभियां थी और जिसका पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल करने के लायक नहीं था। नहर नाला बन चुकी थी, लेकिन आज आपको मुनक नहर के दो रूप दिखाई पड़ते हैं। एक रूप ये है जिस पर काम चल रहा है, जिसकी सफाई हो चुकी है और अब कहा जा रहा है कि छठ से पहले पहले इसे साफ कर दिया जाएगा ताकि छठ पूजा इसमें आसानी से मनाई जा सके।
0: वर्षों तक मुलक नहर की दुर्दशा देखने और गंदगी की दास्तान सुनाने के लिए मजबूर राहगीरों के लिए इन तस्वीरों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। कोई दूर दूर तक सोच नहीं सकता कि मुनर नहर की भी तस्वीर बदल सकती है। व्रत त्योहारों के बाद मुनक नहर का इस्तेमाल पूजा अनुष्ठान से जुड़ी सामग्री फेंकने के लिए भी होता था। आसपास कलेक्शन प्वाइंट होने की वजह से लोग इसी नहर में देवी देवताओं की प्रतिमाओं को भी विसर्जित कर देते थे। जाने अनजाने आस्था के इसी अपमान ने मुनक नहर के साफ सफाई के अभियान की नींव रख दी।
1: विनय दास मेरे साथ में है। आजकल आप इनका अगर इंस्टा पेज देखेंगे तो इनके कुछ वीडियोस बहुत वायरल हैं, कई लोग उन्हें देख रहे हैं। हाल ही में गणेश विसर्जन हुआ और इसी नहर में गणेश जी की जो मूर्तियां थी वो लोगों ने डाली पूजा के बाद, लेकिन वो अच्छे हालात में नहीं थी। विनय और उनकी टीम ने मिलकर उन मूर्तियों को बाहर निकाला। सिर्फ गणेश विसर्जन नहीं बल्कि कई जो पूजा पाठ होते हैं जिनमें मूर्तियां ऐसे नहर नालों में फेंक दी जाती हैं, विनय कोशिश करते हैं कि उन देवी देवताओं का अपमान ना हो, इसलिए खुद अपनी टीम के साथ नहर में उतरते हैं और मूर्तियों को बाहर निकालते हैं।
0: विनय दास नाम के सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली की जे जे कॉलोनी के रहने वाले हैं, जिनके नेतृत्व में 1600 से ज्यादा बच्चों और युवाओं ने कचरे के साथ एक साल में नहर से देवी देवताओं की 2500 से ज्यादा मूर्तियां निकाली। इनमें 35 किलो का शिवलिंग भी शामिल है।
2: गणेश चतुर्थी पे काम पूरा हुआ, उसको यहाँ पर कूड़े के बीच में फेंक जाना, आप सोचिए क्या दिल में ठेस पहुँचती हम लोगों के। और मेरे साथ इतने सारे बच्चे हैं, 200-250 बच्चे एक साथ लगे थे, लास्ट 6 सितंबर को भी लगे थे। उसी दिन केवल हमने एक दिन में ही 600 से 700 मूर्तियां कलेक्ट करी और उसमें एक 35 किलो का शिवलिंग भी निकला।
1: 35 किलो का शिवलिंग?
2: जी भाई साहब, बिल्कुल 35 किलो का। और वो मुझे हैरानी हो रही थी, ना जाने ये शिवलिंग कितने समय से यहाँ पर रहा होगा। तो ये बड़ी शर्म की बात थी कि हम आज धर्म की तरफ तो चल रहे हैं, हम गर्व करते हैं हिंदू होने पर, लेकिन कुछ एक हिंदू ऐसे है ना जो अपने धर्म का सम्मान नहीं कर पा रहे।
0: इस सफाई अभियान के दौरान विनय और उनकी टीम को कई चुनौतियों और चोटों का सामना करना पड़ा। कचरे में कांच, सुई और जहरीले रसायन होने के बावजूद उन्होंने अपनी इस मुहिम को जारी रखा।
2: सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि हम नहर में जब कूद रहे थे तो आप मान के चलेंगे कि कूड़ा जो था वो लगभग कूड़ा इतने शेप में था कि वो उसको 2 फिट का था, वो एक बार में उगता। और यहाँ तक का पानी था, हमारी कमर तक का पानी था और लगभग उसमें पानी था ही नहीं। वो पूरा जो होता है ना कि कूड़ा कचरा जो होता है वो पानी में भीग भीग के सिमट जाता है, जितना हमने सोचा था उससे बहुत भयंकर था जब हम कूदे थे। पहली बात तो हमने सेफ्टी बूट यूज़ करे थे, लेकिन उसके बावजूद वो सेफ्टी बूट के अंदर भी पानी भर जाना, हमको कई कीड़े मच्छरों ने भी काटा और मेरे कई वॉलेंटियर्स को भी काटा, सदस्यों को काटा। मेरे भी अभी लास्ट संडे परसों ही हमने सफाई की है, जिसमें हमने जलकुंभियाँ उठाई, उसमें मूर्तियाँ आनी थी, तो उसमें भी काफ़ी सबसे बड़ा खतरा तो हमें इंजेक्शन का ही रहता है, लेकिन सेफ्टी बूट से कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस हो जाता है।
0: विनय का बचपन जेजे कॉलोनी में ही बीता। वे एक बेहद साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता चपरासी के पद पर थे। अपनी शिक्षा का खर्च उठाने के लिए उन्होंने महज 7 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया। पर्यावरण संरक्षण के अलावा उन्होंने वंचित वर्ग के बच्चों को मुफ्त ट्यूशन देने और झुग्गी झोपड़ियों के आसपास सफाई अभियान चलाने जैसे अभियान भी छेड़ रखे हैं, जिनमें मुनक नहर की सफाई शामिल है। विनय की इस मुहिम के बाद अब मुनक नहर की सफाई के लिए सरकारी स्तर पर भी काम शुरू हो गया, जिसके बाद ये उम्मीद है कि इस बार छठ पूजा के दौरान सूर्य देव को अर्घ लोग साफ सुथरी मुनक नहर में खड़े होकर देंगे।
1: सफाई के जरिए आप सोचिए बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, अच्छी संगत में जा रहे हैं। कम से कम अगर किसी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी के बच्चे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये नहर अब जो साफ हो रही है, जो इस पर काम चल रहा है, वो कहीं ना कहीं उसमें विनय की बहुत बड़ी भूमिका है। और अब हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार छठ पूजा जब हो तो बात सिर्फ यमुना की ना हो, बल्कि लोग मुनक नहर में भी उतरकर आसानी से साफ सफाई के बीच सूर्य देवता को अर्घ दे पाएंगे। मनीष और अस्या, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड और ब्रॉन्ज। महिला रिले रेस 4x400 रेस में जीता सोना। मैंस 4x400 मीटर रिले में मिला ब्रॉन्ज। भारत के खाते में अब तक 6 गोल्ड, कुल मेडल 53। कोलकाता में भारत ब्राजील के बीच ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडली फुटबॉल मैच की तैयारियां अंतिम दौर में। 3 अक्टूबर को खेला जाएगा मैच। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए छोटी सड़कों पर चलाई जाएंगे 30 ईवी स्वीपिंग मशीनें। आईटी दिल्ली बताएगा प्रदूषण का रियल टाइम सोर्स। केदारनाथ पैदल मार्ग स्थित चिरबासा स्लाइडिंग जोन में एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। करीब 9,000 यात्रियों को सुरक्षित रास्ता पार कराया। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास नेशनल हाईवे 911 मिलिट्री रनवे में बदला। भारतीय सेना की एविएशन यूनिट्स ने हाईवे की लैंडिंग की प्रैक्टिस की।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात मौसम के बदले अंदाजो मिजाज की। सितंबर का महीना है और कायदे से अभी हर साल की तरह देश के तमाम हिस्सों में गर्मी का एहसास होना चाहिए था, लेकिन अब की बार सितंबर में मौसम ने गजब का रंग दिखाया है। सितंबर का आखिर है और ऐसा लग रहा है कि मानो दिसंबर की शुरुआत हो गई हो। मौसम की अंगड़ाई है और बिना बुलाए सितंबर में सर्दी आई है। पहाड़ों में सफेद बर्फ हर तरफ दिखाई दे रही है, तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जाते मानसून के बीच में बढ़ी ठंडक सर्दी का एहसास करवा रही है। खास तौर से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर से लेकर सिक्किम तक हाल के दिनों में इतनी बर्फ पड़ी है कि सुनहरी धूप के दिन दिखाने वाला सितंबर पहाड़ों पर कपकपाहट और कोहरे भरे दिन दिखा रहा है। सितंबर के महीने में मैदान के लोग गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन अब की बार तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैदानों का मौसम पहले से सुहाना है। दिल्ली में रविवार को सितंबर का बीते 18 साल का सबसे सर्द दिन रहा। अब सवाल यह है कि आखिर सितंबर के महीने में गुलाबी सर्दी आई कहां से? क्या सर्दियों की शुरुआत अब की बार सितंबर से हो चुकी है, और नहीं तो फिर मौसम की स्क्रीन पर सर्दियों का ये ट्रेलर कब तक जारी रहने वाला है? तो चलिए आपको सबसे पहले यही बताते हैं और दिखाते हैं।

0: सोचा तो था अभी गर्मी और सताएगी, हल्की हल्की ही सही पर उमस अपने होने का एहसास दिलाएगी। सोचा था पहले अक्टूबर आएगा, फिर दिवाली का हाथ थाम कर सर्दी आएगी, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने आकर राजधानी में मौसम के सारे प्लान कुछ ऐसे डिस्टर्ब कर दिए कि सितंबर का वक्त, हालात, जज्बात सब बदल गया। अब आसमान में बादलों का डेरा है, राजधानी पर ठंडी हवाओं का पहरा है, ये सितंबर की सुबह है, बस दिसंबर का चेहरा है। जो सितंबर का महीना दिल्ली और आसपास के इलाकों में उमस भरी गर्मी और चिपचिपे मौसम के लिए जाना जाता रहा है, उसने अब के साल आखिरी दिनों में देश की राजधानी को एक ऐसा सरप्राइज दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दिल्ली NCR अचानक एक अनचाही अनजानी ठंड के आगोश में है। आखिर क्यों वक्त से पहले बदल गया मौसम का ये मिजाज? इसे देखकर दिल्ली वालों के मन में तुरंत सवाल उठा, कहीं ये दिल्ली की ट्रेडमार्क सर्दी का ट्रेलर तो नहीं? ये अंदेशा कुछ और मजबूत हुआ जब खबर मिली कि ठंड बस यहाँ भर नहीं है, बल्कि पहाड़ों पर तो सितंबर में ही विंटर वंडरलैंड सज गया है। कश्मीर से लेकर सिक्किम तक देश के कई पहाड़ी इलाकों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। हिमाचल का किन्नौर और रोहतांग पास 4 से 5 इंच तक बर्फ से ढक चुका है। वहीं सिक्किम के नाथुला पास और गुरुडोंगमार झील के पास के नज़ारे ये गवाही दे रहे हैं कि इस बार पहाड़ों पर विंटर सीजन ने बहुत जल्दी दस्तक दे दी है। वास्तव में पहाड़ों से आ रही इन्हीं बर्फीली और ठंडी उत्तर पूर्वी हवाओं ने दिल्ली NCR को गर्मी में भी सर्दी का एहसास करवा दिया है। खासकर दिल्ली के सफदरजंग, रिज और पालम जैसे इलाकों में तो पारा सामान्य से काफी नीचे चल रहा है। ये आलम देखकर दिल्ली वाले अभी सर्दी को वेलकम कहने ही वाले थे कि तभी मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि राजधानी का ये मौसम वास्तव में सर्दी की शुरुआत नहीं, बल्कि 3 बड़े मौसमी सिस्टम्स के संगम का नतीजा है।
1: दिल्ली की बात है तो एक जो है डीप डिप्रेशन, जिसने के जो हमारे ईस्ट कोस्ट से हमें क्रॉस किया था, ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट फ्रंट मूव करके उत्तर प्रदेश में आकर के आज सुबह के समय जो है वो एक लेसमार्क हो गया, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया से लेसमार्क हो गया है, जिसकी वजह से जो पूरा ये जो बेल्ट है इसमें काफ़ी अच्छी वर्षा देखने को मिली। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी यानी कि अति भारी वर्षा भी रिपोर्ट की गई थी, साथ साथ उत्तराखंड में काफ़ी अच्छी वर्षा हुई। इसके साथ साथ में पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है था वो भी, उसका भी असर देखने को मिला, जिसकी वजह से जो है पहाड़ों पर कुछ स्थानों पर बर्फबारी भी हुई और इसकी वजह से भी जो तापमान है में काफी गिरावट देखने को मिली। तो अभी दिल्ली की बात करेंगे तो अभी भी यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है नीचे चल रहे हैं।
0: आसान भाषा में समझें तो दिल्ली में बिन बुलाई सर्दी के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला कारण है सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ। भूमध्य सागर से उठी ठंडी और नमी से भरी हवाओं का एक मजबूत सिस्टम इस वक्त उत्तर भारत के ऊपर से गुजर रहा है, जिसने पहाड़ों पर बेवक्त बर्फबारी शुरू कर दी। दूसरा कारण है बंगाल की खाड़ी का डिप्रेशन। बंगाल की खाड़ी में हाल ही के दिनों में बना एक गहरा कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ते हुए MP और UP के रास्ते दिल्ली के करीब आ पहुंचा। जब इन दोनों विपरीत दिशा की हवाओं का टकराव हुआ तो दिल्ली और आसपास के राज्यों में झमाझम बारिश शुरू हो गई। और तीसरा कारण है मॉनसून की विदाई। दिल्ली से मॉनसून आधिकारिक रूप से सितंबर के आखिरी हफ्ते में विदा होता है, इस बार भी यही हुआ, लेकिन मॉनसून की विदाई के ठीक बाद आसमान साफ होने और हवाओं का रुख बदलते ही पहाड़ों की ठंडक सीधे मैदानी इलाकों में बिना किसी रुकावट के प्रवेश कर गई और दिल्ली को सर्दी का एहसास करवा गई।
2: यह बंगाल के अंदर जो है एक लो प्रेशर एरिया बना, उससे बहुत तेजी के साथ में बारिश हो गई। सितंबर में मेरे ख्याल से पिछले 25 साल में पहला या दूसरा एक ऐसा टाइम था कल रात को उत्तरी भारत के अंदर जो सबसे ठंडा दिन था, वरना के ना तो पश्चिमी विक्षोभ ऑलमोस्ट लुप्त रहते हैं सितंबर के महीने में और इतनी टेम्परेचर तो पड़ता ही नहीं है, बल्कि अक्टूबर के सेकेंड वीक में जाते जाते सर्दी अपने दस्तक देती है। तो दोनों विरोधाभास ली हुई चीजें हुई हैं जो कि हम लोग करते हैं, लेकिन ये वही चीज है कि ये आपने अनुमान लगाया है लंबे समय तक सुपर एलनिनो के चलते वो होना ही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज बीच में जो अनिश्चितता का एक जो फैक्टर होता है उसने अपना रंग दिखाया है।
0: बता दें कि मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली के सफदरजंग में पिछले रविवार को दर्ज हुआ 21 डिग्री सेल्सियस तापमान साल 2000 के बाद सितंबर का दूसरा सबसे कम तापमान है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इस साल कड़ाके की और लंबी ठंड पड़ेगी? IMD के मुताबिक इसका जवाब है नहीं। मौसम वैज्ञानिकों के हिसाब से ये केवल एक ट्रांजिशनल चेंज यानी मौसम का अस्थायी बदलाव है। अक्टूबर के पहले हफ्ते से आसमान पूरी तरह साफ होगा और तापमान फिर से 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच जा सकता है।
1: तो बर्फबारी भी हुई थी पहाड़ों पर कुछ स्थानों पर, वहाँ से ठंडी हवाएं भी आ रही थी, साथ साथ में वर्षा गतिविधि भी हुई, क्लाउडी कंडीशंस बनी हुई थी, जिसकी वजह से जो तापमान है उसमें गिरावट देखी गई थी। हालांकि आने वाले समय में जैसे जैसे कंडीशंस जो है साफ होंगी, बादल भी कम हो जाएंगे, साथ साथ में जो ठंडी हवा है इसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा, तो ये जो अभी के टेम्परेचर चल रहे हैं इसमें इजाफा देखने को मिलेगा। ये करीब करीब अपने नॉर्मल स्थिति में 3 से 4 दिन के बाद जो कि 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंचने की संभावना है।
0: पर्यावरण वैज्ञानिक इस घटना को क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के एक बड़े इशारे के रूप में भी देख रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक हिमालय में सितंबर में बर्फ गिरना प्राकृतिक है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब स्नो लाइन 4000 मीटर से ऊपर खिसक रही है। मौसम का इस तरह अनप्रेडिक्टेबल होना यानी कभी भारी सूखा तो कभी अचानक सितंबर में ठंडक का एहसास प्रकृति के बदलते संतुलन का बड़ा इशारा है।
2: हमारे इस मौसम में दो विलेन है, एक तो है कि क्लाइमेट चेंज और दूसरा है ये सुपर एलिनो जो लेके आया है। अब लॉन्ग टर्म का इफेक्ट हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं इतने सालों से, इतने टाइम से, मतलब पिछले एकाधिक महीने से, कि सुपर एलिनो की वजह से हमारा जो है इस बार पश्चिम विक्षोभ बहुत कम हो जाएंगे, सर्दी जितनी पड़ना चाहिए थी उतनी पड़ेगी नहीं, ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये होती है कि क्लाइमेट चेंज से जो भी चीजें हम लोग अनुमान लगाते हैं या कुछ होती है उसमें अनिश्चितता लाती है, तो ये दोनों चीजें अनिश्चितता की स्थिति लाती हैं।
0: भले ही सितंबर ने दिसंबर वाली सर्दी का एहसास करवाया है, लेकिन ये बदलाव टेम्पररी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सर्दी अपने तय समय पर या थोड़ी देर से शुरू होगी। आने वाले दिनों में दिल्ली NCR का मौसम सूखा, आसमान साफ और तापमान 35 डिग्री के आसपास रहेगा, इसलिए त्योहारों की तैयारी करने निकलें तो गर्मी और उमस से लड़ने की तैयारी का भी ख्याल रखें।
3: ये 30 तारीख से दिल्ली जो उत्तर भारत दिल्ली में एकदम बादल छट जाएंगे पूरे, तो तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी चालू हो जाएगी। ये चूंकि यहाँ पे वर्षा की स्थिति थी, ऊपर से WDT ठंडी हवाएं आ रही थी और यहाँ से नमी जा रही, तो दिल्ली का जो एरिया है आप देखिए सघन है, खासकर वृक्षारोपण भी काफी मात्रा में है, तो जो नमी जमा हो जाती है और दिन में हीट बढ़ने के कारण से कन्वर्ट होके वो तापमान में गिरावट आई और ज्यादा दिन नहीं रहने वाली, करीब ये 30 तारीख से तापमान में बढ़ोतरी चालू हो जाएगी और पूरा 1 अक्टूबर से एकदम साफ हो जाएगा मानसून उत्तर भारत में। धीरे धीरे सिर्फ उत्तरांचल जो है ऊपर उत्तराखंड है वहां पे बादल बने रहेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मानसून की पूरी तरह से विदाई उत्तर भारत में हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि 15 अक्टूबर तक छुटपुट कुछ ना कुछ वर्षा, छोटे छोटे सिस्टम, कई बार लोकल स्तर पर नमी रहती है और तापमान बढ़ता है तो शाम को उसमें शहरों में रेन हो जाती है, तो ये स्थिति अभी 15 अक्टूबर तक मिलने वाली है, लेकिन बहुत तेजी से मानसून की विदाई 1-2 अक्टूबर तक शुरू हो जाएगी और साफ हो जाएगा, लेकिन तापमान में गिरावट अब आने की कोई फिलहाल संभावना नहीं है क्योंकि बर्फबारी हो रही है उत्तर भारत वहाँ उत्तराखंड वगैरह ऊपर जा रही, तो उसका थोड़ा सा हवाओं का असर है, लेकिन जब ये राजस्थान से नॉर्थ वेस्ट से जब हवाएं आती है सूखी तो उस समय तापमान में उतनी गिरावट नहीं कर पाती, खासकर अक्टूबर में, लेकिन धीरे धीरे ठंड का प्रचलन बढ़ेगा, अक्टूबर के एंड से तापमान में गिरावट आएगी और जनवरी फरवरी तक मिलेगी।
0: फिलहाल दिल्ली NCR के लोग उमस भरी गर्मी से मिली इस अचानक राहत का आनंद ले रहे हैं। हवा साफ हो चुकी है और मौसम सुहाना है, लेकिन विज्ञान की चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सितंबर की ये गुलाबी ठंड हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानी गतिविधियों ने हमारी वेदर साइकिल को किस हद तक प्रभावित कर दिया है। आज पहाड़ों पर बेमौसम बर्फ है, मैदानों के तापमान में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट है, कल मौसम का अगला रूप क्या होगा कहना जरा मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो मैदानों में गुलाबी सर्दी का एहसास है तो पहाड़ों पर फुल ऑन दिसंबर वाली फीलिंग चल रही है। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी नजर आ रही हैं। गुलमर्ग के अफरवाद पीक से लेकर हिमाचल की धौलाधार और मनाली की चोटियों तक ताजा हिमपात ने मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया है। सितंबर में ही देश के कई पहाड़ी इलाके विंटर वंडरलैंड में बदल गए हैं।

0: धरती पर बर्फ की धूल, शाखों पर बर्फ के फूल, कश्मीर में बर्फ ने कुदरत के घर से रंगों को बेदखल कर दिया है। सफेद और शफाफ अक्टूबर की चौखट पर खड़े मौसम ने सितंबर में ही अपना रंग बदल लिया। भला किसने सोचा होगा कि इस मौसम में बर्फबारी होगी और पहाड़ बर्फ से लद जाएंगे। लेकिन कश्मीर के गुलमर्ग से आई ये तस्वीरें देखिए। कश्मीर की वादियों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी के साथ बारिश हुई है। यानी सितंबर के आखिरी दिनों में ही कश्मीर की पहाड़ियों ने सर्दियों की आहट दे दी है। गुलमर्ग के ऊंचे पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी ने नजारे को बेहद खूबसूरत बना दिया है। अफरवाद पीक बर्फ का दुशाला ओढ़े खड़ा है। दूर दूर तक बिछी बर्फ और निगहबानी करते घने बादलों की आवाजाही के बीच गुलमर्ग का मौसम सितंबर में सर्दी का एहसास करवा रहा है। नजारा कश्मीर के कठुआ का भी कुछ कुछ ऐसा ही है। कठुआ में बर्फबारी से सजे खूबसूरत पहाड़ों का दीदार हो रहा है। कठुआ के ज्यादा ऊंचाई वाले कैलाश कुंड पहाड़ों और चत्तरगला बाईपास इलाके में ताजा बर्फबारी हुई है। ऊंचे इलाकों में मौसम बदल गया है। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से लकदक पहाड़ अपनी चमक बिखेर रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से 29 सितंबर को एक और पश्चिमी विक्षोभ का अनुमान जताया गया था, जिसके चलते ऊपरी इलाकों में ठंड बरकरार रहने और हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है।
1: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से काफी अच्छी एक्टिविटी हुई है, साथ साथ में जो ये डिप्रेशन था जो कि आ गया कि वेलमाक लो प्रेशर एरिया में कमजोर हुआ, फिर लो प्रेशर एरिया में, और आज सुबह जो है लेसमाक हो गया, इसका भी असर देखने को मिला, जिसकी वजह से उत्तराखंड में और आसपास के जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर भी बर्फबारी देखने को मिली। आज भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो करीब 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के आसपास केंद्रित है, जिसको देखते हुए जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर जो भारी वर्षा का जो अलर्ट है जारी किया गया है, साथ साथ में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है।
0: मौसम को देखते हुए प्रशासन ने ऊंचाई वाले मार्गों पर यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। अगर आप भी पहाड़ों की इस ताजा रंगत का दीदार करना चाहते हैं, तो कठुआ की ये सुंदर वादियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो सितंबर के आखिरी दिनों में यहाँ भी मौसम सर्द हो गया है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से कांगड़ा की धौलाधार पर्वतमाला गुलजार नजर आ रही है। सितंबर में दूसरी बार हुई बर्फबारी से धौलाधार की ऊंची चोटियां चांदी से जगमगा रही हैं। बादलों के बीच बर्फ से ढकी चोटियों का ये नजारा बेहद खूबसूरत दिख रहा है। धौलाधार की सफेद चोटियां, नीचे छाए बादल और बारिश से धुले पेड़ों का चटक रंग, कामना में कुदरत की कारीगरी खूब जम रही है। सिर्फ धौलाधार ही नहीं, हिमाचल के दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में भी ताजा हिमपात हुआ है। किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू की ऊंची चोटियां भी बर्फ से ढकी नजर आ रही है। धर्मशाला और आसपास के इलाकों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में ही मौसम का ऐसा रंग बदला कि पहाड़ों पर सर्दी का एहसास होने लगा।
2: बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एक दो स्थानों में हैवी रेनफॉल दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश कांगड़ा स्टेशन में रिकॉर्ड की गई, लगभग 70 mm के आसपास। उसके उपरांत जो सेकंड हाईएस्ट है धर्मशाला में 60 mm के आसपास रिकॉर्ड की गई। वहीं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं शिमला, सिरमौर, मंडी और किन्नौर, यहाँ पे मॉडरेट कैटेगरी की बारिश रिपोर्ट की गई। और जो हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं स्पेशली डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू में, और यहाँ पे हल्की बर्फबारी रिपोर्ट की गई।
0: सितंबर में बर्फ और बारिश की दस्तक बता रही है कि हिमाचल की पहाड़ियों पर सर्द मौसम ने इस बार कुछ जल्दी ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तो वही ताजा हिमपात से हिमाचल में मनाली के पहाड़ों की खूबसूरती भी निखर उठी है। बर्फ में लिपटी पहाड़ियों पर जब चमकती धूप खिली तो वादियाँ सुनहरी हो गईं। ताजा बर्फबारी के बाद यहाँ तापमान में गिरावट आई है और मनाली की फिजाओं में ठंडक बढ़ गई है। बर्फ से ढके पहाड़ ठंडी हवाएं और धूप में चमकती चोटियां मनाली की खूबसूरती इस वक्त देखते ही बन रही है। ये सितंबर का आखिर है, लेकिन मनाली की वादियों में ये सर्दियों के आगाज की आहट है। धर्मशाला से पूजा शर्मा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जोरदार बर्फबारी ने इन इलाकों का मौसम भले ही सुहाना बना दिया हो, लेकिन निश्चित रूप से स्थानीय लोगों और पर्वतारोहियों के लिए मौसम चुनौतियों का दौर भी लेकर आया है। लेकिन तमाम चुनौतियों के बीच ही हिमाचल के किन्नौर से एक राहत भरी तस्वीर सामने आई। माउंट लियो पारगिल 2 के अभियान पर निकला कोलकाता का 12 सदस्यीय पर्वतारोही दल अब सुरक्षित वापस लौट आया है। हिमालय राज बीकन का ये दल खराब मौसम के बीच में मुश्किल में फंस गया था। अचानक हुई तेज बारिश और बर्फबारी ने हालात चुनौतीपूर्ण बना दिए। तापमान -20 डिग्री तक जा पहुंचा और बर्फ की मोटी चादर ने रास्ते मुश्किल कर दिए। ऐसे में अभियान को रोकना पड़ गया। दल की मदद के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ ITBP और स्थानीय लोग भी जुट गए और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पूरा दल सुरक्षित इलाके से बाहर आ गया।

0: अचानक बदला मौसम, तेज बारिश के बाद तापमान -20 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में किन्नौर में माउंट लियो पारगिल 2 की ओर बढ़ रही कोलकाता की 12 सदस्यीय हिमालयाज बीकन टीमें आधे रास्ते में फंस गईं।
1: लेकिन हम लोग का समिट जो दिन था, हम लोग समिट में पहुंचा, समिट से थोड़ा नीचे हम लोग का छोड़ के आने पड़ा है ड्यू टू द हाई अल्टीट्यूड सिकनेस ऑफ वन ऑफ द मेंबर। एंड हम लोग देन वी आर रिटर्न बैक फ्रॉम बेस कैंप दैट डे।
0: बर्फबारी से रास्ते ढक चुके थे, लौटना भी आसान नहीं था, लेकिन बिगड़ते मौसम के बीच टीम के पास वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।
1: बीच में बहुत स्नो गिरा है तो उसमें वो लोग का चलने का दिक्कत हो रहा था, तो हमारा पास भी 2-3 आदमी था जो थोड़ा से उम्र में ज़्यादा है, वो लोग को सबसे चलने में दिक्कत होता था, तो उसी टाइम हम सोचा है हमको असिस्टेंट जरूरी है।
0: बर्फीली वादियों में फंसी टीम ने मदद के लिए स्थानीय पुलिस और आईटीबीपी से संपर्क किया, साथ ही स्थानीय लोगों से भी मदद मांगी, जिसके बाद तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया।
1: जहां तक हम लोग का आदमी को मिले उतना तक वो लोग पूछे कि ना वो लोग अगर उसको मिल जाएगा तो उसको भी थोड़ा साहस मिल जाएगा जे हमारा लिए आदमी आ गया, रेस्क्यू टीम आ रहा है। तो उसका बाद दासी जी खुद चला गया ऊपर में वो लोग का रूट देखने के लिए, पुलिस भी इतना में आ गया था, पुलिस का जो टीम था तो तासी जी पुलिस टीम को लेके भी उधर छोड़ा है।
0: इसके बाद आईटीबीपी के जवान मेडिकल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव अभियान में जुट गए।
1: आईटीबीपी पूरा मेडिकल टीम लेकर आया, आईटीबीपी का सबसे बड़ा असिस्टेंट जो था हम लोग का लिए उसका मेडिकल टीम रेडी रहता है हमेशा।
0: राहत बचाव टीम और स्थानीय लोग पहुंचे तो सभी ने राहत की सांस ली। टीम ने एक बीमार पर्वतारोही को सुरक्षित बाहर निकाला।
1: सही सलामत सब सेफ्टी में हम लोग यहाँ तक पहुंच गया, सबको असिस्टेंट मिला के हम लोग का पूरा टीम सेफ पहुंच गया नाको में।
0: मदद पहुंची तो हालात संभले और आखिरकार बर्फीली मुश्किलों के बीच फंसी टीम सकुशल नाको पहुंच गई। किन्नौर से विशेषर नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो सितंबर में मौसम की मनमर्जियां जारी हैं। मौसम की मनमानी का यही दौर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में नजर आया है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस और डीप डिप्रेशन की वजह से पिछले कुछ दिनों में राजस्थान के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई, तापमान गिरा, लेकिन अब दिल्ली की तरह वहां भी मौसम करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है। सीधे राजधानी जयपुर से राजस्थान के मौसम का हाल बता रही है हमारी सहयोगी रिदम जैन।
3: राजस्थान में सक्रिय हुए दो पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में खास बदलाव देखा गया। पिछले 24 घंटे में ये बदलाव बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखा गया है, क्योंकि मूसलाधार बारिश राजस्थान के कई कई इलाकों में दर्ज की गई है, जिसमें जयपुर बीकानेर चूरू संभाग शामिल है, और ऐसे में टेम्परेचर्स में भी भारी गिरावट देखी गई है। क्योंकि कुछ दिन पहले जहां रिकॉर्ड तोड़ गर्मी यहां पे दर्ज की जा रही थी कि सितंबर में 15 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटा था, वहीं एक दिन यानी कि सोमवार ने पूरा जो मौसम है वो बदल दिया। लगातार बारिश यहाँ पे देखी गई, जिसमें राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश जयपुर में ही 52 मिलीमीटर दर्ज की गई है, और ऐसे में इस बारिश की वजह से गर्मी से राहत जयपुर वासियों को और राजस्थान वालों को सभी को मिली है, और 2 से 7 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर्स में गिरावट भी दर्ज की गई है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये अभी भी मानसून जारी है या फिर ये मानसून की विदाई वाली बारिश है। तो ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि जब मानसून जा रहा होता है तब लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से बारिश होती है, मौसम में बदलाव लगातार देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ कल यानी कि सोमवार को देखने को मिला, जब लगातार 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्टिव हुए थे, तो ऐसे में मौसम में बदलाव देखा गया था। 2 से 7 डिग्री की गिरावट जरूर आई थी, पर साथ ही में मौसम विभाग का कहना है कि ये जो राहत है ये एक ही दिन की थी, क्योंकि अब वापस से मंगलवार से मौसम में बदलाव देखा गया, आसमान जो है वो कहीं ना कहीं वापस से साफ हो गया है। आने वाले 3 से 4 दिन इसी तरीके से जो मौसम है वो साफ ही रहने वाला है, और धीरे धीरे करके 4 से 5 डिग्री तक वापस से टेम्परेचर्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
2: तो चलिए, जब तक आप भी इंजॉय कर सकते हैं, इंजॉय कीजिए इस गुलाबी सर्दी को। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें दिन भर जा रही है, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।

हिमाचल के किन्नौर में ऊंचाई वाले इलाके से एक रात भरी खबर निकलकर सामने आई है। माउंट लियो पारगिल 2 के अभियान पर निकला कोलकाता का 12 सदस्यीय पर्वतारोही दल अब सुरक्षित वापस लौट आया। लिहाजा हिमालयास बीकन का ये दल खराब मौसम के बीच मुश्किल में फंस गया था। अचानक हुई तेज बारिश और बर्फबारी ने हालात को और चुनौतीपूर्ण बना दिया। तापमान -20 डिग्री तक जा पहुंचा और बर्फ की मोटी चादर ने रास्ते मुश्किल कर दिए। ऐसे में अभियान को रोकना पड़ा। दल की मदद के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ ITBP और स्थानीय लोग भी जुटे। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार पूरा दल सुरक्षित इलाके से बाहर आ गया।

0: अचानक बदला मौसम, तेज बारिश के बाद तापमान -20 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में किन्नौर में माउंट लियो पारगिल 2 की ओर बढ़ रही कोलकाता की 12 सदस्यीय हिमालयाज बीकन टीमें आधे रास्ते में फंस गईं।
1: लेकिन हम लोग का समिट जो दिन था, हम लोग समिट में पहुंचा, समिट से थोड़ा नीचे हम लोग का छोड़ के आने पड़ा है ड्यू टू द हाई अल्टीट्यूड सिकनेस ऑफ वन ऑफ द मेंबर एंड हम लोग देन वी आर रिटर्न बैक फ्रॉम बेस कैंप दैट डे।
0: बर्फबारी से रास्ते ढक चुके थे, लौटना भी आसान नहीं था, लेकिन बिगड़ते मौसम के बीच टीम के पास वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।
1: बीच में बहुत स्नो गिरा है तो उसमें वो लोग का चलने का दिक्कत हो रहा था, तो हमारा पास भी 2-3 आदमी था जो थोड़ा से उम्र में ज़्यादा है, वो लोग को सबसे चलने में दिक्कत होता था, तो उसी टाइम हम सोचा है हमको असिस्टेंट जरूरी है।
0: बर्फीली वादियों में फंसी टीम ने मदद के लिए स्थानीय पुलिस और आईटीबीपी से संपर्क किया, साथ ही स्थानीय लोगों से भी मदद मांगी, जिसके बाद तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया।
1: जहां तक हम लोग का आदमी को मिले उतना तक वो लोग पहुंचे, क्यों ना वो लोग अगर उसको मिल जाएगा तो उसको भी थोड़ा साहस मिल जाएगा जे हमारा लिए आदमी आ गया, रेस्क्यू टीम आ रहा है। तो उसका बाद दासी जी खुद चला गया ऊपर में वो लोग का रूट देखने के लिए, पुलिस भी इतना में आ गया था, पुलिस का जो टीम था तो दासी जी पुलिस टीम को लेके भी उस उधर छोड़ा है।
0: इसके बाद आईटीबीपी के जवान मेडिकल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव अभियान में जुट गए।
1: आईटीबीपी पूरा मेडिकल टीम लेकर आया, आईटीबीपी का सबसे बड़ा असिस्टेंट जो था हम लोग का लिए उसका मेडिकल टीम रेडी रहता है हमेशा।
0: राहत बचाव टीम और स्थानीय लोग पहुंचे तो सभी ने राहत की सांस ली। टीम ने एक बीमार पर्वतारोही को सुरक्षित बाहर निकाला।
1: सही सलामत सब सेफ्टी में हम लोग यहां तक पहुंच गया, सबको असिस्टेंट मिला के हम लोग का पूरा टीम सेफ पहुंच गया नाको में।
0: मदद पहुंची तो हालात संभले और आखिरकार बर्फीली मुश्किलों के बीच फंसी टीम सकुशल नाको पहुंच गई। किन्नौर से विशेषर नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड और ब्रॉन्ज, महिला रिले रेस 4x400 रेस में जीता सोना, मैंस 4x400 मीटर रिले में मिला ब्रॉन्ज, भारत के खाते में अब तक 6 गोल्ड, कुल मेडल 53। कोलकाता में भारत ब्राजील के बीच ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडली फुटबॉल मैच की तैयारियां अंतिम दौर में, 3 अक्टूबर को खेला जाएगा मैच। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए छोटी सड़कों पर चलाई जाएंगी 30 ईवी स्वीपिंग मशीनें, आईटी दिल्ली बताएगा प्रदूषण का रियल टाइम सोर्स। केदारनाथ पैदल मार्ग स्थित चिरबासा स्लाइडिंग जोन में एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, करीब 9,000 यात्रियों को सुरक्षित रास्ता पार कराया। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास नेशनल हाईवे 911 मिलिट्री रनवे में बदला, भारतीय सेना की एविएशन यूनिट्स ने हाईवे की लैंडिंग की प्रैक्टिस की।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष की, जिसमें पूर्वजों की मोक्ष के लिए तर्पण और पिंडदान का विधान है और इसके लिए भारी तादाद में लोग प्रयागराज, वाराणसी और सबसे ज्यादा गया जी में पहुंच रहे हैं। आज आपको इन तीनों जगहों के अलावा बद्रीनाथ धाम के पास ब्रह्म कपाल के बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि मान्यता ये है कि यहाँ पितरों के लिए किए गए अनुष्ठान से उनको मुक्ति मिलती है। लेकिन इसके साथ ही बात होगी ऑनलाइन तर्पण या पिंडदान की। बदलते दौर में लोगों की सुविधा के मुताबिक प्रयागराज के पुरोहित ऑनलाइन तर्पण करा रहे हैं, लेकिन वहीं पर इसे लेकर वाराणसी में विरोध है। क्या मोबाइल पर मोक्ष की पूजा मुमकिन है? आज इस पर भी हम बात करेंगे। पितृपक्ष की शुरुआत के साथ ही पवित्र तीर्थ स्थान जैसे प्रयागराज और वाराणसी में भीड़ उमड़ने लगी। पूर्वजों के मोक्ष के लिए तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठान किए जा रहे हैं। विधि विधान तो वही है, लेकिन बदलते दौर में तौर तरीके जरूर बदल गए हैं। प्रयागराज और काशी जैसे तीर्थ स्थलों पर जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, वहीं पर अब मोबाइल के जरिए ऑनलाइन तर्पण और पिंडदान की सुविधा भी मिल रही है। विदेश में रहने वाले या किसी वजह से तीर्थ नहीं पहुंच पाने के कारण लोग इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन कर्मकांड को लेकर पुरोहितों और श्रद्धालुओं के बीच मतभेद है। रिपोर्ट देखिए।

0: धारा प्रवाह मंत्र बांचते पुरोहित और नियम पूर्वक पिंडदान करते यजमान। पितृपक्ष में पूर्वजों के लिए पूजा और तर्पण करने वंशजों की भारी भीड़ है। चाहे तीर्थराज प्रयाग हो या फिर काशी का घाट, लेकिन पुरोहित और यजमान का जो ये सीधा कनेक्शन है उसमें अब इंटरनेट और मोबाइल फोन की भी एंट्री हो चुकी है। तर्पण हो पिंडदान, विधि विधान नहीं बदले, पर बदलते दौर में इतनी सुविधा तो हो गई है कि अगर किसी कारणवश प्रयागराज या काशी नहीं पहुंच पाए तो ऑनलाइन पूजा करा सकते हैं। ऑनलाइन दर्शन और ऑनलाइन अनुष्ठान की तरह ही पुरोहित ऑनलाइन पिंडदान की सुविधा दे रहे हैं, खासकर ऐसे लोग जो विदेश में हैं या दिव्यांग हैं, उनके लिए ये सुविधा बड़ी राहत है।
1: यहाँ पर काफी संख्या में लोग देश विदेश से लोग आ रहे हैं यहाँ पिंडदान करने के लिए, और सबसे बड़ी चीज ये कि एक व्यवस्था तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से लागू हुई है कि जो लोग विदेश में बैठे हैं यहाँ पे आके पिंडदान नहीं कर सकते, या जो वृद्ध विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, जो आने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। साथ ही यहाँ पर ऑफलाइन लोग आ रहे हैं और ये हमेशा से आते चले आ रहे थे। आप देख सकते हैं संगम क्षेत्र में चारों तरफ तीर्थ पुरोहितों के घाट में हर जगह से यात्री आए हुए हैं, मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, एमपी, यूपी, न जाने कहां कहां से लोग आ रहे हैं और अपने पितरों का पिंडदान सर्वप्रथम प्रयागराज में करके इसके बाद काशी जाएंगे, काशी के बाद गया जाएंगे, विष्णु मुख प्रयाग, विष्णु नाभि काशी, विष्णु चरण गया, तो तीनों जगह पिंडदान होगा।
2: ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है?
1: जी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है। ऑनलाइन व्यवस्था स्पेशली जो NRI लोग बैठे हुए विदेशों में, ये इनके लिए है, और साथ ही जो दिव्य वृद्ध विकलांग है, जो चलने में असमर्थ है, उनके लिए है। नहीं तो बाकी जो कॉमन पर्सन है और जो आ सकते हैं तो उनके लिए ऑफलाइन व्यवस्था है।
0: मान्यता है कि पितृपक्ष में पवित्र तीर्थ स्थलों पर पिंडदान करने से पूर्वजों को शांति मिलती है, परिवार में सुख शांति समृद्धि आती है, और पूर्वजों का आशीर्वाद मिले तो बिगड़े काम बनते हैं। इसलिए देश के कोने कोने से लोग प्रयागराज और काशी आते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये धार्मिक परंपरा इसी तरह निभाई जाती है। जो आ सकते हैं सब परिवार आए हैं और पूरे नियम से पिंडदान कर रहे हैं।
3: बैतूल से आए हैं, मध्य प्रदेश से, पितरों का पिंडदान करने के लिए, ताकि हमारे पितरों को आत्मा की शांति मिले, हमारे घर में सुख शांति प्राप्त हो, इसीलिए हम यही कामना करके पिंडदान करने आए हुए हैं। अभी प्रयागराज आए हो, यहाँ से हम काशी जाएंगे, वहाँ से गया जी जाएंगे,
4: पितृदान करने आए हैं और पितृ सुख शांति के लिए यहाँ पर आए हैं हम लोग, और ये 3 दिन तक का जो कार्यक्रम चलेगा इसमें हम लोग सब पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। हम अपने पितरों को मोक्ष दिलाने और सुख शांति के लिए यहाँ।
0: हालांकि सभी के लिए ये मुमकिन नहीं कि पितृपक्ष में प्रयागराज या वाराणसी पहुंच पाएं, पर पूर्वजों के प्रति मन में श्रद्धा है और उनके लिए दान करने का भाव है। ऐसे लोग मोबाइल फोन के जरिए यानी ऑनलाइन तर्पण करा रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि पिंडदान के लिए प्रयागराज और वाराणसी का विशेष महत्व है।
1: किसी कारणवश नहीं आ पा रहे, कोई बीमार है, कोई चल फिर नहीं पा रहा, कोई दिव्यांग है, आने में असमर्थ है, विदेश में है, वो आ नहीं सकता है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है ऑनलाइन व्यवस्था हम लोगों ने प्रारंभ की है। और इस अभी हम लोग जो है अभी एक अमेरिका में करा चुके हैं, और आज जो ये पिंडदान करा रहे थे हम लोग, ये मलेशिया में करा रहे थे, तो ऐसे थे लोग
2: धार्मिक परंपरा से
1: जुड़े, जी धार्मिक परंपरा से जुड़े रहे, लोग विदेश चले जाते हैं मगर अपने मूल संस्कृति को नहीं भूलते हैं, और अब तो ऐसी व्यवस्था हो गई कि जो नहीं भी कर पाते थे विदेश में रहने के बाद, अब वो लोग भी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक अच्छी व्यवस्था लागू हुई है कि किसी के मनोरथ, किसी का मनोकामना है वो पूर्ण होगा, किसी के पितर जो है करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बस एक बात को ध्यान रखना, ये व्यवस्था उन लोगों को लिए जो आने में असमर्थ हैं, जो समर्थ हैं अगर वो अगर ऐसा करते हैं ये उचित नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर आकर करें।
0: ऑनलाइन पिंडदान से यजमान तो प्रसन्न है और पुरोहित को भी समस्या नहीं, पर ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पूजा पाठ और भावना में ऑनलाइन दखलंदाजी पसंद नहीं आ रही।
5: बार बार मैं जब से ऑनलाइन श्राद्ध चालू हुआ, मैंने ऑनलाइन श्राद्ध से भरोसे आया, ऑनलाइन श्राद्ध होता ही नहीं है, ऑनलाइन से पूजा भी कुछ नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या है, चलो भाई दर्शन हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ऑनलाइन आप देख सकते हैं। श्राद्ध का मतलब मुझे स्वयं अपने हाथ से करना है, मैं ऑनलाइन आपको भोजन भेज रहा हूँ, आप कर लीजिएगा तो मैं श्राद्ध भी चढ़ाने को तैयार हूँ। मैं वर्जित रखा हूँ, लेकिन बहुत से ब्राह्मण है जो हमारे बिना अनुमति से शराबे हैं जिसको मैं मना करता हूँ, लेकिन उन्होंने चाहे गुरु जी पीछे से आया है अधिकारी ने बोला है शराब दीजिए, तो इसलिए थोड़ा सा निवेदन है की ऑनलाइन शराब के लिए फले ही नहीं, निर्माण अगर अनुरोध नहीं करेगा पंडित चढ़ाएगा नहीं।
0: देखिए तो ये विरोधाभास है, क्योंकि जहां प्रयागराज में पुरोहित ऑनलाइन तर्पण या पिंडदान के लिए तैयार हैं, वहीं वाराणसी के पिशाच मोचन तीर्थ पर ऑनलाइन श्राद्ध को वर्जित कर दिया गया है और पुरोहितों का एक बड़ा तबका इसके विरोध में है। यहां आने वाले यजमान भी मानते हैं कि पूर्वजों के लिए पूजा अपने हाथ से ही हो तो बेहतर है।
6: जो कार्य अपने निष्ठा से और हाथों से बढ़िया से हो जाए, यहां पे मौजूद होके पितृ पक्ष में जो है पिशाच मोचन में वो कार्य अच्छा है और ऑनलाइन शायद से कोई मतलब नहीं हमारी हिसाब से। नहीं नहीं है तो सही, वो जो कार्य किया गया है वो बढ़िया है, जो ऑनलाइन शायद है उसमें क्या होता है क्या नहीं होता उस पोस्ट दूसरा कुछ फंसा नहीं है क्या करते हैं पंडित जी लोग, लेकिन जो आपसे सामने होता है आप भी संतुष्ट रहते हैं। सबसे मेन व्यक्ति सो आदमी का संतुष्टि के लिए, जब आप संतुष्टि नहीं रहेंगे तो फिर श्राद्ध कराने से क्या फायदा है। नहीं ऑनलाइन से बेहतर है, ऑनलाइन से पूजा नहीं है, इट्स ऑफ योर लाइक मन को संतोष है, ऑनलाइन कोई सुविधा नहीं है। ऑनलाइन स्वाद सुशी है, पुरातन वाली सभ्यता नहीं है, ये जो सभ्यता पुरानी है वही होनी चाहिए। अगर पुराना सभ्यता को मानते हैं तो यहाँ पर पुरानी सभ्यता के अनुसार ही चलना चाहिए।
0: पिशाच मोचन पर श्राद्ध तर्पण, त्रिपिंडी श्राद्ध पिंडदान और नारायण बलि श्राद्ध का विशेष महत्व है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं और पुरोहितों के निर्देश पर मंत्रोच्चार के साथ कर्मकांड पूरा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ ऑनलाइन पर पूरी तरह रोक लग गई हो, किसी और शहर में रहने वाले अपने यजमानों को पुरोहित ये सुविधा दे रहे हैं। हाँ, मोबाइल का इस्तेमाल खुलेआम नहीं किया जाता। पूर्वजों के लिए पिंडदान या तर्पण ऑनलाइन हो या नहीं, इसे लेकर बहस हो सकती है, लेकिन अज्ञात लोगों के लिए यानी जिनका कोई वंशज न हो, कोई भी पिंडदान कर सकता है। और पिछले कई वर्षों से ये झांसी में ये काम जितेंद्र तिवारी कर रहे हैं। इस साल भी अज्ञात अनाथ और लावारिश दिवंगत आत्माओं के लिए सामूहिक तर्पण और पिंड पूजन किया गया। इसमें पुरोहितों और धर्माचार्यों के साथ बड़ी तादाद में आम लोग भी शामिल हुए और इसके साथ ही 878 परिवारों के पूर्वजों के पिंड लेकर सामाजिक कार्यकर्ता गया जी के लिए रवाना हुए।
7: देखिए, जिनका संसार में कोई नहीं है, अज्ञात अनाथ लावारिस या जिनका कोई और नहीं है संसार में, उनका आज हमने झांसी के सिपरी बाजार पहुंच नदी पर पिंड पूजन का काम किया और कल हम लोग 8:30 बजे चंबल एक्सप्रेस से उनका पिंडों को लेकर, पवित्र पिंडों को लेकर तीर्थराज ग्याजी में पिंडदान करने के लिए जाएंगे। मैं बता दूं आपको कि उसके साथ साथ वो परिवारों का भी पिंड लेकर मैं जा रहा हूं जो किसी कारण पर तीर्थराज ग्याजी नहीं जा सकते, किसी की आस्था बहुत है लेकिन असमर्थ है जाने में ग्याजी। तो पिछली बार मुझे 500 से अधिक परिवारों ने अपने दिवंगतों का नाम नोट कराया था, पूर्व परिजनों का, और इस बार 878 से अधिक परिवारों ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, अपने पूर्वजों का नाम अंकित कराया, तो मैं उनके पवित्र पिंडों को लेकर कल तीर्थराज ग्याजी जा रहा हूँ। इस प्रकार का विचार, जब मैं अपने माता पिता का पिंडदान करने तीर्थराज ग्याजी गया तो वहाँ पर पंडा पुरोहितों ने जब हमसे संकल्प कराया तो उन्होंने कहा कि संसार में जिसका भी पिंडदान नहीं होता, इवन जीव जंतु पशु पक्षी का भी, तब वो दिवंगत आत्मा को मोक्ष की प्राप्त नहीं होती है। तब मैंने उनसे प्रश्न किया कि महाराज, यदि जिनका संसार में कोई नहीं होगा तो उनका कैसे होगा? तो उन्होंने कहा उसका संकल्प या तो देश के राजा को लेना चाहिए या कोई भी अन्य व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से बिना पैसा लिए यदि उनका पिंडदान करेगा तो उनकी दिवंगत आत्मा को मोक्ष की गति प्राप्त होगी। तो मैंने उस संकल्प को लिया और लगातार कई वर्षों से मैं उनका पिंडदान करने जा रहा हूँ।
0: ये प्रण इस भावना से जुड़ा है कि ज्ञात हो या अज्ञात, सभी आत्माओं की शांति और संतुष्टि के लिए पिंडदान जरूरी है और पितृपक्ष का महत्व भी इसीलिए है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: पिंडदान और तर्पण के लिए जो महत्व प्रयागराज और वाराणसी का है, वैसा ही महत्व बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल का भी है। जहां पर देखिए देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु अपने पितरों और पूर्वजों की मोक्ष की कामना करने के लिए पहुंच रहे हैं। ब्रह्म कपाल में सुबह से शाम तक पिंडदान और तर्पण का सिलसिला जारी है। मान्यता है कि यहां पिंडदान और तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मान्यता है कि यहां पर पिंडदान करने के बाद अन्य स्थानों पर पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं होती। पौराणिक कथा के अनुसार अगर हम देखें तो भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले यहाँ पर पिंडदान किया था, इसके लिए भी इसका महत्व माना जाता है। अपनों के जाने के बाद भी उनसे जुड़ी यादें और जिम्मेदारियां हमारे साथ रहती हैं। पितृपक्ष में यही भाव गया जी में आस्था बनकर नजर आ रहा है। बारिश की बूंदों के बीच भी श्रद्धालुओं के कदम नहीं रुक रहे। कोई तर्पण कर रहा है तो कोई पिंडदान के जरिए अपने पितरों की सदगति की कामना कर रहा है। गयासुर की प्राचीन कथा हो या माता सीता के पिंडदान की मान्यता, गया जी में हर परंपरा अपने साथ आस्था और विश्वास की कहानी समेटे है। रिपोर्ट देखिए।
9: दान, तर्पण और प्रार्थना, ये उस अटूट विश्वास का प्रमाण है कि गया जी में की गई ये पूजा पूर्वजों की मुक्ति का मार्ग है। बारिश की बूंदें बरस रही है, किसी के हाथ पे छाता है तो किसी ने प्लास्टिक की ओट ले रखी है, लेकिन श्रद्धा की राह में मौसम आड़े नहीं आता। गया के देव घाट पर श्रद्धालु अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। कोई मंत्रों उच्चार के बीच तर्पण कर रहा है तो कोई पूरे विधि विधान से पिंड अर्पित कर रहा है। होठों पर मंत्र है और मन में अपनों के लिए आत्मिक शांति की कामना।
10: हम अपने माँ बाबू जी का
11: क्या बात है यार?
10: ऐसा सुना जा रहा जाता है कि पिंड बैठा देने पर वो लोग को मुक्ति मिल जाएगी, भोग मिल जाएगा। अब तो वो तो करना ही होगा, बारिश हो क्या आंधी हो कि तूफान हो, तो करना ही होगा। माँ बाबू जी के लिए तो इतना करेंगे ही।
9: गया जी में 15 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले में देश विदेश से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। गया के विष्णुपद मंदिर क्षेत्र और फल्गु नदी के किनारे कर्म कांड किए जा रहे हैं। कोई माता पिता के लिए आया है तो कोई पति या परिवार के दूसरे सदस्यों को स्मरण कर रहा है। बेटा ही क्यों, ये बेटी के लिए भी अपने पुरखों के प्रति श्रद्धा भाव दिखाने का अवसर है।
12: माता पिता का श्राद्ध करने के लिए गया जी तीर्थ में आए हैं हम लोग। तो सुना है यहाँ पिंडदान करने से पितृलोक तृप्ति होते हैं, पितृलोक को पुण्य मिलता है, इसीलिए हम लोग यहाँ गया जी में पिंडदान करने के लिए आए हैं अपने पितरों के नाम।
9: सनातन परंपरा में मनुष्य पर देव ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण बताए गए हैं। पितृ पक्ष

0: इसी धार्मिक विश्वास के चलते हर साल बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। गया जी की पहचान से जुड़ी एक प्राचीन कथा गयासुर की भी है। मान्यता है कि गयासुर ने कठोर तपस्या कर ऐसा वर प्राप्त किया था जिससे उसकी देह पवित्र हो गई। देवताओं ने यज्ञ के लिए उसका शरीर मांगा और गयासुर उसके लिए तैयार हो गया। कहा जाता है कि लेटने पर उसका शरीर 5 कोस तक फैल गया और इसी क्षेत्र का नाम गया पड़ा। बाद में उसने वर मांगा कि यहाँ श्रद्धा से कर्म करने वाले लोगों के पितरों को सदगति मिल जाए। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने उसकी इच्छा स्वीकार की।
1: यहाँ गयासुर नाम का एक राक्षस था, उसके ऊपर यज्ञ किया था देवताओं ने, तो यज्ञ 100 साल तक यज्ञ किया, उसके बाद फिर भी वो मरा नहीं और जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो वो उठ के चल दिया तो सभी देवता परेशान हुए। तो भगवान विष्णु आए, अपना उसके ऊपर पैर रखा, पूरा वजन रखा, तब उसके प्राण निकले। तो फिर भगवान ने कहा कि आप जो भी मांगना चाहें वो आप मांग सकते हैं, मैं भगवान हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं बस केवल एक ही चीज़ मांगता हूँ कि मेरे यहाँ पर जो भी यहाँ अपना अपने पितरों का पिंडदान करेगा या अस्थि दान करेगा तो उसका पिता या जो उनके बुजुर्ग लोग हैं जो शरीर पूरा कर चुके हैं उनके लिए मुक्ति मिले, स्वर्ग मिले, ये मेरी कामना है। तो जी, तो ऐसा ही वर दे करके और उसी जगह के लिए एक विष्णुपदी यहाँ पर स्थान है, ये तो फल्गु गंगा है, ये विष्णुपदी जगह है, वहाँ पर भगवान विष्णु का पद बना हुआ है। वही
0: इसी परंपरा से जुड़ी एक और कथा भगवान श्री राम और माता सीता की है। मान्यता है कि राजा दशरथ का श्राद्ध करने दोनों गया पहुँचे थे। कहा जाता है कि श्री राम पूजा की सामग्री लेने गए तो माता सीता के सामने दशरथ का हाथ प्रकट हुआ और उन्होंने पिंड देने की इच्छा जताई। इसके बाद सीता ने फल्गु नदी की रेत से पिंड बनाकर उन्हें अर्पित किया। आज भी ये कथा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के बीच आस्था का हिस्सा बनी हुई है। महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान और भी अलग अलग स्थानों से लोग गया पहुँचे हैं। यहाँ आए श्रद्धालु भी इसी भावना के साथ गया जी पहुँचते हैं। वो अपने माता पिता के लिए पिंड दान कर रहे हैं। पितृपक्ष के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुविधाओं और सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया है। गया में सोमवार को 3,95,000 श्रद्धालुओं की मौजूदगी दर्ज हुई। 9,768 लोगों ने मेडिकल सुविधा ली जबकि 70 बुजुर्गों ने व्हीलचेयर का इस्तेमाल किया। अब तक गया पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या 4,60,200 दर्ज की गई है। गया जी सिर्फ आम श्रद्धालुओं के लिए ही आस्था का केंद्र नहीं है, देश की जानी मानी हस्तियां भी यहां पितरों के लिए कर्म कांड करने पहुंचती रही है। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने 2024 में पितृपक्ष के दौरान विष्णुपद मंदिर में अपने माता पिता की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण किया था। वहीं देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी भी अपने बेटे अनंत अंबानी के साथ पिछले साल विष्णुपद मंदिर पहुंचे थे। मंदिर परिसर में बनाए गए विशेष स्थान पर दोनों ने पिंडदान किया था और इसके बाद फल्गु नदी में तर्पण किया था। बारिश में भी थमी नहीं आस्था की ये यात्रा। छाते और प्लास्टिक के सहारे श्रद्धालु अपने संकल्प को पूरा करने में जुटे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों की जुबां पर अपने पुरखों की याद है और हाथों में श्रद्धा का अर्पण। गया जी में जारी ये पितृपक्ष मेला परंपरा, विश्वास और अपनों के प्रति कर्तव्य की उस भावना को दिखा रहा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। गया से पंकज कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
3: बात करते हैं दिल्ली में एक ऐसी नहर की जो पिछले 20 साल में बड़े नाले में तब्दील हो गई थी। दो दशक से उसकी पहचान बदबू, कचरा और काले गंदी पानी तक सीमित रह गई थी। मुनक नहर की ऐसी दुर्दशा देखकर एक सामाजिक कार्यकर्ता के नेतृत्व में वहां रहने वाले लोगों ने उनको जीवन दान देने की ठान ली और महज 8-9 महीने के अंदर वो नाले से नहर बनने की ओर बढ़ गई है।

0: दशकों से इसकी पहचान बदबू, कचरा और काले गंदे पानी से रही। नाम कुछ और है पर पहचान नाले की रही। दिल्ली के वजीरपुर से होकर बहने वाली ये मुनक नहर कब और कैसे गंदे पानी के नाले में तब्दील हो गई, ये पता नहीं चला। लेकिन जब युवाओं ने प्रण लिया, अपनी जिम्मेदारी समझी, तो अब मुनक भी नाले से नहर बनती जा रही है।
1: वजीरपुर के मुनक नहर का अब दो रूप आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन पहले इसका सिर्फ एक रूप हुआ करता था, जो गंदा था, जिसमें गंदगी थी चारों तरफ, उसमें बहुत सारी जलकुंभियां थी और जिसका पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल करने के लायक नहीं था। नहर नाला बन चुकी थी, लेकिन आज आपको मुनक नहर के दो रूप दिखाई पड़ते हैं। एक रूप ये है जिस पर काम चल रहा है, जिसकी सफाई हो चुकी है और अब कहा जा रहा है कि छठ से पहले पहले इसे साफ कर दिया जाएगा ताकि छठ पूजा इसमें आसानी से मनाई जा सके।
0: वर्षों तक मुनक नहर की दुर्दशा देखने और गंदगी की दास्तां सुनाने के लिए मजबूर राहगीरों के लिए इन तस्वीरों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। कोई दूर दूर तक सोच नहीं सकता कि मुनक नहर की भी तस्वीर बदल सकती है। व्रत त्योहारों के बाद मुनक नहर का इस्तेमाल पूजा अनुष्ठान से जुड़ी सामग्री फेंकने के लिए भी होता था। आसपास कलेक्शन प्वाइंट होने की वजह से लोग इसी नहर में देवी देवताओं की प्रतिमाओं को भी विसर्जित कर देते थे। जाने अनजाने आस्था के इसी अपमान ने मुनक नहर के साफ सफाई के अभियान की नींव रख दी।
1: विनय दास मेरे साथ में है। आजकल आप इनका अगर इंस्टा पेज देखेंगे तो इनके कुछ वीडियोस बहुत वायरल हैं, कई लोग उन्हें देख रहे हैं। हाल ही में गणेश विसर्जन हुआ और इसी नहर में गणेश जी की जो मूर्तियां थी वो लोगों ने डाली पूजा के बाद, लेकिन वो अच्छे हालात में नहीं थी। विनय और उनकी टीम ने मिलकर उन मूर्तियों को बाहर निकाला। सिर्फ गणेश विसर्जन नहीं बल्कि कई जो पूजा पाठ होते हैं इनमें मूर्तियां ऐसे नहर नालों में फेंक दी जाती हैं। विनय कोशिश करते हैं कि उन देवी देवताओं का अपमान ना हो, इसलिए खुद अपनी टीम के साथ नहर में उतरते हैं और मूर्तियों को बाहर निकालते हैं।
0: विनय दास नाम के सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली की जे कॉलोनी के रहने वाले हैं, जिनके नेतृत्व में 1600 से ज्यादा बच्चों और युवाओं ने कचरे के साथ एक साल में नहर से देवी देवताओं की 2500 से ज्यादा मूर्तियां निकाली। इनमें 35 किलो का शिवलिंग भी शामिल है।
2: गणेश चतुर्थी पे काम पूरा हुआ, उसको यहाँ पर कूड़े के बीच में फेंक जाना, आप सोचिए क्या दिल में ठेस पहुँचती हम लोगों के। और मेरे साथ इतने सारे बच्चे हैं, 200-250 बच्चे एक साथ लगे थे, लास्ट 6 सितंबर को भी लगे थे। उसी दिन केवल हमने एक दिन में ही 600 से 700 मूर्तियां कलेक्ट करी और उसमें एक 35 किलो का शिवलिंग भी निकला।
1: 35 किलो का शिवलिंग?
2: जी भाई साहब, बिल्कुल 35 किलो का। और वो मुझे हैरानी हो रही थी, ना जाने ये शिवलिंग कितने समय से यहाँ पर रहा होगा। तो ये बड़ी शर्म की बात थी कि हम आज धर्म की तरफ तो चल रहे हैं, हम गर्व करते हैं हिंदू होने पर, लेकिन कुछ एक हिंदू ऐसे है ना जो अपने धर्म का सम्मान नहीं कर पा रहे।
0: इस सफाई अभियान के दौरान विनय और उनकी टीम को कई चुनौतियों और चोटों का सामना करना पड़ा। कचरे में कांच, सुई और जहरीले रसायन होने के बावजूद उन्होंने अपनी इस मुहिम को जारी रखा।
2: सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि हम नहर में जब कूद रहे थे तो आप मान के चलेंगे कि कूड़ा जो था वो लगभग कूड़ा इतने शेप में था कि वो उसको 2 फिट का था, वो एक बार में उगता। और यहाँ तक का पानी था, हमारी कमर तक का पानी था और लगभग उसमें पानी था ही नहीं। वो पूरा जो होता है ना कि कूड़ा कचरा जो होता है वो पानी में भीग भीग के सिमट जाता है, जितना हमने सोचा था उससे बहुत भयंकर था जब हम कूदे थे। पहली बात तो हमने सेफ्टी बूट यूज़ करे थे, लेकिन उसके बावजूद वो सेफ्टी बूट के अंदर भी पानी भर जाना, हमको कई कीड़े मच्छरों ने भी काटा और मेरे कई वॉलेंटियर्स को भी काटा, सदस्यों को काटा। मेरे भी अभी लास्ट संडे परसों ही हमने सफाई की है, जिसमें हमने जलकुंभियाँ उठाई, उसमें मूर्तियाँ आनी थी, तो उसमें भी काफ़ी सबसे बड़ा खतरा तो हमें इंजेक्शंस का ही रहता है, लेकिन सेफ्टी बूट से कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस हो जाता है।
0: विनय का बचपन जे कॉलोनी में ही बीता। वे एक बेहद साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता चपरासी के पद पर थे। अपनी शिक्षा का खर्च उठाने के लिए उन्होंने महज 7 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया। पर्यावरण संरक्षण के अलावा उन्होंने वंचित वर्ग के बच्चों को मुफ्त ट्यूशन देने और झुग्गी झोपड़ियों के आसपास सफाई अभियान चलाने जैसे अभियान भी छेड़ रखे हैं, जिनमें मुनक नहर की सफाई शामिल है। विनय की इस मुहिम के बाद अब मुनक नहर की सफाई के लिए सरकारी स्तर पर भी काम शुरू हो गया, जिसके बाद ये उम्मीद है कि इस बार छठ पूजा के दौरान सूर्य देव को अर्घ लोग साफ सुथरी मुनक नहर में खड़े होकर देंगे।
1: सफाई के जरिए आप सोचिए बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, अच्छी संगत में जा रहे हैं कम से कम, अगर किसी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी के बच्चे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये नहर अब जो साफ हो रही है, जो इस पर काम चल रहा है, वो कहीं ना कहीं उसमें विनय की बहुत बड़ी भूमिका है। और अब हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार छठ पूजा जब हो तो बात सिर्फ यमुना की ना हो, बल्कि लोग मुनक नहर में भी उतरकर आसानी से साफ सफाई के बीच सूर्य देवता को अर्घ दे पाएंगे। मनीष और अस्या, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड और ब्रॉन्ज, महिला रिले रेस 4x400 रेस में जीता सोना, मैंस 4x400 मीटर रिले में मिला ब्रॉन्ज, भारत के खाते में अब तक 6 गोल्ड, कुल मेडल 53। कोलकाता में भारत ब्राजील के बीच ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडली फुटबॉल मैच की तैयारियां अंतिम दौर में, 3 अक्टूबर को खेला जाएगा मैच। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए छोटी सड़कों पर चलाई जाएंगे 30 ईवी स्वीपिंग मशीनें, आईटी दिल्ली बताएगा प्रदूषण का रियल टाइम सोर्स। केदारनाथ पैदल मार्ग स्थित चिरबासा स्लाइडिंग जोन में एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, करीब 9,000 यात्री चिरबासा स्लाइडिंग जोन में एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, करीब 9,000 यात्री एविएशन यूनिट्स ने हाईवे की लैंडिंग की प्रैक्टिस की।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात मौसम के बदले अंदाजो मिजाज की। सितंबर का महीना है और कायदे से अभी हर साल की तरह देश के तमाम हिस्सों में गर्मी का एहसास होना चाहिए था, लेकिन अब की बार सितंबर में मौसम ने गजब का रंग दिखाया है। सितंबर का आखिर है और ऐसा लग रहा है कि मानो दिसंबर की शुरुआत हो गई हो। मौसम की अंगड़ाई है और बिना बुलाए सितंबर में सर्दी आई है। पहाड़ों में सफेद बर्फ हर तरफ दिखाई दे रही है, तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जाते मानसून के बीच में बढ़ी ठंडक सर्दी का एहसास करवा रही है। खास तौर से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर से लेकर सिक्किम तक हाल के दिनों में इतनी बर्फ पड़ी है कि सुनहरी धूप के दिन दिखाने वाला सितंबर पहाड़ों पर कपकपाहट और कोहरे भरे दिन दिखा रहा है। सितंबर के महीने में मैदान के लोग गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन अब की बार तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैदानों का मौसम पहले से सुहाना है। दिल्ली में रविवार को सितंबर का बीते 18 साल का सबसे सर्द दिन रहा। अब सवाल यह है कि आखिर सितंबर के महीने में गुलाबी सर्दी आई कहां से? क्या सर्दियों की शुरुआत अब की बार सितंबर से हो चुकी है, और नहीं तो फिर मौसम की स्क्रीन पर सर्दियों का ये ट्रेलर कब तक जारी रहने वाला है? तो चलिए आपको सबसे पहले यही बताते हैं और दिखाते हैं।

0: सोचा तो था अभी गर्मी और सताएगी, हल्की हल्की ही सही पर उमस अपने होने का एहसास दिलाएगी। सोचा था पहले अक्टूबर आएगा, फिर दिवाली का हाज थाम कर सर्दी आएगी, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने आकर राजधानी में मौसम के सारे प्लान कुछ ऐसे डिस्टर्ब कर दिए कि सितंबर का वक्त, हालात, जज्बात सब बदल गया। अब आसमान में बादलों का डेरा है, राजधानी पर ठंडी हवाओं का पहरा है, ये सितंबर की सुबह है, बस दिसंबर का चेहरा है। जो सितंबर का महीना दिल्ली और आसपास के इलाकों में उमस भरी गर्मी और चिपचिपे मौसम के लिए जाना जाता रहा है, उसने अब के साल आखिरी दिनों में देश की राजधानी को एक ऐसा सरप्राइज दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दिल्ली NCR अचानक एक अनचाही अनजानी ठंड के आगोश में है। आखिर क्यों वक्त से पहले बदल गया मौसम का ये मिजाज? इसे देखकर दिल्ली वालों के मन में तुरंत सवाल उठा, कहीं ये दिल्ली की ट्रेडमार्क सर्दी का ट्रेलर तो नहीं? ये अंदेशा कुछ और मजबूत हुआ जब खबर मिली कि ठंड बस यहाँ भर नहीं है, बल्कि पहाड़ों पर तो सितंबर में ही विंटर वंडरलैंड सज गया है। कश्मीर से लेकर सिक्किम तक देश के कई पहाड़ी इलाकों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। हिमाचल का किन्नौर और रोहतांग पास 4 से 5 इंच तक बर्फ से ढक चुका है। वहीं सिक्किम के नाथुला पास और गुरुडोंगमार झील के पास के नज़ारे ये गवाही दे रहे हैं कि इस बार पहाड़ों पर विंटर सीजन ने बहुत जल्दी दस्तक दे दी है। वास्तव में पहाड़ों से आ रही इन्हीं बर्फीली और ठंडी उत्तर पूर्वी हवाओं ने दिल्ली NCR को गर्मी में भी सर्दी का एहसास करवा दिया है। खासकर दिल्ली के सफदरजंग, रिज और पालम जैसे इलाकों में तो पारा सामान्य से काफी नीचे चल रहा है। ये आलम देखकर दिल्ली वाले अभी सर्दी को वेलकम कहने ही वाले थे कि तभी मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि राजधानी का ये मौसम वास्तव में सर्दी की शुरुआत नहीं, बल्कि 3 बड़े मौसमी सिस्टम्स के संगम का नतीजा है।
1: दिल्ली की बात है तो एक जो है डीप डिप्रेशन, जिसने के जो हमारे ईस्ट कोस्ट से हमें क्रॉस किया था, ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट फ्रंट मूव करके उत्तर प्रदेश में आकर के आज सुबह के समय जो है वो एक लेसमार्क हो गया, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया से लेसमार्क हो गया है, जिसकी वजह से जो पूरा ये जो बेल्ट है इसमें काफ़ी अच्छी वर्षा देखने को मिली। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी यानी कि अति भारी वर्षा भी रिपोर्ट की गई थी, साथ साथ उत्तराखंड में काफ़ी अच्छी वर्षा हुई। इसके साथ साथ में पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है था वो भी, उसका भी असर देखने को मिला, जिसकी वजह से जो है पहाड़ों पर कुछ स्थानों पर बर्फबारी भी हुई और इसकी वजह से भी जो तापमान है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली। तो अभी दिल्ली की बात करेंगे तो अभी भी यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है नीचे चल रहे हैं।
0: आसान भाषा में समझें तो दिल्ली में बिन बुलाई सर्दी के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला कारण है सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ। भूमध्य सागर से उठी ठंडी और नमी से भरी हवाओं का एक मजबूत सिस्टम इस वक्त उत्तर भारत के ऊपर से गुजर रहा है, जिसने पहाड़ों पर बेवक्त बर्फबारी शुरू कर दी। दूसरा कारण है बंगाल की खाड़ी का डिप्रेशन। बंगाल की खाड़ी में हाल ही के दिनों में बना एक गहरा कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ते हुए MP और UP के रास्ते दिल्ली के करीब आ पहुंचा। जब इन दोनों विपरीत दिशा की हवाओं का टकराव हुआ तो दिल्ली और आसपास के राज्यों में झमाझम बारिश शुरू हो गई। और तीसरा कारण है मॉनसून की विदाई। दिल्ली से मॉनसून आधिकारिक रूप से सितंबर के आखिरी हफ्ते में विदा होता है, इस बार भी यही हुआ, लेकिन मॉनसून की विदाई के ठीक बाद आसमान साफ होने और हवाओं का रुख बदलते ही पहाड़ों की ठंडक सीधे मैदानी इलाकों में बिना किसी रुकावट के प्रवेश कर गई और दिल्ली को सर्दी का एहसास करवा गई।
2: यह बंगाल के अंदर जो है एक लो प्रेशर एरिया बना, उससे बहुत तेजी के साथ में बारिश हो गई। सितंबर में मेरे ख्याल से पिछले 25 साल में पहला या दूसरा एक ऐसा टाइम था कल रात को उत्तरी भारत के अंदर जो सबसे ठंडा दिन था, वरना के ना तो पश्चिमी विक्षोभ ऑलमोस्ट लुप्त रहते हैं सितंबर के महीने में और इतनी टेम्परेचर तो पड़ता ही नहीं है, बल्कि अक्टूबर के सेकेंड वीक में जाते जाते सर्दी अपने दस्तक देती है। तो दोनों विरोधाभास ली हुई चीजें हुई हैं जो कि हम लोग करते हैं, लेकिन ये वही चीज है कि ये आपने अनुमान लगाया है लंबे समय तक सुपर एलनिनो के चलते वो होना ही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज बीच में जो अनिश्चितता का एक जो फैक्टर होता है उसने अपना रंग दिखाया है।
0: बता दें कि मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली के सफदरजंग में पिछले रविवार को दर्ज हुआ 21 डिग्री सेल्सियस तापमान साल 2000 के बाद सितंबर का दूसरा सबसे कम तापमान है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इस साल कड़ाके की और लंबी ठंड पड़ेगी? IMD के मुताबिक इसका जवाब है नहीं। मौसम वैज्ञानिकों के हिसाब से ये केवल एक ट्रांजिशनल चेंज यानी मौसम का अस्थायी बदलाव है। अक्टूबर के पहले हफ्ते से आसमान पूरी तरह साफ होगा और तापमान फिर से 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच जा सकता है।
1: तो बर्फबारी भी हुई थी पहाड़ों पर कुछ स्थानों पर, वहाँ से ठंडी हवाएं भी आ रही थी, साथ साथ में वर्षा गतिविधि भी हुई, क्लाउडी कंडीशंस बनी हुई थी, जिसकी वजह से जो तापमान है उसमें गिरावट देखी गई थी। हालांकि आने वाले समय में जैसे जैसे कंडीशंस जो है साफ होंगी, बादल भी कम हो जाएंगे, साथ साथ में जो ठंडी हवा है इसमें भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, तो ये जो अभी के टेम्परेचर चल रहे हैं इसमें इजाफा देखने को मिलेगा। ये करीब करीब अपने नॉर्मल स्थिति में 3 से 4 दिन के बाद जो कि 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंचने की संभावना है।
0: पर्यावरण वैज्ञानिक इस घटना को क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के एक बड़े इशारे के रूप में भी देख रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक हिमालय में सितंबर में बर्फ गिरना प्राकृतिक है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब स्नो लाइन 4000 मीटर से ऊपर खिसक रही है। मौसम का इस तरह अनप्रेडिक्टेबल होना यानी कभी भारी सूखा तो कभी अचानक सितंबर में ठंडक का एहसास प्रकृति के बदलते संतुलन का बड़ा इशारा है।
2: हमारे इस मौसम में दो विलेन है, एक तो है कि क्लाइमेट चेंज और दूसरा है ये सुपर एलिनो जो लेके आया है। अब लॉन्ग टर्म का इफेक्ट हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं इतने सालों से, इतने टाइम से, मतलब पिछले एक आधे महीने से, कि सुपर एलिनो की वजह से हमारा जो है इस बार पश्चिम विक्षोभ बहुत कम हो जाएंगे, सर्दी जितनी पड़ना चाहिए थी उतनी पड़ेगी नहीं। ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये होती है कि क्लाइमेट चेंज से जो भी चीजें हम लोग अनुमान लगाते हैं या कुछ होती है उसमें अनिश्चितता लाती है, तो ये दोनों चीजें अनिश्चितता की स्थिति लाती हैं।
0: भले ही सितंबर ने दिसंबर वाली सर्दी का एहसास करवाया है, लेकिन ये बदलाव टेम्पररी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सर्दी अपने तय समय पर या थोड़ी देर से शुरू होगी। आने वाले दिनों में दिल्ली NCR का मौसम सूखा, आसमान साफ और तापमान 35 डिग्री के आसपास रहेगा, इसलिए त्योहारों की तैयारी करने निकलें तो गर्मी और उमस से लड़ने की तैयारी का भी ख्याल रखें।
3: ये 30 तारीख से दिल्ली जो उत्तर भारत दिल्ली में एकदम बादल छट जाएंगे पूरे, तो तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी चालू हो जाएगी। ये चूंकि यहाँ पे वर्षा की स्थिति थी, ऊपर से WDT ठंडी हवाएं आ रही थी और यहाँ से नमी जा रही थी, तो दिल्ली का जो एरिया है आप देखिए सघन है, खासकर वृक्षारोपण भी काफी मात्रा में है, तो जो नमी जमा हो जाती है और दिन में हीट बढ़ने के कारण से कन्वर्ट होके वो तापमान में गिरावट आई और ज्यादा दिन नहीं रहने वाली, करीब ये 30 तारीख से तापमान में बढ़ोतरी चालू हो जाएगी और पूरा 1 अक्टूबर से एकदम साफ हो जाएगा मानसून उत्तर भारत में। धीरे धीरे सिर्फ उत्तरांचल जो है ऊपर उत्तराखंड है वहां पे बादल बने रहेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मानसून की पूरी तरह से विदाई उत्तर भारत में हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि 15 अक्टूबर तक छुटपुट कुछ ना कुछ वर्षा, छोटे छोटे सिस्टम, कई बार लोकल स्तर पर नमी रहती है और तापमान बढ़ता है तो शाम को उसमें शहरों में रेन हो जाती है, तो ये स्थिति अभी 15 अक्टूबर तक मिलने वाली है, लेकिन बहुत तेजी से मानसून की विदाई 1-2 अक्टूबर तक शुरू हो जाएगी और साफ हो जाएगा, लेकिन तापमान में गिरावट अब आने की कोई फिलहाल संभावना नहीं है क्योंकि बर्फबारी हो रही है उत्तर भारत वहाँ उत्तराखंड वगैरह ऊपर जा रही, तो उसका थोड़ा सा हवाओं का असर है, लेकिन जब ये राजस्थान से नॉर्थ वेस्ट से जब हवाएं आती है सूखी तो उस समय तापमान में उतनी गिरावट नहीं कर पाती, खासकर अक्टूबर में, लेकिन धीरे धीरे ठंड का प्रचलन बढ़ेगा, अक्टूबर के एंड से तापमान में गिरावट आएगी और जनवरी फरवरी तक मिलेगी।
0: फिलहाल दिल्ली NCR के लोग उमस भरी गर्मी से मिली इस अचानक राहत का आनंद ले रहे हैं। हवा साफ हो चुकी है और मौसम सुहाना है, लेकिन विज्ञान की चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सितंबर की ये गुलाबी ठंड हमें इस सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानी गतिविधियों ने हमारी वेदर साइकिल को किस हद तक प्रभावित कर दिया है। आज पहाड़ों पर बेमौसम बर्फ है, मैदानों के तापमान में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट है, कल मौसम का अगला रूप क्या होगा कहना जरा मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो तो मैदानों में गुलाबी सर्दी का एहसास है तो पहाड़ों पर फुल ऑन दिसंबर वाली फीलिंग चल रही है। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी नजर आ रही हैं। गुलमर्ग के अफरवाद पीक से लेकर हिमाचल की धौलाधार और मनाली की चोटियों तक ताजा हिमपात ने मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया है। सितंबर में ही देश के कई पहाड़ी इलाके विंटर वंडरलैंड में बदल गए हैं।

0: धरती पर बर्फ की धूल, शाखों पर बर्फ के फूल, कश्मीर में बर्फ ने कुदरत के घर से रंगों को बेदखल कर दिया है। सफेद और शफाफ अक्टूबर की चौखट पर खड़े मौसम ने सितंबर में ही अपना रंग बदल लिया। भला किसने सोचा होगा कि इस मौसम में बर्फबारी होगी और पहाड़ बर्फ से लद जाएंगे। लेकिन कश्मीर के गुलमर्ग से आई ये तस्वीरें देखिए। कश्मीर की वादियों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी के साथ बारिश हुई है। यानी सितंबर के आखिरी दिनों में ही कश्मीर की पहाड़ियों ने सर्दियों की आहट दे दी है। गुलमर्ग के ऊंचे पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी ने नजारे को बेहद खूबसूरत बना दिया है। अफरवाद पीक बर्फ का दुशाला ओढ़े खड़ा है। दूर दूर तक बिछी बर्फ और निगहबानी करते घने बादलों की आवाजाही के बीच गुलमर्ग का मौसम सितंबर में सर्दी का एहसास करवा रहा है। नजारा कश्मीर के कठुआ का भी कुछ कुछ ऐसा ही है। कठुआ में बर्फबारी से सजे खूबसूरत पहाड़ों का दीदार हो रहा है। कठुआ के ज्यादा ऊंचाई वाले कैलाश कुंड पहाड़ों और चत्तरगला बाईपास इलाके में ताजा बर्फबारी हुई है। ऊंचे इलाकों में मौसम बदल गया है। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से लकदक पहाड़ अपनी चमक बिखेर रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से 29 सितंबर को एक और पश्चिमी विक्षोभ का अनुमान जताया गया था, जिसके चलते ऊपरी इलाकों में ठंड बरकरार रहने और हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है।
1: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से काफी अच्छी एक्टिविटी हुई है, साथ साथ में जो ये डिप्रेशन था जो कि आ गया कि वेलमाक लो प्रेशर एरिया में कमजोर हुआ, फिर लो प्रेशर एरिया में, और आज सुबह जो है लेसमाक हो गया, इसका भी असर देखने को मिला, जिसकी वजह से उत्तराखंड में और आसपास के जो पहाड़ी राज्य हैं वहां पर भी बर्फबारी देखने को मिली। आज भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो करीब 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के आसपास केंद्रित है, जिसको देखते हुए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर जो भारी वर्षा का जो है अलर्ट जारी किया गया है, साथ साथ में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है।
0: मौसम को देखते हुए प्रशासन ने ऊंचाई वाले मार्गों पर यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। अगर आप भी पहाड़ों की इस ताजा रंगत का दीदार करना चाहते हैं, तो कठुआ की ये सुंदर वादियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो सितंबर के आखिरी दिनों में यहाँ भी मौसम सर्द हो गया है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से कांगड़ा की धौलाधार पर्वतमाला गुलजार नजर आ रही है। सितंबर में दूसरी बार हुई बर्फबारी से धौलाधार की ऊंची चोटियां चांदी सी जगमगा रही हैं। बादलों के बीच बर्फ से ढकी चोटियों का ये नजारा बेहद खूबसूरत दिख रहा है। धौलाधार की सफेद चोटियां, नीचे छाए बादल और बारिश से धुले पेड़ों का चटक रंग कामना में कुदरत की कारीगरी खूब जम रही है। सिर्फ धौलाधार ही नहीं, हिमाचल के दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में भी ताजा हिमपात हुआ है। किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू की ऊंची चोटियां भी बर्फ से ढकी नजर आ रही है। धर्मशाला और आसपास के इलाकों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में ही मौसम का ऐसा रंग बदला कि पहाड़ों पर सर्दी का एहसास होने लगा।
2: बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एक दो स्थानों में हैवी रेनफॉल दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश कांगड़ा स्टेशन में रिकॉर्ड की गई थी, लगभग 70 एमएम के आसपास। उसके उपरांत जो सेकंड हाईएस्ट है धर्मशाला में 60 एमएम के आसपास रिकॉर्ड की गई थी। वहीं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं शिमला, सिरमौर, मंडी और किन्नौर, यहाँ पे मॉडरेट कैटेगरी की बारिश रिपोर्ट की गई। और जो हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं स्पेशली डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू में, और यहाँ पे हल्की बर्फबारी रिपोर्ट की गई।
0: सितंबर में बर्फ और बारिश की दस्तक बता रही है कि हिमाचल की पहाड़ियों पर सर्द मौसम ने इस बार कुछ जल्दी ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तो वही ताजा हिमपात से हिमाचल में मनाली के पहाड़ों की खूबसूरती भी निखर उठी है। बर्फ में लिपटी पहाड़ियों पर जब चमकती धूप खिली तो वादियाँ सुनहरी हो गईं। ताजा बर्फबारी के बाद यहाँ तापमान में गिरावट आई है और मनाली की फिजाओं में ठंडक बढ़ गई है। बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और धूप में चमकती चोटियां मनाली की खूबसूरती इस वक्त देखते ही बन रही है। ये सितंबर का आखिर है, लेकिन मनाली की वादियों में ये सर्दियों के आगाज की आहट है। धर्मशाला से पूजा शर्मा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जोरदार बर्फबारी ने इन इलाकों का मौसम भले ही सुहाना बना दिया हो, लेकिन निश्चित रूप से स्थानीय लोगों और पर्वतारोहियों के लिए मौसम चुनौतियों का दौर भी लेकर आया है। लेकिन तमाम चुनौतियों के बीच ही हिमाचल के किन्नौर से एक राहत भरी तस्वीर सामने आई। माउंट लियो पारगिल 2 के अभियान पर निकला कोलकाता का 12 सदस्यीय पर्वतारोही दल अब सुरक्षित वापस लौट आया है। हिमालय राज बीकन का ये दल खराब मौसम के बीच में मुश्किल में फंस गया था। अचानक हुई तेज बारिश और बर्फबारी ने हालात चुनौतीपूर्ण बना दिए। तापमान -20 डिग्री तक जा पहुंचा और बर्फ की मोटी चादर ने रास्ते मुश्किल कर दिए। ऐसे में अभियान को रोकना पड़ गया। दल की मदद के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ ITBP और स्थानीय लोग भी जुट गए और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पूरा दल सुरक्षित इलाके से बाहर आ गया।

0: अचानक बदला मौसम, तेज बारिश के बाद तापमान -20 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में किन्नौर में माउंट लियो पारगिल 2 की ओर बढ़ रही कोलकाता की 12 सदस्यीय हिमालयाज बीकन टीमें आधे रास्ते में फंस गईं।
1: लेकिन हम लोग का समिट जो दिन था, हम लोग समिट में पहुंचा, समिट से थोड़ा नीचे हम लोग का छोड़ के आने पड़ा है ड्यू टू द हाई अल्टीट्यूड सिकनेस ऑफ वन ऑफ द मेंबर। एंड हम लोग देन वी आर रिटर्न बैक फ्रॉम बेस कैंप दैट डे।
0: बर्फबारी से रास्ते ढक चुके थे, लौटना भी आसान नहीं था, लेकिन बिगड़ते मौसम के बीच टीम के पास वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।
1: बीच में बहुत स्नो गिरा है तो उसमें वो लोग का चलने का दिक्कत हो रहा था, तो हमारा पास भी 2-3 आदमी था जो थोड़ा से उम्र में ज़्यादा है, वो लोग को सबसे चलने में दिक्कत होता था, तो उसी टाइम हम सोचा है हमको असिस्टेंट जरूरी है।
0: बर्फीली वादियों में फंसी टीम ने मदद के लिए स्थानीय पुलिस और आईटीबीपी से संपर्क किया, साथ ही स्थानीय लोगों से भी मदद मांगी, जिसके बाद तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया।
1: जहां तक हम लोग का आदमी को मिले उतना तक वो लोग पूछे कि ना वो लोग अगर उसको मिल जाएगा तो उसको भी थोड़ा साहस मिल जाएगा जे हमारे लिए आदमी आ गया, रेस्क्यू टीम आ रहा है। तो उसका बाद दासी जी खुद चला गया ऊपर में वो लोग का रूट देखने के लिए, पुलिस भी इतना में आ गया था, पुलिस का जो टीम था तो तासी जी पुलिस टीम को लेके भी उस उधर छोड़ा है।
0: इसके बाद आईटीबीपी के जवान मेडिकल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव अभियान में जुट गए।
1: आईटीबीपी पूरा मेडिकल टीम लेकर आया, आईटीबीपी का सबसे बड़ा असिस्टेंट जो था हम लोग का लिए उसका मेडिकल टीम रेडी रहता है हमेशा।
0: राहत बचाव टीम और स्थानीय लोग पहुंचे तो सभी ने राहत की सांस ली। टीम ने एक बीमार पर्वतारोही को सुरक्षित बाहर निकाला।
1: सही सलामत सब सेफ्टी में हम लोग यहाँ तक पहुंच गया, सबको असिस्टेंट मिला के हम लोग का पूरा टीम सेफ पहुंच गया नाको में।
0: मदद पहुंची तो हालात संभले और आखिरकार बर्फीली मुश्किलों के बीच फंसी टीम सकुशल नाको पहुंच गई। किन्नौर से विशेषर नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो सितंबर में मौसम की मनमर्जियां जारी हैं। मौसम की मनमानी का यही दौर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में नजर आया है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस और डीप डिप्रेशन की वजह से पिछले कुछ दिनों में राजस्थान के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई, तापमान गिरा, लेकिन अब दिल्ली की तरह वहां भी मौसम करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है। सीधे राजधानी जयपुर से राजस्थान के मौसम का हाल बता रही है हमारी सहयोगी रिदम जैन।
3: राजस्थान में सक्रिय हुए दो पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में खास बदलाव देखा गया। पिछले 24 घंटे में ये बदलाव बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखा गया क्योंकि मूसलाधार बारिश राजस्थान के कई कई इलाकों में दर्ज की गई है, जिसमें जयपुर, बीकानेर, चूरू संभाग शामिल है, और ऐसे में टेम्परेचर्स में भी भारी गिरावट देखी गई है। क्योंकि कुछ दिन पहले जहाँ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी यहाँ पर दर्ज की जा रही थी कि सितंबर में 15 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटा था, वहीं एक दिन यानी कि सोमवार ने पूरा जो मौसम है वो बदल दिया। लगातार बारिश यहाँ पे देखी गई, जिसमें राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश जयपुर में ही 52 मिलीमीटर दर्ज की गई है, और ऐसे में इस बारिश की वजह से गर्मी से राहत जयपुर वासियों को और राजस्थान वालों को सभी को मिली है, और 2 से 7 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर्स में गिरावट भी दर्ज की गई है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये अभी भी मानसून जारी है या फिर ये मानसून की विदाई वाली बारिश है। तो ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि जब मानसून जा रहा होता है तब लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से बारिश होती है, मौसम में बदलाव लगातार देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ कल यानी कि सोमवार को देखने को मिला, जब लगातार 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्टिव हुए थे, तो ऐसे में मौसम में बदलाव देखा गया था। 260 डिग्री की गिरावट जरूर आई थी, पर साथ ही में मौसम विभाग का कहना है कि ये जो राहत है ये एक ही दिन की थी, क्योंकि अब वापस से मंगलवार से मौसम में बदलाव देखा गया, आसमान जो है वो कहीं ना कहीं वापस से साफ हो गया है। आने वाले 3 से 4 दिन इसी तरीके से जो मौसम है वो साफ ही रहने वाला है, और धीरे धीरे करके 4 से 5 डिग्री तक वापस से टेम्परेचर्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
2: तो चलिए, जब तक आप भी इंजॉय कर सकते हैं, इंजॉय कीजिए इस गुलाबी सर्दी को। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें दिन भर जारी है, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।

हिमाचल के किन्नौर में ऊंचाई वाले इलाके से एक रात भरी खबर निकलकर सामने आई है। माउंट लियो पारगिल 2 के अभियान पर निकला कोलकाता का 12 सदस्यीय पर्वतारोही दल अब सुरक्षित वापस लौट आया। लिहाजा हिमालयास बीकन का ये दल खराब मौसम के बीच मुश्किल में फंस गया था। अचानक हुई तेज बारिश और बर्फबारी ने हालात को और चुनौतीपूर्ण बना दिया। तापमान -20 डिग्री तक जा पहुंचा और बर्फ की मोटी चादर ने रास्ते मुश्किल कर दिए। ऐसे में अभियान को रोकना पड़ा। दल की मदद के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ ITBP और स्थानीय लोग भी जुटे। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार पूरा दल सुरक्षित इलाके से बाहर आ गया।

0: अचानक बदला मौसम, तेज बारिश के बाद तापमान -20 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में किन्नौर में माउंट लियो पारगिल 2 की ओर बढ़ रही कोलकाता की 12 सदस्यीय हिमालयाज बीकन टीमें आधे रास्ते में फंस गईं।
1: इन हम लोग का समिट जो दिन था, हम लोग समिट में पहुंचा, समिट से थोड़ा नीचे हम लोग का छोड़ के आने पड़ा है ड्यू टू द हाई अल्टीट्यूड सिकनेस ऑफ वन ऑफ द मेंबर। एंड हम लोग देन वी आर रिटर्न बैक फ्रॉम बेस कैंप दैट डे।
0: बर्फबारी से रास्ते ढक चुके थे, लौटना भी आसान नहीं था, लेकिन बिगड़ते मौसम के बीच टीम के पास वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।
1: बीच में बहुत स्नो गिरा है तो उसमें वो लोग का चलने का दिक्कत हो रहा था, तो हमारा पास भी 2-3 आदमी था जो थोड़ा से उम्र में ज़्यादा है, वो लोग को सबसे चलने में दिक्कत होता था, तो उसी टाइम हम सोचा है हमको असिस्टेंट जरूरी है।
0: बर्फीली वादियों में फंसी टीम ने मदद के लिए स्थानीय पुलिस और आईटीबीपी से संपर्क किया, साथ ही स्थानीय लोगों से भी मदद मांगी, जिसके बाद तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया।
1: जहां तक हम लोग का आदमी को मिले उतना तक वो लोग पहुंचे, कि ना वो लोग अगर उसको मिल जाएगा तो उसको भी थोड़ा साहस मिल जाएगा जे हमारा लिए आदमी आ गया, रेस्क्यू टीम आ रहा है। तो उसका बाद दासी जी खुद चला गया ऊपर में वो लोग का रूट देखने के लिए, पुलिस भी इतना में आ गया था, पुलिस का जो टीम था, तो दासी जी पुलिस टीम को लेके भी उस उधर छोड़ा है।
0: इसके बाद आईटीबीपी के जवान मेडिकल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव अभियान में जुट गए।
1: आईटीबीपी पूरा मेडिकल टीम लेकर आया, आईटीबीपी का सबसे बड़ा असिस्टेंट जो था हम लोग का लिए, उसका मेडिकल टीम रेडी रहता है हमेशा।
0: राहत बचाव टीम और स्थानीय लोग पहुंचे तो सभी ने राहत की सांस ली। टीम ने एक बीमार पर्वतारोही को सुरक्षित बाहर निकाला।
1: सही सलामत सब सेफ्टी में हम लोग यहाँ तक पहुंच गया, सबको असिस्टेंट मिला के हम लोग का पूरा टीम सेफ पहुंच गया नाको में।
0: मदद पहुंची तो हालात संभले और आखिरकार बर्फीली मुश्किलों के बीच फंसी टीम सकुशल नाको पहुंच गई। किन्नौर से विशेषर नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
7: एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड और ब्रॉन्ज। महिला रिले रेस 4x400 रेस में जीता सोना, मैंस 4x400 मीटर रिले में मिला ब्रॉन्ज। भारत के खाते में अब तक 6 गोल्ड, कुल मेडल 53। कोलकाता में भारत ब्राजील के बीच ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडली फुटबॉल मैच की तैयारियां अंतिम दौर में, 3 अक्टूबर को खेला जाएगा मैच। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए छोटी सड़कों पर चलाई जाएंगी 30 ईवी स्वीपिंग मशीनें, आईटी दिल्ली बताएगा प्रदूषण का रियल टाइम सोर्स। केदारनाथ पैदल मार्ग स्थित चिरबासा स्लाइडिंग जोन में एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, करीब 9,000 यात्रियों को सुरक्षित रास्ता पार कराया। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास नेशनल हाईवे 911 मिलिट्री रनवे में बदला। भारतीय सेना की एविएशन यूनिट्स ने हाईवे की लैंडिंग की प्रैक्टिस की।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष की, जिसमें पूर्वजों की मोक्ष के लिए तर्पण और पिंडदान का विधान है और इसके लिए भारी तादाद में लोग प्रयागराज, वाराणसी और सबसे ज्यादा गया जी में पहुंच रहे हैं। आज आपको इन तीनों जगहों के अलावा बद्रीनाथ धाम के पास ब्रह्म कपाल के बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि मान्यता ये है कि यहाँ पितरों के लिए किए गए अनुष्ठान से उनको मुक्ति मिलती है। लेकिन इसके साथ ही बात होगी ऑनलाइन तर्पण या पिंडदान की। बदलते दौर में लोगों की सुविधा के मुताबिक प्रयागराज के पुरोहित ऑनलाइन तर्पण करा रहे हैं, लेकिन वहीं पर इसे लेकर वाराणसी में विरोध है। क्या मोबाइल पर मोक्ष की पूजा मुमकिन है? आज इस पर भी हम बात करेंगे। पितृपक्ष की शुरुआत के साथ ही पवित्र तीर्थ स्थान जैसे प्रयागराज और वाराणसी में भीड़ उमड़ने लगी। पूर्वजों के मोक्ष के लिए तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठान किए जा रहे हैं। विधि विधान तो वही है, लेकिन बदलते दौर में तौर तरीके जरूर बदल गए हैं। प्रयागराज और काशी जैसे तीर्थ स्थलों पर जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, वहीं पर अब मोबाइल के जरिए ऑनलाइन तर्पण और पिंडदान की सुविधा भी मिल रही है। विदेश में रहने वाले या किसी वजह से तीर्थ नहीं पहुंच पाने के कारण लोग इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन कर्मकांड को लेकर पुरोहितों और श्रद्धालुओं के बीच मतभेद है। रिपोर्ट देखिए।

0: धारा प्रवाह मंत्र बांचते पुरोहित और नियम पूर्वक पिंडदान करते यजमान। पितृपक्ष में पूर्वजों के लिए पूजा और तर्पण करने वंशजों की भारी भीड़ है। चाहे तीर्थराज प्रयाग हो या फिर काशी का घाट, लेकिन पुरोहित और यजमान का जो ये सीधा कनेक्शन है उसमें अब इंटरनेट और मोबाइल फोन की भी एंट्री हो चुकी है। तर्पण हो पिंडदान, विधि विधान नहीं बदले, पर बदलते दौर में इतनी सुविधा तो हो गई है कि अगर किसी कारणवश प्रयागराज या काशी नहीं पहुंच पाए तो ऑनलाइन पूजा करा सकते हैं। ऑनलाइन दर्शन और ऑनलाइन अनुष्ठान की तरह ही पुरोहित ऑनलाइन पिंडदान की सुविधा दे रहे हैं, खासकर ऐसे लोग जो विदेश में हैं या दिव्यांग हैं, उनके लिए ये सुविधा बड़ी राहत है।
1: यहाँ पर काफी संख्या में लोग देश विदेश से लोग आ रहे हैं यहाँ पिंडदान करने के लिए, और सबसे बड़ी चीज ये कि एक व्यवस्था तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से लागू हुई है कि जो लोग विदेश में बैठे हैं यहाँ पे आके पिंडदान नहीं कर सकते, या जो वृद्ध विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, जो आने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। साथ ही यहाँ पर ऑफलाइन लोग आ रहे हैं और ये हमेशा से आते चले आ रहे थे। आप देख सकते हैं संगम क्षेत्र में चारों तरफ तीर्थ पुरोहितों के घाट में हर जगह से यात्री आए हुए हैं, मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, एमपी, यूपी, न जाने कहां कहां से लोग आ रहे हैं और अपने पितरों का पिंडदान सर्वप्रथम प्रयागराज में करके इसके बाद काशी जाएंगे, काशी के बाद गया जाएंगे, विष्णु मुख प्रयाग, विष्णु नाभि काशी, विष्णु चरण गया, तो तीनों जगह पिंडदान होगा।
2: ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है?
1: जी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है। ऑनलाइन व्यवस्था स्पेशली जो NRI लोग बैठे हुए विदेशों में, ये इनके लिए है, और साथ ही जो दिव्य वृद्ध विकलांग है, जो चलने में असमर्थ है, उनके लिए, नहीं तो बाकी जो कॉमन पर्सन है और जो आ सकते हैं तो उनके लिए ऑफलाइन व्यवस्था है।
0: मान्यता है कि पितृपक्ष में पवित्र तीर्थ स्थलों पर पिंडदान करने से पूर्वजों को शांति मिलती है, परिवार में सुख शांति समृद्धि आती है, और पूर्वजों का आशीर्वाद मिले तो बिगड़े काम बनते हैं। इसलिए देश के कोने कोने से लोग प्रयागराज और काशी आते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये धार्मिक परंपरा इसी तरह निभाई जाती है। जो आ सकते हैं सब परिवार आए हैं और पूरे नियम से पिंडदान कर रहे हैं।
3: बैतूल से आए हैं मध्य प्रदेश से पितरों का पिंडदान करने के लिए, ताकि हमारे पितरों को आत्मा की शांति मिले, हमारे घर में सुख शांति प्राप्त हो, इसीलिए हम यही कामना करके पिंडदान करने आए हुए हैं। अभी प्रयागराज आए हो, यहाँ से हम काशी जाएंगे, वहाँ से गया जी जाएंगे,
4: पितरदान करने आए हैं और सुख शांति के लिए यहाँ पर आए हैं हम लोग, और ये 3 दिन तक का जो कार्यक्रम चलेगा इसमें हम लोग सब पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। हम अपने पितरों को मोक्ष दिलाने और सुख शांति के लिए यहाँ।
0: हालांकि सभी के लिए ये मुमकिन नहीं कि पितृपक्ष में प्रयागराज या वाराणसी पहुंच पाए, पर पूर्वजों के प्रति मन में श्रद्धा है और उनके लिए दान करने का भाव है। ऐसे लोग मोबाइल फोन के जरिए यानी ऑनलाइन तर्पण करा रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि पिंडदान के लिए प्रयागराज और वाराणसी का विशेष महत्व है।
1: किसी कारणवश नहीं आ पा रहे, कोई बीमार है, कोई चल फिर नहीं पा रहा, कोई दिव्यांग है, आने में असमर्थ है, विदेश में है, वो आ नहीं सकता है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है ऑनलाइन व्यवस्था हम लोगों ने प्रारंभ की है। और इस अभी हम लोग जो है अभी एक अमेरिका में करा चुके हैं, और आज जो ये पिंडदान करा रहे थे हम लोग, ये मलेशिया में करा रहे थे, तो ऐसे थे लोग
2: धार्मिक परंपरा से
1: जुड़े, जी धार्मिक परंपरा से जुड़े रहे, लोग विदेश चले जाते हैं मगर अपने मूल संस्कृति को नहीं भूलते हैं, और अब तो ऐसी व्यवस्था हो गई कि जो नहीं भी कर पाते थे विदेश में रहने के बाद, अब वो लोग भी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक अच्छी व्यवस्था लागू हुई है कि किसी के मनोरथ, किसी का मनोकामना है वो पूर्ण होगा, किसी के पितर जो है तरेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बस एक बात को ध्यान रखना, ये व्यवस्था उन लोगों को लिए जो आने में असमर्थ हैं, जो समर्थ हैं अगर वो अगर ऐसा करते हैं तो ये उचित नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर आकर करें।
0: ऑनलाइन पिंडदान से यजमान तो प्रसन्न हैं और पुरोहित को भी समस्या नहीं, पर ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पूजा पाठ और भावना में ऑनलाइन दखलंदाजी पसंद नहीं आ रही।
5: बार बार मैं जब से ऑनलाइन श्राद्ध चालू हुआ, मैंने ऑनलाइन श्राद्ध से भरोसा किया, ऑनलाइन श्राद्ध होता ही नहीं है, ऑनलाइन से पूजा भी कुछ नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या है, चलो भाई दर्शन हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ऑनलाइन आप देख सकते हैं, श्राद्ध का मतलब मुझे स्वयं अपने हाथ से करना है, मैं ऑनलाइन आपको भोजन भेज रहा हूँ, आप कर लीजिएगा तो मैं श्राद्ध भी चढ़ाने को तैयार हूँ, मैं वर्जित रखा हूँ, लेकिन बहुत से ब्राह्मण है जो हमारे बिना अनुमति से शराते हैं जिसको मैं मना करता हूँ, लेकिन उन्होंने शायद गुरु जी पीछे से आया है, अधिकारी ने बोला है शरा दीजिए, तो इसलिए थोड़ा सा निवेदन है कि ऑनलाइन शराब के लिए फले ही नहीं, निर्माण अगर अनुरोध नहीं करेगा पंडित शराएगा नहीं।
0: देखिए तो ये विरोधाभास है, क्योंकि जहां प्रयागराज में पुरोहित ऑनलाइन तर्पण या पिंडदान के लिए तैयार हैं, वहीं वाराणसी के पिशाच मोचन तीर्थ पर ऑनलाइन श्राद्ध को वर्जित कर दिया गया है और पुरोहितों का एक बड़ा तबका इसके विरोध में है। यहां आने वाले यजमान भी मानते हैं कि पूर्वजों के लिए पूजा अपने हाथ से ही हो तो बेहतर है।
6: जो कार्य अपने निष्ठा से और हाथों से बढ़िया से हो जाए, यहां पे मौजूद होके पक्ष में जो है पिशाच मोचन में वो कार्य अच्छा है, और ऑनलाइन साधन से कोई मतलब नहीं हमारे हिसाब से। नहीं है तो सही, वो जो कार्य किया गया है वो बढ़िया है, जो ऑनलाइन साधन है उसमें क्या होता है क्या नहीं होता उस पोस्ट उसका कुछ पता नहीं है क्या कर से है पंडित जी लोग, लेकिन जो आपसे सामने होता है आप भी संतुष्ट रहते हैं। सबसे मेन व्यक्ति तो आदमी का संतुष्टि के लिए, जब आप संतुष्टि नहीं रहेंगे तो फिर श्राद्ध कराने से क्या फायदा है। नहीं, ऑनलाइन से बेहतर है, ऑनलाइन से पूजा नहीं है, इट्स केवल एक मन को संतोष नहीं है, वही होनी चाहिए। अगर पुराना सभ्यता को मानते हैं तो यहाँ पर पुरानी सभ्यता के अनुसार ही चलना चाहिए।
0: पिशाच मोचन पर श्राद्ध तर्पण, त्रिपिंडी श्राद्ध पिंडदान और नारायण बलि श्राद्ध का विशेष महत्व है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं और पुरोहितों के निर्देश पर मंत्रोच्चार के साथ कर्मकांड पूरा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ ऑनलाइन पर पूरी तरह रोक लग गई हो, किसी और शहर में रहने वाले अपने यजमानों को पुरोहित ये सुविधा दे रहे हैं। हाँ, मोबाइल का इस्तेमाल खुलेआम नहीं किया जाता। पूर्वजों के लिए पिंडदान या तर्पण ऑनलाइन हो या नहीं, इसे लेकर बहस हो सकती है, लेकिन अज्ञात लोगों के लिए यानी जिनका कोई वंशज न हो, कोई भी पिंडदान कर सकता है। और पिछले कई वर्षों से ये झांसी में ये काम जितेंद्र तिवारी कर रहे हैं। इस साल भी अज्ञात अनाथ और लावारिश दिवंगत आत्माओं के लिए सामूहिक तर्पण और पिंड पूजन किया गया। इसमें पुरोहितों और धर्माचार्यों के साथ बड़ी तादाद में आम लोग भी शामिल हुए और इसके साथ ही 878 परिवारों के पूर्वजों के पिंड लेकर सामाजिक कार्यकर्ता गया जी के लिए रवाना हुए।
7: देखिए, जिनका संसार में कोई नहीं है, अज्ञात अनाथ लावारिस या जिनका कोई और नहीं है संसार में, उनका आज हमने झांसी के सिपरी बाजार पहुंच नदी पर पिंड पूजन का काम किया, और कल हम लोग 8:30 बजे चंबल एक्सप्रेस से उनका पिंडों को लेकर, पवित्र पिंडों को लेकर तीर्थराज गया जी में पिंडदान करने के लिए जाएंगे। मैं बता दूं आपको कि उसके साथ साथ वो परिवारों का भी पिंड लेकर मैं जा रहा हूं जो किसी कारण पर तीर्थराज गया जी नहीं जा सकते, किसी की आस्था बहुत है लेकिन असमर्थ है जाने में गया जी। तो पिछली बार मुझे 500 से अधिक परिवारों ने अपने दिवंगतों का नाम नोट कराया था, पूर्व परिजनों का, और इस बार 878 से अधिक परिवारों ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, अपने पूर्वजों का नाम अंकित कराया, तो मैं उनके पवित्र पिंडों को लेकर कल तीर्थराज गया जी जा रहा हूँ। इस प्रकार का विचार, जब मैं अपने माता पिता का पिंडदान करने तीर्थराज गया जी गया, तो वहाँ पर पंडा पुरोहितों ने जब हमसे संकल्प कराया तो उन्होंने कहा कि संसार में जिसका भी पिंडदान नहीं होता, इवन जीव जंतु पशु पक्षी का भी, तब वो दिवंगत आत्मा को मोक्ष की प्राप्त नहीं होती है। तब मैंने उनसे प्रश्न किया कि महाराज, यदि जिनका संसार में कोई नहीं होगा तो उनका कैसे होगा? तो उन्होंने कहा उसका संकल्प या तो देश के राजा को लेना चाहिए या कोई भी अन्य व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से बिना पैसा लिए यदि उनका पिंडदान करेगा तो उनकी दिवंगत आत्मा को मोक्ष की गति प्राप्त होगी। तो मैंने उस संकल्प को लिया और लगातार कई वर्षों से मैं उनका पिंडदान करने जा रहा हूँ।
0: ये प्रण इस भावना से जुड़ा है कि ज्ञात हो या अज्ञात, सभी आत्माओं की शांति और संतुष्टि के लिए पिंडदान जरूरी है और पितृपक्ष का महत्व भी इसीलिए है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: पिंडदान और तर्पण के लिए जो महत्व प्रयागराज और वाराणसी का है, वैसा ही महत्व बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल का भी है, जहां पर देखिए देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु अपने पितरों और पूर्वजों की मोक्ष की कामना करने के लिए पहुंच रहे हैं। ब्रह्म कपाल में सुबह से शाम तक पिंडदान और तर्पण का सिलसिला जारी है। मान्यता है कि यहां पिंडदान और तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मान्यता है कि यहां पर पिंडदान करने के बाद अन्य स्थानों पर पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं होती। पौराणिक कथा के अनुसार अगर हम देखें तो भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले यहाँ पर पिंडदान किया था, इसके लिए भी इसका महत्व माना जाता है। अपनों के जाने के बाद भी उनसे जुड़ी यादें और जिम्मेदारियां हमारे साथ रहती हैं। पितृपक्ष में यही भाव गया जी में आस्था बनकर नजर आ रहा है। बारिश की बूंदों के बीच भी श्रद्धालुओं के कदम नहीं रुक रहे। कोई तर्पण कर रहा है तो कोई पिंडदान के जरिए अपने पितरों की सदगति की कामना कर रहा है। गयासुर की प्राचीन कथा हो या माता सीता के पिंडदान की मान्यता, गया जी में हर परंपरा अपने साथ आस्था और विश्वास की कहानी समेटे है। रिपोर्ट देखिए।
9: दान, तर्पण और प्रार्थना, ये उस अटूट विश्वास का प्रमाण है कि गया जी में की गई ये पूजा पूर्वजों की मुक्ति का मार्ग है। बारिश की बूंदें बरस रही है, किसी के हाथ पे छाता है तो किसी ने प्लास्टिक की ओट ले रखी है, लेकिन श्रद्धा की राह में मौसम आड़े नहीं आता। गया के देव घाट पर श्रद्धालु अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। कोई मंत्रों उच्चार के बीच तर्पण कर रहा है तो कोई पूरे विधि विधान से पिंड अर्पित कर रहा है। होठों पर मंत्र है और मन में अपनों के लिए आत्मिक शांति की कामना।
10: हम अपने माँ बाबू जी का
11: क्या बात है यार?
10: ऐसा सुना जाता है कि पिंड बैठा देने पर वो लोग को मुक्ति मिल जाएगी, भक्त मिल जाएगा। अब तो वो तो करना ही होगा, बारिश हो क्या आंधी हो कि तूफान हो, तो करना ही होगा। माँ बाबूजी के लिए तो इतना करेंगे ही।
9: गया जी में 15 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध पितृ पक्ष मेले में देश विदेश से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। गया के विष्णुपद मंदिर क्षेत्र और फल्गु नदी के किनारे कर्म कांड किए जा रहे हैं। कोई माता पिता के लिए आया है तो कोई पति या परिवार के दूसरे सदस्यों को स्मरण कर रहा है। बेटा ही क्यों, ये बेटी के लिए भी अपने पुरखों के प्रति श्रद्धा भाव दिखाने का अवसर है।
12: माता पिता का श्राद्ध करने के लिए गया जी तीर्थ में आए हैं हम लोग। तो सुना है यहाँ पिंडदान करने से पितरी लोग तृप्ति होते हैं, पितृलोक को पुण्य मिलता है, इसीलिए हम लोग यहाँ गया जी में पिंडदान करने के लिए आए हैं अपने पितरों के नाम।
9: सनातन परंपरा में मनुष्य पर देव ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण बताए गए हैं। पितृ पक्ष में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने को इसी दायित्व से जुड़ा कर्म माना जाता है। गया को इसी वजह से पितृ तीर्थ और मोक्ष की भूमि कहा जाता है। गरुड़ प्राण और विष्णु प्राण में भी गया में पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध की महिमा का उल्लेख मिलता है। इसी धार्मिक विश्वास के चलते हर साल बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। गया जी की पहचान से जुड़ी एक प्राचीन कथा गयासुर की भी है। मान्यता है कि गयासुर ने कठोर तपस्या कर ऐसा वर प्राप्त किया था जिससे उसकी देह पवित्र हो गई। देवताओं ने यज्ञ के लिए उसका शरीर मांगा और गयासुर उसके लिए तैयार हो गया। कहा जाता है कि लेटने पर

0: यहाँ गयासुर नाम का एक राक्षस था, उसके ऊपर यज्ञ किया था देवताओं ने, तो यज्ञ 100 साल तक यज्ञ किया, उसके बाद फिर भी वो मरा नहीं, और जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो वो उठ के चल दिया तो सभी देवता परेशान हुए, तो भगवान विष्णु आए, भगवान विष्णु ने अपना उसके ऊपर पैर रखा, पूरा वजन रखा, तब उसके प्राण निकले, तो फिर भगवान ने कहा कि आप जो भी मांगना चाहें वो आप मांग सकते हैं, मैं भगवान हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं बस केवल एक ही चीज़ मांगता हूँ कि मेरे यहाँ पर जो भी यहाँ अपने पितरों का पिंडदान करेगा या अस्थि दान करेगा, तो उसका पिता या जो उनके बुजुर्ग लोग हैं जो शरीर पूरा कर चुके हैं उनके लिए मुक्ति मिले, स्वर्ग मिले, ये मेरी कामना है। तो जी, तो ऐसा ही वर दे करके, और उसी जगह के लिए एक विष्णुपदी यहाँ पर स्थान है, ये तो फल्गु गंगा है, ये विष्णुपदी जगह है, वहाँ पर भगवान विष्णु का पद बना हुआ है वो ही।
1: इसी परंपरा से जुड़ी एक और कथा भगवान श्री राम और माता सीता की है। मान्यता है कि राजा दशरथ का श्राद्ध करने दोनों गया पहुँचे थे। कहा जाता है कि श्री राम पूजा की सामग्री लेने गए तो माता सीता के सामने दशरथ का हाथ प्रकट हुआ और उन्होंने पिंड देने की इच्छा जताई। इसके बाद सीता ने फल्गु नदी की रेत से पिंड बनाकर उन्हें अर्पित किया। आज भी ये कथा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के बीच आस्था का हिस्सा बनी हुई है। महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान और भी अलग अलग स्थानों से लोग गया पहुँचे हैं। यहाँ आए श्रद्धालु भी इसी भावना के साथ गया जी पहुँचते हैं। वो अपने माता पिता के लिए पिंड दान कर रहे हैं। पितृपक्ष के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुविधाओं और सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया है। गया में सोमवार को 3,95,000 श्रद्धालुओं की मौजूदगी दर्ज हुई। 9,768 लोगों ने मेडिकल सुविधा ली, जबकि 70 बुजुर्गों ने व्हीलचेयर का इस्तेमाल किया। अब तक गया पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या 4,60,200 दर्ज की गई है। गया जी सिर्फ आम श्रद्धालुओं के लिए ही आस्था का केंद्र नहीं है, देश की जानी मानी हस्तियां भी यहां पितरों के लिए कर्म कांड करने पहुंचती रही है। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने 2024 में पितृपक्ष के दौरान विष्णुपद मंदिर में अपने माता पिता की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण किया था। वहीं देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी भी अपने बेटे अनंत अंबानी के साथ पिछले साल विष्णुपद मंदिर पहुंचे थे। मंदिर परिसर में बनाए गए विशेष स्थान पर दोनों ने पिंडदान किया था और इसके बाद फल्गु नदी में तर्पण किया था। बारिश में भी थमी नहीं आस्था की ये यात्रा। छाते और प्लास्टिक के सहारे श्रद्धालु अपने संकल्प को पूरा करने में जुटे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों की जुबां पर अपने पुरखों की याद है और हाथों में श्रद्धा का अर्पण। गया जी में जारी ये पितृपक्ष मेला परंपरा, विश्वास और अपनों के प्रति कर्तव्य की उस भावना को दिखा रहा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। गया से पंकज कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: बात करते हैं दिल्ली में एक ऐसी नहर की जो पिछले 20 साल में बड़े नाले में तब्दील हो गई थी। दो दशक

0: दशकों से इसकी पहचान बदबू, कचरा और काले गंदे पानी से रही। नाम कुछ और है पर पहचान नाले की रही। दिल्ली के वजीरपुर से होकर बहने वाली ये मुनक नहर कब और कैसे गंदे पानी के नाले में तब्दील हो गई ये पता नहीं चला, लेकिन जब युवाओं ने प्रण लिया, अपनी जिम्मेदारी समझी, तो अब मुनक भी नाले से नहर बनती जा रही है।
1: वजीरपुर के मुनक नहर का अब दो रूप आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन पहले इसका सिर्फ एक रूप हुआ करता था जो गंदा था, जिसमें गंदगी थी चारों तरफ, उसमें बहुत सारी जलकुंभियां थी और जिसका पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल करने के लायक नहीं था। नहर नाला बन चुकी थी, लेकिन आज आपको मुनक नहर के दो रूप दिखाई पड़ते हैं। एक रूप ये है जिस पर काम चल रहा है, जिसकी सफाई हो चुकी है और अब कहा जा रहा है कि छठ से पहले पहले इसे साफ कर दिया जाएगा ताकि छठ पूजा इसमें आसानी से मनाई जा सके।
0: वर्षों तक मुनक नहर की दुर्दशा देखने और गंदगी की दास्तां सुनाने के लिए मजबूर राहगीरों के लिए इन तस्वीरों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। कोई दूर दूर तक सोच नहीं सकता कि मुनक नहर की भी तस्वीर बदल सकती है। व्रत त्योहारों के बाद मुनक नहर का इस्तेमाल पूजा अनुष्ठान से जुड़ी सामग्री फेंकने के लिए भी होता था। आसपास कलेक्शन प्वाइंट होने की वजह से लोग इसी नहर में देवी देवताओं की प्रतिमाओं को भी विसर्जित कर देते थे। जाने अनजाने आस्था के इसी अपमान ने मुनक नहर के साफ सफाई के अभियान की नींव रख दी।
1: विनय दास मेरे साथ में है। आजकल आप इनका अगर इंस्टा पेज देखेंगे तो इनके कुछ वीडियोस बहुत वायरल हैं, कई लोग उन्हें देख रहे हैं। हाल ही में गणेश विसर्जन हुआ और इसी नहर में गणेश जी की जो मूर्तियां थी वो लोगों ने डाली पूजा के बाद, लेकिन वो अच्छे हालात में नहीं थी। विनय और उनकी टीम ने मिलकर उन मूर्तियों को बाहर निकाला। सिर्फ गणेश विसर्जन नहीं बल्कि कई जो पूजा पाठ होते हैं इनमें मूर्तियां ऐसे नहर नालों में फेंक दी जाती हैं। विनय कोशिश करते हैं कि उन देवी देवताओं का अपमान ना हो, इसलिए खुद अपनी टीम के साथ नहर में उतरते हैं और मूर्तियों को बाहर निकालते हैं।
0: विनय दास नाम के सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली की जेजे कॉलोनी के रहने वाले हैं, जिनके नेतृत्व में 1600 से ज्यादा बच्चों और युवाओं ने कचरे के साथ एक साल में नहर से देवी देवताओं की 2500 से ज्यादा मूर्तियां निकाली। इनमें 35 किलो का शिवलिंग भी शामिल है।
2: गणेश चतुर्थी पे काम पूरा हुआ, उसको यहाँ पर कूड़े के बीच में फेंक जाना, आप सोचिए क्या दिल में ठेस पहुँचती हम लोगों के। और मेरे साथ इतने सारे बच्चे हैं, 200-250 बच्चे एक साथ लगे थे, लास्ट 6 सितंबर को भी लगे थे। उसी दिन केवल हमने एक दिन में ही 600 से 700 मूर्तियां कलेक्ट करी और उसमें एक 35 किलो का शिवलिंग भी निकला।
1: 35 किलो का शिवलिंग?
2: जी भाई साहब, बिल्कुल 35 किलो का। और वो मुझे हैरानी हो रही थी, ना जाने ये शिवलिंग कितने समय से यहाँ पर रहा होगा। तो ये बड़ी शर्म की बात थी कि हम आज धर्म की तरफ तो चल रहे हैं, हम गर्व करते हैं हिंदू होने पर, लेकिन कुछ एक हिंदू ऐसे है ना जो अपने धर्म का सम्मान नहीं कर पा रहे।
0: इस सफाई अभियान के दौरान विनय और उनकी टीम को कई चुनौतियों और चोटों का सामना करना पड़ा। कचरे में कांच, सुई और जहरीले रसायन होने के बावजूद उन्होंने अपनी इस मुहिम को जारी रखा।
2: सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि हम नहर में जब कूद रहे थे तो आप मान के चलेंगे कि कूड़ा जो था वो लगभग कूड़ा इतने शेप में था कि वो उसको 2 फिट का था, वो एक बार में उगता। और यहाँ तक का पानी था, हमारी कमर तक का पानी था और लगभग उसमें पानी था ही नहीं। वो पूरा जो होता है ना कि कूड़ा कचरा जो होता है वो पानी में भीग भीग के सिमट जाता है, जितना हमने सोचा था उससे बहुत भयंकर था जब हम कूदे थे। पहली बात तो हमने सेफ्टी बूट यूज़ करे थे, लेकिन उसके बावजूद वो सेफ्टी बूट के अंदर भी पानी भर जाना, हमको कई कीड़े मच्छरों ने भी काटा और मेरे कई वॉलेंटियर्स को भी काटा, सदस्यों को काटा। मेरे भी अभी लास्ट संडे परसों ही हमने सफाई की है, जिसमें हमने जलकुंभियाँ उठाई, उसमें मूर्तियाँ आनी थी, तो उसमें भी काफ़ी सबसे बड़ा खतरा तो हमें इंजेक्शंस का ही रहता है, लेकिन सेफ्टी बूट से कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस हो जाता है।
0: विनय का बचपन जेजे कॉलोनी में ही बीता। वे एक बेहद साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता चपरासी के पद पर थे। अपनी शिक्षा का खर्च उठाने के लिए उन्होंने महज 7 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया। पर्यावरण संरक्षण के अलावा उन्होंने वंचित वर्ग के बच्चों को मुफ्त ट्यूशन देने और झुग्गी झोपड़ियों के आसपास सफाई अभियान चलाने जैसे अभियान भी छेड़ रखे हैं, जिनमें मुनक नहर की सफाई शामिल है। विनय की इस मुहिम के बाद अब मुनक नहर की सफाई के लिए सरकारी स्तर पर भी काम शुरू हो गया, जिसके बाद ये उम्मीद है कि इस बार छठ पूजा के दौरान सूर्य देव को अर्घ लोग साफ सुथरी मुनक नहर में खड़े होकर देंगे।
1: सफाई के जरिए आप सोचिए बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं, अच्छी संगत में जा रहे हैं कम से कम, अगर किसी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी के बच्चे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये नहर अब जो साफ हो रही है, जो इस पर काम चल रहा है, वो कहीं ना कहीं उसमें विनय की बहुत बड़ी भूमिका है। और अब हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार छठ पूजा जब हो तो बात सिर्फ यमुना की ना हो, बल्कि लोग मुनक नहर में भी उतरकर आसानी से साफ सफाई के बीच सूर्य देवता को अर्घ दे पाएंगे। मनीष और अस्या, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती हैं।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड और ब्रॉन्ज। महिला रिले रेस 4x400 रेस में जीता सोना। मैंस 4x400 मीटर रिले में मिला ब्रॉन्ज। भारत के खाते में अब तक 6 गोल्ड, कुल मेडल 53। कोलकाता में भारत ब्राजील के बीच ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडली फुटबॉल मैच की तैयारियां अंतिम दौर में। 3 अक्टूबर को खेला जाएगा मैच। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए छोटी सड़कों पर चलाई जाएंगी 30 ईवी स्वीपिंग मशीनें। आईटी दिल्ली बताएगा प्रदूषण का रियल टाइम सोर्स। केदारनाथ पैदल मार्ग स्थित चिरबासा स्लाइडिंग जोन में एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। करीब 9,000 यात्रियों को सुरक्षित रास्ता पार कराया। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास नेशनल हाईवे 911 मिलिट्री रनवे में बदला। भारतीय सेना की एविएशन यूनिट्स ने हाईवे की लैंडिंग की प्रैक्टिस की।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात मौसम के बदले अंदाजो मिजाज की। सितंबर का महीना है और कायदे से अभी हर साल की तरह देश के तमाम हिस्सों में गर्मी का एहसास होना चाहिए था, लेकिन अब की बार सितंबर में मौसम ने गजब का रंग दिखाया है। सितंबर का आखिर है और ऐसा लग रहा है कि मानो दिसंबर की शुरुआत हो गई हो। मौसम की अंगड़ाई है और बिना बुलाए सितंबर में सर्दी आई है। पहाड़ों में सफेद बर्फ हर तरफ दिखाई दे रही है तो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जाते मानसून के बीच में बढ़ी ठंडक सर्दी का एहसास करवा रही है। खास तौर से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर से लेकर सिक्किम तक हाल के दिनों में इतनी बर्फ पड़ी है कि सुनहरी धूप के दिन दिखाने वाला सितंबर पहाड़ों पर कपकपाहट और कोहरे भरे दिन दिखा रहा है। सितंबर के महीने में मैदान के लोग गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन अब की बार तो जरूरत ही नहीं क्योंकि मैदानों का मौसम पहले से सुहाना है। दिल्ली में रविवार को सितंबर का बीते 18 साल का सबसे सर्द दिन रहा। अब सवाल यह है कि आखिर सितंबर के महीने में गुलाबी सर्दी आई कहां से? क्या सर्दियों की शुरुआत अब की बार सितंबर से हो चुकी है, और नहीं तो फिर मौसम की स्क्रीन पर सर्दियों का ये ट्रेलर कब तक जारी रहने वाला है? तो चलिए आपको सबसे पहले यही बताते हैं और दिखाते हैं।

0: सोचा तो था अभी गर्मी और सताएगी, हल्की हल्की ही सही पर उमस अपने होने का एहसास दिलाएगी। सोचा था पहले अक्टूबर आएगा, फिर दिवाली का हाथ थाम कर सर्दी आएगी, लेकिन वेस्टर्न डिस्टरबेंस ने आकर राजधानी में मौसम के सारे प्लान कुछ ऐसे डिस्टर्ब कर दिए कि सितंबर का वक्त, हालात, जज्बात सब बदल गया। अब आसमान में बादलों का डेरा है, राजधानी पर ठंडी हवाओं का पहरा है, ये सितंबर की सुबह है, बस दिसंबर का चेहरा है। जो सितंबर का महीना दिल्ली और आसपास के इलाकों में उमस भरी गर्मी और चिपचिपे मौसम के लिए जाना जाता रहा है, उसने अब के साल आखिरी दिनों में देश की राजधानी को एक ऐसा सरप्राइज दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दिल्ली NCR अचानक एक अनचाही अनजानी ठंड के आगोश में है। आखिर क्यों वक्त से पहले बदल गया मौसम का ये मिजाज? इसे देखकर दिल्ली वालों के मन में तुरंत सवाल उठा, कहीं ये दिल्ली की ट्रेडमार्क सर्दी का ट्रेलर तो नहीं? ये अंदेशा कुछ और मजबूत हुआ जब खबर मिली कि ठंड बस यहाँ भर नहीं है बल्कि पहाड़ों पर तो सितंबर में ही विंटर वंडरलैंड सज गया है। कश्मीर से लेकर सिक्किम तक देश के कई पहाड़ी इलाकों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। हिमाचल का किन्नौर और रोहतांग पास 4 से 5 इंच तक बर्फ से ढक चुका है। वहीं सिक्किम के नाथुला पास और गुरुडोंगमार झील के पास के नज़ारे ये गवाही दे रहे हैं कि इस बार पहाड़ों पर विंटर सीजन ने बहुत जल्दी दस्तक दे दी है। वास्तव में पहाड़ों से आ रही इन्हीं बर्फीली और ठंडी उत्तर पूर्वी हवाओं ने दिल्ली NCR को गर्मी में भी सर्दी का एहसास करवा दिया है। खासकर दिल्ली के सफदरजंग, रिज और पालम जैसे इलाकों में तो पारा सामान्य से काफी नीचे चल रहा है। ये आलम देखकर दिल्ली वाले अभी सर्दी को वेलकम कहने ही वाले थे कि तभी मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि राजधानी का ये मौसम वास्तव में सर्दी की शुरुआत नहीं बल्कि 3 बड़े मौसमी सिस्टम्स के संगम का नतीजा है।
1: दिल्ली की बात है तो एक जो है डीप डिप्रेशन जिसने के जो हमारे ईस्ट कोस्ट से हमें क्रॉस किया था, ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट फ्रंट मूव करके उत्तर प्रदेश में आकर के आज सुबह के समय जो है वो एक लेसमार्क हो गया, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया से लेसमार्क हो गया है, जिसकी वजह से जो पूरा ये जो बेल्ट है इसमें काफी अच्छी वर्षा देखने को मिली। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी यानी कि अति भारी वर्षा भी रिपोर्ट की गई थी, साथ साथ उत्तराखंड में काफी अच्छी वर्षा हुई। इसके साथ साथ पश्चिम विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है था वो भी उसका भी असर देखने को मिला, जिसकी वजह से जो है पहाड़ों पर कुछ स्थानों पर बर्फबारी भी हुई और इसकी वजह से भी जो तापमान है उसमें काफी गिरावट देखने को मिली। तो अभी दिल्ली की बात करेंगे तो अभी भी यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है नीचे चल रहे हैं।
0: आसान भाषा में समझें तो दिल्ली में बिन बुलाई सर्दी के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पहला कारण है सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ। भूमध्य सागर से उठी ठंडी और नमी से भरी हवाओं का एक मजबूत सिस्टम इस वक्त उत्तर भारत के ऊपर से गुजर रहा है जिसने पहाड़ों पर बेवक्त बर्फबारी शुरू कर दी। दूसरा कारण है बंगाल की खाड़ी का डिप्रेशन। बंगाल की खाड़ी में हाल ही के दिनों में बना एक गहरा कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ते हुए MP और UP के रास्ते दिल्ली के करीब आ पहुंचा। जब इन दोनों विपरीत दिशा की हवाओं का टकराव हुआ तो दिल्ली और आसपास के राज्यों में झमाझम बारिश शुरू हो गई। और तीसरा कारण है मॉनसून की विदाई। दिल्ली से मॉनसून आधिकारिक रूप से सितंबर के आखिरी हफ्ते में विदा होता है, इस बार भी यही हुआ, लेकिन मॉनसून की विदाई के ठीक बाद आसमान साफ होने और हवाओं का रुख बदलते ही पहाड़ों की ठंडक सीधे मैदानी इलाकों में बिना किसी रुकावट के प्रवेश कर गई और दिल्ली को सर्दी का एहसास करवा गई।
2: यह बंगाल के अंदर जो है एक लो प्रेशर एरिया बना, उससे बहुत तेजी के साथ में बारिश हो गई। सितंबर में मेरे ख्याल से पिछले 25 साल में पहला या दूसरा एक ऐसा टाइम था कल रात को उत्तरी भारत के अंदर जो सबसे ठंडा दिन था, वरना कि ना तो पश्चिमी विक्षोभ ऑलमोस्ट लुप्त रहते हैं सितंबर के महीने में और इतनी टेम्परेचर तो पड़ता ही नहीं है, बल्कि अक्टूबर के सेकेंड वीक में जाते जाते सर्दी अपने दस्तक देती है। तो दोनों विरोधाभास ली हुई चीजें हुई हैं जो कि हम लोग करते हैं, लेकिन ये वही चीज है कि ये आपने अनुमान लगाया है लंबे समय तक सुपर एलनिनो के चलते वो होना ही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज बीच में जो अनिश्चितता का एक जो फैक्टर होता है उसने अपना रंग दिखाया है।
0: बता दें कि मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली के सफदरजंग में पिछले रविवार को दर्ज हुआ 21 डिग्री सेल्सियस तापमान साल 2000 के बाद सितंबर का दूसरा सबसे कम तापमान है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि इस साल कड़ाके की और लंबी ठंड पड़ेगी? आईएमडी के मुताबिक इसका जवाब है नहीं। मौसम वैज्ञानिकों के हिसाब से ये केवल एक ट्रांजिशनल चेंज यानी मौसम का अस्थायी बदलाव है। अक्टूबर के पहले हफ्ते से आसमान पूरी तरह साफ होगा और तापमान फिर से 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच जा सकता है।
1: तो बर्फबारी भी हुई थी पहाड़ों पर कुछ स्थानों पर, वहां से ठंडी हवाएं भी आ रही थी, साथ साथ में वर्षा गतिविधि भी हुई, क्लाउडी कंडीशंस बनी हुई थी, जिसकी वजह से जो तापमान है उसमें गिरावट देखी गई थी। हालांकि आने वाले समय में जैसे जैसे कंडीशंस जो है साफ होंगी, बादल भी कम हो जाएंगे, साथ साथ में जो ठंडी हवा है इसमें भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, तो ये जो अभी के टेम्परेचर चल रहे हैं इसमें इजाफा देखने को मिलेगा। ये करीब करीब अपने नॉर्मल स्थिति में 3 से 4 दिन के बाद जो कि 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंचने की संभावना है।
0: पर्यावरण वैज्ञानिक इस घटना को क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के एक बड़े इशारे के रूप में भी देख रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक हिमालय में सितंबर में बर्फ गिरना प्राकृतिक है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब स्नो लाइन 4000 मीटर से ऊपर खिसक रही है। मौसम का इस तरह अनप्रेडिक्टेबल होना यानी कभी भारी सूखा तो कभी अचानक सितंबर में ठंडक का एहसास प्रकृति के बदलते संतुलन का बड़ा इशारा है।
2: हमारे इस मौसम में दो विलेन हैं, एक तो है कि क्लाइमेट चेंज और दूसरा है ये सुपर एलिनो जो लेके आया है। अब लॉन्ग टर्म का इफेक्ट हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं इतने सालों से, इतने टाइम से, मतलब पिछले एकाधिक महीने से, कि सुपर एलिनो की वजह से हमारा जो है इस बार पश्चिम विक्षोभ बहुत कम हो जाएंगे, सर्दी जितनी पड़ना चाहिए थी उतनी पड़ेगी नहीं, ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये होती है कि क्लाइमेट चेंज से जो भी चीजें हम लोग अनुमान लगाते हैं या कुछ होती है उसमें अनिश्चितता लाती है, ये दोनों चीजें अनिश्चितता की स्थिति लाती हैं।
0: भले ही सितंबर ने दिसंबर वाली सर्दी का एहसास करवाया है, लेकिन ये बदलाव टेम्पररी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सर्दी अपने तय समय पर या थोड़ी देर से शुरू होगी। आने वाले दिनों में दिल्ली NCR का मौसम सूखा, आसमान साफ और तापमान 35 डिग्री के आसपास रहेगा, इसलिए त्योहारों की तैयारी करने निकले तो गर्मी और उमस से लड़ने की तैयारी का भी ख्याल रखें।
3: ये 30 तारीख से दिल्ली जो उत्तर भारत दिल्ली में एकदम बादल छट जाएंगे पूरे, तो तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी चालू हो जाएगी। ये चूंकि यहाँ पे वर्षा की स्थिति थी, ऊपर से WDT ठंडी हवाएं आ रही थी और यहाँ से नमी जा रही थी, दिल्ली का जो एरिया है आप देखिए सघन है, खासकर वृक्षारोपण भी काफी मात्रा में है, तो जो नमी जमा हो जाती है और दिन में हीट बढ़ने के कारण से कन्वर्ट होके वो तापमान में गिरावट आई और ज्यादा दिन नहीं रहने वाली, करीब ये 30 तारीख से तापमान में बढ़ोतरी चालू हो जाएगी और पूरा 1 अक्टूबर से एकदम साफ हो जाएगा मानसून उत्तर भारत में धीरे धीरे। सिर्फ उत्तरांचल जो है ऊपर उत्तराखंड है वहां पे बादल बने रहेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मानसून की पूरी तरह से विदाई उत्तर भारत में हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि 15 अक्टूबर तक छुटपुट कुछ ना कुछ वर्षा, छोटे छोटे सिस्टम, कई बार लोकल स्तर पर नमी रहती है और तापमान बढ़ता है तो शाम को उसमें शहरों में रेन हो जाती है, तो ये स्थिति अभी 15 अक्टूबर तक मिलने वाली है। लेकिन बहुत तेजी से मानसून की विदाई 1-2 अक्टूबर तक शुरू हो जाएगी और साफ हो जाएगा, लेकिन तापमान में गिरावट अब आने की कोई फिलहाल संभावना नहीं है, क्योंकि बर्फबारी हो रही है उत्तराखंड वगैरह ऊपर जहां भी, तो उसका थोड़ा सा हवाओं का असर है। लेकिन जब ये राजस्थान से नॉर्थ वेस्ट से जब हवाएं आती है सूखी, तो उस समय तापमान उतनी गिरावट नहीं कर पाती, खासकर अक्टूबर में, लेकिन धीरे धीरे ठंड का प्रचलन बढ़ेगा, अक्टूबर के एंड से तापमान में गिरावट आएगी और जनवरी फरवरी तक मिलेगी।
0: फिलहाल दिल्ली NCR के लोग उमस भरी गर्मी से मिली इस अचानक राहत का आनंद ले रहे हैं। हवा साफ हो चुकी है और मौसम सुहाना है, लेकिन विज्ञान की चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सितंबर की ये गुलाबी ठंड हमें इस सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानी गतिविधियों ने हमारे वेदर साइकिल को किस हद तक प्रभावित कर दिया है। आज पहाड़ों पर बेमौसम बर्फ है, मैदानों के तापमान में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट है, कल मौसम का अगला रूप क्या होगा कहना जरा मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो मैदानों में गुलाबी सर्दी का एहसास है तो पहाड़ों पर फुल ऑन दिसंबर वाली फीलिंग चल रही है। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी नजर आ रही हैं। गुलमर्ग के अफरवाद पीक से लेकर हिमाचल की धौलाधार और मनाली की चोटियों तक ताजा हिमपात ने मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया है। सितंबर में ही देश के कई पहाड़ी इलाके विंटर वंडरलैंड में बदल गए हैं।

0: धरती पर बर्फ की धूल, शाखों पर बर्फ के फूल, कश्मीर में बर्फ ने कुदरत के घर से रंगों को बेदखल कर दिया है। सफेद और शफाफ अक्टूबर की चौखट पर खड़े मौसम ने सितंबर में ही अपना रंग बदल लिया। भला किसने सोचा होगा कि इस मौसम में बर्फबारी होगी और पहाड़ बर्फ से लद जाएंगे। लेकिन कश्मीर के गुलमर्ग से आई ये तस्वीरें देखिए। कश्मीर की वादियों में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बर्फबारी के साथ बारिश हुई है। यानी सितंबर के आखिरी दिनों में ही कश्मीर की पहाड़ियों ने सर्दियों की आहट दे दी है। गुलमर्ग के ऊंचे पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी ने नजारे को बेहद खूबसूरत बना दिया है। अफरवाद पीक बर्फ का दुशाला ओढ़े खड़ा है। दूर दूर तक बिछी बर्फ और निगहबानी करते घने बादलों की आवाजाही के बीच गुलमर्ग का मौसम सितंबर में सर्दी का एहसास करवा रहा है। नजारा कश्मीर के कठुआ का भी कुछ कुछ ऐसा ही है। कठुआ में बर्फबारी से सजे खूबसूरत पहाड़ों का दीदार हो रहा है। कठुआ के ज्यादा ऊंचाई वाले कैलाश कुंड पहाड़ों और चत्तरगला बाईपास इलाके में ताजा बर्फबारी हुई है। ऊंचे इलाकों में मौसम बदल गया है। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से लकदक पहाड़ अपनी चमक बिखेर रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से 29 सितंबर को एक और पश्चिमी विक्षोभ का अनुमान जताया गया था, जिसके चलते ऊपरी इलाकों में ठंड बरकरार रहने और हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है।
1: वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से काफी अच्छी एक्टिविटी हुई है, साथ साथ में जो ये डिप्रेशन था जो कि आ गया कि वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में कमजोर हुआ, फिर लो प्रेशर एरिया में, और आज सुबह जो है लेसमार्क हो गया, इसका भी असर देखने को मिला, जिसकी वजह से उत्तराखंड में और आसपास के जो पहाड़ी राज्य है वहां पर भी बर्फबारी देखने को मिली। आज भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो करीब 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के आसपास केंद्रित है, जिसको देखते हुए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर जो भारी वर्षा का जो अलर्ट है जारी किया गया है, साथ साथ में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी हो सकती है।
0: मौसम को देखते हुए प्रशासन ने ऊंचाई वाले मार्गों पर यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। अगर आप भी पहाड़ों की इस ताजा रंगत का दीदार करना चाहते हैं, तो कठुआ की ये सुंदर वादियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो सितंबर के आखिरी दिनों में यहाँ भी मौसम सर्द हो गया है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के असर से कांगड़ा की धौलाधार पर्वतमाला गुलजार नजर आ रही है। सितंबर में दूसरी बार हुई बर्फबारी से धौलाधार की ऊंची चोटियां चांदी से जगमगा रही हैं। बादलों के बीच बर्फ से ढकी चोटियों का ये नजारा बेहद खूबसूरत दिख रहा है। धौलाधार की सफेद चोटियां, नीचे छाए बादल और बारिश से धुले पेड़ों का चटक रंग, कांगड़ा में कुदरत की कारीगरी खूब जम रही है। सिर्फ धौलाधार ही नहीं, हिमाचल के दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में भी ताजा हिमपात हुआ है। किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू की ऊंची चोटियां भी बर्फ से ढकी नजर आ रही है। धर्मशाला और आसपास के इलाकों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। सितंबर के आखिरी हफ्ते में ही मौसम का ऐसा रंग बदला कि पहाड़ों पर सर्दी का एहसास होने लगा।
2: बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एक दो स्थानों में हैवी रेनफॉल दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश कांगड़ा स्टेशन में रिकॉर्ड की गई, लगभग 70 एमएम के आसपास। उसके उपरांत जो सेकंड हाईएस्ट है धर्मशाला में 60 एमएम के आसपास रिकॉर्ड की गई। वहीं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं शिमला, सिरमौर, मंडी और किन्नौर, यहाँ पे मॉडरेट कैटेगरी की बारिश रिपोर्ट की गई। और जो हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं स्पेशली डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू में, और यहाँ पे हल्की बर्फबारी रिपोर्ट की गई।
0: सितंबर में बर्फ और बारिश की दस्तक बता रही है कि हिमाचल की पहाड़ियों पर सर्द मौसम ने इस बार कुछ जल्दी ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तो वही ताजा हिमपात से हिमाचल में मनाली के पहाड़ों की खूबसूरती भी निखर उठी है। बर्फ में लिपटी पहाड़ियों पर जब चमकती धूप खिली तो वादियाँ सुनहरी हो गईं। ताजा बर्फबारी के बाद यहाँ तापमान में गिरावट आई है और मनाली की फिजाओं में ठंडक बढ़ गई है। बर्फ से ढके पहाड़ ठंडी हवाएं और धूप में चमकती चोटियां मनाली की खूबसूरती इस वक्त देखते ही बन रही है। ये सितंबर का आखिर है, लेकिन मनाली की वादियों में ये सर्दियों के आगाज की आहट है। धर्मशाला से पूजा शर्मा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जोरदार बर्फबारी ने इन इलाकों का मौसम भले ही सुहाना बना दिया हो, लेकिन निश्चित रूप से स्थानीय लोगों और पर्वतारोहियों के लिए मौसम चुनौतियों का दौर भी लेकर आया है। लेकिन तमाम चुनौतियों के बीच ही हिमाचल के किन्नौर से एक राहत भरी तस्वीर सामने आई। माउंट लियो पारगिल 2 के अभियान पर निकला कोलकाता का 12 सदस्यीय पर्वतारोही दल अब सुरक्षित वापस लौट आया है। हिमालय राज बीकन का ये दल खराब मौसम के बीच में मुश्किल में फंस गया था। अचानक हुई तेज बारिश और बर्फबारी ने हालात चुनौतीपूर्ण बना दिए। तापमान -20 डिग्री तक जा पहुंचा और बर्फ की मोटी चादर ने रास्ते मुश्किल कर दिए। ऐसे में अभियान को रोकना पड़ गया। दल की मदद के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ ITBP और स्थानीय लोग भी जुट गए और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पूरा दल सुरक्षित इलाके से बाहर आ गया।

0: अचानक बदला मौसम, तेज बारिश के बाद तापमान -20 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में किन्नौर में माउंट लियो पारगिल 2 की ओर बढ़ रही कोलकाता की 12 सदस्यीय हिमालयाज बीकन टीमें आधे रास्ते में फंस गईं।
1: लेकिन हम लोग का समिट जो दिन था, हम लोग समिट में पहुंचा, समिट से थोड़ा नीचे हम लोग का छोड़ के आने पड़ा है ड्यू टू द हाई एल्टीट्यूड सिकनेस ऑफ वन ऑफ द मेंबर। एंड हम लोग देन वी आर रिटर्न बैक फ्रॉम बेस कैंप दैट डे।
0: बर्फबारी से रास्ते ढक चुके थे, लौटना भी आसान नहीं था, लेकिन बिगड़ते मौसम के बीच टीम के पास वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।
1: बीच में बहुत स्नो गिरा है तो उसमें वो लोग का चलने का दिक्कत हो रहा था, तो हमारा पास भी 2-3 आदमी था जो थोड़ा से उम्र में ज़्यादा है, वो लोग को सबसे चलने में दिक्कत होता था, तो उसी टाइम हम सोचा है हमको असिस्टेंट जरूरी है।
0: बर्फीली वादियों में फंसी टीम ने मदद के लिए स्थानीय पुलिस और आईटीबीपी से संपर्क किया, साथ ही स्थानीय लोगों से भी मदद मांगी, जिसके बाद तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया।
1: जहां तक हम लोग का आदमी को मिले उतना तक वो लोग पूछे कि ना वो लोग अगर उसको मिल जाएगा तो उसको भी थोड़ा साहस मिल जाएगा जे हमारा लिए आदमी आ गया, रेस्क्यू टीम आ रहा है। तो उसका बाद तासी जी खुद चला गया ऊपर में वो लोग का रूट देखने के लिए, पुलिस भी इतना में आ गया था, पुलिस का जो टीम था, तो तासी जी पुलिस टीम को लेके भी उधर छोड़ा है।
0: इसके बाद आईटीबीपी के जवान मेडिकल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव अभियान में जुट गए।
1: आईटीबीपी पूरा मेडिकल टीम लेकर आया, आईटीबीपी का सबसे बड़ा असिस्टेंट जो था हम लोग का लिए, उसका मेडिकल टीम रेडी रहता है हमेशा।
0: राहत बचाव टीम और स्थानीय लोग पहुंचे तो सभी ने राहत की सांस ली। टीम ने एक बीमार पर्वतारोही को सुरक्षित बाहर निकाला।
1: सही सलामत सब सेफ्टी में हम लोग यहाँ तक पहुंच गया, सबको असिस्टेंट मिला के हम लोग का पूरा टीम सेफ पहुंच गया नाको में।
0: मदद पहुंची तो हालात संभले और आखिरकार बर्फीली मुश्किलों के बीच फंसी टीम सकुशल नाको पहुंच गई। किन्नौर से विशेषर नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो सितंबर में मौसम की मनमर्जियां जारी हैं। मौसम की मनमानी का यही दौर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में नजर आया है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस और डीप डिप्रेशन की वजह से पिछले कुछ दिनों में राजस्थान के कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई, तापमान गिरा, लेकिन अब दिल्ली की तरह वहां भी मौसम करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है। सीधे राजधानी जयपुर से राजस्थान के मौसम का हाल बता रही है हमारी सहयोगी रिदम जैन।
3: राजस्थान में सक्रिय हुए दो पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में खास बदलाव देखा गया। पिछले 24 घंटे में ये बदलाव बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखा गया क्योंकि मूसलाधार बारिश राजस्थान के कई कई इलाकों में दर्ज की गई है, जिसमें जयपुर, बीकानेर, चूरू संभाग शामिल है, और ऐसे में टेम्परेचर्स में भी भारी गिरावट देखी गई है। क्योंकि कुछ दिन पहले जहां रिकॉर्ड तोड़ गर्मी यहां पे दर्ज की जा रही थी कि सितंबर में 15 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूटा था, वहीं एक दिन यानी कि सोमवार ने पूरा जो मौसम है वो बदल दिया। लगातार बारिश यहाँ पे देखी गई, जिसमें राजस्थान में सबसे ज़्यादा बारिश जयपुर में ही 52 मिलीमीटर दर्ज की गई है, और ऐसे में इस बारिश की वजह से गर्मी से राहत जयपुर वासियों को और राजस्थान वालों को सभी को मिली है, और 2 से 7 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर्स में गिरावट भी दर्ज की गई है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये अभी भी मानसून जारी है या फिर ये मानसून की विदाई वाली बारिश है। तो ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि जब मानसून जा रहा होता है तब लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से बारिश होती है, मौसम में बदलाव लगातार देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ कल यानी कि सोमवार को देखने को मिला, जब लगातार 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्टिव हुए थे, तो ऐसे में मौसम में बदलाव देखा गया था। 2 से 7 डिग्री की गिरावट जरूर आई थी, पर साथ ही में मौसम विभाग का कहना है कि ये जो राहत है ये एक ही दिन की थी, क्योंकि अब वापस से मंगलवार से मौसम में बदलाव देखा गया। आसमान जो है वो कहीं ना कहीं वापस से साफ हो गया है। आने वाले 3 से 4 दिन इसी तरीके से जो मौसम है वो साफ ही रहने वाला है, और धीरे धीरे करके 4 से 5 डिग्री तक वापस से टेम्परेचर्स में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
2: तो चलिए, जब तक आप भी एंजॉय कर सकते हैं, एंजॉय कीजिए इस गुलाबी सर्दी को। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें दिन भर जा रही है, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।

हिमाचल के किन्नौर में ऊंचाई वाले इलाके से एक रात भरी खबर निकलकर सामने आई है। माउंट लियो पारगिल 2 के अभियान पर निकला कोलकाता का 12 सदस्यीय पर्वतारोही दल अब सुरक्षित वापस लौट आया। लिहाजा हिमालयास बीकन का ये दल खराब मौसम के बीच मुश्किल में फंस गया था। अचानक हुई तेज बारिश और बर्फबारी ने हालात को और चुनौतीपूर्ण बना दिया। तापमान -20 डिग्री तक जा पहुंचा और बर्फ की मोटी चादर ने रास्ते मुश्किल कर दिए। ऐसे में अभियान को रोकना पड़ा। दल की मदद के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ ITBP और स्थानीय लोग भी जुटे। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार पूरा दल सुरक्षित इलाके से बाहर आ गया।

0: अचानक बदला मौसम, तेज बारिश के बाद तापमान -20 डिग्री तक पहुंच गया। ऐसे में किन्नौर में माउंट लियो पारगिल 2 की ओर बढ़ रही कोलकाता की 12 सदस्यीय हिमालयाज बीकन टीमें आधे रास्ते में फंस गईं।
1: लेकिन हम लोग का समिट जो दिन था, हम लोग समिट में पहुंचा, समिट से थोड़ा नीचे हम लोग का छोड़ के आने पड़ा है ड्यू टू द हाई एल्टीट्यूड सिकनेस ऑफ वन ऑफ द मेंबर। एंड हम लोग देन वी आर रिटर्न बैक फ्रॉम बेस कैंप दैट डे।
0: बर्फबारी से रास्ते ढक चुके थे, लौटना भी आसान नहीं था, लेकिन बिगड़ते मौसम के बीच टीम के पास वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।
1: बीच में बहुत स्नो गिरा है तो उसमें वो लोग का चलने का दिक्कत हो रहा था, तो हमारा पास भी 2-3 आदमी था जो थोड़ा से उम्र में ज़्यादा है, वो लोग को सबसे चलने में दिक्कत होता था, तो उसी टाइम हम सोचा है हमको असिस्टेंट जरूरी है।
0: बर्फीली वादियों में फंसी टीम ने मदद के लिए स्थानीय पुलिस और आईटीबीपी से संपर्क किया, साथ ही स्थानीय लोगों से भी मदद मांगी, जिसके बाद तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया।
1: जहां तक हम लोग का आदमी को मिले उतना तक वो लोग पूछे कि ना वो लोग अगर उसको मिल जाएगा तो उसको भी थोड़ा साहस मिल जाएगा जे हमारे लिए आदमी आ गया, रेस्क्यू टीम आ रहा है। तो उसका बाद दासी जी खुद चला गया ऊपर में वो लोग का रूट देखने के लिए, पुलिस भी इतना में आ गया था, पुलिस का जो टीम था तो दासी जी पुलिस टीम को लेके भी उस उधर छोड़ा है।
0: इसके बाद आईटीबीपी के जवान मेडिकल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव अभियान में जुट गए।
1: आईटीबीपी पूरा मेडिकल टीम लेकर आया, आईटीबीपी का सबसे बड़ा असिस्टेंट जो था हम लोग का लिए उसका मेडिकल टीम रेडी रहता है हमेशा।
0: राहत बचाव टीम और स्थानीय लोग पहुंचे तो सभी ने राहत की सांस ली। टीम ने एक बीमार पर्वतारोही को सुरक्षित बाहर निकाला।
1: सही सलामत सब सेफ्टी में हम लोग यहां तक पहुंच गया, सबको असिस्टेंट मिला के हम लोग का पूरा टीम सेफ पहुंच गया नाको में।
0: मदद पहुंची तो हालात संभले और आखिरकार बर्फीली मुश्किलों के बीच फंसी टीम सकुशल नाको पहुंच गई। किन्नौर से विशेषर नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
8: एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड और ब्रॉन्ज, महिला रिले रेस 4x400 रेस में जीता सोना, मैंस 4x400 मीटर रिले में मिला ब्रॉन्ज, भारत के खाते में अब तक 6 गोल्ड, कुल मेडल 53। कोलकाता में भारत ब्राजील के बीच ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडली फुटबॉल मैच की तैयारियां अंतिम दौर में, 3 अक्टूबर को खेला जाएगा मैच। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए छोटी सड़कों पर चलाई जाएंगी 30 ईवी स्वीपिंग मशीनें, आईटी दिल्ली बताएगा प्रदूषण का रियल टाइम सोर्स। केदारनाथ पैदल मार्ग स्थित चिरबासा स्लाइडिंग जोन में एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, करीब 9,000 यात्रियों को सुरक्षित रास्ता पार कराया। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास नेशनल हाईवे 911 मिलिट्री रनवे में बदला। भारतीय सेना की एविएशन यूनिट्स ने हाईवे की लैंडिंग की प्रैक्टिस की।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष की, जिसमें पूर्वजों की मोक्ष के लिए तर्पण और पिंडदान का विधान है और इसके लिए भारी तादाद में लोग प्रयागराज, वाराणसी और सबसे ज्यादा गया जी में पहुंच रहे हैं। आज आपको इन तीनों जगहों के अलावा बद्रीनाथ धाम के पास ब्रह्म कपाल के बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि मान्यता यह है कि यहाँ पितरों के लिए किए गए अनुष्ठान से उनको मुक्ति मिलती है। लेकिन इसके साथ ही बात होगी ऑनलाइन तर्पण या पिंडदान की। बदलते दौर में लोगों की सुविधा के मुताबिक प्रयागराज के पुरोहित ऑनलाइन तर्पण करा रहे हैं, लेकिन वहीं पर इसे लेकर वाराणसी में विरोध है। क्या मोबाइल पर मोक्ष की पूजा मुमकिन है? आज इस पर भी हम बात करेंगे। पितृपक्ष की शुरुआत के साथ ही पवित्र तीर्थ स्थान जैसे प्रयागराज और वाराणसी में भीड़ उमड़ने लगी। पूर्वजों के मोक्ष के लिए तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठान किए जा रहे हैं। विधि विधान तो वही है, लेकिन बदलते दौर में तौर तरीके जरूर बदल गए हैं। प्रयागराज और काशी जैसे तीर्थ स्थलों पर जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, वहीं पर अब मोबाइल के जरिए ऑनलाइन तर्पण और पिंडदान की सुविधा भी मिल रही है। विदेश में रहने वाले या किसी वजह से तीर्थ नहीं पहुंच पाने के कारण लोग इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन कर्मकांड को लेकर पुरोहितों और श्रद्धालुओं के बीच मतभेद है। रिपोर्ट देखिए।

0: धारा प्रवाह मंत्र बांचते पुरोहित और नियम पूर्वक पिंडदान करते यजमान। पितृपक्ष में पूर्वजों के लिए पूजा और तर्पण करने वंशजों की भारी भीड़ है। चाहे तीर्थराज प्रयाग हो या फिर काशी का घाट, लेकिन पुरोहित और यजमान का जो ये सीधा कनेक्शन है उसमें अब इंटरनेट और मोबाइल फोन की भी एंट्री हो चुकी है। तर्पण हो पिंडदान, विधि विधान नहीं बदले, पर बदलते दौर में इतनी सुविधा तो हो गई है कि अगर किसी कारणवश प्रयागराज या काशी नहीं पहुंच पाए तो ऑनलाइन पूजा करा सकते हैं। ऑनलाइन दर्शन और ऑनलाइन अनुष्ठान की तरह ही पुरोहित ऑनलाइन पिंडदान की सुविधा दे रहे हैं, खासकर ऐसे लोग जो विदेश में हैं या दिव्यांग हैं, उनके लिए ये सुविधा बड़ी राहत है।
1: यहाँ पर काफी संख्या में लोग देश विदेश से लोग आ रहे हैं यहाँ पिंडदान करने के लिए, और सबसे बड़ी चीज ये कि एक व्यवस्था तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से लागू हुई है कि जो लोग विदेश में बैठे हैं यहाँ पे आके पिंडदान नहीं कर सकते, या जो वृद्ध विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, जो आने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। साथ ही यहाँ पर ऑफलाइन लोग आ रहे हैं और ये हमेशा से आते चले आ रहे थे। आप देख सकते हैं संगम क्षेत्र में चारों तरफ तीर्थ पुरोहितों के घाट में हर जगह से यात्री आए हुए हैं, मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, एमपी, यूपी, न जाने कहां कहां से लोग आ रहे हैं और अपने पितरों का पिंडदान सर्वप्रथम प्रयागराज में करके इसके बाद काशी जाएंगे, काशी के बाद गया जाएंगे, विष्णु मुख प्रयाग, विष्णु नाभि काशी, विष्णु चरण गया, तो तीनों जगह पिंडदान होगा।
2: ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है?
1: जी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है। ऑनलाइन व्यवस्था स्पेशली जो एनआरआई लोग बैठे हुए विदेशों में ये उनके लिए है, और साथ ही जो दिव्य वृद्ध विकलांग है, जो चलने में असमर्थ है, उनके लिए है। नहीं तो बाकी जो कॉमन पर्सन है और जो आ सकते हैं तो उनके लिए ऑफलाइन व्यवस्था है।
0: मान्यता है कि पितृपक्ष में पवित्र तीर्थ स्थलों पर पिंडदान करने से पूर्वजों को शांति मिलती है, परिवार में सुख शांति समृद्धि आती है, और पूर्वजों का आशीर्वाद मिले तो बिगड़े काम बनते हैं। इसलिए देश के कोने कोने से लोग प्रयागराज और काशी आते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये धार्मिक परंपरा इसी तरह निभाई जाती है। जो आ सकते हैं सब परिवार आए हैं और पूरे नियम से पिंडदान कर रहे हैं।
3: बैतूल से आए हैं, मध्य प्रदेश से, पितरों का पिंडदान करने के लिए, ताकि हमारे पितरों को आत्मा की शांति मिले, हमारे घर में सुख शांति प्राप्त हो, इसीलिए हम यही कामना करके पिंडदान करने आए हुए हैं। अभी प्रयागराज आए हुए, यहाँ से हम काशी जाएंगे, वहाँ से गया जी जाएंगे।
4: पितृदान करने आए हैं और पितृ सुख शांति के लिए यहाँ पर आए हैं हम लोग, और ये 3 दिन तक का जो कार्यक्रम चलेगा इसमें हम लोग सब पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। हम अपने पितरों को मोक्ष दिलाने और सुख शांति के लिए यहाँ।
0: हालांकि सभी के लिए ये मुमकिन नहीं कि पितृपक्ष में प्रयागराज या वाराणसी पहुंच पाए, पर पूर्वजों के प्रति मन में श्रद्धा है और उनके लिए दान करने का भाव है। ऐसे लोग मोबाइल फोन के जरिए यानी ऑनलाइन तर्पण करा रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि पिंडदान के लिए प्रयागराज और वाराणसी का विशेष महत्व है।
1: किसी कारणवश नहीं आ पा रहे, कोई बीमार है, कोई चल फिर नहीं पा रहा, कोई दिव्यांग है, आने में असमर्थ है, विदेश में है, वो आ नहीं सकता है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है ऑनलाइन व्यवस्था हम लोगों ने प्रारंभ की है। और इस अभी हम लोग जो है अभी एक अमेरिका में करा चुके हैं, और आज जो ये पिंडदान करा रहे थे हम लोग, ये मलेशिया में करा रहे थे, तो ऐसे थे लोग
2: धार्मिक परंपरा
1: जी धार्मिक परंपरा जुड़े रहे। लोग विदेश चले जाते हैं मगर अपने मूल संस्कृति को नहीं भूलते हैं, और अब तो ऐसी व्यवस्था हो गई कि जो नहीं भी कर पाते थे विदेश में रहने के बाद, अब वो लोग भी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक अच्छी व्यवस्था लागू हुई है कि किसी के मनोरथ, किसी का मनोकामना है वो पूर्ण होगा, किसी के पितर जो है तरेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। बस एक बात को ध्यान रखना, ये व्यवस्था उन लोगों को लिए जो आने में असमर्थ हैं, जो समर्थ हैं अगर वो अगर ऐसा करते हैं तो ये उचित नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर आकर करें।
0: ऑनलाइन पिंडदान से यजमान तो प्रसन्न हैं और पुरोहित को भी समस्या नहीं, पर ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पूजा पाठ और भावना में ऑनलाइन दखलंदाजी पसंद नहीं आ रही।
5: बार बार मैं जब से ऑनलाइन श्राद्ध चालू हुआ, मैंने ऑनलाइन श्राद्ध से भरोसे किया कि ऑनलाइन श्राद्ध होता ही नहीं है, ऑनलाइन से पूजा भी कुछ नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या है, चलो भाई दर्शन हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ऑनलाइन आप देख सकते हैं। श्राद्ध का मतलब मुझे स्वयं अपने हाथ से करना है, मैं ऑनलाइन आपको भोजन भेज रहा हूँ, आप कर लीजिएगा तो मैं श्राद्ध भी चढ़ाने को तैयार हूँ, मैं वर्जित रखा हूँ, लेकिन बहुत से ब्राह्मण है जो हमारे बिना अनुमति से चढ़ाते हैं, जिसको मैं मना करता हूँ, लेकिन उन्होंने चाहे गुरु जी पीछे से आया है, अधिकारी ने बोला है करा दीजिए, तो इसलिए थोड़ा सा निवेदन है कि ऑनलाइन श्राद्ध के लिए पड़े ही नहीं, निर्माण अगर अनुरोध नहीं करेगा पंडित चढ़ाएगा नहीं।
0: देखिए तो ये विरोधाभास है, क्योंकि जहां प्रयागराज में पुरोहित ऑनलाइन तर्पण या पिंडदान के लिए तैयार हैं, वहीं वाराणसी के पिशाच मोचन तीर्थ पर ऑनलाइन श्राद्ध को वर्जित कर दिया गया है और पुरोहितों का एक बड़ा तबका इसके विरोध में है। यहां आने वाले यजमान भी मानते हैं कि पूर्वजों के लिए पूजा अपने हाथ से ही हो तो बेहतर है।
6: जो कार्य अपने निष्ठा से और हाथों से बढ़िया से हो जाए, यहाँ पे मौजूद होके पितृ पक्ष में जो है पिशाच मोचन में वो कार्य अच्छा है और ऑनलाइन श्राद्ध से कोई मतलब नहीं हमारे हिसाब से। नहीं नहीं है तो सही, वो जो कार्य किया गया है वो बढ़िया है, जो ऑनलाइन श्राद्ध है उसमें क्या होता है क्या नहीं होता उसका कुछ पता नहीं है, क्या करते हैं पंडित जी लोग, लेकिन जो आपके सामने होता है आप भी संतुष्ट रहते हैं। सबसे मेन व्यक्ति तो आदमी का संतुष्टि के लिए, जब आप संतुष्टि नहीं रहेंगे तो फिर श्राद्ध कराने से क्या फायदा है।
5: नहीं ऑनलाइन से बेहतर है, ऑनलाइन से पूजा नहीं है, इट्स ऑफ योर लाइक मन को संतोष नहीं है, अगर पुराना सभ्यता को मानते हैं तो यहाँ पर पुरानी सभ्यता के अनुसार नहीं चलना चाहिए।
0: पिशाच मोचन पर श्राद्ध तर्पण, त्रिपिंडी श्राद्ध पिंडदान और नारायण बलि श्राद्ध का विशेष महत्व है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं और पुरोहितों के निर्देश पर मंत्रोच्चार के साथ कर्मकांड पूरा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ ऑनलाइन पर पूरी तरह रोक लग गई हो, किसी और शहर में रहने वाले अपने यजमानों को पुरोहित ये सुविधा दे रहे हैं। हाँ, मोबाइल का इस्तेमाल खुलेआम नहीं किया जाता। पूर्वजों के लिए पिंडदान या तर्पण ऑनलाइन हो या नहीं, इसे लेकर बहस हो सकती है, लेकिन अज्ञात लोगों के लिए यानी जिनका कोई वंशज न हो, कोई भी पिंडदान कर सकता है। और पिछले कई वर्षों से ये झांसी में ये काम जितेंद्र तिवारी कर रहे हैं। इस साल भी अज्ञात अनाथ और लावारिश दिवंगत आत्माओं के लिए सामूहिक तर्पण और पिंड पूजन किया गया। इसमें पुरोहितों और धर्माचार्यों के साथ बड़ी तादाद में आम लोग भी शामिल हुए और इसके साथ ही 878 परिवारों के पूर्वजों के पिंड लेकर सामाजिक कार्यकर्ता गया जी के लिए रवाना हुए।
7: देखिए, जिनका संसार में कोई नहीं है, अज्ञात अनाथ लावारिस या जिनका कोई और नहीं है संसार में, उनका आज हमने झांसी के सिपरी बाजार पहुंच नदी पर पिंड पूजन का काम किया और कल हम लोग 8:30 बजे चंबल एक्सप्रेस से उनका पिंडों को लेकर, पवित्र पिंडों को लेकर तीर्थराज ग्याजी में पिंडदान करने के लिए जाएंगे। मैं बता दूं आपको कि उसके साथ साथ वो परिवारों का भी पिंड लेकर मैं जा रहा हूं जो किसी कारण पर तीर्थराज गया जी नहीं जा सकते, किसी की आस्था बहुत है लेकिन असमर्थ है जाने में गया जी। तो पिछली बार मुझे 500 से अधिक परिवारों ने अपने दिवंगतों का नाम नोट कराया था, पूर्व परिजनों का, और इस बार 878 से अधिक परिवारों ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, अपने पूर्वजों का नाम अंकित कराया, तो मैं उनके पवित्र पिंडों को लेकर कल तीर्थराज ग्याजी जा रहा हूँ। इस प्रकार का विचार, जब मैं अपने माता पिता का पिंडदान करने तीर्थराज ग्याजी गया तो वहाँ पर पंडा पुरोहितों ने जब हमसे संकल्प कराया तो उन्होंने कहा कि संसार में जिसका भी पिंडदान नहीं होता, इवन जीव जंतु पशु पक्षी का भी, तब वो दिवंगत आत्मा को मोक्ष की प्राप्त नहीं होती है। तब मैंने उनसे प्रश्न किया कि महाराज, यदि जिनका संसार में कोई नहीं होगा तो उनका कैसे होगा? तो उन्होंने कहा उसका संकल्प या तो देश के राजा को लेना चाहिए या कोई भी अन्य व्यक्ति जो निस्वार्थ भाव से बिना पैसा लिए यदि उनका पिंडदान करेगा तो उनकी दिवंगत आत्मा को मोक्ष की गति प्राप्त होगी। तो मैंने उस संकल्प को लिया और लगातार कई वर्षों से मैं उनका पिंडदान करने जा रहा हूँ।
0: ये प्रण इस भावना से जुड़ा है कि ज्ञात हो या अज्ञात, सभी आत्माओं की शांति और संतुष्टि के लिए पिंडदान जरूरी है और पितृपक्ष का महत्व भी इसीलिए है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: पिंडदान और तर्पण के लिए जो महत्व प्रयागराज और वाराणसी का है, वैसा ही महत्व बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल का भी है, जहां पर देखिए देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु अपने पितरों और पूर्वजों की मोक्ष की कामना करने के लिए पहुंच रहे हैं। ब्रह्म कपाल में सुबह से शाम तक पिंडदान और तर्पण का सिलसिला जारी है। मान्यता है कि यहां पिंडदान और तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मान्यता है कि यहां पर पिंडदान करने के बाद अन्य स्थानों पर पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं होती। पौराणिक कथा के अनुसार अगर हम देखें तो भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले यहाँ पर पिंडदान किया था, इसके लिए भी इसका महत्व माना जाता है। अपनों के जाने के बाद भी उनसे जुड़ी यादें और जिम्मेदारियां हमारे साथ रहती हैं। पितृपक्ष में यही भाव गया जी में आस्था बनकर नजर आ रहा है। बारिश की बूंदों के बीच भी श्रद्धालुओं के कदम नहीं रुक रहे। कोई तर्पण कर रहा है तो कोई पिंडदान के जरिए अपने पितरों की सदगति की कामना कर रहा है। गया सुर की प्राचीन कथा हो या माता सीता के पिंडदान की मान्यता, गया जी में हर परंपरा अपने साथ आस्था और विश्वास की कहानी समेटे है। रिपोर्ट देखिए।
9: दान, तर्पण और प्रार्थना, ये उस अटूट विश्वास का प्रमाण है कि गया जी में की गई ये पूजा पूर्वजों की मुक्ति का मार्ग है। बारिश की बूंदे बरस रही है, किसी के हाथ पे छाता है तो किसी ने प्लास्टिक की ओट ले रखी है, लेकिन श्रद्धा की राह में मौसम आड़े नहीं आता। गया के देव घाट पर श्रद्धालु अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। कोई मंत्रों उच्चार के बीच तर्पण कर रहा है तो कोई पूरे विधि विधान से पिंड अर्पित कर रहा है। होठों पर मंत्र है और मन में अपनों के लिए आत्मिक शांति की कामना।
10: हम अपने माँ बाबू जी का
11: क्या बात है यार?
10: ऐसा सुना जा रहा जाता है कि पिंड बैठा देने पर वो लोग को मुक्ति मिल जाएगी, भोग मिल जाएगा। अब तो वो तो करना ही होगा, बारिश हो क्या आंधी हो कि तूफान हो, तो करना ही होगा। माँ बाबू जी के लिए तो इतना करेंगे।
9: गया जी में 15 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले में देश विदेश से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। गया के विष्णुपद मंदिर क्षेत्र और फल्गु नदी के किनारे कर्म कांड किए जा रहे हैं। कोई माता पिता के लिए आया है तो कोई पति या परिवार के दूसरे सदस्यों को स्मरण कर रहा है। बेटा ही क्यों, ये बेटी के लिए भी अपने पुरखों के प्रति श्रद्धा भाव दिखाने का अवसर है।
12: माता पिता का श्राद्ध करने के लिए गया जी तीर्थ में आए हैं हम लोग। तो सुना है यहाँ पिंडदान करने से पितृलोक तृप्ति होते हैं, पितृलोक को पुण्य मिलता है, इसीलिए हम लोग यहाँ गया जी में पिंडदान करने के लिए आए हैं अपने पितरों के नाम।
9: सनातन परंपरा में मनुष्य पर देव ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण बताए गए हैं। पितृ पक्ष में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने को इसी दायित्व से जुड़ा कर्म माना जाता है। गया को इसी वजह से पितृ तीर्थ और मोक्ष की भूमि कहा जाता है। गरुड़ प्राण और विष्णु प्राण में भी गया में पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध की महिमा का उल्लेख मिलता है। इसी धार्मिक विश्वास के चलते हर साल बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। गया जी की पहचान से जुड़ी एक प्राचीन कथा गया सुर की भी है। मान्यता है कि गया सुर ने कठोर तपस्या कर ऐसा वर प्राप्त किया था जिससे उसकी देह पवित्र हो गई। देवताओं ने यज्ञ के लिए उसका शरीर मांगा और गयासुर उसके लिए तैयार हो गया। कहा जाता है कि लेटने पर उसका शरीर 5 कोस तक फैल गया और इसी क्षेत्र का नाम गया पड़ा। बाद में उसने वर मांगा कि यहाँ श्रद्धा से कर्म करने वाले लोगों के पितरों को सदगति मिल जाए। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने उसकी इच्छा स्वीकार की।
13: यहाँ गयासुर नाम का एक राक्षस था, उसके ऊपर यज्ञ किया था देवताओं ने, तो यज्ञ 100 साल तक यज्ञ किया, उसके बाद फिर भी वो मरा नहीं, और जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो वो उठ के चल दिया तो सभी देवता परेशान हुए, तो भगवान विष्णु आए, अपना उसके ऊपर पैर रखा, पूरा वजन रखा, तब उसके प्राण निकले। तो फिर भगवान ने कहा कि आप जो भी मांगना चाहें वो आप मांग सकते हैं, मैं भगवान हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं बस केवल एक ही चीज़ मांगता हूँ कि मेरे यहाँ पे जो भी यहाँ अपना अपने पितरों का पिंडदान करेगा या अस्थि दान करेगा तो उसका पिता या जो उनके बुजुर्ग लोग हैं जो शरीर पूरा कर चुके हैं उनके लिए मुक्ति मिले, स्वर्ग मिले, ये मेरी कामना है।

0: मान्यता है कि राजा दशरथ का श्राद्ध करने दोनों गया पहुँचे थे। कहा जाता है कि श्री राम पूजा की सामग्री लेने गए तो माता सीता के सामने दशरथ का हाथ प्रकट हुआ और उन्होंने पिंड देने की इच्छा जताई। इसके बाद सीता ने फल्गु नदी की रेत से पिंड बनाकर उन्हें अर्पित किया। आज भी ये कथा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के बीच आस्था का हिस्सा बनी हुई है। महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान और भी अलग अलग स्थानों से लोग गया पहुँचे हैं। यहाँ आए श्रद्धालु भी इसी भावना के साथ गया जी पहुँचते हैं। वो अपने माता पिता के लिए पिंड दान कर रहे हैं। पितृपक्ष के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुविधाओं और सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया है। गया में सोमवार को 3,95,000 श्रद्धालुओं की मौजूदगी दर्ज हुई। 9,768 लोगों ने मेडिकल सुविधा ली, जबकि 70 बुजुर्गों ने व्हीलचेयर का इस्तेमाल किया। अब तक गया पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या 4,60,200 दर्ज की गई है। गया जी सिर्फ आम श्रद्धालुओं के लिए ही आस्था का केंद्र नहीं है। देश की जानी मानी हस्तियां भी यहां पितरों के लिए कर्म कांड करने पहुंचती रही है। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने 2024 में पितृपक्ष के दौरान विष्णुपद मंदिर में अपने माता पिता की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण किया था। वहीं देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी भी अपने बेटे अनंत अंबानी के साथ पिछले साल विष्णुपद मंदिर पहुंचे थे। मंदिर परिसर में बनाए गए विशेष स्थान पर दोनों ने पिंडदान किया था और इसके बाद फल्गु नदी में तर्पण किया था। बारिश में भी थमी नहीं आस्था की ये यात्रा। छाते और प्लास्टिक के सहारे श्रद्धालु अपने संकल्प को पूरा करने में जुटे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों की जुबां पर अपने पुरखों की याद है और हाथों में श्रद्धा का अर्पण। गया जी में जारी ये पितृपक्ष मेला परंपरा, विश्वास और अपनों के प्रति कर्तव्य की उस भावना को दिखा रहा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। गया से पंकज कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: बात करते हैं दिल्ली में एक ऐसी नहर की जो पिछले 20 साल में बड़े नाले में तब्दील हो गई थी। दो दशक से उसकी पहचान बदबू, कचरा और काले गंदी पानी तक सीमित रह गई थी। मुनक नहर की ऐसी दुर्दशा देखकर एक सामाजिक कार्यकर्ता के नेतृत्व में वहां रहने वाले लोगों ने उनको जीवन दान देने की ठान ली और महज 8-9 महीने के अंदर वो नाले से नहर बनने की ओर बढ़ गई है।

0: दशकों से इसकी पहचान बदबू, कचरा और काले गंदे पानी से रही। नाम कुछ और है पर पहचान नाले की रही। दिल्ली के वजीरपुर से होकर बहने वाली ये मुनक नहर कब और कैसे गंदे पानी के नाले में तब्दील हो गई ये पता नहीं चला, लेकिन जब युवाओं ने प्रण लिया, अपनी जिम्मेदारी समझी, तो अब मुनक भी नाले से नहर बनती जा रही है।
1: वजीरपुर के मुनक नहर का अब दो रूप आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन पहले इसका सिर्फ एक रूप हुआ करता था जो गंदा था, जिसमें गंदगी थी चारों तरफ, उसमें बहुत सारी जलकुंभियां थी और जिसका पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल करने के लायक नहीं था। नहर नाला बन चुकी थी, लेकिन आज आपको मुनक नहर के दो रूप दिखाई पड़ते हैं। एक रूप ये है जिस पर काम चल रहा है, जिसकी सफाई

0: सफाई हो चुकी है और अब कहा जा रहा है कि छठ से पहले पहले इसे साफ कर दिया जाएगा ताकि छठ पूजा इसमें आसानी से मनाई जा सके।
1: वर्षों तक मुनक नहर की दुर्दशा देखने और गंदगी की दास्तान सुनाने के लिए मजबूर राहगीरों के लिए इन तस्वीरों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। कोई दूर दूर तक सोच नहीं सकता कि मुनर नहर की भी तस्वीर बदल सकती है। व्रत त्योहारों के बाद मुनक नहर का इस्तेमाल पूजा अनुष्ठान से जुड़ी सामग्री फेंकने के लिए भी होता था। आसपास कलेक्शन प्वाइंट होने की वजह से लोग इसी नहर में देवी देवताओं की प्रतिमाओं को भी विसर्जित कर देते थे। जाने अनजाने आस्था के इसी अपमान ने मुनक नहर के साफ सफाई के अभियान की नींव रख दी।
0: विनय दास मेरे साथ में है। आजकल आप इनका अगर इंस्टा पेज देखेंगे तो इनके कुछ वीडियोस बहुत वायरल हैं, कई लोग उन्हें देख रहे हैं। हाल ही में गणेश विसर्जन हुआ और इसी नहर में गणेश जी की जो मूर्तियां थी वो लोगों ने डाली पूजा के बाद, लेकिन वो अच्छे हालात में नहीं थी। विनय और उनकी टीम ने मिलकर उन मूर्तियों को बाहर निकाला। सिर्फ गणेश विसर्जन नहीं बल्कि कई जो पूजा पाठ होते हैं इनमें मूर्तियां ऐसे नहर नालों में फेंक दी जाती हैं। विनय कोशिश करते हैं कि उन देवी देवताओं का अपमान ना हो, इसलिए खुद अपनी टीम के साथ नहर में उतरते हैं और मूर्तियों को बाहर निकालते हैं।
1: विनय दास नाम के सामाजिक कार्यकर्ता दिल्ली की जे जे कॉलोनी के रहने वाले हैं, जिनके नेतृत्व में 1600 से ज्यादा बच्चों और युवाओं ने कचरे के साथ एक साल में नहर से देवी देवताओं की 2500 से ज्यादा मूर्तियां निकाली। इनमें 35 किलो का शिवलिंग भी शामिल है।
2: गणेश चतुर्थी पे काम पूरा हुआ, उसको यहाँ पर कूड़े के बीच में फेंक जाना, आप सोचिए क्या दिल में ठेस पहुँचती हम लोगों के। और मेरे साथ इतने सारे बच्चे हैं, 200-250 बच्चे एक साथ लगे थे, लास्ट 6 सितंबर को भी लगे थे। उसी दिन केवल हमने एक दिन में ही 600 से 700 मूर्तियां कलेक्ट करी और उसमें एक 35 किलो का शिवलिंग भी निकला।
0: 35 किलो का शिवलिंग?
2: जी भाई साहब, बिल्कुल 35 किलो का। और वो मुझे हैरानी हो रही थी, ना जाने ये शिवलिंग कितने समय से यहाँ पर रहा होगा। तो ये बड़ी शर्म की बात थी कि हम आज धर्म की तरफ तो चल रहे हैं, हम गर्व करते हैं हिंदू होने पर, लेकिन कुछ एक हिंदू ऐसे है ना जो अपने धर्म का सम्मान नहीं कर पा रहे।
1: इस सफाई अभियान के दौरान विनय और उनकी टीम को कई चुनौतियों और चोटों का सामना करना पड़ा। कचरे में कांच, सुई और जहरीले रसायन होने के बावजूद उन्होंने अपनी इस मुहिम को जारी रखा।
2: सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि हम नहर में जब कूद रहे थे तो आप मान के चलेंगे कि कूड़ा जो था वो लगभग कूड़ा इतने शेप में था कि वो उसको 2 फिट का था, वो एक बार में उगता। और यहाँ तक का पानी था, हमारी कमर तक का पानी था और लगभग उसमें पानी था ही नहीं। वो पूरा जो होता है ना कि कूड़ा कचरा जो होता है वो पानी में भीग भीग के सिमट जाता है, जितना हमने सोचा था उससे बहुत भयंकर था जब हम कूदे थे। पहली बात तो हमने सेफ्टी बूट यूज़ करे थे, लेकिन उसके बावजूद वो सेफ्टी बूट के अंदर भी पानी भर जाना, हमको कई कीड़े मच्छरों ने भी काटा और मेरे कई वॉलेंटियर्स को भी काटा, सदस्यों को काटा। मेरे भी अभी लास्ट संडे परसों ही हमने सफाई की है, जिसमें हमने जल कुंभिया उठाई, उसमें मूर्ति आनी थी, तो उसमें भी काफ़ी सबसे बड़ा खतरा तो हमें इंजेक्शन का ही रहता है, लेकिन सेफ्टी बूट से कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस हो जाता है।
1: विनय का बचपन जेजे कॉलोनी में ही बीता। वे एक बेहद साधारण परिवार से आते हैं। उनके पिता चपरासी के पद पर थे। अपनी शिक्षा का खर्च उठाने के लिए उन्होंने महज 7 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया। पर्यावरण संरक्षण के अलावा उन्होंने वंचित वर्ग के बच्चों को मुफ्त ट्यूशन देने और झुग्गी झोपड़ियों के आसपास सफाई अभियान चलाने जैसे अभियान भी छेड़ रखे हैं, जिनमें मुनक नहर की सफाई शामिल है। विनय की इस मुहिम के बाद अब मुनक नहर की सफाई के लिए सरकारी स्तर पर भी काम शुरू हो गया, जिसके बाद ये उम्मीद है कि इस बार छठ पूजा के दौरान सूर्य देव को अर्घ लोग साफ सुथरी मुनक नहर में खड़े होकर देंगे।
0: सफाई के जरिए आप सोचिए बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, अच्छी संगत में जा रहे हैं कम से कम, अगर किसी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी के बच्चे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये नहर अब जो साफ हो रही है, जो इस पर काम चल रहा है, वो कहीं ना कहीं उसमें विनय की बहुत बड़ी भूमिका है। और अब हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार छठ पूजा जब हो तो बात सिर्फ यमुना की ना हो बल्कि लोग मुनक नहर में भी उतर कर आसानी से साफ सफाई के बीच सूर्य देवता को अर्घ दे पाएंगे। मनीष और अस्या, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही हैं।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में
5: विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।